0: फर्स्ट अपील उसमें चलता है।
1: एलिट गन फायरिंग हुआ था, तो ये सारे
0: अब
1: ये सारे विषय के
0: और एक बात,
1: हाँ आपको आपका क्या मानना है ये होना चाहिए?
0: ये जो बातें है ना
1: जी,
0: ये क्यों हुआ क्या हुआ इसके कारणों में जाना पड़ेगा, जिसके लिए जो जानकारी चाहिए मेरे पास नहीं है, आपके पास भी पूरी नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है
1: जी।
0: लेकिन इसको देख के कहां गड़बड़ है ये तय करना पड़ेगा। मैं अभी ये नहीं कह सकता कि क्या हुआ क्यों हुआ, क्योंकि सही गलत मुझे भी मालूम नहीं, आप भी पढ़कर बता रहे हैं, मैं भी पढ़कर बता रहा हूं। आज सुबह मैं आ रहा था तो कुछ मॉड्यूल्स वगैरह इसमें घुस गए, उनका कुछ भंडाफोड़ वगैरह इसी न्यूज में पढ़ रहा था, वो कितनी सही है नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे अगर आंख मूंदकर विश्वास रखने के लिए कहा तो मैं जैन जी पर विश्वास रखूंगा। जो हुआ है ग्रीवंस तो जेनाइन है, भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा इसलिए बात होती है, तो डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग के बाद नहीं होता तो क्या करना बात की बात है। अगर जैन जी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला,
1: बिल्कुल
0: उसको ठीक करना चाहिए।
1: तो इसमें आप मानेंगे कि संवाद यदि पहले से शुरू हुआ होता तो ये बाद में विषय ज्यादा ऊपर जाता ही नहीं?
0: जो नहीं होना चाहिए वो जब होता है तो कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जाती, तभी होता है। किसकी है क्या है ये अलग बात है, लेकिन कमी तो रही है, ठीक हो जाएगी।
1: कोई सरकार ने 6% अब तक एडुकेशन को बजट नहीं दिया है, तो सर मैं आपके माध्यम से, बिकॉज नेशनल मीडिया आपके कारण हमें भी देख रही है, तो आपके माध्यम से डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट शुड पे मोर अटेंशन टू एडुकेशन सर?
0: क्योंकि 6% बजट एलोकेशन की मांग तो पुरानी है और हम उसका समर्थन करते हैं।
1: बढ़िया है,
0: हम तो
1: बढ़िया
0: एडुकेशन वगैरह में जाने वाले लोग नहीं है, लेकिन ये मांग उचित है ऐसा हमको लगता है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अब सरकार के द्वारा ठीक इम्प्लीमेंटेशन हो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, केवल वो करने से नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तो कभी किसी ने कहा नहीं कि सरकार ही पूरी शिक्षा चलाए, तो हम सब मिलकर तो चला सकते हैं। स्कूल चलाने का एक बहुत बड़ा प्रयास हमारे कार्यकर्ता भी विद्याभारती संगठन के माध्यम से कर रहे हैं, तो क्योंकि 23,000 अच्छे स्कूल चलते हैं बहुत प्रांतों में, उसका एक प्रेस्टीज है। तो ये तो कोई बजट करके भरोसे नहीं हुआ है, अपने नई पीढ़ी के बारे में चिंता और उसके चलते प्रयास इसी से हुआ है। मुझे लगता है ये स्पिरिट जगाने की आवश्यकता पहली है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अगर ये हुआ तो जनता में एक मूड बनेगा, और कोई सरकार या कोई पॉलिटिशियन जनता को इग्नोर नहीं कर सकता, तो बिना आंदोलन के भी ये हो जाएगा।
2: और अब बात करेंगे यूपी की सियासत के बारे में, जहां 2027 चुनाव के लिए हर पार्टी ने अपनी कमर कसी हुई है, नए नए मुद्दों को हवा दी जा रही है, तो वहीं एजेंडे के हिसाब से रणनीति को तैयार किया जा रहा है।
3: यूपी में 2027 की सियासी पिच तैयार है। अखिलेश ने पीडीएम में पंडित की एंट्री की तो बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए।
4: मजाक क्यों कर रहे हैं? कभी कहा कि पी का मतलब पीड़ित है, कभी कहा कि पी का मतलब पिछड़े हैं, कभी कहा कि पी का मतलब पासवान है, कल उन्होंने एक कार्यक्रम किया और कहा कि पी का मतलब पंडित है। अखिलेश जी, ब्राह्मण समाज इतना नादान नहीं है, बहुत होशियार समाज है।
3: कल समाजवादी पार्टी ने जनेश्वर मिश्र जयंती पर ब्राह्मण सम्मेलन किया, तो वहीं यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पहले प्रत्याशी का ऐलान किया। सीट चुनी अयोध्या की और टिकट दिया ब्राह्मण समाज के पवन पांडे को।
5: ब्राह्मण हमेशा समाजवादी रहा है, ब्राह्मण हमेशा सबको साथ लेकर चलने का परिचायक रहा है,
6: लेकिन वोट तो उसने बीजेपी को किया है।
5: ऐसा नहीं है, ये गोदी मीडिया का सेटिंग चलता रहता है। ब्राह्मण ने हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ, जब कितने टिकट समाजवादी पार्टी देती, कौन सा जिला जहां टिकट नहीं देती।
3: उधर योगी आदित्यनाथ ने घुमंतू समाज के लोगों से मुलाकात की, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर इस समाज को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया।
7: कि जिसको कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जिसको पूछा नहीं, उसको हमने उसको बुला करके उसकी पूजा की है, इस सम्मान देकर के उसको पूजा की है। क्योंकि हमारे लिए जनता जनता केवल वोट बैंक नहीं है।
3: इस बीच लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे यूपी में सियासत का नया रास्ता खोल रहा है। जहां सड़क पर हो रही मरम्मत के दौरान पंखों से सुखाने की तस्वीरें अखिलेश यादव ने शेयर करते हुए सरकार पर तंज कसा। ये है भाजपाई तरक्की की नई हवा। कुछ दिनों पहले ही जिसका उद्घाटन हुआ हो उस सड़क को मरम्मत की जरूरत पड़ गई और एक्सप्रेस स्पीड से मरम्मत को सुखाने के लिए पंखे का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भी हास्यास्पद है। भाजपा सरकार में हर निर्माण चलता कम है, धंसता ढहता गिरता ज्यादा है। वहीं प्रयागराज में राहुल गांधी के कार्यक्रम पर सियासत तेज हो गई है। जहां पेपर लीक को लेकर 8 अगस्त को गूंज कार्यक्रम के तहत राहुल गांधी को छात्रों से संवाद करना था, लेकिन कार्यक्रम की तैयारियों के बीच अचानक से कार्यक्रम की परमिशन रद्द कर दी गई। कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट की ओर से बारिश की वजह से जगह खराब होने का हवाला दिया गया, जिस पर अब कांग्रेस सरकार को घेर रही है।
8: भाजपा की सरकार जानबूझकर ये प्रयास कर रही है कि राहुल जी कार्यक्रम यहां न कर पाए।
3: बहरहाल यूपी की 2027 की सियासी पिच पर हर पार्टी अपने एजेंडे के हिसाब से बल्लेबाजी कर रही है। आज तक ब्यूरो।
2: रोज की ही तरह गुरुवार को भी संसद में जमकर हंगामा हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने चढ़ावा चोरी और पेपर लीक का मुद्दा उठाया है और सदन के बाहर विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। गृहमंत्री अमित शाह से जवाब भी मांगा गया।
3: आज संसद भवन के बाहर बादल भी बरस रहे थे और विपक्षी सांसद भी। बरसात के बीच विपक्षी सांसद हाथों में छाता लेकर पहुंचे थे, मगर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बगैर छाते के बारिश के बीच बातचीत करते दिखे। इधर विपक्षी सांसदों के एक हाथ में छाता था, दूसरे हाथ में बैनर जिस पर लिखा था अमित शाह जवाब दो। समाजवादी पार्टी के सांसद रोज की तरह चढ़ावा चोरी के खिलाफ तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। बाहर जिस तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, ऐसा ही शोर सदन के भीतर था। राज्यसभा में कांग्रेस की ओर से खड़गे मांग कर रहे थे कि अमित शाह छात्रों पर हुई हिंसा के मामले में जवाब दें।
9: होम मिनिस्टर खुद सदन में आए और हमको ये बताएं किसने लाठी चलाने के लिए बोला, क्या ये पुलिस अधिकारियों ने ही किया, और इसके ऊपर एक स्टेटमेंट हाउस में आकर देने में क्या मजबूरी है।
3: अकेले कांग्रेस ही नहीं, बाकी के विपक्षी दल भी अमित शाह से जवाब मांग रहे हैं। वो इस बात पर भी सवाल उठाते हैं कि अमित शाह संसद में अपने दफ्तर तो आते हैं मगर सदन के भीतर क्यों नहीं आते और जवाब क्यों नहीं देते।
10: हमारे बच्चों को क्यों मारा गया सड़कों पर, उनपे पैलेट गन्स क्यों चढ़ाई गई, उन बेटियों को डंडा क्यों मारा गया और किसके कहने पे ये सब बातें हुई थी, तो सवाल तो इस बात का है।
3: विपक्ष के मुख्य तौर पर दो मांगे हैं, खड़गे से सुनिए वो दोनों मांगे क्या हैं।
9: प्राइम मिनिस्टर का माफीनामा और होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट, सिर्फ ये दो ही चाहते हैं। उनको सदन में बुलाइए, डायरेक्ट करने लगाइए, डायरेक्शन दीजिए ताकि वो बात पार्लियामेंट में रखे और पार्लियामेंट के थ्रू देश के जनता के सामने ये चीजें चली जाए।
3: संसद का मॉनसून सत्र जिस दिन से शुरू हुआ है उस दिन से रोज हंगामा हो रहा है। सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है कि विपक्ष एक ही बात पर अड़ा है, इसलिए सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है।
11: हर दिन खड़गे जी खड़े होते जो लिख के लाते सेम चीज पढ़ने लग जाता है, बार बार उसको आप मौका देते हैं चेयरमैन सर और खड़गे सर सेम चीज बोलते हैं, ये रेपुटेशन है और ये रूल हमारे लीडर ऑपरेशन के लिए।
3: सदन सुचारू रूप से चले इसलिए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से फोन पर बात की। बताया जा रहा है कि बातचीत का मुख्य मुद्दा डीलिमिटेशन और महिला आरक्षण विधेयक रहा। अब इस बातचीत का क्या हासिल होता है वो देखने वाली बात होगी। आज तक ब्यूरो।
2: और अब बात करेंगे यूपी के झांसी में हुए उस हादसे के बारे में जिसका रिश्ता माफिया अतीक अहमद से जुड़ा हुआ है। दरअसल झांसी में एक कार हादसे में मरहूम माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान की जान चली गई। अबान अपने चार दोस्तों के साथ झांसी जेल में अपने बड़े भाई अली से मुलाकात करने के लिए जा रहा था, लेकिन झांसी से 70 किलोमीटर पहले उसकी क्रेटा कार अनियंत्रित हुई, डिवाइडर से टकराई और अबान के साथ उसका एक और दोस्त सोनू, दोनों की जान चली गई।
12: एक नाम है जो प्रयागराज नहीं बल्कि पूर्वांचल में बड़े मान सम्मान के साथ लिया जाता है, आर्य श्री अतीक अहमद जी, जो विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं।
13: तीन साल पहले, तीन दशक तक उत्तर प्रदेश की राजनीति के रास्ते से अपराध की राह तक पर सबसे बड़ा नाम बनकर रहा अतीक अहमद। अतीक अहमद जिसे न कभी जेल जाने से डर लगा,
14: माहौल पैदा करेंगे कि अगर मैं इलाहाबाद में भी रहूं तो आपको लगेगा अतीक मेरे चौखट पे खड़ा है, मेरे दरवाजे पे खड़ा है। उस इंसाफ को दिलाने में मुकदमा जेल चप्पल जो भी हो जाए उसी का भी हमने परवाह नहीं किया, कभी परवाह नहीं किया।
13: वो अतीक अहमद जिसे कभी अपराध करते हुए मौत का डर नहीं था।
15: अब चूंकि आदमी को एहतियात बरतना चाहिए, वरना तो सुरक्षा की जिम्मेदारी ऊपर वाले ने सबके लिए है, वरना इस देश में दुनिया में कितना सुरक्षा में लोग रहे और मार दिए गए, तो सुरक्षा रक्षा की बहुत ज्यादा हमको चिंता नहीं है।
13: वो अतीक अहमद जिसने 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में बीएसपी विधायक रहे राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके दो सरकारी गनर की दिन दहाड़े हत्या करवा के उत्तर प्रदेश की पूरी कानून व्यवस्था को चौंका दिया, जिसके बाद अतीक के चले बमों के बदले माफिया को मिटा देने की गूंज उत्तर प्रदेश ने सुनी।
16: इसी हाल हो रहे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे।
13: इसके तीन साल के भीतर सबसे पहले 13 अप्रैल 2023 को 50 दिन तक फरार रहा अतीक अहमद का बेटा असद पुलिस एनकाउंटर में झांसी में मारा गया। फिर दो दिन के भीतर 15 अप्रैल 2023 को खुद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को तीन हमलावर गोली मारकर ढेर कर देते हैं। और अब 6 अगस्त 2026 को अतीक अहमद का पांचवें नंबर वाला सबसे छोटा बेटा अबान अहमद झांसी जाता है, तभी कार पलट जाती है। हादसे में अतीक अहमद के बेटे अबान समेत दो लोगों की मौत हो जाती है। तीन साल में बिखर गया अतीक अहमद का कुनबा, असद से अतीक और अशरफ से आबान तक खत्म, अतीक का परिवार कोई ढेर कोई जेल कोई फरार।
17: इस समय हम उसी स्थान पर हैं जहां पर माफिया अतीक अहमद के बेटे अबान का एक्सीडेंट हुआ। आप देख सकते हैं ये वही क्रेटा कार है जो यहाँ पर डिवाइडर से टकरा कर क्षतिग्रस्त हो गई। आप देख सकते हैं गाड़ी की कंडीशन क्या है, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो आगे का हिस्सा है वो अंदर चिपक चुका है। आप देखिएगा साफ तौर पर हम आपको सीट के वो आगे का जो नजारा है वो दिखा सकते हैं कि किस प्रकार का हिस्सा है, और आगे पे पीछे जो सीट है वहां पर भी किस प्रकार खून भी पड़ा हुआ है, जो सीट है वो बाहर निकली हुई है, सब मेरे ख्याल से जो सामान है वो भी पड़ा हुआ था। और यहाँ पर जो है सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस भी मौके पर मौजूद है।
18: 10:30 बजे के आसपास हमारे झांसी जिले के तानापुंछ क्षेत्र अंतर्गत एक क्रेटा गाड़ी जो है जिसमें पांच लोग सवार थे वो आ रही थी प्रयागराज से, और तेजी भी बहुत तेज थी और अनियंत्रित किसी कारणवश अनियंत्रित होकर गाड़ी जो है यहाँ के जो डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी है। और जिसमें दो लोग, एक आवान जो पुत्र अतीक अहमद एवं सोनू पुत्र रजाक, ये दोनों की स्पॉट पे मृत्यु हुई है, और बाकी तीन लोग, एक मोहम्मद जायद उमर और एक और व्यक्ति, तीनों का इंजूर हुए हैं।
3: अतीक अहमद का ये वही पांचवें नंबर का बेटा है जिसकी पिछले साल एक रील वायरल होती है जिसमें वो दिल और असलहा दोनों रखने वाला डायलॉग लगाता है।
19: सामने वाले को हमसे क्या मिलेगा ये उसकी औकात बताएगी, हम दिल भी रखते हैं और असलहा भी।
20: हम कुत्तों की तरह पीछे से वार नहीं करते, सामने से भागते।
19: तूफान और हम जब भी आते हैं,
20: मां कसम फाड़ के जाते हैं।
3: जैसे ही अब 6 अगस्त को अबान की गाड़ी पलटी और मौत की खबर झांसी से आई, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आया कि अबान की मौत का सच क्या है, कहीं माफिया अतीक के साथ कोई पुरानी दुश्मनी में बेटे अबान की मौत में साजिश तो नहीं, जब अतीक का राज खत्म हो चुका है, या फिर कोई और वजह।
18: सदन दुशा ये लोग उनसे पूछताछ करना, और बाकी यहाँ के जो सामने चश्मदीद गवाह वगैरह से जब पूछताछ हुई है कि गाड़ी बहुत ही तेजी से आ रही थी, क्रेटा गाड़ी थी, और किसी कारणवश अनियंत्रित हो गई और सीधा आके जो पीछे वाला बड़ा डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी। ये एक जेल में एक बंदी है, उनको मिलने के लिए आ रहे थे ई मुलाकात के थ्रू, और सुबह निकले होंगे प्रयागराज।
3: अतीक का बेटा अबान गाड़ी के आगे बैठा था, गाड़ी की हालत आगे से बताती है कि आगे बैठने वाले का क्या हुआ होगा, हादसा कैसे हुआ। गाड़ी में 5 लोग थे, आगे बैठे अतीक के बेटे अबान, अबान के साथ ही सोनू की मौत होती, 3 लोग पीछे थे, उमर अहमद, मोहम्मद जैद और एहजाम जो जख्मी हुए। आज तक गाड़ी में पीछे बैठे उमर तक पहुंचा ताकि पता चले हुआ क्या है।
21: जा रहे थे झांसी,
22: झांसी किस लिए जा रहे थे?
21: भाई से मुलाकात।
22: कौन भाई?
21: अली भाई।
22: कौन कौन था उसमें?
21: अवान भाई थे, हम थे, फारूक भाई थे, और सोनू भाई थे और जैद भाई थे। तो डिस बैलेंस होने से गाड़ी टकरा गई डिवाइडर में।
22: उसमें अतीक अहमद का लड़का था?
21: हाँ, छोटे वाले।
22: क्या नाम था उनका?
21: अवान। जा रहे थे मिलने भाई से।
22: जेल में?
21: जी।
3: इसके बाद प्रत्यक्षदर्शी भी बताते हैं कि अबान की गाड़ी की रफ्तार तेज थी।
23: कितनी स्पीड रही होगी सर उतने टाइम जब गाड़ी का हादसा हुआ है?
24: 100+ थी।
23: 100+ थी।
3: इस तरह अबान का साथी घटना के चश्मदीद और पुलिस की शुरुआती जांच कहती है अतीक अहमद के पांचवें बेटे अबान की मौत में किसी तरह की साजिश नहीं है, ये सड़क हादसा है। लेकिन अब सवाल, जो माँ शाइस्ता परवीन अपने बेटे असद की कब्र पर 2023 में नहीं पहुंची, जो शाइस्ता परवीन अतीक और अशरफ की मौत के बाद 2023 में सामने नहीं है, क्या वो 3 साल से फरार शाइस्ता अब अपने सबसे छोटे बेटे को जब प्रयागराज के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा तब आखिरी बार देखने पहुंचेगी, या फिर कानून की गिरफ्त से बचने के लिए 3 साल से फरार शाइस्ता अब भी फरार ही रहेगी।
2: बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने तहलका मैगजीन के पूर्व एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल को रेप केस में दोषी करार दिया है और उन्हें 10 साल जेल और 5,00,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने तरुण तेजपाल को 2 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने के लिए कहा है।
3: तरुण तेजपाल जब अदालत के अहाते से निकल रहे थे तो उनके कदम तो बढ़ रहे थे मगर दिल बैठा जा रहा था, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने तरुण तेजपाल को साथी महिला पत्रकार के साथ रेप का दोषी मानते हुए 10 साल की कैद और 5,00,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। 2 हफ्ते के भीतर तरुण तेजपाल को सरेंडर करना होगा।
25: So he's been convicted for all the offences that he was charged for and he has been sentenced to 10 years rigorous imprisonment and a fine of 5,00,000, that is the maximum, that because it has to be done concurrently. He has been given 2 weeks time to surrender.
3: मामला 2013 का है जब तहलका मैगजीन की एक महिला पत्रकार ने आरोप लगाया था कि गोवा में आयोजित थिंक फेस्ट के दौरान 7 और 8 नवंबर की रात होटल के लिफ्ट में तरुण तेजपाल ने दो बार उनका यौन उत्पीड़न किया। इस पूरे मामले में मई 2021 में गोवा की ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में तेजपाल को बरी कर दिया था। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा था और आज हाईकोर्ट ने तेजपाल को 10 साल की सजा सुनाई है।
0: हम लोग अभी इसको अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। हम लोग बिल्कुल नाखुश हैं इस जजमेंट से। हमें लगता है कि बेंच ने हमारा जो मटेरियल था, एविडेंस था, उसको पीछे नहीं किया है, तो हम लोग उसको अपील कर देंगे और आपको बता के रहेंगे कि क्या हो रहा है।
3: सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा तेजपाल के पास अब विकल्प ही क्या है, मगर इतना जरूर है कि तरुण तेजपाल आरोप लगा रहे हैं कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है।
0: मैंने जज को बोला, आप लोग कोर्ट में थे, आपने सुना होगा, मैंने बोला मैं एक पॉलिटिकल विक्टिम हूं, मेरे को तहलका की पत्र काटना है, उसके चलते हुए मेरे को पीछे 13 साल से सरकार पड़ी है और मैं अकेला नहीं हूं इसमें। बहुत सारे लोग हैं जो सरकार की नीतियों से या मानते नहीं या वाकिफ नहीं है ज्यादा, उन

0: तरुण तेजपाल की जो केस के आज गोवा ब्रांच बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो आज निकाल दिया है, तरुण तेजपाल जी को कन्विक्शन हुआ है, इसके लिए मैं सबसे पहले ये न्याय देवता की जीत है।
1: निचली अदालत से राहत पाने के बाद तरुण तेजपाल को भरोसा था कि हाईकोर्ट से भी उन्हें राहत मिलेगी, मगर उन्हें करारा झटका लगा है। आज तक ब्यूरो।
2: अब बात कांवड़ यात्रा की करेंगे। रौनक जबरदस्त है इस बार और श्रद्धा के साथ साथ सृजन और कला का ऐसा संगम देखने को मिल रहा है जो हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। सावन शुरू होते ही शिव भक्तों का सैलाब सड़कों पर उतर आया है और हर दिन कोई न कोई ऐसी अनोखी कांवड़, ऐसा अलग अंदाज और ऐसी अद्भुत भक्ति देखने को मिल रही है जिसे देखकर बरबस यही कहना पड़ता है, वाह भोले के भक्त।
3: भोले के भक्त और भक्ति की अनोखी अभिव्यक्ति। किसी कांवड़ ने रॉकेट का रूप ले लिया है तो कोई कांवड़ विंटेज कार का स्वरूप बन गई है। कहीं करोड़ों की सुपर स्पोर्ट्स कार जैसी चमकती कांवड़ लोगों को अपनी ओर खींच रही है तो कहीं हाइड्रोलिक कांवड़ में साक्षात भोलेनाथ के दर्शन श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर रहे हैं। आस्था का ये रंग इस बार कांवड़ यात्रा को और भी अद्भुत बना रहा है। इस कांवड़ को देखकर पहली नजर में लगेगा मानो कोई लग्जरी स्पोर्ट्स कार सड़क पर दौड़ रही हो, लेकिन जैसे ही कदम करीब आते हैं एहसास होता है कि ये रफ्तार नहीं श्रद्धा की सवारी है। फाइबर से बनी इस अनोखी कांवड़ के बीचों बीच विराजे हैं भगवान शिव। जहाँ जहाँ ये कांवड़ पहुँचती है वहाँ कदम ठहर जाते हैं और हर कोई भोले के इस अनोखे दरबार के साथ एक तस्वीर कैद करना चाहता है। दिल्ली के 6 शिव भक्तों ने मिलकर इसे तैयार किया है। भक्त बताते हैं ये कांवड़ सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बेहद मजबूत भी है। दावा है कि इस पर 20 लोग भी खड़े हो जाएं तो भी इसका संतुलन नहीं बिगड़ेगा। भोलेनाथ की कृपा से मिली खुशियों के प्रति आभार और परिवार के सुख समृद्धि की कामना, यही भावना उन्हें पहली बार इस अनोखी कांवड़ के साथ यात्रा पर ले आई है। उधर मुजफ्फरनगर में भी कांवड़ यात्रा आस्था के साथ अद्भुत शिल्प का उत्सव बन गई है। सड़कों पर उतरी ये हाइड्रोलिक कांवड़ सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है। करीब 15 लाख रुपए की लागत से तैयार इस कांवड़ की सबसे बड़ी विशेषता है इसका चलता फिरता शिव दरबार। हाइड्रोलिक सिस्टम जैसे ही सक्रिय होता है भोलेनाथ के दर्शन होते हैं और पूरा माहौल हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठता है। कांवड़ यात्रा में कदम भले ही आगे बढ़ रहे हों, लेकिन हर नई कांवड़ आस्था की कल्पना को भी नई उड़ान दे रही है। इस बार की कांवड़ यात्रा में जहां श्रद्धा है वहीं सृजन भी नजर आ रहा है। जैसे जैसे शिव भक्तों का कारवां बढ़ रहा है भक्ति के तमाम अनोखे रंग भी नजर आ रहे हैं। मेरठ से उस्मान चौधरी और मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ आज तक ब्यूरो।
2: और अब बात करेंगे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में जहां पर पाकिस्तान बुरी तरह से फंसता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तानी सेना के जुल्म के खिलाफ अवाम ने विद्रोह कर डाला है और वहीं अब इस पाकिस्तान इसे ऑपरेशन सिंधु 2.0 बता रहा है।
1: पीओजेके में पाकिस्तान की सेना के अत्याचारों के खिलाफ जनता अब आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है, लेकिन पाकिस्तान को इसमें ऑपरेशन 2.0 की साजिश नजर आ रही है।
4: उनका एक ही मुतालबा था कि इलेक्शन नहीं होने देना। क्यों नहीं होने देना, वजह बताएं? क्योंकि पीछे से किसी का जो है वो एजेंडा है कि आजाद कश्मीर में इलेक्शन ना हो। आजाद कश्मीर में ये संदूर 2 वालों का एजेंडा है कि आजाद कश्मीर में इलेक्शन ना हो। ये जो इलेक्शन हुआ है इस इलेक्शन के बगैर मैं समझता हूं कि दुश्मन का मोदी का संदूर 2 का एजेंडा कामयाब होता अगर ये इलेक्शन ना होता।
1: जिस चुनाव की बात पाकिस्तान के हुक्मरान कर रहे हैं वो चुनाव पीओके की आवाम पर थोपा गया। अल जजीरा ने जब पाकिस्तान की पोल खोलने की कोशिश की तो पाकिस्तान ने पीओके में चुनाव की रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी।
5: मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट कास्टिंग देयर वोट बिकॉज दे वांट टू शो देयर सॉलिडैरिटी विद द पीपल ऑफ रावलकोट हु हैव बीन अंडर सीज एंड मेनी ऑफ कोर्स हैव बीन किल्ड। इंटरनेट सर्विसेज थ्रू आउट द वैली आर आल्सो डिसरप्टेड। People are not able to use their internet. They are not able to reach out to their loved ones, and the area, of course, is at a standstill, as you can see.
1: Pakistan ke pakhand ka pardafash uski hi pasandida media ki ek report ne kar diya. Theek yahi baat.

0: भारत भी कह रहा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है।
0: बहरहाल पीओके में पाकिस्तान की हालत खराब है, जहां आवाम की बगावत को वो गोलियों से शांत करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। आज तक ब्यूरो।
2: इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

आंदोलन का 14वां दिन आज सोरेन सरकार से 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की वार्ता संभव, बातचीत की जगह पक्की तारीख पर सस्पेंस। राहुल ने वीडियो जारी कर सरकार से की कार्रवाई की मांग।

मोदी की ब्रेकफास्ट पर होगी मुलाकात। टीएमसी के 20 बागी और शिवसेना उद्धव गुट के बागी 6 सांसद रहेंगे मौजूद। युवाओं से बातचीत में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा जेंजी आंदोलन देश के खिलाफ नहीं, संवाद को लेकर कहीं ना कहीं हुई चूक, शिक्षा में सुधार को बताया जरूरी। यूपी में कावड़ियों पर मौलाना का विवादित बयान, लखनऊ के थाने में बीजेपी एमएलए ने की शिकायत, कावड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी बोले उपद्रवियों पर जीरो टॉलरेंस से हो एक्शन।

0: सभी का, मैं हूं आपके साथ पूजा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रांची की खबर के साथ, क्योंकि छात्रों के विरोध प्रदर्शन का आज वहां पर 14वां दिन है। जयपाल सिंह स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी में भ्रष्टाचार के विरोध में लगातार छात्रों का आंदोलन जारी है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि सरकार और छात्रों के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में बातचीत की तैयारी है। ये बातचीत कभी भी हो सकती है और इसके लिए जगह तो फाइनल है, लेकिन अब तक तारीख पर सस्पेंस बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक, आपको बता दें कि सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच औपचारिक वार्ता आज हो सकती है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय टीम बनाई है, जिनमें 8 छात्र हैं, 2 विशेषज्ञ और 1 वकील भी शामिल है। तो आज बातचीत होने की संभावना छात्रों के साथ मानी जा रही है। रांची में आज बातचीत हो सकती है। तो ये प्रदर्शन जो छात्र लगातार कई दिनों से कर रहे हैं, आज उसका 14वां दिन है और अभी भी प्रदर्शन जारी। बीती रात रांची में छात्रों ने कैंडल मार्च भी किया। उससे पहले 5 अगस्त को तिरंगा यात्रा भी निकाली गई थी और जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता सत्यजीत कुमार। देखिए,
1: जेपीएससी और जेएसएससी में व्यापक प्रदर्शन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। अपने साइट पर जाइए और शाम होते ही हर रोज इसी तरह से ये विरोध प्रदर्शन करते हैं। देखिए, फ्लैश लाइट जलाया हुआ है मोबाइल का और इन लोगों ने जयपाल सिंह स्टेडियम का एक चक्कर लगाया है। किसी दिन तिरंगा यात्रा, किसी दिन इसी तरह से फ्लैश लाइट लगा के जो है मार्च करते हैं, कैंडल मार्च किसी दिन करते हैं। कल लंबा तिरंगा यात्रा निकला था इनका और अब देखिए एक साथ सॉलिडारिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं कि एकजुट है अपने मांगों को लेकर, एकजुट है जो उनका डिमांड है उसको लेकर देख रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे और शाम का अच्छा नजारा होता है, देखने वाले लोग जो मोरल सपोर्ट कर रहे हैं।
0: तो वहीं झारखंड में छात्रों के आंदोलन का 14वां दिन है। कई छात्र भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी में सुधार को लेकर शुरू हुआ छात्रों का यह आंदोलन राज्य में सबसे बड़ा आंदोलन अब बन चुका है, जिसमें शामिल होने के लिए झारखंड के अलग अलग राज्यों से छात्र रांची पहुंच रहे हैं। लेकिन सबकी चुनौती एक ही है।
2: पापा 500 रुपए दिन का कमाते हैं, उसमें हम लोग ऐसे पेपर लीक
3: 15,000 पूरा महीना चल जाता है। कितने लोग हैं परिवार?
2: हम लोग 6 जन हैं।
4: झारखंड के युवा हर दल और हर नेता से ये पूछते हैं कि अगर चुनावों में धांधली रोकने के इंतजाम हो सकते हैं तो फिर परीक्षाएं फुल प्रूफ क्यों नहीं बन सकती?
2: कोई भी स्टेट में, कोई भी सेंटर में जब इलेक्शन होता है, पूरा पूरी स्ट्रॉन्ग रूम बनाया जाता है, एक महीना में रिजल्ट देता है, पूरा काउंटिंग एक महीना में रिजल्ट देगा सर, एक महीना में, उसमें कुछ धांधली नहीं होगा। एग्जाम में बार बार धांधली क्यों हो रहा?
4: रांची में प्रदर्शन कर रहे ये छात्र अपने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछना चाहते हैं कि झारखंड में कोई भी परीक्षा ठीक से क्यों नहीं हो पाती है?
5: अभी सर यहाँ झारखंड में ये स्थिति है सर, एक कांस्टेबल का परीक्षा अच्छा से झारखंड सरकार ले नहीं सकती है। अरे मैट्रिक का, यहाँ मैट्रिक इंटर का अभी परीक्षा होता है ना, उसका भी पेपर लीक हो जाता है।
4: आसमान से बरसती बारिश के बीच रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम के खुले मैदान जमीन पर बैठे युवा 13 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है, लेकिन जेपीएससी और जेएसएससी के परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में आंदोलन कर रहे छात्रों के हौसले टूटे नहीं। झारखंड सरकार भले कहती हो कि वो छात्रों के साथ बातचीत के लिए तैयार, लेकिन सवाल पूरी तरह चरमरा चुकी व्यवस्था के दुरुस्त होने को लेकर है, जिसके सताए छात्रों का दर्द बहुत ज्यादा है।
3: इनके हंगामे, इनके पोस्टर में, बैनर में ये एआई के नारों में पीछे लगा रखा है ना उन्होंने, कुछ पुच्चू जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म कर दो ना। अब इस तरह के नारों में इतना दम है कि इससे आप कहते ना कि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो गई, ये नई पीढ़ी है, ये हंगामा नहीं करती, ये बस शांति से बैठ के अपने नारों से सरकार हिला देती है। और संभवतः इसीलिए सरकार को अपने मंत्रियों को बना भेजना पड़ा है, यहां से 10 छात्र हैं, उनका डेलीगेशन भी तैयारी कर रहा है जाने के लिए।
4: रांची में प्रदर्शन कर रहे ब्रिज किशोर की कहानी खबरदार करती है कि झारखंड में किस तरह ईमानदार छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। ब्रिज किशोर ने जेपीएससी की परीक्षा दी और वो लिखित परीक्षा पास करके इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं मिली। शुरुआत में इन्हें लगा कि इनकी कोशिश में कमी रह गई, लेकिन बाद में इस असफलता की असलियत पता चली।
6: प्रीलिम्स निकला, मेंस निकला, मैं फिर इंटरव्यू भी दिया सर, फाइनली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उस समय लगा मुझे कि शायद मेरा ही कहीं पे फॉल्ट होगा। उस समय से इंटरव्यू में मुझे मात्र 40 नंबर दिया गया। उस समय ये देखा गया कि वहाँ पे चार बोर्ड है सर, जितने सारे मेंबर है जेपीएससी के अंदर, वो सभी मेंबर किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड है, कोई किसी से है, और उन लोगों का अपना पर्सनल बायस होता है। तो एक बोर्ड सबको 65 प्लस दे रहा है, एक बोर्ड सबको किसी को 15 दे रहा है, किसी को 20 दे रहा है, मुझे मात्र 40 नंबर दिया गया।
4: साल 2018 में ग्रेजुएट हुए ब्रिज किशोर जैसे छात्रों की झारखंड में कमी नहीं है, जिनकी सरकारी नौकरी की तैयारी में उम्र निकली जा रही है, लेकिन सरकार परीक्षा तक ठीक से नहीं करवा पा रही। दावा है कि मिलीभगत करके बाहरी छात्र परीक्षा पास करके नौकरी ले जा रहे हैं।
6: मैं 29 के एज में पहुंच चुका हूं। आज मेरे पास कोई भी एक जॉब नहीं है, नहीं तो कोई एक सोशल सिक्योरिटी मेरे पास। तो बहुत मतलब अभी क्या हो रहा है कि कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहा हूं, उसमें या तो पेपर लीक हो जाती है या तो पर्दे के पीछे इस तरह का सेटिंग हो जाती है, तो पूरा सर हौसला ही टूट चुका है। मुझे समझ नहीं आ रहा है करूं तो करूं क्या, मतलब आगे कुछ भी समझ नहीं, पूरा ब्लैंक हो चुका है, आगे का भविष्य पूरा का पूरा ब्लैंक हो चुका है। एक नई दिल्ली का लड़का है, नहीं सोनू कुमार, यहाँ 40 रैंक है सर उसका, वो ऑलरेडी किसी सिंडिकेट का मास्टरमाइंड था और यहाँ पे वो 40 रैंक प्राप्त का भी अधिकारी है। यहाँ
4: झारखंड में नौजवानों की एक पूरी पीढ़ी परीक्षा में धांधली से बेरोजगार होने का दंश झेल रही है, लेकिन ना इंसाफी खत्म होने का नाम नहीं लेती।
7: 25 साल हो गया एक पीढ़ी का, तो मतलब उम्र पार हो गया। उन्होंने भी देखा अपने सामने नौकरी को बिकते हुए, धांधली लगते हुए की पारदर्श, और ये उन्होंने हमें बताया है कि झारखंड में कोई भी एग्जाम फेयर तरीके से नहीं होता है, बैकडोर एंट्री होता है, पैसा दो नौकरी लो। अगर आप पढ़े लिखे हुए भी नहीं है ना, तो झारखंड में ये व्यवस्था है कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पैसा ले लीजिए और उसके बाद फिर कोई एजेंसी परीक्षा ले रही है तो वहाँ पे पैसा दे के नौकरी ले लीजिए, ये व्यवस्था है झारखंड में।
4: मनीष बताते हैं कि इनके पिता ने झारखंड बनाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन राज्य बनने के बाद एक भी ऐसा दिन नहीं गया जब उन्हें पछतावा ना हुआ हो।
7: देखिए मेरे परिवार में मेरा मिला के 3 जन है, मेरे पापा, मेरी मम्मी और हम। तो मम्मी भी एक दौर का आंदोलन किया झारखंड में पारा टीचर, उन लोगों पर भी सरकारों ने लाठियां बरसाई है।
3: आंदोलन आपको जन्म से मिल गया?
7: हाँ, आंदोलन मैंने जन्म से देखा, और पापा नारा देते थे ना कि घर में कि कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड। तो पापा कभी कभी बोलते हैं कि झारखंड ले लिए, लेकिन हम झारखंडियों को क्या मिला है।
4: सोचिए, जिन पिता ने झारखंड बनाने के लिए संघर्ष किया, वही पिता अब अपने बेटे को बाहर के राज्यों की परीक्षा की तैयारी करने की सलाह देते हैं, ताकि बेटा भ्रष्ट शिक्षा तंत्र के हाथों ठगाना जाता रहे।
7: परीक्षा दे के आते थे, बस में बैठते थे, पेपर लीक का खबर आ जाता था, मम्मी फोन करके बोलती थी कैसा परीक्षा गया, मम्मी को बोलते थे मम्मी पेपर लीक हो गया, क्या करें हम लोग, कहाँ जाएं। सरकार से गुहार लगाने के लिए आते हैं, तो पिछले बार भी धोखा खाए थे हम लोग सीजीएल में, सरकार ने कुछ हमारी सुनी नहीं। 2 बार SIT का गठन हुआ था, उन्होंने केस बदल दिया, हमारा जो सही मांग था केस ने भी उसको, कोर्ट ने भी उसे निरस्त कर दिया।
4: रांची में छात्रों का यही दर्द उन्हें धरना स्थल से हिलने नहीं देता, जहां जंतर मंतर की तरह जेन जी की भाषा में नारे और व्यंग का इस्तेमाल हो रहा है।
3: अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। जेएसएससी जो स्टूडेंट कह रहे हैं अब तो नौकरी पक्की है, फिर क्या होता है पेपर लीक। इतना आत्मविश्वास अच्छा नहीं होता। उपहास कहते ना कि इतने गंभीर विषय को भी ऐसा उपहास बनाया कि मार सीधे सिस्टम को लगती है। पेपर मत बेचो प्लीज, क्या लिखा देखिए, जेंजी बाबू पेपर मत बेचो प्लीज। जेंजी की जो भाषा है ना इन बच्चों की, वो भाषा अपनी इतनी क्यूट है, इतनी प्यारी है, लेकिन प्रभावशाली है। ये 3D के जरिए एनिमेटेड AI का इस्तेमाल हमने कहां नहीं देखा था, और किसने सोचा था कि भारत में AI का इस्तेमाल आंदोलनों में भी होगा।
0: तो झारखंड में छात्रों की मांग को लेकर विधानसभा के बाहर भी काफी ज्यादा हंगामा हुआ। मॉनसून सेशन के पहले दिन विपक्षी विधायकों ने खूब नारेबाजी की। मुख्यमंत्री ने भी छात्रों को भरोसा दिया है कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन उनके ही मंत्री ने यह कहकर छात्रों के जख्मों पर नमक छिड़क दिया कि झारखंड में पेपर लीक हुआ ही नहीं है।
8: ये रेट चार्ट ये सीमित समय के लिए है, न तो रेट बढ़ने वाला है, इसलिए हेमंत सोरेन बहुत जल्दी रेट बढ़ाएगा। ये सेल भी है, अगर चार को लाइएगा तो एक फ्री मिलेगा।
4: झारखंड विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष के विधायकों ने प्रदर्शन किया ताकि रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों की बात सरकार तक पहुंचे, लेकिन झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी ने छात्रों की सबसे बड़ी समस्या को ही खारिज कर दिया।
9: हम बार बार कहना चाहते हैं कि झारखंड में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। चीजों को समझिए आप लोग, त्रुटियां पाई गई है, एक्शन हुआ है, कार्रवाई चल रही है। चेयरमैन का इस्तीफा ले लिया गया है, 12 लोग जेल में है और कठोर से कठोर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं।
4: कुछ छात्र जिस पेपर लीक और परीक्षा में धांधली पर भड़के हुए हैं, उसे सरकार के मंत्री मुद्दा मानते ही नहीं। जबकि 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे आने के बाद छात्रों ने कट ऑफ तय करने, मेरिट लिस्ट और OMR शीट में धांधली पर सवाल उठाए। वहीं JSSC, CGL समेत दूसरी भर्ती परीक्षाओं में लंबे समय से पेपर लीक, देरी और धांधली के आरोप लगते रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर छात्र रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि 14वीं JPSC परीक्षा रद्द की जाए, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच CBI जैसी केंद्रीय एजेंसी से कराई जाए, क्योंकि उन्हें CID पर भरोसा नहीं है।
10: झारखंड में ऐसी कोई परीक्षा नहीं हुई जिसमें धांधली हुई। हमने कई परीक्षाएं दी, हमने जेट में अभी जेट के एग्जामिनेशन दिया, हमने CGL के एग्जामिनेशन दिया, तो कई सारे एग्जामिनेशन में जो है ये चीजें देखने को मिला। यहाँ तो लोगों का कार्बन कॉपी बाद में रंगा जा रहा है सर।
11: एग्जाम ऐसा है सर कि 10 साल से नहीं हुआ, जैसे जेट का एग्जाम हो गया, प्रोफेसर का एग्जाम हो गया, इस झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट उसका भी 10 साल से एग्जाम नहीं, बस फॉर्म बनाता और लिखता है कि अपरिहार्य कारण से कैंसिल कर दिया गया। जो भी एग्जाम लेना वो ऐसे कंपनी को ठेका ना दे जिस कंपनी के डायरेक्टर मार्केटिंग मैनेजर का चयन एग्जाम में हो जा रहा है, उसका अकाउंटेंट का PT में एग्जाम हो जा रहा है, हम लोग क्या करें।
4: सरकार को छात्रों की इसी समस्या से खबरदार करने के लिए ही छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो पिछले 6 दिन से भूख हड़ताल कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम बांसुक से बात करने के बाद उन्होंने सिर्फ पानी पीना शुरू किया, लेकिन भूख हड़ताल जारी है। झारखंड सरकार का कहना है कि छात्रों से जुड़े इस मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा, छात्रों से 4 मंत्रियों की कमेटी बात करेगी।
0: तो वहीं झारखंड में कांग्रेस से आने वाले मंत्री इरफान अंसारी कह रहे हैं कि पेपर लीक ही नहीं हुआ। वहीं उन्हीं के नेता राहुल गांधी ने झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन पर चुप्पी तोड़ी और तोड़ते हुए कहा कि झारखंड सरकार से कार्रवाई करने की बात है।
12: झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है और इलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ओप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार।
0: अब बात कर लेते हैं जेनजी से संघ प्रमुख मोहन भागवत के संवाद की। दरअसल इसमें सरकार की कार्रवाई से लेकर पैलेट गन के इस्तेमाल तक के सवालों का मोहन भागवत ने जवाब दिया है, देखिए।
13: अभी जो हुआ है ग्रीवंस तो जेनाइन है, भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा इसलिए बात होती है, तो डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग के बाद नहीं होता तो क्या करना बात की बात है। अगर जेनजी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रहे, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला रहे।
14: बिल्कुल,
13: उसको ठीक करना चाहिए।
14: तो इसमें आप मानेंगे कि संवाद यदि पहले से शुरू हुआ होता तो ये बाद में विषय ज्यादा ऊपर जाता ही नहीं।
13: जो नहीं होना चाहिए वो जब होता है तो कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जाती, तभी होता है। किसकी है क्या है ये अलग बात है, लेकिन कमी तो रही है, ठीक हो जाएगी।
14: लोग हमें बोलेंगे saying that these people are agents of some country and so and so, तो सर
13: नहीं,
14: इसमें
13: वो मैं कह रहा हूँ ना,
14: इसमें
13: मैं कह रहा हूँ कि जेन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं
14: जी,
13: अपने लोग है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है
14: जी सर।
13: इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला, अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है, वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है, ये होता है, तो होना चाहिए। और जेन जी वगैरह ऐसी है ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता।
14: आप क्या मानते?
13: विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब जब पूछा गया तब मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है।
14: अरे वाह, बढ़िया है।
13: और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है।
14: एलिट गन फायरिंग हुआ था तो ये सारे,
13: अब
14: ये सारे विषय के
13: और एक बात,
14: हाँ आपको आपका क्या मानना है ये होना चाहिए?
13: ये जो बातें है ना
14: जी,
13: ये क्यों हुआ क्या हुआ इसके कारणों में जाना पड़ेगा, जिसके लिए जो जानकारी चाहिए मेरे पास नहीं है, आपके पास भी पूरी नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है
14: जी।
13: लेकिन इसको देख के कहां गड़बड़ है ये तय करना पड़ेगा। मैं अभी ये नहीं कह सकता कि क्या हुआ क्यों हुआ, क्योंकि सही गलत मुझे भी मालूम नहीं, आप भी पढ़कर बता रहे हैं, मैं भी पढ़कर बता रहा हूं। आज सुबह मैं आ रहा था तो कुछ मॉड्यूल्स वगैरह इसमें घुस गए, उनका कुछ भंडाफोड़ वगैरह इसी न्यूज में पढ़ रहा था, वो कितनी सही है नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे अगर आंख मूंदकर विश्वास रखने के लिए कहा तो मैं जैन जी पर विश्वास रखूंगा।
14: कोई सरकार ने 6% अब तक एडुकेशन को बजट नहीं दिया है, तो सर मैं आपके माध्यम से, बिकॉज नेशनल मीडिया आपके कारण हमें भी देख रही है, तो आपके माध्यम से डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट शुड पे मोर अटेंशन टू एडुकेशन सर?
13: क्योंकि 6% बजट एलोकेशन की मांग तो पुरानी है और हम उसका समर्थन करते हैं।
14: बढ़िया है,
13: हम तो
14: बढ़िया
13: एडुकेशन वगैरह में जाने वाले लोग नहीं है, लेकिन मांग उचित है ऐसा हमको लगता है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अब सरकार के द्वारा ठीक इम्प्लीमेंटेशन हो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, केवल वो करने से नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तो कभी किसी ने कहा नहीं कि सरकारी पूरी शिक्षा चलाए, तो हम सब मिलकर तो चला सकते हैं। स्कूल चलाने का एक बहुत बड़ा प्रयास हमारे कार्यकर्ता भी विद्याभारती संगठन के माध्यम से कर रहे हैं, तो 23,000 अच्छे स्कूल चलते हैं बहुत प्रांतों में, उसका एक प्रेस्टीज है। तो ये तो कोई बजट करके भरोसे नहीं हुआ है, अपने नई पीढ़ी के बारे में चिंता और उसके चलते प्रयास इसी से हुआ है। मुझे लगता है ये स्पिरिट जगाने की आवश्यकता पहली है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अगर ये हुआ तो जनता में एक मूड बनेगा, और कोई सरकार या कोई पॉलिटिशियन जनता को इग्नोर नहीं कर सकता, तो बिना आंदोलन के भी ये हो जाएगा।
0: बात कर लेते हैं यूपी की सियासत की, जहां 2027 चुनाव के लिए हर पार्टी ने अपनी कमर कस ली है, तो नए नए मुद्दों को हवा भी दी जा रही है, तो वहीं एजेंडे के हिसाब से रणनीति को तैयार किया जा रहा है।
15: यूपी में 2027 की सियासी पिच तैयार है। अखिलेश ने पीडीएम में पंडित की एंट्री की तो बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए।
16: मजाक क्यों कर रहे हैं? कभी कहा कि पी का मतलब पीड़ित है, कभी कहा कि पी का मतलब पिछड़े हैं, कभी कहा कि पी का मतलब पासवान है, कल उन्होंने एक कार्यक्रम किया और कहा कि पी का मतलब पंडित है। अखिलेश जी, ब्राह्मण समाज इतना नादान नहीं है, बहुत होशियार समाज है।
15: कल समाजवादी पार्टी ने जनेश्वर मिश्र जयंती पर ब्राह्मण सम्मेलन किया, तो वहीं यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पहले प्रत्याशी का ऐलान किया। सीट चुनी अयोध्या की और टिकट दिया ब्राह्मण समाज के पवन पांडे को।
17: ब्राह्मण हमेशा समाजवादी रहा है, ब्राह्मण हमेशा सबको साथ लेकर चलने का परिचायक रहा है,
18: लेकिन वोट तो उसने बीजेपी को किया है।
17: ऐसा नहीं है, ये गोदी मीडिया का सेटिंग चलता रहता है। ब्राह्मण ने हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ, जब कितने टिकट समाजवादी पार्टी देती, कौन सा जिला जहां टिकट नहीं देती।
15: उधर योगी आदित्यनाथ ने घुमंतू समाज के लोगों से मुलाकात की, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर इस समाज को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया
19: कि जिसको कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जिसको पूछा नहीं उसको हमने उसको बुला करके उसकी पूजा की है, इस सम्मान देकर के उसको पूजा की है, क्योंकि हमारे लिए जनता जनता केवल वोट बैंक नहीं है।
15: इस बीच लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे यूपी में सियासत का नया रास्ता खोल रहा है, जहां सड़क पर हो रही मरम्मत के दौरान पंखों से सुखाने की तस्वीरें अखिलेश यादव ने शेयर करते हुए सरकार पर तंज कसा। ये है भाजपाई तरक्की की नई हवा। कुछ दिनों पहले ही जिसका उद्घाटन हुआ हो उस सड़क को मरम्मत की जरूरत पड़ गई और एक्सप्रेस स्पीड से मरम्मत को सुखाने के लिए पंखे का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी हास्यास्पद है। भाजपा सरकार में हर निर्माण चलता कम है, धंसता ढहता गिरता ज्यादा है। वहीं प्रयागराज में राहुल गांधी के कार्यक्रम पर सियासत तेज हो गई है, जहां पेपर लीक को लेकर 8 अगस्त को गूंज कार्यक्रम के तहत राहुल गांधी को छात्रों से संवाद करना था, लेकिन कार्यक्रम की तैयारियों के बीच अचानक से कार्यक्रम की परमिशन रद्द कर दी गई। कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट की ओर से बारिश की वजह से जगह खराब होने का हवाला दिया गया, जिस पर अब कांग्रेस सरकार को घेर रही है।
20: भाजपा की सरकार जानबूझकर ये प्रयास कर रही है कि राहुल जी कार्यक्रम यहां न कर पाए।
15: बहरहाल यूपी की 2027 की सियासी पिच पर हर पार्टी अपने एजेंडे के हिसाब से बल्लेबाजी कर रही है। आज तक ब्यूरो।
0: तो वहीं आज हैंडलूम डे है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना एक इंस्टा वीडियो शेयर किया और अपील की है कि आज के दिन हम सब हैंडलूम दिवस मनाएं और ज्यादा से ज्यादा हैंडलूम खरीदें ताकि गरीब परिवारों का आर्थिक विकास हो सके। बीती रात ही पीएम मोदी ने यह वीडियो पोस्ट किया है।
21: साथियों, 1905 7 अगस्त हमें भूलना नहीं है। 7 अगस्त 1905 को देश की आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया, मैं आज आग्रह करता हूं 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है। हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है और हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार, जो अपने हाथों से अपनी छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं और नई नई वैरायटीज होती है, आप देखिए ना क्या कुछ नहीं है, और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो। आइए 7 अगस्त हैंडलूम डे।
0: चलिए यहां वक्तों के एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
22: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर मां का भरोसा प्यार से परोसा।
23: सावन के पावन महीने में
1: महाकाल की दिव्य धरती उज्जैन से आस्था का सबसे बड़ा मंच, जहां जुटेंगे देश के सबसे प्रतिष्ठित संत और मुख्यमंत्री। देखिए धर्म संसद 7 अगस्त दिन भर सिर्फ आज तक पर।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या चंदन के प्रयोग से डिप्रेशन को दूर किया जा सकता है? क्या चंदन का प्रयोग करके मन को बहुत अच्छा बनाया जा सकता है? चंदन के प्रयोग से राहु केतु कैसे शांत हो सकते हैं? क्या है चंदन के चमत्कारी प्रयोग? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

का 14वां दिन आज सोरेन सरकार से 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की वार्ता संभव, बातचीत की जगह पक्की तारीख पर सस्पेंस। राहुल ने वीडियो जारी कर सरकार से की कार्रवाई की मांग।

ब्रेकफास्ट पर होगी मुलाकात। टीएमसी के 20 बागी और शिवसेना उद्धव गुट के बागी 6 सांसद रहेंगे मौजूद। युवाओं से बातचीत में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा जेन जी आंदोलन देश के खिलाफ नहीं, संवाद को लेकर कहीं ना कहीं हुई चूक, शिक्षा में सुधार को बताया जरूरी। यूपी में कावड़ियों पर मौलाना का विवादित बयान, लखनऊ के थाने में बीजेपी एमएलए ने की शिकायत, कावड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी बोले उपद्रवियों पर जीरो टॉलरेंस से हो एक्शन।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा। बात कर लेते हैं यूपी के झांसी में हुए उस हादसे की जिसका रिश्ता माफिया आतिक अहमद से जुड़ा हुआ है। दरअसल झांसी में एक कार हादसे में मरहूम माफिया आतिक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान की जान चली गई है। अबान अपने चार दोस्तों के साथ झांसी जेल में अपने बड़े भाई अली से मुलाकात करने के लिए जा रहा था, लेकिन झांसी से 70 किलोमीटर पहले से ही उसकी क्रेटा कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जाकर टकरा गई और अबान के साथ उसका एक दोस्त सोनू, दोनों की जान चली गई है।
1: एक नाम है जो प्रयागराज नहीं बल्कि पूर्वांचल में बड़े मान सम्मान के साथ लिया जाता है, आरवी श्री आतिक अहमद जी, जो विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं।
2: तीन साल पहले, तीन दशक तक उत्तर प्रदेश की राजनीति के रास्ते से अपराध की राह तक पर सबसे बड़ा नाम बनकर रहा आतिक अहमद। आतिक अहमद जिसे न कभी जेल जाने से डर लगा,
3: अगर मैं इलाहाबाद में रहूं तो आपको लगेगा दीप मेरे चौखट पे खड़ा है, मेरे दरवाजे पे खड़ा है। ये माहौल में पैदा करूंगा क्या कोई इंसाफ मिलेगा? उस इंसाफ को दिलाने में मुकदमा मुकदमा जेल छप्पर जो भी हो जाए उसी का भी हमने
2: वो आतिक अहमद जिसे कभी अपराध करते हुए मौत का डर नहीं था।
4: अब चूंकि आदमी को एहतियात बरतना चाहिए, वरना तो सुरक्षा की जिम्मेदारी ऊपर वाले ने सबके लिए है, वरना इस देश में दुनिया में कितना सुरक्षा में लोग रहे और मार दिए गए, तो सुरक्षा रक्षा की बहुत ज्यादा हमको चिंता नहीं है।
2: वो आतिक अहमद जिसने 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में बीएसपी विधायक रहे राजूपाल हत्याकांड की मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके दो सरकारी गनर की दिन दहाड़े हत्या करवा के उत्तर प्रदेश की पूरी कानून व्यवस्था को चौंका दिया, जिसके बाद आतिक के चले बमों के बदले माफिया को मिटा देने की गूंज उत्तर प्रदेश ने सुनी।
5: इसी इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे।
2: इसके तीन साल के भीतर सबसे पहले 13 अप्रैल 2023 को 50 दिन तक फरार रहा आतिक अहमद का बेटा असद पुलिस एनकाउंटर में झांसी में मारा गया। फिर दो दिन के भीतर 15 अप्रैल 2023 को खुद आतिक अहमद और उसके भाई अशरफ को तीन हमलावर गोली मारकर ढेर कर देते हैं। और अब 6 अगस्त 2026 को आतिक अहमद का पांचवें नंबर वाला सबसे छोटा बेटा अबान अहमद झांसी जाता है, तभी कार पलट जाती है। हादसे में आतिक अहमद के बेटे अबान समेत दो लोगों की मौत हो जाती है। तीन साल में बिखर गया आतिक अहमद का कुनबा। असद से आतिक और अशरफ से अबान तक खत्म। आतिक का परिवार कोई ढेर, कोई जेल, कोई फरार।
6: इस समय हम उसी स्थान पर हैं जहां पर माफिया आतिक अहमद के बेटे अवान का एक्सीडेंट हुआ। आप देख सकते हैं ये वही क्रेटा कार है जो यहां पर डिवाइडर से टकरा कर क्षतिग्रस्त हो गई। आप देख सकते हैं गाड़ी की कंडीशन क्या है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो आगे का हिस्सा है वो अंदर चिपक चुका है। आप देखिएगा साफ तौर पर, हम आपको सीट के वो आगे का जो नजारा है वो दिखा सकते हैं कि किस प्रकार का ऐसा है, और आगे पे पीछे जो सीट है वहां पर भी किस प्रकार खून भी पड़ा हुआ है, जो सीट है वो बाहर निकली हुई है, सब मेरे ख्याल से जो सामान है वो भी पड़ा हुआ था। और यहाँ पर जो है सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस भी मौके पर मौजूद है।
7: 10:30 बजे के आसपास हमारे झांसी जिले के थाना पूंछ क्षेत्र अंतर्गत एक क्रेटा गाड़ी जो है जिसमें 5 लोग सवार थे वो आ रही थी प्रयागराज से, और तेजी भी बहुत तेज थी और अनियंत्रित किसी कारणवश अनियंत्रित होकर गाड़ी जो है यहाँ के जो डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी है। और जिसमें दो लोग, एक आवान जो पुत्र अतीक अहमद एवं सोनू पुत्र रजाक, ये दोनों की स्पॉट पे मृत्यु हुई है, और बाकी तीन लोग, एक मोहम्मद जायद उमर और एक और व्यक्ति, तीनों का इंजूर हुए हैं।
2: अतीक अहमद का ये वही पांचवें नंबर का बेटा है जिसकी पिछले साल एक रील वायरल होती है जिसमें वो दिल और असलहा दोनों रखने वाला डायलॉग लगाता है।
8: सामने वाले को हमसे क्या मिलेगा ये उसकी औकात बताएगी, हम दिल भी रखते हैं और असलहा भी।
9: हम कुत्तों की तरह पीछे से वार नहीं करते, सामने से दहाड़ते हैं।
8: तूफान और हम जब भी आते हैं,
9: मां कसम फाड़ के जाते हैं।
2: जैसे ही अब 6 अगस्त को अबान की गाड़ी पलटी और मौत की खबर झांसी से आई, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आया कि अबान की मौत का सच क्या है, कहीं माफिया अतीक के साथ कोई पुरानी दुश्मनी में बेटे अबान की मौत में साजिश तो नहीं, जब अतीक का राज खत्म हो चुका है, या फिर कोई और वजह।
7: कदम दुशा ये लोग उनसे पूछताछ करना, और बाकी यहाँ के जो सामने चश्मदीद गवाह वगैरह से जब पूछताछ हुई है कि गाड़ी बहुत ही तेजी से आ रही थी, क्रेटा गाड़ी थी, और किसी कारणवश अनियंत्रित हो गई और सीधा आके जो पीछे वाला बड़ा डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी। ये एक जेल में एक बंदी है, उनको मिलने के लिए आ रहे थे ई मुलाकात के थ्रू, और सुबह निकले होंगे प्रयागराज।
2: अतीक का बेटा अबान गाड़ी के आगे बैठा था, गाड़ी की हालत आगे से बताती है कि आगे बैठने वाले का क्या हुआ होगा, हादसा कैसे हुआ। गाड़ी में 5 लोग थे, आगे बैठे अतीक के बेटे आवान, आवान के साथ ही सोनू की मौत होती, 3 लोग पीछे थे, उमर अहमद, मोहम्मद जैद और एहजाम जो जख्मी हुए। आज तक गाड़ी में पीछे बैठे उमर तक पहुंचा ताकि पता चले हुआ क्या है।
10: जा रहे थे झांसी,
11: झांसी किस लिए जा रहे थे?
10: भाई से मुलाकात।
11: कौन भाई?
10: अली भाई।
11: कौन कौन था उसमें?
10: अवान भाई थे, हम थे, फारूक भाई थे, और सोनू भाई थे, और जैद भाई थे। तो डिसबैलेंस होने से गाड़ी टकरा गई डिवाइडर में।
11: उसमें अतीक अहमद का लड़का था?
10: हाँ, छोटे वाले।
11: क्या नाम था उनका?
10: अवान। जा रहे थे मिलने भाई से।
11: जेल में?
10: जी।
2: इसके बाद प्रत्यक्षदर्शी भी बताते हैं कि अबान की गाड़ी की रफ्तार तेज थी।
12: कितनी स्पीड रही होगी सर उतने टाइम जब गाड़ी का हादसा हुआ है?
13: 100+ थी।
12: 100+ थी।
2: इस तरह अबान का साथी, घटना के चश्मदीद और पुलिस की शुरुआती जांच कहती है अतीक अहमद के पांचवें बेटे अबान की मौत में किसी तरह की साजिश नहीं है, ये सड़क हादसा है। लेकिन अब सवाल, जो माँ शाइस्ता परवीन अपने बेटे असद की कब्र पर 2023 में नहीं पहुंची, जो शाइस्ता परवीन अतीक और अशरफ की मौत के बाद 2023 में सामने नहीं है, क्या वो 3 साल से फरार शाइस्ता अब अपने सबसे छोटे बेटे को जब प्रयागराज के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा तब आखिरी बार देखने पहुंचेगी, या फिर कानून की गिरफ्त से बचने के लिए 3 साल से फरार शाइस्ता अब भी फरार ही रहेगी।
0: तो वहीं आगे बढ़ते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने तहलका मैगजीन के पूर्व एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल को रेप केस में दोषी करार दिया है और उन्हें 10 साल जेल और 5,00,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। दरअसल कोर्ट ने तरुण तेजपाल को 2 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने के लिए भी कहा है।
14: तरुण तेजपाल जब अदालत के अहाते से निकल रहे थे तो उनके कदम तो बढ़ रहे थे मगर दिल बैठा जा रहा था, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने तरुण तेजपाल को साथी महिला पत्रकार के साथ रेप का दोषी मानते हुए 10 साल की कैद और 5,00,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। 2 हफ्ते के भीतर तरुण तेजपाल को सरेंडर करना होगा।
15: So he's been convicted for all the offences that he was charged for and he has been sentenced to 10 years rigorous imprisonment and a fine of 5,00,000. That is the maximum that because it has to be done concurrently. He has been given 2 weeks time to surrender.
14: मामला 2013 का है जब तहलका मैगजीन की एक महिला पत्रकार ने आरोप लगाया था कि गोवा में आयोजित थिंक फेस्ट के दौरान 7 और 8 नवंबर की रात होटल के लिफ्ट में तरुण तेजपाल ने दो बार उनका यौन उत्पीड़न किया। इस पूरे मामले में मई 2021 में गोवा की ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में तेजपाल को बरी कर दिया था। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा था और आज हाईकोर्ट ने तेजपाल को 10 साल की सजा सुनाई है।
13: हम लोग अभी इसको अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। हम लोग बिल्कुल नाखुश हैं इस जजमेंट से। हमें लगता है कि बेंच ने हमारा जो मटीरियल था, एविडेंस था, उसको अपील नहीं किया है, तो हम लोग उसको अपील कर देंगे और आपको बता के रहेंगे कि क्या हो रहा है।
14: सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा तेजपाल के पास अब विकल्प ही क्या है। मगर इतना जरूर है कि तरुण तेजपाल आरोप लगा रहे हैं कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है।
13: मैंने जज को बोला, आप लोग जो कोर्ट में थे आपने सुना होगा, मैंने बोला मैं एक पॉलिटिकल विक्टिम हूं, मेरे को कहल का पत्रकारिता है, उसके चलते हुए मेरे को पीछे 13 साल से सरकार पड़ी है और मैं अकेला नहीं हूँ इसमें। बहुत सारे लोग हैं जो सरकार की नीतियों से या मानते नहीं या वाकिफ नहीं है ज्यादा, उन लोगों की भी सरकार पड़ जाती है। इस टाइप की सरकार है, हमारी सरकार है, आपकी भी, मेरी भी।
14: तरुण तेजपाल पर आए इस फैसले से गोवा की सरकार खुश है।
16: तरुण तेजपाल की जो केस के आज गोवा ब्रांच बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो आज निकाल दिया है, तरुण तेजपाल जी को कन्विक्शन हुआ है, इसके लिए मैं सबसे पहले ये न्याय देवता की जीत है।
14: निचली अदालत से राहत पाने के बाद तरुण तेजपाल को भरोसा था कि हाईकोर्ट से भी उन्हें राहत मिलेगी, मगर उन्हें करारा झटका लगा है। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात तो सिस्टम की, जिसमें एक आदमी अधिकारियों से गुहार लगा रहा है कि वो जिंदा है। दरअसल अधिकारियों की लापरवाही से एक जिंदा आदमी का मृतक प्रमाण पत्र बना दिया गया और अब वो इस बात की जंग लड़ रहा है कि कागज पर दोबारा उसे जीवित दिखाया जाए।
14: कैमरे के सामने कागज लिए ये जो आदमी खड़ा है ना, ये मर चुका है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में कलेक्ट्रेट ऑफिस में टहल रहा ये आदमी जिंदा नहीं है। अरे यकीन कीजिए, ये सच में मर चुका है। शिवपुरी के साहबों ने इसे कब का दिवंगत कर दिया है। ये साहबों से कहता है कि ये जिंदा है, मगर साहब कहते हैं कि जिंदा हो तो कागज दिखाओ, क्योंकि कागज पर तो लिखा है कि ये मर गया है और सरकारी काम मौखिक नहीं कागजी होते हैं, इसलिए ये आदमी साबित करने में लगा हुआ है कि ये जिंदा है। दरअसल हुआ यूं कि शिवपुरी में ससई निवासी गिटला आदिवासी के पिता का निधन 2022 में हो गया था। अपने पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने ये नगर परिषद पहुंचे, मगर प्रमाण पत्र बनाने वाले अधिकारियों ने लापरवाही से इनके पिता की जगह इनका नाम लिख दिया।
17: पिताजी का नाम क्या है?
18: जगनी आदिवासी।
17: तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनना था?
18: हाँ, उनका बनना था। और बना दिया?
17: आपका बना दिया। क्या नाम है आपका?
18: गिटला आदिवासी।
14: अब इसका नुकसान ये हुआ कि सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना इन्हें बंद हो गया, लेकिन अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी।
19: और मेरे की जानकारी में भी नहीं है पूर्ण प्रकरण, आपके द्वारा मालूम पड़ा है और आपने अभी बताया है कि जनसुनवाई में शायद उन लोगों ने आवेदन भी दिया है, तो मेरे पास यदि आता है आवेदन तो मैं उसकी पूरी जाँच कराऊंगा।
14: बाबू साहब के एक दस्तखत ने एक जिंदा आदमी को रिकॉर्ड में मार डाला। सिस्टम कितना सड़ चुका है उसको बताने के लिए ये तस्वीर काफी है, जिसमें एक जिंदा आदमी कह रहा है कि हाँ मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ, विश्वास करो मेरा। मनोज भार्गव, शिवपुरी, आज तक।
0: बात कर लेते हैं पीओजेके की। दरअसल यहाँ पर पाकिस्तान बुरी तरह से फंसा नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना के जुल्म के खिलाफ आवाम ने विद्रोह कर दिया है, तो वहीं अब पाकिस्तान इसे ऑपरेशन सिंदूर 2.0 बता रहा है।
14: पीओजेके में पाकिस्तान की सेना के अत्याचारों के खिलाफ जनता बार बार की लड़ाई लड़ने को तैयार है, लेकिन पाकिस्तान को इसमें ऑपरेशन 2.0 की साजिश नजर आ रही है।
20: उनका एक ही मुतालबा था कि इलेक्शन नहीं होने देना। क्यों नहीं होने देना, वजह बताएं? क्योंकि पीछे से किसी का जो है वो एजेंडा है कि आजाद कश्मीर में इलेक्शन ना हो। आजाद कश्मीर में ये संदूर 2 वालों का एजेंडा है कि आजाद कश्मीर में इलेक्शन ना हो। ये जो इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन के बगैर मैं समझता हूं कि दुश्मन का, मोदी का संदूर 2 का एजेंडा कामयाब होता अगर ये इलेक्शन ना होता।
14: जिस चुनाव की बात पाकिस्तान के हुक्मरान कर रहे हैं, वो चुनाव पीओके की आवाम पर थोप आ गया। अल जजीरा ने जब पाकिस्तान की पोल खोलने की कोशिश की तो पाकिस्तान ने पीओके में चुनाव की रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी।
21: मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट कास्टिंग देयर वोट बिकॉज दे वांट टू शो देयर सॉलिडैरिटी with the people of Ravlakot who have been under siege and many of course have been killed. Internet services throughout the valley are also disrupted. People are not able to use their internet. They're not able to reach out to their loved ones. And the area, of course, is at a standstill, as you can see.
14: पाकिस्तान के पाखंड का पर्दाफाश उसकी ही पसंदीदा मीडिया के एक रिपोर्ट ने कर दिया। ठीक यही बात भारत भी कह रहा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जनप्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है।
14: बहरहाल पीओके में पाकिस्तान की हालत खराब है, जहां आवाम की बगावत को वो गोलियों से शांत करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: बात कर लेते हैं मौसम की, जिसने पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा रखा है, क्योंकि पहाड़ों में लैंडस्लाइड ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में जलजमाव ने जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है।
3: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में दरकते पहाड़ बता रहे हैं कि यहाँ मौसम कितनी गहरी चोट दे रहा है। विजयनगर तैला मार्ग पर भारी बारिश के बाद एक बड़ा भूस्खलन हुआ, जिससे सड़क पर भारी मात्रा में मलबा आ गया, जिसके बाद यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। टिहरी के भी कई इलाकों में मौसम की मार की तस्वीरें आ रही हैं, जहां लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते बाधित हुए हैं, वहीं कई छोटे पुल टूट जाने से आवाजाही का संकट पैदा हो गया है। उधर बद्रीनाथ धाम में भी मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है, यहां लगातार बारिश के बीच श्रद्धालुओं का आना जारी है।
14: बद्रीनाथ धाम में भी लगातार बारिश का दौर जारी है, बारिश के बीच श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को जा रहे हैं। हालांकि बारिश होने से कहीं ना कहीं ठंड जो है पहाड़ों में थोड़ी सी बढ़ चुकी है, वहीं गर्म कपड़े बरसाती इन सब के सहारे श्रद्धालु जो है इस समय भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को जा रहे हैं।
3: कश्मीर में शोपियां के बाद अब बडगाम में भी अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचाई है। बादल फटने से आई बाढ़ का पानी निचले इलाकों के कई गांवों में घुस गया, जिसमें दायार इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। पहाड़ों के अलावा मैदानी इलाकों में भी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में कई जगहों पर जल जमाव हो जाने से सीधा असर ट्रैफिक पर पड़ा है। बारिश ने एक बार फिर साइबर सिटी गुरुग्राम की पोल भी खोल दी है।
22: ये अंडरपास गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल से NH-48 को जोड़ता है और आप साफ तौर से देख सकते हैं कि रात 2:30 बजे से जारी मूसलाधार बारिश के बाद किस कदर ये हालात इस अंडरपास में दर्ज किए जा रहे हैं। लगातार पानी बढ़ता जा रहा है और ये पानी इस वक्त यहाँ पे 4 से 5 फीट के करीब है।
3: पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश की मार की तस्वीरें दिखाई दे रही है, जिसने आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
0: इन तमाम खबरों के बाद यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
23: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: क्या चंदन के प्रयोग से डिप्रेशन को दूर किया जा सकता है? क्या चंदन का प्रयोग करके मन को बहुत अच्छा बनाया जा सकता है? चंदन के प्रयोग से राहु केतु कैसे शांत हो सकते हैं? क्या है चंदन के चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: सो सॉरी।

रांची में छात्र आंदोलन का 14वां दिन, आज सोरेन सरकार से 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की वार्ता संभव, बातचीत की जगह पक्की तारीख पर सस्पेंस, राहुल ने वीडियो जारी कर सरकार से की कार्रवाई की मांग।

की ब्रेकफास्ट पर होगी मुलाकात। टीएमसी के 20 बागी और शिवसेना उद्धव गुट के बागी 6 सांसद रहेंगे मौजूद। युवाओं से बातचीत में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा जेन जी आंदोलन देश के खिलाफ नहीं, संवाद को लेकर कहीं ना कहीं हुई चूक, शिक्षा में सुधार को बताया जरूरी। यूपी में कावड़ियों पर मौलाना का विवादित बयान, लखनऊ के थाने में बीजेपी एमएलए ने की शिकायत, कावड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी बोले उपद्रवियों पर जीरो टॉलरेंस से हो एक्शन।

देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे आज चंदन की। चंदन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, चंदन के प्रयोग क्या हैं और चंदन से विशेष लाभ कैसे होगा, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें।

चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 7 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है श्रावण कृष्ण।

कृतिका नक्षत्र शाम के 6:43 तक चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज चंदन की बात कर रहे हैं और चंदन का प्रयोग पूजा उपासना से लेकर के सौंदर्य प्रसाधन में और मूर्तियों तक में किया जाता है। चंदन है क्या और ये इतना मूल्यवान क्यों है? देखिए, चंदन एक खास तरह की सुगंधित लकड़ी है। ये सेंटलिस कुल का पौधा है और इसकी सुगंध बेमिसाल होती है। चंदन की सुगंध की बराबरी कोई नहीं कर सकता। जैसे जैसे ये पौधा बढ़ता है वैसे वैसे इसके तने में और जड़ों में सुगंधित तेल का अंश बढ़ने लगता है। चंदन की लकड़ी का उपयोग मूर्ति कला, साज सज्जा के सामान और सुगंधित पदार्थ आदि बनाने में होता है। मुख्यतः चंदन दो प्रकार का होता है, लाल और सफेद, और दोनों चंदनों का अलग अलग बहुतायत में प्रयोग होता है। सफेद चंदन का प्रभाव आपके ऊपर अलग पड़ता है और लाल चंदन का प्रभाव आपके ऊपर अलग पड़ता है। दोनों ही चंदन आपके मन को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। चंदन पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। और सावन का पावन महीना चल रहा है, इस महीने में सफलता और समृद्धि का एक अचूक उपाय बताएंगे सावन सूत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, करियर की समस्या हल होगी, काम की अधिकता रहेगी। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।
मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के खर्चों पर ध्यान दें, वाहन सावधानी से चलाएं, दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब ये जानते हैं कि चंदन का धार्मिक महत्व क्या है। देखिए, हिंदू धर्म में चंदन को और चंदन के लेप को अत्यंत पवित्र माना जाता है। पूजा के हर कार्य में चंदन की लकड़ी, चंदन का लेप और चंदन के इत्र का प्रयोग किया जाता है। शिवलिंग का अभिषेक भी चंदन से करने की परंपरा पाई जाती है। शिवलिंग पर चंदन भी लगाया जाता है और चंदन का इत्र भी लगाया जाता है। श्री हरि भगवान विष्णु और उनके अवतारों के लिए सफेद चंदन का लेप लगाना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि अगर बात भगवती की होती है, बात माता दुर्गा की होती है, तो देवी की उपासना में लाल चंदन ज्यादा प्रयोग होता है। बौद्ध धर्म में चंदन के प्रयोग से ध्यान करने की परंपरा बताई गई है और ज्योतिष में ग्रहों की समस्या के समाधान के लिए भी चंदन का प्रयोग किया जाता है। चंद्रमा जो है वो चंदन के वृक्ष का स्वामी है। जिन वृक्षों के अंदर सुगंध हो उनका स्वामी है चंद्रमा। जैसे धूप के पेड़ होते हैं, चंदन की लकड़ी या वृक्ष में सुगंध होती है, इसका स्वामी होता है चंद्रमा। इसीलिए चंद्रमा संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए चंदन का तिलक लगाने की सलाह दी जाती है और कहा जाता है कि स्नान करने के जल में अगर चंदन डालकर स्नान किया जाए तो चंद्रमा की बाधाएं दूर हो जाती हैं। चंदन पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक तनाव कम होगा, करियर की बाधा दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

समस्या हल होगी। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कन्या राशि, आर्थिक समस्याएं हल होंगी, करियर में सुधार होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न भारत भूषण जी ने हमें लिखा है और भारत भूषण जी हमें मेल लिखते हैं मुंबई से। इनकी पुत्री की जन्म की तारीख है 14 मई 1999। जन्म का समय शाम के 7:35। जन्म स्थान है मुंबई। ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी विदेश में रह करके अभी पढ़ाई कर रही है तो क्या मेरी बेटी का सेटलमेंट विदेश में होगा या वो वापस भारत आएगी। भारत भूषण जी, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से वो पढ़ाई समाप्त करके हो सकता है कुछ समय तक विदेश में नौकरी करें, लेकिन अल्टीमेटली उनको वापस आना है, उनके विदेश में सेटलमेंट की संभावना नहीं बनती है। हाँ, इतना जरूर है कि जैसे आप मुंबई में रहते हैं और आपकी बेटी 2028 में वापस आती है तो मुंबई में नौकरी ना करके, मुंबई में काम ना करके बेंगलोर में, हैदराबाद में या दिल्ली की तरफ, यानी नेटिव प्लेस, जन्म स्थान से दूर की तरफ कहीं काम करे, ये संभावना बनती है। आपकी बेटी का स्वास्थ्य और जीवन बेहतर रहे इसके लिए अपनी पुत्री के नाम से रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और अपनी पुत्री को कहें कि शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। तो चंदन का धार्मिक प्रयोग तो आपने जाना, महत्व जाना, अब चंदन का आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक महत्व और प्रयोग क्या है। चंदन से आयुर्वेद में तमाम तरह की औषधियां, तमाम तरह की दवाइयां बनाई जाती हैं। चंदन के चूर्ण को कुछ विशेष तरह के पदार्थों में मिलाकर आयु वृद्धि की, उम्र बढ़ाने वाली औषधियां बनाई जाती हैं। हृदय रोग, त्वचा के रोग और मानसिक रोग में चंदन के तेल का और चंदन के इत्र का बहुत प्रयोग किया जाता है। सुगंध चिकित्सा में और पंचकर्म में भी चंदन का प्रयोग किया जाता है। चंदन की सुगंध एक ऐसी सुगंध है जो शरीर और मन के अलावा आपके सोच पर, आपकी आत्मा पर असर डालती है। इसीलिए प्राचीन काल से ध्यान के लिए, मन को शांत और पवित्र रखने के लिए चंदन का तिलक या चंदन का लेप लगाया जाता है। अगर आप नियमित रूप से चंदन के इत्र और सुगंध का प्रयोग करें या चंदन का तिलक अपने मस्तक पर लगाएं, आपके मन की चिंताएं, आपके मन का डिप्रेशन कम होना शुरू हो जाएगा।
चंदन पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल।

काम में लापरवाही ना करें, दूसरों के विवाद में ना पड़ें, दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी।

होगी, धन की प्राप्ति होगी, नई जिम्मेदारी मिल सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। सबसे ज्यादा चंदन का प्रयोग होता है तिलक लगाने में, तो तिलक लगाने में चंदन का कैसे प्रयोग करें? चंदन की लकड़ी को पत्थर पर घिसलें, घिसने पर उसमें से एक पदार्थ निकलेगा जो चंदन की सुगंध से भरा हुआ होगा। इस लेप को, इस पदार्थ को तिलक के रूप में इस्तेमाल करें। पहले अपने ईष्ट देव को अनामिका अंगुली से तिलक लगाएं, उनके माथे पर और उनके चरणों में आप तिलक लगा सकते हैं। फिर स्वयं को अपने मस्तक पर, कंठ पर और नाभि पर तिलक करिएगा। देवी की उपासना में लाल चंदन घिस करके देवी के चरणों में लगाइएगा और फिर अपने मस्तक पर लगाएंगे और भगवान विष्णु या उनके अवतारों की पूजा में सफेद चंदन घिसकर उनके माथे पर लगाएंगे और फिर अपने मस्तक पर लगाएंगे। शास्त्र कहता है कि अगर आप विवाहिता महिला हैं और सफेद चंदन का तिलक लगाना चाहती हैं तो सफेद चंदन के साथ लाल रंग का कुमकुम भी लगाएं। केवल सफेद चंदन विवाहिता महिलाओं को नहीं लगाना चाहिए। अब जानते हैं मानसिक शांति, एकाग्रता और मानसिक रोगों को दूर करने के लिए, मेंटल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए चंदन का प्रयोग कैसे करें। चंदन का असली इत्र ले लीजिए। रोज सवेरे नहाने के बाद दोनों हाथों की कलाइयों पर लगाइए, अपने हृदय के बीचों बीच भी लगाइएगा और रोज पूजा के समय चंदन की सुगंध वाली धूप बत्ती जलाइएगा। जब आप चंदन की सुगंध का बहुत प्रयोग करेंगे तो ये आपके मन को शांत करेगा, मन को एकाग्र करेगा, मन में नकारात्मक विचार आपके पैदा नहीं होंगे। और चंदन की सुगंध उन लोगों को भी नियमित रूप से लगानी चाहिए जिनको कोई मानसिक रोग है या कोई मानसिक बीमारी है, उन्हें चंदन के सुगंध का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अगर राहु या केतु आपको परेशान कर रहे हैं तो चंदन के प्रयोग से कैसे लाभ होगा? चंदन का एक छोटा सा टुकड़ा, बहुत छोटा सा टुकड़ा ले लें, इसको नीले कपड़े में सिल करके रख करके लॉकेट की तरह बना लें और थोड़ा सा कपड़ा काट दीजिएगा ताकि नीले कपड़े से वो चंदन आपके शरीर को स्पर्श करे। शनिवार की शाम को इसको लाल धागे में या नीले धागे में अपने गले में धारण कर लीजिएगा और इसको 6-6 महीने पर बदलते रहिएगा। अगर आप ऐसा करें, आपकी कुंडली में राहु केतु गड़बड़ हो, तो वो बेहतर होने शुरू हो जाएंगे।
कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, रुके हुए काम आपके बन जाएंगे, लेकिन आज वाहन सावधानी से चलाइएगा। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज

चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, रिश्तों में समस्या हो सकती है, दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मीन राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आपके लिए होगा गुलाबी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। चंदन का प्रयोग ध्यान करने में भी किया जाता है। ध्यान करने में, मेडिटेशन करने में चंदन से लाभ होता है। कैसे? देखिए, अगर आप गहरा ध्यान करना चाहते हैं तो आप सफेद चंदन का शुद्ध पाउडर ले लें या सफेद चंदन पहले से घिस लें, ढेर सारा चंदन अपने माथे पर लगाएं, थोड़ा सा अपने हृदय में और थोड़ा सा अपनी नाभि में लगाएं, जरा जरा सा चंदन दोनों पैर के तलवे में और दोनों हाथ की हथेलियों में भी लगाइएगा। इसके बाद आप ध्यान करने बैठिएगा। धीरे धीरे धीरे धीरे अभ्यास करते करते इस चंदन की सुगंध की वजह से, और चंदन चूंकि मन पर प्रभाव डालता है, इसके प्रभाव की वजह से आप गहरा ध्यान कर पाएंगे और ध्यान में आपको सफलता जल्दी मिलेगी। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, करियर में बदलाव होगा। नंबर 2, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 3, चोट से बचाव करें। नंबर 4, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें। नंबर 5, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 6, किसी मांगलिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। नंबर 7, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 8, मानसिक तनाव रह सकता है। और नंबर 9, परिवार में अशांति से बचाव करें। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर के अनुसार ये जानने का कि आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की आरती करिएगा। आपकी धन संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, आइए जानते हैं
सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, दही खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक गुलाब का फूल रख के जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास जाना है इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई वाहन, भवन, भूमि, आभूषण, कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो गुलाबी रुमाल साथ में रखिए, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सा

के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा, कर्क राशि वालों के लिए धन का लाभ होगा, जीवन में उन्नति होगी। आज सावधान रहना होगा, तुला राशि के लोगों को सेहत बिगड़ सकती है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। अब जान लेते हैं आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज नवमी तिथि है, नवमी तिथि रिक्तता है, इसलिए आज कोई भी नया और शुभ काम मत करिएगा। आज शिवलिंग पर गुलाब का फूल अर्पित करिए, आपको रिश्तों की समस्या में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। सावन का पावन महीना चल रहा है, तो चलिए आपको बताते हैं सावन महीने में भाग्य चमकाने के अचूक उपाय सावन सूत्र में। जब भी बरसात हो, बरसात के जल को एक बोतल में इकट्ठा कर लें और इस बोतल को ढक्कन लगाकर अपने शयन कक्ष में, बेडरूम में रखें। ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन उत्तम बना रहेगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

रांची में 14वें दिन भी छात्रों का प्रदर्शन जारी, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं युवा। आंदोलन को देश भर से मिला समर्थन, स्विगी जोमैटो से भी पहुंच रहा है खाना, लगाया गया मेडिकल कैंप। रांची में सोरेन सरकार से बातचीत करेगा 11 लोगों का प्रतिनिधि मंडल, इस दल में 8 छात्र, 2 पत्रकार और 1 वकील शामिल, जो मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन जेपीएससी जेएसएससी मुद्दे पर भारी हंगामा, विपक्ष ने सीएम हेमंत सोरेन के इस्तीफे और सीबीआई जांच की मांग की। झारखंड में पेपर लीक के मुद्दे पर सियासत तेज, कांग्रेस मंत्री बोले कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ, बीजेपी विधायकों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। रांची में चल रहे छात्र आंदोलन में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारी छात्रों से फोन पर बातचीत की, करीब 3 मिनट तक उन्होंने छात्रों की बातें सुनी और भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों को जल्द उठाया जाएगा। पीएम मोदी आज नए एनडीए लोकसभा सांसदों से करेंगे ब्रेकफास्ट मीटिंग, प्रधानमंत्री आवास पर सुबह 9 बजे करीब 45 मिनट में पहली बार और नवनिर्वाचित सांसदों की से मुलाकात होगी। टीएमसी, एनसीपीआई और यूबीटी से एनडीए में आए सांसद भी होंगे शामिल, हाल ही में एनडीए में शामिल हुए सांसद भी बैठक का हिस्सा बनेंगे। सूत्रों के मुताबिक पीएम नए सांसदों को संसदीय कामकाज और जनसंपर्क को लेकर मार्गदर्शन देंगे। पीएम मोदी ने शेयर किया हैंडलूम डे पर एक वीडियो, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील, बीती रात इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर लोगों से हैंडलूम अपनाने की अपील की। नीट यूजी पेपर लीक केस में आज कोर्ट सुनाएगा आदेश, सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आएगा। मेटा की टेक्निकल टीम आज मेटवाई अधिकारियों से करेगी बैठक, भारतीय कानूनों के अनुपालन और तकनीकी मुद्दों पर होगी विस्तृत चर्चा। सरकार का मेटा को संदेश, भारत में भारतीय कानूनों का ही होगा पालन, एआई डीपफेक और इस पर सरकार ने सख्ती की है, अब महज 3 घंटे में हटाना होगा गैर कानूनी कंटेंट। मेटा एक्स और टेलीग्राम के साथ सरकार की नियमित बातचीत जारी, सरकार ने कहा लक्ष्य नया रेगुलेटर बनाना नहीं, मौजूदा कानूनों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना। संसद में गतिरोध खत्म करने को लेकर रिजिजू और राहुल ने फोन पर बातचीत की, सूत्रों के मुताबिक परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा, सहयोगी दलों से बातचीत के बाद रूपरेखा तैयार करेगी कांग्रेस। संसद की कार्यवाही में बाधा डालने पर किरण रिजिजू ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष के वॉकआउट के बावजूद सदन में चर्चा के बाद पास हो रहे बिल। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को मिली मंजूरी, 8 अगस्त को प्रयागराज में तय शर्तों के साथ आयोजन की अनुमति दी गई। छात्रों पर एफआईआर को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, एक्स पर किया पोस्ट, लिखा मोदी सरकार की नीति ही युवाओं की आवाज दबा। राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, कहा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फीस विवाद को लेकर प्रयागराज में मेरे कार्यक्रम को रोकने की कोशिश, मैं छात्रों के साथ खड़ा। जेंजी के साथ राहुल गांधी का इंस्टाग्राम पर आस्क मी एनीथिंग सेशन, इंस्टा स्टोरी पर यूजर ने पूछा बीजेपी में पसंदीदा नेता कौन, राहुल ने अमरिंदर सिंह का नाम दिया। राहुल गांधी ने नागालैंड, अरुणाचल, बाढ़ और भूस्खलन में मौत पर जताया दुख, पीड़ित परिवारों के प्रति व्यक्ति की संवेदना। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत यूपी के 75 जिलों में होगा तिरंगा संगीत समारोह, शहीद परिवारों का होगा सम्मान। विधानसभा चुनाव से पहले जेंजी पर योगी सरकार का फोकस, नई युवा नीति बनाने पर सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक, कहा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य। कांवड़ यात्रा पर मौलाना साजिदुर रशीदी के बयान से विवाद, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन अध्यक्ष ने कुछ कांवड़ियों को आतंकवादी बताया। मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ पुलिस में शिकायत, बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने भड़काऊ बयान का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। यूपी में हो रही बारिश से होने वाली जनहानि, पशु हानि और साथ ही आर्थिक हानि का सीएम योगी ने लिया संज्ञान, नुकसान का आकलन कर 24 घंटे में मुआवजा देने का निर्देश। मुंबई में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जेंजी संघ संवाद, कहा जेंजी का आंदोलन देश के खिलाफ नहीं, ये भी संवाद का एक तरीका। युवाओं से बातचीत में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा उनकी शिकायत जायज, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत, 6% होना चाहिए शिक्षा बजट। एफसीआरएस संशोधन विधेयक पर 12 अगस्त को संसद में हो सकती है चर्चा, अमित शाह से मुलाकात के बाद मिजोरम में सीएम ने दी जानकारी, बिल के विरोध में विपक्ष। 12 अगस्त को सदन में आएगा एफसीआरए बिल, मिजोरम के मुख्यमंत्री ने बिल को लेकर स्थिति स्पष्ट की और कहा कि रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा बिल। एफसीआरए बिल पर कांग्रेस का हमला, अभिषेक मनु सिंघवी बोले ट्रैक्यूनियन बिल विपक्ष ने प्रस्तावित कानून को लेकर सरकार पर तीखा निशान साधा। तो वही सितंबर से अभिजीत दीपिका का नया प्लान देश भर में शुरू करेंगे, क्या बोलती पब्लिक अभियान, लोगों की उम्मीदों और चिंताओं को समझना बताया मकसद। अभिजीत दीपिका ने कहा बेरोजगारी और महंगी शिक्षा के मुद्दे पर गांव शहरों में युवाओं से करेंगे बात। शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला, कहा ममता बनर्जी बंगाल को खत्म करने पर तुली हुई है।
ममता का समर्थन मतलब मोहम्मद अली का सपना पूरा करना। शुभेंदु अधिकारी के बयान से पश्चिम बंगाल की सियासत गर्मा गई। ममता पर शुभेंदु के तीखे आरोप बयान से बढ़ा सियासी विवाद। विपक्ष और टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज। दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू। 2 सीएजी रिपोर्ट होंगी पेश। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सदन में दिल्ली सरकार के वित्त से जुड़े रिपोर्ट रखेंगे। दिल्ली विधानसभा में 3 अहम बिल पेश करेगी सरकार। टाइम बाउंड सर्विस ड्यू एसआईबी संशोधन और बेड एंड ब्रेकफास्ट से जुड़े विधेयक शामिल। 4 दिन के सत्र में डीआरसी नियमों और नोटिफिकेशन पर भी चर्चा। ऊर्जा मंत्री आशीष सूदर सदन में बिजली नियामक से जुड़े दस्तावेज पेश करेंगे। मॉनसून सत्र का एजेंडा तय। 7, 10 और 11 अगस्त को चलेगी कार्यवाही। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने विधायी कार्यक्रम को मंजूरी। दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट को लेकर सियासी नजरें टिकी। विपक्ष और सरकार के बीच कई मुद्दों पर बहस के आसार। 15 अगस्त सुरक्षा को लेकर दिल्ली में एनएसजी का बड़ा मॉक ड्रिल। आज शाम 6 बजे के बाद कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा अभ्यास होगा। जेएनयू स्टेडियम और दिल्ली सचिवालय समेत कई जगहों पर एनएसजी ड्रिल। एनएसजी दिल्ली पुलिस और साथ ही अन्य सुरक्षा एजेंसियां तैयारियों का लेंगी जायजा। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में मल्टीलेयर सिक्योरिटी प्लान लागू। लाल किले के कार्यक्रम में करीब 24,000 मेहमानों की सुरक्षा के लिए 12,000 पुलिसकर्मी तैनात। आतंकी खतरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। मॉक ड्रिल में कई परिदृश्य होंगे टेस्ट। होस्टेज रेस्क्यू, बम थ्रेट और इवैक्यूएशन जैसे हालात पर तैयारियां पर की जाएंगी। दिल्ली में बड़ी सुरक्षा। मेट्रो स्टेशन और भीड़भाड़ वाले इलाकों पर खास निगरानी। अधिकारियों ने लोगों से की अपील। ड्रिल के दौरान सुरक्षा गतिविधियों से घबराने की कोई जरूरत नहीं। टिहरी गढ़वाल में लैंडस्लाइड। मलबा हटाने का काम अभी भी जारी। भारी बारिश के बाद सड़क पर जमा मलबा जेसीबी से हटाया जा रहा। टिहरी के पुंडोली गांव में पुल बहा। एसडीआरएफ ने महिला को किया रेस्क्यू। तेज बारिश से लकड़ी का पुल बह गया। रस्सी के सहारे महिला को सुरक्षित निकाला गया। तो वहीं चमोली में लैंडस्लाइड। नारायण बगड़ कर्ण प्रयाग मार्ग प्रभावित हुआ। पहाड़ से पानी के साथ चट्टानों का सैलाब आने की वजह से सड़क पर मलबा जमा। बागेश्वर में बारिश का कहर। 15 सड़कें बंद। बोल्डर गिरने की वजह से कई मार्ग बाधित। एक घर भी हुआ ध्वस्त। पौड़ी गढ़वाल में अलकनंदा उफान पर हाई अलर्ट जारी। भारी बारिश के चलते नदी का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने सतर्कता बढ़ाई। उत्तरकाशी में बारिश का कहर। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बंद। भूस्खलन के चलते हाईवे बार बार हो रहा है बाधित। आवाजाही प्रभावित। देहरादून में सड़क पर आया सैलाब। मलबे में फंसा ट्रक। भारी बारिश के बाद सड़क पर पानी और मलबा आया। ट्रक चपेट में आया। हिमाचल प्रदेश में 11 अगस्त तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। शिमला सोलन समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश। सड़कों पर भरा पानी। जम्मू कश्मीर की शोपिया में तुलिहलन में फटा बादल। रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। कई घर जलमग्न। निचले इलाकों में बारिश जैसे हालात। नेपाल में बारिश से गंडक नदी उफान पर पहुंची। वाल्मीकि नगर बैराज से 2.20 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बघा के एक गांव में घुसा बाढ़ का पानी। दिल्ली के सदर बाजार में भारी बारिश के कारण जलभराव जैसी स्थिति। कई सड़कें पानी में डूबी। वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। भारी बारिश से गुरुग्राम के न्यू रेलवे रोड पर वाटर लॉगिंग। सड़कों पर भरा पानी। वाहन चालकों और राहगीरों को भारी परेशानी। गुरुग्राम में भारी बारिश के कारण पटेल नगर इलाके में जलभराव। ट्रैफिक की वजह से वाहनों की रफ्तार रही धीमी। संगम नगरी प्रयागराज में बारिश बनी आफत। सिविल लाइन्स जॉर्ज टाउन समेत कई इलाके जलमग्न। मूसलाधार बारिश से फिरोजाबाद में जलजमाव। शिकोहाबाद थाना परिसर में भरा पानी। जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित। दिल्ली के वजीराबाद में खुले नाले में गिरे 3 बच्चे। स्कूली बच्चों की जान खतरे में पड़ी। लोगों की सूझबूझ से सुरक्षित बचाया गया। मुंबई में पार्किंग से गिरी कार। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। कार गिरने के बाद मचा हड़कंप। मौके पर मौजूद लोग बाल बाल बचे। हरियाणा में चरकी दादरी में थाने के बाहर गैंगवार की घटना आई सामने। अदालत से पेशी के बाद लौटे युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग। हमले में 7 लोग घायल। चरकी दादरी गोलीबारी का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। 3 बदमाश पैदल आए और गाड़ी रुकवाकर कार सवारों पर 10 से 15 राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग की। गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग ने ली जिम्मेदारी। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर में घर के बाहर बदमाश ने की फायरिंग। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। 2 युवकों की गई जान। अमरनाथ यात्रा से लौट रहे 4 श्रद्धालु सड़क हादसे में घायल। अनंतनाग के अस्पताल में चल रहा इलाज। तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के पोलाची में युवक की हत्या के बाद शव के साथ सेल्फी लेकर फरार हुए आरोपी। पुलिस की दबिश जारी। ओडिशा के केंद्रापड़ा जिले में कॉलेज छात्र को बेरहमी से पीटा गया। इंस्टाग्राम पर मैसेज करने को लेकर लड़की के पुरुष मित्र के बीच सड़क पर पिटाई। पालघर में आवारा कुत्तों का आतंक। कई लोगों पर हमला। 4 दिनों में 5 से 7 लोगों को बनाया गया शिकार। इलाके में दहशत का माहौल। यूपी के बाराबंकी में दीवार ढहने की वजह से हादसा। 5 बच्चे मलबे में दबे। 2 की मौत।
बिहार के मुजफ्फरपुर में ट्रेन यात्रियों से लूटपाट करने वाले लश्कर गैंग का रोहिंग्या कनेक्शन, जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। झारखंड के सरायकेला में 3 कुख्यात नक्सली गिरफ्तार, AK-47 समेत भारी हथियारों का जखीरा बरामद। MP के ग्वालियर में एक बाइक पर 6 सवार, सड़क पर खतरनाक स्टंटबाजी की गई, पुलिस ने काटा चालान। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के नागजीरा टाइगर रिजर्व में भालू के हमले में वन रक्षक की मौत, जंगल में गश्त के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा।

आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: मुल्तानी घो का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घो का कॉफ सिरप।
2: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबा केसरी, हिंट बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
3: एक जर्नलिस्ट के लिए इससे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नहीं हो सकता है कि अगर आप टाइम में पीछे जाके कोई चीज कवर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं, क्योंकि मैंने स्टार्ट एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर किया था, 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप लॉर्ड्स, वो फाइनल अगर मैं कवर कर पाती। लेकिन हमारा ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसने वो सब कुछ देखा है जो एक देश को गढ़ते हुए, अगर आपकी इच्छा है देखने की, तो वो सारा कुछ इंडिया टुडे का सफर है। और यही एक डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में जब पीवीआर आईनॉक्स में आप देखेंगे, तो वाकई इसे मिस नहीं करना चाहिए, इसे जरूर देखिए। पीवीआर आईनॉक्स 7th अगस्त ऑनवर्ड्स।

0: टैक्स पेयर्स के 4200 करोड़ रुपए से बने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 13 जुलाई को हुआ। दावा यही है कि कानपुर और लखनऊ के बीच एक्सप्रेस की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ेंगी। वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे का तोहफा जनता को मिला है, लेकिन चंद दिनों में धूल फांकते वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे की सच्चाई सामने आ गई। आज नए नवेले एक्सप्रेसवे पर गड्ढे हैं या फिर गड्ढे में एक्सप्रेसवे है, फर्क करना मुश्किल नहीं। सोचिए, नए एक्सप्रेसवे को चंद दिनों में मरम्मत की जरूरत पड़ गई तो आने वाले दिनों में क्या होगा। अब सवाल 4200 करोड़ की लागत से बने एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता का है, क्योंकि पहली बरसात में एक्सप्रेसवे की पोल खुल गई। हालात ये है कि 5 जगहों पर एक्सप्रेसवे धस गया है। एक जगह मरम्मत का काम पूरा होता है तो दूसरा गड्ढा नजर आ जाता है, मतलब एक्सप्रेसवे बना है या गड्ढा वे। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का स्याह सच यही है, लेकिन इसी सच्चाई की कीमत आम जनता को चुकानी पड़ रही है। वादा 120 की रफ्तार का था, लेकिन आज आम जनता सरकारी सिस्टम और ठेकेदारों के खेल की वजह से बीच में पिसने को मजबूर है। ये अंधेर गर्दी के गड्ढे नहीं तो क्या है, क्योंकि वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे की खलाई खुलने के बावजूद NHAI के अफसर यही दावा कर रहे हैं कि कसूर तो बारिश का है, एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनी और NHAI का नहीं। इनका नाम है गौतम विशाल, NHAI के रीजनल अफसर हैं। सवाल जवाबदेही तय करने का है, लेकिन जिम्मेदारों ने बिना जांच पूरी हुए फैसला सुना दिया, मतलब जो अब तक होता आया है वही इस मामले में होगा। जांच और एक्शन की दुहाई देकर एक्सप्रेसवे के गड्ढों को NHAI के अफसर गटक जाएंगे, क्योंकि कसूर बरसात का है, क्वालिटी तो 100 आने खरी है। एक्सप्रेसवे को बनाने में घटिया सामान का इस्तेमाल नहीं हुआ, सब कुछ मानकों के हिसाब से हुआ, तो NHAI को पूर्व प्रोजेक्ट मैनेजर और मौजूदा प्रोजेक्ट मैनेजर पर कार्रवाई का हंटर क्यों चलाना पड़ा। धसा हुआ एक्सप्रेसवे गवाही दे रहा है कि यहां दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। लेकिन एक्सप्रेसवे के निर्माण में हुई खामियों के बावजूद NHAI के अफसर बड़ी बेशर्मी से एक्सप्रेसवे की खूबियां गिना रहे हैं।
1: टोटल 63 किलोमीटर का लेंथ है और 126 किलोमीटर दोनों साइड मिलाकर के होते हैं। 126 किलोमीटर में आप मेरे 5 लोकेशंस हैं, 5 लोकेशन मिलाकर के 1 किलोमीटर भी लेंथ नहीं आता, और यानी कि मेरा मोर देन 98% स्ट्रेच में बिल्कुल किसी तरह का दिक्कत नहीं है, और ट्रैफिक भी सुचारू रूप से आज भी चल रहा है।
0: सवाल यही है कि 4200 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद एक्सप्रेसवे का एक भी हिस्सा घटिया क्यों निकला। सवाल NHAI के कर्मचारियों और एक्सप्रेसवे का निर्माण करने वाली कंपनी PNC इंफ्राटेक लिमिटेड के गड़बड़ झाले का है। क्या टैक्स पेयर्स के पैसों से बने एक्सप्रेसवे के घटिया निर्माण के बाद PNC पर कठोर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या सिर्फ नोटिस भेजना नॉन परफॉर्मर घोषित करने की तैयारी काफी है? क्योंकि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में देश की जनता से वादा किया था कि हाईवे और एक्सप्रेसवे के निर्माण में गड़बड़ी करने वालों पर बुलडोजर एक्शन होगा, लेकिन NHAI के अफसरों और ठेकेदारों पर गडकरी की चेतावनी जमीन पर नजर नहीं आई, यानी अभी बड़े और कड़े कदम उठाने की जरूरत है।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। I wake up wearing someone else again.

0: अपने समझ से प्रस्ताव करें।
1: यूपी में भले विधानसभा का सत्र चार दिन का छोटा हो, लेकिन इस छोटे सत्र में भी सरकार ने ऐसे बड़े बड़े फैसले किए कि सियासत उबल गई है। मदरसे में 12वीं के बाद की पढ़ाई बंद करने के फैसले के बाद अब यूपी सरकार ने मदरसा शिक्षक वेतन बिल भी वापस ले लिया। 10 साल पहले अखिलेश राज में पारित हो चुका ये विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के बिना लटका हुआ था, क्योंकि इसमें बनाए गए प्रावधानों को लेकर कानूनी पहलू के सवाल खड़े किए गए थे। ये विधेयक 2016 में अखिलेश राज में दोनों सदनों में पारित हो गया था, लेकिन गवर्नर राम नाईक ने इस पर सवाल उठाए थे, क्योंकि इसमें प्रावधान था कि मदरसा टीचर और कर्मचारियों को रेगुलर स्कूल की तरह तय तारीख पर वेतन मिले। वेतन में देर होने पर जिम्मेदार अफसर के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने वाला था, जबकि मदरसा कर्मियों के खिलाफ पुलिस FIR दर्ज नहीं कर सकती थी। मदरसा कर्मियों की विभागीय जांच से भी छूट थी। इस बिल को विधानसभा ने औपचारिक रूप से प्रस्ताव पारित करके वापस कर लिया है। इससे पहले यूपी के डिप्टी CM के मदरसों को लेकर दिए गए बयान को लेकर भी हंगामा हुआ था।
2: मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री।
3: ये मानसिक रोगी हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि बांकीपुर इनके अध्यक्ष की सीट जनता ने हरा दी।
1: केशव मौर्य का ये बयान इसीलिए विपक्ष के निशाने पर आया क्योंकि यूपी सरकार मदरसा शिक्षा से जुड़े संशोधनों पर तेजी से आगे बढ़ रही है। अब यूपी के मदरसों में 12वीं तक की पढ़ाई होगी, डिग्री कोर्स पूरी तरह से बंद होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप मदरसों में कामिल यानी ग्रेजुएशन और फाजिल यानी PG की पढ़ाई बंद की जाएगी। इसके लिए मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में संशोधन का प्रस्ताव है। दरअसल योगी सरकार में मदरसों की पढ़ाई को लेकर शुरू से ही सख्त सरकारी समीक्षा होती रही है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मदरसों की ओर से ग्रेजुएशन PG की डिग्री देना यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 के खिलाफ है, लिहाजा मदरसे 12वीं तक की पढ़ाई ही करा सकते हैं। ऐसे में यूपी में मौजूद कुल 4,536 आलिया स्तर के मदरसों पर असर होगा, जिनमें से करीब 1,000 मदरसों में ये ग्रेजुएशन और PG डिग्री दी जा रही थी। इन पाठ्यक्रमों में लगभग 37,000 से 38,000 छात्र पढ़ाई कर रहे थे, जिन्हें अब UGC से मंजूर विश्वविद्यालयों का रुख करना पड़ेगा। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

ईएमआई में राहत का इंतजार करने वालों को आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद मायूसी हाथ लगी है। दरअसल उम्मीद के अनुसार ही सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट में कोई

0: समझ से प्रस्ताव
1: यूपी में भले विधानसभा का सत्र चार दिन का छोटा हो, लेकिन इस छोटे सत्र में भी सरकार ने ऐसे बड़े बड़े फैसले किए कि सियासत उबल गई है। मदरसे में 12वीं के बाद की पढ़ाई बंद करने के फैसले के बाद अब यूपी सरकार ने मदरसा शिक्षक वेतन बिल भी वापस ले लिया। 10 साल पहले अखिलेश राज में पारित हो चुका ये विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के बिना लटका हुआ था, क्योंकि इसमें बनाए गए प्रावधानों को लेकर कानूनी पहलू के सवाल खड़े किए गए थे। ये विधेयक 2016 में अखिलेश राज में दोनों सदनों में पारित हो गया था, लेकिन गवर्नर राम नाईक ने इस पर सवाल उठाए थे, क्योंकि इसमें प्रावधान था कि मदरसा टीचर और कर्मचारियों को रेगुलर स्कूल की तरह तय तारीख पर वेतन मिले। वेतन में देर होने पर जिम्मेदार अफसर के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने वाला था, जबकि मदरसा कर्मियों के खिलाफ पुलिस FIR दर्ज नहीं कर सकती थी। मदरसा कर्मियों की विभागीय जांच से भी छूट थी। इस बिल को विधानसभा ने औपचारिक रूप से प्रस्ताव पारित करके वापस कर लिया है। इससे पहले यूपी के डिप्टी CM के मदरसों को लेकर दिए गए बयान को लेकर भी हंगामा हुआ था।
2: मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री।
3: ये मानसिक रोगी है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि बांकीपुर इनके अध्यक्ष की सीट जनता ने हरा दी।
1: केशव मौर्य का ये बयान इसीलिए विपक्ष के निशाने पर आया क्योंकि यूपी सरकार मदरसा शिक्षा से जुड़े संशोधनों पर तेजी से आगे बढ़ रही है। अब यूपी के मदरसों में 12वीं तक की पढ़ाई होगी, डिग्री कोर्स पूरी तरह से बंद होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप मदरसों में कामिल यानी ग्रेजुएशन और फाजिल यानी PG की पढ़ाई बंद की जाएगी। इसके लिए मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में संशोधन का प्रस्ताव है। दरअसल योगी सरकार में मदरसों की पढ़ाई को लेकर शुरू से ही सख्त सरकारी समीक्षा होती रही है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मदरसों की ओर से ग्रेजुएशन PG की डिग्री देना यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 के खिलाफ है, लिहाजा मदरसे 12वीं तक की पढ़ाई ही करा सकते हैं। ऐसे में यूपी में मौजूद कुल 4,536 आलिया स्तर के मदरसों पर असर होगा, जिनमें से करीब 1,000 मदरसों में ये ग्रेजुएशन और PG डिग्री दी जा रही थी। इन पाठ्यक्रमों में लगभग 37,000 से 38,000 छात्र पढ़ाई कर रहे थे, जिन्हें अब UGC से मंजूर विश्वविद्यालयों का रुख करना पड़ेगा। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

0: ईएमआई में राहत का इंतजार करने वालों को आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद मायूसी हाथ लगी है। दरअसल उम्मीद के अनुसार ही सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25% पर स्थिर रखा है। रेपो रेट स्थिर रहने से एफडी और बचत खातों की ब्याज दरों पर तत्काल असर की संभावना कम है। वहीं आरबीआई ने अपना रुख न्यूट्रल रखा है, यानी आगे हालात देखकर फैसला होगा।
1: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic conditions and the economic outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%. Consequently, the STF rate remains at 5% and the MSF rate and the bank rate at 5.5%.
0: लेकिन रसोई के बजट पर महंगाई का असर देखने को मिल सकता है। दुनिया भर में चल रहे तनाव और कच्चे तेल के दामों में उतार चढ़ाव की वजह से आने वाले दिनों में खाने पीने का सामान थोड़ा महंगा हो सकता है। आशंका है कि सब्जी और तेल के दाम बढ़ने से महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है। वहीं अल नीनो और मानसून को लेकर बनी अनिश्चितता का असर खेती और खाद्य कीमतों पर पड़ सकता है। खास बात है कि खाद्य और ईंधन कीमतों को छोड़ दिया जाए तो कोर इन्फ्लेशन फिलहाल काबू में है। राहत की बात यह है कि ग्लोबल मार्केट में भारी उथल पुथल के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है।

0: bond market sentiments remain bearish, reflecting fiscal sustainability concerns. However, equity markets driven by tech stocks remain upbeat.
1: कुल मिलाकर आरबीआई ने फिलहाल ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है. ऐसे में ईएमआई में राहत का इंतजार थोड़ा और लंबा हो सकता है. हालांकि केंद्रीय बैंक का मानना है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और महंगाई पर नजर बनाए रखते हुए ग्रोथ को समर्थन दिया जा सकता है. आज तक ब्यूरो.
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर. पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक. एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com.
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.

रांची में छात्र आंदोलन का 14वां दिन आज सोरेन सरकार से 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की वार्ता संभव, बातचीत की जगह पक्की तारीख पर सस्पेंस, राहुल ने वीडियो जारी कर सरकार से की कार्रवाई की मांग। संसद में अब एफसीआरए बिल और परिसीमन बिल पर हंगामे के आसार, गतिरोध दूर करने को लेकर किरेन रिजिजू और राहुल गांधी में बातचीत, राहुल बोले सहयोगियों से करेंगे चर्चा।

0: सभा सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रेकफास्ट पर होगी मुलाकात। टीएमसी के 20 बागी और शिवसेना उद्धव गुट के बागी 6 सांसद रहेंगे मौजूद। युवाओं से बातचीत में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा जेन जी पर आंख मूंद कर भरोसा करता हूं, आंदोलन का मतलब राष्ट्र विरोध नहीं, संवाद को लेकर कहीं ना कहीं हुई चूक। यूपी में कावड़ियों पर मौलाना का विवादित बयान, लखनऊ के थाने में बीजेपी एमएलए ने की शिकायत, कावड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी बोले उपद्रवियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपके साथ पूजा। सुबह के 8 बजे हैं और अब वक्त हो गया है खास बुलेटिन सुपर 8 का। इस बुलेटिन में कई अहम खबरें आपके सामने होंगी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रांची में सरकार और छात्रों के बीच संभावित बातचीत की खबर के साथ। दरअसल आपको ये भी बताएंगे कि बीजेपी सांसद ने आखिर क्या धमकी दी है, रांची में छात्रों के प्रदर्शन पर राहुल ने क्या कहा है, इस खबर पर भी करेंगे बात। उधर संसद में गतिरोध पर राहुल और रिजिजू में क्या बातचीत हुई, पूरी खबर डिटेल के साथ आपको देंगे। साथ ही बताएंगे कि जेन जी को लेकर क्या बोले हैं मोहन भागवत, बात पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस की टेंशन की भी करेंगे। साथ ही यूपी में कावड़ यात्रियों पर मौलाना के विवादित बयान पर की खबर भी आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे कि उत्तराखंड में तबाही की आखिर कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रांची की। दरअसल रांची में छात्रों के विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। जयपाल सिंह स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी में भ्रष्टाचार के विरोध में लगातार छात्रों का आंदोलन अभी भी जारी है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि सरकार और छात्रों की 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में बातचीत की तैयारी है। ये बातचीत आज हो सकती है। सूत्रों के अनुसार सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच औपचारिक वार्ता आज हो सकती है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से बातचीत के लिए लगभग 11 सदस्यीय टीम बनाई है, जिनमें 8 छात्र हैं, 2 विशेषज्ञ और 1 वकील भी शामिल है। 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बातचीत करेगा। छात्रों की 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में बातचीत की तैयारी है। ये बातचीत आज हो सकती है। सूत्रों के अनुसार सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच औपचारिक वार्ता आज हो सकती है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से बातचीत के लिए लगभग 11 सदस्यीय टीम बनाई है, जिनमें 8 छात्र हैं, 2 विशेषज्ञ और 1 वकील भी शामिल है। 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बातचीत करेगा।
2: करके नहीं गए हैं, मंच के आसपास इलाके में छात्रों का जमावड़ा, और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वो फिर एक बार आएंगे। सबको दरअसल इंतजार ये है कि कोई यहाँ धरने पर तो बैठा नहीं रहना चाहता। बच्चों की पढ़ाई लिखाई तैयारी का समय है, कुछ के यहाँ जो गांव से आते हैं वहाँ पर खेती बाड़ी का समय है, तो वो चाहते हैं कि जल्दी ये डेडलॉक खत्म हो। आप सोचिए 2 सप्ताह हो चुके हैं। हालांकि इस बीच में बहुत सारे जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए, बीती शाम राहुल गांधी का फोन आया, तमाम वो छात्र बैठे हुए हैं, लेकिन इन छात्रों में वो भी हैं रविंद्र पासवान जो इस डेलीगेशन का हिस्सा है। और इसीलिए मैं रविंद्र पासवान आपसे जानना चाहता हूं, आप लोगों ने जब बात की है, जो आपके मीडिएशन है, कुछ बताया है आज कब का समय है जब आप बातचीत होगी?
3: एसडीओ सर तो ऐसा कुछ अभी नहीं बोले हैं, लेकिन आज हो सकता है कि सर टाइम बतावे।
2: अब मुझे बताइए, आप लोग की मुलाकात, उन्होंने सरकार ने 4 मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल बनाया है, तो आप मंत्रियों से मिलना चाहते हैं, अभी भी जिद है कि मुख्यमंत्री से ही मुलाकात होगी?
3: जी, हम लोग मुख्यमंत्री जी से ही वार्ता करना चाह रहे हैं।
2: ये शर्त, और इस पर सरकार सहमत?
3: अब देखिए एसडीओ सर से क्या बात आती है, अभी तक तो बात नहीं है।
2: यहाँ पर छात्र बहुत मांग कर रहे थे कि राहुल गांधी जिस तरह जंतर मंतर पर सपोर्टर में खड़े थे, यहाँ क्यों नहीं आए? कल शाम उन्होंने जब फोन किया, आपकी बातचीत हुई, क्या कुछ कहा उन्होंने, क्या आश्वासन दिया?
3: उन्होंने आश्वासन दिया कि बिल्कुल हम आपके साथ है, आपके मुद्दों के साथ है, आपका जो भी मुद्दा है आप मेरे तक सेंड कीजिए, मैसेज कीजिए, हम सरकार से उसको अवगत कराएंगे। और
0: 14 दिन हो गए आशुतोष, अभी भी छात्रों मदद के भरोसा रखे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वहीं रांची में छात्रों के प्रदर्शन के बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कह दिया है कि 13 अगस्त तक, यानी कि संसद चलने तक, यदि फैसला नहीं हुआ तो वो अपनी पार्टी से परिसीमन लेकर छात्रों के आंदोलन परमिशन लेकर छात्रों के आंदोलन में शामिल होकर अनशन करने वाले हैं। तो निशिकांत दुबे ये साफ कर चुके हैं कि फैसला नहीं हुआ तो वो अपनी पार्टी से इजाजत लेकर छात्रों के आंदोलन में शामिल होकर अनशन जरूर करने वाले हैं। तो एक और निशिकांत दुबे की चेतावनी। तो दूसरी ओर आंदोलन के 13वें दिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रांची के प्रदर्शनकारी छात्रों से फोन पर बातचीत की। करीब 3 मिनट तक उन्होंने छात्रों की बातें सुनी, भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों को उठाया जाएगा।
4: झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है और इलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ओप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो।
0: तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने छात्रों के प्रदर्शन को लेकर कई अहम बयान दिए हैं। दरअसल उन्होंने कहा है कि आंदोलन करना कतई भी राष्ट्र विरोधी नहीं है। मुंबई में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइटेड नेशंस के 15वीं वर्षगांठ कार्यक्रम में जेंजी से संवाद उन्होंने किया। संवाद करते हुए भागवत ने कहा कि अगर समय रहते जेंजी की आवाज सुनी जाती तो आंदोलन नहीं होता, यानी उन्होंने माना है कि इसे हैंडल करने में कहीं ना कहीं चूक हुई है।
5: अभी जो हुआ है ग्रीवंस तो जेनाइन है, भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा इसलिए बात होती है, तो डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग के बाद नहीं होता तो क्या करना बात की बात है। अगर जेंजी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला,
6: बिल्कुल
5: उसको ठीक करना चाहिए।
6: तो इसमें आप मानेंगे कि संवाद यदि पहले से शुरू हुआ होता तो ये बाद में विषय ज्यादा ऊपर जाता ही नहीं।
5: जो नहीं होना चाहिए वो जब होता है तो कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जाती, तभी होता है। किसकी है क्या है ये अलग बात है, लेकिन कमी तो रही है, ठीक हो जाएगी। कि जैन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं जी, अपने लोग है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है
6: जी। सर
5: इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला, अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है। वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है, ये होता है तो होना चाहिए। और जैन जी वगैरह ऐसी है ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता।
6: आप क्या मानते हैं?
5: विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब जब पूछा गया तब मैंने बताया और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जैन जी जैन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है।
6: अरे वाह बढ़िया है।
5: और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है।
0: तो वहीं संसद के दोनों सदनों में विपक्षी हल्ला बोल अभी भी जारी है। दरअसल मॉनसून सत्र में अब तक सत्र हंगामेदार रहा। कल भी विपक्षी दलों ने गृहमंत्री अमित शाह से जवाब की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर अड़ा हुआ है। वहीं अब परिसमन और FCRA बिल को लेकर भी विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति पर विचार कर रहा है। इस बीच संसद में जारी गतिरोध को दूर करने के लिए किरेन रिजिजू और राहुल गांधी में कल फोन पर बातचीत हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों में सदन में गतिरोध खत्म करने के लिए बात हुई। मॉनसून सत्र में तीसरी बार दोनों के बीच बातचीत हुई है। तो दोनों के बीच किरेन रिजिजू और राहुल गांधी के बीच तीसरी बार ये बातचीत हुई है फोन पर। क्या बात हुई है, उनकी बातचीत में क्या निकला, चलिए अब आपको वो समझाते हैं। दरअसल किरेन रिजिजू ने कहा है कि परिसमन के समर्थन में महिला आरक्षण विधेयक लागू करना आसान होगा। वहीं राहुल गांधी ने जवाब दिया कि पहले कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों से वो चर्चा करेंगे, सहयोगी दलों की बातचीत के बाद ही सरकार को बताएंगे वो अपना रुख। किरेन रिजिजू का कहना है कि महिला आरक्षण लागू नहीं हुआ तो महिला समाज में नाराजगी बढ़ सकती है। तो दोनों के बीच ये बातचीत हुई है, तीसरी बार दोनों की बातचीत हुई है ताकि जो सदन की कार्यवाही है वो काफी आराम से चल पाए, क्योंकि हल्ला बोल हर बार सदन में नजर आ रहा है। अब आपको बताते हैं कि दोनों में क्या बात हुई, ये आपने देखा।
7: नहीं नहीं बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी से, मेरा अच्छा बात हुआ और एक विषय हमने रिक्वेस्ट किया है और बाकी विषय में भी बात किया है। हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस और बाकी अपोजिशन पार्टी से हम लगातार बातचीत करते रहे हैं और तालमेल करके काम करें। हम एक दूसरे के विरोधी हैं, दुश्मन तो नहीं है ना, तो देश हित में हम सब मिलके काम करें। लेकिन ऐसा चित्र दिखाते हैं बाहर में कि हम बिल्कुल पार्लियामेंट चलने ही नहीं देंगे, तो इसका नुकसान किसका होगा?
0: तो इन तमाम खबरों के बीच यूपी और पंजाब में अगले साल होने वाले चुनावों से जुड़ी कुछ और अहम खबरें इस खास सेगमेंट खबर चुनावी में।
8: यूपी में अगले साल यानी 2027 में चुनाव है और अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी सरकार ने भी अभियान तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई युवा नीति के जरिए यूथ वोट बैंक को साधने की तैयारी की है। एक दिन पहले सीएम योगी ने नई युवा नीति को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने कहा कि नई युवा नीति युवाओं की आकांक्षाओं और जरूरतों के अनुरूप तैयार की जाएगी, उसके लिए युवाओं से राय भी ली जाएगी। नई नीति में शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य सरकार का फोकस रोजगार बढ़ाने, खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने और युवाओं को नशे से दूर रखने पर होगा। प्रयागराज में 8 अगस्त को होने वाले राहुल गांधी के कार्यक्रम पर सस्पेंस खत्म हो गया है। उनका छात्रों की गूंज कार्यक्रम के आयोजन को सशर्त मंजूरी मिल गई है। इसके मुताबिक छात्रों से संवाद का ये कार्यक्रम पहले से तय केपी कॉलेज मैदान में ही होगा। दो दिन पहले कायस्थ पाठशाला ने केपी कॉलेज ग्राउंड में तय राहुल के कार्यक्रम को रेड सिग्नल दिखा दिया था, लेकिन अजय राय की चिट्ठी के बाद कुछ शर्तों के साथ अब मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि 8 अगस्त को राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम में करीब 2.5 लाख छात्रों के जुटने की संभावना जताई जा रही है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव के ब्राह्मण कार्ड को लेकर फिर से उन पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव अपनी और अपनी पार्टी की चिंता करें। उनकी पार्टी अराजकता, गैर लोकतांत्रिक है और जनेश्वर मिश्रा के सिद्धांतों से भटक गई है। आरोप ये भी कि समाजवादी पार्टी सिर्फ व्यक्तिवादी राजनीति कर रही है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर राजा वद्दहिंग के लुधियाना में आयोजित कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थन में नारेबाजी देखी गई और भूपेश बघेल वापस जाओ जैसे नारे भी लगाए गए। पंजाब कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक के दौरान लुधियाना के ही रहने वाले पूर्व कांग्रेस मंत्री भारत भूषण आशु के समर्थन में जोरदार नारेबाजी हुई। जैसे ही अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने प्रदर्शनकारियों को बाहर निकालने के लिए कहा, बवाल बढ़ गया। पंजाब कांग्रेस प्रमुख ने आशु और चरणजीत चन्नी का समर्थन करने वालों को आरएसएस का चापलूस करार दिया। आज पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र का 5वां दिन है। इससे पहले 6 अगस्त को सदन में जबरदस्त हंगामा और बवाल हुआ। कांग्रेस के विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। उनकी मांग थी कि अवैध खनन को लेकर विधानसभा की कमेटी की जाए। वही पठानकोट से बीजेपी विधायक अश्विनी शर्मा ने अवैध खनन पर बोलते हुए एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर बेटी पैदा होती है तो इसे केंद्र सरकार की गलती बताया जाता है और अगर बेटा पैदा होता है तो इसे आप सरकार की मेहनत कहा जाता है। इस बयान को लेकर आपने माफी की मांग की है।
0: तो वहीं आज हैंडलूम डे भी है और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना एक इंस्टा वीडियो शेयर किया और अपील की है कि आज के दिन हम सब हैंडलूम दिवस मनाएं और ज्यादा से ज्यादा हैंडलूम खरीदें ताकि गरीब परिवारों का आर्थिक विकास हो सके। बीती रात ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह वीडियो पोस्ट किया है, देखिए।
9: साथियों, 1905 7 अगस्त हमें भूलना नहीं है। 7 अगस्त 1905 को देश की आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूं 7 अगस्त हैंडलूम डे। हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है और हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार जो अपने हाथों से अपनी छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं और नई नई वैरायटीज होती है, आप देखिए ना क्या कुछ नहीं है। और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम के वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाए और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो। आइए 7 अगस्त हैंडलूम डे।
0: अब खबर यूपी में जारी कावड़ यात्रा से जुड़ी। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कुछ कावड़ियों को आतंकवादी बता दिया है। ऐसे भड़काऊ बयान को लेकर बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने मौलाना के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है।
8: सावन के पवित्र महीने में कांवड़ यात्रा चल रही है और उसी यात्रा के बीच साजिद रशीदी का अपमानजनक और भड़काऊ बयान आया है। ऐसा बयान जिसे लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है।
10: क्या जो लोग सड़कों पर बैठकर भांग मसल रहे हैं वो शिव भक्त हैं? क्या जो लोग सड़कों पर बैठकर शराब पी रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं, क्या वो शिव भक्त हैं? क्या जो लोग पुलिस वालों को वर्दी में होते हुए मार मार कर अधमरा कर दें वो शिव भक्त हैं? क्या वो लोग जो बच्चों की वैन जो स्कूल जा रही थी उसके शीशे तोड़ दें, बच्चों को इंजर्ड कर दें, वो शिव भक्त हैं? ये शिव भक्ति है, ये कांवड़ है? मैं ऐसे लोगों को नशेड़ी, भंगेड़ी, लूटपाट करने वाला और आतंकवादी तक बोलता हूं।
8: साजिद रशीदी ये ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। मौलाना के ऐसे विवादित बयान को लेकर बीजेपी बौखलाई हुई है। कांवड़ियों को नशेड़ी, भंगेड़ी और आतंकवादी बताने वाले बयान के विरोध में मामला अब पुलिस तक पहुंच गया है। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली पहुंचे और मौलाना के खिलाफ तहरीर दी। उन्होंने आतंकी वाले बयान को लेकर पलटवार भी किया।
11: अब बहुत हो गया है ये मौलाना, अगर कांवड़िए खड़े हो गए तो मौलाना की पीढ़ियां नहीं बचेंगी। और ये वही लोग हैं जिनको पाकिस्तान जाना चाहिए था। ये देश धर्म के आधार बटा था कि जो यहाँ राम का नाम लेंगे, सनातन संस्कृति के अनुसार रहेंगे, उनका सम्मान होगा, उन्हें सारी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन अगर सनातन का अपमान करेंगे तो उनके लिए पाकिस्तान बना था।
8: नंद किशोर गुर्जर ने कहा है कि कांवड़ियों को आतंकवादी कहना सनातन का अपमान है। उन्होंने मौलाना पर FIR दर्ज कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने की मांग की और कहा है कि मौलाना को ऐसे बयान के लिए फांसी होनी चाहिए। आशीष श्रीवास्तव के साथ संतोष कुमार शर्मा, लखनऊ आज तक।
0: तो इस सब के बीच कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बयान भी सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा है ये आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि आज जब समाज में जातीय विद्वेष फैलाने की साजिशें की जा रही हैं, ऐसे समय में लाखों श्रद्धालुओं की सहभागिता वाली कांवड़ यात्रा सामाजिक समरसता का प्रेरक उदाहरण बनकर सामने आई है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि कांवड़ यात्रा आस्था, अनुशासन और सामाजिक समरसता का महापर्व है और इसमें बाधा उत्पन्न करने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो ये योगी आदित्यनाथ का कांवड़ यात्रा को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि शहीदों की पहचान सार्वजनिक की जाएगी और जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई भी की जाएगी अगर ऐसे बयान सामने आने लगे। अब खबर देश भर में जारी मानसून संकट से जुड़ी। अलग अलग शहरों से बाढ़ और भीषण बारिश से बड़ी मुसीबत की तस्वीरें सामने आई हैं। इन दिनों उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, यूपी के कुछ हिस्से ऐसे हैं, साथ ही बिहार और अन्य कई राज्यों में मानसून का संकट लगातार जारी है। ये 12 तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग शहरों की देश के हालात बता रहे हैं ये। वहां मूसलाधार बारिश, फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं कैसे जनजीवन प्रभावित कर रही है। अब खबर उत्तराखंड की, जहां पर मौसम की जबरदस्त मार पड़ रही है। लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाके ऐसे हैं जहां पर स्थिति गंभीर हो चुकी है। नदियों में उफान है तो कहीं पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की वजह से मुसीबत बढ़ गई है।
12: अलकनंदा नदी का ये रौद्र रूप देखिए, सैलाब का रौद्र रूप ऐसा है जिसे देखकर जिंदगी सहमी हुई है। ये तस्वीरें पौड़ी की है जहां लगातार बारिश हो रही है। इसका साफ असर अलकनंदा के जलस्तर पर दिख रहा है। नदी कई जगहों पर खतरे के निशान के आसपास या उसके ऊपर बह रही है, इसे लेकर हाई अलर्ट है। नदी किनारे रहने वालों को प्रशासन लगातार चेतावनी दे रहा है कि खतरे से दूर रहे। उत्तरकाशी में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार भूस्खलन और मलबा आने से बार बार बंद हो रहे हैं। कांवड़ यात्रा के बीच गंगोत्री धाम से गंगा जल लेने वाले कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में सड़क धंसने से यात्रियों और कांवड़ियों की परेशानी बढ़ गई है। मूसलाधार बारिश का संकट टिहरी में भी दिख रहा है। गंगा सहित अन्य नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालात ये हैं कि प्रशासन हाई अलर्ट मोड में है। नदी किनारों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। लाउड स्पीकर से श्रद्धालुओं, कांवड़ यात्रियों और स्थानीय लोगों को लगातार आगाह किया जा रहा है। उधर कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी का विकराल रूप दिख रहा है। लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर नदी के किनारों तक खतरा बढ़ गया है। वहीं लैंडस्लाइड की वजह से कई रास्तों पर मलबा ही मलबा दिखा। वहीं विकास नगर के जौनसार बावर में भी कुदरत के कहर का खतरा दिखा। वहां हीरपुर क्वानू मिनस मार्ग पर उस वक्त हड़कंप मच गया जहां सेव से लदा एक ट्रक अचानक उफनते नाले के मलबे में फंस गया। फिर तो वहां दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। हालात ऐसे हो गए कि ट्रक को निकालने के लिए जेसीबी मशीन का सहारा लेना पड़ा। आज तक ब्यूरो।
0: अब तस्वीर नेपाल के कोसी बैराज की, जहां से करीब 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। लगातार बारिश की वजह से दबाव बढ़ा तो बैराज के 56 में से 34 गेट को खोलना पड़ा। नेपाल स्थित कोसी बैराज में गुरुवार शाम 6 बजे पानी छोड़ा गया। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए ये फैसला लिया गया और कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में निचले इलाकों पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। सुपर 8 में यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है, सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का। और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं।
3: भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना, ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। PNB, मेरा अपना बैंक।
4: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
5: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
4: असली शहद, असली स्वाद।
6: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
7: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
8: मुल्तानी को का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी को का कॉफ सिरप।
9: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
10: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
11: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: In association with
2: Sarah Sanitaryware, it's your moment of Sarah. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: सावन के पावन महीने में महाकाल की दिव्य धरती उज्जैन से आस्था का सबसे बड़ा मंच, जहां जुटेंगे देश के सबसे प्रतिष्ठित संत और मुख्यमंत्री। देखिए धर्म संसद 7 अगस्त दिन भर सिर्फ आज तक पर।
4: इस्तेमाल किया गया है जो इंस्ट्रूमेंट्स का, ये बहुत गलत है। इसके लिए हम चाहते थे कि होम मिनिस्टर खुद सदन में आए और हमको ये बताए किसने लाठी चलाने के लिए बोला, क्या ये पुलिस अधिकारियों ने ही किया, और इसके ऊपर एक स्टेटमेंट हाउस में आकर देने में क्या मजबूरी है। तो ये तो ये अरोगेंस ही बताती है कि 15 दिन से सदन चल रहा है और होम मिनिस्टर गायब है, प्राइम मिनिस्टर आ रहे नहीं। इसके दो ही मतलब हो सकते हैं, एक या तो वो पार्लियामेंट को नजरअंदाज कर रहे हैं कि ये समझ रहे हैं कि पार्लियामेंट है ही नहीं, या तो वो डर के हाउस में आकर रिप्लाई देना नहीं चाहते।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: में छात्र आंदोलन का 14वां दिन आज सोरेन सरकार से 11 सदस्य प्रतिनिधिमंडल की वार्ता संभव। बातचीत की वजह पक्की, जगह पक्की, तारीख पर सस्पेंस। राहुल ने वीडियो जारी कर सरकार से की कार्रवाई की मांग। संसद में अब FCRA बिल और परिसीमन बिल पर हंगामे के आसार। गतिरोध दूर करने को लेकर किरेन रिजिजू और राहुल गांधी में बातचीत। राहुल बोले सहयोगियों से करेंगे चर्चा। एनडीए के नए लोकसभा सांसदों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की ब्रेकफास्ट पर होगी मुलाकात। टीएमसी के 20 बागी और शिवसेना उद्धव गुट के बागी 6 सांसद रहेंगे मौजूद। युवाओं से बातचीत में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा जेन जी पर आंख मूंद कर भरोसा करता हूं, आंदोलन का मतलब राष्ट्र विरोध नहीं, संवाद को लेकर कहीं ना कहीं चूक हुई। यूपी में कांवड़ियों पर मौलाना का विवादित बयान। लखनऊ के थाने में बीजेपी एमएलए ने की शिकायत। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी बोले उपद्रवियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: रांची में 14वें दिन भी छात्रों का प्रदर्शन जारी। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं युवा। आंदोलन को देश भर से मिला समर्थन। स्विगी जोमैटो से पहुंच रहा है खाना। लगाया गया मेडिकल कैंप। रांची में सोरेन सरकार से बातचीत करेगा 11 लोगों का प्रतिनिधिमंडल। इस दल में 8 छात्र, 2 पत्रकार और 1 वकील शामिल, जो मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले दिन जेपीएससी जेएसएससी मुद्दे पर भारी हंगामा। विपक्ष ने सीएम हेमंत सोरेन के इस्तीफे और सीबीआई जांच की मांग की। झारखंड में पेपर लीक के मुद्दे पर सियासत तेज। कांग्रेस मंत्री बोले कोई पेपर लीक नहीं हुआ। बीजेपी विधायकों ने सरकार के खिलाफ किनारेबाजी। रांची में चल रहे छात्र आंदोलन में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारी छात्रों से फोन पर बातचीत की। करीब 3 मिनट तक उन्होंने छात्रों की बातें सुनी और भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों को उठाया जाएगा। पीएम मोदी आज नए एनडीए लोकसभा सांसदों से करेंगे ब्रेकफास्ट मीटिंग। प्रधानमंत्री आवास पर सुबह 9 बजे करीब 45 पहली बार और नवनिर्वाचित सांसदों से मुलाकात होगी। टीएमसी, एनसीपीआई और यूबीटी से एनडीए में आए सांसद भी होंगे शामिल। हाल ही में एनडीए में शामिल हुए सांसद भी बैठक का हिस्सा बनेंगे। संगठन और संसद की रणनीति पर चर्चा संभव। सूत्रों के मुताबिक पीएम नए सांसदों को संसदीय कामकाज और जनसंपर्क को लेकर मार्गदर्शन देंगे। पीएम मोदी ने शेयर किया हैंडलूम डे पर वीडियो। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की। बीती रात इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर लोगों से हैंडलूम अपनाने की अपील की। नीट यूजी पेपर लीक केस में आज कोर्ट सुनाएगा आदेश। सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आएगा। मेटा की टेक्निकल टीम आज मेटवाई अधिकारियों से करेगी बैठक। भारतीय कानूनों के अनुपालन और तकनीकी मुद्दों पर होगी विस्तृत चर्चा। सरकार का मेटा को संदेश, भारत में भारतीय कानूनों का ही होगा पालन। एआई डीपफेक पर भी सरकार ने सख्ती की। अब महज 3 घंटे में हटाना होगा गैर कानूनी कॉन्टेंट। मेटा एक्स और टेलीग्राम के साथ सरकार की नियमित बातचीत। अभी भी जारी। सरकार ने कहा लक्ष्य नया रेगुलेटर बनाना नहीं, मौजूदा कानूनों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना। संसद में गतिरोध खत्म करने को लेकर रिजिजू और राहुल में फोन पर हुई बातचीत। सूत्रों के मुताबिक परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा। सहयोगी दलों से बातचीत के बाद रुख साफ करेगी कांग्रेस। संसद की कार्यवाही में बाधा डालने पर किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा विपक्ष के वॉकआउट के बावजूद सदन में चर्चा के बाद पास हो रहे बिल। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को मिली मंजूरी। 8 अगस्त को प्रयागराज में तय शर्तों के साथ आयोजन की अनुमति दी गई। छात्रों पर FIR को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। एक्स पर किया पोस्ट। लिखा मोदी सरकार की नीति ही युवाओं को आवाज दबाना। राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। कहा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फीस विवाद को लेकर प्रयागराज में मेरे कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की गई। जेंजी के साथ राहुल गांधी का इंस्टाग्राम पर आस्क मी एनीथिंग सेशन। इंस्टा स्टोरी पर यूजर से पूछा बीजेपी में पसंदीदा नेता कौन। राहुल ने अमरिंदर सिंह का नाम लिया। राहुल गांधी ने नागालैंड, अरुणाचल, बाढ़ और भूस्खलन में मौतों पर जताया दुख। वहीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत यूपी के 75 जिलों में होगा तिरंगा संगीत समारोह। शहीद परिवारों का होगा सम्मान। विधानसभा चुनाव से पहले जेंजी पर योगी सरकार का फोकस। नई युवा नीति बनाने पर सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक। कांवड़ यात्रा पर मौलाना साजिद रशीदी के बयान से विवाद। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन अध्यक्ष ने कुछ कांवड़ियों को आतंकवादी बताया। मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने भड़काऊ बयान का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। यूपी में हो रही बारिश से होने वाली जनहानि, पशु हानि और आर्थिक हानि का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। तो वही मुंबई में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जुएंजी संघ संवाद, कहा जुएंजी का आंदोलन देश के खिलाफ नहीं है। युवाओं से बातचीत में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा उनकी शिकायत जायज, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। एफसीआरएस संशोधन विधेयक पर 12 अगस्त को संसद में हो सकती है चर्चा, अमित शाह से मुलाकात के बाद मिजोरम के सीएम ने दी है जानकारी। 12 अगस्त को सदन में आएगा एफसीआरए बिल, मिजोरम के मुख्यमंत्री ने बिल को लेकर स्थिति स्पष्ट की। एफसीआरए बिल पर कांग्रेस का हमला, अभिषेक मनु सिंघवी बोले ड्रेकोनियन बिल, विपक्ष ने प्रस्तावित कानून को लेकर सरकार पर तीखा निशाना साधा। सितंबर से अभिजीत दीपके का नया प्लान, देश भर में शुरू करेंगे क्या बोलती पब्लिक अभियान। अभिजीत दीपके ने कहा बेरोजगारी और महंगी शिक्षा के मुद्दे पर गांव शहरों में युवाओं से करेंगे बातचीत। शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला, कहा ममता बनर्जी बंगाल को खत्म करने पर तुली हुई थी, ममता का समर्थन मतलब मोहम्मद अली का सपना पूरा करना। शुभेंदु अधिकारी के बयान से पश्चिम बंगाल की सियासत गर्मा गई। ममता पर शुभेंदु के तीखे आरोप, बयान से बढ़ा सियासी विवाद, विपक्ष और टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू, 2 सीएजी रिपोर्ट होंगी पेश। वही दिल्ली विधानसभा में 3 अहम बिल पेश करेगी सरकार, टाइम बाउंड सर्विस, डीयू एसआईबी संशोधन और बेड एंड ब्रेकफास्ट से जुड़े विधेयक शामिल। 4 दिन के सत्र में डीईआरसी नियमों और नोटिफिकेशन पर भी चर्चा, ऊर्जा मंत्री आशीष सूद सदन में बिजली नियामक से जुड़े दस्तावेज पेश करेंगे। मानसून सत्र का एजेंडा तय, 7, 10 और 11 अगस्त को चलेगी कार्यवाही। दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट को लेकर सियासी नजरें टिकी हुई हैं, विपक्ष सरकार के बीच कई मुद्दों पर बहस के आसार। 15 अगस्त सुरक्षा को लेकर दिल्ली में एनएसजी का बड़ा मॉक ड्रिल आज शाम 6 बजे के बाद, कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा अभियान तेज। जेएनयू स्टेडियम और दिल्ली सचिवालय समेत कई जगहों पर एनएसजी ड्रिल, दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां तैयारियों का लेंगे जायजा। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में मल्टी लेयर सिक्योरिटी प्लान लागू, लाल किले के कार्यक्रम के में करीब 24,000 मेहमानों की सुरक्षा के लिए 12,000 पुलिसकर्मी तैनात। आतंकी खतरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर, मॉक ड्रिल में कई परिदृश्य होंगे टेस्ट और साथ ही होस्टेज रेस्क्यू, बम थ्रेट और इवैक्यूएशन जैसे हालात पर तैयारियां परखी जाएंगी। दिल्ली में बढ़ी सुरक्षा, मेट्रो स्टेशन और भीड़भाड़ वाले इलाकों पर खास निगरानी। टिहरी गढ़वाल में लैंडस्लाइड, मलबा हटाने का काम तेजी से चल रहा है, भारी बारिश के बाद सड़क पर जमा मलबा जेसीबी से हटाया जा रहा है। टिहरी के पुंडोली गांव में पुल बहा, एसडीआरएफ ने महिला को किया रेस्क्यू। चमोली में लैंडस्लाइड, मार्ग पर प्रभावित पहाड़ से पानी के साथ चट्टानों का सैलाब आने के कारण सड़क पर मलबा जमा हुआ। बागेश्वर में करीब बारिश का कहर देखने को मिला, 15 सड़कें बंद हुई, बोल्डर गिरने की वजह से कई मार्ग बाधित हुए। पौड़ी गढ़वाल में अलकनंदा उफान पर हाई अलर्ट जारी, भारी बारिश के चलते नदी का जलस्तर बढ़ा। उत्तरकाशी में बारिश का कहर, गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बंद, भूस्खलन के चलते हाईवे बार बार हो रहा है बाधित। देहरादून में सड़क पर आया सैलाब, मलबे में फंसा ट्रक, भारी बारिश के बाद सड़क पर पानी और मलबा आया। हिमाचल प्रदेश में 11 अगस्त तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी, शिमला सोलन समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश। जम्मू कश्मीर के शोपिया के तुलिहालन में फटा बादल, रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। नेपाल में बारिश से गंडक नदी उफान पर, वाल्मीकि नगर बैराज से 2.20 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। दिल्ली के सदर बाजार में भारी बारिश के कारण जलभराव, कई सड़कें पानी में डूबी, वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। भारी बारिश से गुरुग्राम के न्यू रेलवे रोड पर वाटर लॉगिंग, सड़कों पर भरा पानी। गुरुग्राम में भारी बारिश के कारण पटेल नगर इलाके में जलभराव, ट्रैफिक की वजह से वाहनों की रफ्तार हुई धीमी। संगम नगरी प्रयागराज में बारिश बनी आफत, सिविल लाइंस जॉर्ज टाउन समेत कई इलाके जलमग्न। मूसलाधार बारिश से फिरोजाबाद में जलजमाव, शिकोहाबाद थाना परिसर में भरा पानी। दिल्ली के वजीराबाद में खुले नाले में गिरे 3 बच्चे, स्कूली बच्चों की जान खतरे में पड़ी, लोगों की सूझबूझ से सुरक्षित बचाया गया। मुंबई में पार्किंग से गिरी कार, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा, कार गिरने के बाद मचा हड़कंप। हरियाणा में चरखी दादरी में थाने के बाहर गैंगवार की घटना, अदालत से पेशी के बाद लौटे युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, हमले में 7 लोग घायल। चरखी दादरी गोलीबारी का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, 3 बदमाश पैदल आए और गाड़ी रुकवाकर कार सवारों पर 10 से 15 राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग की। तो वहीं ग्रेटर नोएडा के बादलपुर में घर के बाहर बदमाश ने की फायरिंग, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी भीषण टक्कर, 2 युवकों की गई जान। अमरनाथ यात्रा से लौट रहे 4 श्रद्धालु सड़क हादसे में घायल, अनंतनाग के अस्पताल में चल रहा इलाज। तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के पोलाची में युवक की हत्या के बाद शव के साथ सेल्फी लेकर फरार हुए आरोपी, पुलिस की दबिश जारी। ओडिशा के केंद्रापड़ा जिले में कॉलेज छात्र को बेरहमी से पीटा, इंस्टाग्राम पर मैसेज करने पर लड़की के पुरुष मित्र ने बीच सड़क पर पटक पटक कर मारा। पालघर में आवारा कुत्तों का आतंक, कई लोगों पर हमला, 4 दिनों में 5 से 7 लोगों को बनाया गया शिकार। यूपी के बाराबंकी में दीवार ढहने की वजह से हादसा, 5 बच्चे मलबे में दबे, 2 की मौत। बिहार के मुजफ्फरपुर में ट्रेन यात्रियों से लूटपाट करने वाले लश्कर गैंग का रोहिंग्याई कनेक्शन सामने आया, जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। झारखंड के सरायकेला में 3 कुख्यात नक्सली गिरफ्तार, AK-47 समेत भारी हथियारों का जखीरा बरामद। MP के ग्वालियर में एक बाइक पर 6 सवार सड़क पर खतरनाक स्टंटबाजी करते नजर आए, पुलिस ने काटा चालान। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के नागजीरा टाइगर रिजर्व में भालू के हमले में वन रक्षक की मौत हुई। महाराष्ट्र के नासिक में ट्रक गुजरते ही धसी सड़क, बीच रास्ते फंसा वाहन। मुंबई के वसई में बालकनी से गिरा 1 साल का मासूम युवक की बहादुरी से बची बच्चे की जान। पालघर में नाला सुपारा सब्जी मार्केट में खरीदारी के दौरान फल विक्रेता और युवती के बीच विवाद हुआ, मारपीट का वीडियो वायरल। गुजरात के नर्मदा में 400 साल पुराने हरसिद्धि मंदिर में चोरी हुई, जेब खर्च के लिए 2500 रूपये चुराने वाला आरोपी गिरफ्तार। गुजरात के गांधीनगर में नकली घी फैक्ट्री का भांडाफोड़, केमिकल से बनाते थे देसी घी। शिरडी में दुबई के साईं भक्त ने मुराद पूरी होने पर चढ़ाया 76 ग्राम सोने का बना राम अक्षर। फरीदकोट में 18 साल के प्रभजोत का कमाल, AI प्रोग्रामिंग और डिजिटल स्किल से युवाओं को बना रहा है आत्मनिर्भर। देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब, भोलेनाथ को जल अर्पण करके रोजाना भारी संख्या में पहुंच रहे हैं कांवड़िए। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा में नजर आई भव्य हाइड्रोलिक कांवड़, करीब 15 लाख रूपये की लागत से तैयार हुई। सहारनपुर के सोरना गांव का कावड़ मेला बना श्रद्धालुओं की पहली पसंद, झूले खिलौने खाने पीने की चीजों ने बढ़ाई इसकी रौनक। अमित राय की ओ माय डॉग आज सिनेमाघरों में देगी दस्तक, इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी लीड रोल में। हिंदी ड्रामा फिल्म आर्यभट्ट का जीरो भी आज हो रहा है रिलीज, हिमांश कोहली, रवि किशन, सोनाली सेगल और शिल्पा शिंदे जैसे स्टार्स शामिल। पंजाबी फिल्म द ग्रेट पंजाब रॉबरी आज थिएटर में दस्तक देगी, फिल्म में शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा लीड रोल में नजर आएंगे। सिनेमाघरों में धूम मचाने के बाद OTT पर रिलीज के लिए तैयार फिल्म मैं वापस आऊंगा आज से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 7 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि शाम के 4:36 तक। नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र शाम के 6:43 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 तक। पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, करियर की समस्या हल होगी, काम की अधिकता रहेगी। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के खर्चों पर ध्यान दें, वाहन सावधानी से चलाएं, दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक तनाव कम होगा, करियर की बाधा दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

हैं, नौकरी में पदोन्नति होगी, पारिवारिक समस्या हल होगी। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कन्या राशि, आर्थिक समस्याएं हल होंगी, करियर में सुधार होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम में लापरवाही ना करें, दूसरों के विवाद में ना पड़ें। दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी।

समस्या हल होगी, धन की प्राप्ति होगी, नई जिम्मेदारी मिल सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। मकर राशि, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, रुके हुए काम आपके बन जाएंगे, लेकिन आज वाहन सावधानी से चलाइएगा। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज

की चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, रिश्तों में समस्या हो सकती है। दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मीन राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आपके लिए होगा गुलाबी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: अखिलेश यादव का पीडीए क्या है? मौका बदलता है, जगह बदलती है, वोट बैंक बदलता है और पीडीए नई परिभाषा के साथ आ जाता है।
1: जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है।
0: पीडीए में पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक, अगड़ा आधी आबादी और आदिवासी पहले ही बताया जा चुका है। जो पीड़ित वो पीडीए का ऐलान भी अखिलेश यादव कर चुके हैं। पीडी माने पंडित बताने से पहले फरवरी महीने में अखिलेश यादव ने पीडीए का रिश्ता बहुजन से भी जोड़ा था।
2: बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी का ये रिश्ता गहरा होता जा रहा है और गहरा होगा इसके बाद। ये पीडीए का प्रेम प्रसार समारोह है, इससे सौहार्द भाईचारा हम सब का मेलजोल बढ़ेगा।
0: पीडीए पर अखिलेश की इस बदलती परिभाषा को बीजेपी चौकन्ना होकर देख रही है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पोस्ट में लिखा है, अखिलेश यादव ने अपने पीडीए को एक ऐसी पहेली में तब्दील कर दिया है जो गिरगिट की तरह हर क्षण तेजी से अपना रंग बदलती है, कभी पी से पिछड़ा, कभी पी से पीड़ित तो कभी पी से पंडित। दरअसल इस अटखेली में उनका पीडीए और कुछ नहीं बल्कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिसका मक्का मदीना केवल सैफई है। बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने कृष्ण सुदामा दोस्ती के नाम पर अखिलेश यादव के ब्राह्मण कार्ड पर भी पलटवार किया।
3: भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आज की नहीं है, बताओ कितने हजार साल पुरानी है, किस युग की है दोस्ती। इसे समाजवादी पार्टी को जब भी मौका मिला है हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया है।
4: ब्राह्मण केवल सुदामा नहीं है, ब्राह्मण चाणक्य भी है, ब्राह्मण चंद्रशेखर भी है और ब्राह्मण पेशवा बाजीराव भी है। सुदामा और कृष्ण वंशजों का साथ बहुत पुराना है, सदियों का साथ है, लेकिन अखिलेश जी यहाँ भी आप चूक रहे हो, आप भगवान कृष्ण के वंशज ही नहीं हो। यदि आप भगवान कृष्ण के वंशज हो तो चलिए मथुरा चलिए ना, शुरुआत करिए, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को कलंक से मुक्ति दिलाइए। हिम्मत है आपके अंदर? नहीं, केवल आप लोगों को ठगना ही जानते हो। आप पीसे चाहे पंडित बताओ, चाहे पीसे पिछड़ा, लेकिन पीसे आपके लिए केवल और केवल परिवार ही है और उसमें भी शिवपाल नहीं, आपके बाद अर्जुन का ही नंबर आना है।
0: समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले का विस्तार साफ तौर पर बीजेपी के हिंदुत्व वोट बैंक में सेंध की कोशिश नजर आती है। समाजवादी पार्टी राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर संसद में अनोखा प्रदर्शन कर रही है, तो उधर अखिलेश यादव ने अयोध्या से पवन पांडे को समाजवादी पार्टी का पहला टिकट देकर अपने इरादे जाहिर किए हैं। अखिलेश को काउंटर करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने बार बार समाजवादी पार्टी का अयोध्या मुद्दे पर पुराना स्टैंड गिनाया है।
5: जो राम भक्तों से अयोध्या की गलियों को लौलुहान कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं।
0: यूपी के चुनावों में जाति कभी जाति नहीं, लेकिन पीडीए की पॉलिटिक्स और उस पर बीजेपी के पलटवार से मुकाबला और दिलचस्प हुआ है। आज तक ब्यूरो।
2: जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है।
6: समाजवादी पार्टी अराजकता, गैर लोकतांत्रिक और पूज्य जनेश्वर मिश्र जी के सिद्धांतों से भटक चुकी है। पूज्य जनेश्वर मिश्र जी ने कहा था कि जब सदन चल रहा हो तब लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जनता की आवाज को सदन में उठाना चाहिए। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से पूज्य लोहिया जी और पूज्य जनेश्वर मिश्र जी के सिद्धांतों से भटक चुकी है। वो केवल व्यक्ति

0: वादी पॉलिटिक्स कर रही है और खासकर अराजकता, गुंडई और पूरी तरह से प्रदेश को दंगों में झोंकने वालों को समर्थन करने वाली पार्टी बन चुकी है। प्रदेश की जनता उन्हें नकार चुकी है और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ करके चल रही है।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

आंदोलनकारी छात्रों के डेलीगेशन की सोरेन सरकार के साथ बातचीत संभव, वार्ता की जगह पक्की, तारीख पर सस्पेंस, प्रदर्शनकारियों से राहुल के बाद एक्शन का भरोसा। संसद में जबरदस्त गतिरोध के बीच अगले हफ्ते तक एफसीआरए बिल पर सहमति बनाने की तैयारी, आज भी हंगामे के आसार, डेडलॉक खत्म करने पर किरेन रिजिजू और राहुल गांधी में फिर से बातचीत। एनडीए के नए लोकसभा सांसदों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की ब्रेकफास्ट पर हो रही है मुलाकात, टीएमसी के 20 बागी और शिवसेना उद्धव गुट के बागी 6 सांसद रहेंगे मौजूद। युवाओं से बातचीत में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा जेन ज़ी पर आंख मूंद कर भरोसा करता हूं, आंदोलन का मतलब राष्ट्र विरोध नहीं, संवाद को लेकर कहीं ना कहीं हुई चूक। यूपी में कावड़ियों पर मौलाना का विवादित बयान, लखनऊ के थाने में बीजेपी एमएलए ने की शिकायत, कावड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी बोले उपद्रवियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी।

सुपर हिट शो 9 बज गए में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिना ब्रेक के आपके पसंदीदा ब्रेकफास्ट न्यूज शो में देश और दुनिया की बड़ी और जरूरी खबरों के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। खबरें रफ्तार से होंगी और विस्तार से भी, लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमेशा की तरह बुलेटिन की झलकियों पर एक नजर डाल देते हैं। रांची में धरने के 14 दिन बाद सरकार छात्र संवाद में कौन सा पेज अभी भी फंसा हुआ है और आज की टॉप स्टोरी यही रहेगी, बस थोड़ी देर में डिटेल आपको देंगे। साथ ही यूपी चुनाव में क्या जेंजी निर्णायक होंगे, जेंजी को साधने में कैसे जुटी है योगी सरकार, इस पर भी करेंगे बात। उत्तराखंड में मूसलाधार आफत मची हुई है, नदियों में उफान है, लोग इससे परेशान है, पूरी डिटेल आगे आपको देंगे। और आधे घंटे बाद यानी सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। तो शुरुआत करते हैं रांची में चल रहे छात्र आंदोलन की खबर से।

0: इस वक्त की एक बड़ी खबर, रांची में आज छात्रों को क्या एक अच्छी खबर मिल सकती है। दरअसल जयपाल सिंह स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी में भ्रष्टाचार के विरोध में छात्रों के आंदोलन का 14वां दिन है और खबर यह है कि आज सरकार और छात्रों के 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में बातचीत हो सकती है। हालांकि वार्ता शुरू होने से पहले सरकार और छात्रों के बीच इस बात पर मतभेद उभर आए हैं कि बातचीत में कौन कौन लोग शामिल होंगे। सरकार सिर्फ छात्रों से वार्ता पर तैयार है, जबकि छात्रों ने अपनी टीम में पत्रकार वकील को भी शामिल कर रखा है। कल रात करीब 11:15 बजे जयपाल सिंह स्टेडियम में छात्रों के बीच एसडीओ और एसडीएम पहुंचे थे और उन्होंने छात्र प्रतिनिधियों से वार्ता की। ऐसे में अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सरकार केवल छात्र प्रतिनिधियों से ही बातचीत करने को तैयार है। तो आंदोलनकारी छात्र अपने पहले से तय 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल पर अड़े रहे, जिसमें पत्रकार और अधिवक्ता को भी शामिल रखने की मांग दोहराई गई। दोनों पक्षों के बीच देर रात तक बातचीत का दौर चलता रहा, लेकिन प्रतिनिधि मंडल की संरचना पर सहमति नहीं बन सकी है। इसके चलते वार्ता आगे नहीं बढ़ सकी। इस बीच खबर यह भी है कि छात्रों ने ये मांग रख दी है कि वो सीएम की मौजूदगी में ही बात करेंगे। इधर भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं और निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर छात्रों का धरना अभी भी जारी है। 14वां दिन है। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी प्रमुख मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। आशुतोष हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। आशुतोष, क्या लगता है आज बातचीत होने की संभावना कितनी लग रही है, कौन कौन उसमें शामिल होने वाला है, अपडेट दीजिएगा।
1: 8 छात्र हैं और 3 विशेषज्ञ हैं, कुल 11 लोगों की टीम है। हालांकि अभी जो सस्पेंस मतभेद है वो इस बात पर है कि बातचीत मंत्रियों के साथ हो या सीएम के साथ। छात्र कह रहे हैं ठीक है मंत्रियों से कर लेंगे, लेकिन सीएम की मौजूदगी जरूरी है। 14वां दिन है, प्रदर्शनकारी अभी भी टिके हुए हैं। तड़के सुबह से बहुत सारे लोग हैं जो यहां रुके रहते हैं, इसमें आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और उधर मंच पर कई छात्रों का अनशन भी चल रहा है, क्योंकि अनशन भी है और इसी वजह से सरकार पर यह दबाव है कि अनशन खत्म तब नहीं होगा जब तक कि बातचीत नहीं होती है। अब सरकार की ओर से प्रस्ताव है कि 4 का प्रतिनिधि मंडल है। अब ऐसे में एक है कि जो कोऑर्डिनेटिंग अधिकारी हैं, ये माना जा रहा है कि 1 से 2 बजे के बीच, हालांकि इस बीच जो आईसा है, एक जो प्रदर्शनकारियों को समर्थन दे रहा है आईसा छात्रों का ग्रुप, वो कह रहा है कि हम विधानसभा मार्च करेंगे 11 बजे, तो वो मार्च निकालने की भी तैयारी में है। इस बीच सीजेपी के जो नेतृत्व है वो भी आज यहां पहुंचने वाली है, लॉजिस्टिक मदद पहुंच रही है। लोग यहां पर, हमने ऐसे लोगों को देखा जो यहां पर कह रहे हैं लाइए क्यूआर कोड दीजिए, हम आपको पैसे देंगे, ऑनलाइन फंड करना चाहते हैं। लोगों का समर्थन जिस तरह बढ़ा है, तो सरकार ये समझ रही है कि अब ये सिर्फ रांची झारखंड नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान इसमें शामिल हो चुका, और इसी दबाव के चलते ये उम्मीद मानी जा सकती है कि तनाव कम करने के लिए ये बर्फ पिघले और ऐसे में सरकार बातचीत को तैयार हो। एक संभावना ये जरूर दिखाई दे रही है कि मंत्रियों के साथ जब ये बातचीत हो, तो हो सकता है मुख्यमंत्री खुद वहां मौजूद रहे। छात्रों ने यह भी कहा है कोई और हमारे पीछे नेगोशिएशन नहीं करेगा, जो बातचीत होगी छात्र ही अपनी बात कहेंगे, मेमोरेंडम देंगे, और कई सारी ऐसे शर्तें हैं जिसमें डाइल्यूशन भी हो सकता है। वो चाहते हैं एक आश्वासन ये हो कि परीक्षा जो है हुई है, नतीजे उसे रद्द कर दिए जाए, जब ये रद्द हो जाएगी दोबारा परीक्षा हो जिसमें पूरी पारदर्शिता हो।
0: ठीक है आशुतोष, अगर यहां आपके पास लौटूंगी मैं। तो आखिरकार रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना दे रहे छात्रों को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भी समर्थन मिल गया है। कल राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारी छात्रों से फोन पर बातचीत की और उनको भरोसा दिलाया है कि उनकी मांगों को उठाया जाएगा।
2: झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनको सपोर्ट करें। देखिए स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है और अलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ओप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो।
0: तो रांची में छात्रों का आंदोलन धीरे धीरे जोर पकड़ता जा रहा है। यह आंदोलन अब पूरे देश का ध्यान खींच रहा है। किस तरह से खराब मौसम के बीच भी छात्र डटे हुए हैं, ये रिपोर्ट देखिए।

0: झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों का आंदोलन 14वें दिन में प्रवेश कर गया है। आंदोलनकारी हर नौजवान के दिल में बस एक सवाल कि परीक्षा में करप्शन से आजादी कब मिलेगी, कब सिर्फ योग्यता के आधार पर सुनिश्चित होगी बहाली।
1: हम एक बात बोलना चाहते हैं, कोई भी स्टेट में कोई भी सेंटर में जब इलेक्शन होता है पूरा पूरी स्ट्रॉन्ग रूम बनाया जाता है, एक महीना में रिजल्ट देता है, पूरा काउंटिंग एक महीना में रिजल्ट देगा सर, एक महीना में, उसमें कुछ धांधली नहीं होगा। एग्जाम में बार बार धांधली क्यों हो रहा?
0: चुनाव में रिजल्ट आते ही धांधली नहीं होती, फिर पेपर लीक क्यों हो जाता है? रांची में प्रदर्शन कर रहे ये छात्र अपने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछना चाहते हैं कि झारखंड में कोई भी परीक्षा ठीक से क्यों नहीं हो पाती?
2: एक कांस्टेबल का परीक्षा अच्छा से झारखंड सरकार ले नहीं सकती है। अरे मैट्रिक का, यहाँ मैट्रिक इंटर का अभी परीक्षा होता है ना, उसका भी पेपर लीक हो जाता है। पैसा से लोगों को एक दिन दो दिन पहले पेपर मिल जाता है उसका सर।
0: आसमान से बरसती बारिश के बीच रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम के खुले मैदान में जमीन पर बैठे युवा 14 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। खराब मौसम के बावजूद जेपीएससी जेएससीसी परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में आंदोलन कर रहे छात्रों के हौसले बुलंद थे।
3: ये दरअसल नई पीढ़ी है, ये इस तरह के हंगामे नहीं करती। इनके हंगामे इनके पोस्टर में बैनर में ये एआई के नारों में पीछे लगा रखा है ना उन्होंने, कुछ पुच्चू जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म कर दो ना। अब इस तरह के नारों में इतना दम है कि इससे आप कहते ना कि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो गई। ये नई पीढ़ी है, ये हंगामा नहीं करती, ये बस शांति से बैठ के अपने नारों से सरकार हिला देती है। और संभवतः इसीलिए सरकार को अपने मंत्रियों को बना भेजना पड़ा है। यहां से 10 छात्र हैं, उनका डेलीगेशन भी तैयारी कर रहा है जाने के लिए, और वो चाहते हैं कि सारी बातचीत कैमरे पर हो।
0: धरना पर बैठे हर छात्र का अपना दर्द है। ब्रिज किशोर का दर्द सुनिए, जो जेपीएससी के लिखित परीक्षा पास करके इंटरव्यू तक तो पहुंचे, लेकिन वहां से आगे नहीं बढ़ पाए।
4: मैं ग्रेजुएट हुआ 2018 में, मैं ग्रेजुएट हुआ। उसके बाद पिताजी से बात हुई कि मैं आगे क्या करूं, तो पिताजी का बड़ा शौक था कि सिविल सेवा का तैयारी करो, और आसपास में कई सारे भैया लोग भी सिलेक्टेड थे, तो उनको देखो मैं भी तैयारी शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे इस दलदल में घुसते चला गया, समय निकलते जा, आज समय मैं 29 के एज में पहुंच चुका हूं। आज मेरे पास कोई भी एक जॉब नहीं है, नहीं तो कोई एक सोशल सिक्योरिटी मेरे पास।
0: साल 2018 में ग्रेजुएट हुए ब्रिज किशोर जैसे छात्रों की झारखंड में कमी नहीं है, जिनकी सरकारी नौकरी की तैयारी में उम्र निकली जा रही है, लेकिन सरकार परीक्षा तक ठीक से नहीं करवा पा रही। वही दावा है कि मिली भगत करके बाहरी छात्र परीक्षा पास करके नौकरी ले जा रहे हैं।
4: कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहा हूँ, उसमें या तो पेपर लीक हो जाती है, या तो पर्दे के पीछे इस तरह का सेटिंग हो जाती है, तो पूरा पूरा सर हौसला ही टूट चुका है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, करूँ तो करूँ क्या, मतलब आगे कुछ भी समझ नहीं, पूरा ब्लैंक हो चुका है, आगे का भविष्य पूरा का पूरा ब्लैंक हो चुका है।
0: झारखंड में नौजवानों की एक पूरी पीढ़ी परीक्षा में धांधली से बेरोजगार होने का दंश झेल रही है, लेकिन नाइंसाफी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही।
3: इन परीक्षाओं के बाद हुआ क्या?
5: इन परीक्षाओं के बाद बस पेपर लीक हुआ है, क्या कट ऑफ है कुछ पता चल नहीं पा रहा है। 25 साल हो गया, एक पीढ़ी का तो मतलब उम्र पार हो गया, उन्होंने भी देखा अपने सामने नौकरी को बिकते हुए।
0: रांची में छात्रों का यही दर्द उन्हें धरना स्थल से हिलने नहीं दे रहा है, जहां जंतर मंतर की तरह जेन जी की भाषा में नारे और व्यंग का इस्तेमाल हो रहा है।
3: अब तो नौकरी पक्की है, फिर क्या होता है पेपर लीक, इतना आत्मविश्वास अच्छा नहीं होता। उपहास कहते ना कि इतने गंभीर विषय को भी ऐसा उपहास बनाया कि मार सीधे सिस्टम को लगती है। पेपर मत बेचो प्लीज, क्या लिखा देखिए, जेन जी बाबू पेपर मत बेचो प्लीज। जेंजी की जो भाषा है ना इन बच्चों की, वो भाषा अपनी इतनी क्यूट है, इतनी प्यारी है, आप समझ रहे हैं, इन शब्दों में इतनी मार है जो सिस्टम सरकार पर सवाल उठाती है। और इसीलिए हमने देखा कि ये पीढ़ी जब आंदोलन पर उतरती है, इसकी आवाज बहुत दूर तक पहुंचती है। झारखंड में रांची में इस प्रदर्शन स्थल पर लोकेंद्र के साथ मैं आशुतोष मिश्रा आज तक।
6: संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी छात्रों के प्रदर्शन को लेकर कहा है, वहीं जेंजी सुर्खियों में है। तो कल संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जेंजी से बात की और कहा कि जेंजी ज्यादा ईमानदार पीढ़ी है।
0: दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक मुक्त परीक्षा को लेकर जेन जी ने जो अलग जगाई, उसकी गूंज अब तक सुनाई दे रही है।
7: I believe in the Shatabdi year, the 100th year, for the first time in terms of young people, in the form of a question answer session, none other than the chief of RSS, Shri Mohan Bhagwat ji.
0: Ye Mumbai ki tasveer hai. Mauka tha India International Movement to Unite Nations, yani IIMUN ki 15th varshgaanth ka. Is mauke par Sangh Pramukh Mohan Bhagwat ne Gen Z aur Gen Alpha ke saath samvad kiya aur khulkar apni baat rakhi.
8: अभी जो हुआ है ग्रीवंस तो जेनाइन है. भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा इसलिए बात होती है. तो डायलॉग होना चाहिए. डायलॉग के बाद नहीं होता तो क्या करना बात की बात.
0: भागवत की ये बातें जेन जी के आंदोलन पर सवाल उठाने वालों को भी करारा जवाब है.
8: अगर जेन जी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रहे, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला.
9: बिल्कुल
8: उसको ठीक करना चाहिए.
9: तो इसमें आप मानेंगे कि संवाद यदि पहले से शुरू हुआ होता तो ये बाद में विषय ज्यादा ऊपर जाता ही नहीं.
8: जो नहीं होना चाहिए वो जब होता है तो कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जाती, तभी होता है. किसकी है क्या है ये अलग बात है, लेकिन कमी तो रही है, ठीक हो जाएगी.
0: उन्होंने जेन जी को एंटी नेशनल कहने पर भी आपत्ति व्यक्त की. उन्होंने कहा कि जेन जी अपने ही लोग हैं, अपनी ही अगली पीढ़ी है.
8: जेन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं
10: जी.
8: अपने लोग है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है
10: जी. सर
8: इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला, अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए. वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है. वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है, ये होता है. तो होना चाहिए. और जेन जी वगैरह ऐसी है ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता.
9: आप क्या मानते हैं?
8: विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब जब पूछा गया तब मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है.
9: अरे वाह बढ़िया है.
8: और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है.
0: संघ प्रमुख भागवत की बातें जेन जी के सीधे दिल में उतर आई.
11: मुझे लगता है हमारे जो सारे सवाल थे, जो हम सबके माइंड्स में सवाल आते हैं, सब सवालों के आंसर बहुत अच्छे दिए गए, सब सवाल पूछे भी गए, मुद्दे उठाए गए, वो बहुत अच्छी बात है.
12: इन बातों से हमको बहुत अच्छा लगा कि दिख रहे कि हमारे बारे में सोचा जा रहा है, जेन जी के बारे में सोचा जा रहा है, और उनने अपनी राय बहुत सीधी तरीके से पेश की और हम जेन जी उनसे बहुत खुश है. उन्हें सभी सवालों के जवाब बहुत अच्छे से.
0: नीट पेपर लीक के खिलाफ देश भर में प्रदर्शनों के बाद इसे संघ का युवाओं के साथ सबसे अहम संवाद माना जा रहा है. जंतर मंतर पर जेन जी के आंदोलन की वजह से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था. ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक.
6: तो वहीं यूपी में अगले साल यानी 2027 में चुनाव है और अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी सरकार ने भी अपने अभियान को तेज कर दिया है. दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई युवा नीति के जरिए यूथ वोट बैंक को साधने की तैयारी की है. एक दिन पहले सीएम योगी ने नई युवा नीति को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और इसमें उन्होंने कहा है कि नई युवा नीति युवाओं की आकांक्षाओं और जरूरतों के अनुरूप तैयार की जाएगी. उसके लिए युवाओं से राय भी ली जाएगी. नई नीति में शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी जाएगी और राज्य सरकार का फोकस रोजगार बढ़ाने, खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने और युवाओं को नशे से दूर रखने पर होगा. कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए. युवा नीति को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई. कुमार अभिषेक, क्या लगता है युवाओं को साधने के लिए क्या तैयारी उसमें की गई होगी?
13: बिल्कुल पूजा, देखिए जिस तरीके का एजेंसी मूवमेंट हुआ खास करके पेपर लीक के बारे में को लेकर के, उसके बाद से ही 2027 को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी. और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हालांकि पहले से ही यूथ पॉलिसी की बात कर रखी थी, लेकिन इस एक मूवमेंट ने सभी सरकारों को सोचने पर मजबूर किया है. इंटीग्रेटेड यूथ पॉलिसी ये योगी आदित्यनाथ लेकर के आ रहे हैं और जल्द ही इसमें 16 से 35 साल के जितने छात्र छात्राएं हैं उनको जोड़ने की कवायद शुरू की जाएगी. पूरा का पूरा फोकस उनके अलग अलग डेवलपमेंट पर है, चाहे चाहे खेल को देख लें, चाहे रिसर्च से जुड़े हुए स्कॉलर हों, इसीलिए 16 से 35 साल का ये एक रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त ये किया जा रहा है, अब चुनाव का भी माहौल शुरू हो गया है। गांव में खेल मैदान, ब्लॉक में मिनी स्टेडियम और मंडल लेवल पर यानी कि कमिश्नरी लेवल पर बहुत हाई जिसे कह सकते हैं बहुत शानदार खेल कॉम्प्लेक्स, इसकी परियोजना है। इसके अलावा यूथ को जोड़ने, अभ्युदय कोचिंग जैसे तमाम चीजों से जोड़ने की कोशिश की गई है। तो आने वाले वक्त में ये इंटीग्रेटेड यूथ पॉलिसी योगी सरकार लेकर के आ रही है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कि ये जरूरी इसलिए हो गया क्योंकि जेंजी, जिस तरीके से कल मोहन भागवत ने बात की, बीजेपी को भीतर से लगने लगा है कि अगर यूथ इस बार किसी भी तरीके से नाराज हो गया तो उसका बहुत खराब इम्पैक्ट आएगा।
6: चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। वहीं संसद के दोनों सदनों में विपक्षी हल्ला बोल जारी है। मॉनसून सत्र में अब तक सत्र हंगामेदार रहा। कल भी विपक्षी दलों ने गृहमंत्री अमित शाह से जवाब की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर अड़ा हुआ है। वहीं अब परिसीमन और एफसीआरए बिल को लेकर भी विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति पर विचार कर रहा है। इस बीच संसद में जारी गतिरोध को दूर करने के लिए किरेन रिजिजू और राहुल गांधी में कल फोन पर बातचीत हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों में सदन में गतिरोध खत्म करने के लिए बात हुई। मॉनसून सत्र में तीसरी बार दोनों के बीच ये बातचीत हुई है। लेकिन माना जा रहा है कि आज भी संसद में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि दोनों में आखिर क्या बात हुई है। सूत्रों के मुताबिक संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राहुल गांधी के बीच बातचीत हुई। तीसरी बार बात हुई है। परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक का जिक्र इसमें किया गया। दरअसल रिजिजू ने राहुल गांधी से कहा है कि परिसीमन का समर्थन मिलने से महिला आरक्षण विधेयक लागू करने का रास्ता आसान होगा। उन्होंने ये भी चिंता जताई है कि अगर महिला आरक्षण लागू नहीं हुआ तो महिला समाज में नाराजगी बढ़ सकती है। इस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया। राहुल गांधी ने कहा कि वो पहले कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, फिर कांग्रेस सरकार को अपना रुख बताएंगे। तो ये दोनों की बातचीत हुई है।
10: बात कर रहे राहुल गांधी जी से, मेरा अच्छा बात हुआ और एक विषय हमने रिक्वेस्ट किया है और बाकी विषय में भी बात किया है। हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस और बाकी अपोजिशन पार्टी से हम लगातार बातचीत करते रहे हैं और तालमेल करके काम करें। हम एक दूसरे के विरोधी हैं, दुश्मन तो नहीं है ना, तो देश हित में हम सब मिलके काम करें। लेकिन ऐसा चित्र दिखाते हैं बाहर में कि हम बिल्कुल पार्लियामेंट चलने ही नहीं देंगे, तो इसका नुकसान किसका होगा।
6: तो कल राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच भी जमकर तकरार हुई। रिजिजू ने आरोप लगाया है कि खड़गे हर रोज एक ही बात कर रहे हैं। इस पर खड़गे बुरी तरह से भड़क गए। देखिए,
14: हर दिन खड़गे जी खड़े होते हैं, जो लिख के लाते हैं सेम चीज पढ़ने लग जाता है। बार बार उसको आप मौका देते हैं चेयरमैन सर और खड़गे सर सेम चीज बोलते हैं। ये रेपुटेशन है और ये रूल हमारे विधेयक ऑपरेशन के लिए। और सर, कांग्रेस के ये नए एक सदस्य आए हैं, इनके नाम है पवन खेड़ा। इनको अभी मैदान स्पीच भी नहीं हुआ, अभी मैदान स्पीच भी नहीं हुआ, पहले रूल पढ़ने चाहिए
15: अब रिजू जी से मुझे सीखना पड़ रहा है। अरे रूल मैं भी ले रहा ना, और आपके चेंबर में आके बोलते हैं रोज वही लिख के आकर पढ़ते हैं। ये अगर रूल्स नहीं पढ़ूंगा, अगर मेरा मैटर अगर नहीं पढ़ूंगा, क्या तुम डीएसओ में पढ़ो? अरे इट इज माय राइट What to speak, when to speak, how to speak. This is the rule book. And this rule book, what it says? You are insulting my member. And Pan Khera, you took his name and you are insulting him.
6: हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, संसद में खड़गे तो भड़के हैं, लेकिन जो राहुल गांधी और किरेन रिजिजू की बातचीत हुई है, क्या लग रहा है कि गतिरोध टूटेगा संसद में?
16: देखिये, क्योंकि इस संसद सत्र के अंदर तीसरी बार जो है उनकी राहुल गांधी से मुलाकात हुई है, दो बार उन्होंने उनके कमरे में जाके, जो नेता प्रतिपक्ष का कमरा है वहां बातचीत की है, और एक बार टेलीफोनिक बातचीत हुई है। और राहुल गांधी ने एश्योरेंस दिया है कि डिलिमिटेशन पर जो है इंडिया ब्लॉक का जो भी व्यू होगा उन सभी नेताओं से वो बात करेंगे और उसके बाद जो है संसदीय कार्य मंत्री को बताएंगे। लेकिन इतना जरूर है क्योंकि डेडलॉक बना हुआ है, जब बुधवार को बातचीत हुई थी राहुल गांधी के साथ किरेन रिजिजू की, तब उन्होंने ये कहा था कि गृह मंत्री आके इस्तीफा दे और राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर जो है वो चर्चा हो, तब सदन की कार्रवाई जो है उस सुचारू रूप से चल सकती है। लेकिन डिलिमिटेशन पे भी उन्होंने ये कहा था कि मैं अपना रुख जो है वो पार्टी के अंदर बातचीत करके आपको स्पष्ट कर दूंगा। और कल फिर से बातचीत हुई, तो एक तरीके से सरकार लगातार जो है वो ये कोशिश कर रही है कि सदन के अंदर बना हुआ जो गतिरोध है वो खत्म हो। लेकिन गतिरोध खत्म करने के लिए जो है सरकार के साथ साथ विपक्ष को भी जो है दो कदम पीछे हटना पड़ेगा, एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं आप जब नेगोशिएशन पर होते हैं तो आप एक कदम आगे बढ़ते हैं, दो कदम पीछे जाना पड़ता है। सरकार की तरफ से पहल हुई है, विपक्ष की तरफ से एश्योरेंस दिया गया है कि वो बातचीत करके जो है विपक्ष का मत जो होगा वो बताया जाएगा। आप देखना ये है कि क्या सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल पाएगी या विपक्ष उसी तरीके से उस मांग को लेकर अड़ा रहेगा कि गृह मंत्री आए और जवाब दे और उसके साथ साथ राम मंदिर जैसे मुद्दे पे चर्चा हो जाए। और एफसीआरए बिल जिसको लेकर विपक्ष के कई दलों को जो है नाराजगी है, उसको लेकर एक कंसेंसस बनाने की कोशिश जो की जा रही है गृह मंत्री के द्वारा। कल उन्होंने मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ बातचीत की, कई क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ जो है वो बातचीत हुई है। उसके साथ साथ जो है ये माना जा रहा है कि 12 तारीख को जो है उसकी अरे बिल जो है लोकसभा में जो है
6: देखने वाली बात होगी, संसद में सुचारू रूप से आज कार्रवाई चल पाएगी कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बात इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी के नए संदेश की। हैंडलूम डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह संदेश जारी किया है, उन्होंने लोगों से हैंडलूम डे मनाने और ज्यादा से ज्यादा हैंडलूम खरीदने की अपील की है।
17: साथियों, 1905 7 अगस्त हमें भूलना नहीं है। 7 अगस्त 1905 को देश की आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया, मैं आज आग्रह करता हूं 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है। हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है और हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार जो अपने हाथों से अपने छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं और नई नई वेराइटीज होती है, आप देखिए ना क्या कुछ नहीं है। और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम के वेराइटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो। आइए 7 अगस्त हैंडलूम डे, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
6: तो बीजेपी में राहुल गांधी का पसंदीदा नेता कौन है, इसका जवाब खुद राहुल गांधी ने दिया है। दरअसल आजकल राजनेता इंस्टा खेल रहे हैं और इसी कड़ी में राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर आस्क मी एनीथिंग शुरू किया, जिसमें किसी ने उनसे प्रश्न पूछा। सुनिए राहुल गांधी ने उसका जवाब क्या दिया।
18: कैप्टन अमरिंदर सिंह, डेफिनेटली आई गेट अलॉन्ग विद हिम, ही इज कूल एंड ही इज एन एक्सपर्ट ऑन मिलिट्री हिस्ट्री, सो आई लाइक हिम क्वाइट अ लॉट। हेलो अंकल अमरिंदर।
6: और अब खबर यूपी में जारी कावड़ यात्रा से जुड़ी हुई। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कुछ कावड़ियों को आतंकवादी बता दिया है और ऐसे ही भड़काऊ बयान को लेकर बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने मौलाना के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है।
19: सावन के पवित्र महीने में कांवड़ यात्रा चल रही है और उसी यात्रा के बीच साजिद रशीदी का अपमानजनक और भड़काऊ बयान आया है। ऐसा बयान जिसे लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है।
20: क्या जो लोग सड़कों पर बैठकर भांग मसल रहे हैं वो शिव भक्त हैं? क्या जो लोग सड़कों पर बैठकर शराब पी रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं, क्या वो शिव भक्त हैं? क्या जो लोग पुलिस वालों को वर्दी में होते हुए मार मार कर अधमरा कर दें वो शिव भक्त हैं? क्या वो लोग जो बच्चों की वैन जो स्कूल जा रही थी उसके शीशे तोड़ दें, बच्चों को इंजर्ड कर दें, वो शिव भक्त हैं? ये शिव भक्ति है, ये कांवड़ है? मैं ऐसे लोगों को नशेड़ी, भंगेड़ी, लूटपाट करने वाला और आतंकवादी तक बोलता हूं।
19: साजिद रशीदी ये ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। मौलाना के ऐसे विवादित बयान को लेकर बीजेपी बौखलाई हुई है। कांवड़ियों को नशेड़ी, भंगेड़ी और आतंकवादी बताने वाले बयान के विरोध में मामला अब पुलिस तक पहुंच गया है। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली पहुंचे और मौलाना के खिलाफ तहरीर दी। उन्होंने आतंकी वाले बयान को लेकर पलटवार भी किया।
21: अब बहुत हो गया है ये मौलाना, अगर कांवड़िए खड़े हो गए तो मौलाना की पीढ़ियां नहीं बचेंगी। और ये वही लोग हैं जिनको पाकिस्तान जाना चाहिए था। ये देश धर्म के आधार बटा था कि जो यहाँ राम का नाम लेंगे, सनातन संस्कृति के अनुसार रहेंगे, उनका सम्मान होगा, उन्हें सारी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन अगर सनातन का अपमान करेंगे तो उनके लिए पाकिस्तान बना था।
19: नंद किशोर गुर्जर ने कहा है कि कांवड़ियों को आतंकवादी कहना सनातन का अपमान है। उन्होंने मौलाना पर FIR दर्ज कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने की मांग की और कहा है कि मौलाना को ऐसे बयान के लिए फांसी होनी चाहिए। आशीष श्रीवास्तव के साथ संतोष कुमार शर्मा, लखनऊ आज तक।
6: अब खबर उत्तराखंड की, जहां मौसम की जबरदस्त मार पड़ रही है। लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाके ऐसे हैं जहां पर स्थिति गंभीर हुई है। नदियों में उफान है तो कहीं पर पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की वजह से मुसीबत बढ़ गई है।
22: अलकनंदा नदी का ये रौद्र रूप देखिए। सैलाब का रौद्र रूप ऐसा है जिसे देखकर जिंदगी सहमी हुई है। ये तस्वीरें पौड़ी की है जहां लगातार बारिश हो रही है। इसका साफ असर अलकनंदा के जलस्तर पर दिख रहा है। नदी कई जगहों पर खतरे के निशान के आसपास या उसके ऊपर बह रही है, इसे लेकर हाई अलर्ट है। नदी किनारे रहने वालों को प्रशासन लगातार चेतावनी दे रहा है कि खतरे से दूर रहे। उत्तरकाशी में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार भूस्खलन और मलबा आने से बार बार बंद हो रहे हैं। कांवड़ यात्रा के बीच गंगोत्री धाम से गंगा जल लेने वाले कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में सड़क धंसने से यात्रियों और कांवड़ियों की परेशानी बढ़ गई है। मूसलाधार बारिश का संकट टिहरी में भी दिख रहा है। गंगा सहित अन्य नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालात ये हैं कि प्रशासन हाई अलर्ट मोड में है। नदी किनारों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। लाउड स्पीकर से श्रद्धालुओं, कांवड़ यात्रियों और स्थानीय लोगों को लगातार आगाह किया जा रहा है। उधर कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी का विकराल रूप दिख रहा है। लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर नदी के किनारों तक खतरा बढ़ गया है। वहीं लैंडस्लाइड की वजह से कई रास्तों पर मलबा ही मलबा दिखा। वहीं विकास नगर के जौनसार बाबर में भी कुदरत के कहर का खतरा दिखा। वहां हीरपुर क्वानू मीनस मार्ग पर उस वक्त हड़कंप मच गया जहां सेब से लदा एक ट्रक अचानक उफनते नाले के मलबे में फंस गया। फिर तो वहां दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। हालात ऐसे हो गए कि ट्रक को निकालने के लिए जेसीबी मशीन का सहारा लेना पड़ा। आज तक ब्यूरो।
6: 9 बज गए हैं, बिना ब्रेक की खबरें जारी हैं, लेकिन आगे पढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर।

सोरेन सरकार और छात्रों के बीच बातचीत की तारीख पर सस्पेंस बरकरार। वार्ता की शर्तों पर फंसा पेच, आंदोलनकारियों की मांग। सीएम से बातचीत में वकील और पत्रकार भी शामिल होंगे।

14 दिन बाद राहुल गांधी ने रांची के आंदोलनकारियों से की 3 मिनट की बात, एक्शन और राज्य सरकार से मशवरे का दिया भरोसा, नेता विपक्ष को प्रयागराज जाने की सशर्त मंजूरी। संसद में जबरदस्त गतिरोध के बीच अगले हफ्ते तक एफसीआरए बिल पर सहमति बनाने की तैयारी, परिसीमन बिल पर डीफेक का रुख साफ नहीं, कहा हम पहले से विरोध में, आज भी हंगामे के आसार। एनडीए के नए लोकसभा सांसदों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की ब्रेकफास्ट पर हो रही है मुलाकात, टीएमसी के 20 बागी और शिवसेना उद्धव गुट के बागी 6 सांसद रहेंगे मौजूद। युवाओं से बातचीत में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा जेन ज़ी पर आंख मूंदकर भरोसा करता हूं, आंदोलन का मतलब राष्ट्र विरोध नहीं, संवाद को लेकर कहीं ना कहीं हुई चूक।

रांची में 14वें दिन भी छात्रों का प्रदर्शन जारी। देश भर से मिला समर्थन, स्विगी जोमैटो से पहुंच रहा है खाना, लगाया गया मेडिकल कैंप। रांची में सरकार से वार्ता पर सस्पेंस, 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में पत्रकार वकील को शामिल करने पर अड़े छात्र। रांची में जेपीएससी जेएसएससी छात्रों का आंदोलन जारी, देवेंद्रनाथ महतो बोले सरकार का रवैया बेहद असंवेदनशील। झारखंड में पेपर लीक के मुद्दे पर सियासत तेज, कांग्रेस मंत्री बोले कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ, बीजेपी विधायकों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। रांची में चल रहे छात्र आंदोलन में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारी छात्रों से फोन पर बातचीत की, करीब 3 मिनट तक चली उनकी बातचीत। पीएम मोदी आज नए एनडीए लोकसभा सांसदों से करेंगे ब्रेकफास्ट मीटिंग, प्रधानमंत्री आवास पर शुरू हो चुकी है मीटिंग, 45 पहली बार और नवनिर्वाचित सांसदों से मुलाकात हो। टीएमसी एनसीपीआई और यूबीटी से एनडीए से आए सांसद भी शामिल होंगे, हाल ही में एनडीए में शामिल हुए सांसद भी बैठक का हिस्सा बनेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, सुबह 11:30 बजे होने वाली है मुलाकात। आईडी फेक पर भी सरकार ने सख्ती की, मेटा एक्स और टेलीग्राम के साथ सरकार की नियमित बातचीत जारी, सरकार ने कहा लक्ष्य नया रेगुलेटर बनाना नहीं, मौजूदा कानूनों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना है। संसद में गतिरोध खत्म करने को लेकर रिजिजू और राहुल में फोन पर हुई बातचीत, सूत्रों के मुताबिक परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा, सहयोगी दलों से बातचीत के बाद रुख साफ करेगी कांग्रेस। संसद की कार्यवाही में बाधा डालने पर किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष के वॉकआउट के बावजूद सदन में चर्चा के बाद पास हो रहे हैं बिल। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को मिली मंजूरी, 8 अगस्त को प्रयागराज में तय शर्तों के साथ आयोजन की अनुमति दी गई। छात्रों पर एफआईआर को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, एक्स पर पोस्ट किया लिखा मोदी सरकार की नीति ही युवाओं की आवाज दबाए। राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, कहा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फीस विवाद को लेकर प्रयागराज में मेरे कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की गई, मैं छात्रों के साथ खड़ा हूं। जेनजी के साथ राहुल गांधी का इंस्टाग्राम पर आस्क मी एनीथिंग सेशन, इंस्टा स्टोरी पर यूजर ने पूछा बीजेपी में पसंदीदा नेता कौन, राहुल ने अमरिंदर सिंह का नाम लिया। राहुल गांधी ने नागालैंड, अरुणाचल, बाढ़ और भूस्खलन में मौतों पर जताया दुख, पीड़ित परिवारों के प्रति व्यक्ति की संवेदना। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत यूपी के 75 जिलों में होगा तिरंगा संगीत समारोह, शहीद परिवारों का होगा सम्मान। विधानसभा चुनाव से पहले जेंजी पर योगी सरकार का फोकस, नई युवा नीति बनाने पर सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक, कहा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य। कांवड़ यात्रा पर मौलाना साजिद रशीदी के बयान से विवाद, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन अध्यक्ष ने कुछ कांवड़ियों के आतंकवादी बताया। मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ पुलिस में शिकायत, बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने भड़काऊ बयान का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग। यूपी में हो रही बारिश से होने वाली जनहानि, पशु हानि और आर्थिक हानि का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। हैंडलूम डे पर सीएम योगी का बड़ा कार्यक्रम, बुनकरों को सम्मान और 706 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर हमला, बोले पीडीए के नाम पर ढोंग कर रहे हैं, आपके लोग कर रहे हैं अत्याचार। गाजीपुर की बच्चियों की घटना और अमेठी के प्रेम विवाह मामले का जिक्र करते हुए सपा पर गंभीर आरोप लगाए। सपा नेताओं को अखिलेश यादव की नसीहत, बोले जाति धर्म पर टिप्पणी से बचे, आचरण और वाणी पर रखें संयम। अखिलेश यादव की नसीहत पर बीजेपी का पलटवार, राकेश त्रिपाठी बोले जातिवाद और तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले दे रहे हैं प्रवचन, इनकी राजनीति मजहबी तुष्टिकरण पर आधारित। गोंडा में ब्रजभूषण सिंह का बड़ा बयान, बोले सांसद बनना डिजर्व करता हूं, पार्टी विचार करेगी तो जनता भेजेगी। मुंबई में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जेंजी संघ संवाद, कहा जेंजी का आंदोलन देश के खिलाफ नहीं। युवाओं से बातचीत में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा उनकी शिकायत जायज है। एफसीआरए संशोधन विधेयक पर 12 अगस्त को संसद में हो सकती है चर्चा, अमित शाह से मुलाकात के बाद मिजोरम के सीएम ने दी जानकारी, बिल के विरोध में विपक्ष। 12 अगस्त को सदन में आएगा एफसीआरए बिल, मिजोरम के मुख्यमंत्री ने बिल को लेकर स्थिति स्पष्ट की, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा बिल। एफसीआरए बिल पर कांग्रेस का हमला, अभिषेक मनु सिंह भी बोले ड्रैकोनियन बिल, विपक्ष ने प्रस्तावित कानून को लेकर सरकार पर तीखा निशाना साधा। सितंबर से अभिजीत दीपके का नया प्लान देशभर में शुरू करेंगे क्या बोलती पब्लिक अभियान, लोगों की उम्मीदों और चिंताओं को समझना बताया मकसद। केजरीवाल का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले प्रधानमंत्री अब अपने ही नागरिकों से लड़ रहे हैं, खुद को बचाने के लिए बना रहे कानून। शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला, कहा ममता बनर्जी बंगाल को खत्म करने पर तुली हुई थी, ममता का समर्थन मतलब मोहम्मद अली का सपना पूरा करना। शुभेंदु अधिकारी के बयान से पश्चिम बंगाल की सियासत गर्मा गई। ममता बनर्जी पर शुभेंदु के तीखे आरोप, बयान से बढ़ा सियासी विवाद, विपक्ष और टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज।
दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू, दो सीएजी रिपोर्ट पेश होंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सदन में दिल्ली सरकार से वित्त से जुड़ी रिपोर्ट रखेंगी। दिल्ली विधानसभा में तीन अहम बिल पेश करेगी सरकार, टाइम बाउंड सर्विस, DUSIB संशोधन और बेड एंड ब्रेकफास्ट से जुड़े विधेयक शामिल। चार दिन के सत्र में DERC नियमों और नोटिफिकेशन पर भी चर्चा, ऊर्जा मंत्री आशीष सूद सदन में बिजली नियामक से जुड़े दस्तावेज पेश करेंगे। मॉनसून सत्र का एजेंडा तय, 7, 10 और 11 अगस्त को चलेगी कार्यवाही, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने विधायी कार्यक्रम को मंजूरी दी। दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट को लेकर सियासी नजरें टिकी हुई है, विपक्ष सरकार के बीच कई मुद्दों पर बहस के आसार। 15 अगस्त सुरक्षा को लेकर दिल्ली में एनएसजी का बड़ा मॉक ड्रिल, आज शाम 6 बजे के बाद कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा अभ्यास होगा। JNU स्टेडियम और दिल्ली सचिवालय समेत कई जगहों पर एनएसजी ड्रिल, दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां तैयारियों का लेंगी जायजा। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में मल्टीलेयर सिक्योरिटी प्लान लागू, लाल किले के कार्यक्रम में भी करीब 24,000 मेहमानों की सुरक्षा के लिए 12,000 पुलिसकर्मी तैनात। आतंकी खतरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर, मॉक ड्रिल में कई प्रदर्शन होंगे, टेस्ट, होस्टेज रेस्क्यू, बम थ्रेट और इवैक्यूएशन जैसे हालात पर तैयारियां पर की जाएंगी। दिल्ली में बढ़ी सुरक्षा, मेट्रो स्टेशन और भीड़भाड़ वाले इलाकों पर खास निगरानी, अधिकारियों ने लोगों से अपील की, ड्रिल के दौरान सुरक्षा गतिविधियों से घबराने की जरूरत नहीं। टिहरी गढ़वाल में लैंडस्लाइड, मलबा हटाने का काम जारी, भारी बारिश के बाद सड़क पर जमा मलबा JCB से हटाया जा रहा। टिहरी के पुंडोली गांव में पुल बहा, SDRF ने महिला को किया रेस्क्यू, तेज बारिश से लकड़ी का पुल बह गया, रस्सी के सहारे महिला को सुरक्षित निकाला गया। उत्तरकाशी में बारिश का कहर जारी, गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बंद, भूस्खलन के चलते हाईवे बार बार हो रहा है बाधित। देहरादून में सड़क पर आया मलबा, मलबे में फंसा ट्रक, भारी बारिश के बाद सड़क पर पानी और मलबा आया ट्रक चपेट। हिमाचल प्रदेश में 11 अगस्त तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी, शिमला सोलन समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश। नेपाल में बारिश से गंडक नदी उफान पर, वाल्मीकि नगर बैराज से 2.20 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, बघा के गांव में घुसा बाढ़ का पानी। धौलपुर में जलभराव से स्कूलों पर बार बार लग रहा है ताला, बच्चों का प्रदर्शन जारी। भदोही में पारिवारिक विवाद में पिता ने ली बेटी की जान, क्षेत्र में सनसनी फैली, पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। लखनऊ सीतापुर हाईवे पर चलती कार में अचानक से आग लगने की वजह से एक युवक कार में फंसा, मौत हुई, मामले की जांच जारी। लखनऊ में प्रेम प्रसंग के शक में नाबालिग छात्रा की गला रेत कर हत्या, आरोपी गिरफ्तार, घर में अकेली 17 वर्षीय छात्रा की हत्या से इलाके में सनसनी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के मॉल में युवकों के बीच जमकर मारपीट, लात घूसों के साथ डंडों का भी इस्तेमाल किया गया। मथुरा में हरियाली तीज, हर घर तिरंगा, स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर प्रशासन अलर्ट। राजस्थान के ज्वालोर में पत्थर की खदान रही, मलबे में दबने की वजह से एक युवक की मौत, 3 घायल। पुडुचेरी में भारी बारिश से दीवार गिरी, मलबे में 6 लोगों के दबे होने की आशंका। बेलगावी में 2 करोड़ के इंश्योरेंस के लिए पूर्व सैनिक की हत्या का शक, 3 महीने बाद कब्र से निकला शव। करनाल में वीरू वाल्मीकि हत्याकांड पर बड़ा एक्शन, पुलिस एनकाउंटर में दोनों आरोपी ढेर। पुणे में PG में रहने वाले युवक को लोहे की रॉड से पीटा गया, युवक की बेरहमी से की गई हत्या। दिल्ली के वजीराबाद में खुले नाले में गिरे 3 बच्चे, स्कूली बच्चों की जान खतरे में पड़ी। मुंबई में पार्किंग से गिरी एक कार, CCTV में कैद हुआ पूरा हादसा, कार गिरने के बाद मचा हड़कंप। हरियाणा में चरखी दादरी में थाने के बाहर गैंगवार की घटना, अदालत से पेशी के बाद लौटे युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग। चरखी दादरी गोलीबारी का CCTV वीडियो आया सामने, 3 बदमाश पैदल आए और गाड़ी रुकवा कर कार सवारों पर 10 से 15 राउंड फायरिंग शुरू की। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर में घर के बाहर बदमाश ने की फायरिंग, CCTV में कैद हुई पूरी घटना। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, 2 युवकों की गई जान। अमरनाथ यात्रा से लौट रहे 4 श्रद्धालु सड़क हादसे में घायल हुए, अनंतनाग के अस्पताल में चल रहा है उनका इलाज। तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के पोलाची में युवक की हत्या के बाद शव के साथ सेल्फी लेकर फरार हुआ आरोपी।

के केंद्रपाड़ा जिले में कॉलेज छात्र को बेरहमी से पीटा गया। इंस्टाग्राम पर मैसेज करने पर लड़की के पुरुष मित्र ने बीच सड़क पर पटक पटक कर दी। पालघर में आवारा कुत्तों का आतंक, कई लोगों पर हमला, चार दिनों में 5 से 7 लोगों को बनाया गया शिकार। शिरडी में दुबई के साई भक्त ने मुराद पूरी होने पर चढ़ाया 76 ग्राम सोने से बना राम अक्षर, कीमत करीब 10 लाख रुपए। फरीदकोट में 18 साल के प्रभजोत का कमाल, एआई प्रोग्रामिंग और डिजिटल स्किल्स से युवाओं को बना रहे आत्मनिर्भर। देवगढ़ स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब, भोलेनाथ को जलार्पण के लिए रोजाना भारी संख्या में पहुंच रहे कांवड़िए। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा में नजर आए भव्य हाइड्रोलिक कांवर, करीब 15 लाख रुपए की लागत से तैयार। सहारनपुर के सोरना गांव का कांवड़ मेला बना श्रद्धालु की पहली पसंद, झूलों खिलौने खाने पीने की चीजें बढ़ाई। सीरिया के जर्माना में एक गाड़ी में जोरदार धमाका हुआ, 2 लोगों की मौत, 13 लोग घायल। ईरान और ओमान में होर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने को लेकर बनी सहमति, 60 दिनों के लिए फिर से खुलेगा होर्मुज स्ट्रेट। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि ईरान के साथ परमाणु समझौते में लगेगा वक्त, ईरान के लोग बटे हुए हैं, कुछ लोग शांति चाहते हैं। ईरान के राष्ट्रपति पिज़िश्कियान का बड़ा बयान, कहा सुप्रीम लीडर मोसबा खामेनेई से संवाद करना बेहद ही मुश्किल।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: मुल्तानी को का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी को का कॉफ सिरप।
4: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
5: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
4: छक्का?
5: सब कैशलेस हो गया
4: है।
6: ओला ला भाई मेरा बैट।
7: वो अभी तो ठीक हुआ तू?
6: अभी तो डिस्चार्ज हुआ यार।
8: ओला बैट किसका है?
9: टाटा AIG है तो भरोसा है।
10: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
11: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
12: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
13: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद। लायन कश्मीर हनी,
12: असली शहद असली स्वाद।
14: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
15: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
16: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
3: अगर मुझे इतिहास का कोई एक पल कवर करने का मौका मिलता तो मैं 1999 का करगिल युद्ध चुनती। वो सिर्फ एक युद्ध नहीं था, वो देश के जज्बे की कहानी थी। ऐसे न जाने कितने ऐतिहासिक लम्हों की गवाह रही है इंडिया टुडे। 7 अगस्त को PVR INOX में आई विटनेस टू अ नेशन जरूर देखिए। मिलते हैं महीने।

0: टैक्स पेयर्स के 4200 करोड़ रुपए से बने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन 13 जुलाई को हुआ। दावा यही है कि कानपुर और लखनऊ के बीच एक्सप्रेस की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ेंगी। वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेस वे का तोहफा जनता को मिला है, लेकिन चंद दिनों में धूल फांकते वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेस वे की सच्चाई सामने आ गई। आज नए नवेले एक्सप्रेस वे पर गड्ढे हैं या फिर गड्ढे में एक्सप्रेस वे है, फर्क करना मुश्किल नहीं। सोचिए, नए एक्सप्रेस वे को चंद दिनों में मरम्मत की जरूरत पड़ गई तो आने वाले दिनों में क्या होगा। अब सवाल 4200 करोड़ की लागत से बने एक्सप्रेस वे की गुणवत्ता का है, क्योंकि पहली बरसात में एक्सप्रेस वे की पोल खुल गई। हालात ये है कि 5 जगहों पर एक्सप्रेस वे धस गया है। एक जगह मरम्मत का काम पूरा होता है तो दूसरा गड्ढा नजर आ जाता है, मतलब एक्सप्रेस वे बना है या गड्ढा वे। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का स्याह सच यही है, लेकिन इसी सच्चाई की कीमत आम जनता को चुकानी पड़ रही है। वादा 120 की रफ्तार का था, लेकिन आज आम जनता सरकारी सिस्टम और ठेकेदारों के खेल की वजह से बीच में पिसने को मजबूर है। ये अंधेर गर्दी के गड्ढे नहीं तो क्या है, क्योंकि वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेस वे की कलई खुलने के बावजूद NHAI के अफसर यही दावा कर रहे हैं कि कसूर तो बारिश का है, एक्सप्रेस वे बनाने वाली कंपनी और NHAI का नहीं। इनका नाम है गौतम विशाल, NHAI के रीजनल अफसर हैं। सवाल जवाबदेही तय करने का है, लेकिन जिम्मेदारों ने बिना जांच पूरी हुए फैसला सुना दिया, मतलब जो अब तक होता आया है वही इस मामले में होगा। जांच और एक्शन की दुहाई देकर एक्सप्रेस वे के गड्ढों को NHAI के अफसर गटक जाएंगे, क्योंकि कसूर बरसात का है, क्वालिटी तो 100 आने खरी है। एक्सप्रेस वे को बनाने में घटिया सामान का इस्तेमाल नहीं हुआ, सब कुछ मानकों के हिसाब से हुआ, तो NHAI को पूर्व प्रोजेक्ट मैनेजर और मौजूदा प्रोजेक्ट मैनेजर पर कार्रवाई का हंटर क्यों चलाना पड़ा। धसा हुआ एक्सप्रेस वे गवाही दे रहा है कि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। लेकिन एक्सप्रेस वे के निर्माण में हुई खामियों के बावजूद NHAI के अफसर बड़ी बेशर्मी से एक्सप्रेस वे की खूबियां गिना रहे हैं।
1: टोटल 63 किलोमीटर का लेंथ है और 126 किलोमीटर दोनों साइड मिलाकर के होते हैं। 126 किलोमीटर में आप मेरे 5 लोकेशन हैं, 5 लोकेशन मिलाकर के 1 किलोमीटर भी लेंथ नहीं आता, और यानी कि मेरा मोर देन 98% स्ट्रेच में बिल्कुल किसी तरह का दिक्कत नहीं है और ट्रैफिक भी सुचारू रूप से आज भी चल रहा है।
0: सवाल यही है कि 4200 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद एक्सप्रेस वे का एक भी हिस्सा घटिया क्यों निकला। सवाल NHAI के कर्मचारियों और एक्सप्रेस वे का निर्माण करने वाली कंपनी PNC इंफ्राटेक लिमिटेड के गड़बड़ छाले का है। क्या टैक्स पेयर्स के पैसों से बने एक्सप्रेस वे के घटिया निर्माण के बाद PNC पर कठोर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या सिर्फ नोटिस भेजना नॉन परफॉर्मर घोषित करने की तैयारी काफी है? क्योंकि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में देश की जनता से वादा किया था कि हाईवे और एक्सप्रेस वे के निर्माण में गड़बड़ी करने वालों पर बुलडोजर एक्शन होगा, लेकिन NHAI के अफसरों और ठेकेदारों पर गडकरी की चेतावनी जमीन पर नजर नहीं आई, यानी अभी बड़े और कड़े कदम उठाने की जरूरत है।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: यूपी में भले विधानसभा का सत्र चार दिन का छोटा हो लेकिन इस छोटे सत्र में भी सरकार ने ऐसे बड़े बड़े फैसले किए कि सियासत उबल गई है। मदरसे में 12वीं के बाद की पढ़ाई बंद करने के फैसले के बाद अब यूपी सरकार ने मदरसा शिक्षक वेतन बिल भी वापस ले लिया। 10 साल पहले अखिलेश राज में पारित हो चुका ये विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के बिना लटका हुआ था क्योंकि इसमें बनाए गए प्रावधानों को लेकर कानूनी पहलू के सवाल खड़े किए गए थे। ये विधेयक 2016 में अखिलेश राज में दोनों सदनों में पारित हो गया था लेकिन गवर्नर राम नाईक ने इस पर सवाल उठाए थे क्योंकि इसमें प्रावधान था कि मदरसा टीचर और कर्मचारियों को रेगुलर स्कूल की तरह तय तारीख पर वेतन मिले। वेतन में देर होने पर जिम्मेदार अफसर के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने वाला था जबकि मदरसा कर्मियों के खिलाफ पुलिस FIR दर्ज नहीं कर सकती थी। मदरसा कर्मियों की विभागीय जांच से भी छूट थी। इस बिल को विधानसभा ने औपचारिक रूप से प्रस्ताव पारित करके वापस कर लिया है। इससे पहले यूपी के डिप्टी CM के मदरसों को लेकर दिए गए बयान को लेकर भी हंगामा हुआ था।
5: मदरसा बांग्लादेश का हो चाहे पाकिस्तान का हो चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री।
6: ये मानसिक रोगी हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि बांकीपुर इनके अध्यक्ष की सीट जनता ने हरा दी।
4: केशव मौर्य का ये बयान इसीलिए विपक्ष के निशाने पर आया क्योंकि यूपी सरकार मदरसा शिक्षा से जुड़े संशोधनों पर तेजी से आगे बढ़ रही है। अब यूपी के मदरसों में 12वीं तक की पढ़ाई होगी, डिग्री कोर्स पूरी तरह से बंद होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप मदरसों में कामिल यानी ग्रेजुएशन और फाजिल यानी PG की पढ़ाई बंद की जाएगी। इसके लिए मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में संशोधन का प्रस्ताव है। दरअसल योगी सरकार में मदरसों की पढ़ाई को लेकर शुरू से ही सख्त सरकारी समीक्षा होती रही है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मदरसों की ओर से ग्रेजुएशन PG की डिग्री देना यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 के खिलाफ है, लिहाजा मदरसे 12वीं तक की पढ़ाई ही करा सकते हैं। ऐसे में यूपी में मौजूद कुल 4,536 आलिया स्तर के मदरसों पर असर होगा जिनमें से करीब 1,000 मदरसों में ये ग्रेजुएशन और PG डिग्री दी जा रही थी। इन पाठ्यक्रमों में लगभग 37,000 से 38,000 छात्र पढ़ाई कर रहे थे जिन्हें अब UGC से मंजूर विश्वविद्यालयों का रुख करना पड़ेगा। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक।

शोषण और डीप फेक सामग्री पर मेटा की ग्लोबल टीम को सरकार की दो टूक चेतावनी। टेक्निकल पहलुओं पर आज भी मीटिंग, व्हाट्सएप पर होगी बात। युवाओं से बातचीत में संघ प्रमुख भागवत का बड़ा बयान, कहा जेन जी पर आंख मूंद कर

0: तीन दिन बचे हुए हैं इस मानसून सत्र के, उसमें आप ये मान के चल सकते हैं कि संभवतः थोड़ा गतिरोध कम होता हुआ दिखेगा, क्योंकि एफसीआरए एक ऐसा बिल है जिसपे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों चर्चा चाहता है।
1: बिल्कुल,
0: विपक्षी पार्टियों में कई सारी पार्टियां ऐसी शामिल हैं जिनकी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी पर असर पड़ेगा उस बिल का, और इसलिए वो चर्चा को लेकर फ्लेक्सिबल दिख रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, वो अपनी बात को भी संसद में रखना चाहेंगे। आप दोनों का शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। संसद में गतिरोध पर राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू में काफी गहमा गहमी हुई। विपक्ष ने अमित शाह के बयान की मांग की तो रिजिजू ने कहा कि हर रोज एक ही मसला लेकर आ जाते हैं।
2: हर दिन खड़गे जी खड़े होते हैं, जो लिख के लाते हैं सेम चीज पढ़ने लग जाता है, बार बार उसका हाथ मौका देते हैं चेयरमैन सर और खड़गे सर सेम चीज बोलते हैं। ये रिप्यूटेशन है और ये रूल हमारे लीडर ऑपरेशन के लिए। और सर, कांग्रेस के ये नए सदस्य आए हैं, इनके नाम है तरुण खेड़ा, इनको अभी मैडम स्पीच भी नहीं हुआ,
3: अब रिजू जी से मुझे सीखना पड़ रहा है। अरे रूल मैं भी ले रहा ना, और आपके चेंबर में आके बोलते हैं, रोज वही लिख के आकर पढ़ते हैं। ये अगर रूल्स नहीं पढ़ूंगा, अगर मेरा मैटर अगर नहीं पढ़ूंगा, क्या तुम दिए तो मैं पढ़ूं? अरे इट इज माय राइट व्हाट टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, हाउ टू स्पीक। दिस इज द रूल बुक एंड दिस रूल बुक व्हाट इट सेज, यू आर इंसल्टिंग माय मेंबर एंड पवन खेड़ा and you are insulting him as if you are everything।
1: और अब रुक करते हैं झारखंड का, जहां जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ छात्रों का आंदोलन अब 14वें दिन में प्रवेश कर चुका है, लेकिन बातचीत का रास्ता अब भी साफ नहीं हो पाया है। देर रात प्रशासनिक अधिकारियों ने छात्र प्रतिनिधियों से बातचीत की, लेकिन वार्ता प्रतिनिधि मंडल की संरचना पर ही अटक गई है। सरकार का साफ कहना है कि बातचीत सिर्फ छात्र प्रतिनिधियों से होगी, जबकि आंदोलनकारी अपने 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में पत्रकार और अधिवक्ता को भी शामिल रखने पर अड़े हुए हैं। यानी बातचीत से पहले ही बातचीत की शर्तों पर सस्पेंस बरकरार है। पर्दे के पीछे सरकार और छात्र संगठनों के बीच लगातार जोर आजमाइश चल रही है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी के छात्रों के समर्थन में खुलकर आने के बाद हेमंत सोरेन सरकार पर राजनीतिक दबाव भी बढ़ गया है। दूसरी तरफ सीआईडी कथित भर्ती घोटाले की जांच तेज कर चुकी है। अभय तिवारी को कथित मास्टरमाइंड मानते हुए उसके नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई भी हो रही है। रिश्तेदारों से पूछताछ की जा रही है और सभी सफल अभ्यर्थियों से कार्बन ओएमआर शीट भी मांगी गई है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, क्या आज गतिरोध टूटेगा या आंदोलन और लंबा खिंचेगा? और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा का। आशुतोष, इस वार्ता को लेकर, इस बातचीत को लेकर इतना सस्पेंस है, क्या लग रहा है आज कुछ समाधान आएगा और कौन सी बातें हैं जिन पर मुद्दा अटक गया है?
4: दरअसल अब जरूरी ये है अंजलि के समाधान आना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि छात्रों की तबीयत बिगड़ रही है। मैं इस समय जहां पर हूं, चार छात्र अनशन पर बैठे हुए थे बीते चार दिनों से। इनमें 40 साल के राहुल, जिनको आप देख रहे हैं, इनकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई है और अब डॉक्टरों ने मेडिकल रिपोर्ट के बाद ये देख लिया है कि इनके वाइटल्स जो है काफी ज्यादा बिगड़ गए, और इसलिए अब इनको जो है यहां से अस्पताल ले जा रहा है। डॉक्टर ने कहा इनको यहां बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। डॉक्टर क्या कह रहे हैं भैया, क्या कुछ बताया उन्होंने,
5: क्या बोले
4: डॉक्टर, क्या कह रहे हैं?
5: डॉक्टर ये बताया कि उसका तबीयत खराब है, उसको अभी सदर अस्पताल ले जाया जाएगा। तो हमारा जो यहाँ का अभी नेतृत्व को संभाल रहे रविंद्र पासवान पीयूष और जो आगे पीछे कोर कमेटी में उनको इन्फॉर्म किए हैं, वो आएंगे उनके बाद इसको हम लोग देखेंगे क्या।
4: जब हमने भी सुबह इनसे बात करने की कोशिश की तो ये महसूस हो रहा था कि पल्स जो है काफी लेट हो रहे हैं और तभी उनका शरीर जो है बुखार से तप रहा है। अब सरकार को ये भी देखना होगा, आप सोचिए कि छात्र की तबीयत अगर बिगड़ी है और अगर सही समय पर इलाज न हो और इसे सब धीरे धीरे चार दिन से बिना कुछ खाए पिए

0: उमस भरी गर्मी में। तो अब इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि बातचीत का रास्ता निकले। हालांकि अभी जानकारी प्राथमिक यह है कि 3 से 4 बजे के बीच ये संभवतः बातचीत हो सकती है, जो एसडीओ है जो इस बीच में लियाजन ऑफिसर का काम कर रहे हैं, क्योंकि छात्रों का प्रतिनिधिमंडल तैयार है, सरकार का मंडल तैयार है। एक बात पर समन्वय की कोशिश ये की जा रही है कि क्या सीधे मुख्यमंत्री से बातचीत हो या जब ये बातचीत हो तो वो यहां पर मौजूद रहे। लेकिन एक बार फिर आपको मंच की तस्वीरें दिखाते हैं, जो मेडिकल टीम है वो यहां पर आई है चर्चा के लिए, बातचीत करने के लिए और इसी के साथ साथ ये देखने के लिए, क्योंकि 4 दिन का जो अनशन इन छात्रों का है प्रोटोकॉल के तहत ये देखना जरूरी है। हालांकि कुछ छात्रों का स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन 40 साल के जो राहुल है उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी है। बाकी का जो पद आपने देखा है डॉक्टर साहब, अभी सबकी तबीयत कैसे, अगर आप बता सके कुछ अपडेट?
1: अभी एक ही का देखा गया है, अभी एक ही लोग का देखा गया है, अभी इंतन ठीक लग रहा है, बाकी लोग का देख रहे हैं।
0: उनको आप ले जा रहे हैं, किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हुई है?
1: उनका पल्स रेट काफी ज्यादा हाई मिल रहा है, जिसके वजह से उनका बीपी भी थोड़ा शूट उठ कर
0: यहाँ रखा जा सकता है बिल्कुल भी
1: अब? नहीं नहीं, अब इनको एडमिट ही करना पड़ेगा, अब इनको सदर में ही रेफर करना पड़ेगा और
0: सीधा अस्पताल ले जाने की तैयारी। और इसीलिए कह रहे हैं कि सरकार और व्यवस्था को अब यह देखना होगा कि
2: जी बिल्कुल, और चिंता का विषय है, प्रदर्शनकारियों की तबीयत बिगड़ रही है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। छात्रों की लड़ाई रांची से दिल्ली तक अब आ गई है। राहुल गांधी ने झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन पर चुप्पी तोड़ते हुए झारखंड सरकार से कार्रवाई की बात की है, तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी एक्शन में आ गए हैं।
3: झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है और अलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ऑप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो।
4: राहुल के कुछ मुद्दे के बारे में पहले से जानकारी थी, उन्होंने आज एक इनके समर्थन में वीडियो भी जारी किया है, आप सब देखोगे सोशल मीडिया के माध्यम से। वो बात कर इनको बताना चाहते थे कि मुझ तक जानकारी पहुंच चुकी है, हमारा टीम आपके साथ है। कल जैसा कि आपको पता है कि प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के प्रभारी, विधायक दल के नेता, विधायक दल के सह नेता, चारों मंत्री, मैं और इनसुआ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी सीएम, माननीय सीएम से हम लोग वार्ता करके इनके पक्ष में आए हैं और बहुत सकारात्मक बातें हुई है। इनसे डेलीगेशन मांगा गया, उन्होंने भी डेलीगेशन अपना भेजा है। मुझे लगता है कि इसका फलाफल अच्छा निकलेगा, छात्र और सरकार दोनों मिलकर ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि आने वाले दिन में पेपर लीक की समस्या कभी सामने आएगी नहीं।
2: तो आइए अब ये भी सुन लीजिए कि आखिर बीजेपी इसका जवाब कैसे दे रही है।
5: देखिए, 13 दिनों के बाद भी राहुल गांधी जी नजर आए जेपीएससी के आंदोलन में, तो वो भी सिर्फ वर्चुअल माध्यम से वीडियो संदेश जारी कर दिया साहब, फोन से बात कर लिया। राहुल बाबा, यहाँ झारखंड के छात्र आपका वर्चुअल सपोर्ट नहीं चाहते, वो चाहते कि आप भी यहाँ मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे, जैसे आप प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठे थे। वो चाहते हैं कि आप यहाँ के शिक्षा मंत्री यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो शिक्षा मंत्री भी है, उनका इस्तीफा मांगे, जैसे आपने धर्मेंद्र प्रधान जी का मांगा था। और यहाँ के छात्र चाहते हैं कि आप सीबीआई इंक्वायरी की बात करें, लेकिन आप वो सब कर नहीं रहे। आपने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करने से पहले ही छात्रों से सिर्फ मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए बात करने का स्वांग किया।
2: तो रांची के छात्रों के प्रदर्शन के बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कह दिया है कि 13 अगस्त तक यानी संसद चलने तक यदि फैसला नहीं हुआ तो वो अपनी पार्टी की परमिशन लेकर छात्रों के आंदोलन में शामिल होकर अनशन करेंगे। तो पंजाब कांग्रेस में भी उधर उथल पुथल है और राहुल गांधी अमरिंदर सिंह की तारीफ कर रहे हैं। आखिर वहां चल क्या रहा है? तो जेंजी के साथ आस्क मी एनीथिंग सेशन में राहुल गांधी ने बीजेपी में पसंदीदा नेता के सवाल पर अमरिंदर सिंह का नाम लिया, उनकी तारीफ की, उन्हें कूल बताया, उन्हें मिलिट्री हिस्ट्री का एक्सपर्ट भी बताया।
6: कैप्टन अमरिंदर सिंह, डेफिनेटली आई गेट अलोंग विद हिम, ही इज कूल एंड ही इज एन एक्सपर्ट ऑन मिलिट्री हिस्ट्री, सो आई लाइक हिम क्वाइट अ लॉट। हेलो अंकल अमरिंदर।
2: और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां अगले साल यानी 2027 में चुनाव है और अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी सरकार ने भी अपने अभियान तेज कर दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई युवा नीति के जरिए यूथ वोट बैंक को साधने की तैयारी की है। एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने नई युवा नीति को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने कहा कि नई युवा नीति युवाओं की आकांक्षाओं और जरूरतों के अनुरूप ही तैयार की जाएगी, उसके लिए युवाओं से राय भी ली जाएगी। नई नीति में शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य सरकार का फोकस रोजगार बढ़ाने, खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने और युवाओं को नशे से दूर रखने पर होगा। और वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
10: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा,
9: छक्का
10: सब कैशलेस हो गया
9: है।
11: हां ओ ला भाई मेरा बैट,
12: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
13: मिनट से चार्ज हुआ यार,
14: ला बैट किसका है?
15: टाटा AIG है तो भरोसा है।
16: मुल्तानी खू का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी खू का कॉफ सिरप,

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
6: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद। लायन कश्मीर हनी,
5: असली शहद असली स्वाद।
7: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
8: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
9: In association with
10: Sera Sanitary Wear, it's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: जहां खबर वहां न्यूज तक, ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर एक्सक्लूसिव कवरेज तक, खबरों का सच तथ्यों के साथ, जनता के सवालों से लेकर सत्ता के जवाबों तक, देश दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ न्यूज तक पर।
11: सावन के पावन महीने में महाकाल की दिव्य धरती उज्जैन से आस्था का सबसे बड़ा मंच, जहां जुटेंगे देश के सबसे प्रतिष्ठित संत और मुख्यमंत्री। देखिए धर्म संसद 7 अगस्त दिन भर सिर्फ आज तक पर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
4: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
5: इस्तेमाल किया गया है जो इंस्ट्रूमेंट्स का, ये बहुत गलत है। इसके लिए हम चाहते थे कि होम मिनिस्टर खुद सदन में आए और हमको ये बताए किसने लाठी चलाने के लिए बोला, क्या ये पुलिस अधिकारियों ने ही किया, और इसके ऊपर एक स्टेटमेंट हाउस में आकर देने में क्या मजबूरी है। तो ये तो ये अरोगेंस ही बताती है कि 15 दिन से सदन चल रहा है और होम मिनिस्टर गायब है, प्राइम मिनिस्टर आ रहे नहीं। इसके दो ही मतलब हो सकते हैं, एक या तो वो पार्लियामेंट को नजरअंदाज कर रहे हैं कि ये समझ रहे हैं कि पार्लियामेंट है ही नहीं, या तो वो डर के हाउस में आकर रिप्लाई देना नहीं चाहते।
6: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: सोरेन सरकार और छात्रों के बीच वार्ता के तरीके और तारीख पर सस्पेंस बरकरार। शर्तों पर फंसा पेच, एक छात्र की तबीयत बिगड़ी। राहुल गांधी ने बातचीत के बाद दिया एक्शन का भरोसा। संसद में गतिरोध के बीच अगले हफ्ते तक FCRA बिल पर सहमति बनाने की तैयारी। परिसीमन बिल पर DMK का रुख साफ नहीं, कहा हम पहले से विरोध में। सदन में आज भी हंगामे के आसार। NDA के नए लोकसभा सांसदों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की ब्रेकफास्ट पर हो रही है मुलाकात। TMC के 20 बागी और शिवसेना उद्धव गुट के बागी 6 सांसद भी मौजूद। भारत में नहीं चलेंगे अमेरिकी कानून। बाल यौन शोषण और डीप फेक सामग्री पर मेटा की ग्लोबल टीम को सरकार की दो टूक चेतावनी। टेक्निकल पहलुओं पर आज भी मीटिंग, व्हाट्सएप पर होगी बात। युवाओं से बातचीत में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा जेन जी पर आंख मूंद कर भरोसा करता हूं। आंदोलन का मतलब राष्ट्र विरोध नहीं, संवाद को लेकर कहीं ना कहीं हुई चूक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: बस आधे घंटे बाद संसद की कार्यवाही शुरू होने वाली है, लेकिन हलचल अभी से तेज है। आज भी टकराव के पूरे आसार हैं। एक तरफ सरकार गतिरोध खत्म करने की कोशिशों में जुटी है, तो दूसरी तरफ विपक्ष अपने तेवर नरम करने के मूड में नहीं दिख रहा। तो लगातार विपक्ष कुछ मुद्दों को उठा रही है, जिसमें पैलेट गन का इस्तेमाल, चढ़ावा चोरी, ये वो मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष चाहता है कि चर्चा हो। साथ ही वो अड़ा हुआ है कि अमित शाह संसद में आकर बयान दे। तो आज भी इन्हीं मुद्दों पर हो सकता है कि गतिरोध जारी रहे। राहुल गांधी से मुलाकात की किरण रिजिजू ने, ताकि इस गतिरोध को खत्म किया जा सके। क्या इस तीसरी बातचीत का कोई फायदा होगा, ये देखने को मिलेगा, या आज भी हम मकर द्वार के पास वैसा ही विरोध प्रदर्शन देखेंगे जो पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं। तो जब विरोध प्रदर्शन शुरू होगा आपको ले चलेंगे संसद परिसर। लेकिन बात करते हैं अभी दूसरी संघ प्रमुख मोहन भागवत के मिशन जेन जी की। तो मोहन भागवत ने कल जेन जी से सीधा संवाद किया, उनसे जुड़े हर मसले पर उन्होंने खुलकर जवाब भी दिए। फिर चाहे वो सरकार का एक्शन हो, पैलेट गन का इस्तेमाल हो, या फिर शिक्षा व्यवस्था। आपको बता दें कि मुंबई में हुए इस कार्यक्रम में 11 से 19 साल की उम्र के करीब 2000 छात्र शामिल हुए।
3: पैलेट गन फायरिंग हुआ था, तो ये सारे विषय के
4: और एक बात।
3: हाँ, आपको आपका क्या मानना ये होना चाहिए?
4: ये जो बातें हैं ना
3: जी,
4: ये क्यों हुआ, क्या हुआ, इसके कारणों में जाना पड़ेगा। जिसके लिए जो जानकारी चाहिए मेरे पास नहीं है, आपके पास भी पूरी नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है
3: जी।
4: लेकिन इसको देख के कहाँ गड़बड़ है ये तय करना पड़ेगा। मैं अभी ये नहीं कह सकता कि क्या हुआ क्यों हुआ, क्योंकि सही गलत मुझे भी मालूम नहीं। आप भी पढ़कर बता रहे हैं, मैं भी पढ़कर बता रहा हूं। आज सुबह मैं आ रहा था तो कुछ मॉड्यूल्स वगैरह इसमें घुस गए, उनका कुछ भंडाफोड़ वगैरह इसी न्यूज में पढ़ रहा था। वो कितनी सही है नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे अगर आंख मूंदकर विश्वास रखने के लिए कहा तो मैं जैन जी पर विश्वास रखूंगा।
0: तो मोहन भागवत कई मुद्दों पर खुलकर बोले। संघ प्रमुख ने छात्र आंदोलन को लेकर भी कुछ जवाब दिए, उन्होंने इसे गलत नहीं ठहराया है।
3: लोग हमें बोलेंगे saying that these people are agents of some country and so and so, तो सर इसमें
4: वो मैं कह रहा हूं ना,
3: इसमें
4: मैं कह रहा हूं हाँ। कि जैन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है
3: जी सर।
4: इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है, उसका रिकग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है, वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है, ये होता है, तो होना चाहिए। और जेन जी वगैरह ऐसी है ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता।
3: आप क्या मानते हैं?
4: विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब जब पूछा गया तब मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है।
3: अरे वाह, बढ़िया है।
4: और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है।
0: तो पिछले कुछ वक्त से सभी की नजरें जंतर मंतर के आंदोलन पे थी और इसको लेकर भी मोहन भागवत ने खुलकर बातें कही। उन्होंने कहा कि सरकार की गलती रही कि उन्होंने जेन जी से बातचीत नहीं की।
4: अभी जो हुआ है ग्रीवंस तो जेनाइन है, भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा इसलिए बात होती है, तो डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग के बाद नहीं होता तो क्या करना बात की बात है। अगर जेन जी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला,
3: बिल्कुल
4: उसको ठीक करना चाहिए।
3: तो इसमें आप मानेंगे कि संवाद यदि पहले से शुरू हुआ होता तो ये बाद में विषय ज्यादा ऊपर जाता ही नहीं।
4: जो नहीं होना चाहिए वो जब होता है तो कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जाती, तभी होता है। किसकी है क्या है ये अलग बात है, लेकिन कमी तो रही है, ठीक हो जाएगी।
0: तो चलिए अब सीधा रुख करते हैं संसद परिसर का, क्योंकि वहां पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है विपक्षी पार्टियों का। देखिए बारिश के बीच छाते लेकर वहां पर सांसद जुटने शुरू हो गए हैं। तो आज भी अलग अलग पार्टियों के सांसद, चाहे आरजेडी के सांसद हो, चाहे कांग्रेस के सांसद हो, चाहे समाजवादी पार्टी के सांसद हो, ये सब जुट रहे हैं एक साथ, क्योंकि मांग सभी की एक है, वही मांग लगातार अमित शाह से जवाब देने की, बयान मांगने की, कि संसद परिसर में आए, संसद के किसी भी सदन में आए और जवाब दे कि आखिर छात्रों के ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों किया गया। इसके अलावा चंदा चोरी का मुद्दा भी है जिसे लगातार उठाया जा रहा है। तो ये कुछ मांगे हैं जिसे लेकर बार बार विपक्ष गतिरोध पैदा करता है। आज भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है, दो दिन से बारिश के बीच छतरियां लेकर खड़े हैं विपक्षी सांसद और आज भी वही तस्वीर देखने को मिल रही है। हालांकि चर्चा की जा रही है, कोशिशें की जा रही है सरकार की तरफ से कि वो एक संवाद कर सके विपक्ष के साथ, और हमने देखा कि किरेन रिजिजू जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने राहुल गांधी जो कि नेता विपक्ष है उनको बार बार कॉन्टैक्ट किया, उनसे बार बार बातचीत की है, लेकिन राहुल गांधी ने साफ किया है कि कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर विपक्षी पार्टियां पीछे नहीं हट सकती। और जो तीसरे राउंड की बातचीत फोन पर हुई उसमें राहुल गांधी ने कहा है कि मैं दूसरी विपक्षी पार्टियों से बातचीत करूंगा और बताऊंगा।
5: द्वार के ठीक सामने शुरू हो गया है, छतरी के सहारे ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आप देखेंगे समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद आपको विरोध फिर से विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन मकर द्वार के ठीक सामने शुरू हो गया है, छतरी के सहारे ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आप देखेंगे समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद आपको दिखाई देंगे और इंडिया गठबंधन के भी सांसद गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, गृहमंत्री का जवाब मांग रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा में लगातार जो कार्रवाई है उसमें गतिरोध विपक्ष की तरफ से इसलिए हो रहा है क्योंकि वो 20 जुलाई को जो घटना हुई उस घटना में पर जवाब मांग रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह से, छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर। और अब लगातार सेकेंड लास्ट वीक के आखिरी दिन भी आप देखेंगे विपक्षी सांसदों का जो विरोध प्रदर्शन है वो गृहमंत्री के खिलाफ चल रहा है, और इसके साथ साथ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले को लेकर नारेबाजी हो रही है। कुल मिला के आज भी विपक्ष की तरफ से गतिरोध जारी रहेगा, इसकी संभावनाएं ये तस्वीरें जता रही हैं। अमित भारद्वाज, पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स आज तक।
0: तो आपको बता दें कि आज सुबह एक अहम ब्रेकफास्ट मीट हुई, प्रधानमंत्री मिल रहे थे, मुलाकात कर रहे थे उन नए सांसदों से जो एनडीए के नए सांसद हैं और साथ ही कुछ उन बागी सांसदों से जो टीएमसी से आए और साथ ही उद्धव ठाकरे ग्रुप से आए, और उनसे बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ खास बातें कही। पहला कि आप संसद के इतिहास को पढ़िए, उसे जानिए, उसे सीखिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आप जो ज्ञान लेते हैं उससे इसका इस्तेमाल कीजिए चर्चा करने के लिए विपक्षी सांसदों के साथ। तो एक तरीके से उन्होंने नसीहत विपक्षी सांसदों की तरफ भी भेज दी है, जिसमें वो कहते हैं कि चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि संसद में डिबेट हो। वो ये राय दे रहे हैं, ये मशवरा दे रहे हैं नए सांसदों को कि आप इतिहास सीखिए, वहां से कुछ ज्ञान लीजिए और फिर उसका इस्तेमाल कीजिए विपक्षी सांसदों के साथ चर्चा करने के लिए। तो सांसदों के बहाने विपक्ष को पीएम मोदी एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं क्या? हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। क्या लगता है आपको, क्या संदेश देना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री यहाँ?
6: देखिए बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो टीएमसी के जो बागी सांसद हैं, एनसीपीआई के जो 20 सांसद हैं, उनसे आज उन्होंने जो है ब्रेकफास्ट पे मीटिंग की है, जिसमें यूबीटी के भी 6 सांसद जो है जो शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप को जिन्होंने ज्वाइन किया, उनको ब्रेकफास्ट मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप संसदीय इतिहास को पढ़िए, जानिए, समझिए, और जब संसद के इतिहास को लेकर बहुत सारा मटेरियल है, जब भी किसी चर्चा में आप भाग लें तो तैयारी के साथ जाएं और अपने अपने राज्यों के विकास के लिए काम करिए और राज्य को आगे बढ़ाइए, तभी जो है आगे देश बढ़ेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ साफ ये कह रहे हैं कि जब भी आप संसद में हैं तो संसद के इतिहास को जान लीजिए, उसकी परंपराओं को जान लीजिए, जब भी आपको जरूरत पड़े जितना मटेरियल है उसका यूज कर सकते हैं। बहुत मटेरियल है पार्लियामेंट के इतिहास का, और जब संसद के अंदर चर्चा हो तो पूरी तैयारी के साथ जो है चर्चा के अंदर भाग लीजिए। और साथ ही साथ सभी सांसदों को ये कहा कि अपने अपने राज्यों के विकास कार्यों के लिए काम करिए, अगर आपके राज्य आगे बढ़ोगे तो देश भी आगे बढ़ेगा।
0: जी बिल्कुल, और इसी दौरान विरोध प्रदर्शन भी जारी है, और ऐसे में जब लगातार लग रहा है कि गतिरोध बना रहेगा संसद के अंदर, ऐसे में ये संदेश हिमांशु कितना अहम हो जाता है, क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार कोशिश तो की जा रही है कि वो विपक्ष को किसी तरह से चर्चा के लिए जो आने वाले बिल हैं उसके लिए मनाए। हिमांशु? हाँ जी
6: जी जी, एक बार सवाल दोहराएं।
0: मैं ये बोल रही हूँ कि ऐसे में संदेश कितना अहम हो जाता है जब हम लगातार गतिरोध देख रहे हैं, विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं संसद परिसर के अंदर।
6: देखिए विरोध प्रदर्शन चल रहा है, सदन के अंदर गतिरोध बना हुआ है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के जो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई थी उसमें भी ये कहा हुआ है कि संसद के अंदर जब आप कोई चर्चा में भाग लें तो तैयारी के साथ, और इस गतिरोध को खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो है आगे कदम बढ़ाए गए हैं, और सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि आप आइए आगे बातचीत कर सकते हैं। राहुल गांधी ने भी कल ये कहा था कि मैं पूरे विपक्ष की राय जानने के बाद जो है उससे आपको अवगत करा दूं। जब आप नेगोशिएशन टेबल पर आते हैं, समझौते पर बैठते हैं, तो कुछ चीजों को नजरअंदाज करना पड़ता है। तो अब देखना ये है विपक्ष क्योंकि इस दो मांगों को लेकर जो है अड़ा हुआ है, एक गृह मंत्री का स्टेटमेंट जो 20 जुलाई को घटनाक्रम हुआ उस पर, और उसके साथ साथ जो है राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले को, तो क्या आम सहमति बनती है, क्योंकि एफसीआरए बिल जो है वो 12 तारीख को जो है सदन में चर्चा और पास करने के लिए लाया जा सकता है।
0: जी जी बिल्कुल, और हिमांशु इस पर हमारी लगातार नजर रहेगी। लेकिन अब रुक करते हैं झारखंड का, क्योंकि विधानसभा के बाहर वहां पर भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है विपक्ष का, और यहाँ विपक्ष बीजेपी है, क्योंकि यहाँ सरकार जेएमएम और कांग्रेस की, ऐसे में बीजेपी के सांसद विपक्षी सांसद जो धांधली का आरोप लगता रहा है जेपी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के परीक्षा में, उसको लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और ऐसे में ये तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं वहां से विधानसभा के परिसर से, जहां पर एक बार फिर से जो हम लगातार देखते आए हैं, एक बार फिर से वहां विरोध प्रदर्शन चल रहा है।
7: नहीं, सरकार को बात करनी चाहिए उन लोगों से, और सरकार क्यों परहेज कर, ये तो सरकार ही जानबूझ करके अपनी जिद पर अड़ी हुई है। एक तो नौकरी बेच रहे हैं, जहाँ झारखंड के बच्चों के हक को नीलाम कर रहे हैं पैसे से, और जब बच्चे लोग आंदोलन कर रहे हैं तो वो बात करने को तैयार नहीं है। उसके लिए तो सरकार को बात करनी चाहिए। बात करने के लिए तो बच्चे लोग तैयार हैं। मैंने तो अखबारों में ही देखा कि उन लोगों ने लिस्ट भी साथ भेज दिया है, कौन कौन लोग वार्ता में रहेंगे ये सब में।
8: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में जांच एजेंसियां जो है सक्रिय है।
9: 2000 से पहले 2000 के आसपास का जो परीक्षा है उसकी भी सीबीआई जांच हो रही है। रिजल्ट नहीं मिला है तो ऐसे में सीबीआई जांच।
7: किसने बताया रिजल्ट नहीं मिला है? अब कोर्ट को ये लोग सीबीआई जांच किया, आपको पता ही है पूर्व में क्या क्या घटना हुआ है, क्या हुआ है, किसी से छुपा हुआ नहीं है, और बाकी मामला अदालत में चल रहा है।
8: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में जांच एजेंसियां जो है सक्रिय काम कर रही है।
7: देखिए, जांच एजेंसी से ये लिपा पोती की ये कोशिश कर रही है, चाहे सीआईडी जांच हो या एसीबी जांच हो, दोनों ही एजेंसी झारखंड में सिर्फ सरकार को बचाने का ही काम कर रहे हैं, अपराधियों को बचाने का ही काम कर रहे हैं। पहले भी मैंने कई एक दफा इस बात को कह चुका हूं, आज भी सीआईडी जिस प्रकार से जांच कर रही है, पिछले जब गड़बड़ी हुई जेसीसी के एग्जाम का, तो सीआईडी जांच ठीक ठाक दिशा में चल रहा था, तो पूरा टीम को बदल दिया।
10: किसके नेतृत्व में टीम बने जो खुद ही
0: दागदार। तो आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी सत्यजीत का। सत्यजीत, तस्वीरें आने लग गई हैं, आवाज उठ रही है विधानसभा में जांच को लेकर, एक्शन को लेकर, लेकिन सवाल यह भी है कि दबाव और भी बढ़ रहा है, क्योंकि एक प्रदर्शनकारी की आज तबीयत भी ज्यादा बिगड़ गई है, तो ऐसे में आज विधानसभा में क्या एक्शन देखने को मिलेगा?
11: देखिए, सदन चलेगा या नहीं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी जिस तरह के अग्रेसिव मूड में है या फिर विपक्ष जिस तरह से अग्रेसिव मूड में है, लगता नहीं है कि सदन को चलने दिया जाएगा। मांग किया जाएगा कि हाउस को एडजर्न करके, बाकी बिजनेस को एडजर्न करके इस मुद्दे पे चर्चा किया जाए, जेपीएससी और जेएसएससी में जो व्याप्त भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं उस पर चर्चा करने का। इसके अलावा जो है लगातार धरना प्रदर्शन पे इसी मुद्दे को लेकर जो है छात्र जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं जयपाल सिंह स्टेडियम में। आज 14वां दिन है और जाहिर तौर पे दोनों सेंटर जो है जहां पे कॉमन डिमांड को लेकर एजिटेशन चल रहा है, चाहे वो देवेंद्र नाथ महतो का जो सेंटर है वो, या फिर इधर जो स्टूडेंट्स ने जो आंदोलन किया उसमें, दोनों ही तरफ से हड़ताल पे हैं, इनडेफिनेट फास्ट पे हैं जो छात्र हैं वो, चार लोग जो है स्टूडेंट्स की तरफ से फास्ट में, देवेंद्र नाथ महतो गुट की तरफ से भी, देवेंद्र नाथ महतो समेत दो और अन्य लोग जो हैं जो प्रदर्शनकारी वो फास्ट पे हैं। और जाहिर तौर पे सोनम वांगचुक के कहने पे उन्होंने अपना वाटर फास्ट तो तोड़ दिया था, लेकिन अभी भी उन्होंने
0: नहीं
11: दिया है और पांचवा दिन
0: है। सत्यजीत, और बिल्कुल इस पूरे प्रदर्शन पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। उधर आज हैंडलूम डे है, इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना एक इंस्टा वीडियो शेयर किया है और अपील की है कि हम हैंडलूम दिवस मनाएं। लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं संसद परिसर, जहां पर प्रियंका गांधी इस वक्त परिसर पहुंच गई है, और पवन खेड़ा इस वक्त
12: प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, आ रहे हैं ये बताइए, चंदा चोरी पे कोई बयान देंगे या नहीं देंगे ये बताइए, पैलेट गन्स पे यहां आकर बयान देंगे या नहीं देंगे ये बताइए, ये लफाजी, ये ढोंग, इस पे बारे में मुझे बात मत करो।
13: एफसीआरए
12: पे वी हैव क्लैरिफाइड आवर स्टैंड, वेणुगोपाल जी हैज पोस्टेड and we have our reservations and we've mentioned our reservations.
14: सर, ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी रांची में बात तो करिए छात्रों से, क्या मिलने भी जाएंगे?
12: हमारी डेलीगेशन गई है, हर चीज राहुल गांधी करेंगे, मोदी कुछ नहीं करेंगे, अमित शाह पार्लियामेंट में भी नहीं आएंगे, और आप लोग आके पूछेंगे राहुल जी क्या करेंगे, राहुल जी ये करेंगे, राहुल जी क्या क्या करेंगे ये बता दीजिए, लिस्ट समय दे दीजिए मोदी जी से मंगवा के। मोदी जी क्यों नहीं आ रहे पार्लियामेंट में? आज 18वां दिन है, देखा आपने हाउस के अंदर मोदी जी को या अमित शाह को? राहुल जी वहां क्यों नहीं गए? राहुल जी वहां जा रहे हैं नहीं जा रहे? कमाल कर रहे हैं आप लोग।
15: प्रयागराज में राहुल जी का
14: मोहन भागवत जी कह रहे हैं,
12: अरे छोड़िए उस आदमी को जो यहाँ का मेंबर नहीं, उसके बारे में क्या बात है ना बोली।
16: सर, रिजिजू जी ऑल्सो हैज रीच्ड आउट टू मिस्टर राहुल गांधी सेइंग देयर शुड बी स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट एंड देयर शुड बी,
12: सो आस्क हिम टू ब्रिंग होम मिनिस्टर, आस्क हिम टू ब्रिंग द होम मिनिस्टर टू द पार्लियामेंट, आस्क हिम टू रिक्वेस्ट द होम मिनिस्टर। यस्टरडे the chairman of the Rajya Sabha, conveyed the sentiment of the opposition to Mr. Kiran Rijiju. The sentiment was, please bring Amit Shah ji to the house. Please ask him to make a statement on the police excesses that took place in the capital and elsewhere in the country. Why doesn't Kiran Rijiju bring him? Ask him to bring him. The house will definitely start functioning smoothly.
10: Sir, Prayagraj mein jo 8 tarikh ko karyakram hai, usme karyakram abhi koi nirdharit hua hai kahan pe?
12: Hum jayenge, karyakram karenge, aap hamare saath aayenge.
0: तो फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है. आप देखते रहिए आज तक.
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.

0: जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है।
1: समाजवादी पार्टी अराजकता, गैर लोकतांत्रिक और पूज्य जनेश्वर मिश्र जी के सिद्धांतों से भटक चुकी है। पूज्य जनेश्वर मिश्र जी ने कहा था कि जब सदन चल रहा हो तब लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जनता की आवाज को सदन में उठाना चाहिए। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से पूज्य लोहिया जी और पूज्य जनेश्वर मिश्र जी के सिद्धांतों से भटक चुकी है। वो केवल व्यक्तिवादी पॉलिटिक्स कर रही है और खासकर अराजकता, गुंडई और पूरी तरह से प्रदेश को दंगों में झोंकने वालों को समर्थन करने वाली पार्टी बन चुकी है। प्रदेश की जनता उन्हें नकार चुकी है और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ करके चल रही है।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

देश के प्रमुख शहरों में रियल एस्टेट मार्केट घरों की बढ़ती कीमतों के साथ साथ किराए से होने वाली कमाई के चलते बेहद आकर्षक बन गया है। एनरॉक रिसर्च की ताजा रिपोर्ट बताती है कि 2019 से 2026 के बीच कई बड़े शहरों में घरों के दाम और रेंटल यील्ड दोनों में एक साथ मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान नोएडा में घरों की औसत कीमत 125% बढ़कर 10,780 रुपए प्रति वर्ग फीट पर पहुंच गई। वहीं रेंटल यील्ड 3.2% से बढ़कर 3.9% हो गई, जबकि गुरुग्राम में कीमतें 117% बढ़कर 13,350 रुपए प्रति वर्ग फीट पर पहुंच गई और रेंटल यील्ड 3.5% से बढ़कर 4.3% हो गई। आमतौर पर माना जाता है कि प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ने पर रेंटल यील्ड पर दबाव आता है, लेकिन इस बार तस्वीर अलग है। एनसीआर के इन दोनों शहरों में घरों के दाम और किराए से मिलने वाला रिटर्न दोनों साथ साथ बढ़े हैं। इसकी बड़ी वजह बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, नए रोजगार सेंटर्स और बढ़ते माइग्रेशन को माना जा रहा है। इस दौरान अगर बाकी शहरों का हाल देखें तो बेंगलुरु में घरों की कीमतें 90%,

देश के प्रमुख शहरों में रियल एस्टेट मार्केट घरों की बढ़ती कीमतों के साथ साथ किराए से होने वाली कमाई के चलते बेहद आकर्षक बन गया है। एनरॉक रिसर्च की ताजा रिपोर्ट बताती है कि 2019 से 2026 के बीच कई बड़े शहरों में घरों के दाम और रेंटल यील्ड दोनों में एक साथ मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान नोएडा में घरों की औसत कीमत 125% बढ़कर 10,780 रुपए प्रति वर्ग फीट पर पहुंच गई। वहीं रेंटल यील्ड 3.2% से बढ़कर 3.9% हो गई, जबकि गुरुग्राम में कीमतें 117% बढ़कर 13,350 रुपए प्रति वर्ग फीट पर पहुंच गई और रेंटल यील्ड 3.5% से बढ़कर 4.3% हो गई। आमतौर पर माना जाता है कि प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ने पर रेंटल यील्ड पर दबाव आता है, लेकिन इस बार तस्वीर अलग है। एनसीआर के इन दोनों शहरों में घरों के दाम और किराए से मिलने वाला रिटर्न दोनों साथ साथ बढ़े हैं। इसकी बड़ी वजह बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, नए रोजगार सेंटर्स और बढ़ते माइग्रेशन को माना जा रहा है। इस दौरान अगर बाकी शहरों का हाल देखें तो बेंगलुरु में घरों की कीमतें 90% और रेंटल यील्ड 3.6% से बढ़कर 4.6% हो

0: देश के प्रमुख शहरों में रियल एस्टेट मार्केट घरों की बढ़ती कीमतों के साथ साथ किराए से होने वाली कमाई के चलते बेहद आकर्षक बन गया है। एनरॉक रिसर्च की ताजा रिपोर्ट बताती है कि 2019 से 2026 के बीच कई बड़े शहरों में घरों के दाम और रेंटल यील्ड दोनों में एक साथ मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान नोएडा में घरों की औसत कीमत 125% बढ़कर 10,780 रुपए प्रति वर्ग फीट पर पहुंच गई। वहीं रेंटल यील्ड 3.2% से बढ़कर 3.9% हो गई, जबकि गुरुग्राम में कीमतें 117% बढ़कर 13,350 रुपए प्रति वर्ग फीट पर पहुंच गई और रेंटल यील्ड 3.5% से बढ़कर 4.3% हो गई। आमतौर पर माना जाता है कि प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ने पर रेंटल यील्ड पर दबाव आता है, लेकिन इस बार तस्वीर अलग है। एनसीआर के इन दोनों शहरों में घरों के दाम और किराए से मिलने वाला रिटर्न दोनों साथ साथ बढ़े हैं। इसकी बड़ी वजह बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, नए रोजगार सेंटर्स और बढ़ते माइग्रेशन को माना जा रहा है। इस दौरान अगर बाकी शहरों का हाल देखें तो बेंगलुरु में घरों की कीमतें 90% और रेंटल यील्ड 3.6% से बढ़कर 4.6% हो गई। वहीं हैदराबाद में घरों के दाम में 93% का उछाल आया, जबकि रेंटल यील्ड 2.6% से बढ़कर 3.6%।
1: युवाओं से बातचीत में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा जेन जी पर आंख मूंद कर भरोसा करता हूं, आंदोलन का मतलब राष्ट्र विरोध नहीं, संवाद को लेकर कहीं ना कहीं हुई चूक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक एक और 11 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित।
1: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उस विरोध प्रदर्शन से जो लगातार चलता रहता है आजकल संसद परिसर में। तो ये तस्वीरें आपके लिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ये तस्वीर।
3: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक एक और 11 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित।
1: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उस विरोध प्रदर्शन से जो लगातार चलता रहता है आजकल संसद परिसर में। तो ये तस्वीरें आपके लिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ये तस्वीरें
3: आपको बता रहे हैं। सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होती है, स्पीकर ओम बिरला अपनी बात रखते हैं, इसी दौरान हंगामा शोर गुल सुनाई देता है और उसके बाद अब 12 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया।
1: और आइए अब वक्त है शतक आज तक का।

सोरेन सरकार और छात्र के बीच वार्ता के तरीके और तारीख पर सस्पेंस बरकरार, शर्त पर फंसा पेच, एक छात्र की तबीयत बिगड़ी। रांची में 14वें दिन भी छात्रों का प्रदर्शन जारी, देश भर में मिला समर्थन। स्विगी जोमैटो से पहुंच रहा है खाना, लगाया गया मेडिकल कैंप। रांची पहुंच रहे कॉकरोच जनता पार्टी के नेता, प्रदर्शनकारी छात्रों से करेंगे मुलाकात, भेजे रेनकोट। रांची में सरकार से वार्ता पर सस्पेंस, 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में पत्रकार वकील को शामिल करने पर अड़े हैं छात्र। रांची में जेपीएससी जेएसएससी छात्रों का आंदोलन जारी, देवेंद्रनाथ महतो बोले सरकार का रवैया बेहद असंवेदनशील। झारखंड विधानसभा मॉनसून सत्र में बीजेपी विधायकों का विरोध प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। पीएम मोदी ने की नए एनडीए लोकसभा सांसदों संग ब्रेकफास्ट मीटिंग, प्रधानमंत्री आवास पर पहली बार और नव निर्वाचित सांसदों से मुलाकात, बोले संसदीय इतिहास को समझने में दिखाएं दिलचस्पी। पीएम मोदी की एनसीपीआई और शिवसेना के सांसदों के साथ नाश्ते पर हुई बैठक, पीएम ने कहा कि संसद में डिबेट में हिस्सा लीजिए, अपने राज्यों के विकास के लिए काम कीजिए।

0: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। सुबह 11:30 बजे होने वाली है ये बैठक। महाराष्ट्र से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा। पीएम मोदी ने शेयर किया हैंडलूम डे पर वीडियो। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील। बीती रात इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर लोगों से हैंडलूम अपनाने की अपील की। नीट यूजी पेपर लीक केस में आज कोर्ट सुनाएगा आदेश। सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पर का फैसला आएगा।
1: अड्डा की टेक्निकल टीम आज मेचुआई अधिकारियों से करेगी बैठक। भारतीय कानूनों के अनुपालन और तकनीकी मुद्दों पर होगी विस्तृत चर्चा। सरकार का बैठक का संदेश, भारत में भारतीय कानूनों का ही होगा पालन। एआईटी फेक पर भी सरकार ने सख्ती की है, अब मैच 3 घंटे में हटाना होगा गैर कानूनी कंटेंट। पंजाब में नौकरियों के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन, सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग। संसद में गतिरोध खत्म करने को लेकर रिजिजू और राहुल ने फोन पर बात की। सूत्रों के मुताबिक परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा। सहयोगी दलों से बातचीत के बाद रुख साफ करेगी कांग्रेस। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आवास के बाहर साधु संतों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को लेकर मौके पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को मिली मंजूरी। 8 अगस्त को प्रयागराज में तय शर्तों के साथ आयोजन की अनुमति। छात्रों पर FIR को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। एक्स पर किया पोस्ट, लिखा मोदी सरकार की नीति ही युवाओं की आवाज दबाना है। राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, कहा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फीस विवाद को लेकर प्रयागराज में मेरे कार्यक्रम को रोकने की कोशिश, मैं छात्रों के साथ खड़ा हूं। जेंजी के साथ राहुल गांधी का इंस्टाग्राम पर आस्क मी एनीथिंग सेशन स्टोरी पर यूजर ने पूछा बीजेपी में पसंदीदा नेता कौन। राहुल ने अमरिंदर सिंह का नाम लिया। राहुल गांधी ने नागालैंड, अरुणाचल, बाढ़ और भूस्खलन में मौतों पर जायजा दुख जताया। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
0: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत यूपी के 75 जिलों में होगा तिरंगा संगीत समारोह। शहीद परिवारों का होगा सम्मान। सीएम योगी के जेन जी आउटरीच पर समाजवादी पार्टी का पलटवार। मनोज काका बोले आप पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। कांवड़ यात्रा पर मौलाना साजिद रशीदी के बयान से विवाद। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन अध्यक्ष ने कुछ कांवड़ियों को आतंकवादी बताया। मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ पुलिस में शिकायत। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने भड़काऊ बयान का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। यूपी में हो रही बारिश से होने वाली जनहानि, पशु हानि और आर्थिक हानि का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया संज्ञान। नुकसान का आंकलन कर 24 घंटे में मुआवजा देने के निर्देश। राष्ट्रीय हैंडलूम डे पर सीएम योगी का बड़ा कार्यक्रम। बुनकरों को सम्मान और 706 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर हमला, बोले पीडीए के नाम पर ढोंग कर रहे हैं आपके लोग कर रहे हैं अत्याचार। गाजीपुर का जिक्र करते हुए सपा पर गंभीर आरोप लगाए। एसपी नेताओं को अखिलेश यादव की नसीहत, बोले जाति धर्म पर टिप्पणी से बचे, आचरण और वाणी पर रखे संयम। अखिलेश यादव की नसीहत पर बीजेपी का पलटवार। राकेश त्रिपाठी बोले जातिवाद और तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले दे रहे हैं प्रवचन, इनकी राजनीति मजहबी तुष्टिकरण पर आधारित। गोंडा में ब्रजभूषण सिंह का बड़ा बयान, बोले सांसद बनना डिजर्व करता हूं, पार्टी विचार करेगी तो जनता भेजेगी।
1: अजय यादव के बेटे के सड़क हादसे को लेकर विपक्ष ने निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग की। विपक्षी नेता दीपक रंजन ने साजिश या लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की मांग की। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पुल गिरने की घटना को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। सोशल मीडिया पोस्ट में बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बोले बीजेपी यानी बेहद जानलेवा पार्टी। अखिलेश ने यूपी और गुजरात मॉडल को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा, कहा आपसी टकराव से डबल इंजन सरकार डबल ट्रबल बन गई है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले दलित समाज को साधने की सियासी कवायद तेज। योगी सरकार ने अंबेडकर मूर्ति विकास योजना के लिए रखे 407 करोड़। कावड़ यात्रा के अंतिम और संवेदनशील चरण को देखते हुए बागपत पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। हाईवे पर पुलिस अधिकारी तैनात। मुंबई में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जेंजी संघ संवाद, कहा जेंजी का आंदोलन देश के खिलाफ नहीं, यह भी संवाद का एक तरीका है। युवाओं से बातचीत में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा उनकी शिकायत जाए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत, 6% होना चाहिए शिक्षा बजट। एफसीआर संशोधन विधेयक पर 12 अगस्त को संसद में हो सकती है चर्चा। अमित शाह से मुलाकात के बाद मिजोरम के सीएम ने दी जानकारी, बिल के विरोध में है विपक्ष। 12 अगस्त को सदन में आएगा एससीआरए बिल। मिजोरम में मुख्यमंत्री ने बिल को लेकर स्थिति स्पष्ट की, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा बिल। एससीआरए बिल पर कांग्रेस का हमला, अभिषेक मनु सिंह भी बोले ड्रैकोनियन बिल। विपक्ष ने प्रस्तावित कानून को लेकर सरकार पर तीखा निशाना साधा।
0: सितंबर से अभिजीत दिपके का नया प्लान, देश भर में शुरू करेंगे क्या बोलती पब्लिक अभियान, लोगों की उम्मीदों और चिंताओं को समझना बताया मकसद। केजरीवाल का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले प्रधानमंत्री अब अपने ही नागरिकों से लड़ रहे हैं, खुद को बचाने के लिए बना रहे हैं कानून। शुभेंदु अधिकारी का ममता बैनर्जी पर बड़ा हमला, कहा ममता बैनर्जी बंगाल को खत्म करने पर तुली हुई थी। ममता बैनर्जी का समर्थन मतलब मोहम्मद अली का सपना पूरा करना, शुभेंदु अधिकारी के बयानों से पश्चिम बंगाल की सियासत गर्मा गई। ममता पर शुभेंदु के तीखे आरोप, बयान से बड़ा सियासी विवाद, विपक्ष और टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज। 15 अगस्त सुरक्षा को लेकर दिल्ली में एनएसजी का बड़ा मॉक ड्रिल, आज शाम 6 बजे के बाद कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा अभ्यास होगा। जेएनयू स्टेडियम और दिल्ली सचिवालय समेत कई जगहों पर एनएसजी ड्रिल, एनएसजी दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां तैयारी का जायजा लेंगी। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में मल्टीलेयर सिक्योरिटी प्लान लागू, लाल किले के कार्यक्रम में करीब 24,000 मेहमानों की सुरक्षा के लिए 12,000 पुलिसकर्मी तैनात। आतंकी खतरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, मॉक ड्रिल में कई परिदृश्य होंगे, टेस्ट, हॉस्टेज रेस्क्यू, बम थ्रेट और इवैक्यूएशन जैसे हालात पर तैयारी पर की जाएगी। दिल्ली में बड़ी सुरक्षा, मेट्रो स्टेशन और भीड़भाड़ वाले इलाकों पर खास निगरानी, अधिकारियों ने लोगों से अपील की ड्रिल के दौरान सुरक्षा गतिविधियों से घबराने की जरूरत नहीं।
1: टिहरी गढ़वाल में लैंडस्लाइड, मलबा हटाने का काम जारी है, भारी बारिश के बाद सड़क पर जमा मलबा जेसीबी से हटाया जा रहा है। टिहरी के पुंडोली गांव में पुल बह गया, एसडीआरएफ ने महिला को रेस्क्यू किया, तेज बारिश से लकड़ी का पुल बह गया, रस्सी के सहारे महिला को सुरक्षित बचाया। चमोली में लैंडस्लाइड, नारायण बगड़ कर्णप्रयाग मार्ग प्रभावित हुआ, पहाड़ से पानी के साथ चट्टानों का सैलाब आने से सड़क पर मलबा। बागेश्वर में बारिश के कहर, 15 सड़कें बंद, बोल्डर गिरने से कई मार्ग बाधित हुए, एक घर भी ध्वस्त। पौड़ी गढ़वाल में अलकनंदा उफान पर हाई अलर्ट जारी किया गया, भारी बारिश के चलते नदी का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन सतर्क। उत्तरकाशी में बारिश का कहर, गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बंद, भूस्खलन के चलते हाईवे बार बार बाधित हो रहा है, आवाजाही प्रभावित हुई। देहरादून में सड़क पर आया सैलाब, मलबे में फंसा ट्रक, भारी बारिश के बाद सड़क पर पानी और मलबा आया, ट्रक चपेट में आया। हिमाचल प्रदेश में 11 अगस्त तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी, शिमला सोलन समेत कई इलाकों में जमाझम बारिश, सड़कों पर पानी भर गया। नेपाल में बारिश से गंडक नदी उफान पर, वाल्मीकि नगर बैराज से 2.20 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, बघा के गांव में घुसा बाढ़ का पानी। धौलपुर में जलभराव से स्कूलों पर बार बार लग रहा है ताला, बच्चों का प्रदर्शन, सरकारी दावों पर सवाल। भदोही में पारिवारिक विवाद में पिता ने बेटी की जान ले ली, क्षेत्र में सनसनी फैल गई, पुलिस ने आरोपित पिता को गिरफ्तार किया। लखनऊ सीतापुर हाईवे पर चलती कार में अचानक आग लगने से एक युवक कार में फंस गया, उसकी मौत हो गई, जांच जारी है। लखनऊ में प्रेम प्रसंग के शक में नाबालिग छात्रा की गला रेत कर हत्या, आरोपित गिरफ्तार, घर में अकेली 17 वर्षीय छात्रा की हत्या से सनसनी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के मॉल में युवकों के बीच जमकर मारपीट हुई, लात घूसों के साथ डंडों का भी इस्तेमाल, घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल। मथुरा में हरियाली तीज, हर घर।
0: राजस्थान के जालौर में पत्थर की खदान दही, मलबे में दबने से एक युवक की मौत, 3 घायल। पुडुचेरी में भारी बारिश से दीवार गिरी, मलबे में 6 लोगों के दबे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बेलगावी में 2 करोड़ के इंश्योरेंस के लिए पूर्व सैनिक की हत्या का शक, 3 महीने बाद कब्र से निकाला शव, पत्नी और प्रेमी जांच के घेरे में। करनाल में बीरू वाल्मीकि हत्याकांड पर बड़ा एक्शन, पुलिस एनकाउंटर में दोनों आरोपी ढेर। पुणे में पीजी में रहने वाले युवक को लोहे की रॉड से पीटा, युवक की बेरहमी से की हत्या, घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद। दिल्ली के वजीराबाद में खुले नाले में गिरे 3 बच्चे, स्कूली बच्चों की जान खतरे में पड़ी, लोगों की सूझबूझ से सुरक्षित बचाया गया। मुंबई में पार्किंग से गिरी कार, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा, कार गिरने के बाद मचा हड़कंप, मौके पर मौजूद लोग बाल बाल बचे। हरियाणा में चरखी दादरी में थाने के बाहर गैंग वॉर की घटना। अदालत से पेशी के बाद लौटे युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग, हमले में 7 लोग घायल। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर में घर के बाहर बदमाशों ने की फायरिंग, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। भुवनेश्वर में नशे में धुत ड्राइवर ने घर में घुसाई तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार, हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, दो युवकों की गई जान। अमरनाथ यात्रा से लौट रहे 4 श्रद्धालु सड़क हादसे में घायल, अनंतनाग के अस्पताल में चल रहा है इलाज। तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के पोलाची में युवक की हत्या के बाद शव के साथ सेल्फी लेकर फरार हुए आरोपी, पुलिस की दबिश जारी। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में कॉलेज छात्र को बेरहमी से पीटा गया, इंस्टाग्राम पर मैसेज करने पर लड़की के पुरुष मित्र ने बीच सड़क पर पटक पटक कर मारा। पालघर में आवारा कुत्तों का आतंक कर कई लोगों पर हमला, 4 दिनों में 5 से 7 लोगों को बनाया शिकार, इलाके में दहशत का माहौल।
1: श्रीलंका दौरे पर आज से कोलंबो में श्रीलंका 11 के खिलाफ 3 दिवसीय वार्म अप मैच खेलेगी टीम इंडिया। 15 अगस्त से शुरू हो रही है टेस्ट मैचों की सीरीज। टीम इंडिया का फिटनेस लेवल सुधारने की पहल के तहत आया नया रूल, अब 10 मिनट में 2 किलोमीटर दौड़ना जरूरी, 1200 मीटर की दौड़ 5.2 मीटर में जरूरी होगा पूरा करना। भारतीय वुमेन्स टीम के साउथ अफ्रीकी दौरे के शेड्यूल में बदलाव, अब इस दौरे पर एक टेस्ट और 3 वनडे के साथ खेले जाएंगे 3 T20 मैच। वुमेन्स एशिया कप में 5 सितंबर को खेला जाएगा भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जारी किया शेड्यूल, 28 अगस्त को होगी टूर्नामेंट की शुरुआत। कोरिया मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची तन्वी शर्मा, प्री क्वार्टर फाइनल में श्रेयांसी को 21-16 से दी मात।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
0: तो चलिए अब रुक करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। आज प्रधानमंत्री मोदी ने NCPI और शिवसेना से आए नए सांसदों से नाश्ते पर मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों से कहा कि वो अपने क्षेत्र के विकास कार्यों पर ध्यान दें और कोई भी समस्या होने पर उसे सीधे आकर उनसे मिले।
1: पीएम मोदी ने सांसदों के बहाने विपक्ष को भी संदेश दिया है कि संसद की कार्यवाही में भाग लें और बहुत कुछ है जहां पहले संसद की कार्यवाही से हम सीख सकते हैं, यानी एक तरह से विपक्ष को एक संदेश देने की कोशिश की है। और यह भी कहा कि अगर कहीं कोई समस्या हो तो आप सीधे मुझसे आके मिलिए। और यहां पर वक्त चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Papa.
2: सॉरी यार गलती हो गई है ये चोट खर्चा वर्चा
3: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा
2: छक्का
3: सब कैशलेस हो गया है
2: हां ओ ले ला भाई मेरा बैट वो अभी तो ठीक हुआ तू
4: ओ चार्ज हुआ यार
5: ओ ले बैट किसका है
6: टाटा एजी है तो भरोसा है
7: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा रुंगटा स्टील टीएमटी से बना
9: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रांग नहीं रुंगटा स्टील टीएमटी बाय एकदम सॉलिड

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
3: अगर इतिहास में जाकर इंडिया टुडे की तरह मुझे किसी खबर को कवर करने का मौका मिला तो मैं इमरजेंसी कवर करना चाहूंगा। 7 अगस्त को पीवीआर आईनॉक्स में देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई विटनेस टू अ नेशन।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: अब रिजू से मुझे सीखना पड़ रहा है। अरे रूल मैं भी ले रहा ना, और आपके चेंबर में आके बोलते हैं, रोज वही लिख के आकर पढ़ते हैं। ये अगर रूल्स नहीं पढ़ूंगा, अगर मेरा मैटर अगर नहीं पढ़ूंगा, क्या तुम डीएसओ में पढ़ू? अरे इट इज माई राइट व्हाट टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, हाउ टू स्पीक। दिस इज द रूल बुक एंड दिस रूल बुक व्हाट इट सेज, यू आर इंसल्टिंग माय मेंबर एंड पवन खेरा, यू टुक हिज नेम एंड यू आर इंसल्टिंग हिम एज इफ यू आर एवरीथिंग। एंड सर जस्ट आई वांट, we raised only junior questions concerning to the country, concerning 140 crores people asked us question, and we are asking only Home Minister come, Prime Minister should come to your statement.
4: No, we are asking nothing else. That should be said.
3: I'm ready to have the debate, so that's why I have to have the note.
5: खरगे साहब के लिए मैं ये रूल पढ़ रहा हूँ, रूल 2-4 फॉर द लीडर ऑफ ऑपोजिशन खरगे जी। दिस इज अबाउट इररेलेवेंस ऑफ रेपुटेशन। द चेयरमैन आफ्टर हैविंग कॉल्ड द अटेंशन ऑफ द काउंसिल टू द कंडक्ट ऑफ अ मेंबर who persist in irrelevance or in tedious repetition, either of his own arguments or of the arguments used by other members in the debate, may direct him to discontinue his speech. Har din Kharge ji khade hote hain, jo likh ke laate hain, same cheez padhne lag jata hai. बार बार उसको आप मौका देते हैं चेयरमैन सर, और खरगे सर सेम चीज बोलते हैं। ये रिप्यूटेशन है और ये रूल हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए। और सर कांग्रेस के ये नए सदस्य आए हैं, इनके नाम है पवन खेरा, इनको अभी मैदान स्पीच भी नहीं हुआ, पहले रूल पढ़ने चाहिए और भाई जी को
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर, पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर, पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: एनडीए में नई एंट्री लेने वाले लोकसभा सांसदों से पीएम मोदी की नाश्ते पर मुलाकात, कहा संसद की डिबेट में भाग लें। महाराष्ट्र के सांसदों से बोले, विकास कार्यों में कोई दिक्कत आए तो सीधे मुझसे मिलें।
1: संसद में डेडलॉक के बीच स्थगित हुई लोकसभा की कार्यवाही, राज्यसभा में भी भयंकर उबाल। रिजिजू बोले, विपक्ष ना बताएं कि किस मंत्री को सदन में आना है, जिनके विभाग पर चर्चा है वो मौजूद हैं।
0: सोरेन सरकार और छात्रों के बीच वार्ता के तरीके और तारीख पर सस्पेंस बरकरार, शर्तों पर फंसा पेच, एक छात्र की तबीयत बिगड़ी। राहुल ने बातचीत के बाद दिया एक्शन का भरोसा, विधानसभा के बाहर बीजेपी आक्रमक।
1: राहुल गांधी ने की कैप्टन अमरिंदर सिंह की तारीफ, तो गर्म हुई पंजाब की राजनीति। आम आदमी पार्टी ने कहा, कैप्टन को ही पार्टी में ला सकते हैं राहुल गांधी। प्रगट सिंह बोले, अमरिंदर तारीफ के काबिल हैं।
0: और युवाओं से बातचीत में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा जेंजी देशभक्त और ईमानदार, आंख मूंद कर करता हूं भरोसा। आंदोलन का मतलब राष्ट्र विरोधी नहीं, प्रियंका बोली सर्टिफिकेट नहीं चाहिए।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माह।
1: एक और एक ग्यारह में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त आ रही है बड़ी खबर, संसद में आज भी विपक्ष का हंगामा जारी है, विपक्ष लगातार गृहमंत्री के बयान की मांग कर रहा है।
0: राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्ष नहीं बताएगा कि किस मंत्री को सदन में आना चाहिए, किसको नहीं आना चाहिए। और किरण रिजिजू ने यह भी कहा कि जिन विषयों पर संसद में चर्चा होनी है उन विभागों के मंत्री सदन में मौजूद हैं, तो इसमें विपक्ष ना बताए कि किस मंत्री को सदन में आना है, किसको नहीं आना है।
3: लीडर ऑफ द ऑपोजिशन डिस्टर्ब कर रहा है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हाउस को डिस्टर्ब कर रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं दिया चेयर से। मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूँ, पार्लियामेंट के समय सुबह से लेकर के देर रात तक होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में ही रहते हैं। सदन में जिसका बिजनेस होता है वही मंत्री जवाब देता है। ऑपोजिशन तय नहीं करेगा कौन सा मंत्री कब आना है, ये ऑपोजिशन पार्टी तय नहीं करते हैं। ये गलत फैमिली यहाँ देश को भ्रमण करने के लिए गलत बातें सदन में नहीं कर सकते हैं। कल भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने गलत बात कहा, मैंने प्रोटेस्ट किया। सर मैं करेक्ट करना चाहता हूँ, आपने ऑब्जर्वेशन दिया था कि ऑपोजिशन पार्टी ने ऐसा कहा है, चेयर से कोई डायरेक्शन नहीं दिया किसी मंत्री को सदन में आने के लिए। और दूसरी बात, आप लोग नाराबाजी करके तुरंत चले जाते हैं पार्लियामेंट छोड़ के, लेकिन होम मिनिस्टर सुबह से लेकर देर रात तक पार्लियामेंट में ही रहता है, देश का संचालन करता है। और जब होम मिनिस्टर जवाब देगा आप लोग सुन नहीं पाएगा। आप लोग क्या बात करते हैं, आप लोग को हिम्मत देने से नाराबाजी करते हैं, बिजनेस डिस्टर्ब करते हैं, पॉलिटिक्स प्लेन करते हैं। मैं खंडन करता हूं कांग्रेस पार्टी के नाराबाजी हरकतों को।
0: तो संसद में पक्ष विपक्ष का हल्ला बोल आपने देख लिया। अब आपके लिए चलते हैं झारखंड, जहां पर छात्रों का हल्ला बोल है।

0: तो राज्य में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है, 14 दिन हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल सरकार और छात्रों के बीच कोई ठोस संवाद नहीं हो पाया। आज बर्फ पिघलने की उम्मीद है। आंदोलनकारी छात्र और सरकार के बीच बातचीत की संभावना जताई जा रही है।
1: बातचीत आगे बढ़ पाती है या नहीं, इस पर आज सबकी निगाहें रहेंगी। छात्रों के लिए ये भविष्य का सवाल है, तो सरकार के लिए भी मुश्किल टालने का, क्योंकि हेमंत सोरेन सरकार इस आंदोलन को लेकर लगातार सवालों में दिख रही है। और बीजेपी ने आज फिर प्रदर्शन किया है, तो राहुल गांधी ने भी आंदोलनकारी छात्रों से बात की है, यानी सोरेन सरकार पर हर तरफ से दबाव बढ़ रहा है।
0: तो 14 दिन बाद भी आंदोलन की रफ्तार सुस्त नहीं पड़ी। छात्रों ने सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय डेलीगेशन बनाया, अब इसमें पत्रकारों और वकीलों को भी रखा गया है, लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ छात्रों से बातचीत के पक्ष में है।
2: चौदहवां दिन है जब झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों की मोर्चाबंदी जारी है। मूसलाधार बारिश के बीच छात्र डटे हैं, अड़े हैं। गुरुवार की शाम छात्रों ने एक बार फिर मार्च निकाला, अपने हक की लड़ाई में आवाज बुलंद की।
3: रांची के जयपाल स्टेडियम का नजारा है, जहां लगातार जेपीएससी और जेएसएससी में व्यापक विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, साइड बन रहे हैं और शाम होते ही हर रोज इसी तरह से ये विरोध प्रदर्शन करते हैं। देखिए फ्लैश लाइट जलाया हुआ है मोबाइल का, और इन लोगों ने जयपाल सिंह स्टेडियम का एक चक्कर लगाया है। किसी दिन तिरंगा यात्रा, किसी दिन इसी तरह से फ्लैश लाइट लगा के जो है मार्च करते हैं, कैंडल मार्च किसी दिन करते हैं। कल लंबा तिरंगा यात्रा निकला था इनका।
2: सवाल है कि अब आगे क्या होगा? क्या सरकार और छात्रों के बीच जारी ये गतिरोध खत्म हो पाएगा? क्या सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच संवाद का संकट दूर हो पाएगा? खबर है कि आज छात्रों और सरकार के बीच सीधी बातचीत शुरू हो सकती है। छात्रों ने बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया है। प्रतिनिधिमंडल में छात्रों के साथ वकीलों और पत्रकारों को भी रखा गया है। सरकार का कहना है कि बातचीत में सिर्फ छात्रों को ही शामिल किया जाए, लेकिन छात्र तय प्रतिनिधिमंडल में कोई बदलाव करने को तैयार नहीं है। उनकी ये शर्त भी है कि बातचीत में मुख्यमंत्री या तो खुद शामिल हो या कम से कम उनकी मौजूदगी में बात आगे बढ़े।
4: दोनों तरफ से कमेटियां बना दी गई है। सरकार ने अपनी ओर से 4 मंत्रियों को तैनाती की है, छात्रों ने अपनी ओर से 8 बच्चों को और 3 जो मीडिएटर होंगे जो कि एक गाइड की भूमिका में होंगे, और उसके लिए उन्होंने नियम भी तय किए हैं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, ट्रांसपेरेंसी होगी और बहुत सारी शर्तें जो है सब कुछ रख दी गई हैं। लेकिन अब इंतजार है उस समय का कि सरकार एक समय दे, और उसके बावजूद भी इस खराब मौसम में आज 14 दिन हो चुके हैं जब जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में कहीं कुछ छात्रों का अनशन चल रहा है, एक अनशन टूटा तो 4 और बैठे हैं। आईसा ने दरअसल ये घोषणा की है कि उनके छात्रों का गुट आज विधानसभा घेराव करेगा, और तड़के सुबह होने के बाद भी मंच छोड़ करके नहीं गए हैं। मंच के आसपास इलाके में छात्रों का जमावड़ा, और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वो फिर एक बार आएंगे। सबको दरअसल इंतजार ये है कि कोई यहां धरने पर तो बैठा नहीं रहना चाहता। बच्चों की पढ़ाई लिखाई तैयारी का समय है, कुछ के यहां जो गांव से आते हैं वहां पर खेतीबाड़ी का समय है, तो वो चाहते हैं कि जल्दी ये डेडलॉक खत्म हो। अब सोचिए 2 सप्ताह हो चुके हैं, हालांकि इस बीच में बहुत सारे जो राजनीतिक घटनाक्रम भी हुए, बीती शाम राहुल गांधी का फोन आया, तमाम वो छात्र बैठे हुए हैं।
2: तो छात्रों की अपनी शर्तें हैं और सरकार के काम करने का अपना तरीका है। दोनों पक्षों में रस्साकशी चल रही है। नतीजा क्या निकलता है ये तो नहीं मालूम, लेकिन फिलहाल छात्रों के जोश में कोई कमी नहीं दिख रही। रांची का जयपाल सिंह स्टेडियम हर बीतते दिन के साथ नई इबारत देख रहा है। यह आंदोलन हर दिन रफ्तार पकड़ रहा है, धारदार हो रहा है। यहाँ के नजारे जंतर मंतर की याद दिला रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन का परिणाम जंतर मंतर जैसा ही निकलता है या कुछ और, ये देखने वाली बात है। सत्यजीत कुमार के साथ आशुतोष मिश्रा, रांची आज तक।
1: तो झारखंड के छात्र प्रदर्शन से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, एक प्रदर्शनकारी की तबीयत आज बिगड़ गई। जब डॉक्टर वहां पर आए थे उनकी तबीयत की जांच करने, तो अनशन पर बैठे एक प्रदर्शनकारी की तबीयत बिगड़ गई। उनकी पल्स तेज होने की वजह से उन्हें अस्पताल ले जाने की बात कही जा रही थी। वहां पर कई ऐसे प्रदर्शनकारी हैं जो अनशन पर बैठे हैं, और ये भी अनशन पर थे।
0: आशुतोष हमारे सहयोगी हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं। आशुतोष, बहुत से प्रदर्शनकारी छात्र हैं जिनकी तबीयत अब बिगड़ रही है, बहुत लंबा ये खिस्ता चला जा रहा है, अभी क्या हालात है वहां पर, क्या देख पा रहे हैं आप?
4: दरअसल हिमांशु, जब सुबह मैं बात कर रहा था राहुल 40 साल की, इनकी तबीयत बिगड़ी, मैंने ही डॉक्टरों को बताया कि इनकी पल्स काफी नीचे गिर रहे, आपको इनको जो है इलाज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा था, 4 दिनों का अनशन, ऊपर से उमस वाली गर्मी, शरीर से पसीना भी निकल रहा है, तो वाइटल्स बिगड़ रहे थे। और ऐसे में देखिए, छात्र हैं, वो अपनी मांग वो लेजिटिमेट मांग पर है, 40 साल की इतनी परीक्षाएं देने के बाद भी हर साल ये घटना हो जाती है, हालांकि अब डॉक्टर लगातार निगरानी कर रहे हैं तो उन्हें ले जाया गया है। अब मैं दरअसल आया हूं बिरसा चौक पर, वो इसलिए क्योंकि मेरे पीछे आयशा के कुछ छात्र हैं, वो इकट्ठा हो रहे हैं। आपको याद हो, अगर सरकार से बातचीत नहीं हुई तो ये चेतावनी है कि 10 तारीख को विधानसभा का घेराव और मार्च होना है, लेकिन छात्रों के अलग अलग जो गुट हैं, जैसे आयशा के जो छात्र हैं, उन्होंने कहा है कि वो यहां बिरसा चौक से लेकर के आगे 3 किलोमीटर का रास्ता जो विधानसभा का है वहां तक मार्च करेंगे, घेराव करेंगे, तो उसके लिए पूरी सतर्कता बरती गई है। लेकिन छात्रों के साथ मिलने का जो समय है वो, अब सोचिए, सरकार ने डेलीगेशन बना दिया, छात्रों ने डेलीगेशन बना दिया, एक लिएजन ऑफिसर भी है, लेकिन ये नहीं तय कर पा रहे कि बातचीत कब हो। सरकार ने कम से कम इतना संकेत जरूर दिया है कि वो जो रवैया है थोड़ा सा नरम रखेंगे, बातचीत आगे की जा सकती है, गुंजाइश की जा सकती है, लेकिन रास्ता कैसे निकले, किससे मिले, क्योंकि छात्र चाहते हैं मुख्यमंत्री हों, अब ये नहीं पता कि मुख्यमंत्री उस संवाद में आना चाहते हैं। वो कह रहे हैं अच्छा ठीक है, बात मत कीजिए, मंत्रियों से करेंगे, मुख्यमंत्री वहां बैठे रहे ताकि हमें आश्वासन मिला। उन्होंने यहां तक छात्रों के अलावा कोई और अपनी बात भी नहीं रखेगा। तो अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बिरसा चौक पर, छात्रों का ये जमावड़ा, आयशा का, जो थोड़ी देर में विधानसभा मार्च करेंगे।
0: और देखिए, यही बात तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि जब छात्र तैयार है, सरकार तैयार है, तो फिर पेज कहां पर फंसा हुआ है। बने रहिए हमारे साथ, दोबारा हम आपसे जुड़ेंगे। तो आंदोलन के 14 दिन बीत चुके हैं, अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत बिगड़ने लगी है। एक छात्र राहुल, तबीयत खराब हुई, अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, लेकिन बाकी छात्र अभी भी डटे हुए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ये उनके भविष्य का सवाल है, जहां समझौता हो ही नहीं सकता।
5: इस मंच पर गांधी हैं, अंबेडकर हैं, ज्योतिबा राव फुले हैं, बिरसा मुंडा हैं, भगत सिंह हैं, तो शिबू सोरेन भी हैं। वही शिबू सोरेन जिनके बेटे हेमंत सोरेन की झारखंड में सरकार है, और जिस सरकार की मुखालफत में छात्रों का ये मोर्चा डटा है। गुरुजी का ये टंगा पोस्टर इस बात का संदेश है कि आंदोलन पूरी तरह गैर राजनीतिक है।
6: अरे भाई, बच्चे हैं, ये अनएम्प्लॉयड हैं, ये संघर्ष कर रहे हैं, इनको तो जरूरत है कुछ मदद, आप जो मॉरली कीजिए, फिजिकली कीजिए, मेंटली कीजिए।
4: हो जाते हैं लोग इस तरह से ऑफर करने।
7: हाँ, बहुत सारे सर, हम लोग का स्टार्टिंग दिन से ही है, बहुत कुछ चेक हम लोग नहीं नहीं, हम लोग 1 रुपए पैसा नहीं चाहिए, नहीं मेरे पास किसी पर QR कोड है, नहीं किसी का अकाउंट, हम लोग देते हैं। हम लोग का कहना है कि आप अगर हम लोग का साथ देना चाहते हैं तो आप आइए, और जो भी आपको लग रहा है कि कमी दिख रहा है इसमें, क्योंकि धीरे धीरे ही इतना बड़ा भी खड़ा हुआ है सर, कि जो पंडाल दिख रहे हैं बहुत छोटी से, जिस दिन मेरे पास कुछ नहीं था, बिना छत के हम लोग रहते थे
6: वहां से
4: किसी के मन में सवाल आता हो ना कि आंदोलनों को फंडिंग कहां से होती है, एक बार आइए यहां, जब आएंगे तो आपको समझ में आएगा। अब मैं यहां खड़ा था, ये आगे इनसे पूछते हैं जरा QR कोड दीजिएगा, वो कह रहे हैं कैसा QR कोड, पैसा तो चाहिए ही नहीं।
5: झारखंड की इस धरती ने कई आंदोलन देखे, और अब बिरसा मुंडा की इस धरती पर नौजवानों किस आंदोलन को पूरा देश गौर से देख रहा है। 4 दिनों से अनशन पर बैठे राहुल की तबीयत तेजी से बिगड़ रही है, शरीर बुखार से तप रहा है, लेकिन इरादे बुलंद हैं। कई बार राहुल परीक्षा में बैठे मगर कामयाबी नहीं मिली, सहायक शिक्षक परीक्षा पास की लेकिन नियुक्ति नहीं हुई।
4: तो आपने भी प्रतियोगी परीक्षाएं दी थी अपने समय में?
8: JPSC का लगातार परीक्षा लिखते हैं, पहले तो PT निकल जाता था, इस बार तो MRA लीक हो गया, तो बिक गया, तो निकलना तो दूर की बात है। सहायक HR का भी परीक्षा क्वालिफाई हूँ, सीट खाली है, फिर भी सरकार नियुक्ति नहीं दे रही है, टुकड़ों टुकड़ों में नियुक्ति देती है, जितना सीटों का सेटिंग होता है उतना ही को नियुक्ति देती है। जब विज्ञापन एक बार आया तो नियुक्ति उनको एक बार देना चाहिए था।
5: 27 साल के सविता की कहानी भी झकझोर देने वाली है। पापा ने जतन से पढ़ाया, उम्र बीत रही है, मेहनत की है, लेकिन सिस्टम धोखा देता रहा, नौकरी अभी तक हाथ नहीं आ पाई।
9: पढ़ाई करने के चक्कर में मेरा घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं था, तो भाई का भी शादी करवा दिए कि हम पढ़ लेंगे, कुछ कर लेंगे तो आगे हमारा फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा, घर का भी स्थिति ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ का परिस्थिति इतना गंदा है ना कि सर हम आज तक एक रिजल्ट नहीं कर पाए। यहाँ तक कि पता है सर, हम जैसे होमगार्ड से लेकर JPSC तक का कर चुके, अगले बार हम होमगार्ड का भी रनिंग कर चुके।
5: इस मंच पर 8 छात्र अनशन पर हैं, उनमें से एक हबीबा भी है। सिस्टम और शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ हबीबा के आक्रोश की भी ठोस वजह है।
4: इतनी परीक्षाओं में आप पास हुई, क्वालिफाई कर गए?
10: जी, मैंने पंचायत सचिव का एग्जाम दिया था, 2017 की वैकेंसी थी, तो उसमें मैं पास हो गई थी। फिर उसमें सेकंड एग्जाम था हिंदी टाइपिंग का, तो उसमें भी क्वालिफाई हुई। फिर DV भी हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, हुआ ऐसे भी तो डिले कर ही रही थी, तुरंत नहीं कर रही थी एग्जाम वगैरह, फिर 1 साल लगे, फिर 2 साल लगे उस एग्जाम को। उसके बाद जब उसका रिजल्ट देना था तो 5 साल तक प्रोटेस्ट करना पड़ा।
5: राहुल, सविता, हबीबा, झारखंड के हजारों छात्रों की शिक्षा व्यवस्था से नाराजगी है, क्योंकि ये उनके रोजगार और भविष्य का सवाल है।
4: 14 दिन से झारखंड के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहा एक आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार पर दबाव है कि वो छात्रों की सुनवाई करे। सुनवाई इसलिए क्योंकि जेपीएससी परीक्षा में धांधली को लेकर के छात्र आंदोलित हैं, और 2 सप्ताह बीतने के बाद अब बात सिर्फ इतनी है कि सरकार ने प्रतिनिधिमंडल बनाया है तो एक तरफ छात्रों ने अपना दल बना लिया। इन दोनों के बीच बातचीत कब होगी, उस समय का इंतजार। हम आपको एक बार फिर तस्वीरें यहां दिखा देते हैं, और इन्हीं तस्वीरों की वजह से दरअसल सरकार पर वो दबाव आया है, और इसी दबाव के साथ सवाल यह भी था कि क्या दिल्ली तक इन छात्रों की आवाज नहीं पहुंच रही है। इन सब के बीच बीती शाम राहुल गांधी संसद में लोक नेता विपक्ष, उन्होंने छात्रों से बातचीत की है।
5: आशुतोष मिश्रा, रांची आज तक।
1: तो झारखंड में एक तरफ छात्रों का प्रदर्शन है तो दूसरी तरफ विधानसभा में लगातार विपक्षी पार्टियों का विरोध चल रहा है। हमने ये तस्वीरें विधानसभा के सत्र से आती हुई देखी है, परिसर से आती हुई देखी है, जहां पर बीजेपी पार्टियां खड़ी हैं और नेता विपक्ष खड़े हैं, और वहां पर नारेबाजी और लगातार मांग इस्तीफे की।
0: सत्यजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बात करते हैं उनसे। सत्यजीत, क्या हालात है इस वक्त वहां पर, और विरोध का हल्ला बोल, विपक्षियों का हल्ला बोल किस तरह से आगे बढ़ रहा है? सत्यजीत,
11: आवाज आ रही।
0: सत्यजीत, विपक्ष की तरफ से प्रदर्शन लगातार जारी है, छात्रों का प्रदर्शन तो चल रहा है, लेकिन यहां पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं, क्या हालात हैं अभी?
11: देखिए, बिल्कुल विधानसभा चलने नहीं दिया जा रहा है। सदन के शुरू होते ही सदन के बाहर और अंदर जो है हंगामा दिखा, लगातार बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी होते रहे, सीबीआई जांच की मांग लगातार होते रही, ये आरोप लगाया गया विपक्ष की तरफ से। यहाँ सीटें बेची जा रही है, विद्यार्थियों के अधिकार के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और यही चीज सदन के अंदर भी दिखा। जब जो है
0: मतलब गतिरोध हर जगह बरकरार है, लेकिन समाधान कब निकल पाएगा इसका अभी तक कोई जवाब नहीं मिल पाया।
1: तो अब बात करते हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत की, जो मिशन जेंजी पर हैं, और मोहन भागवत ने कल जेंजी से सीधा संवाद किया, उनसे जुड़े हर मसले पर खुलकर जवाब दिया।
0: और फिर चाहे वो सरकार का एक्शन हो, पैलेट गन का इस्तेमाल हो, या फिर शिक्षा व्यवस्था हो, ये भी आपको बता दें कि मुंबई में हुए इस कार्यक्रम में 11 से 19 साल की उम्र के करीब 2000 छात्र शामिल हुए।
12: पैलेट गन फायरिंग हुआ था, तो ये सारे विषय के
13: और एक बात,
12: हाँ, आपको आपका क्या मानना है, ये होना चाहिए,
13: ये जो
12: हाँ,
13: बातें है ना
12: जी,
13: ये क्यों हुआ, क्या हुआ, इसके कारणों में जाना पड़ेगा, जिसके लिए जो जानकारी चाहिए मेरे पास नहीं है, आपके पास भी पूरी नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है
12: जी।
13: लेकिन इसको देख के कहां गड़बड़ है ये तय करना पड़ेगा। मैं अभी ये नहीं कह सकता कि क्या हुआ क्यों हुआ, क्योंकि सही गलत मुझे भी मालूम नहीं, आप भी पढ़कर बता रहे हैं, मैं भी पढ़कर बता रहा हूं। आज सुबह मैं आ रहा था तो कुछ मॉड्यूल्स वगैरह इसमें घुस गए, उनका कुछ भंडाफोड़ वगैरह इसी न्यूज में पढ़ रहा था, वो कितनी सही है नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे अगर आंख मूंदकर विश्वास रखने के लिए कहा तो मैं जैन जी पर विश्वास रखूंगा।
12: लोग हमें बोलेंगे saying that these people are agents of some country and so and so, तो सर
13: नहीं,
12: इसमें
13: वो मैं कह रहा हूं ना, इसमें मैं कह रहा हूं हाँ, कि जैन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं जी, अपने लोग है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है
12: जी सर।
13: इस अपनेपन से डायलॉग का 7 महीने बोला, अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है, वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है, ये होता है, तो होना चाहिए। और जैन जी वगैरह ऐसी है ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता,
12: आप क्या मानते हैं?
13: विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब जब पूछा गया तब मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जैन जी जैन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है।
12: अरे वाह, बढ़िया है,
13: और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है।
1: मोहन भागवत से आरक्षण को लेकर भी बातचीत हुई. उन्होंने कहा कि जब तक समाज में भेदभाव रहेगा तब तक आरक्षण भी रहेगा.
13: सोशल कारणों से रिजर्वेशन है जी. सोशल डिस्क्रिमिनेशन जब तक है जी. रिजर्वेशन चलेगा जी. जिनको मिल गया और जिनका ठीक हो गया जी. उन उतना लार्ज हार्टेड चाहिए, उन्होंने दे देना चाहिए. और अगर ये ठीक से होता है तो वहां ऐसे स्वर भी उठ रहे हैं जहां रिजर्वेशन मिलता है जी. वो अब ऐसा थोड़े है लेकिन कहना शुरू हो गया है कि अब हमने ले लिया, हमारा ठीक हो गया, अब दूसरे को दे दो. कैटेगराइजेशन की मांग कुछ प्रांतों में हो गई, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया. ये क्यों हुआ? इसलिए कि सबको मिलना चाहिए. तो देर इज ए स्ट्रीम इन दोज हु गेट द रिजर्वेशन दैट दिस इज फॉर अवर अपलिफ्टमेंट, दिस इज नॉट द परमानेंट मेजर एंड वी हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस, इम्प्रूव अवर सेल्फ एंड मेक दिस यूजफुल फॉर अदर्स दोज हु हैव गॉट येट. ये वहां स्ट्रीम है, उसको एनकरेज करना चाहिए. इसमें राजनीति छोड़ देनी चाहिए. सारे मेजर्स को प्रामाणिकता से इम्प्लीमेंट किया तो जल्दी उसकी आवश्यकता समाप्त तो होगी.
0: और यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए. आप देखते रहिए आज तक,
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.

0: के समझ से प्रस्ताव मंजूरी है।
1: यूपी में भले विधानसभा का सत्र चार दिन का छोटा हो, लेकिन इस छोटे सत्र में भी सरकार ने ऐसे बड़े बड़े फैसले किए कि सियासत उबल गई है। मदरसे में 12वीं के बाद की पढ़ाई बंद करने के फैसले के बाद अब यूपी सरकार ने मदरसा शिक्षक वेतन बिल भी वापस ले लिया। 10 साल पहले अखिलेश राज में पारित हो चुका ये विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के बिना लटका हुआ था, क्योंकि इसमें बनाए गए प्रावधानों को लेकर कानूनी पहलू के सवाल खड़े किए गए थे। ये विधेयक 2016 में अखिलेश राज में दोनों सदनों में पारित हो गया था, लेकिन गवर्नर राम नाईक ने इस पर सवाल उठाए थे, क्योंकि इसमें प्रावधान था कि मदरसा टीचर और कर्मचारियों को रेगुलर स्कूल की तरह तय तारीख पर वेतन मिले। वेतन में देर होने पर जिम्मेदार अफसर के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने वाला था, जबकि मदरसा कर्मियों के खिलाफ पुलिस FIR दर्ज नहीं कर सकती थी। मदरसा कर्मियों की विभागीय जांच से भी छूट थी। इस बिल को विधानसभा ने औपचारिक रूप से प्रस्ताव पारित करके वापस कर लिया है। इससे पहले यूपी के डिप्टी CM के मदरसों को लेकर दिए गए बयान को लेकर भी हंगामा हुआ था।
2: मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री।
3: ये मानसिक रोगी हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि बांकीपुर इनके अध्यक्ष की सीट जनता ने हरा दी।
1: केशव मौर्य का ये बयान इसीलिए विपक्ष के निशाने पर आया क्योंकि यूपी सरकार मदरसा शिक्षा से जुड़े संशोधनों पर तेजी से आगे बढ़ रही है। अब यूपी के मदरसों में 12वीं तक की पढ़ाई होगी, डिग्री कोर्स पूरी तरह से बंद होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप मदरसों में कामिल यानी ग्रेजुएशन और फाजिल यानी PG की पढ़ाई बंद की जाएगी। इसके लिए मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में संशोधन का प्रस्ताव है। दरअसल योगी सरकार में मदरसों की पढ़ाई को लेकर शुरू से ही सख्त सरकारी समीक्षा होती रही है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मदरसों की ओर से ग्रेजुएशन PG की डिग्री देना यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 के खिलाफ है, लिहाजा मदरसे 12वीं तक की पढ़ाई ही करा सकते हैं। ऐसे में यूपी में मौजूद कुल 4,536 आलिया स्तर के मदरसों पर असर होगा, जिनमें से करीब 1,000 मदरसों में ये ग्रेजुएशन और PG डिग्री दी जा रही थी। इन पाठ्यक्रमों में लगभग 37,000 से 38,000 छात्र पढ़ाई कर रहे थे, जिन्हें अब UGC से मंजूर विश्वविद्यालयों का रुख करना पड़ेगा। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नवंबर 2024 में हिंसा की आग में धधक चुके संभल की आंच पर सियासत अब भी पक रही है। संभल हिंसा की वजहों की जांच के लिए बनाए गए न्यायिक आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश की गई तो सियासत एक बार फिर उबली। 450 पन्नों वाली इस रिपोर्ट को इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता वाली कमेटी ने तैयार किया है। रिपोर्ट की बड़ी बात यह है कि संभल में हिंसा पूर्व नियोजित साजिश

0: नवंबर 2024 में हिंसा की आग में धधक चुके संभल की आंच पर सियासत अब भी पक रही है। संभल हिंसा की वजहों की जांच के लिए बनाए गए न्यायिक आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश की गई तो सियासत एक बार फिर उगली। 450 पन्नों वाली इस रिपोर्ट को इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता वाली कमेटी ने तैयार किया है। रिपोर्ट की बड़ी बात यह है कि संभल में हिंसा पूर्व नियोजित साजिश जिसे समाजवादी सांसद जियाउर रहमान बर्क, एसपी विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल, जामा मस्जिद कमेटी के प्रेसिडेंट जफर अली, वकील कासिम अली, मशहूद फारूकी, लड्डन खान ने भड़काई थी। असामाजिक तत्वों ने मस्जिद पर कब्जे और गिराने की अफवाह फैलाने वाले वीडियो फैलाए। 19 और 22 नवंबर 2024 को बर्क के भाषणों से अयोध्या से तुलना करते हुए माहौल बिगाड़ा गया। एफएसएल की बैलिस्टिक जांच और रिकंस्ट्रक्शन रिपोर्ट से पुष्टि हुई है कि हिंसा में चार लोगों की मौत पुलिस फायरिंग से नहीं बल्कि मुस्लिम पक्ष से हुई फायरिंग का नतीजा थी।
1: हम लोग उस समय भी कहते थे कि ये संभल की हिंसा प्रायोजित है और उसमें समाजवादी पार्टी के महत्वपूर्ण पदाधिकारी लोग इन्वॉल्व हैं प्रवोक करने के मामले में। अब कमीशन ने ऐसा कहा है तो वो बात सिद्ध हो गई।
2: एसआईटी कोई न्यायालय नहीं है, लेकिन न्यायालय का भी काम ने जैसे कि रिपोर्ट अभी सरसरी तौर पे मुख्तसर मैंने पढ़ी है, उसमें न्यायालय का भी इस तरह काम एसआईटी ने किया है। तो ऐसी एसआईटी बनाने से क्या फायदा जिससे कि हक और इंसाफ नहीं मिल पाए। मुझे तो इसमें पूरी राजनीतिक बू आती है। एक साल पहले जब रिपोर्ट पेश कर दी गई थी तब से कि उसको बंद कमरे के अंदर टेबल पर सजा कर रखा गया था, एक साल पहले क्यों विधानसभा के अंदर नहीं पेश की गई? क्या विधानसभा का सत्र एक साल बाद चल रहा है?
0: हालांकि विधानसभा में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि मौके से मिले विदेशी 12 बोर के खोके के अलावा भीड़ की ओर से पत्थरबाजी और फायरिंग की घटनाएं भी दर्ज है। समाजवादी पार्टी 28 नवंबर 2024 को गठित इस न्यायिक आयोग की रिपोर्ट को पेश किए जाने में एक साल की देरी पर भी सवाल उठा रहे हैं क्योंकि ये रिपोर्ट काफी पहले से सरकार के पास थी। इस रिपोर्ट में हिंसा के क्रम के बारे में बताया गया है कि 19 नवंबर 2024 को मस्जिद के सर्वे रोकने के बाद से ही हिंसा की साजिश शुरू हो चुकी थी। 21 नवंबर 2024 को संभल सांसद के नाम से बने व्हाट्सएप ग्रुप से बड़ी संख्या में भीड़ को मस्जिद में नमाज के लिए बुलाया गया। सांसद पर के भाषण के बाद तनाव बढ़ा, हिंसा वाले दिन सरतन से जुदा वाले नारे लगे और भीड़ ने पुलिस पर हमले किए। भीड़ में शामिल आपराधिक तत्वों ने पुलिस से पिस्टल छीन कर फायरिंग की जिसमें 7 पुलिसकर्मी घायल हुए। रिपोर्ट के मुताबिक बर्क और सुहेल तुर्क और पठान के वर्चस्व बनाए रखने के लिए लोगों को उकसा रहे थे। बता दें कि 24 नवंबर 2024 को संभल में शाही जामा मस्जिद के कोर्ट के आदेश पर सर्वे के दूसरे चरण के दौरान हिंसा भड़की थी। ये सर्वे उस याचिका पर हो रहा था जिसमें दावा किया गया था कि जामा मस्जिद प्राचीन हरिहर मंदिर की जगह पर बनाई गई थी। इस घटना के सिलसिले में 4 लोग मारे गए थे और दर्जनों घायल हुए थे जिसके बाद 12 एफआईआर दर्ज की गई। हिंसा के बाद योगी सरकार ने 28 नवंबर 2024 को 3 सदस्यों वाले जुडिशियल कमीशन का गठन किया था जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा के अलावा रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अमित मोहन प्रसाद और पूर्व डीजीपी अरविंद कुमार जैन शामिल थे।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, 12:12 रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानशु दीक्षित। शुरुआत संसद में आ रही है, शोर शराबा हो रहा है। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, ये गतिरोध कब रुकेगा? सबके मन में एक ही सवाल है, राज्यसभा तो सोमवार तक के लिए स्थगित, लेकिन लोकसभा के भी वही आसार नजर आ रहे हैं क्योंकि हंगामा यहाँ जारी है।
1: चूंकि सरकार से जो कोशिश की गई है, राहुल गांधी से बात की गई है और कहा गया है कि गतिरोध को जो है खत्म किया जाए और विपक्ष जो है जो भी विधायकों पे चर्चा हो रही है उसमें पार्टिसिपेशन करे और एक देश को संदेश जाए कि सभी महत्वपूर्ण बिलों पर विपक्ष और सत्ता पक्ष एक साथ मिलकर चर्चा करते हैं। आपका विरोध हो सकता है लेकिन हम दुश्मन नहीं है। और इसी कारण से अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी ने भी ये कहा था कि मैं अपनी पार्टी और विपक्ष का जो भी इस पर जवाब होगा उसको देखकर जो है वो आपको जवाब हम आपको उसकी स्थिति आपको स्पष्ट कर देंगे। लेकिन जिस तरीके से गतिरोध बना है उसके बाद विपक्षी साफ मांगे कि गृह मंत्री आकर जो है वो सदन के अंदर जो है बयान दें और उसके साथ साथ राम मंदिर में चोरी मामले पर जो है चर्चा हो जाए। लेकिन अब देखना यह है कि सरकार की तरफ से क्या इश्योरेंस दिया जा रहा है क्योंकि सरकार चाहती है कि विपक्ष एक साथ आए और FCRA पर जो बिल है अमेंडमेंट बिल है उसमें अगर आप देखेंगे तो 12 तारीख को जो है सरकार जो है वो लोकसभा में पास करने के लिए जो है वो बिल्कुल लेकर आ सकती है।
0: अब जैसे कि हिमांशु आप बता रहे हैं कि अमित शाह की मौजूदगी की मांग की जा रही है विपक्ष की तरफ से, तो राज्यसभा में जब विपक्ष कह रहा था कि अमित शाह को होना चाहिए सदन में, अब इसका जवाब किसने दिया? इसका जवाब दिया संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने, वो भी सुनाते हैं।
2: लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, कोई डायरेक्शन नहीं दिया चेयर से। मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं पार्लियामेंट के समय सुबह से लेकर के देर रात तक होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में ही रहते हैं। सदन में जिसका बिजनेस होता है वही मंत्री जवाब देता है। ऑपोजिशन तय नहीं करेगा कौन सा मंत्री को कब आना है, ये अपोजिशन पार्टी तय नहीं करते हैं। आप लोग नाराबाजी करके तुरंत चले जाते हैं पार्लियामेंट छोड़ के, लेकिन होम मिनिस्टर सुबह से लेकर देर रात तक पार्लियामेंट में ही रहता है, देश का संचालन करता है। और जब होम मिनिस्टर जवाब देगा आप लोग सुन नहीं पाएगा। आप लोग क्या बात करते हैं, आप लोग को हिम्मत नहीं से नाराबाजी करते बिजनेस डिस्टर्ब करते
0: तो मिनिस्टर जब बोलेंगे तो विपक्ष सुन नहीं पाएगा, ये किरण रिजिजू कह रहे थे। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एकनाथ शिंदे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए संसद भवन पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एकनाथ शिंदे मिलने पहुंचे हैं संसद भवन। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हिमांशु, इस मुलाकात से जुड़ी क्या जानकारी आपके पास आ रही है, क्या उद्देश्य है?
1: जी बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मिल रहे हैं तो कई इश्यूज पे जो है वो उनकी मुलाकात होगी और महाराष्ट्र के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के उसकी जो है वो चर्चा है। उसके साथ साथ जो जल्दी को लेकर एक आउटरीच प्रोग्राम है उसको लेकर भी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो चर्चा करने वाले हैं। तो तमाम इश्यूज पर जो है उनका चर्चा होगी और क्योंकि UGT के 6 सांसद चुनने के बाद जो इतना शिंदे शिवसेना के अंदर जो शामिल हुए हैं उसको लेकर भी जो है वो बातचीत होगी क्योंकि राजनीति के सांसद भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो है वो ब्रेकफास्ट पे थे और उनको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया क्योंकि इस तरीके से NDA जो है एग्जिट है और यहाँ सभी सांसदों को जो है एक मान दृष्टि से देखा जाता है, चाहे वो एक सिंगल पार्टी के सांसद हो या 150 सांसदों वाली पार्टी हो।
0: शुक्रिया मानसी जुड़ने के लिए आपका हमारे साथ, जानकारी के लिए भी, इस मुलाकात से जुड़ी देने के लिए। अब 12:12 रिपोर्टर में अगली रिपोर्ट रांची से। झारखंड सरकार और छात्रों के बीच बातचीत को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। सरकार और छात्रों के बीच इस बात पर मतभेद उभर आए हैं कि बातचीत में कौन लोग शामिल होंगे। सरकार सिर्फ छात्रों से वार्ता पर तैयार है जबकि छात्रों ने बातचीत के लिए जो अपनी 11 सदस्यीय टीम बनाई है उसमें पत्रकार भी हैं और वकील भी हैं। अब दोनों पक्षों के बीच देर रात तक बातचीत का दौर चलता रहा लेकिन प्रतिनिधिमंडल की संरचना पर सहमति नहीं बन सकी, इसके चलते वार्ता आगे नहीं बढ़ सकी। अब इस बीच खबर यह भी है कि छात्रों ने यह मांग रख दी है कि वो CM की मौजूदगी में ही बात करेंगे, यानी हेमंत सोरेन होने चाहिए। आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए। आशुतोष, सरकार

0: और छात्रों के बीच में बातचीत तो हो रही है, लेकिन जहां पर पेच फंसा हुआ है वो कब दूर होगा गतिरोध, कैसे सहमति बनेगी?
1: आज संभवतः जो गतिरोध है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी हमें जो जानकारी मिली है सरकार के प्रतिनिधियों से कि छात्रों के साथ चूंकि उनकी बातचीत हो रही है, जो अधिकारी हैं बातचीत कर रहे हैं वो एक समय थी। दरअसल कल विधान से ये भी बात थी कि क्या प्रोजेक्ट भवन में बुलाया जा सकता है या विधानसभा में, लेकिन विधानसभा में चूंकि शोक दिवस भी एक रखा गया था तो आज अब पूरी संभावना है कि बाप देखिए एक तरफ तो हंगामा होगा। इनफैक्ट आपको मैं कुछ तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा हिमाचल साथ साथ कि अब सिर्फ आंदोलन एक मैदान में सीमित नहीं है, बल्कि जो आइसा ग्रुप है और AISF है, जो लेफ्ट विंग के जो अलग अलग संगठन है, छात्रों के संगठन हैं, वो विधानसभा मार्च करने के लिए सड़कों पर भी उतर आए हैं। तो दबाव सरकार पर हर तरफ का है कि विपक्ष विधानसभा में और बच्चे जो है मैदान में हैं, तो दूसरे जो संगठन हैं वो सड़कों पर उतर गए हैं, और इसीलिए अब जो है कि आंदोलन जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है तो सरकार पर दबाव है। तो ये माना जा रहा है कि आज शाम तक एक वक्त ऐसा जरूर आएगा कि इनको एक जगह कहीं बिठाया जा सके। छात्र इस बात के लिए भी तैयार हैं कि सरकार जहां कहेगी वो वहां चले जाएंगे, वहां पर बातचीत होगी, लेकिन अभी भी दरअसल अब क्या है दोनों तरफ से थोड़ा सा जो है रवैये में एक नरमी जरूर आई है कि हां बातचीत की शुरुआत हो जाए, क्योंकि शर्तों के साथ समझौता नहीं है। अब ये बात अलग है कि बातचीत के लिए क्या मुख्यमंत्री माने ना माने, तो छात्र है कि चलो बातचीत करके देखते हैं। छात्रों को क्या हमें यह नरमी देखी जा रही है कि अगर हमें यह आश्वासन मिलता है कि फॉरेंसिक टेस्ट के बाद सरकार अगर ये मानती है कि आधार मिल जाता परीक्षा नतीजों को रद्द करेंगे। हम साथ साथ आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो छात्रों के संगठन है वो उतर आए हैं, और इसी के साथ साथ दूसरे संगठन भी वो किस सड़कों पर उतर आए हैं। यहाँ से लेकर के विधानसभा मार्च होने वाला है और बैनर पोस्टर के साथ की JPSC भ्रष्टाचार को बंद कीजिए। अब यहाँ पर आपने संगठनों को देखा, यहाँ पर छात्र खड़े हैं, वो इसीलिए खड़े हैं कि दबाव बढ़ेगा तो बातचीत होगी। बस अब ये मार्च यहाँ से विधानसभा की ओर आगे बढ़ेगा। जाहिर है पुलिस आगे बहुत ज्यादा जाने नहीं दे सकती, लेकिन विधानसभा मार्च के लिए यहाँ पर छात्र इकट्ठा हो गए हैं, तो संभवतः आज शाम अभी जो जानकारी
0: आशुतोष बहुत स्पष्ट है, यानी छात्र अपनी बात पर अड़े हुए हैं और सरकार को अब एक कदम आगे जरूर बढ़ाना ही होगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो झारखंड में छात्रों के आंदोलन में एक अहम चेहरा बनकर उभर रहे हैं छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो। अब महतो छात्रों की मांगों को लेकर आमरण अनशन पर हैं, उनकी क्या स्थिति है ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता सत्यजीत।
2: रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में लगातार इनडेफिनेट फास्ट कर रहे हैं JPSC और JSSC में भ्रष्टाचार के खिलाफ देवेंद्रनाथ महतो उनके साथ अन्य दो, और जो दूसरा सेंटर है वहां से भी चार स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनडेफिनेट फास्ट पे हैं। देवेंद्रनाथ महतो ने जल का भी त्याग कर दिया था सोनम वांगचुक के पहल के बाद, उन्होंने पानी और नमक लेना शुरू किया है, लेकिन उनके जो वाइटल्स हैं वो लगातार डिटोरिएट कर रहे हैं, 5 दिन से वो फास्ट पे हैं। ऐसे में जाहिर तौर पे शरीर जो है उनका, बाकी ऑर्गन्स जो हैं वहाँ पे भी कमजोरी दिख रही है। हालांकि नज़र जो है हेल्थ डिपार्टमेंट की उन पे है और पीरियोडिक चेकअप उनका हो रहा है, लेकिन फास्ट का उनका आज 5वां से 6ठा दिन है, तो ऐसे में लगातार जो है उनके ऑर्गन्स पे प्रभाव पड़ रहा है। जिस तरह से वो लगातार फास्ट पे हैं और शर्तें वही हैं, डिमांड्स वही हैं कि सरकार आए उनसे बातचीत करे, JPSC का जो 14th प्रीलिम्स एग्जाम्स हुआ है उसको रद्द किया जाए, CBI प्रोब हो, CGL में जो गड़बड़ियां हुई हैं उसका प्रोब हो, साथ ही साथ जो TDPL जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी था उन्होंने जो इम्तिहान करवाए हैं उसको कैंसिल करके उसका प्रोब करवाया जाए।
0: और 12:12 रिपोर्टर में अगली खबर है बिहार की राजधानी पटना से। पटना में बड़ी पहाड़ी के पास हादसे में एक बच्ची की मौत और उसके बाद बवाल मची है, एक बस ने बच्ची को कुचल दिया, फिर गुस्साए परिजनों ने सड़क पर जाम लगा दिया, बस को आग के हवाले कर दिया, पुलिस की गाड़ियों में भी आगजनी कर दी गई, जमकर हंगामा हुआ, पुलिस वालों को दौड़ा दिया गया।
3: अभी हम मौजूद है पटना के अगम कुआं इलाके में, यहाँ बड़ी पहाड़ी के पास एक बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद जो है स्थानीय लोगों ने यहाँ दर्जनों गाड़ियों को फूंक दिया है, पुलिस की गाड़ियों में भी आग लगाया है। वहीं अब पुलिस जो है मौके पर पहुंच गई है और जितने भी यहाँ पे प्रदर्शनकारी थे और जो लोग गाड़ियों में आग लगा रहे थे उन सबको अब यहाँ से खदेड़ दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पहुंच चुकी है और जो यहाँ दर्जनों गाड़ियों को लोगों ने आग लगाया उसके लिए जो लोग जिम्मेवार है उसकी तलाश की जा रही है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं भारी संख्या में महिला पुलिस बल यहाँ दिख रही है जो अभी घटनास्थल पर पहुंची है, और हमारे पीछे देखिए यहाँ एक कई पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दिया गया है। जब यहाँ वीडियो बना रहे थे मीडियाकर्मी, उन्हें भी निशाना बनाया गया और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। और देखिए पूरा बाईपास जो है, देखिए यहाँ पे जाम है घंटों से, क्योंकि एक बच्चा जो है यहाँ एक बस की चपेट में आया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई और आक्रोशित लोगों ने यहाँ जमकर बवाल काटा। और अब भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पहुँच चुकी है और जो प्रदर्शनकारी है उसे अब एक एक कर खोजा जा रहा है, जिन लोगों ने यहाँ उपद्रव मचाया था और दर्जनों गाड़ियों में जो है तोड़फोड़ की, कई बसों को जो है आग के हवाले कर दिया गया और पुलिस की कई गाड़ियों है उसे निशाना बनाया गया।
0: और सीधे आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, पटना से ही वो तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर भीड़ बहुत उग्र हो गई, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। अब ये देखिए वो तस्वीरें, जैसे अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे कई गाड़ियों को जला दिया गया है, तो यहां पर ये देखिए गाड़ियां जल रही हैं। और ये हुआ क्यों, बस ने एक
3: की कई गाड़ियों है उसे निशाना बनाया गया।
0: और सीधे आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, पटना से ही वो तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर भीड़ बहुत उग्र हो गई, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। अब ये देखिए वो

0: in association with
1: Sera Sanitary Wear. It's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: सावन के पावन महीने में महाकाल की दिव्य धरती उज्जैन से आस्था का सबसे बड़ा मंच, जहां जुटेंगे देश के सबसे प्रतिष्ठित संत और मुख्यमंत्री। देखिए धर्म संसद 7 अगस्त दिन भर सिर्फ आज तक पर।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइस

आज भर का अखिलेश यादव पर हमला, बोले पीडीए के नाम पर ढोंग कर रहे हैं, आपके लोग कर रहे हैं अत्याचार, गाजीपुर का जिक्र करते हुए सपा पर गंभीर आरोप लगाए। एसपी नेताओं को अखिलेश यादव की नसीहत, बोले जाति धर्म पर टिप्पणी से बचे, आचरण और वाणी पर संयम रखें। अखिलेश यादव की नसीहत पर बीजेपी का पलटवार, राकेश त्रिपाठी बोले जातिवाद और तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले दे रहे प्रवचन, इनकी राजनीति मजहबी तुष्टिकरण पर आधारित। गोंडा में बृजभूषण सिंह का बड़ा बयान, बोले सांसद बनना डिजर्व करता हूं, पार्टी विचार करेगी तो जनता भेजेगी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत यूपी के 75 जिलों में होगा तिरंगा संगीत समारोह, शहीद परिवारों का सम्मान होगा। सीएम योगी के जैन जी आउटरीच पर सपा का पलटवार, मनोज काका बोले अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुप गई खेत। कावड़ यात्रा पर मौलाना साजिद रशीदी के बयान से विवाद, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन अध्यक्ष ने कहा कावड़ियों को आतंकवादी बताया। मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ पुलिस में शिकायत, बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने भड़काऊ बयान का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। लखनऊ में सीएम योगी का अखिलेश पर हमला, बोले बबुआ के दौर में ना बिजली थी ना सड़क, दंगे होते थे कर्फ्यू होता था। अतीक अहमद के बेटे के सड़क हादसे को लेकर विपक्ष ने निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग की, विपक्षी नेता दीपक रंजन ने साजिश या लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की मांग की। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पुल गिरने की घटना को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा, सोशल मीडिया पोस्ट में बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बोले बीजेपी यानी बेहद जानलेवा पार्टी। अखिलेश ने यूपी और गुजरात मॉडल को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा, का आपसी टकराव में डबल इंजन सरकार ट्रबल इंजन बन गया। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर हमला, बोले 7,000 करोड़ रुपए चेहरा चमकाने पर यानी दिखावे में खर्च किए गए, इतनी राशि से युवाओं के लिए विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय बन जाते। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले दलित समाज को साधने की सियासी कवायद तेज, योगी सरकार ने अम्बेडकर मूर्ति विकास योजना के लिए रखे 407 करोड़। भदोही में पारिवारिक विवाद में पिता ने ली बेटी की जान, क्षेत्र में सनसनी फैली, पुलिस ने आरोपित पिता को गिरफ्तार किया। लखनऊ सीतापुर हाईवे पर चलती कार में अचानक आग लगने से एक युवक कार में फंसा, मौत हुई, मामले की जांच जारी। लखनऊ में प्रेम प्रसंग के शक में नाबालिग छात्रा की गला रेत कर हत्या, आरोपित गिरफ्तार, घर में अकेली 17 वर्षीय छात्रा की हत्या से सनसनी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के मॉल में युवकों के बीच जमकर मारपीट, लाठी डंडे लात घूंसे चले, वीडियो वायरल हुआ, जांच जारी है। मथुरा में हरियाली तीज, हर घर तिरंगा, स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर प्रशासन अलर्ट पर। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में खराब व्यवस्था पर राज्यपाल सख्त, खाने के सैंपल की जांच के आदेश, हॉस्टल में गंदगी पर सवाल उठाए। प्रयागराज में कावड़ यात्रा पर निकली है पिता और बेटे की जोड़ी, संगम नगरी से मध्य प्रदेश तक पूरा करेंगे सफर। मेरठ में कावड़ मार्ग पर निरीक्षण के लिए खुद निकले डीएम, यात्रा की सुरक्षा और सुविधा को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश, श्रद्धालुओं का जाना हाल। बागपत में आस्था की राह पर नजर आया सुरक्षा का कवच, सुरक्षित कावड़ मार्ग सुनिश्चित करने के लिए रात भर डटे नजर आए पुलिस अफसर। सहारनपुर में निकली खाकी की मिसाल, पुलिस कर्मियों ने कंधों पर उठाई शिव भक्त की कावड़।

देखिए, सावन का महीना यूं तो शिव भक्तों के लिए श्रद्धा भक्ति आराधना उपासना का होता है, लेकिन यूपी में सावन के दौरान जबरदस्त सियासी हरियाली छाती है। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी में हर साल होने वाली सियासत अब एक बार फिर से शुरू हो गई, क्योंकि एक मौलाना ने कांवड़ियों को आतंकवादी कह दिया। अब बीजेपी विधायक ने उस पर मुकदमा दर्ज कराने की शिकायत दी है।

0: सावन में शिव भक्ति का रंग सड़कों पर कुछ ऐसा बिखरता है कि जगह जगह भोले भक्ति में डूबे नजर आते हैं। श्रद्धा, समर्पण और तपस्या के भाव से कांवड़िए कई कई किलोमीटर की यात्रा करके शिव धामों तक पहुंचते हैं। लेकिन भक्ति की इस यात्रा में योगी राज के बाद से किसी न किसी कारण विवाद खड़ा किया जाता रहा है। इस बार फिर खड़ा किया गया है।
1: जो लोग सड़कों पर बैठकर तमाशा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं लड़के और लड़कियां मिलकर, ये शिव भक्ति है, ये कांवड़ है। मैं ऐसे लोगों को नशेड़ी, भंगेड़ी, लूटपाट करने वाला और आतंकवादी तक बोलता हूं। ये शिव भक्त नहीं हो सकते। शिव भक्त वो लोग हैं जो चुपचाप जाते हैं, चुपचाप आते हैं।
2: ऐसे कट्टरपंथी मौलानाओं पर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए।
0: ये वही इस्लामिक विद्वान हैं, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के

0: अध्यक्ष भी हैं, जिन्होंने जुलाई 2025 में संसद के पास की मस्जिद में जाने पर डिंपल यादव के कपड़े और शरीर को लेकर बेहद अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। उस मामले में मुकदमे से लेकर समाजवादियों के थप्पड़ मुक्के झेल चुके मौलाना के खिलाफ अब बीजेपी विधायक ने थाने में शिकायत दी है।
1: हमने रासुका के तहत FIR की मांग की और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले। ये अपराध फांसी का अपराध है। इस मौलाना को फांसी हो जिससे कि और को भी जाए, कि इनकी हैसियत कैसे होगी। ये इस्लाम में तमाम जो गलतियां हैं, भाई हलाला कर रहा है, चाचा कर रहा है, ताऊ कर रहा है, उस पर बोलना चाहिए, उसका करना चाहिए इनको। तमाम जो इन्होंने नरक मचाया हुआ है, बेटियां सड़क पे घूम रही हैं, लेकिन उन पे नहीं बोलेंगे। कावड़ियों ने पत्थर फेंका, एक सबूत नहीं है। पिछली बार भी मुस्लिम लड़के पकड़े गए।
0: दरअसल मौलाना रशीदी का बयान कांवड़ियों को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ वीडियोस को लेकर था, जिसमें कांवड़ियों के अशोभनीय व्यवहार पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
2: सड़कों पर बैठकर भांग मसल रहे हैं वो शिव भक्त हैं क्या? जो लोग सड़कों पर बैठकर शराब पी रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं, क्या वो शिव भक्त हैं क्या? जो लोग पुलिस वालों को वर्दी में होते हुए मार मार कर अधमरा कर दें, वो शिव भक्त हैं क्या? वो लोग जो बच्चों की वैन जो स्कूल जा रही थी उसके शीशे तोड़ दें, बच्चों को इंजर्ड कर दें, वो शिव भक्त हैं क्या? वो लोग जो एक ट्रक को के पूरे माल को लूट लें।
0: ये पहला मौका नहीं है जब सड़क पर कांवड़ियों के सलूक को लेकर मुस्लिम नेताओं और धर्म गुरुओं की ओर से बयान आया है। इससे पहले ओवैसी की पार्टी की ओर से भी कांवड़ियों के रुख सलूक को लेकर सवाल उठाए गए थे, जिसके बाद सियासत गर्म हो गई थी। दूसरी ओर सीएम योगी यूपी में सौहार्दपूर्ण माहौल में कांवड़ से लेकर उर्स तक के आयोजन को लेकर प्रदेशवासियों को बधाई दे रहे हैं। संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
3: तो कांवड़ियों के भेष में असभ्य व्यवहार की मिसाल गिनाकर मौलाना रशीदी उन्हें आतंकवादी कहते हैं। लेकिन मुजफ्फरनगर से खबर आई जहां पुलिस के पीछे खड़े ये दोनों युवक कांवड़ियों के भेष में चोरी करते पकड़े गए। ये चोर कांवड़िए शिविर में भोले का भेष लेकर घुसते थे और कांवड़ियों का सामान चुराकर भाग खड़े होते थे। बिलाल और असगर नाम के इन दोनों शातिर चोरों ने अपना नाम राजू और पप्पू रख लिया था और इसी नाम से ये कांवड़ियों के बीच घूमते रहते थे। पुलिस ने बिलाल और असगर के पास से लाखों रुपए की कीमत के 8 मोबाइल फोन, एक पिट्ठू बैग, आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, एक चाकू और कुछ चोरी के सामान बरामद किए हैं। तो कांवड़िया बनकर ये चोरी करते थे। आम जगहों पर आपने देखा होगा कांवड़ियों के लिए राहत शिविर बनाए जाते थे जहां पर वो कुछ देर आराम कर सकते थे, वहां पर ये जाते थे।
4: देखिए, दो चोर सातिर पकड़े गए हैं, एक बिलाल नाम का और एक असगर नाम का, जो छद्म नाम से राजू नाम पप्पू नाम रख लेते थे अपना। और ये शिविरों के पास से मोबाइल चोरी करना या कोई वैल्यूबल चीज वो है वो चोरी कर लेते थे। कभी ये बिलाल जो कि जिसके खिलाफ 7 अभियोग दर्ज हैं, ये रहने वाला किदवई नगर खालापार का है। और एक इसमें असगर है जो राजू नाम से अपना नाम छद्म नाम रख करके चोरी करता था। इसके खिलाफ 10 अभियोग दर्ज हैं जिसपे चोरी के ही समानता सभी अभियोग दर्ज हैं। इन्होंने जुर्म अपना स्वीकार कर लिया है। इनके पजेशन से जो बरामद किया गया उसके आधार पर कठोरतम कार्रवाई करते हुए इन्हें जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
3: और देखिए, उधर कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज जब समाज में जातीय विद्वेष फैलाने की साजिशें की जा रही हैं, ऐसे समय में लाखों श्रद्धालुओं की सहभागिता वाली कांवड़ यात्रा सामाजिक समरसता का प्रेरक उदाहरण बनकर सामने आई है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था, अनुशासन और सामाजिक समरसता का महापर्व है। इसमें बाधा उत्पन्न करने वाले जो अराजक तत्वों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत एक्शन होना चाहिए, कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो अब बात उत्तर प्रदेश में गोंडा से लेकर अयोध्या तक मची एक हलचल की करते हैं। दरअसल महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न केस में बरी होने के बाद ब्रिजभूषण शरण सिंह कल अयोध्या पहुंचे थे। अब गोंडा से अयोध्या तक कल ब्रिजभूषण समर्थकों ने ऐसा जश्न मनाया कि जितना उनकी चुनावी जीत पर भी नहीं मनाया जाता था। हालांकि अयोध्या से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवारी के ऐलान पर ब्रिजभूषण अभी मुंह भी नहीं खोलना चाहते हैं।
5: अयोध्या से गोंडा तक जश्न और उमंग की तस्वीरें थी। दर्जनों कारों के काफिले के साथ ब्रिजभूषण शरण सिंह गोंडा पहुंचे थे। यौन उत्पीड़न केस में बरी होने के बाद गोंडा में उनके भव्य स्वागत की तैयारी की गई थी और इस दौरान कभी जेसीबी से उन पर फूल बरसाए गए तो कभी शेर आया के नारे लगाए गए। ब्रिजभूषण सिंह के स्वागत में गोंडा के नंदिनी नगर स्पोर्ट्स स्टेडियम में सत्यमेव जयते के नाम से विशाल जनसभा आयोजित की गई थी जहां 40 क्विंटल तो लड्डू बने थे।
6: मेरे खिलाफ 2-1 पार्टियों को छोड़ करके पूरा अपोजिशन, विशेष करके कांग्रेस पार्टी, आम आदमी, टुकड़े टुकड़े गैंग, लेफ्ट राइट, कई उद्योगपति शामिल थे। मैं कोर्ट से बाइज्जत बरी हुआ और आज आप लाखों कह सकते हैं, 2 लाख भी कह सकते हैं, 3 तक तो कह सकते हैं कि कम से कम 3 लाख के ऊपर 4 लाख आदमी, 5 लाख भी कह सकते हैं, एयरपोर्ट से लेकर के यहां तक मौजूद रहा है। और एक तरीके से इन्होंने हमें अपना समर्थन दिया है।
5: अयोध्या से गोंडा तक 5 लाख लोगों के समर्थन का दावा करने वाले ब्रिजभूषण शरण सिंह ने ये भी साफ कर दिया कि ये भीड़ बीजेपी की नहीं, उनकी अपनी है, जिसमें कई दलों के लोग शामिल हैं।
7: वहाँ पर जैसे दबदबा था, दबदबा है और रहेगा आगे भी।
6: नहीं, इसको आप चुनाव से मत जोड़िए, इसमें बहुत से लोग शामिल हैं। कुछ ऐसे लोग भी इस रैली में आए हैं जो हमारे विचारधारा से संबंधित नहीं है, इसको राजनीति से न जोड़ा जाए।
5: दरअसल ब्रिजभूषण शरण सिंह 2027 के चुनाव को लेकर फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोल रहे। ना तो वो अयोध्या से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के ऐलान पर कुछ कहते हैं और ना ही उनके बेटे।
7: आप एक अयोध्या से आप आए और गोंडा पे हैं, यहाँ पर अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट एक कर दिया है कि अब ब्राह्मण समाज से हमारा होगा और पवन पांडे को कह दिया कि यही जीतेंगे।
8: अयोध्या में मुझे राजनीतिक कमेंट नहीं करना है क्योंकि चुनाव बहुत दूर है। फिलहाल मैं ये जानता हूँ कि मेरे पिता के लिए आज ये बहुत इम्पोर्टेंट डे है और मैं बहुत खुश हूँ।
5: 2027 के चुनाव और अयोध्या को लेकर भले ब्रिजभूषण शरण सिंह अपनी रणनीति का खुलासा नहीं करना चाहते, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि आरोपों से बाइज्जत बरी होने के बाद
8: अयोध्या में मुझे राजनीतिक कमेंट नहीं करना है क्योंकि चुनाव बहुत दूर है। फिलहाल मैं ये जानता हूँ कि मेरे पिता के लिए आज ये बहुत इम्पोर्टेंट डे है और मैं बहुत खुश हूँ।
5: 2027 के चुनाव और अयोध्या को लेकर भले ब्रिजभूषण शरण सिंह अपनी रणनीति का खुलासा नहीं करना चाहते, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि आरोपों से बाइज्जत बरी होने के बाद एक बार फिर सांसद बनने की हसरत उनकी है, क्योंकि 2008 में बीजेपी से निकाले जाने के बाद मुलायम सिंह ने ही उन्हें कैसरगंज से सांसद बनाया था। आशीष श्रीवास्तव, गोंडा आज तक।
3: आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में जंतर मंतर पर सीजेपी के आंदोलन के बाद से देश के राजनीतिक दलों में एक नव जागरण हो गया है। हर दल किसी न किसी तरह से जेंजी से मिलने जुलने, उन्हें प्रभावित करने की कोशिश में जुट चुका है, चाहे वो पीएम मोदी के इंस्टा रील्स हो या राहुल गांधी के इंस्टा के क्वेश्चन आंसर सेशन हो, चाहे वो मोहन भागवत का जेंजी कनेक्ट हो या राहुल गांधी के गूंज कार्यक्रम। हर दल को लगता है कि जेंजी से कनेक्ट रहे बिना देश की सियासत में मौजूद नहीं रहा जा सकता। और इसी कड़ी में अब यूपी की योगी सरकार ने भी जेन जी को लेकर नई नीति बनाने का प्लान तैयार किया है। सीएम योगी ने खास तौर पर युवा नीति को लेकर एक बैठक भी की, जिसमें युवाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप नई युवा नीति बनाने का फैसला किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार 16 से 35 वर्ष के युवाओं की राय से यह युवा नीति बनाना चाहती है, जिसमें शिक्षा, कौशल और रोजगार को ध्यान रखकर नीतियां बनेंगी। अब इसके लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ आयोग भी बनेगा। हर यूनिवर्सिटी तक सीएम अभ्युदय कोचिंग योजना पहुंचाने का प्लान है। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडस्ट्रियल एंड एम्प्लॉयमेंट जोन भी शुरू होगा।
9: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक मास्टर स्ट्रोक चलाया है, युवाओं को लेकर एक आयोग गठित होने वाला है जिसमें 18 से 35 वर्ष के युवा, यानी कि आसान भाषा में कहें तो कुछ हद तक जेंजी से सलाह मशवरा लिया जाएगा युवाओं को लेकर बनाई जाने वाली नीतियों को लेकर, यानी कि योगी सरकार को ये मालूम पड़ गया है

0: कि जेंजी एक बहुत बड़ा वोटर है और ऐसे में उन्हें साथ लेकर ही चलना होगा। जिस तरीके से दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, जेंजी ने अपनी ताकत दिखाई, उसके बाद सियासी दल अब इस होड़ में हैं कि कौन जेंजी के करीब खुद को पाता है और कौन जेंजी का वोट जो सभी सियासी समीकरणों को ध्वस्त करने की ताकत रखता है उसको यूपी के विधानसभा चुनाव में पाता है। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
1: देखिए, सरकार की पहल थी, लेकिन समाजवादी पार्टी यूपी सरकार की इन पहल को लेकर भी जब निशाना साधती है तो उसका लक्ष्य युवा जेंजी ही होते हैं, क्योंकि अखिलेश कहते हैं कि 7,000 करोड़ रुपए सिर्फ प्रचार में खर्च करने वाली सरकार ने जरूरी और बुनियादी चीजों के लिए जूझ रही यूपी पर ध्यान नहीं दिया, और वो अब इतने पैसों से केजी से पीजी और रिसर्च तक की वर्ल्ड क्लास 2 से 3 यूनिवर्सिटी बनाकर बच्चों युवाओं का भविष्य सुधार कर दिखाएंगे, उत्तर प्रदेश को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर ले जाएंगे, हम न्यू इंडिया बनाएंगे।
2: तय कर रहे हैं कि अब वो युवाओं से बात करेंगे। अब वही जो बात है, जो कहावत है कि अब पछताए क्या होता है, जो चिड़िया चुग गई खेत। आप विगत 9 सालों में तो आपने युवाओं से कभी नहीं बात करा। अभी एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार आपने 6812 करोड़ रुपया आप अपने चेहरा चमकाने पर, अपने झूठ को सच बताने पर, अपने विज्ञापनी विकास पर खर्च किया है। तो उत्तर प्रदेश का जो जेंजी है, जो जेन एल्फा है, जो मिलेनियम है, वो समझ रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ भी किसी चीज के अगर शिकार है योगी आदित्यनाथ जी तो आत्ममुग्धता के शिकार है। अब युवाओं से क्या संवाद करेगी? युवा आपसे सवाल करेगा और उसके सवालों का आप सामना नहीं कर पाएंगे।
1: तो मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब अखिलेश की राजनीति भी युवाओं के इर्द गिर्द आने लगी है। उधर राहुल गांधी लगातार युवाओं से संपर्क बनाए रखने के लिए छात्रों की गूंज नाम से कार्यक्रम कर रहे हैं। उनका अगला कार्यक्रम कल है, यानी 8 अगस्त को प्रयागराज के केपी ग्राउंड में। ट्रस्ट की ओर से राहुल के कार्यक्रम की जो मंजूरी रद्द कर दी गई थी, वो यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की ओर से शर्तों के पालन का वचन देने के बाद फिर से बहाल कर दी गई। अब 8 अगस्त को प्रयागराज में राहुल का छात्रों की गूंज कार्यक्रम होने वाला है, यानी कल। अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि जंतर मंतर के आंदोलनकारियों को संघ के ही सर सह कार्यवाह देश विरोधी संविधान विरोधी बता चुके हैं, ऐसे में उनकी पहल पर नौजवानों को भरोसा है नहीं।
3: आरएसएस चीफ मोहन भागवत कह रहे हैं कि जेंजी को देशद्रोही बोलना या उनको देशद्रोही करार देना गलत होगा, और उन्होंने एक तरह से जो युवा पीढ़ी है उसका समर्थन किया।
4: समर्थन तो किया है, लेकिन उन्हीं के अनुयायियों ने तो जेंजी को देशद्रोही कहा है जी। उन्हीं के अनुयायियों ने तो खालिस्तानी से लेकर पाकिस्तानी तक तमाम हमारे बच्चों के, जो इनोसेंट बच्चे हैं शायद, जिन्होंने घर स्कूल के अलावा कभी कुछ देखा भी नहीं था, ऐसे बच्चों को बदनाम किसने किया? सदे नेताजी कहते थे, ये बीजेपी आरएसएस के कई मुंह होते हैं। जब देखते हैं कि समाज में विरोध हो रहा है तो उन्हीं में से एक सकारात्मक बयान देने लगता है। आरएसएस मोहन भागवत जी के अंडर में तो सभी है, सरकार में बैठे सभी लोग हैं, भाजपा के सभी लोग हैं, तो क्या उन्होंने किसको सजा दी? ये केवल बयानों से अब ये जेंजी मानने वाला नहीं है।
1: और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, पटना में बड़ी पहाड़ी के पास हादसे में एक बच्चे की मौत के बाद बवाल मच गया। एक बस ने बच्चे को कुचल दिया और उसके बाद गुस्साए परिजन सड़क पर आ गए, बस को आग के हवाले कर दिया, और फिर ये आग यहां नहीं रुकी, कई पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, करीबन 1 दर्जन गाड़ियों को स्वाहा कर दिया, पुलिस की गाड़ियों को भी नहीं छोड़ा। ये देखिए ना, आपके सामने तस्वीरें हैं। अब पुलिस काबू पाने की कोशिश कर रही है। सुजीत कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए पटना से। सुजीत, क्या हालात अब बदल चुके हैं, सुधार हुआ हालात में कुछ?
5: बिल्कुल हिमांशु, हालात अब बदल चुके हैं। जो पुलिस यहाँ पहुंची भारी संख्या में, एसपी पहुंचे, सिटी एसपी पहुंचे, उसके बाद जो यहाँ की स्थिति है वो काबू में कर ली गई, लेकिन तस्वीर काफी चौंकाने वाली है। देखिए यहाँ पे दर्जनों पुलिस की जो बाइक है इसे आग के हवाले कर दिया गया। जब पुलिस को सूचना मिली कि एक बच्चे की मौत हुई है, उसके बाद पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची और यहाँ पे जो है भीड़ को हटाने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस को ही भीड़ ने खदेड़ दिया। लेकिन बाद में पता चला एक युवक की मौत हुई है और हंगामा इसीलिए बरपा क्योंकि लोगों ने अफवाह फैला दी थी एक बच्चे की मौत हुई है बस से कुचलकर, जिसके कारण आस पास के लोग जो है यहाँ जुट गए और हंगामा करने लगे। लेकिन जब यहाँ पुलिस पहुंची, छानबीन की, तो पता चला एक युवक, मनीष नाम का एक युवक है जिसकी मौत हुई है। उसके बाद जो है पुलिस ने यहाँ कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस की कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस की संख्या आप देख सकते हैं, सैकड़ों पुलिसकर्मियों को यहाँ बुलाया गया, भारी पुलिस बल को यहाँ बुलाया गया है, क्योंकि कई पुलिसकर्मियों को भी यहाँ

0: कहाँ बनाया गया था और घंटों यहाँ दवाई चला, कम से कम एक दर्जन से ज्यादा राहगीरों की गाड़ियों को तोड़फोड़ किया गया। देखिए ये पुलिस कर्मी की वर्दी है जिसके साथ पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की गई। तो यहाँ पे ये नजारा बनाइए, देखिए पुलिस की एक ये बोलेरो गाड़ी है जिसे लोगों ने फूंक दिया, एक स्कॉर्पियो गाड़ी है जिसे लोगों ने फूंक दिया, और कई जो स्थानीय लोग जो यहाँ आस पास के लोग यहाँ थे वो यहाँ जब पहुंचे तो जो राहगीर थे उनको निशाना बनाया।
1: और बिल्कुल देखिए ये बताना दर्शकों को बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक युवक की मौत हुई थी बस से कुचलकर, लेकिन वहां पर अफवाह फैली कि एक बच्ची की मौत हुई और उसके बाद भीड़ आक्रोशित हो गई और कई गाड़ियों को आग लगा दिया। यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
6: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
7: जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडितता ही शॉर्ट फॉर्म है।
8: समाजवादी पार्टी अराजकता गैर लोकतांत्रिक और पूज्य जनेश्वर मिश्र जी के सिद्धांतों से भटक चुकी है। पूज्य जनेश्वर मिश्र जी ने कहा था कि जब सदन चल रहा हो तब लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जनता की आवाज को सदन में उठाना चाहिए। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से पूज्य लोहिया जी और पूज्य जनेश्वर मिश्र जी के सिद्धांतों से भटक चुकी है। वो केवल व्यक्तिवादी पॉलिटिक्स कर रही है और खासकर अराजकता गुंडई और पूरी तरह से प्रदेश को दंगों में झोंकने वालों को समर्थन करने वाली पार्टी बन चुकी है। प्रदेश की जनता उन्हें नकार चुकी है और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ करके चल रही है।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

देश के प्रमुख शहरों में रियल एस्टेट मार्केट घरों की बढ़ती कीमतों के साथ साथ किराए से होने वाली कमाई के चलते बेहद आकर्षक बन गया है। एनरॉक रिसर्च की ताजा रिपोर्ट बताती है कि 2019 से 2026 के बीच कई बड़े शहरों में घरों के दाम और रेंटल यील्ड दोनों में एक साथ मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान नोएडा में घरों की औसत कीमत 125% बढ़कर 10,780 रुपए प्रति वर्ग फीट पर पहुंच गई। वहीं रेंटल यील्ड 3.2% से बढ़कर 3.9% हो गई, जबकि गुरुग्राम में कीमतें 117% बढ़कर 13,350 रुपए प्रति वर्ग फीट पर पहुंच गई और रेंटल यील्ड 3.5% से बढ़कर 4.3% हो गई। आमतौर पर माना जाता है कि प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ने पर रेंटल यील्ड पर दबाव आता है, लेकिन इस बार तस्वीर अलग है। एनसीआर के इन दोनों शहरों में घरों के दाम और किराए से मिलने वाला रिटर्न दोनों साथ साथ बढ़े हैं। इसकी बड़ी वजह बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, नए रोजगार सेंटर्स और बढ़ते माइग्रेशन को माना जा रहा है। इस दौरान अगर बाकी शहरों का हाल देखें तो बेंगलुरु में घरों की कीमतें 90% और रेंटल यील्ड 3.6% से बढ़कर 4.6% हो गई। वहीं हैदराबाद में घरों के दाम में 93% का उछाल आया, जबकि रेंटल यील्ड 2.6% से बढ़कर 3.6% हो गई। रोजगार के बढ़ते मौके, आईटी सेक्टर का विस्तार और जीसीसीएस की बढ़ती मौजूदगी ने इन शहरों में घर खरीदने और किराए पर रहने दोनों की मांग को मजबूती दी है। दिलचस्प बात है कि उभरते शहरों के साथ ही देश के पुराने और मैच्योर रियल एस्टेट बाजारों में भी निवेशकों को बेहतर रिटर्न मिल रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंबई में घरों की कीमतें 64% बढ़कर 29,270 रुपए प्रति वर्ग फीट पहुंच गई और रेंटल यील्ड 3.5% से बढ़कर 4.3% हो गई। वहीं दिल्ली में कीमतें 47% बढ़कर 26,700 रुपए प्रति वर्ग फीट और रेंटल यील्ड 2.2% से बढ़कर 3.2% हो गई। उधर नवी मुंबई में कीमतें 71% और ठाणे में 63% बढ़ी हैं, जबकि पुणे में घरों के दाम 51% बढ़े हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई और दिल्ली जैसे मैच्योर बाजारों में भी किराए से होने वाली कमाई में सुधार देखने को मिला है, यानी

देश के प्रमुख शहरों में रियल एस्टेट मार्केट घरों की बढ़ती कीमतों के साथ साथ किराए से होने वाली कमाई के चलते बेहद आकर्षक बन गया है। एनरॉक रिसर्च की ताजा रिपोर्ट बताती है कि 2019 से 2026 के बीच कई बड़े शहरों में घरों के दाम और रेंटल यील्ड दोनों में एक साथ मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान नोएडा में घरों की औसत कीमत 125% बढ़कर 10,780 रुपए प्रति वर्ग फीट पर पहुंच गई। वहीं रेंटल यील्ड 3.2% से बढ़कर 3.9% हो गई, जबकि गुरुग्राम में कीमतें 117% बढ़कर 13,350 रुपए प्रति वर्ग फीट पर पहुंच गई और रेंटल यील्ड 3.5% से बढ़कर 4.3% हो गई। आमतौर पर माना जाता है कि प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ने पर रेंटल यील्ड पर दबाव आता है, लेकिन इस बार तस्वीर अलग है। एनसीआर के इन दोनों शहरों में घरों के दाम और किराए से मिलने वाला रिटर्न दोनों साथ साथ बढ़े हैं। इसकी बड़ी वजह बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, नए रोजगार सेंटर्स और बढ़ते माइग्रेशन को माना जा रहा है। इस दौरान अगर बाकी शहरों का हाल देखें तो बेंगलुरु में घरों की कीमतें 90% और रेंटल यील्ड 3.6% से बढ़कर 4.6% हो गई। वहीं हैदराबाद में घरों के दाम में 93% का उछाल आया, जबकि रेंटल यील्ड 2.6% से बढ़कर 3.6% हो गई। रोजगार के बढ़ते मौके, आईटी सेक्टर का विस्तार और जीसीसीएस की बढ़ती मौजूदगी ने इन शहरों में घर खरीदने और किराए पर रहने दोनों की मांग को मजबूती दी है। दिलचस्प बात है कि उभरते शहरों के साथ ही देश के पुराने और मैच्योर रियल एस्टेट बाजारों में भी निवेशकों को बेहतर रिटर्न मिल रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंबई में घरों की कीमतें 64% बढ़कर 29,270 रुपए प्रति वर्ग फीट पहुंच गई और रेंटल यील्ड 3.5% से बढ़कर 4.3% हो गई। वहीं दिल्ली में कीमतें 47% बढ़कर 26,700 रुपए प्रति वर्ग फीट और रेंटल यील्ड 2.2% से बढ़कर 3.2% हो गई। उधर नवी मुंबई में कीमतें 71% और ठाणे में 63% बढ़ी हैं, जबकि पुणे में घरों के दाम 51% बढ़े हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई और दिल्ली जैसे मैच्योर बाजारों में भी किराए से होने वाली कमाई में सुधार देखने को मिला है, यानी निवेशकों को प्रॉपर्टी की कीमत में बढ़ोतरी के साथ नियमित रेंटल इनकम का भी फायदा मिल रहा है। एनरॉक की रिपोर्ट बताती है कि देश के प्रमुख रेजिडेंशियल मार्केट्स में निवेशकों को दोहरा फायदा मिलने से ये लॉन्ग टर्म निवेश का मजबूत विकल्प बनकर उभर रहा है। आदित्य राणा, आज तक।

लोकसभा सांसदों से पीएम मोदी की नाश्ते पर मुलाकात, कहा संसद की डिबेट में हिस्सा लें। महाराष्ट्र के सांसदों से बोले विकास कार्यों में कोई दिक्कत आए तो सीधे मुझसे मिले। संसद के डेडलॉक के बीच सोमवार तक स्थगित हुई लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही। रिजिजू बोले विपक्ष ना बताए कि किस मंत्री को सदन में आना है, जिनके विभाग पर चर्चा है वो मौजूद है। सोरेन सरकार और छात्रों के बीच वार्ता के तरीके और तारीख पर सस्पेंस बरकरार, शर्तों पर फंसा पेच। एक छात्र की तबीयत

खड़ी। राहुल ने बातचीत के बाद दिया एक्शन का भरोसा। विधानसभा में बीजेपी आक्रामक। राहुल गांधी ने की कैप्टन अमरिंदर सिंह की तारीफ, तो गर्म हुई पंजाब की राजनीति। आम आदमी पार्टी ने कहा कैप्टन को ही पार्टी में ला सकते हैं राहुल गांधी। प्रगट सिंह बोले अमरिंदर तारीफ के काबिल। पटना की सड़कों पर भयंकर उबाल। बस से कुचलकर बच्ची की मौत की खबर के बाद फूटा गुस्सा। भीड़ ने कई गाड़ियां जलाई। पुलिस के वाहनों को भी किया आग के हवाले।

0: सोरेन सरकार और छात्रों के बीच वार्ता के तरीके और तारीख पर सस्पेंस बरकरार, शर्तों पर फंसा पेच, एक छात्र की तबीयत बिगड़ी। रांची में 14वें दिन भी छात्रों का प्रदर्शन जारी, देश भर से मिला समर्थन। स्विगी जोमैटो से पहुंच रहा है खाना, लगाया गया मेडिकल कैंप। रांची पहुंच रहे कॉकरोच जनता पार्टी के नेता, प्रदर्शनकारी छात्रों से करेंगे मुलाकात, भेजे रेनकोट। रांची में सरकार से वार्ता पर सस्पेंस, 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में पत्रकार वकील को शामिल करने पर अड़े छात्र। रांची में जेपीएससी जेएसएससी छात्रों का आंदोलन जारी, देवेंद्र नाथ महतो बोले सरकार का रवैया बेहद असंवेदनशील। झारखंड विधानसभा मॉनसून सत्र में बीजेपी विधायकों का विरोध प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। झारखंड में बीजेपी पर मंत्री सुदेव्य सोनू का हमला, बोले पारदर्शिता चाहते हैं तो बाबूलाल मरांडी समेत नेता रिश्तेदारों से दिलाएं इस्तीफा। धनबाद के विश्वविद्यालय में आयसा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, आयसा छात्रों ने वीसी को घेरा, प्रशासनिक भवन के बाहर बैठे कुलपति। रांची में युवाओं के आंदोलन में अनोखे रंग, नौकरी नहीं तो शादी नहीं, कड़वी सामाजिक सच्चाई को व्यंग बनाकर प्रदर्शन मार्च में निकले अनोखे पोस्टर। आम आदमी पार्टी महासचिव बलतेज पन्नू ने कांग्रेस की श्वेत पत्र की मांग पर पलटवार किया, उन्होंने कहा कांग्रेस को पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार के कार्यकाल में दिए गए रोजगार का हिसाब देना चाहिए। पीएम मोदी से मिले शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल, संसद भवन में हुई मुलाकात। पीएम मोदी ने की नए एनडीए लोकसभा सांसदों संग ब्रेकफास्ट मीटिंग, प्रधानमंत्री आवास पर पहली बार और नव निर्वाचित सांसदों से मुलाकात, बोले संसदीय इतिहास को समझने में दिखाएं दिलचस्पी। पीएम मोदी के नाश्ते पर बुलावे पर रचना बैनर्जी बोली सौभाग्य की बात, सदन नहीं चलने पर पीएम चिंतित। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, इस बैठक में महाराष्ट्र से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा। पीएम मोदी ने शेयर किया हैंडलूम डे पर वीडियो, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील, बीती रात इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर लोगों से हैंडलूम अपनाने की अपील की। नीट यूजी ओएमआर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट जाने को कहा। मेटा की टेक्निकल टीम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अधिकारियों संग बैठक, एल्गोरिथम पर चर्चा, सुधार योजना की रिपोर्ट मांगी गई। सरकार का मेटा को संदेश, भारत में भारतीय कानून का ही होगा पालन, एआई डीप फेक पर भी सरकार ने सख्ती की है, अब महज 3 घंटे में हटाना होगा गैर कानूनी कॉन्टेंट। पंजाब में नौकरियों के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन, सरकार से श्वेत पत्र जारी करने को कहा। संसद में गतिरोध खत्म करने को लेकर रिजिजू और राहुल में फोन पर हुई बातचीत, सूत्रों के मुताबिक परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा, सहयोगी दलों से बातचीत के बाद रुख साफ करेगी कांग्रेस। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आवास के बाहर साधु संतों ने विरोध प्रदर्शन किया, प्रदर्शन को लेकर मौके पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को मिली मंजूरी, 8 अगस्त को प्रयागराज में तय शर्तों के साथ आयोजन की अनुमति। छात्रों पर एफआईआर को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, एक्स पर किया पोस्ट, लिखा मोदी सरकार की नीति ही युवाओं की आवाज दबाना है। राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, कहा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फीस विवाद को लेकर प्रयागराज में मेरे कार्यक्रम को रोकने की कोशिश में छात्रों के साथ खड़ा हूं। जेएनसी के साथ राहुल गांधी का इंस्टाग्राम पर आस्क मी एनीथिंग सेशन, इंस्टा स्टोरी पर यूजर ने पूछा बीजेपी में पसंदीदा नेता कौन, राहुल ने अमरिंदर सिंह का नाम लिया। राहुल गांधी ने नागालैंड अरुणाचल बाढ़ और भूस्खलन में मौतों पर जताया दुख, पीड़ित परिवारों के प्रति व्यक्त की संवेदना। मुंबई में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जेन जी संघ संवाद, कहा जेन जी का आंदोलन देश के खिलाफ नहीं, ये भी संवाद का एक तरीका। मोहन भागवत के जेंजी बयान पर धर्मेंद्र यादव का पलटवार, बोले आरएसएस के कई चेहरे भरोसा नहीं किया जा सकता। एफसीआरए संशोधन विधेयक पर 12 अगस्त को संसद में हो सकती है चर्चा, अमित शाह से मुलाकात के बाद मिजोरम के सीएम ने दी जानकारी, बिल के विरोध में है विपक्ष। 12 अगस्त को सदन में आएगा एफसीआरए बिल, मिजोरम के मुख्यमंत्री ने बिल को लेकर स्थिति स्पष्ट की, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा ये बिल। एफसीआरए बिल पर कांग्रेस का हमला, अभिषेक मनु सिंघवी बोले ड्रेकोनियन बिल, विपक्ष ने प्रस्तावित कानून को लेकर सरकार पर तीखा निशाना साधा। दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र में हंगामा, प्रश्नकाल को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायकों का हंगामा। हंगामे पर कपिल मिश्रा का सदन में बयान, कहा नेता विपक्ष आतिशी आई ही नहीं, इनसे आपको गंभीरता पता चलती है। संसद में दिखी सियासी तस्वीर, कांग्रेस सांसद प्रशांत पटोले के विरोध प्रदर्शन में एनसीपी सांसद यूसुफ पठान भी नजर आए। केजरीवाल का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले प्रधानमंत्री अब अपने ही नागरिकों से लड़ रहे हैं, खुद को बचाने के लिए बना रहे हैं कानून। शुभेंदु अधिकारी का ममता बैनर्जी पर बड़ा हमला, कहा ममता बैनर्जी बंगाल को खत्म करने पर तुली हुई थी। 15 अगस्त सुरक्षा को लेकर दिल्ली में एनएसजी का बड़ा मॉक ड्रिल, आज शाम 6 बजे के बाद कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा अभ्यास होगा। जेएनयू स्टेडियम और दिल्ली सचिवालय समेत कई जगहों पर एनएसजी ड्रिल, एनएसजी दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां तैयारियों का जायजा लेंगी। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में मल्टी लेयर सिक्योरिटी प्लान लागू, लाल किले के कार्यक्रम में करीब 24,000 मेहमानों की सुरक्षा के लिए 12,000 पुलिसकर्मी तैनात। आतंकी खतरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर, मॉक ड्रिल में कई परिदृश्य होंगे, टेस्ट, हॉस्टेज रेस्क्यू, बॉम्ब थ्रेट और इवैक्यूएशन जैसे हालात पर तैयारियां परखी जाएंगी। दिल्ली में बड़ी सुरक्षा, मेट्रो स्टेशन और भीड़भाड़ वाले इलाकों पर खास निगरानी, अधिकारियों ने लोगों से अपील की ड्रिल के दौरान सुरक्षा गतिविधियों से घबराने की जरूरत नहीं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत यूपी के 75 जिलों में होगा तिरंगा संगीत समारोह, शहीद परिवारों का होगा सम्मान। सीएम योगी के जेन जी आउटरीच पर समाजवादी पार्टी का पलटवार, मनोज काका बोले अब पछताए होत क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। कांवड़ यात्रा पर मौलाना साजिद रशीदी के बयान पर विवाद, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन अध्यक्ष ने कुछ कांवड़ियों को आतंकवादी बताया। मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ पुलिस में शिकायत, बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने भड़काऊ बयान का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। लखनऊ में सीएम योगी का अखिलेश पर हमला, बोले बबुआ के दौर में न बिजली थी न सड़क, होते थे दंगे और कर्फ्यू। राष्ट्रीय हैंडलूम डे पर सीएम योगी का बड़ा कार्यक्रम, बुनकरों को सम्मान और 706 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर हमला, बोले पीडीए के नाम पर ढोंग कर रहे हैं, आपके लोग कर रहे हैं अत्याचार, गाजीपुर का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। एसपी नेताओं को अखिलेश यादव की नसीहत, तो बोले जाति धर्म पर टिप्पणी से बचे, आचरण और वाणी पर रखे संयम। अखिलेश यादव की नसीहत पर बीजेपी का पलटवार, राकेश त्रिपाठी बोले जातिवाद और तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले दे रहे प्रवचन, इनकी राजनीति मजहबी तुष्टिकरण पर आधारित। मुन्ना में बृजभूषण सिंह का बड़ा बयान, बोले सांसद बनना डिजर्व करता हूं, पार्टी विचार करेगी तो जनता भेजेगी। अतीक अहमद के बेटे के सड़क हादसे को लेकर विपक्ष ने निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग की, विपक्षी नेता दीपक रंजन ने साजिश या लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की मांग की। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पुल गिरने की घटना को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा, उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बोले बीजेपी यानी बेहद जानलेवा पार्टी। अखिलेश यादव ने यूपी और गुजरात मॉडल को लेकर बीजेपी का पर निशाना साधा, कहा आपसी टकराव से डबल इंजन सरकार ट्रबल इंजन बन गई है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले दलित समाज को साधने की सियासी कवायद तेज, योगी सरकार ने अंबेडकर मूर्ति विकास योजना के लिए रखे 407 करोड़। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में खराब व्यवस्था पर राज्यपाल सख्त, खाने के सैंपल की जांच के आदेश, हॉस्टल में गंदगी पर भी उठाए सवाल। टिहरी गढ़वाल में लैंडस्लाइड मलबा हटाने का काम जारी, भारी बारिश के बाद सड़क पर जमा मलबा जेसीबी से हटाया जा रहा है। टिहरी के पुंडोली गांव में पुल बहा, एसडीआरएफ ने महिला को किया रेस्क्यू, तेज बारिश से लकड़ी का पुल बह गया, रस्सी के सहारे महिला को सुरक्षित निकाला गया। चमोली में लैंडस्लाइड, नारायण बगड़ कर्णप्रयाग मार्ग प्रभावित, पहाड़ से पानी के साथ चट्टानों का सैलाब आने से सड़क पर मलबा जमा हुआ। बागेश्वर में बारिश का कहर, 15 सड़कें बंद, बोल्डर गिरने से कई मार्ग बाधित, एक घर भी हुआ ध्वस्त। पौड़ी गढ़वाल में अलकनंदा उफान पर हाई अलर्ट जारी, भारी बारिश के चलते नदी का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन ने सतर्कता बढ़ाई। उत्तरकाशी में बारिश का कहर, गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बंद, भूस्खलन के चलते हवाई हाईवे बार बार हो रहा है बाधित और आवाजाही प्रभावित। देहरादून में सड़क पर आया सैलाब, मलबे में फंसा ट्रक, भारी बारिश के बाद सड़क पर पानी और मलबा आया, ट्रक चपेट में। हिमाचल प्रदेश में 11 अगस्त तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी, शिमला सोलन समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश, सड़कों पर पानी। नेपाल में बारिश से गंडक नदी उफान पर, वाल्मीकि नगर बैराज से 2.20 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, बघा के गांव में घुसा बाढ़ का पानी। धौलपुर में जल भराव से स्कूलों पर बार बार लग रहा है ताला, बच्चों का प्रदर्शन, सरकारी दावों पर उठे सवाल। पटना में एक युवक की बस से कुचलकर मौत, लोगों ने बस में लगाई आग, साथ ही पुलिस की भी कई गाड़ियों में लगाई आग। भुवनेश्वर में नशे में धुत ड्राइवर ने घर में घुसाई तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार, हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। दिल्ली के वजीराबाद में खुले नाले में गिरे 3 बच्चे, स्कूली बच्चों की जान खतरे में पड़ी, लोगों की सूझबूझ से सुरक्षित बचाया गया। मुंबई में पार्किंग से गिरी कार सीसीटीवी में कैद, हादसा, कार गिरने के बाद मचा हड़कंप, मौके पर मौजूद लोग बाल बाल बचे। बागेश्वर के हाईवे पर भूस्खलन, पार्क किए वाहन मलबे में दबे, बड़ा हादसा टला। भदोही में पारिवारिक विवाद में पिता ने ली बेटी की जान, क्षेत्र में सनसनी फैली, पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ सीतापुर हाईवे पर चलती कार में अचानक आग लगने से एक युवक कार में फंसा, मौत और मामले की जांच जारी। लखनऊ में प्रेम प्रसंग के शक में नाबालिग छात्रा की गला रेत कर हत्या, आरोपी गिरफ्तार, घर में अकेली 17 वर्षीय छात्रा की हत्या से इलाके में सनसनी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के मॉल में युवकों के बीच जमकर मारपीट, लात घूसों के साथ डंडों का भी इस्तेमाल, घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मॉल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल। मथुरा में हरियाली तीज, हर घर तिरंगा, स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर प्रशासन अलर्ट पर, डीएम की समीक्षा बैठक। राजस्थान के जालौर में पत्थर की खदान ढही, मलबे में दबने से एक युवक की मौत, 3 घायल। पुडुचेरी में भारी बारिश से दीवार गिरी, मलबे में 6 लोगों के दबे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बेलगावी में 2 करोड़ के इंश्योरेंस के लिए पूर्व सैनिक की हत्या का शक, 3 महीने बाद कब्र से निकाला शव, पत्नी और प्रेमी जांच के घेरे में। करनाल में वीरू वाल्मीकि हत्याकांड पर बड़ा एक्शन, पुलिस एनकाउंटर में दोनों आरोपी ढेर। पुणे में पीजी में रहने वाले युवक को लोहे की रॉड से पीटा, युवक की बेरहमी से की हत्या, घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, 2 युवकों की गई जान। अमरनाथ यात्रा से लौट रहे 4 श्रद्धालु सड़क हादसे में घायल, अनंतनाग के अस्पताल में चल रहा है इलाज। तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के पोलाची में युवक की हत्या के बाद शव के साथ सेल्फी लेकर फरार हुए आरोपी, पुलिस की दबिश जारी। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में कॉलेज छात्र को बेरहमी से पीटा गया, इंस्टाग्राम पर मैसेज करने पर लड़की के मित्र ने बीच सड़क पर पटक पटक कर मारा। पालघर में आवारा कुत्तों का आतंक, कई लोगों पर हमला, 4 दिन में 5 से 7 लोगों को बनाया शिकार, इलाके में दहशत। आज अमित राय की ओ माय डॉग सिनेमाघरों में होगी, इस फिल्म में लीड रोल में है पंकज त्रिपाठी। हिंदी ड्रामा फिल्म आर्यभट्ट का 0, इसकी भी आज हो रही है रिलीज, इसमें हिमांश कोहली, रवि किशन, सोनाली सैगल और शिल्पा शिंदे जैसे स्टार्स। आर माधवन की फिल्म GDN होगी रिलीज, GD नायडू की भूमिका में दिखेंगे माधवन। फिल्म में प्रियामणि, जयराम और सत्यराज जैसे स्टार्स। सिनेमाघरों में धूम मचाने के बाद OTT पर रिलीज, मैं वापस आऊंगा, नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी दिलजीत, वेदांत रैना, शर्वरी वाग और नसीरुद्दीन शाह की फिल्म। जिमी शेरगिल और सिद्धार्थ जैसे कलाकारों से सजी वॉर ड्रामा वेब सीरीज ऑपरेशन सफेद सागर भी रिलीज, देशभक्ति और मिलिट्री ऑपरेशन पर बेस्ड है ये सीरीज। श्रीलंका दौरे पर आज से कोलंबो में श्रीलंका 11 के खिलाफ 3 दिवसीय वार्म अप मैच खेलेगी टीम इंडिया, 15 अगस्त से शुरू हो रही 2 टेस्ट मैचों की सीरीज की तैयारियों का अहम हिस्सा। टीम इंडिया का फिटनेस लेवल सुधारने की पहल के तहत आया नया रूल, अब 10 मिनट में 2 किलोमीटर दौड़ना जरूरी। 1200 मीटर की दौड़ 5.20 मिनट में करनी होगी पूरी। भारतीय विमेंस टीम के साउथ अफ्रीकी दौरे के शेड्यूल में बदलाव, अब इस दौरे पर 1 टेस्ट और 3 वनडे के साथ खेले जाएंगे 3 T20 मैच। विमेंस एशिया कप में 5 सितंबर को खेला जाएगा भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच। एशियन काउंसिल क्रिकेट काउंसिल ने जारी किया शेड्यूल, 28 अगस्त को होगी टूर्नामेंट की शुरुआत। कोरिया मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची तन्वी शर्मा, प्री क्वार्टर फाइनल में श्रेयांसी को 21-16 से दी मात।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सब।
0: और अब रुक करते हैं पटना से आ रही खबर का। पटना में सड़क हादसे में युवक की मौत पर आज जमकर बवाल हुआ है। गुस्साई भीड़ ने बस को आग लगा दी, इसके अलावा भी कई गाड़ियां फूंक दी गई हैं। बड़ी खबर यह है कि पटना में हादसा हुआ, सड़क हादसा हुआ जिसमें खबर फैली और उसके बाद वहां पर लोग गुस्से में आ गए और उग्र भीड़ ने वहां पर आगजनी की। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां पर पुलिस की गाड़ियों में भी आग लगाई गई है, कई गाड़ियों को आग लगाई गई है और उसके बाद आपको बता दें कि जो खबर शुरुआत में फैली उसके बाद लोगों में गुस्सा आ गया। दरअसल हादसा ये हुआ था कि एक सड़क हादसे का शिकार हो गया, उसकी मौत हो गई। तो तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जहां पर जब उग्र भीड़ ने आगजनी की। जलती हुई कार आपको इसमें नजर आ रही है, साथ ही में बाइकों को भी नहीं छोड़ा उग्र भीड़ ने। पुलिस हालांकि एक्शन में आई लेकिन लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा था। अलग अलग जगहों से आग की तस्वीरें सामने आई, चारों तरफ धुआं फैल गया। तो ये तस्वीरें आपके लिए लेकर आ रहे पटना से, जहां पर खबर आई एक सड़क हादसे की जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और ये गुस्सा गाड़ियों पर उतरा जहां आग लगा दी गई।
3: अभी हम मौजूद है पटना के अगम कुआं इलाके में, यहां बड़ी पहाड़ी के पास एक बच्चे की मौत हो गई जिसके बाद जो है स्थानीय लोगों ने यहां दर्जनों गाड़ियों को फूंक दिया है, पुलिस की गाड़ियों में भी आग लगाया है। वहीं अब पुलिस जो है मौके पर पहुंच गई है और जितने भी यहां पे प्रदर्शनकारी थे और जो लोग गाड़ियों में आग लगा रहे थे उन सबको अब यहां से खदेड़ दिया गया। भारी संख्या में पुलिस बल यहां पहुंच चुकी है और जो यहां दर्जनों गाड़ियों को लोगों ने आग लगाया उसके लिए जो लोग जिम्मेवार है उसकी तलाश की जा रही है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं भारी संख्या में महिला पुलिस बल यहां दिख रही है जो अभी घटना स्थल पर पहुंची है और हमारे पीछे देखिए यहां एक कई पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दिया गया है। जब यहां वीडियो बना रहे थे मीडिया कर्मी उन्हें भी निशाना बनाया गया और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और देखिए पूरा बाईपास जो है देखिए यहां पे जाम है घंटों से क्योंकि एक बच्चा जो है यहां एक बस की चपेट में आया जिसके बाद उसकी मौत हो गई और आक्रोशित लोगों ने यहां जमकर बवाल काटा और अब भारी संख्या में पुलिस बल यहां पहुंच चुकी है और जो प्रदर्शनकारी है उसे अब एक एक कर खोजा जा रहा है। जिन लोगों ने यहाँ उपद्रव मचाया था और दर्जनों गाड़ियों में जो है तोड़फोड़ की, कई बसों को जो है आग के हवाले कर दिया गया और पुलिस की कई गाड़ियों है उसे निशाना बनाया गया। और
0: वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: याद है ना मैंने क्या सिखाया था, सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
5: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
6: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
7: P-Mark, the mustard specialist since 1933. Barso se sarso.
8: Kuch to baat hai is dil mein.

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Papa.
2: सॉरी यार गलती हो गई है ये चोट खर्चा वर्चा
3: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा
2: छक्का
3: सब कैशलेस हो गया है
2: हां ओ ले ला भाई मेरा बैट
4: वो अभी तो ठीक हुआ तू
5: बिल्कुल चार्ज हुआ यार
6: ओ ले बैट किसका है
7: टाटा एजी है तो भरोसा है
8: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं
9: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा रुंगटा स्टील टीएमटी से बना
10: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रांग नहीं रुंगटा स्टील टीएमटी बाय एकदम सॉलिड

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
3: वेट लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह, फिट तक। सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इंसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे, वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब।
4: एक जर्नलिस्ट के लिए इससे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नहीं हो सकता है कि अगर आप टाइम में पीछे जाके कोई चीज कवर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं, क्योंकि मैंने स्टार्ट एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर किया था, 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप लॉर्ड्स, वो फाइनल अगर मैं कवर कर पाती। लेकिन हमारा ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसने वो सब कुछ देखा है जो एक देश को गढ़ते हुए, अगर आपकी इच्छा है देखने की, तो वो सारा कुछ इंडिया टुडे का सफ़र है। और यही एक डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में जब पीवीआर आइनॉक्स में आप देखेंगे, तो वाकई इसे मिस नहीं करना चाहिए, इसे ज़रूर देखिए। पीवीआर आइनॉक्स 7th August onwards।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

एनडीए में नई एंट्री लेने वाले लोकसभा सांसदों से पीएम मोदी की नाश्ते पर मुलाकात, कहा संसद की डिबेट में हिस्सा लें। महाराष्ट्र के सांसदों से बोले, विकास कार्यों में कोई दिक्कत आए तो सीधे मुझसे मिले। संसद में डेडलॉक के बीच सोमवार तक स्थगित हुई लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही। रिजिजू बोले, विपक्ष न बताए कि किस मंत्री को सदन में आना है, जिनके विभाग पर चर्चा है वो मौजूद हैं। सोरेन सरकार और छात्रों के बीच वार्ता के तरीके और तारीख पर सस्पेंस बरकरार, शर्तों पर फंसा पेच, एक छात्र की तबीयत बिगड़ी। राहुल गांधी ने बातचीत के बाद दिया एक्शन का भरोसा, विधानसभा में बीजेपी आक्रामक। राहुल गांधी ने की कैप्टन अमरिंदर सिंह की तारीफ, तो गर्म हुई पंजाब की राजनीति। आम आदमी पार्टी ने कहा, कैप्टन को ही पार्टी में ला सकते हैं राहुल गांधी। परगट सिंह बोले, अमरिंदर तारीफ के काबिल हैं। पटना की सड़कों पर भयंकर उबाल, बस से कुचलकर युवक की मौत के बाद फूटा गुस्सा, भीड़ ने कई गाड़ियां जलाई, पुलिस के वाहनों को भी किया आग के हवाले।

0: दो सप्ताह से झारखंड की राजधानी रांची में युवा आक्रोशित हैं, आंखों में आंसू भी है तो आक्रोश भी है, गुस्सा भी है, वो इंसाफ मांग रहे हैं, इंसाफ अपने भविष्य के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। इस समय ग्राउंड जीरो से आज तक लगातार बीते 14 दिनों से हम उन छात्रों की आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो क्या मांग रहे हैं। वो मांग रहे हैं एक पारदर्शी व्यवस्था, वो मांग रहे हैं एक ऐसी व्यवस्था जिसमें पेपर लीक ना हो, वो मांग रहे हैं एक ऐसी व्यवस्था जिससे उनका भविष्य जो सालों तक परीक्षाओं के इंतजार में बीत जाता है और जब परीक्षाएं होती हैं तो गड़बड़ियां होती है, धांधली होती है। ये छात्र यहां पर सालों पेपर सेट करते हैं लेकिन बैकडोर से सेटिंग होके नौकरी मिल जाती है, तब हाथ लगती है निराशा, और उसी निराशा के बाद जब आक्रोश होता है तो युवा यहां उतरते हैं। ये इस देश की भावी पीढ़ी है, जनरेशन जी है, जो यहां पर आंदोलन कर रही है दो सप्ताह से, भारी उमस है तो कभी भारी बरसात, और ऐसे में जब मांगे नहीं सुनी जाती हैं तो फिर वो बैठ जाते हैं यहाँ पर आंदोलन पर, अनशन पर, जो यहाँ पर बैठे हैं, जिनमें से एक छात्र की तबीयत सुबह खराब हो गई। वो ये संदेश देना चाहते हैं कि जीवन तभी सार्थक है जब जीवन का वो मतलब पूरा हो, जब उनकी मेहनत सफल हो, उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां हैं, अपने भविष्य की जिम्मेदारियां हैं। तीन तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इस प्रदर्शन के बीच, जहां एक तरफ विपक्ष सवाल कर रहा है सोरेन सरकार से, तो राहुल गांधी समर्थन दे रहे हैं। इसी के साथ वो छात्र हैं जो मांग पर अड़े हैं, दरअसल ये कि जो बर्फ है वो कब पिघलेगी, वो चाहते हैं कि सरकार बात करे। छात्रों ने अपना प्रतिनिधि मंडल बनाया तो हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि चार मंत्री हमारी ओर से बातचीत करेंगे। लगातार यहां से ऐलान हो रहा है कि वो सरकार से बातचीत करना चाहते हैं, सीधे सूबे की मुखिया से बात करना चाहते हैं। और इसी प्रदर्शन में अब उन दूसरे धड़े भी शामिल हो रहे हैं जो समर्थन दे रहे हैं। नेहा वोहरा, जो कि जंतर मंतर पर सीजेपी प्रदर्शन में गई थी आज से थोड़ी देर पहले, उन्होंने भी आकर के इस मंच पर इन छात्रों से मुलाकात की, इस आंदोलन को समर्थन दिया। सुनिए क्या कह रही थी नेहा वोहरा।
1: आपने ये जो संघर्ष किया हुआ है उस संघर्ष में पूरा देश देख रहा है, और इस मंच से ये मांगे जो यहाँ पे जो बदनाम कर छात्रों की है, संघर्ष कर रहे छात्रों की है, उन मांगों को मैं अपनी सॉलिडारिटी और समर्थन यहाँ से देना चाहूंगी। चौथवा जेपीएससी की जो परीक्षा है जिसमें भारी धांधली सामने आई, वो जेपीएससी जो पहले और दूसरे एग्जाम से घोटाले पे घोटाला देखता हुआ जा रहा है, और आज चौदहवे जेपीएससी में भी हम देखते हैं कि पूरे देश भर में जेपीएससी का ये जो एग्जाम है, परीक्षा है, वो बदनाम है कि अगर होगी तो उसमें धांधली होगी, अगर होगी तो उसमें परीक्षा होगी। तो ये जो जेपीएससी की परीक्षाएं होती है उसको करवाने के लिए एक सुचारू व्यवस्था हो, और अविलंब तुरंत चौदहवे जेपीएससी को रद्द किया जाए, उसकी जगह री एग्जाम की डेट और शेड्यूल घोषित किया जाए।
0: जब व्यवस्था और सरकार बहरी हो जाए तो लोगों को आवाज उठानी पड़ती है, और यही मजबूरियां विवश कर देती हैं जिन छात्रों को स्कूल कॉलेज में लाइब्रेरी में होना चाहिए था, वो यहां धरने पर बैठे हैं। ये सैकड़ों नहीं हजारों वो छात्र हैं जो इस मांग के लिए कि हेमंत काका जेएसएससी सीजीएल रद्द कर दो हो काका, ये झारखंड की अपनी पारंपरिक शैली, ये युवा है, ये क्रिएटिव है, ये रचनात्मक है, एआई से लेकर 3D पोस्टर, हर वो तरीका जिससे वो अपने बात को बेहद प्रभावी ढंग से पहुंच जाए, और इसीलिए नाराजगी है, मायूसी है, तो गुस्सा भी है कि आखिर कितने दिन उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट।
2: आखिर कितनी पीड़ा, कितनी वेदना, कितना दर्द इस छात्रा को तब हुआ होगा जब उसकी जुबान से निकला होगा कि लगता है पढ़ लिख कर गुनाह कर दिया।
3: जिम्मेदारी का बोझ बहुत है सर, एक गरीब परिवार से रहना ना बहुत मुश्किल है, यही रीजन था कि हम बाहर पढ़ने के लिए निकल गए। घर में उतना कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है तो सोचे कुछ नहीं, कम से कम हम तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे हैं, लग रहा मैं तो पढ़ के भी गुनाह कर दी हूं।
2: जिस पढ़ाई के सहारे सालों साल छात्र छात्राएं भविष्य के सपने सजाते हैं, नौकरी के लिए दिन रात एक करते हैं, जी जान लगाते हैं, लेकिन सिस्टम का ऐसा अत्याचार होता है कि आंखों से आंसू और दिल से आह साथ ही निकल पड़ते हैं।
3: ऐसा लगने लग गया, पढ़ाई पे से भरोसा उठ गया, भगवान पे से भरोसा उठने लग गया। हम लोग क्या करेंगे, बहुत मजबूर हो गए, इसलिए ये कदम उठाना पड़ा। हम लोग का कोई शौक नहीं अपना स्वास्थ्य कोई खराब करना चाहेगा, लेकिन भी क्या करें, मजबूर कर दिया ये सरकार। जब से ये सरकार आया उस समय से तो कुछ ज्यादा ही होने लगे। पहले होता था, हम लोग भी जानते थे पहले होता था, लेकिन ये सरकार आया तब से हर एक वैकेंसियां बिकने लग गया। एक दो सीट मात्र बचाता है, सबको बेच देता है, एक दो सीट बचाता है, गरीब बच्चा को दे देता है, बोलता है हम क्लीन एग्जाम लिए हैं।
2: रांची में बीते 14 दिन से जारी आंदोलन में मौजूद हर छात्र की अपनी व्यथा है, अपनी अलग कहानी है। किसी का पेपर लीक हुआ, कोई परीक्षा देकर सालों से नतीजे का इंतजार कर रहा है। झारखंड में परीक्षा देकर नौकरी पाने का प्रयास इन सब के लिए किसी यातना जैसा बन गया है। 28 साल की छात्रा सविता भी बीते 4 दिनों से आंदोलन में शामिल है। सविता जब बताती हैं कि कैसे झारखंड में सरकारी नौकरी की उम्मीद में उनके कई साल बर्बाद होते चले गए, उनके हर ख्वाब बिखर गए, तो सविता का ये हाल बताता है कि सिर्फ परीक्षा की व्यवस्था ही दम नहीं तोड़ चुकी है, मानो सरकार ने भी छात्रों की मुश्किलों पर आंखें मूंद ली है।
3: तैयारी करते करते अब तो मेरा उम्र भी निकलते जा रहा है, 28 साल होने जा रहा है, 28 में पार होने जा रहा है, अब 29 में पहुंच जाएंगे, 1 से 2 साल में मेरा एज भी खत्म होने को रहेगा, फिर हम तो कोई फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। यार ये पढ़ाई के चक्कर में हम आगे कुछ और पढ़ाई नहीं किया, मेरा घर की स्थिति बहुत खराब था सर, इसीलिए हमको यही लगता था कि एक जॉब ले ले, उसके बाद जो आगे के भविष्य होगा आगे देखा जाएगा।
2: परिवार बेहद गरीब था, लिहाजा सविता ने पढ़ाई की शुरुआत में ही ठान लिया था कि नौकरी के सहारे वो पिता की मदद करेंगी, परिवार का सहारा बनेंगी। लेकिन झारखंड में लगातार परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों ने ऐसा हाल किया कि सविता जैसी छात्राओं की उम्मीदों को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया।
3: सर मेरा परिवार में मेरा पापा सिर्फ है और मेरी 4 बहनें हैं, तो सबका शादी हो गया है, एक छोटा भाई है, तो हम अपना पढ़ाई करने के चक्कर में मेरा घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं था, तो भाई का भी शादी करवा दिया कि हम पढ़ लेंगे कुछ कर लेंगे तो आगे हमारा फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा, घर का भी स्थिति ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ का परिस्थिति इतना गंदा है ना कि सर हम आज तक एक रिजल्ट नहीं कर पाए, यहाँ तक कि पता है सर हम जिस होमगार्ड से लेकर जेपीएससी तक का कर चुके, अगले बार हम होमगार्ड का भी रनिंग कर।
2: झारखंड की करीब करीब हर परीक्षा में गड़बड़ी है, हर एग्जाम का हाल एक सा है, इस सिस्टम ने मेहनती छात्रों को बेबस कर दिया है।
3: परीक्षाओं में सर कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि हम बहुत कोशिश किए, रात दिन एक कर दिए हैं, घर का परिस्थिति देख के ना सर लगता है इस साल हम नौकरी ले लेंगे, घर का परिस्थिति बहुत खराब है, लगता है इस साल हम नौकरी ले लेंगे, क्योंकि जी जान लगा के कोशिश करते हैं लेकिन भी हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। इस बार मेरा पीटी भी निकलने वाला था 14 जेपीएससी का, 135-136 क्वेश्चन सही हुआ, सोचे इस बार पीटी निकल जाएगा, मैं मेंस का पूरा प्रिपरेशन सारा डॉक्यूमेंट सारा पढ़ने का चीज हम जुगाड़ कर लिए थे और सोचे इस बार पीटी जैसे निकल जाएगा, उससे भी पहले से भी मैं तैयारी कर रही हूँ, तो सोचे जी पीटी निकल जाएगा, जी जान लगा के रात दिन एक करके पूरा इस बार मेंस भी निकाल लूंगी। लेकिन देखे कि सरकार इस तरह से पेपरों को अंदर से रंगवाया गया ना, तो हम लोग का पीटी भी नहीं हो पाया।
2: यही बेबसी अब छात्रों के गुस्से आक्रोश का रूप ले चुकी है, जिसकी तस्वीर रांची में जारी आंदोलन में दिख रही है। अब आंदोलन में शामिल छात्र राहुल का हाल देखिए, शरीर बुखार से तप रहा है, लेकिन ना ही वो आंदोलन छोड़ने को राजी हैं, ना ही अपने साथियों को, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि इस आंदोलन के सहारे व्यवस्था में बदलाव होगा, फिर से झारखंड का कोई छात्र नाइंसाफी का शिकार नहीं होगा।
4: लेकिन झारखंड के नौजवानों का सौदा नहीं हो, ये मेरा संकल्प है, तो उसको तो हम अंतिम सांस तक।
5: मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि आपको बुखार काफी ज्यादा है, बहुत तेज हो चुका है, शरीर तप रहा है।
4: लेकिन यहाँ डॉक्टर भी तो आते हैं, चेकअप करते हैं, दवा भी लिखते हैं, अब बोलते हैं कि 2 घंटा में दवा पहुँचा रहे हैं।
2: रांची के आंदोलन में जितने भी छात्रों से बात करो, हर किसी की पीड़ा अंतहीन है, सिस्टम से उम्मीद टूट गई है, अब आंदोलन के सहारे बदलाव की आस है। बिरसा फुले और अंबेडकर की प्रेरणाओं के साथ इन्हें संविधान पर विश्वास है।
6: बिल्कुल, ये हमारी स्ट्रेंथ है, पावर है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये हमारा अधिकार है, हक है, हमें ये संविधान ने हमें राइट दिया हुआ है। लेकिन इवन देन यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व या प्रशासन भी हमारे मनोबल को तोड़ने का बहुत कोशिश किया है, तो उस वक्त एक संविधान ही था जिसके सहारे हम यहाँ पे खड़े थे, क्योंकि ये लोग हमें टेंट भी बनाने नहीं दे रहे थे, हटा रहे थे, तो उस वक्त मुझे लगा ये राइट तो मुझे यहाँ पे दिया हुआ है।
2: बदलाव के भरोसे के साथ छात्र बीते 14 दिनों से आंदोलन में डटे हैं। सरकार से सिस्टम में सुधार की मांग कर रहे हैं। सरकार बातचीत का भरोसा दे रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल बाकी है कि आखिर कैसे पूरी व्यवस्था हर परीक्षा के साथ ध्वस्त होती गई? क्यों पहले ही कोई एक्शन नहीं हुआ? क्यों मजबूर होकर छात्रों को आंदोलन का सहारा लेना पड़ा? सत्यजीत कुमार के साथ आशुतोष मिश्रा, रांची आज तक।
0: परीक्षाओं में एक दो बार अनियमितताएं हो जाएं तो अपवाद हो जाता है, लेकिन झारखंड वो अपवाद है जहां बीते इतने सालों में जब से झारखंड की अपनी पहचान बनी, आंदोलन हुआ, यहां कभी कोई परीक्षा ऐसी रही नहीं जिसमें ये अपवाद ना दिखाई दिए हों। अब इसीलिए जब छात्र नाराज हैं तो वो कह तो रहे हैं कि पुच्चू पुच्चू शिक्षा विभाग तुमसे नहीं संभल पाएगा, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म चाहिए, जरूरी है। और इसीलिए वो नाराजगी हेमंत सोरेन से भी दिखा रहे हैं कि तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, हमने तुम्हें चुना था, कम से कम एक तो वक्त आता। और इसीलिए संदेश है, कितनी बार परीक्षाएं लीक हुई हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जेपीएससी जेएसएससी का कैलेंडर हर बार नया इंतजार लेकर के आता है। कैलेंडर तो आता है, दो चार साल में परीक्षाएं होती हैं, भर्ती निकलती हैं, और जब भर्ती भरनी होती है तो ये कह तो रहे हैं कि हे इंडिया, आर वी टुगेदर, क्या हम वहीं भूल गए, क्या हम साथ हैं या नहीं है। लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि बेचा बेचा बेची चलता बाबू, मतलब उनको पता है कि बच्चे पेपर सेट कर रहे हैं लेकिन पीछे से जो है नौकरी में सेटिंग हो जाती है। लिख रहे हैं, हेमंत दादा हमारा भविष्य मत खाओ। और इसी सवालों के साथ, इसी संदेश के साथ, ये जेनरेशन जी है ना, ये बहुत बहुत तगड़ा मारती है। इनके जो व्यंग हैं, वो कटाक्ष हैं, वो इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि इनकी उम्र है, जिस उम्र में उनको अपनी लाइब्रेरी में होना चाहिए था, अपने दोस्तों यारों के साथ होना चाहिए था, तैयारी करनी चाहिए थी, उस उम्र में वो क्या कर रहे हैं? वो आंदोलन कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? कुछ अपने लिए कर रहे हैं। सुबह जब इन छात्रों से बात करता हूं तो पता चलता है बहुतों की उम्र 28-29 तक पहुंच गई है। उम्र की एक सीमा होती है, वो सीमा बीत गई तो फिर परीक्षाएं होती रहेंगी, वो उससे बाहर हो जाएंगे। झारखंड ऐसा राज्य नहीं है जहां पर इतनी नौकरियां हो, और इसीलिए ये छात्र वो हैं कि यहां पर कॉर्पोरेट कल्चर नहीं है, यहां वो मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए नौकरियों में एक सबसे बड़ा रोजगार और जो सुरक्षा सामाजिक आती है वो सरकारी नौकरी से आती है। और अगर जब उसका मौका आता है और बैकडोर से कोई सेटिंग कर ले जाता है तो दर्द होता है, और इसीलिए आंख से आंसू भी निकलते हैं तो गुस्सा भी आता है।
2: हर परीक्षा के साथ इन छात्रों में एक उम्मीद जगती कि शायद इस बार कोई गड़बड़ी ना हो, शायद इस बार नतीजा साफ सुथरा हो, शायद इनकी मेहनत का असर दिखे, शायद झारखंड की परीक्षा व्यवस्था इस बार सुधरे। लेकिन बार बार इनकी उम्मीद टूटती है, ये हर बार खुद को ठगा महसूस करते हैं, हर बार सिस्टम की नाकामी का शिकार बनते हैं। भ्रष्टाचार इन छात्रों की मेहनत पर भारी पड़ जाता है और छात्रों के हाथ खाली के खाली रह जाते हैं।
7: इन परीक्षाओं के बस पेपर लीक हुआ है, क्या कट ऑफ है कुछ पता चल नहीं पा रहा है। 25 साल हो गया, एक पीढ़ी का तो मतलब उम्र पार हो गया। उन्होंने भी देखा अपने सामने नौकरी को बिकते हुए, धांधली लगते हुए कि पारदर्श, और ये उन्होंने हमें बताया है कि झारखंड में कोई भी एग्जाम फेयर तरीके से नहीं होता है, बैकडोर एंट्री होता है, पैसा दो नौकरी लो। अगर आप पढ़े लिखे हुए भी नहीं है ना, तो झारखंड में ये व्यवस्था है कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पैसा ले लीजिए, और उसके बाद फिर कोई एजेंसी परीक्षा ले रही है तो वहाँ पे पैसा दे के नौकरी ले लीजिए, ये व्यवस्था है झारखंड में।
2: 25 साल के मनीष बताते हैं कि कैसे हर परीक्षा में वो बर्बाद हो चुके सिस्टम का शिकार बनते हैं। मनीष एक नहीं कई कई परीक्षाओं का उदाहरण देते हैं और सवाल करते हैं कि अगर यही
8: और बात करने के लिए भी हम लोग तैयार है, और अब तो हम इस जो छात्रों की इच्छा है उस इच्छा को हम जयपाल सिंह स्टेडियम से बाहर तक ले जाने की कोशिश में, पूरे राज्य की जो हमारे छात्र छात्राएं हैं जो इस संबंध में अपने विचार रखते हैं वो अपनी राय दे सकते हैं, और मजबूत और बड़े रिफॉर्म के साथ आगे हम लोग बच्चों की जो ये जिज्ञासा है उस जिज्ञासा को उनके अनुरूप बनाने के उद्देश्य से आगे बढ़े।
0: तो आप हेमंत सोरेन के सुन रहे थे, झारखंड के मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि छात्रों के साथ वो संवाद को लेकर के सकारात्मक है। एक प्रतिनिधिमंडल बनाया गया है और वो प्रतिनिधिमंडल जो जिनसे बातचीत करेगा वो इन्हीं छात्रों के बीच है। दरअसल 14 दिन का इंतजार और अब वो चाहते हैं कि कम से कम बातचीत हो। छात्र क्या चाहते हैं? अपने घर जाना चाहते हैं, वापस वो तैयारियां कर एक पारदर्शी व्यवस्था हो जाए और ये परीक्षा के नतीजे अगर रद्द हो जाए तो इस मंच से लेकर के इस प्रांगण में अगर ये तस्वीरें आप देखेंगे कि यहां पर वो आक्रोश है जिसकी वजह से वो बैठे हैं। वो नाराजगी है क्योंकि बहुतों की उम्र निकल जाएगी तो धक्के खाने पड़ेंगे निजी कंपनियों के और वहां पर भी रोजगार की स्थिति झारखंड में क्या है ये किसी से छुपा नहीं है। 100-200 की भर्तियां आती हैं, लंबा तैयारी होती है और उस तैयारी के बाद मिलता क्या है? अव्यवस्था। और इसीलिए वो चाहते हैं कि संवाद हो, इस संवाद में एक आश्वासन हो, वो आश्वासन बेहद ठोस हो। इसीलिए नारे हैं, संदेश हैं, यहां पर वो जो जिज्ञासाएं छात्रों के अंदर अपने भविष्य को लेकर के है वो चाहते हैं कि कम से कम सरकार उनकी बात सुने। लेकिन सरकार बात सुनती दिखाई दे रही है क्या?
9: बोलिए,
0: सरकार सुनाई दिख रही है आपको? बात सुनती हूँ,
10: सरकार को इस भीड़ के माध्यम से सारी चीजें दिखाई दे रही है लेकिन वो सुनने का नाम नहीं ले रही है। ये गुलाम बढ़ते जा रहा है, हमारी मांग जो है
0: 14 दिन हो गया, 14 दिन बाद लग रहा है कि अभी भी कहीं उम्मीद है सुनवाई की, क्योंकि परीक्षा सरकार के पहले बात करते हैं, परीक्षा जो नतीजे रद्द करने के तो आसार नहीं दिख रहे फिलहाल।
11: देखिए, परीक्षाओं को रद्द करने की और ना करने की बात तो नहीं है। परसों सरकार के द्वारा संवाद का प्रस्ताव लेकर हमारे पास डीएम और एडीएम महोदय पहुंचे थे। हम लोगों के प्रतिनिधि मंडल ने कल उन्हें 5:00 तक 11 नामों की सूची सौंप दी। उसके बाद कल रात को यहाँ के SDM महोदय आते हैं हमारे पास और कहते हैं कि आप लोगों के बीच जो प्रतिनिधिमंडल नहीं है और तालमेल नहीं है, इसका आरोप लगाकर वो मन से उतर जाते हैं।
0: आज कुछ हुआ, आज कुछ बातचीत हुई फिर आप?
11: नहीं, अभी भी हमको सरकार की ओर से जो संवाद है ऐसा कोई संवाद स्थापित करने का नहीं है, लेकिन हम आशान्वित हैं कि सरकार हमसे बात करने का प्रयास करेगी।
0: ये आशा इसलिए है क्योंकि ये छात्र धरने पर थोड़ी ना बैठना चाहते हैं, तो चाहते हैं कि अपने घर चले जाएं, मांगे इनकी पूरी हो जाए, सरकार एक बार इनकी सुनवाई कर ले, क्योंकि यहीं पर तो हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन की भी पोस्टर लगा रखे हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं बनेगा, ये कहीं पर सियासी बयान, कोई ऐसी चीजें नहीं दिखाई जाएंगी जो बाकी जगहों पर उन्होंने देखी है। वो चाहते हैं, छोटी सी मांग है, सरकार सुने, सुनवाई करे, वो चली जाए। अब सरकार की ओर से अगर ये कहा जाएगा कि छात्रों में समन्वय नहीं, यहाँ समन्वय है दिखाई देता है, उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को यहाँ पर डाला है। और इसी के साथ ये भी याद रहे आपको कि अगर सुनवाई नहीं होती है तो 10 अगस्त को ये छात्र यहाँ से उठ करके विधानसभा घेराव करेंगे, मार्च करेंगे। ग्राउंड जीरो से आज तक की कवरेज लगातार जारी है, रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
14: सिखाया था सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क और
15: मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
16: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
17: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
18: कुछ तो बात है इस दिल में।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: don't be crazy. Bro, time has changed. Now future is Gen Z.
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health Ka Sach. In association with
2: Bharat Ki Apni Electric Sawari Sokudo.
3: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
4: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
5: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
6: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
7: कुछ तो बात है इस दिल में।
8: ईएमआई में राहत का इंतजार करने वालों को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद मायूसी हाथ लगी है। दरअसल उम्मीद के अनुसार ही सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25% पर स्थिर रखा है। रेपो रेट स्थिर रहने से एफडी और बचत खातों की ब्याज दरों पर तत्काल असर की संभावना कम है। वहीं आरबीआई ने अपना रुख न्यूट्रल रखा है, यानी आगे हालात देखकर फैसला होगा।
9: आफ्टर अ डिटेल्ड असेसमेंट ऑफ द इवॉल्विंग मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस एंड the economic outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%. Consequently, the STF rate remains at 5% and the MSF rate and the bank rate at 5.5%.
8: लेकिन रसोई के बजट पर महंगाई का असर देखने को मिल सकता है। दुनिया भर में चल रहे तनाव और कच्चे तेल के दामों में उतार चढ़ाव की वजह से आने वाले दिनों में खाने पीने का सामान थोड़ा महंगा हो सकता है। आशंका है कि सब्जी और तेल के दाम बढ़ने से महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है। वहीं अल नीनो और मानसून को लेकर बनी अनिश्चितता का असर खेती और खाद्य कीमतों पर पड़ सकता है। खास बात है कि खाद्य और ईंधन कीमतों को छोड़ दिया जाए तो कोर इन्फ्लेशन फिलहाल काबू में है। राहत की बात यह है कि ग्लोबल मार्केट में भारी उथल पुथल के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है।
9: बॉन्ड मार्केट सेंटिमेंट्स रिमेन बेयरिश रिफ्लेक्टिंग फिस्कल सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स। हाउएवर इक्विटी मार्केट्स ड्रिवन बाय टेक स्टॉक्स रिमेन अपबीट।
8: कुल मिलाकर आरबीआई ने फिलहाल ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। ऐसे में ईएमआई में राहत का इंतजार थोड़ा और लंबा हो सकता है। हालांकि केंद्रीय बैंक का मानना है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और महंगाई पर नजर बनाए रखते हुए ग्रोथ को समर्थन दिया जा सकता है। आज तक ब्यूरो।
10: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: संसद में डेडलॉक के बीच सोमवार तक स्थगित हुई लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही। रिजिजू बोले, विपक्ष न बताए कि किस मंत्री को सदन में आना है, जिनके विभाग पर चर्चा है वो मौजूद है। एनडीए में नई एंट्री लेने वाले लोकसभा सांसदों से पीएम मोदी की नाश्ते पर मुलाकात। कहा, संसद की डिबेट में भाग लें। महाराष्ट्र के सांसदों से बोले, विकास कार्यों में कोई दिक्कत आए तो सीधे मुझसे मिलें। छात्रों की समस्या सुनेंगे और उनके हित में लेंगे फैसला, सीएम सोरेन का बयान। लेकिन वार्ता की टाइमिंग पर सस्पेंस। राहुल ने बातचीत के बाद दिया एक्शन का भरोसा। विधानसभा में बीजेपी आक्रमण। राहुल ने की कैप्टन अमरिंदर की तारीफ, तो गर्म हुई पंजाब की राजनीति। आम आदमी पार्टी ने कहा, कैप्टन को ही पार्टी मिला सकते हैं राहुल गांधी। प्रगट सिंह बोले, अमरिंदर तारीफ के काबिल हैं। और संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, जेन जी हमारी पीढ़ी से ज्यादा देशभक्त और ईमानदार। आंख मूंद कर करता हूं भरोसा, आंदोलन का मतलब राष्ट्र विरोधी नहीं। प्रियंका बोली, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए।
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach, in association with Bharat ki.
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। और न्यूज रूम लाइव में जैसा कि होता है आमतौर पर, दो बजे हम बताते हैं सबसे पहले उन खबरों के बारे में जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले किस खबर के बारे में बात करेंगे, संसद में आज भी लगातार गतिरोध है। एक तरफ पक्ष है, दूसरी तरफ विपक्ष है। विपक्ष कह रहा है कि अमित शाह को आना चाहिए, तो सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि आप मत बताइए कि किसको आना होगा किसको नहीं आना होगा। तो इस बारे में बात करेंगे कि आज क्या हुआ। दूसरी खबर जिसके बारे में बात करेंगे, आपको सीधे लिए चलेंगे झारखंड के रांची। और झारखंड के रांची में जो छात्रों का प्रदर्शन है वो तो आगे बढ़ रहा है। सरकार बोल रही है कि अपने डेलीगेशन यहां पर बना दिया है, वो बातचीत करेंगे। लेकिन पेच कहां पर फंसा हुआ है, अभी तक समाधान क्यों नहीं निकल पाया है, इस बारे में हम आपको बताएंगे। तीसरी जो बड़ी खबर है उसके बारे में भी बात आपको बता देते हैं। राहुल ने आखिर क्यों कैप्टन कूल कहा, कैप्टन अमरिंदर को अंकल बोला, और अब क्या पंजाब की राजनीति में उबाल आने वाला है, क्या कहा जा रहा है, राहुल गांधी के इशारे को किस तरह से देखा जा रहा है, बहुत सारे लोग कयास लगाए जा रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और इसके साथ ही हम आपको बता दें जो अगली हमारी खबर होने वाली है, कावड़ियों के भड़काऊ, कावड़ियों पर जो भड़काऊ बोल आया है एक मौलाना साजिद रशीदी का, उसको लेकर अब किस तरह की सियासत उबल रही है, क्या होने वाला है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जिसके बारे में बात करेंगे वो होगा कि आज तीन बड़ी बैठकें हुई हैं, यानी अब संसद में जो भी हो रहा है गतिरोध वो तो आप सभी लोग देख ही रहे हैं। एक तरफ पक्ष विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। और यहां पर आप देखिए, सबसे पहले होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रेकफास्ट मीटिंग। अब इसमें कौन लोग आते हैं, जो ममता और उद्धव ठाकरे से जो अलग हुए उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलते हैं और कहते हैं कि आपको जब भी जरूरत है मैं तो हमेशा हूं आपके साथ में, बहस में हिस्सा लिया कीजिए। और दूसरी तरफ अब आप देखिए एक और मुलाकात होती है, एक और मुलाकात जिसमें एकनाथ शिंदे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलते हैं। और उस मुलाकात के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं कि आखिर किस बारे में बातचीत हुई। और एक बैठक संसद की आज की कार्यवाही खत्म होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के बीच हुई। ये मुलाकात तब हुई जब विपक्ष लगातार सदन में अमित शाह के बयान की मांग कर रहा है। हालांकि रिजिजू की तरफ से जवाब भी दिया गया, लेकिन यहां पर आप देखिए, ममता उद्धव के बागी सांसदों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले, उनसे नाश्ते पर मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और सिर्फ मुलाकात ही नहीं की है, उनको कुछ मंत्र भी दिए। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आज तीन बहुत अहम मुलाकात आज देखने को मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले जो ममता और उद्धव से अलग हुए उनसे मुलाकात करते हैं, फिर एकनाथ शिंदे से मुलाकात हुई, और उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और अमित शाह की मुलाकात। इन बैठकों के बारे में बताइए।
2: देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो एनसीपीआई और उद्धव सेना ठाकरे ग्रुप के जो बागी सांसद हैं उनसे मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और एनसीपी के भी दो सांसद थे उपेंद्र कुशवाहा थे। और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ कर दिया है कि आपको अपने अपने राज्यों के जो विकास कार्य, अपने अपने क्षेत्रों के विकास कार्य उन पर ध्यान देना है। अगर किसी भी तरीके की कोई

0: समस्या आती है तो आप सीधा मेरे कार्यालय यानी प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है उसको संपर्क कर सकते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि देखिए सदन की कार्यवाही नहीं चल रही है और ऐसे में ना आपको मौका मिल पा रहा है ना दूसरे जो विपक्ष के सांसद है उनको भी मौका नहीं मिल रहा है मिल पा रहा है, और ये गतिरोध के कारण है। इस गतिरोध को जो है विपक्ष को खत्म करना चाहिए। दूसरी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कह दिया कि हमारी नजर में सभी सांसद एक बराबर हैं, चाहे वो सिंगल पार्टी के सांसद हो या 150 सांसदों वाली पार्टी हो, हम सबको एक ही नजर से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है व्यक्तिगत तौर पर जो है कई सांसदों से बात की, जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना के मंत्री हैं सांसद हैं उनसे बातचीत की, मराठी में बातचीत की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही अच्छी तरीके से मराठी बोलते भी हैं और समझते भी हैं। और इसके साथ साथ दूसरी बैठक जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ थी क्योंकि कई महाराष्ट्र के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत थी। जेंजी का जो एक मूवमेंट पिछले 2 महीनों दिखा है उसको लेकर क्या चीजें ऑब्जर्व की गई हैं महाराष्ट्र में, उन तमाम इश्यूज को लेकर जो है एकनाथ शिंदे
1: हिमांशु,
0: के
1: आपका
0: साथ
1: हमारे
0: दोनों
1: साथ
0: नेता
1: जुड़ने के लिए,
0: साथ गए
1: जानकारी के
0: हैं।
1: लिए। और इसके साथ ही हम ये भी आपको बता दें कि आज गतिरोध खत्म नहीं हुआ है संसद में, क्योंकि एक तरफ पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की तरफ से जवाब दिया गया, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे क्यों नहीं है। 14वें दिन लगातार हंगामे की भेंट संसद चढ़ गई है। वो कह रहे हैं अमित शाह को आना चाहिए, उनको अपनी बात रखनी चाहिए, और विपक्ष अमित शाह के बयान पर अड़ा हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू कह रहे हैं ये सरकार तय करेगी कि किस मंत्री को सदन में बोलना है, किस मसले पर बोलना है, किसको कब आना है, किसको कब नहीं आना है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जिस मुद्दे को लेकर बात चल रही है उस मुद्दे के मंत्री तो सदन में है, तो विपक्ष ना बताए हमें।
2: हाउस तो बिजनेस तो हमने पारित किया है और लोकसभा में एमएसएमई वाला बिल को हम लोग ने पारित किया है, बिजनेस तो चल रहा है। मैंने कल भी बताया कि डिस्कशन कम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन पार्टी ने हंगामा करके नारेबाजी किया, इसलिए डिस्कशन कम हुए हैं। लेकिन बिजनेस पारित हुआ है और राज्यसभा में एनडीए पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं सबने डिबेट में हिस्सा भी लिया है, अपना बात भी रखा है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हाउस नहीं चल रहे हैं, हाउस चली है, बिल्स पारित हुए हैं, सिर्फ चर्चा कम हुए हैं क्योंकि हंगामा है, ये नंबर वन क्लैरिफिकेशन। सेकेंडली, जो हाउस एक्सटेंशन का कांग्रेस पार्टी की ओर से या किसी और से कहा गया, ऐसे कोई प्रपोजल नहीं है कोई स्पेशल सेशन का, अभी तो मॉनसून सेशन चल रहा है।
1: सदन के बाहर क्या हुआ ये आपने देख लिया, लेकिन सदन के अंदर जब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से ये कहा गया कि ये विपक्ष तय नहीं करेगा कि कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा, वो अंदर क्या हुआ वो हम आपको दिखाते हैं।
3: इधर तो ऑपोजिशन हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, कोई डायरेक्शन नहीं दिया चेयर से। मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं पार्लियामेंट के समय सुबह से लेकर के देर रात तक होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में ही रहते हैं। सदन में जिसका बिजनेस होता है वही मंत्री जवाब देता है, ऑपोजिशन तय नहीं करेगा कौन सा मंत्री को कब आना है, ये ऑपोजिशन पार्टी तय नहीं करते हैं। आप लोग नाराबाजी करके तुरंत चले जाते हैं पार्लियामेंट छोड़ के, लेकिन होम मिनिस्टर सुबह से लेकर देर रात तक पार्लियामेंट में नहीं रहता है, देश का संचालन करता है, और जब होम मिनिस्टर जवाब देगा आप लोग सुन नहीं पाएगा। आप लोग क्या बात करते हैं, आप लोग को हिम्मत नहीं से नाराबाजी करते, बिजनेस डिस्टर्ब करते, एनर्जी फ्लो करते, मैं खंडन करता हूँ कांग्रेस पार्टी के नाराबाजी।
1: तो बेहद आक्रामक अंदाज में सत्ता पक्ष विपक्ष सभी नजर आ रहे हैं। अब किरण रिजिजू को आपने सुन लिया, लेकिन सदन में उस वक्त कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल भी थे। अब केसी वेणुगोपाल की तरफ से क्या कहा गया, और फिर उसके बाद चाहे वो रविशंकर हो या प्रमोद तिवारी हो, एक दूसरे पर कैसे आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं वो जरा देख लीजिए।
4: Biggest joke in this parliament was Kiran Rijuju's statement.
5: आपने सिर्फ सदन का गतिरोध अपने स्वार्थ के लिए बनाए रखा, और ये कतई लोकतंत्र में इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। जब सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, हर विषय पर हम लोग कह चुके हैं कि हम लोग जिस पे भी आपको बहस करनी है, जिस पे भी आपको चर्चा करनी है, पर आप सदन चलने तो दीजिए। पिछले जब से हाउस खुला है तब से इन्हीं एक दो मुद्दों को लेकर, जबकि बार बार सरकार अपने आप को एंगेज कर रही है, विपक्ष के तमाम नेताओं से हमारे सरकार के मंत्री प्रतिनिधि जाके बात कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, उसके बाद इस तरीके का रुख रखना, मुझे लगता है ये सिर्फ इस पे राजनीति कर रहे हैं जो कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए हानिकारक है।
6: चेयर ने भी इच्छा व्यक्ति है कि होम मिनिस्टर को आना चाहिए, पर चेयर की इच्छा का भी अनादर करके जिस तरीके से वहां नहीं आ रहे हैं वो एक बहुत ही चिंता की बात है। लोकतंत्र के लिए शासनहीनता की सारी सीमाएं पार कर दी। आज भी गृहमंत्री नहीं आए, उनसे संबंधित दिन है पर नहीं आए। प्रधानमंत्री तो जैसे सदन की तरफ देखना नहीं चाहते। ये सब भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, आर्टिकल 75 के खिलाफ है। इनको सबको सदन में आना चाहिए और सदन में बुलाना पड़े इनको 15 दिन, ये तो लगता है कुछ दाल में काला है।
1: अब देखिए, हर कोई जेन जी से संवाद करना चाहता है, संघ प्रमुख मोहन भागवत के जेन जी से संवाद को लेकर सियासत गर्मा गई। प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं कि जेन जी की जब बात होती है ना तो मोहन भागवत से सर्टिफिकेट की जेन जी को जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी कहा कि क्या छात्रों पर एक्शन लेने वालों को सजा दिलवा पाएंगे संघ प्रमुख। देखिए, मोहन भागवत ने कल जेन जी से सीधा संवाद किया, उनसे जुड़े हर मसले पर खुलकर जवाब भी दिया, फिर चाहे वो सरकार का एक्शन हो, पैलेट गन का इस्तेमाल हो या फिर शिक्षा व्यवस्था, सवाल आ रहे थे, जवाब मोहन भागवत की तरफ से दिया जा रहा था। तो जैसा आपको बताया कि जेन जी से जब मोहन भागवत का संवाद हुआ तो उस पर काफी सियासत हो रही है। अब सियासत किस तरह की हो रही है वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन जब जेन जी की तरफ से सवाल पूछे गए मोहन भागवत को, तो मोहन भागवत की तरफ से जवाब क्या थे वो जान लीजिए।
7: लोग हमें बोलेंगे saying that these people are agents of some country and so and so, तो सर इसमें
8: वो मैं कह रहा हूँ ना,
7: इसमें
8: मैं कह रहा हूँ कि जेन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है
7: जी सर।
8: इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला, अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है, वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है, ये होता है, तो होना चाहिए। और जेन जी वगैरह ऐसी है ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब जब पूछा गया तब मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है।
7: अरे वाह, बढ़िया है।
8: और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है।
7: लोग हमें बोलेंगे,
1: देखिए सवाल तो बहुत सारे हुए लेकिन एक सवाल है जिसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हुई, जिसको लेकर विपक्ष की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं, वो है पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर। अब जब पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर मोहन भागवत से सवाल पूछा गया तो उनका जवाब आपके सामने।
7: पैलेट गन फायरिंग हुआ था तो ये सारे,
8: अब
7: ये सारे विषय के
8: और एक बात,
7: हाँ आपको आपका क्या मानना है ये होना चाहिए,
8: ये जो बातें है ना
7: जी,
8: ये क्यों हुआ क्या हुआ इसके कारणों में जाना पड़ेगा, जिसके लिए जो जानकारी चाहिए मेरे पास नहीं है, आपके पास भी पूरी नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है
7: जी।
8: लेकिन इसको देख के कहां गड़बड़ है ये तय करना पड़ेगा। मैं अभी ये नहीं कह सकता कि क्या हुआ क्यों हुआ, क्योंकि सही गलत मुझे भी मालूम नहीं, आप भी पढ़कर बता रहे हैं मैं भी पढ़कर बता रहा हूं। आज सुबह मैं आ रहा था तो कुछ मॉड्यूल्स वगैरह इसमें घुस गए, उनका कुछ भंडाफोड़ वगैरह इसी न्यूज में पढ़ रहा था, वो कितनी सही है नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे अगर आंख मूंदकर विश्वास रखने के लिए कहा तो मैं जेन जी पर विश्वास रखूंगा।
1: तो देखिए, अब ये जो बातचीत हो रही है ना, ये बातचीत बहुत चर्चा में है, हालांकि सियासत तो हो रही है वो तो हमने आपको बता ही दिया, लेकिन मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि कुछ वाजिब वजह होगी इसलिए तो जेन जी चिल्ला रहे हैं, और अगर बातचीत पहले हो जाती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, इतनी समस्या आती ही नहीं अगर जेन जी से वक्त रहते बात कर ली होती। मोहन भागवत की तरफ से यह कहा गया है कि समाधान होना चाहिए, बातचीत से समाधान होना चाहिए, यह उनकी तरफ से कहा गया, लेकिन इस पर सियासत जैसा हमने आपको बताया प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से कैसे कहा गया कि उनसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, वो सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव क्या कह रहे हैं, जरा वो सुन लेते हैं।
9: आरएसएस चीफ मोहन भागवत कह रहे हैं कि जेंजी को देशद्रोही बोलना या उनको देशद्रोही करार देना गलत होगा, और उन्होंने एक तरह से जो युवा पीढ़ी है उसका समर्थन किया।
10: समर्थन तो किया है, लेकिन उन्हीं के अनुयायियों ने तो जेंजी को देशद्रोही कहा है
9: जी।
10: उन्हीं के अनुयायियों ने तो खालिस्तानी से लेकर पाकिस्तानी तक तमाम हमारे बच्चों के जो इनोसेंट बच्चे हैं, शायद जिन्होंने घर स्कूल के अलावा कभी कुछ देखा भी नहीं था, ऐसे बच्चों को बदनाम किसने किया? सदे नेताजी कहते थे, ये बीजेपी आरएसएस के कई मुंह होते हैं, जब देखते हैं कि समाज में विरोध हो रहा है तो उन्हीं में से एक सकारात्मक बयान देने लगता है। आरएसएस मोहन भागवत जी के अंडर में तो सभी है, सरकार में बैठे सभी लोग हैं, भाजपा के सभी लोग हैं, तो क्या उन्होंने किसको सजा दी? ये केवल बयानों से अब ये जैन जी मानने वाला नहीं है।
1: और देखिए अब एक सवाल है, क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह की घर वापसी होने जा रही है? एक तरफ पंजाब कांग्रेस में उथल पुथल है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी तारीफ कर रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह की तारीफ कर रहे हैं। जब वो सोशल मीडिया पर इंटरेक्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर छात्रों से, तो छात्रों से उन्होंने कहा आप जो भी मुझसे पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। तो उन्होंने पूछा कि बीजेपी में आपका फेवरेट लीडर कौन है, तो उनकी तरफ से कहा गया कि अंकल अमरिंदर सिंह, मतलब कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पंजाब में नेता हैं, अब राहुल गांधी के फेवरेट लीडर्स वो उनको बता रहे हैं।
11: कैप्टन अमरिंदर सिंह डेफिनेटली आई गेट अलोंग विद हिम, ही इज कूल एंड ही इज एन एक्सपर्ट ऑन मिलिट्री हिस्ट्री, सो आई लाइक हिम क्वाइट अ लॉट। हेलो अंकल अमरिंदर।
1: और अब आपको सीधे लिए चलते राजीव, जहां लेफ्ट की छात्र नेता है उनके ऊपर स्याही फेंकी गई है, छात्रों का शिविर लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच एक तस्वीर सामने आई, लेफ्ट की छात्र नेता उन पर स्याही फेंकी गई है। देखिए बात बहुत निर्णायक मोड़ पर एक तरह से पहुंची हुई है, एक तरफ सरकार की तरफ से डेलीगेशन बनाया गया है, दूसरी तरफ छात्रों की तरफ से है। अब सरकार कह रही है कि हम तो सिर्फ स्टूडेंट्स से बात करेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि वकील भी उसमें होने चाहिए, पत्रकार भी उनमें होने चाहिए, तो यहीं पर पेच फंसा हुआ है। लेकिन अभी बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसी बीच ये खबर आ रही है कि जहां छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं झारखंड में रांची में, अब ऐसी एक खबर आ रही है जहां पर छात्र जो लेफ्ट की छात्र लीडर है उनके ऊपर स्याही फेंकी गई है। हालांकि जंतर मंतर पर भी आपने ऐसी कुछ तस्वीरें देखी थी, अभिजीत दीप के ऊपर स्याही फेंकी गई थी। अब आयशा के मार्च के दौरान रांची में जमकर हंगामा हो रहा है, हालांकि हंगामा तो बहुत लंबे वक्त से बरपा हुआ है, छात्रों की बात सुनने वाला यहां पर कोई नहीं है। सीधे रुक कर लेते हैं आशुतोष का, जो लगातार रांची में जो कुछ हो रहा है उसको कवर कर रहे हैं। क्या हुआ आशुतोष वहां पर?
12: दरअसल कई घटनाक्रम हुए हैं यहाँ पर हिमांशु, हम जहाँ पर थे पहले नेहा वोरा यहाँ पर आई थी, वहाँ उन्होंने मुलाकात किया हुआ था, तो इस वाले मंच में इस पंडाल से वहाँ से वो निकल गई थी। उसके बाद यहाँ पर दो तीन और मंच बने हुए हैं, इसके बगल में आपको दिखाता हूँ थोड़ा दूरी पर कि वहाँ पर भी एक मंच बना हुआ था, तो यहाँ पर भी वो निकली है। और उसके बाद आयशा का एक प्रदर्शन मार्च है बिरसा चौक पे, जहाँ से थोड़ी देर पहले ग्राउंड रिपोर्ट पे दिखा रहे, वहाँ पर मार्च हो रहा था, तो इन्हीं में से किसी एक जगह पर उनके साथ ये घटना हुई है। लेकिन इसकी दूसरी बड़ी खबर ये है कि सरकार के प्रतिनिधियों के बीच और छात्रों के बीच अभी बातचीत हुई है, कुछ अधिकारी आए थे यहाँ मंच पर और उसी का बना पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है, वो प्रस्ताव लेकर के आए थे मुख्यमंत्री की ओर से बातचीत करने के लिए, और उसी प्रस्ताव को लेकर के जो छात्र हैं उन्होंने बातचीत की है। अब हम ये समझने की जरा मैं कोशिश करता हूँ कि बातचीत कर सके कि बातचीत में आखिर हुआ क्या है, क्योंकि आए थे वो बातचीत करने तो प्रस्ताव में आगे लेकर के रास्ता क्या निकला है, तो उसी को लेकर के यहाँ पर सरकार से बातचीत हुई, अधिकारी गए हैं। और इस बीच नेहा वोहरा भी जब आई थी तो उनके साथ भी इन्हीं, चूंकि बड़ा सा दायरा है कहीं पर ये स्याही की घटना हुई है, बातचीत में क्या कुछ रहा?
13: बात हुआ कि जो उनका कहना था जो छात्र प्रतिनिधि मंडल है वही जाएंगे, आज अदरवाइज मीडिया है और एडवोकेट है वो नहीं जाएंगे।
12: मतलब उनको मध्यस्थता करने वाला कोई नहीं, सिर्फ आठ स्टूडेंट
13: बोल रहे हैं कि आठ स्टूडेंट, हम चाहते हैं कि पत्रकार भी रहे एडवोकेट भी रहे।
12: उस पर मान गए हैं वो?
13: नहीं मान रहे हैं।
12: क्या कह रहे हैं वो?
13: हम लोग चाहते हैं कि सब रहेंगे।
12: उनका क्या कहना था?
13: उनका कहना था कि छात्र रहेंगे और ना मीडिया जाएगा ना रोका जाएगा।
12: तो क्या वो इस बात पर तैयार हुए कि मुख्यमंत्री भी मिलेंगे, जो पहली मांग थी, या फिर सिर्फ मंत्रियों के साथ मुलाकात होगी?
13: नहीं, अभी आश्वस्त किया कि हम फिर बात करेंगे।
12: तो औपचारिक रूप से ये पहला संवाद हुआ है दोबारा से जब ये प्रतिनिधिमंडल बन गया है। सरकार की ओर से कहा गया कि जो आपके लोग हैं सिर्फ 8 छात्र आएंगे, उनमें उसने 2 पत्रकारों के नाम और 1 वकील का नाम भी दिया है। सरकार अभी उस पर सहमत नहीं हुई है, यानी ये जो डेडलॉक है ये बना हुआ है। अब यहाँ मंच पर जब से हुआ और तमाम ये जो कोर कमेटी के लोग हैं वो अब अपनी बातें बता रहे हैं। आपने सुना कोर कमेटी के एक सदस्य को मंच से ही जब ये बातचीत हुई थी, तो अब घटनाक्रम देखिए यही होती है कि 14 दिनों की उम्मीदों के बाद भी जो इंतजार था और जिसकी उम्मीद थी वो नहीं हुआ, तो छात्रों का प्रदर्शन भी जारी है। और इसी के साथ साथ दरअसल वो दिन भी बीत रहा है कि जब जैसे ही 10 तारीख को अगस्त आ जाएगा और उसके बाद उन्होंने कहा है अगर बातचीत नहीं हुई तो यहाँ तो अभी 100, 200, 1000, 2000 दिखाई दे रहे हैं, तब तो पूरा झारखंड यहाँ इकट्ठा हो जाएगा विधानसभा मार्च के लिए, और ऐसे में सरकार की मुश्किलें वो जरूर बढ़ जाएंगी।
1: हाँ ठीक है, लेकिन आप बने रहिए, जो आपने बात की है बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने दर्शकों को बताना कि प्रतिनिधिमंडल में सिर्फ छात्र रहेंगे तो सरकार की तरफ से मांगे, लेकिन स्टूडेंट्स लगातार ये कह रहे हैं कि पत्रकार भी होना चाहिए उसमें, पत्रकार शामिल होना चाहिए उस डेलीगेशन में, वकील भी शामिल होना चाहिए उस डेलीगेशन में, लेकिन सरकार इस पर राजी नहीं है। सरकार इस बिंदु को मानने को तैयार नहीं है, इस पॉइंट को मानने को तैयार नहीं है, और सरकार कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ छात्रों से ही संवाद होगा, छात्र डेलीगेशन का हिस्सा होंगे जो छात्रों की तरफ से बात करेंगे, लेकिन छात्र अपनी बात पर अड़े हुए हैं। छात्रों ने कहा है कि जो डेलीगेशन होगा, प्रतिनिधिमंडल होगा, उसमें छात्रों के साथ साथ मीडिया कर्मी भी होंगे और वकील भी होंगे, साथ ही ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी होना होगा, और ये भी कि बंद कमरे में नहीं होगी, सभी के सामने छात्रों के साथ में ये बैठक होगी। तो देखिए, छात्रों की मांग आपने सुन ली कि छात्र कह रहे हैं मीडिया कर्मी भी होने चाहिए और साथ ही साथ वकील भी होने चाहिए, और छात्र तो होंगे ही होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी बयान आया है, ये बड़ी और अहम खबर। देखिए, बात होने से आगे बढ़ती है। अब छात्रों के प्रदर्शन को लेकर हेमंत सोरेन का बयान आया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कई लोग इस मामले में जेल जा चुके हैं। झारखंड सरकार गिरफ्तारी लगातार कर रही है, 15 से 20 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है, कई लोग जेल जा चुके हैं, जांच एजेंसी पूरी तरह से इस मामले में जुटी हुई है, गहराई तक जाने के लिए, दोषियों को पकड़ने के लिए जुटी हुई है। ये हेमंत सोरेन कह रहे हैं, सुन लीजिए।
14: जो छात्रों की इच्छा है उस इच्छा को हम जयपाल सिंह स्टेडियम से बाहर तक ले जाने की कोशिश करें, पूरे राज्य की जो हमारे छात्र छात्राएं हैं जो इस संबंध में अपने विचार रखते हैं वो अपनी राय दे सकते, और एक मजबूत और बड़े रिफॉर्म के साथ आगे हम लोग बच्चों की जो ये जिज्ञासा है उस जिज्ञासा को उनके अनुरूप बनाने के उद्देश्य से आगे बढ़े।
1: और देखिए, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं जो अभी कुछ देर पहले आपको बता रहे थे कि रीना वोरा जब वहां पर पहुंची, नेहा वोरा जब वहां पर पहुंची तो क्या हुआ, उनके ऊपर स्याही फेंक दी गई है। आयशा के मार्च के दौरान ये हंगामा हो गया रांची में, ये वो तस्वीरें अब आप देख लीजिए, ये वो तस्वीरें हैं। यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था, छात्रों की मांग उठाई जा रही थी, छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था, और इसी दौरान जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे, इसी दौरान आप देखिए तस्वीरें, आप देखिए कहीं से स्याही उनके ऊपर फेंक दी गई, ये वो तस्वीरें। और यहाँ पर रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
16: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबा केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।

0: years of finding myself. That's my moment of Sarah.
1: मुल्तानी खू का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी खू का कॉफ सिरप।
2: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: सावन के पावन महीने में महाकाल की दिव्य धरती उज्जैन से आस्था का सबसे बड़ा मंच, जहां जुटेंगे देश के सबसे प्रतिष्ठित संत और मुख्यमंत्री। देखिए धर्म संसद 7 अगस्त दिन भर सिर्फ आज तक पर।
4: हर दिन परगे जी खड़े होते हैं, जो लिख के लाते हैं सेम चीज पढ़ने लग जाता है, बार बार उसका हाथ मौके देते हैं चेयरमैन सर और करके सब सेम चीज बोलते हैं। ये रेपुटेशन है और ये रोल हमारे लीडर ऑपरेशन के लिए। और सर कांग्रेस के ये नए सदस्य आए, इनके नाम है करण खेड़ा, इनके अभी मेडन स्पीच भी नहीं हुआ,
5: अब रिजू से इसे मुझे सीखना पड़ रहा है। अरे रूल मैं भी ले रहा ना, और आपके चेंबर में आके बोलते हैं रोज वही लिख के आकर पढ़ते हैं, ये अगर रूल्स नहीं पढ़ूंगा, अगर मेरा मैटर अगर नहीं पढ़ूंगा, क्या तुम डीएसओ में पढ़ू? अरे इट इज माय राइट व्हाट टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, हाउ टू स्पीक। दिस इज द रूल बुक एंड दिस रूल बुक व्हाट इट सेज, यू आर इंसल्टिंग माय मेंबर एंड पवन खेड़ा and you are insulting him as if you are everything.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: राज्य में सरकार से वार्ता की मुकम्मल तैयारी, सिर्फ छात्रों का साथ सदस्यीय डेलीगेशन करेगा बात, सीएम सोरेन का बयान, आंदोलनकारियों की समस्याएं सुनेंगे, बड़े सुधारों की ओर बढ़ेंगे। संसद में डेडलॉक के बीच सोमवार तक स्थगित हुई लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही, रिजिजू बोले विपक्ष ना बताए कि किस मंत्री को सदन में आना है, जिनके विभाग पर चर्चा है वो मौजूद हैं। एनडीए में नई एंट्री लेने वाले लोकसभा सांसदों से पीएम मोदी की नाश्ते पर हुई मुलाकात, कहा संसद की डिबेट में भाग लें, महाराष्ट्र के सांसदों से बोले विकास कार्यों में कोई दिक्कत आए तो सीधे मुझसे मिले। राहुल ने की कैप्टन अमरिंदर की तारीफ तो गर्म हुई पंजाब की राजनीति, आम आदमी पार्टी ने कहा कैप्टन को ही पार्टी में ला सकते हैं राहुल गांधी, परगट सिंह बोले अमरिंदर तारीफ के काबिल। और संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा जैन जी हमारी पीढ़ी से ज्यादा देशभक्त और ईमानदार, आंख मूंद कर करता हूं भरोसा, आंदोलन का मतलब राष्ट्र विरोध नहीं, प्रियंका बोली सर्टिफिकेट नहीं चाहिए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
0: और देखिए बुलेटिन के इस हिस्से में बात करेंगे स्मार्ट सिटी की, स्मार्ट सिटी जहां पर सड़कों पर गड्ढे ज्यादा दिखते हैं और गड्ढों की वजह से परेशानियां बहुत ज्यादा दिखती हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और आप उन तस्वीरों को देखकर सोचेंगे कि क्या वाकई ये स्मार्ट सिटी कहलाने लायक है कि नहीं है। हम आपको स्मार्ट सिटी लुधियाना ले चलेंगे, आगरा की तस्वीरें दिखाएंगे, आप भी माथा पीट लेंगे। आप तस्वीरें देखिए, पंजाब के लुधियाना में सड़क धस गई, हल्की फुल्की नहीं 30 फीट तक गड्ढा हो गया। आगरा में कमला नगर में कर्मयोगी कॉलोनी में सड़क धस गई, वो भी तस्वीर आप देखिए, नसेनी लगानी पड़ रही है नीचे जाने के लिए, ऐसे हालात हो गए। और फिरोजाबाद में मेडिकल कॉलेज में ट्रॉमा सेंटर की फर्श से फुव्वारा फूट पड़ा, और ये सभी खबर हम आपको डिटेल में बताएंगे कि किस तरह के हालात इस वक्त यहाँ पर हो गए हैं। तो सबसे पहले जैसा हमने आपको बताया लुधियाना और आगरा की बात करेंगे, स्मार्ट सिटी कहलाने को है, आगरा को भी स्मार्ट सिटी कहा जाता है लेकिन आगरा में भी इतना बड़ा गड्ढा हुआ कि नसैनी लगाकर नीचे जाना पड़ रहा है। तो लुधियाना का अगर आप हाल देखेंगे ना तो आप माथा पीट लेंगे कि आखिर ऐसा लुधियाना में ये वाकई ये स्मार्ट सिटी कहलाने योग्य है भी कि नहीं। एक रिपोर्ट आपके साथ।
2: ये स्मार्ट सिटी लुधियाना है और सामने जो गड्ढा देख रहे हैं यही स्मार्ट सिटी की हकीकत है, जहां देखते ही देखते सड़क जमीन में समा गई। ये तस्वीरें लुधियाना के पौच इलाके किचलू नगर की हैं, जहां अचानक मुख्य सड़क धंस गई, सड़क का करीब 30 फीट हिस्सा बैठ गया जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसा उस वक्त हुआ जब एक ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क किनारे खड़ी थी, अचानक उसका एक पहिया सड़क में धंस गया, चालक ने किसी तरह वाहन को बाहर निकाला लेकिन कुछ ही देर बाद पूरी सड़क तेजी से धंसने लगी और देखते ही देखते विशाल गड्ढे में बदल गई।
3: देश के पहले 20 स्मार्ट सिटियों में शामिल होने वाले शहर लुधियाना कितना को स्मार्ट हो पाया है इसकी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि हर बार जब भी लुधियाना में बारिश आती है तो एक बड़ा हादसा लुधियाना की सड़कों पर देखने को मिलता है। कुछ दिन पहले आपको दिखाया कि बरसात में एक सड़क पर चलती गाड़ी खड्डे में समा गई, तो आज सुबह भी लुधियाना में बरसात आई है और तस्वीरें आपको स्मार्ट सिटी लुधियाना की दिखा रहे हैं कि कैसे स्मार्ट के बाद एक सड़क पर सुबह इस सड़क पर गहरा खड्डा पड़ जाता है और उसमें एक ईंटों से भरी हुई ट्राली उसमें फंस जाती है, जिसको जब निकाला जाता है तो देखते ही देखते कई फिट गहरा खड्डा जो है इस सड़क पर दिखाई दे रहा है। क्या वाकई में लुधियाना स्मार्ट हो पाया है, कितना स्मार्ट हो पाया है, तस्वीरें हर बारिश के बाद खुद बयान कर पाती हैं कि पंजाब की सबसे बड़ी नगर निगम और देश के पहले 20 स्मार्ट सिटियों में शामिल लुधियाना शहर की असली तस्वीर क्या है।
2: सड़क धंसने के साथ ही नीचे बिछी सीवरेज पाइपलाइन भी टूट गई, तेज बहाव के कारण गड्ढा और बड़ा होने का खतरा पैदा हो गया। इसके बाद नगर निगम और पुलिस ने पूरे इलाके की बैरिकेडिंग कर रास्ता बंद कर दिया। जिस मकान के बाहर सड़क धंसी वहां रहने वाले लोगों को भी एहतियातन सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मकान को सहारा देने के लिए निगम की टीम आरसीसी सपोर्ट लगाने में जुटी रही।
3: साथ आती है, हर बार कोई ना कोई बड़ा हादसा देखने को मिलता है, पहले होटल ओन के बाहर देखने को मिला, फिर पखोवार रोड पर सड़क में कार समागी और अब ये वाला हादसा देखने को मिला।
4: पहले तो आपकी मैं जानकारी में इजाफा कर दूं कि जो पखोवार रोड पे कार नहीं समाई वो गड्ढा पहले हुआ, उसके बाद ड्राइवर की अणगहली के साथ उसने लाके गड्ढे में कार फेंकी है, ठीक है, वो कह रहा है कि मुझे गड्ढा दिखाई नहीं दिया। दूसरा जो होटल ऑन वाला इशू है और ये इशू है, सेम रोड है, सेम प्रॉब्लम है, वहाँ भी ड्रिलिंग की गई है कंपनीज की तरफ से, यहाँ भी वही प्रॉब्लम है।
2: नगर निगम का कहना है कि शुरुआती जांच में आशंका है कि भूमिगत केबल या दूसरी लाइनें बिछाने के दौरान हुई लापरवाही की वजह से जमीन कमजोर हुई, जिसके चलते ये हादसा हुआ।
5: सुबह 7 बजे 6:30 बजे से इन्फॉर्म किया हुआ, 4 बजे जाके इनका थोड़ा सा काम शुरू हुआ है, कभी लेबर नहीं है कभी गाड़ी नहीं है, मतलब ये इतना बड़ा डिजास्टर की वेट कर रहे हैं कि कोई ना कोई यहाँ हादसा है उसके बाद हम जाके।
2: अब जरा स्मार्ट सिटी आगरा का भी हाल देख लीजिए। ये आगरा का कमल नगर है, पॉश इलाका माना जाता है, लेकिन सड़क के बीचों बीच 5 फीट से अधिक गहरा गड्ढा हो गया। ये समाजवादी पार्टी नेता नितिन कोहली हैं। आगरा कर्मयोगी कॉलोनी में गड्ढा हुआ तो खुद गड्ढे में उतरकर नापने लगे कि इसकी गहराई क्या है।
6: जहाँ जहाँ देख लीजिए, जब परसों की बात है कि हरिपर्वत एमजी रोड पर गड्ढा हो गया था, आज यहाँ हुआ कुछ दिन पहले आपका डी ब्लॉक में गड्ढा हो गया, तो जहाँ आप देखेंगे उससे पहले।
2: आगरा में इस तरह से सड़कें धंसने से इनकी गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। जलकल विभाग के अफसर भी मौके पर पहुंचे और जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। आज तक ब्यूरो
0: स्मार्ट सिटी लुधियाना आपने देखी, स्मार्ट सिटी आगरा आपने देखी, अब आपको नोएडा लिए चलते हैं। अब नोएडा में पिछले 24 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है लगातार बारिश हो रही है, रिम जिम बारिश हो रही है। बारिश के बाद क्या हुआ, साइड इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट जिसे कहते हैं, वो आपके सामने है। सेक्टर 95 में महामाया फ्लाईओवर के पास भारी जल भराव हो गया, जिसकी वजह से एम्बुलेंस फंस गई। अब एम्बुलेंस में ANM और टेक्नीशियन थे, और फिर जो होता है यानी काफी देर की मशक्कत, उसके बाद फिर बाहर निकाला गया और धक्का दिया गया ये एम्बुलेंस। अब बारिश इतनी हो रही है, जगह जगह आप देखिए भर गया पानी, महामाया फ्लाईओवर, एम्बुलेंस फंस गई, पुलिस वाले भी पैंट ऊपर करके घुटनों से ऊपर कोशिश कर रहे हैं इसको बाहर निकालने की। अब ये तो बाहर सड़क की बात है, अब हम आपको लिए चलते हैं फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में आप देखेंगे तो अस्पताल में फुब्बारा बन गया, सच कह रहे हैं, अस्पताल में फुब्बारा बन गया। ये देखिए, अब देखिए आप ये हालात यहाँ पर हो गए। मेडिकल कॉलेज का ट्रॉमा सेंटर है ये, गंभीर बीमारियों का इलाज यहाँ पर होता है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम में कुछ खराबी आ गई, बारिश यहाँ भी हो रही है, जिसकी वजह से ये फुब्बारा फूट पड़ा। और उसके बाद तस्वीरें आपके सामने, जगह जगह पानी भरा हुआ है, लोगों की परेशानी बनी हुई है।

0: अब ये तो आपने देख लिया, लेकिन अब बात कर लेते हैं लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे की। एनएचएआई ने घटिया निर्माण को लेकर बड़े बड़े एक्शन का दावा किया कि बड़ा बड़ा एक्शन हुआ है, लेकिन एक्सप्रेस वे बनाने वाली कंपनी से जुड़े बीजेपी सांसद के तार कई सवाल उठा रहे हैं, और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या सांसद की वजह से कंपनी को हाईवे और एक्सप्रेस वे के ठेके मिल रहे हैं, और ये सवाल अब जगह जगह उठाए जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए।
1: भारतीय जनता पार्टी के सांसद नवीन जैन के भाई की कंपनी, तो डर काहे का, एक्सप्रेस वे हो या फिर हाईवे, टेंडर भला कौन रोक सकता है, फिर चाहे गड्ढे में एक्सप्रेस वे हो या फिर एक्सप्रेस वे में गड्ढा।
2: आपको बता दूं कि सबसे पहले 26 जुलाई को यानी उद्घाटन के 12 दिन बाद यहां पर सड़क खिसकने की शिकायत मिली, जिसके बाद एनएचआई के अधिकारी मौके पर पहुंचे और यहां पर मरम्मत का काम कराया गया। एक बार फिर से 8 दिन बाद ये पूरी सड़क खिसक गई, जिसके बाद इस पूरे 200 से 300 मीटर के पूरे स्ट्रेच को काट कर फिर से बनाया जा रहा है।
1: सियासी रसूख और पहुंच ऐसी कि एनएचएआई का पूरा निजाम आंखों पर पट्टी बांध कर बैठा रहा। सांसद नवीन जैन के भाई की कंपनी पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड के घटिया निर्माण पर नजर रखने वाले अपनी आंखें मूंद कर बैठे रहे।
3: ऐसा नहीं कि एनएचएआई का रोड खराब होता, आप दूसरे रोड से भी देखें तो ऐसा नहीं कि बारिश के कारण रोड खराब होते हैं, ये बारिश में फ्लेक्सिबल पेमेंट जहां रहते हैं वहां तक टूटी जाती है।
1: सोचिए 13 जुलाई को पूरे तामझाम के साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता के लिए नए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। आज जिम्मेदारों को घटिया निर्माण करने वाली बीजेपी सांसद के भाई की कंपनी की जवाबदेही तय करनी चाहिए, क्योंकि सवाल सिर्फ घटिया निर्माण का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के फेल होने का है, एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करने वालों की सुरक्षा से जुड़ा है।
4: ये वास्तव में केवल एक्सप्रेसवे नहीं, हमारी स्पीड को बढ़ाने के साथ ही हमारी प्रगति को भी आगे बढ़ाने के और आने वाली समृद्धि के लिए हमारा द्वार खोलने के लिए के राजमार्ग है।
5: मुझे विश्वास है कि हम एक के पीछे एक ऐसे महामार्ग बना रहे कि उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय महामार्ग ये निश्चित रूप से अमेरिका के बराबर होंगे, ये वचन मैं आपको देना चाहता हूँ।
1: आज जिम्मेदारों को गड्ढे वाला एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनी पीएनसी इंफ्राटेक को मिल रहे ठेकों पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, पीएनसी इंफ्राटेक कंपनी के घटिया निर्माण पर उठे सवालों की फाइलों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। बीजेपी के मौजूदा सांसद के भाई की कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड इन दो तस्वीरों से समझिए। साल 2018 में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की सर्विस लेन का 50 फीट हिस्सा धंस गया, जिसकी चपेट में एक कार आ गई थी। कार में सवार 4 लोग बाल बाल बच गए। तत्कालीन उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ अवधीश कुमार अवस्थी ने माना था, जहां एक्सप्रेस वे धंसा वहां घटिया निर्माण पीएनसी इंफ्राटेक कंपनी ने किया था। यानी 2018 में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की गुणवत्ता को लेकर पीएनसी इंफ्राटेक कंपनी पर सवाल उठे, लेकिन उसके बावजूद इसी कंपनी पर पाबंदी लगाने के बजाय इनाम मिला, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का ठेका मिला। परिणाम सामने है, उद्घाटन के चंद दिनों के बाद ही लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे जगह जगह धंस रहा है, मतलब यूपी का सबसे महंगा एक्सप्रेस वे आज निर्माण में हुई अंधेर गर्दी की सबसे बड़ी गवाही दे रहा है। सोचिए 2018 में कागजों पर पीएनसी इंफ्राटेक को नॉन परफॉर्मर घोषित किया गया, लेकिन इसके बावजूद एक के बाद एक बड़े बड़े हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाने का ठेका कंपनी को मिलता रहा। अंधेर गर्दी ऐसी है कि गड्ढे वाला एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनी को एनएचएआई से करीब 3483 करोड़ के दो नए हाईवे प्रोजेक्ट मिल गए हैं।
2: मेरे हाथ में वो डॉक्यूमेंट है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इसी कंपनी को, जिसका नाम पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड है, इसको एनएचएआई के दो बड़े प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं जिसकी कीमत 3483 करोड़ रुपए है। ये 16 जुलाई को टेंडर जो है वो इनके नाम हुआ, यानी इस एक्सप्रेसवे के 3 दिन बाद। आप देखेंगे और इस पूरे डिटेल्स आगे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे 4 लेन हाईवे का जो कंस्ट्रक्शन है, एक 12 पंकी में जो होगा उसकी कीमत 1728 करोड़ है, दूसरा 4 लेन हाईवे जो मुस्तफाबाद में होगा उसकी कीमत 1755 करोड़ है। तो कैसे जो कंपनी 4200 करोड़ से एक एक्सप्रेसवे बनाती है, जिसके मात्र 20 दिन बाद ये स्थिति बनती है कि लगातार कई दिनों से यहाँ पर पैच वर्क किया जा रहा है, दोबारा से निर्माण किया जा रहा है, कई बार गड्ढे हो गए, कई जगह सतह खिसक गई, उसी कंपनी को 2 बड़े प्रोजेक्ट्स अलॉट कर दिए गए हैं। अब देखना ये है कि क्या कंपनी ब्लैक लिस्टिंग की प्रक्रिया पूरे होने तक वो काम शुरुआत कर देती है या फिर उनसे वो काम छीन लिए जाते हैं, इसका जवाब NHAI के ऑफिशियल्स को देना होगा।
0: और अब आपको लिए चलेंगे महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां आयोजित हो रही है धर्म संसद।

0: तो महाकाल की नगरी उज्जैन में आज तक की धर्म संसद की शुरुआत हो गई है और धर्म संसद में देश भर के बड़े धर्म गुरुओं वो शामिल होंगे, बातचीत करेंगे, विचार विमर्श किया जाएगा। और साथ ही हम ये भी आपको बता दें कि इस धर्म संसद में गायक मनोज तिवारी भी शामिल हो रहे हैं और शाम को मुख्यमंत्री मोहन यादव अपनी बात भी इस पर रखेंगे। लेकिन उससे पहले महाकाल को लेकर उनकी महिमा पर कई चर्चाएं हुई, तो उन चर्चाओं से जुड़ी कुछ बातचीत आपको सुनवाते हैं।
1: भगवान महाकाल तो वही है लेकिन उज्जैन बदली है। उज्जैन का जो विकास है वो बहुत ही तीव्र गति से हुआ है और मैं जहाँ तक समझता हूँ महाराजा वीर विक्रमादित्य के बाद उज्जैन का विकास जिस दृष्टि से या जिस गति से इस बार हुआ है इससे पूर्व कभी नहीं हुआ। तो आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ जब हम जाते हैं चारों तरफ रोड ही रोड आपको नजर आ रहे हैं, क्षिप्रा पर घाट ही घाट नजर आ रहे हैं। ये सब सिर्फ इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भगवान महाकाल का बेटा भगवान महाकाल की नगरी से सीएम भगवान महाकाल की कृपा से बने तो उन्होंने उज्जैन का आमूल चूल परिवर्तन कर दिया, जबरदस्त विकास किया है। विकास की गंगा दिन प्रतिदिन बह रही है। साथ ही भगवान महाकाल का दर्शन करने के लिए प्रबंध समिति के द्वारा वहां जो प्रबंध किए गए हैं, जो सुविधाएं जिस प्रकार से जुटाई गई हैं, मैं समझता हूं कि भगवान महाकाल का जो भी भक्त देश के और विदेशों से भी जिस कोने से भी आते हैं वह प्रसन्न होकर के जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि दर्शन की व्यवस्था भी अपने आप में बहुत ही आदर्श है, बहुत ही अच्छी है। तो ये सब देख करके प्रत्येक श्रद्धालु का मन बहुत ही प्रसन्न होता होगा।
2: मैं गीता रामचरितमानस हनुमान चालीसा रखता हूँ महाकाल बाबा का सम्मान करता हूँ। ये हमारे पूर्वजों की जागीर है दोस्तों, मैं अपने दिल में हिंदुस्तान रखता हूँ। बाबा महाकाल कालों के काल हैं। बाबा महाकाल की नगरी, कृष्ण सुदामा की मैत्री स्थली, कालिदास की काव्य रचना स्थली, छिपरा के जल के तरंगों से तरंगायित, गौरवशाली ऐश्वर्य और वैभव से मंडित महाकुंभ की नगरी, सद्भावना की नगरी, सिंहस्थ की नगरी, शांति की नगरी, स्नेह की नगरी, प्यार की नगरी आज फलीभूत हो रही है तो बाबा महाकाल की असीम अनुकंपा से। आज श्री बाबा महाकाल के भक्तों का जो इजाफा हुआ है, बाबा महाकाल के दर्शन में जो भक्तगण आ रहे हैं, जितनी सुविधाएं हमारे मध्य प्रदेश शासन के शतावधानी यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी द्वारा दी जा रही है वो आने वाले वर्षों में पहले कभी नहीं दी गई और बाद में भी यह सौभाग्य उज्जैन को प्राप्त नहीं होगा। महिमा मंडित कालिदास की गौरव गाथा उज्जैनी, महाकाल की अपनी परंपराएं हैं, अपना संस्कृति है। यह बाबा महाकाल की नगरी, यह अपार सनातन संस्कृति की नगरी है, इतिहास की दादी है, पुराणों की नानी है, परंपराओं की परदादी है। महिमा मंडित कालिदास की गौरव गाथा उज्जैनी, न्यायमूर्ति विक्रमादित्य की कीर्ति पताका उज्जैनी, ज्ञानदायिनी सांदीपनीशी बुद्धिशलाका उज्जैनी, धवलधार धारणी क्षेत्रातट धान्य सुधन्या उज्जैनी। महाकाल उज्जैन का मन है और क्षिप्रा विश्व का तन है। तो बाबा महाकाल की इस नगरी में जो वैभव, जो आनंद, जो मस्ती का सुनामी लहर हमको भक्तों और श्रद्धालुओं के रूप में दिखाई दे रही है वो बाबा की कृपा है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का विजन है जिन्होंने विकास के चौं और द्वार खोल दिए।
0: तो आज तक इस धर्म संसद से जुड़ी और भी कुछ तस्वीरें बातचीत आपको सुनाएंगे जरूर, लेकिन रुकेंगे यहाँ बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: मोहन भागवत जी, अगर आप ये कह रहे हैं तो सबसे पहले अपने सहकार्यवाहक जो मुंबई में बोले जैन जी को संविधान विरोधी और राष्ट्र विरोधी, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं किया? ये दोहरी बातें करना बंद करें मोहन भागवत जी। आपके एक आरएसएस के डायलॉग ने बोला कि अगर मैं वहां होता जंतर मंतर पे तो लाठियों और गोलियां चलवाता। मुंह देखी बात करते हैं मोहन भागवत जी, मुंह में राम दिल में नाथू राम वाले हैं ये लोग। अभी 2 दिन पहले ही मुंबई के एक कार्यक्रम में किस प्रकार से इनके से एक सह कार्यवाहक ने जैन जी के खिलाफ आग उगला है, उन्हें देश विरोधी संविधान विरोधी बता रहे, तो यहाँ के ज्ञान दे रहे हैं। जनता आपके मुखौटे को पहचान चुका है, देश का नौजवान आरएसएस के मुखौटे को पहचान चुका है।
1: जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग। लेकिन वो लोग भूल गए हैं, पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है।
2: समाजवादी पार्टी अराजकता, गैर लोकतांत्रिक और पूज्य जनेश्वर मिश्र जी के सिद्धांतों से भटक चुकी है। पूज्य जनेश्वर मिश्र जी ने कहा था कि जब सदन चल रहा हो तब लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जनता की आवाज को सदन में उठाना चाहिए। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से पूज्य लोहिया जी और पूज्य जनेश्वर मिश्र जी के सिद्धांतों से भटक चुकी है। वो केवल व्यक्तिवादी पॉलिटिक्स कर रही है और खासकर अराजकता, गुंडई और पूरी तरह से प्रदेश को दंगों में झोंकने वालों को समर्थन करने वाली पार्टी बन चुकी है। प्रदेश की जनता उन्हें नकार चुकी है और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ करके चल रही है।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: बिहार के पटना में एक हादसे के बाद जबरदस्त हंगामा और बवाल देखने को मिला। एक बस से एक युवक के कुचल जाने के बाद लोगों की भीड़ एकजुट हो गई और युवक के परिजनों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी। सबसे पहले बस में आग लगाई और उसके बाद पुलिस की जीप में भी आग लगा दी गई। ये बताया जा रहा है कम से कम 10 से 12 गाड़ियों में आग लगा दी गई और उसके बाद फिर भारी संख्या में पुलिस बल और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, लोगों को काबू पाने की कोशिश की जाती है। ये बताया जा रहा है कि शुरुआत में यह अफवाह फैली कि युवक की जगह एक बच्ची को कुचल दिया गया, जिसकी वजह से भीड़ और आक्रोशित हो गई। अभी हालात पर काबू पा लिया गया है।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: रसोई के बजट पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। खाने की थाली का स्वाद बढ़ाने वाला खाद्य तेल अब आम आदमी की जेब पर भारी पड़ने लगा है। त्योहारों का सीजन करीब आते ही सरसों, सोयाबीन और मूंगफली तेल के दामों में तेज उछाल देखने को मिल रहा है। घरों से लेकर होटल और स्ट्रीट फूड कारोबार तक हर जगह इस्तेमाल होने वाले इन तेल की कीमतों में बढ़ोतरी चिंता बढ़ा रही है। आंकड़ों के मुताबिक खाने के तेल की कीमतों में 10 से 15 रुपए प्रति किलो तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसकी वजह त्योहारों की बढ़ती मांग और बरसात के मौसम में सरसों की खपत बढ़ाना है। इसके साथ ही रुपए की कमजोरी से आयातित खाद्य तेल महंगे हो गए हैं, जबकि पाम और पामोलिन पर बढ़ी ड्यूटी का असर भी बाजार में दिख रहा है। बाजार के जानकारों के मुताबिक इस तेजी की सबसे बड़ी वजह तिलहन की कम आवक है। किसानों को पहले बेहतर भाव मिल चुके हैं, इसलिए वो कम कीमत पर बिक्री से बच रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि मंडियों में सोयाबीन और सरसों की उपलब्धता घट गई है, जबकि मांग लगातार बनी हुई है। डेटा के मुताबिक सोयाबीन की रोजाना मांग करीब 2.5 से 3 लाख बोरी है, लेकिन मंडी में इसकी आवक घटकर करीब 10,000 बोरी रह गई है। किसानों को आकर्षित करने के लिए लातूर के बड़े प्लांट्स ने खरीद भाव बढ़ाकर 8,100 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। वहीं बिनौला तेल की कमी की वजह से मूंगफली तेल की मांग भी बढ़ गई है। डिमांड और सप्लाई के इस असंतुलन का असर थोक बाजारों में भी साफ दिखाई दे रहा है। बीते हफ्ते सरसों, सोयाबीन और मूंगफली तेल तिलहन के भाव में काफी तेजी दर्ज की गई है। कई उत्पादों में कीमतें एक ही हफ्ते में सैकड़ों रुपए तक बढ़ गई हैं, जिसमें सरसों दाना 8,075 से बढ़कर 8,100 रुपए प्रति क्विंटल, सरसों तेल का भाव 16,550 रुपए प्रति क्विंटल, सरसों कच्ची और पक्की घानी का 15 किलो टिन 2,705 से 2,855 रुपए और सोयाबीन दाना बढ़कर 7,550 से 7,600 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। अगर तिलहन की आवक में जल सुधार नहीं हुआ तो त्योहारी मांग इसी तरह बनी रही तो आने वाले दिनों में खाद्य तेल की कीमतों पर दबाव बना रह सकता है। इसका सीधा असर घर की रसोई पर पड़ेगा और त्योहारों के दौरान खाने पीने का खर्च और बढ़ सकता है। आज तक ब्यूरो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

सरकार से वार्ता की मुकम्मल तैयारी, सिर्फ छात्रों के 7 सदस्य डेलीगेशन करेगा बातचीत। सीएम सोरेन का बयान, समस्या सुनेंगे, बड़े सुधारों की ओर बढ़ेंगे और ऐसा प्रेसिडेंट पर फेंकी गई स्याही। संसद में डेडलॉक के बीच सोमवार तक स्थगित हुई लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही। किरण रिजिजू बोले, विपक्ष ना बताए किस मंत्री को सदन में आना है, जिसके विभाग पर चर्चा है वो मौजूद है।

डिबेट में भाग लें। महाराष्ट्र के सांसदों से बोले, विकास कार्यों में कोई दिक्कत आए तो सीधे मुझसे मिलें। राहुल गांधी ने की कैप्टन अमरिंदर की तारीफ, तो गर्म हुई पंजाब की राजनीति। आम आदमी पार्टी ने कहा कि कैप्टन को ही पार्टी में ला सकते हैं राहुल गांधी। प्रगट सिंह बोले, अमरिंदर तारीफ के काबिल। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा कि जेंजी हमारी पीढ़ी से ज्यादा देशभक्त और ईमानदार। आंखें मूंद कर करता है भरोसा, आंदोलन का मतलब राष्ट्र विरोधी नहीं। प्रियंका गांधी बोली, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए।

नमस्कार, 3 बजे के इस बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। आज प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बैनर्जी और उद्धव ठाकरे के बागी सांसदों के साथ नाश्ते पर मुलाकात की है। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को

0: सांसदों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी संसद की कार्यवाही बार बार स्थगित होने से नाराज नजर आए। पीएम मोदी ने सांसदों के बहाने विपक्ष को भी अप्रत्यक्ष रूप से संदेश दिया है कि संसद की कार्यवाही में वो शामिल हो। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं 100 शहर 100 खबरें।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: बारिश के बीच दिल्ली के बदरपुर और संगम विहार में सड़कें बनी तालाब, जलभराव से लोगों की बड़ी है परेशानी। दिल्ली में लगातार बारिश से सड़कों पर जल भराव हो गया, सैनिक फार्म इलाके में बिगड़े हैं हालात। नोएडा में भी सड़कें बनी है स्विमिंग पूल, आधे घंटे में पानी में फंसी एम्बुलेंस, हाईटेक सिटी की खुली पोल। गुरुग्राम में बारिश से यातायात बुरी तरीके से प्रभावित हो गया, सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया। गुरुग्राम में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश, नेशनल हाईवे पर लगा भीषण जाम, रेंगते नजर आए वाहन। टीडी गढ़वाल में लैंडस्लाइड, मलबा हटाने का काम जारी है, भारी बारिश के बाद सड़क पर जमा मलबा जेसीबी से हटाया जा रहा है। टीडी के पोंटोली गांव में पुल बह गया है, एसडीआरएफ ने महिला को किया रेस्क्यू, तेज बारिश से लकड़ी का पुल भी बह गया है, रस्सी के सहारे महिला को सुरक्षित निकाला गया। चमोली में भी लैंडस्लाइड, नारायणगढ़ पहाड़गढ़ में एक कर्णप्रयाग मार्ग पर प्रभावित हुआ, पहाड़ में पानी के साथ चट्टानों का सैलाब आने से सड़क का मलबा जमा हो गया है। बागेश्वर में बारिश का कहर है, 15 सड़कें बंद कर दी गई है, बोल्डर गिरने से कई मार्ग बाधित हो गए, घर भी हुआ है क्षतिग्रस्त। पौड़ी गढ़वाल में अलकनंदा उफान पर है, हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, भारी बारिश के चलते नदी का जलस्तर बढ़ गया, प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। उत्तरकाशी में भी बारिश का कहर जारी है, गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर भूस्खलन के चलते हाईवे बार बार रहा है बाधित, आवाजाही प्रभावित हो रही है। देहरादून में सड़कों पर आया सैलाब, मलबे में फंसा ट्रक, भारी बारिश के बाद सड़क पर पानी का और मलबा आया सामने, ट्रक चपेट में भी आ गया। हिमाचल प्रदेश में 11 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट, येलो अलर्ट जारी कर दिया गया, सोलन समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है, सड़कों पर भर गया है पानी। नेपाल में भी भारी बारिश से गंडक नदी का उफान पर है और वाल्मीकि नगर में बैराज पे 2.2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, बगाव में भी गांव में घुसा पानी। धौलपुर में जल भराव से स्कूलों पर बार बार लग रहा है ताला, बच्चों का प्रदर्शन, सरकारी दावों पर उठे सवाल। रांची में आंदोलनकारी छात्रों से बातचीत के लिए प्रशासनिक अधिकारी धरना स्थल पर पहुंचे, छात्रों की मांग को लेकर दोनों पक्षों के बीच वार्ता की कोशिशें रुक गई हैं, सस्पेंस बरकरार है, शर्तों पर फंसा है पेच। जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ी के विरोध में एआईसा का विरोध मार्च भी निकाला है, नेहरा बोरा भी शामिल हुए हैं। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में आंदोलन किया जा रहा है, अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से वार्ता के लिए 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नाम घोषित कर दिया है। रांची में जेपीएससी जेएसएससी छात्रों का आंदोलन जारी है, देवेंद्र नाथ महतो बोले हैं सरकार का रवैया बेहद असंवेदनशील है। छात्र आंदोलन पर बोले सीएम हेमंत सोरेन, सरकार बातचीत को तैयार है, पूरे राज्य में मांगे जाएंगे सुझाव। मोदी ने की है नए एनडीए लोकसभा सांसदों के संग ब्रेकफास्ट मीटिंग, प्रधानमंत्री आवास पर पहली बार नव निर्वाचित सांसदों से मुलाकात की है, बोले संसदीय इतिहास को समझने में दिखाया अपनी दिलचस्पी। पीएम मोदी ने नाश्ते पर बुलाने पर रचना बनर्जी बोली है कि सौभाग्य की बात है, सदन नहीं चलने पर भी प्रधानमंत्री मोदी चिंतित थे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, बैठक में महाराष्ट्र से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। पीएम मोदी ने शेयर किया हैंडलूम डे का वीडियो, स्वदेशी उत्पादनों को बढ़ावा देने की अपील, बीती रात इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर लोगों से हैंडलूम अपनाने की बात कही थी। नीट यूजी ओएमआर बात पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट जाने को कहा है। झारखंड में बीजेपी पे मंत्री सुदेव सोनू का हमला, बोले हैं कि पारदर्शिता चाहते हैं तो बाबूलाल मरांडी समेत नेता रिश्तेदारों से दिलाए इस्तीफा। विश्वविद्यालय में आईसा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, आईसा छात्रों ने वीसी का घेराव किया,

0: प्रशासनिक भवन के बाहर बैठे हैं कुलपति। आज युवाओं के आंदोलन से नया अनोखा रंग ले लिया, नौकरी नहीं तो शादी नहीं, कड़वी सामाजिक सच्चाई को व्यंग कर बनाकर प्रदर्शन मार्च निकालने का अनोखा पोस्टर जारी किया गया। आप महासचिव बलतेज पन्नू ने कांग्रेस की श्वेत पत्र की मांग पर पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार के कार्यकाल के दिए गए रोजगार का हिसाब देना चाहिए। पीएम मोदी से मिले श्रोमणी अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल, संसद भवन में हुई मुलाकात। मेटा की टेक्निकल टीम ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अधिकारियों के संग बैठक की है। एल्गोरिथम पर चर्चा की गई, सुधार योजना की रिपोर्ट मांगी गई है। सरकार का मेटा का संदेश, भारत में भारतीय कानून का ही होगा पालन। एआईडी फेक पर भी सरकार ने सख्ती की है, अब महज 3 घंटे में हटाना होगा गैर कानूनी कंटेंट। पंजाब में नौकरियों के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन, सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की गई। संसद में गतिरोध खत्म करने को लेकर किरण रिजिजू और राहुल गांधी की फोन पर बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा और सहयोगी दलों से बातचीत के बाद रुख साफ करेगी कांग्रेस। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आवास के बाहर साधु संतों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को लेकर मौके पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र में हंगामा, प्रश्नकाल को लेकर आम आदमी पार्टी ने विधायकों ने हंगामा किया। हंगामे पर कपिल मिश्रा का सदन में बयान, कहा कि नेता विपक्ष आतिशी आई ही नहीं, इससे उनकी गंभीरता का पता चलता है। संसद में देखी सियासी तस्वीर, कांग्रेस सांसद प्रशांत पटोले के विरोध प्रदर्शन में एनसीपीआई सांसद यूसुफ पठान भी नजर आए। केजरीवाल का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले कि प्रधानमंत्री अब अपने ही नागरिकों से लड़ रहे हैं, खुद को बचाने के लिए बना रहे हैं कानून। शुभेंद्र अधिकारी का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला, कहा कि ममता बनर्जी बंगाल को खत्म करने पर तुली हुई थी। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में नेहरू प्लेस में मॉकड्रिल की गई, आतंकी हमले जैसे आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों का आकलन किया गया है। दिल्ली के कई अहम ठिकानों पर मॉकड्रिल की गई है। सचिवालय में संदिग्ध बैग की सूचना पर सुरक्षा एजेंसियों का मॉकड्रिल भी हुआ। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में मल्टीलेयर सिक्योरिटी प्लान लागू कर दिया गया। लाल किले से कार्यक्रम में करीब 24,000 मेहमानों की सुरक्षा के लिए 12,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। आतंकी खतरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर। मॉकड्रिल में कई परिदृश्य होंगे टेस्ट, हॉस्टेज रेस्क्यू, बम थ्रेट और इवैक्यूएशन जैसे हालातों पर तैयारियों के पर की जाएगी। दिल्ली में बढ़ी है सुरक्षा, मेट्रो स्टेशन और भीड़भाड़ वाले इलाकों पर खास निगरानी की जा रही है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि ड्रिल के दौरान सुरक्षा गतिविधियों से घबराने की जरूरत नहीं है। मुंबई में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जेंजी का संग संवाद किया है, कहा कि जेंजी का आंदोलन देश के खिलाफ नहीं है, ये भी संवाद का एक तरीका है। मोहन भागवत के जेंजी बयान पर धर्मेंद्र यादव का पलटवार भी आया, बोले कि आरएसएस के कई चेहरे भरोसा नहीं किया जा सकता। एफसीआरए संशोधन विधेयक पर 12 अगस्त को संसद में हो सकती है चर्चा। अमित शाह से मुलाकात के बाद मिजोरम के सीएम ने दी है जानकारी, बिल के विरोध में है विपक्ष। 12 अगस्त को सदन में आएगा एफसीआरए बिल। मिजोरम के मुख्यमंत्री ने बिल को लेकर स्थिति स्पष्ट की है और रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा यह बिल। एफसीआरए बिल पर कांग्रेस का हमला, अभिषेक मनु सिंह भी बोले हैं कि टेकोनियम बिल विपक्ष के प्रस्तावित कानून को लेकर सरकार पर तीखा निशाना साधा है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत यूपी के 75 जिलों में होगा तिरंगा संगीत समारोह, शहीद परिवारों का होगा सम्मान। सीएम योगी ने जेंजी आउटरीच पर सपा का पलटवार किया है। मनोज काका बोले हैं कि अब पछताए क्या होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कावड़ यात्रा पर मौलाना साजिद रशीदी के बयान पर विवाद हो गया। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन अध्यक्ष के कुछ कावड़ियों को आतंकवादी बताया था। मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ पुलिस में शिकायत, बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने भड़काऊ बयान का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। लखनऊ में सीएम योगी का अखिलेश पर हमला, बोले हैं कि बाबू के दौर में ना बिजली थी ना सड़क, होते थे दंगे और कर्फ्यू। राष्ट्रीय हैंडलूम डे पर सीएम योगी का बड़ा कार्यक्रम, बुनकरों को सम्मान और 706 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी है। उप बीजेपी राजभर का अखिलेश यादव पर हमला, बोले हैं कि पीडीए के नाम पर ठोंग कर रहे हैं या आपके लोगों कर रहे हैं अत्याचार। गाजीपुर का जिक्र करते हुए सपा पर गंभीर आरोप भी लगाए। एसपी नेताओं को अखिलेश यादव की नसीहत, बोले कि जाति धर्म पर टिप्पणी से बचें, आचार आचरण और वाणी में रखें संयम। अखिलेश यादव की नसीहत पर बीजेपी का पलटवार, राकेश त्रिपाठी बोले जातिवाद और तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले दे रहे हैं प्रवचन, इसकी राजनीति मजहबी तुष्टिकरण पर आधारित है। गोंडा में ब्रिजभूषण सिंह का बड़ा बयान, बोले कि सांसद बनना डिजर्व करता हूं, पार्टी विचार करेगी तो जनता भेजेगी। अतीक अहमद के बेटे के सड़क हादसे को लेकर विपक्ष ने निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग की है। विपक्षी नेता दीपक रंजन ने साजिश या लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की मांग की है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पुल गिरने की घटना को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में बीजेपी को भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और बोले कि बीजेपी यानी बेहद जानलेवा पार्टी। अखिलेश यादव ने यूपी और गुजरात मॉडल को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है, कहा कि आपसी टकराव से डबल इंजन सरकार डबल इंजन बन गई है। प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले दलित समाज को साधने की सियासी कवायद तेज हो गई। योगी सरकार ने अंबेडकर मूर्ति विकास योजना के लिए रखे 407 करोड़ रुपए। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में खराब व्यवस्था पर राज्यपाल सख्त हुई है। खाने के सैंपल की जांच के आदेश, हॉस्टल में गंदगी पर भी सवाल उठाए। पटना में एक युवक की बस से कुचलकर मौत हो गई है। लोगों ने बस में आग लगा दी, साथ ही पुलिस की भी कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। नशे में धुत ड्राइवर ने घर में घुसाई तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार, हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। दिल्ली के वजीराबाद में खुले नाले में गिरे 3 बच्चे, स्कूली बच्चों की जान खतरे में पड़ी, लोगों की सूझबूझ से सुरक्षित बचाया गया। मुंबई में पार्किंग से गिरी कार सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा, कार गिरने के बाद मचा हड़कंप, मौके पर मौजूद लोग बाल बाल बचे। बागेश्वर के हाईवे पर भूस्खलन पार्क किए वाहन मलबे में दबे, बड़ा हादसा टला। मुंबई में पारिवारिक विवाद के पिता ने ली है बेटी की जान, क्षेत्र में सनसनी फैली है, पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ सीतापुर हाईवे पर चलती कार में अचानक आग लगने से एक युवक कार में ही फंस गया, उसकी मौत हो गई, मामले की जांच जारी है। लखनऊ में प्रेम प्रसंग के शक में नाबालिग छात्र की गला रेत कर हत्या कर दी गई, आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। घर से अकेली 17 वर्षीय छात्रा की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक के बीच जमकर मारपीट हुई, लात घूस और उसके साथ डंडों का भी इस्तेमाल हुआ, घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। मथुरा में हरियाली तीज, हर साल हर घर तिरंगा, स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर प्रशासन अलर्ट है, डीएम ने की है समीक्षा बैठक। राजस्थान के जालौर में पत्थर की खदान में चाहिए हैं मलबे में दबे एक युवक की मौत हो गई, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुडुचेरी में भी भारी बारिश की दीवार गिर गई है, मलबे में 6 लोगों के दबने होने की आशंका है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बेलगावी में 2 करोड़ के इंश्योरेंस के लिए पूर्व सैनिक की हत्या का शक है, 3 महीने बाद कब्र से निकाला गया शव, पत्नी और प्रेमी की जांच जारी है। करनाल में वीरू वाल्मीकि हत्याकांड पर बड़ा एक्शन हुआ, पुलिस एनकाउंटर में 2 आरोपी ढेर कर दिए गए। पुणे में पीजी में रहने वाले युवक को लोहे की रॉड से पीटा गया, युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई, घटना का सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ है। कोटपुतली में टोल पर स्थानीय लोगों का धरना, टोल फ्री करने की मांग को लेकर अड़े हैं ग्रामीण। बिजनौर में कई करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई, भतीजे से चल रहा था संपत्ति को लेकर विवाद। तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में पोलाची में युवक की हत्या के बाद शव के साथ सेल्फी लेकर फरार हुए आरोपी, पुलिस की दबिश जारी है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में जिले में कॉलेज छात्र की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई है, इंस्टाग्राम पर मैसेज करने पर लड़की के पुरुष मित्र ने पीस सड़क पटक पटक कर मार डाला। पालघर में आवारा कुत्तों का आतंक जारी है, कई लोगों पर हमला कर दिया गया, 4 दिन में 5 से 7 लोगों को बनाया अपना शिकार। आज अमित रॉय की ओ माई टॉक सिनेमाघरों में रिलीज होगी, इस फिल्म में लीड रोल में है पंकज त्रिपाठी। हिंदी ड्रामा फिल्म आर्यभट्ट का 0 भी आज रिलीज हो रही है, इसमें हिमांशु कोहली, रवि किशन और सोनाली सहगल, शिल्पा शिंदे जैसे स्टार शामिल है। आर माधवन की फिल्म GDN रिलीज होगी, GD नायडू की भूमिका में दिखेंगे माधवन। फिल्म में प्रियमणि और जयराम और सत्यराज जैसे स्टार शामिल हैं। सिनेमाघरों में धूम मचाने के बाद ओटीटी पर रिलीज होगी वापस मैं वापस आऊंगा। नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई दलजीत दोसांझ, वेदांग, रैना और शर्वरी की ये फिल्म। जिमी शेरगिल और सिद्धार्थ जैसे कलाकारों से सजी वॉर ड्रामा वेब सीरीज ऑपरेशन सफेद सागर की रिलीज हुई है। देशभक्ति और मिलिट्री ऑपरेशन पर बेस्ड है सीरीज। श्रीलंका दौरे पर आज से कोलंबो में श्रीलंका 11 के खिलाफ 3 दिवसीय वार्म अप मैच खेलेगी टीम इंडिया। 15 अगस्त से शुरू हो रही है 2 टेस्ट मैचों की सीरीज। टीम इंडिया का फिटनेस लेवल सुधारने के लिए पहल के तहत आया नया रूल। अब 2 किलोमीटर 2 मिनट में दौड़ना जरूरी हो। 1200 मीटर की दौड़ 5.20 सेकंड में पूरी करनी होगी। भारतीय वुमेन्स टीम के साउथ अफ्रीकी दौरे के शेड्यूल में बदलाव कर दिया गया। अब इस दौरे पर 1 टेस्ट और 3 वनडे के साथ खेले जाएंगे 3 T20 मैच। वुमेन्स एशिया कप में 5 सितंबर को खेला जाएगा भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच। एशिया क्रिकेट काउंसिल ने जारी किया है शेड्यूल। 28 अगस्त को होगी टूर्नामेंट की शुरुआत। मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची तानवी शर्मा। प्री क्वार्टर फाइनल में 86 को 21-16 से दी है मात। भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने रचा इतिहास, बने सेंट लुइस रैपिड एंड बिलियर्ड चैंपियन। बिलियर्ड्स के 1 राउंड बाकी रहते जीता खिताब। रैपिड राउंड के बाद पॉइंट्स टेबल में टॉप पर थे प्रज्ञानंदन। अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 में भारत के लिए गौरव का पल। मोहम्मद अशफाक ने पुरुषों के 400 मीटर दौड़ में फाइनल में बनाई अपनी जगह। मोहम्मद अशफाक ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड रच दिया है। हीट्स में 45.81 सेकंड का शानदार समय निकालकर बनाया था नया राष्ट्रीय अंडर 20 रिकॉर्ड। बिहार की बेटी भावना कांट ने रचा है नया इतिहास। फाइटर कॉम्बेट लीडर कोर्स पूरा करने वाली वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है। 20 सप्ताह तक चली थी कठिन ट्रेनिंग।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माह।

0: और खबरें के सिलसिलों को अब आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं पटना की। पटना में एक रोड एक्सीडेंट के बाद बवाल हो गया। मामला इतना बिगड़ गया कि कई गाड़ियों में आगजनी हो गई, पथराव भी हुआ, कई किलोमीटर लंबा जाम भी लग गया। पुलिस ने जब सख्ती दिखाई तो जाकर स्थिति कंट्रोल में आई है।
1: ये तोड़फोड़, ये आगजनी, ये उपद्रव, ये बवाल, ये हंगामा, ये बिहार की राजधानी पटना है और पटना में हंगामा बरपा है। सड़क पर धू कर जलती गाड़ियां, कभी भीड़ पुलिस को खदेड़ती तो कभी पुलिस भीड़ को। ये सारा बवाल पटना के बड़ी पहाड़ी के पास हुआ है। ये हंगामा रोड एक्सीडेंट के बाद हुआ। तेज रफ्तार बस ने एक युवक को धक्का मार दिया जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद आसपास के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित भीड़ ने सड़क पर हंगामा शुरू कर दिया। सामने जो भी वाहन आते दिखे उसने आग लगा दी। सड़क पर चल रहे वाहनों पर भी पथराव हुआ।
2: यहां दर्जनों गाड़ियों को फूंक दिया है, पुलिस की गाड़ियों में भी आग लगाया है। वहीं अब पुलिस जो है मौके पर पहुंच गई है और जितने भी यहां पे प्रदर्शनकारी थे और जो लोग गाड़ियों में आग लगा रहे थे उन सबको अब यहां से खदेड़ दिया गया। भारी संख्या में पुलिस बल यहां पहुंच चुकी है और जो यहां दर्जनों गाड़ियों को लोगों ने आग लगाया उसके लिए जो लोग जिम्मेवार है उसकी तलाश की जा रही है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं भारी संख्या में महिला पुलिस बल यहाँ दिख रही है जो अभी घटना स्थल पर पहुंची है। और हमारे पीछे देखिए यहाँ एक कई पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दिया गया है। जब यहाँ वीडियो बना रहे थे मीडिया कर्मी उन्हें भी निशाना बनाया गया।
1: गुस्साई भीड़ ने सड़क पर जाम लगा दिया। करीब 10 किलोमीटर तक गाड़ियों के पहिए ठप हो गए, लोग जहां के तहां फंस गए। मौके पर जब पुलिस पहुंची भीड़ ने पुलिस पर भी धावा बोल दिया। पुलिस की 3 गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। भीड़ ने पुलिस और पत्रकारों पर भी पथराव किया।
2: यहां जितनी भी गाड़ियां दिखी उसे निशाना बनाया गया और देखिए इस बस को पूरी तरह जला दिया गया है। स्लीपर बस है ये और बताया जा रहा है कि इसी बस से जो है बच्चे की मौत हुई थी। देखिए इस बस को आग के हवाले किया गया और देखिए अब जो है जो पकड़े जा रहे हैं उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है और एक एक करके सभी को चिन्हित किया जा रहा है। तो अगमकुआं थाना और बाईपास थाने की पुलिस बल यहां पहुंच चुकी है और जो घंटों उपद्रव हुआ उसे अब काबू में किया जा चुका है।
1: पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठियां भी भांजी, लेकिन जब पुलिस दौड़ती तो लोग भाग जाते और अगले ही पल फिर से बवाल करने लगते।
3: वजह यह है कि यहाँ वैशाली कंपनी का बस है जिससे आम यात्री का चापा पड़ गया है। इसके एवरेज में गांव वाले गुस्से में आके सारे ये बस को जला दिया गया है और प्रशासन पे भी थोड़ा सा प्रशासन का दबाव रहा। पब्लिक को मार रहे, पब्लिक प्रशासन को मार रहा है, यहाँ लोकल गांव का जनता लोग।
1: हालात पर काबू पाने के लिए कई थानों की फोर्स के साथ अफसर पहुंचे। काफी देर तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा लेकिन पुलिस ने बलपूर्वक सभी को समझा बुझा कर भेज दिया और उपद्रवियों की धरपकड़ भी तेज कर दी। रोहित सिंह, पटना, आज तक।
0: चलिए बुलेटिन में वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस दिल में।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Papa.
2: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
3: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
2: छक्का?
3: सब कैशलेस हो गया
2: है। हां ओ ला भाई मेरा बैट,
4: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
5: मिनट से चार्ज हुआ यार।
6: ओला बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: अरे इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
9: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
10: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रांग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
11: In association with
12: Punjab National Bank, भरोसे का प्रतीक।
11: विमल बोलो जुबा केसरी। हिंट बड़े आराम से।
13: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
14: अगर मुझे इतिहास का कोई एक पल कवर करने का मौका मिलता तो मैं 1999 का करगिल युद्ध चुनती। वो सिर्फ एक युद्ध नहीं था, वो देश के जज्बे की कहानी थी। ऐसे न जाने कितने ऐतिहासिक लम्हों की गवाह रही है इंडिया टुडे। 7 अगस्त को PVR INOX में आई विटनेस टू अ नेशन जरूर देखिए। मिलते हैं वहीं।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: In association with
5: Punjab National Bank, भरोसे का प्रतीक।
4: विमल बोलो जुबां केसरी। हिंट बड़े आराम से।
6: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
7: मैं देख रहा था कैसे खत्म हो रहा था बंगाल। डेमोग्राफी हैज बीन चेंज। हमारी सीमा असुरक्षित। भारत सरकार, पहले राजनाथ सिंह जी, उसका बाद अमित शाह जी, बार बार लेटर दे रहा है भाई बॉर्डर के लिए जमीन तो दे दो। ये तो कोई पार्टी का मामला नहीं है, देश का मामला है, देश सबका है। नो नो नो नो, वोट बैंक, तुष्टिकरण, देश तो बर्बाद करो और पश्चिम बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश बना दो। मेरा घर का आदमी बिपिन अधिकारी जी लेट, स्वतंत्रता संग्रामी, 8 साल ब्रिटिश का जेल में था। हम लोग पेट्रियोटिक फैमिली से आता हूं भाई, देश बर्बाद हो जाएगा, बंगाल खत्म हो रहा है, इसको सपोर्ट करना, ममता बनर्जी को सपोर्ट करना और मोहम्मद अली जिन्ना का सपना पूरा करना, ये दो एक ही बात ही था। इसको छोड़ना चाहिए,

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: रांची में सरकार से वार्ता की मुकम्मल तैयारी, सिर्फ छात्रों का 7 सदस्यीय डेलीगेशन करेगा बातचीत। सीएम सोरेन का बयान, समस्याएं सुनेंगे, बड़े सुधारों की ओर बढ़ेंगे। वहीं आयसा प्रेसिडेंट पर फेंकी गई स्याही। संसद में डेडलॉक के बीच सोमवार तक स्थगित हुई लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही। किरण रिजिजू बोले, विपक्ष ना बताए कि किस मंत्री को सदन में आना है, जिनके विभाग पर चर्चा है वो मौजूद हैं। एनडीए में नई एंट्री लेने वाले लोकसभा सांसदों से प्रधानमंत्री मोदी की नाश्ते पर हुई मुलाकात, कहा कि संसद की डिबेट में भाग ले। महाराष्ट्र के सांसदों से बोले, विकास कार्यों में आए कोई दिक्कत तो मुझसे सीधे मिले। राहुल गांधी ने कैप्टन अमरिंदर की तारीफ की तो गर्मा गई पंजाब की राजनीति। आम आदमी पार्टी ने कहा कि कैप्टन को ही पार्टी में ला सकते हैं राहुल गांधी। प्रगट सिंह बोले, अमरिंदर तारीफ के काबिल। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा कि जेंजी हमारी पीढ़ी से ज्यादा देशभक्त और ईमानदार, आंख मूंद कर करता है भरोसा। आंदोलन का मतलब राष्ट्र विरोध नहीं। प्रियंका गांधी बोली, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसें, इन एसोसिएशन विद भारत की।

0: नमस्कार, खबरें आज तक, खबरें असरदार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। रांची में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी। आंदोलन के 14 दिन पूरे हो चुके हैं। सरकार और छात्रों का के बीच संवाद की कोशिशें भी जारी है। आंदोलनकारी छात्रों के न्याय मंच से सीएम हेमंत सोरेन ने बातचीत के लिए प्रतिनिधियों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। और इसी बीच प्रदर्शन में शामिल एक छात्र की तबीयत बिगड़ भी गई। उधर रांची में विधानसभा का घेराव करने जा रही आयसा की अध्यक्ष नेहा बोरा पर एक युवक ने इंक फेंक दी, जिसके बाद आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया गया है। और वहीं छात्रों के आंदोलन के बीच झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार परीक्षा व्यवस्था में सुधार करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं। आपको बता दें कि छात्रों के प्रदर्शन को लेकर हेमंत सोरेन की तरफ से कहा गया कि कई लोग इस मामले में जेल जा चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने सुधारों की बात भी कही है। जांच एजेंसियां पूरी तरह से लगी हुई हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि देखिए, इस पूरी व्यवस्था को ठीक करने में जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। कई लोगों को जेल भी भेजा गया। सरकार के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं।
1: छात्रों की इच्छा है, उस इच्छा को हम जयपाल सिंह स्टेडियम से बाहर तक ले जाने की कोशिश करें। पूरे राज्य की जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, जो इस संबंध में अपने विचार रखते हैं, वो अपनी राय दे सकते हैं। और एक मजबूत और बड़े रिफॉर्म के साथ आगे हम लोग बच्चों की जो ये जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को उनके अनुरूप बनाने के उद्देश्य से आगे बढ़े।
0: 14 दिन बाद भी रांची में जारी आंदोलन की रफ्तार सुस्त नहीं पड़ी। छात्रों ने सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्य प्रतिनिधि मंडल बनाए, जिसमें पत्रकार और वकीलों को भी रखा गया, लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ छात्रों से बातचीत के पक्ष में है।
2: चौदहवां दिन है जब झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों की मोर्चाबंदी जारी है। मूसलाधार बारिश के बीच छात्र डटे हैं, अड़े हैं। गुरुवार की शाम छात्रों ने एक बार फिर मार्च निकाला, अपने हक की लड़ाई में आवाज बुलंद की।
3: जयपाल सिंह स्टेडियम का नजारा है, जहां लगातार जेपीएससी और जेएसएससी में व्यापक प्रदर्शन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, प्रोटेस्ट साइट बन रही है और शाम होते ही हर रोज इसी तरह से ये विरोध प्रदर्शन करते हैं। देखिए, फ्लैश लाइट जलाया हुआ है मोबाइल का, और इन लोगों ने जयपाल सिंह स्टेडियम का एक चक्कर लगाया है। किसी दिन तिरंगा यात्रा, किसी दिन इसी तरह से फ्लैश लाइट लगा के जो है मार्च करते हैं, कैंडल मार्च किसी दिन करते हैं। कल लंबा तिरंगा यात्रा निकला था इनका।
2: सवाल है कि अब आगे क्या होगा? क्या सरकार और छात्रों के बीच जारी यह गतिरोध खत्म हो पाएगा? क्या सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच संवाद का संकट दूर हो पाएगा? खबर है कि आज छात्रों और सरकार के बीच सीधी बातचीत शुरू हो सकती है। छात्रों ने बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया है। प्रतिनिधिमंडल में छात्रों के साथ वकीलों और पत्रकारों को भी रखा गया है। सरकार का कहना है कि बातचीत में सिर्फ छात्रों को ही शामिल किया जाए, लेकिन छात्र तय प्रतिनिधिमंडल में कोई बदलाव करने को तैयार नहीं है। उनकी ये शर्त भी है कि बातचीत में मुख्यमंत्री या तो खुद शामिल हो या कम से कम उनकी मौजूदगी में बात आगे बढ़े।
4: दोनों तरफ से कमेटियां बना दी गई है। सरकार ने अपनी ओर से 4 मंत्रियों को तैनाती की है, छात्रों ने अपनी ओर से 8 बच्चों को और 3 जो मीडिएटर होंगे, जो कि एक गाइड की भूमिका में होंगे, और उसके लिए उन्होंने नियम भी तय किए हैं। कोई रिकॉर्डिंग नहीं, ट्रांसपेरेंसी होगी और बहुत सारी शर्तें जो है सब कुछ रख दी गई हैं। लेकिन अब इंतजार है उस समय का कि सरकार एक समय दे, और उसके बावजूद भी इस खराब मौसम में आज 14 दिन हो चुके हैं जब जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में कहीं कुछ छात्रों का अनशन चल रहा है, एक अनशन तो चार और बैठे हैं। आईसा ने दरअसल ये घोषणा की है कि उनके छात्रों का गुट आज विधानसभा घेराव करेगा और तड़के सुबह होने के बाद भी मंच छोड़कर के नहीं गए हैं। मंच के आसपास इलाके में छात्रों का जमावड़ा और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वो फिर एक बार आएंगे। सबको दरअसल इंतजार ये है कि कोई यहाँ धरने पर तो बैठा नहीं रहना चाहता। बच्चों की पढ़ाई लिखाई तैयारी का समय है, कुछ के यहाँ जो गाँव से आते हैं वहाँ पर खेती बाड़ी का समय है, तो वो चाहते हैं कि जल्दी ये डेडलॉक खत्म हो। अब सोचिए 2 सप्ताह हो चुके हैं। हालांकि इस बीच में बहुत सारे जो राजनीतिक घटनाक्रम भी हुए, बीती शाम राहुल गांधी का फोन आया, तमाम वो छात्र बैठे हुए हैं।
2: तो छात्रों की अपनी शर्तें हैं और सरकार के काम करने का अपना तरीका है। दोनों पक्षों में रस्साकशी चल रही है। नतीजा क्या निकलता है ये तो नहीं मालूम, लेकिन फिलहाल छात्रों के जोश में कोई कमी नहीं दिख रही। रांची का जयपाल सिंह स्टेडियम हर बीतते दिन के साथ नई इबारत देख रहा है। ये आंदोलन हर दिन रफ्तार पकड़ रहा है, धारदार हो रहा है। यहाँ के नज़ारे जंतर मंतर की याद दिला रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन का परिणाम जंतर मंतर जैसा ही निकलता है या कुछ और, ये देखने वाली बात है। सत्यजीत कुमार के साथ आशुतोष मिश्रा, रांची आज तक।
0: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी। छात्र अपने भविष्य की सुरक्षा और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग पर डटे हुए हैं। हर छात्र व्यवस्था को लेकर गुस्से में, क्योंकि परीक्षा में लगातार हो रही गड़बड़ियों ने न केवल उनके कई साल बर्बाद कर दिए बल्कि उनके सपनों को भी तोड़ मरोड़ कर बर्बाद कर दिया है।
2: आखिर कितनी पीड़ा, कितनी वेदना, कितना दर्द इस छात्रा को तब हुआ होगा जब उसकी जुबान से निकला होगा कि लगता है पढ़ लिख कर गुनाह कर दिया।
5: जिम्मेदारी का बोझ बहुत है सर, एक गरीब परिवार से रहना ना बहुत मुश्किल है। यही रीजन था कि हम बाहर पढ़ने के लिए निकल गए। घर में उतना कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो सोचे कुछ नहीं, कम से कम हम तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे हैं। लग रहा मैं तो पढ़ के भी गुनाह कर दी हूं।
2: जिस पढ़ाई के सहारे सालों साल छात्र छात्राएं भविष्य के सपने सजाते हैं, नौकरी के लिए दिन रात एक करते हैं, जी जान लगाते हैं, लेकिन सिस्टम का ऐसा अत्याचार होता है कि आंखों से आंसू और दिल से आह साथ ही निकल पड़ते हैं।
5: ऐसा लगने लग गया, पढ़ाई पे से भरोसा उठ गया, भगवान पे से भरोसा उठने लग गया। हम लोग क्या करेंगे, बहुत मजबूर हो गए, इसलिए ये कदम उठाना पड़ा। हम लोग का कोई शौक नहीं अपना स्वास्थ्य कोई खराब करना चाहेगा, लेकिन भी क्या करें, मजबूर कर दिया ये सरकार। जब से ये सरकार आया उस समय से तो कुछ ज्यादा ही होने लगे। पहले होता था, हम लोग भी जानते थे पहले होता था, लेकिन ये सरकार आया तब से हर एक वैकेंसी अब बिकने लग गया। एक दो सीट मात्र बचाता है, सबको बेच देता है, एक दो सीट बचाता है, गरीब बच्चा को दे देता है, बोलता है हम क्लीन एग्जाम लिए हैं।
2: रांची में बीते 14 दिन से जारी आंदोलन में मौजूद हर छात्र की अपनी व्यथा है, अपनी अलग कहानी है। किसी का पेपर लीक हुआ, कोई परीक्षा देकर सालों से नतीजे का इंतजार कर रहा है। झारखंड में परीक्षा देकर नौकरी पाने का प्रयास इन सब के लिए किसी यातना जैसा बन गया है। 28 साल की छात्रा सविता भी बीते 4 दिनों से आंदोलन में शामिल है। सविता जब बताती हैं कि कैसे झारखंड में सरकारी नौकरी की उम्मीद में उनके कई साल बर्बाद होते चले गए, उनके हर ख्वाब बिखर गए, तो सविता का ये हाल बताता है कि सिर्फ परीक्षा की व्यवस्था ही दम नहीं तोड़ चुकी है, मानो सरकार ने भी छात्रों की मुश्किलों पर आंखें मूंद ली हैं।
5: तैयारी करते करते अब तो मेरा उम्र भी निकलते जा रहा है, 28 साल होने जा रहा है, 28 में पार होने जा रहा है, 29 में पहुंच जाएंगे, 1 से 2 साल में मेरा एज भी खत्म होने को रहेगा, फिर हम तो कोई फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। यार ये पढ़ाई के चक्कर में हम आगे कुछ और पढ़ाई नहीं किया, मेरा घर की स्थिति बहुत खराब था सर, इसीलिए हमको यही लगता था कि एक जॉब ले ले, उसके बाद जो आगे के भविष्य होगा आगे देखा जाएगा।
2: परिवार बेहद गरीब था, लिहाजा सविता ने पढ़ाई की शुरुआत में ही ठान लिया था कि नौकरी के सहारे वो पिता की मदद करेंगी, परिवार का सहारा बनेंगी। लेकिन झारखंड में लगातार परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों ने ऐसा हाल किया कि सविता जैसी छात्राओं की उम्मीदों को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया।
5: सर मेरा परिवार में मेरा पापा सिर्फ है और मेरी 4 बहनें हैं, तो सबका शादी हो गया है, एक छोटा भाई है, तो हम अपना पढ़ाई करने के चक्कर में मेरा घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं था, तो भाई का भी शादी करवा दिया कि हम पढ़ लेंगे कुछ कर लेंगे तो आगे हमारा फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा, घर का भी स्थिति ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ का परिस्थिति इतना गंदा है ना कि सर हम आज तक एक रिजल्ट नहीं कर पाए। यहाँ तक कि पता है सर, हम जैसे होमगार्ड से लेकर जेपीएससी तक का कर चुके, अगले बार हम होमगार्ड का भी रनिंग कर।
2: झारखंड की करीब करीब हर परीक्षा में गड़बड़ी है, हर एग्जाम का हाल एक सा है। इस सिस्टम ने मेहनती छात्रों को बेबस कर दिया है।
5: परीक्षाओं में सर कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि हम बहुत कोशिश किए, रात दिन एक कर दिए हैं। घर का परिस्थिति देख के ना सर लगता है इस साल हम नौकरी ले लेंगे। घर का परिस्थिति बहुत खराब है, लगता है इस साल हम नौकरी ले लेंगे, क्योंकि जी जान लगा के कोशिश करते हैं लेकिन भी हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। इस बार मेरा पीटी भी निकलने वाला था 14 JPSC का, 135-136 क्वेश्चन सही हुआ। सोचे इस बार पीटी निकल जाएगा, मैं मेंस का पूरा प्रिपरेशन सारा डॉक्यूमेंट सारा पढ़ने का चीज हम जुगाड़ कर लिए थे और सोचे इस बार पीटी निकल जाएगा, उससे भी पहले से भी मैं तैयारी कर रही हूँ। तो सोचे जी पीटी निकल जाएगा, जी जान लगा के रात दिन एक करके पूरा इस बार मेंस भी निकाल लूंगी। लेकिन देखे कि सरकार इस तरह से पेपरों का अंदर से रंगवाया गया ना, तो हम लोग का पीटी भी नहीं हो पाया।
2: यही बेबसी अब छात्रों के गुस्से आक्रोश का रूप ले चुकी है, जिसकी तस्वीर रांची में जारी आंदोलन में दिख रही है। अब आंदोलन में शामिल छात्र राहुल का हाल देखिए, शरीर बुखार से तप रहा है, लेकिन ना ही वो आंदोलन छोड़ने को राजी हैं, ना ही अपने साथियों को, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि इस आंदोलन के सहारे व्यवस्था में बदलाव होगा, फिर से झारखंड का कोई छात्र नाइंसाफी का शिकार नहीं होगा।
6: लेकिन झारखंड के नौजवानों का सौदा नहीं हो, ये मेरा संकल्प है, तो उसको तो हम अंतिम सांस तक।
4: मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि आपको बुखार काफी ज्यादा है, बहुत तेज हो चुका है, शरीर तप रहा है।
6: तप रहा है, लेकिन यहाँ डॉक्टर भी तो आते हैं, चेकअप करते हैं, दवा भी लिखते हैं, अब बोलते हैं कि 2 घंटा में दवा पहुंचा रहे हैं।
2: रांची के आंदोलन में जितने भी छात्रों से बात करो, हर किसी की पीड़ा अंतहीन है। सिस्टम से उम्मीद टूट गई है, अब आंदोलन के सहारे बदलाव की आस है। बिरसा, फुले और अंबेडकर की प्रेरणाओं के साथ इन्हें संविधान पर विश्वास है।
7: बिल्कुल, ये हमारी स्ट्रेंथ है, पावर है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये हमारा अधिकार है, हक है, हमें ये संविधान ने हमें राइट दिया हुआ है। लेकिन इवन देन यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व या प्रशासन भी हमारे मनोबल को तोड़ने का बहुत कोशिश किया है। तो उस वक्त एक संविधानी था जिसके सहारे हम यहाँ पे खड़े थे, क्योंकि ये लोग हमें टेंट भी बनाने नहीं दे रहे थे, हटा रहे थे। तो उस वक्त मुझे लगा ये राइट तो मुझे यहाँ पे दिया हुआ है।
2: बदलाव के भरोसे के साथ छात्र बीते 14 दिनों से आंदोलन में डटे हैं, सरकार से सिस्टम में सुधार की मांग कर रहे हैं। सरकार बातचीत का भरोसा दे रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल बाकी है कि आखिर कैसे पूरी व्यवस्था हर परीक्षा के साथ ध्वस्त होती गई? क्यों पहले ही कोई एक्शन नहीं हुआ? क्यों मजबूर होकर छात्रों को आंदोलन का सहारा लेना पड़ा? सत्यजीत कुमार के साथ आशुतोष मिश्रा, रांची आज तक।
0: झारखंड में सरकारी परीक्षाओं में गड़बड़ी कोई नया मामला नहीं है, बीते कई सालों से यहां के छात्रों को इसका सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आंदोलन के दौरान छात्रों का गुस्सा भी साफ नजर आ रहा है।

0: हर परीक्षा के साथ इन छात्रों में एक उम्मीद जगती कि शायद इस बार कोई गड़बड़ी ना हो, शायद इस बार नतीजा साफ सुथरा हो, शायद इनकी मेहनत का असर दिखे, शायद झारखंड की परीक्षा व्यवस्था इस बार सुधरे। लेकिन बार बार इनकी उम्मीद टूटती है। ये हर बार खुद को ठगा महसूस करते हैं, हर बार सिस्टम की नाकामी का शिकार बनते हैं। भ्रष्टाचार इन छात्रों की मेहनत पर भारी पड़ जाता है और छात्रों के हाथ खाली के खाली रह जाते हैं।
1: इन परीक्षाओं के बस पेपर लीक हुआ है, क्या कट ऑफ है कुछ पता चल नहीं पा रहा है। 25 साल हो गया, एक पीढ़ी का तो मतलब उम्र पार हो गया। उन्होंने भी देखा अपने सामने नौकरी को बिकते हुए, धांधली लगते हुए कि पारदर्शी, और ये उन्होंने हमें बताया है कि झारखंड में कोई भी एग्जाम फेयर तरीके से नहीं होता है, बैकडोर एंट्री होता है, पैसा दो नौकरी लो। अगर आप पढ़े लिखे हुए भी नहीं है ना, तो झारखंड में ये व्यवस्था है कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पैसा ले लीजिए और उसके बाद फिर कोई एजेंसी परीक्षा ले रही है तो वहाँ पे पैसा दे के नौकरी ले लीजिए, ये व्यवस्था है झारखंड में।
0: 25 साल के मनीष बताते हैं कि कैसे हर परीक्षा में वो बर्बाद हो चुके सिस्टम का शिकार बनते हैं। मनीष एक नहीं कई कई परीक्षाओं का उदाहरण देते हैं और सवाल करते हैं कि अगर यही हाल रहा तो झारखंड का छात्र कहां जाएगा।
1: आपको तीन एग्जाम का एग्जाम्पल देंगे, जैसे कि CHO का एग्जाम हुआ था, उसमें एक राज्य विशेष लोगों का चयन हुआ। फिर 11-13 JPSC का एग्जाम हुआ, उसमें भी एक राज्य विशेष का सिलेक्शन हुआ। फिर महिला सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ, उसमें भी एक राज्य विशेष महिला अभ्यर्थियों का चयन हुआ। हम लोग झारखंड वाला कहां जाएं, क्या करें।
0: मनीष के माता पिता खुद झारखंड आंदोलन में शामिल थे, अब वो सवाल करते हैं कि आखिर अलग सूबा बने 25 साल से भी ज्यादा बीत जाने पर भी झारखंड के लोगों को क्या मिल रहा है।
2: आंदोलन आपको जन्म से मिल गया।
1: हाँ, आंदोलन मैंने जन्म से देखा, और पापा नारा देते थे ना कि घर में कि कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड, तो पापा कभी कभी बोलते हैं कि झारखंड ले लिए लेकिन हम झारखंडियों को क्या मिला है। यहाँ पे बस अदर स्टेट वाले आते हैं, मलाई खा के चल जाते हैं, झारखंड के हिस्से में वही आता है कोयला बिछो, बकरी पालो। हेमंत सोरेन भी तो वही बोलते हैं ना, बकरी पालो, सुअर पालो, और रिच मिनरल रिच है ये तो कोयला बिछता ही है यहाँ का लोग, क्योंकि नौकरी तो बाहर वाले आके ले जा रहे हैं ना, या फिर जो वैसे रसूखदार ले जा रहे।
0: झारखंड के हजारों छात्रों की शिक्षा व्यवस्था से नाराजगी है क्योंकि ये उनके रोजगार और भविष्य का सवाल है, और इसे लेकर अब रांची के आंदोलन में शामिल छात्रों में जबरदस्त उबाल है।
3: प्रीलिम्स निकला, मेंस निकला, मैं फिर इंटरव्यू भी दिया सर, फाइनली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उस समय लगा मुझे कि शायद मेरा ही कहीं पे फॉल्ट होगा। उस समय से इंटरव्यू में मुझे मात्र 40 नंबर दिया गया। उस समय ये देखा गया कि वहाँ पे चार बोर्ड है सर, और जितने सारे मेंबर है JPSC के अंदर वो सभी मेंबर किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड है सर, कोई किसी से है, कोई किसी से है, और उन लोग का अपना पर्सनल बायस होता है। तो वही एक बोर्ड सबको 65+ दे रहा है, एक बोर्ड सबको किसी को 15 दे रहा है, किसी को 20 दे रहा है, मुझे मात्र 40 नंबर दिया गया। और सर एक उसके बाद जब मेरा रिजल्ट नहीं हुआ ना, तो मुझे लगा कि शायद मेरे में ही कोई कमी है, तो मैं अगले बार इसमें सुधार कर लूंगा।
0: झारखंड की इस धरती ने कई आंदोलन देखे और अब बिरसा की इस धरती पर नौजवानों की इस आंदोलन को पूरा देश गौर से देख रहा है। झारखंड का छात्र बदलाव की उम्मीद के साथ आंदोलन कर रहा है। इनके मंच पर गांधी, अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, बिरसा मुंडा की तस्वीर है और इनकी प्रेरणा के साथ बदलाव की उम्मीद। सत्यजीत कुमार के साथ आशुतोष मिश्रा, रांची आज तक।
4: और अब खबर चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में पंजाब एम्प्लॉयज एंड पेंशन ज्वाइंट फ्रंट और एम्प्लॉयज फोरम पंजाब के प्रदर्शन में पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बता दें कि चंडीगढ़ के सेक्टर 39 स्थित अनाज मंडी में रैली आयोजित की जा रही थी, इसी दौरान पुलिस प्रदर्शनकारियों की झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये चंडीगढ़ के सेक्टर 39 की तस्वीरें हैं, जहां पर जो एम्प्लॉयज की एसोसिएशन है वो लगातार यहां पर प्रदर्शन कर रही थी। चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
7: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
8: कुछ तो बात है इस दिल में।
9: अभी जो हुआ है ग्रीवंस तो जेनाइन है। भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा इसलिए बात होती है, तो डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग के बाद नहीं होता तो क्या करना बात की बात है। अगर जैन जी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला,
10: बिल्कुल
9: उसको ठीक करना चाहिए।
10: तो इसमें आप मानेंगे कि संवाद यदि पहले से शुरू हुआ होता तो ये बाद में विषय ज्यादा ऊपर जाता ही नहीं।
9: जो नहीं होना चाहिए वो जब होता है तो कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जाती, तभी होता है। किसकी है क्या है ये अलग बात है, लेकिन कमी तो रही है, ठीक हो जाएगी। कि जैन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है।
10: जी सर,
9: इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला, अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है। वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है, ये होता है, तो होना चाहिए। और जैन जी वगैरह ऐसी है ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता।
10: आप क्या मानते हैं?
9: विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब जब पूछा गया तब मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जैन जी जैन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है।
10: अरे वाह, बढ़िया है।
9: और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
2: सो सॉरी।

0: don't be crazy. Bro, time has changed. Now future is Gen Z.
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
2: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
3: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
4: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस तेल में।
6: ईएमआई में राहत का इंतजार करने वालों को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद मायूसी हाथ लगी है। दरअसल उम्मीद के अनुसार ही सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25% पर स्थिर रखा है। रेपो रेट स्थिर रहने से एफडी और बचत खातों की ब्याज दरों पर तत्काल असर की संभावना कम है। वहीं आरबीआई ने अपना रुख न्यूट्रल रखा है, यानी आगे हालात देखकर फैसला होगा।
7: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic conditions and the economic outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%. Consequently, the STF rate remains at 5% and the MSF rate and the bank rate at 5.5%.
6: लेकिन रसोई के बजट पर महंगाई का असर देखने को मिल सकता है। दुनिया भर में चल रहे तनाव और कच्चे तेल के दामों में उतार चढ़ाव की वजह से आने वाले दिनों में खाने पीने का सामान थोड़ा महंगा हो सकता है। आशंका है कि सब्जी और तेल के दाम बढ़ने से महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है। वहीं अल नीनो और मानसून को लेकर बनी अनिश्चितता का असर खेती और खाद्य कीमतों पर पड़ सकता है। खास बात है कि खाद्य और ईंधन कीमतों को छोड़ दिया जाए तो कोर इन्फ्लेशन फिलहाल काबू में है। राहत की बात यह है कि ग्लोबल मार्केट में भारी उथल पुथल के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है।
7: बॉन्ड मार्केट सेंटिमेंट्स रिमेन बेयरिश, रिफ्लेक्टिंग फिस्कल सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स। हाउएवर, इक्विटी मार्केट्स ड्रिवन बाय टेक स्टॉक्स रिमेन अपबीट।
6: कुल मिलाकर आरबीआई ने फिलहाल ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। ऐसे में ईएमआई में राहत का इंतजार थोड़ा और लंबा हो सकता है। हालांकि केंद्रीय बैंक का मानना है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और महंगाई पर नजर बनाए रखते हुए ग्रोथ को समर्थन दिया जा सकता है। आज तक ब्यूरो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
2: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.

रांची में सरकार से वार्ता की तैयारी, सिर्फ छात्रों का 7 सदस्य दल करेगा बातचीत, सीएम सोरेन का बयान, समस्याएं सुनेंगे, बड़े सुधारों की ओर बढ़ेंगे। संसद में गतिरोध के बीच सोमवार तक स्थगित दोनों सदन, कांग्रेस ने 10, 11 और 12 अगस्त के लिए अपने सांसदों को मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया। एनडीए में नई एंट्री लेने वाले लोकसभा सांसदों से प्रधानमंत्री मोदी की नाश्ते पर मुलाकात, कहा संसद की डिबेट में भाग ले। महाराष्ट्र के सांसदों से बोले, विकास कार्यों में कोई दिक्कत आए तो सीधे मुझसे मिले। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, जेंजी हमारी पीढ़ी से ज्यादा देशभक्त और ईमानदार, आंदोलन का मतलब राष्ट्र विरोध नहीं, प्रियंका गांधी बोली नहीं चाहिए सर्टिफिकेट। चंडीगढ़ में सरकारी कर्मचारी संघ का मान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, हालात बिगड़ने पर पुलिस ने छोड़ी पानी की बौछार, पंजाब विधानसभा की तरफ आ रहे थे मार्च।

0: मिडिल ईस्ट में अमेरिका का खेल खत्म। अमेरिकी सुरक्षा से उठा खाड़ी देशों का भरोसा। पश्चिमी नाटो के मुकाबले मुस्लिम नाटो। सऊदी को हुती विद्रोहियों इराकी आतंकियों से खतरा। तुर्की पाकिस्तान के साथ सऊदी ने नया गठबंधन बनाया। इसराइल ने भी अमेरिका को दिया झटका। हवाई अड्डे से अमेरिकी तेल टैंकर विमानों को हटाया। हथियारों की कमी पर ट्रंप का नया झूठ। मैदान छोड़ने से पहले बोले जल्द खत्म होगा युद्ध।
1: नमस्कार, रणभूमि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। क्या मिडिल ईस्ट में अमेरिका का खेल खत्म हो रहा है? ये सवाल इस वजह से भी उठ रहे हैं क्योंकि आज भी मध्य पूर्व में एक ऐसा नया सैन्य गठबंधन जन्म ले रहा है और ये गठबंधन इस बात का इशारा कर रहा है कि अमेरिका से खाड़ी देशों का भरोसा उठता जा रहा है। मिडिल ईस्ट में ऐतिहासिक बदलाव से जुड़ी ये चार तस्वीरें पूरी कहानी बयां करती है। पहली तस्वीर मक्का में धार्मिक यात्रा कर रहे पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर की है, जिनके साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और कैबिनेट के दूसरे सहयोगी भी मौजूद हैं। लेकिन इनका ये दौरा सिर्फ धार्मिक नहीं है बल्कि रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज मध्य पूर्व में एक नया अलायंस जन्म ले रहा है जिसमें सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की शामिल हो चुके हैं। आखिर इस सैन्य गठबंधन का मकसद क्या है? आखिर कंगाल पाकिस्तान को इस गठबंधन से क्या हासिल होने वाला है और आखिरकार पाकिस्तान इसमें शामिल क्यों हो रहा है? हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन इतना तय है कि अमेरिका अब मध्य पूर्व की जंग में किसी भी कीमत पर निकलना चाहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि युद्ध जल्द खत्म किया जाएगा, लेकिन इसकी वजह क्या अमेरिका के पास हथियारों की कमी है या ये आपको भी बताएंगे। लेकिन अमेरिका के लिए ये बुरी खबर इसराइल से भी आ रही है जहां पर उसके विमानों को हवाई अड्डा छोड़ने का फरमान नेतन्याहू सरकार ने जारी कर दिया। इसके पीछे की वजह है आपको क्या वजह है ये भी आपको बताएंगे। इन तमाम खबरों पर विस्तार से आपको विश्लेषण करेंगे, आपको बड़ी खबर बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक बड़ी खबर बता दें जो लगातार यमन से आ रही है। जी हां, यमन से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर ईरान के समर्थन पाले वाले हूती विद्रोहियों ने यमन के आधिकारिक सैन्य कैंप पर मिसाइलों से हमला कर दिया। यमन में एक बार फिर से गृह युद्ध भड़क गया है। हूती विद्रोहियों ने हरमौत और कई प्रांतों पर यमनी सैनिक कैंपों पर मिसाइलों से हमले कर दिए हैं, जिसमें कम से कम 30 सरकारी सैनिकों के मारे जाने की खबरें भी आ रही है और 15 अन्य लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। यह हमला उन सरकारी सैनिकों के कैंप पर हुआ है जिनका समर्थन सऊदी अरब करता है। इस हमले में के लिए अलग खास तौर पर अलजॉफ से लगभग 8 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई और साथ ही विस्फोटक ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। हूती विद्रोहियों के मुताबिक मिसाइल और ड्रोन के लिए किए गए हमलों में सैकड़ों लोग हताहत और घायल भी बताए जा रहे हैं। यमन ने जारी गृह युद्ध के दौरान बीते कुछ सालों में हुआ ये सबसे घातक, सबसे संवेदनशील या सबसे घातक हमले के तौर पर इसे देखा जा रहा है। 4 साल में लगभग शांति के बाद जंग फिर से छिड़ गई है।
2: अरब मदीने पत्र पत्र पत्र बता बता हम बता बखा बखा।
1: और आपको बता दें कि यह हमला इसलिए भी किया गया क्योंकि लगातार सऊदी अरब का समर्थन करने वाले सैनिकों पर सीधे तौर पर हूती बड़े हमले कर रहा। और एक बड़ी खबर सऊदी अरब से भी आ रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर अपने पूरे हाई लेवल डेलीगेशन के साथ सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का पहुंच चुके हैं। इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि कैसे मक्का में धार्मिक यात्रा करते हुए आप इन्हें देख सकते हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान के मेहमानों के लिए बैतुल्ला यानी पवित्र काबा के विशेष दरवाजे खोले गए थे। शहबाज शरीफ, आसिफ मुनीर, डिप्टी पीएम इशाक डार और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ समेत तमाम नेताओं ने काबा के भीतर नमाज भी अदा की।

और दुआ भी मांगी। लेकिन मक्का का ये दौरा सिर्फ धार्मिक यात्रा के तौर पर नहीं है, मक्का में पवित्र दुआओं का ये मंजर असल में एक बहुत बड़े और ऐतिहासिक सैन्य समझौते पर मोहर लगाने की तैयारी है। और यही खबर सबसे बड़ी खबर है। दरअसल जेदा में आज एक सैन्य समझौता होने जा रहा है, जिसे दुनिया भर के विश्लेषक या विशेषज्ञ मुस्लिम नाटो के नाम दे रहे हैं। इस ऐतिहासिक द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर दस्तखत करने के लिए सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के नेतृत्व के साथ तुर्की के राष्ट्रपति भी शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान के नेता कल ही सऊदी अरब पहुंच चुके थे और आज तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान भी यहां आने वाले हैं। इस समझौते का सबसे अहम सिद्धांत होगा कि एक पर हमला यानी सब पर हमला, यानी अगर इन तीनों में से किसी भी देश पर हमला होता है या भारी तरीके से या फिर भारी कोई हमला किया जाता है, अटैक किया जाता है, तो उसे तीनों देशों पर हमला ही माना जाएगा और तीनों मिलकर उसका जवाब देंगे। दरअसल नाटो का आर्टिकल 5 भी इसी को दर्शाता है और यही कहता है कि यानी एक पर हमला सभी नाटो मुल्क पर हमला माना जाएगा। इसी वजह से रणनीतिक तौर पर इसे मुस्लिम नाटो का नाम भी दिया जा रहा है। और इस गठबंधन की ताकत को देखें तो ये तीनों देशों की अलग अलग ताकत के तौर पर दिखाता है। आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं कि आखिरकार इसका सांकेतिक या फिर इसका महत्व क्या है। अगर आप देखें सऊदी अरब की बात करें, असीमित वित्तीय ताकत, सऊदी अरब के पास है चौथा सबसे बड़ा रक्षा खरीदार है और तुर्की से रक्षा तकनीक खरीदेगा। दरअसल ये हम आपको डिकोड करके बता रहे हैं कि आखिरकार हर देश का इसमें अपना महत्व या फिर अपनी लिए क्या छुपा है। अब तुर्की के लिए क्या छुपा है, तुर्की ड्रोन किंग है जिसके बायरेक्टर TB2 ड्रोन, आपको याद होगा यूक्रेन में इसका इस्तेमाल किया गया था, नाटो मानक के हथियारों से निर्माण किया जाएगा और अगर आप देखें 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान कान पर भी काम किया जाएगा। और ये इसलिए क्योंकि तीनों अलायंस में अपने अपने फायदे अपने अपने बड़ा देख रहे हैं। अब हमने आपको सऊदी अरब तुर्की की बात की, अब पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान परमाणु बम बनाने वाला अकेला मुस्लिम देश है जो इन तीनों दोनों के देशों के साथ इन्वॉल्व हो जाएगा। युद्ध के अनुभव वाली सेना है, एक्सपीरियंस है, खासतौर पर भारत के साथ कई बार मुंह की खा चुके हैं। सऊदी में 25,000 से ज्यादा सैनिक और JF-17 और 2 नेवी बेड़े भी शामिल है। यानी अगर आप देखें तो तीनों अपनी ताकत को संयुक्त रूप से इकट्ठा करना चाहते हैं। अब अगर आप देखें कि सऊदी अरब असीमित वित्तीय ताकत है, हम आपको लगातार तीनों के आप देख सकते हैं कि तीनों की ताकत या तीनों अपनी अपनी कौन कौन सी चीजें हैं जो इसमें एक दूसरे को फायदा पहुंचा सकते हैं, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इसे क्यों मुस्लिम नाटो का नाम दिया जा रहा है। जानकार मानते हैं कि ये नाटो की ही तर्ज पर बना एक ऐसा अलायंस है जो तीनों को फायदा पहुंचाएगा। और इसी बीच तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के बड़े और ऐतिहासिक दौरे पर सऊदी अरब के जेदा पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर मक्का के डिप्टी अमीर ने एर्दोगान का भव्य स्वागत किया, जहां सऊदी अरब तुर्की और पाकिस्तान के राष्ट्रीय झंडे एक साथ फहराए गए। एर्दोगान यहां सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और मक्का में मौजूद पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की यह ऐतिहासिक मुलाकात सुरक्षा रणनीतिक सहयोग के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। तीनों ही देश एक अहम रणनीतिक और सैन्य गठबंधन पर हस्ताक्षर भी करने वाले हैं। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है कि क्यों सऊदी अरब सैन्य गठबंधन खड़ा कर रहा है। दरअसल यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के दक्षिणी सीमावर्ती इलाकों नजरान पर मिसाइल और ड्रोन से बड़ा हमला किया है, जिसके बाद वहां भीषण आग लग गई। हूती सैन्य प्रवक्ता यहा सारीन के अनुसार उन्होंने नजरान प्रांत में एक संवेदनशील सैन्य ठिकाने और नजरान इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाकर सटीक ड्रोन से हमले किए। इसके बाद उड़ते धुएं और आग के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए। हूती विद्रोहियों ने अंधाधुंध गोलीबारी और प्रोजेक्टाइल्स किया इस्तेमाल किया, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा और आग की खबरें भी लगातार सामने आ रही। नजरान एयरपोर्ट पर रडार डैमेज होने की वजह से यहां विमान सेवाएं अनिश्चितकाल के लिए निलंबित भी कर दी गई। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल मालिकी ने कहा है, इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि इस हमले में 11 आम नागरिक भी घायल हुए हैं। घायलों में 7 सऊदी नागरिक और जिसमें एक 4 साल का बच्चा भी शामिल है, यानी इसमें एक पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल है और एक कहा जा रहा है कि यमनी नागरिक भी इसमें शामिल है।

0: और इस हमले से पहले सऊदी अरब को किसी बड़ी साजिश की भनक लग चुकी थी। सऊदी अरब का कहना है कि उसे कई खुफिया रिपोर्टों से पता चला था कि हूती विद्रोहियों के साथ मिलकर इराकी मिलिशिया सऊदी अरब पर जल्दी हमले करने की तैयारी कर सकता है। चौंकाने वाली बात यह है कि यह हमला IRGC यानी ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की देखरेख में ही होंगे। सऊदी अधिकारियों का कहना है कि हमलों की योजना की खबरें चौंकाने वाली हैं, क्योंकि रियाद तनाव कम करने और शांतिपूर्ण समाधान की कोशिशें कर रहा है। सऊदी अरब का कहना है कि बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ती हुई दिख रही है, इसके बावजूद उस पर हमले की प्लानिंग की जा रही है। सऊदी अधिकारियों का कहना है कि सऊदी अरब किसी भी आक्रामकता का जवाब देने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। और इस खुफिया जानकारी के बाद इराक की राजधानी में सुरक्षा का जिम्मा इराकी सेना ने संभाल लिया है। बगदाद में सबसे सुरक्षित माने जाने वाले ग्रीन जोन में इराकी काउंटर टेररिज्म सर्विस के खास बलों को तैनात कर दिया गया है। बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास भी सेना के बख्तरबंद वाहनों और टैंकों को मोर्चा संभाल लिया है। ग्रीन जोन में इराक के प्रमुख सरकारी कार्यालय संसद और विशेष और विदेशी दूतावास के विशेष अमेरिकी दूतावास भी स्थित है। यहां सेना की तैनाती ये बताती है कि सरकार को खुफिया इनपुट मिले हैं जिसमें ईरान समर्थित मिलिशिया इन महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों या विदेशी ठिकानों पर या एम्बेसीज पर हमला कर सकता है और उन्होंने अपने कब्जे में लेने के प्रयास भी कर सकता है। यह कदम इराकी सरकार और उनकी आधिकारिक सेना और देश के भीतर सक्रिय ईरान समर्थित सशक्त गुटों जैसे कताई हिजबुल्ला के बीच बढ़ते तनाव और अविश्वास को खुलकर सामने आने के बाद लिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार इराक के अंदर ये खबरें आ रही थी कि ईरान लगातार अपने समर्थित मिलिशिया के हवाले से अमेरिका की एम्बेसीज इरबिल और कई जगहों पर बड़े अटैक्स कर सकता है और यहां तक कि जो बगदाद के ग्रीन जोन पर है उस पर भी अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है। और जब मध्य पूर्व में इस तरह के हालात बने हुए तो और अमेरिकी सुरक्षा देने में नाकाम है तब सऊदी अरब को पाकिस्तान और तुर्की से ही कई और देशों के साथ गठबंधन की जरूरत महसूस हुई। आइए आपको बड़ी वॉल पर समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस समय अगर ईरान युद्ध के दौरान ये साफ हो गया कि अमेरिका खासतौर पर अमेरिका नाकाम है और नए गठबंधन का ऐलान क्यों किया जा रहा। दरअसल सऊदी अरब की पहल पर इस रेड सी अलायंस को बनाया जा रहा है। इसके पीछे सऊदी अरब की दिक्कत यह है कि वो एक तरफ ईरान से और दूसरी तरफ हूती से घिरता जा रहा है और अमेरिका से जो उसको विश्वास था, जो लगातार उम्मीद थी, अमेरिका उसे निभाने में, उसे पूरा करने में सक्षम नहीं है। इसी वजह से अब सऊदी ये अलायंस के ऊपर आगे काम करना चाहता। अब हूती विद्रोहियों के जवाब में सऊदी का यह गठबंधन है। दरअसल एक तरीके की सिक्योरिटी श्योरिटी चाहता है सऊदी की पाकिस्तान और तुर्की जैसे मुल्क उसको जरूरत पड़ने पर सैन्य मदद के साथ साथ उसको साजो सामान भी मुहैया करा सके, क्योंकि अगर ईरान नहीं माना और लगातार अमेरिका और ईरान की तलखी बढ़ी तो उसका खामियाजा सऊदी को ही सबसे ज्यादा भुगतना पड़ेगा। रियाद में मुख्यालय और कुल 14 सदस्य देश हैं। इसके अलावा आप देखें कि इस अलायंस को आगे बढ़ाने की कोशिश भी की जाएगी। इसके अलावा कुवैत, बहरीन, कतर, पाकिस्तान, तुर्की कई ऐसे देश हैं जो इसमें शामिल होंगे और खासतौर पर पाकिस्तान और तुर्की अब इसे इनिशियल तौर पर इसके साझेदार बन रहे हैं। और अमेरिकी नाकामी को लेकर ही एक नया मिडिल ईस्ट का अलायंस तैयार किया जा रहा है जिसमें मिस्र, जॉर्डन, यमन, बांग्लादेश और नाइजीरिया जैसे देशों को भी शामिल किया जा सकता है और जिबूती और सोमालिया सदस्य देशों में भी शामिल है। खासतौर पर UAE और ओमान और न्यूट्रल गठबंधन में शामिल नहीं है। दरअसल अमेरिका की जो डिपेंडेंसी थी मिडिल ईस्ट के तमाम देशों पर वो इतनी ज्यादा थी कि अब उन्हें सोचना पड़ रहा है कि अगर अमेरिका इस बूते पर काबिज नहीं होता या इसको हैंडल नहीं कर पाता तो फिर कैसे आगे बढ़ा जाए। इसके अलावा यमन के हूती विद्रोहियों से सऊदी की सुरक्षा को लेकर मेजर कंसर्न है। जिस तरीके से आपको एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ हूतियों के लगातार अटैक से सऊदी बहुत ज्यादा परेशान है और सितंबर 2025 में पाक सऊदी का एक रक्षा समझौता भी हुआ था जिसमें दोनों देशों ने यह माना था कि अगर किसी भी एक देश पर हमला होता है तो वो दोनों देश उसका मिलकर सामना करेंगे। पाकिस्तानी सैनिक और विमान युद्धपोत तैनात करेगा। इसके अलावा पाकिस्तान की आर्मी लगातार वहां पर अपनी प्रेजेंस को भी और ज्यादा स्ट्रांग करेगी। यानी आप मान के चलिए कि पाकिस्तान और सऊदी के बाद अब इसमें तुर्की जुड़ गया, और इस अलायंस को मजबूत करने के पीछे का मकसद साफ है कि ईरान की बढ़ती ताकत इन देशों के लिए बहुत ज्यादा मुसीबत का सबब बनती जा रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ चल रहे अमेरिका का युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से अच्छी बातचीत चल रही है और वो उसमें शामिल है। इसी आधार पर वो कह रहे हैं कि ईरान के युद्ध जल्द खत्म हो सकता है। हालांकि आपको यह भी बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे बयान पहले भी कई बार दे चुके हैं, वो कई बार ऐसा बात कह चुके हैं कि बातचीत बहुत सकारात्मक, बहुत पॉजिटिव नोट पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन उसके कुछ ही घंटों के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका ने ईरान पर हमले भी किए
1: हैं। $1.85, $1.95, so it passed Tuesday. I was in Iowa at a stop, and we had $1.95, another one, $1.85 a gallon. And we'll see those days pretty soon again, based on everything I see, as soon as the war ends. And I think it's going to end pretty soon. I don't think they can go much longer. Yeah, please.
0: ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान लंबे समय तक युद्ध नहीं लड़ सकता, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। अमेरिका के पास लंबी दूरी की मिसाइलों का स्टॉक बेहद कम रह गया है। बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई है, जहां पर ईरान के साथ बातचीत के बीच गोला बारूद की कमी की जानकारी लीक होने से डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं। उन्होंने गोला बारूद का स्टॉक कम होने की जानकारी सार्वजनिक होने पर गहरी नाराजगी जताई है। उनका मानना है कि इन जानकारियों की लीक होने से देश की कमजोरी जाहिर होती है और ईरान के खिलाफ चल रही बातचीत और सैन्य धमकियों के मामलों में वॉशिंगटन की मजबूत स्थिति कमजोर पड़ती नजर आती है। सीएनएन के मुताबिक कैंप डेविड में कैबिनेट की एक उच्च स्तरीय बैठक में डोनाल्ड ट्रंप ने मिसाइल भंडार में कमी की खबरों को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों से सीधे सवाल किए। हालांकि राष्ट्रपति को कई महीनों पहले से ही इसका पता था कि सप्लाई जरूरत के मुताबिक नहीं हो पा रही है, फिर भी इस बात से वो नाराज थे कि ऑपरेशनल कमियों, ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को सार्वजनिक कर दिया गया है, जबकि वॉशिंगटन तेहरान के खिलाफ सैन्य धमकियों का इस्तेमाल लगातार उन पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने के लिए भी कर रहा है। सुनिए, जब उनसे पूछा गया कि क्या सच में अमेरिका के पास हथियारों की कमी हो गई, तो उन्होंने क्या कुछ कहा और दुनिया भर में दिए गए हथियारों को वापस ले सकते हैं, ये भी उन्होंने कहा। आपको सुनाते हैं।
1: We have supplies of munitions all over the world, and if we ever needed them, we'd take that. We're supplied all over the world, but we're in very, very good shape. Russia.
0: ट्रंप चाहे कुछ भी कहते रहे, ट्रंप चाहे कितने ही दावे करते रहे, लेकिन मध्य पूर्व में अमेरिका की विश्वसनीयता को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। खाड़ी देशों के बाद अब अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी इसराइल ने भी अमेरिकी वायुसेना को बड़ा झटका दिया है। दरअसल इसराइल ने अमेरिका को साफ कह दिया है कि वो अपने एरियल रिफ्यूलिंग यानी हवा में ईंधन भरने वाले सैन्य विमानों को अपने बैन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से तुरंत हटा ले। इसराइल के परिवहन मंत्रालय ने भारी दबाव के बाद यूएस एयरफोर्स से बैन गुरियन एयरपोर्ट पर तैनात अपने टैंकर एयरक्राफ्ट को हटाने की और दूसरी जगह भेजने की बात कही। हाल के दिनों में मध्य पूर्व में जारी सुरक्षा घटनाक्रमों के बीच अमेरिका ने सुरक्षा का हवाला देकर इन जहाजों को इस एयरपोर्ट पर तैनात किया था, लेकिन इसराइल ने अपने सबसे व्यस्त पर्यटक और आप कह सकते हैं यात्रा सीजन का हवाला देते हुए अमेरिकी जहाजों को एयरपोर्ट खाली करने के निर्देश जारी किए। इसराइली अधिकारियों के मुताबिक अगस्त के महीने में 26 लाख से ज्यादा यात्री इस एयरपोर्ट पर इस्तेमाल कर चुके हैं। ऐसे में अमेरिकी सैन्य विमानों की मौजूदगी से ऑपरेशन प्रभावित हो रहे हैं। हालिया संघर्षों में ईरान हुती हमलों के दौरान जिस तरीके से अमेरिका ने अपने सहयोगियों को सीधी सुरक्षा देने से नाकाम रहा है, उससे सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों को अमेरिका से भरोसा उठ गया है। उन्हें नए क्षेत्रीय गठबंधन पैदा करने और उस पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर दिया। अब इसराइल का अपने सबसे प्रमुख हवाई अड्डों से अमेरिकी टैंकरों को हटाने पर मजबूर करना यह दिखाता है कि मध्य पूर्व में अमेरिका का दबदबा, अमेरिका की पकड़ कितनी ज्यादा कमजोर होती जा रही है। और अगली खबर भी सीरिया से। सीरिया में एक बार फिर से हिंसा की आग झुलस रही है। राजधानी दमिश्क में पास एक कार ब्लास्ट के अंदर 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह धमाका ड्रूज इलाके में हुआ है और इसके लिए सुन्नी कट्टरपंथियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। दरअसल जो साउथ डेमेस्कस है वहां पे द्रूस कम्युनिटी की बहुत ज्यादा मौजूदगी है, और द्रूस समुदाय इस्लाम से नहीं है बल्कि वो इस्लाम और उनके पैगंबर को नहीं मानता। हालांकि सीरिया और लेबनन में द्रूस की मौजूदगी एक मिनोरिटी के तौर पर देखी जाती है, यही नहीं उनके बशनर अल असद की सरकार के दौरान उनका साथ दिया था, या फिर आप कह सकते हैं वो न्यूट्रल रहे थे। और इसी बीच कहा जा रहा है कि द्रूस को लेकर एक बार फिर से उनके इलाके में बड़ा अटैक हुआ है। सीरिया में मौजूद राष्ट्रपति अहमद अल शारा जो सुन्नी है और पहले अलकायदा के आतंकी भी रह चुके हैं, उनके होते हुए यह हमला फिर से गृहयुद्ध का संकेत दे रहा है। दमिश्क में जिस जरामाना इलाके में यह धमाका हुआ है वहां ज्यादातर द्रूस समुदाय के लोग हैं और घायलों में कार का ड्राइवर भी शामिल था। जिस तरह से एक गाड़ी में विस्फोटक रखा गया, धमाका किया, उससे ये गहरी साजिश का इशारा करता है। खास तौर पर इसलिए भी क्योंकि ये धमाका दुकानों और सड़क के किनारे सामान बेचने वालों से भरी हुई एक व्यस्त और संकरी गली के हुआ है, जिसे निवासियों में अफरा तफरी मच गई। चले रणभूमि में वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकर देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
5: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस तेल में।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: मुल्तानी घो का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घो का कॉफ सिरप।
2: नहीं, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1930।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
1: जर्नलिस्ट के लिए इससे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नहीं हो सकता है कि अगर आप टाइम में पीछे जाके कोई चीज कवर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं, क्योंकि मैंने स्टार्ट एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर किया था, 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप लॉर्ड्स, वो फाइनल अगर मैं कवर कर पाती। लेकिन हमारा ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसने वो सब कुछ देखा है जो एक देश को गढ़ते हुए, अगर आपकी इच्छा है देखने की, तो वो सारा कुछ इंडिया टुडे का सफर है। और यही एक डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में जब पीवीआर आइनॉक्स में आप देखेंगे, तो वाकई इसे मिस नहीं करना चाहिए, इसे जरूर देखिए। पीवीआर आइनॉक्स 7 अगस्त onwards.
2: मैं देख रहा था कैसे खत्म हो रहा था बंगाल, डेमोग्राफी हैज बीन चेंज, हमारी सीमा असुरक्षित। भारत सरकार, पहले राजनाथ सिंह जी, उसका बाद अमित शाह जी, बार बार लेटर दे रहा है, भाई बॉर्डर के लिए जमीन तो दे दो, ये तो कोई पार्टी का मामला नहीं है, देश का मामला है, देश सबका है। नो नो नो नो, वोट बैंक, तुष्टिकरण, देश तो बर्बाद करो और पश्चिम बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश बना दो। मेरा घर का आदमी विपिन अधिकारी जी लेट, स्वतंत्रता संग्रामी, 8 साल ब्रिटिश का जेल में था। हम लोग पेट्रियोटिक फैमिली से आता हूं, भाई देश बर्बाद हो जाएगा, बंगाल खत्म हो रहा है, इसको सपोर्ट करना, ममता बनर्जी को सपोर्ट करना और मोहम्मद अली जिन्ना का सपना पूरा करना, ये दो एक ही बात ही था, इसको छोड़ना चाहिए।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: सांसदों से प्रधानमंत्री मोदी की नाश्ते पे हुई मुलाकात, कहा संसद की बहस में भाग लें। महाराष्ट्र के सांसदों से बोले, विकास कार्यों में काहे कोई दिक्कत तो मुझे सीधे मिले। जेंजी पर संघ प्रमुख के बयान पर प्रियंका गांधी का तंज, बोली नहीं चाहिए सर्टिफिकेट। भागवत ने कल कहा था कि नई पीढ़ी ज्यादा देशभक्त और ईमानदार। अंबेडकर नगर की रैली में सीएम योगी ने अखिलेश यादव को फिर से घेरा, कहा समाजवादी पार्टी की सरकार में लूटने निकल जाती थी चाचा भतीजे की जोड़ी, इन्होंने नहीं चलने दी विधानसभा। रांची में सरकार से वार्ता की तैयारी, सिर्फ छात्रों का 7 सदस्यीय दल करेगा बातचीत। सीएम सोरेन का बयान, समस्याएं सुनेंगे भी, बड़े सुधारों की ओर बढ़ेंगे भी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
0: रणभूमि में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पाकिस्तान और चीन को लेकर बड़ा बयान दिया। मुंबई में एक विशेष युवा संवाद कार्यक्रम में मोहन भागवत ने युद्ध के दौरान और उसके बाद बातचीत को लेकर जो बात कही है वो बेहद अहम है। मोहन भागवत ने कहा कि चीन पाकिस्तान के साथ युद्ध में सरकार का साथ दें, लेकिन युद्ध के बाद बातचीत फिर से शुरू होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सभी पाकिस्तानी दिल से भारतीयों के दुश्मन नहीं है। और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने चीन और पाकिस्तान से रिश्तों की बहाली पर जोर भी दिया। उन्होंने कहा कि हमें पहले से मौजूद संबंध तोड़ना नहीं चाहिए। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि ना तो सभी पाकिस्तानी नागरिक पूरे दिल से भारत के दुश्मन है और ना ही भारतीय नागरिक उनके दुश्मन है।
2: पाकिस्तान और चीन और ये दो देशों हमारे साथ काफी बार लड़ाई होती रहती है। जब लड़ाई होती है तभी भारत में विचार ऐसा आता है कि वी शुड नॉट टॉक टू देम दैट बिकॉज दे आर फाइटिंग अगेंस्ट अस। व्हाट इज योर टेक ऑन सिविल टू सिविल, सिविलियन टू सिविलियन टाइम्स इन द टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इवन अदरवाइज, शुड दे कंटिन्यू एंड इफ सो हाउ?
3: इन द टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वी हैव टू गो विथ व्हाट एवर अवर गवर्नमेंट मिलिट्री डज, but that should not sever the ties which are already there. You have given 2 examples, Pakistan and China. China people say that for 2000 years Bharat has given us some values and Pakistan was Bharat less than 100 years before. This should not be forgotten. These ties cannot be severed. They can put at hold till conflict is there. But what is the solution? Bharat solution. Bharatiya solution is not conquering or obliterating others. To form that harmonious assimilative process, that requires dialogue. So conflicts may halt all these relations, but they cannot save us. They should not. Sometimes, after resolution of conflict, we have to take up the sutra from where we have left it, and we have to continue. So permanent enmity, permanent hatred is not the solution. When there is some trouble, we have to look after it, and there is a way to look after it. We have to be all for that way. But that is a temporary thing. It comes due to politics. It is not that the Pakistanis are wholeheartedly enemies of Indians. That is not the way. Or Indians are like that. It is not there. But states, politics, international borders, that is also there. That is a fact of life. So during conflict, we are with our government. We are with our military. But we know that sometimes it has to cease and we have to be one.
2: Humanity is one.
0: Humanity is one. आपने मोहन भागवत का बयान सुना, अब आपको सरकार का पक्ष भी बता देते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संसद में पाकिस्तान से बातचीत को लेकर जो बयान दिया है वो संघ प्रमुख के बयान से बिल्कुल अलग है। यानी एस जयशंकर ने साफ कर दिया है कि युद्ध के बाद भी पाकिस्तान से बात नहीं होनी चाहिए। दरअसल एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद खत्म होने के बाद भी भारत पाकिस्तान के रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं, यानी आतंकवाद खत्म हुए बिना सामान्य संबंध नहीं हो सकते। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते तभी आगे बढ़ सकते हैं जब माहौल आतंकवाद, दुश्मनी और हिंसा से मुक्त हो। सरकार का कहना है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपनी सरकारी नीति के तौर पर सीमा पर आतंकवाद का इस्तेमाल जारी रखा हुआ है। और उन्होंने पहलगाम हमले को लेकर कहा कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को रोक दिया था, अटारी चेक पोस्ट को बंद कर दिया था, वीजा पर पाबंदी लगा दी गई थी और राजनयिक मौजूदगी कम कर दी गई थी। भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मौजूदा आतंकी ढांचे को निशाना बनाते हुए सैन्य कार्रवाई भी की थी। हालांकि खराब रिश्तों के बावजूद राजनयिक मिशन काम कर रहे हैं। डीजीएमओ के बीच बातचीत और मिसाइल टेस्ट की सूचनाओं और परमाणु ठिकानों और कैदियों से जुड़ी जानकारी का आदान प्रदान भी जारी। पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत सीमा पार आतंकवाद और उसके ढांचों का जवाब देगा। उन्होंने साफ कर दिया है कि भारत पाकिस्तान ब्लैकमेल को खारिज करेगा और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए व्यापक कदम उठाएगा। आपको बता दें कि मोहन भागवत ने बातचीत की बात कही, जब युद्ध नहीं हो शांति के बाद बातचीत होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से विदेश मंत्री ने साफ कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान अपने आतंकवाद वाले एजेंडे और लगातार दुश्मनी और साजिशों को नहीं रोकता तब तक बातचीत करने का कोई फायदा नहीं। बातचीत तभी बढ़ सकती है जब हिंसा रोकी जाए, आतंकवाद रोका जाए और इन साजिशों पर लगाम लगाया जा सके।

0: और पाकिस्तान के हद तक आतंकवाद फैला रहा है। इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय खुफिया एजेंसी के एक बड़े और सनसनीखेज खुलासे से सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। दरअसल आज तक को मिले इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI गाजा युद्ध और आतंकी संगठन हमास के पैटर्न का इस्तेमाल कर जम्मू कश्मीर में अपने घटते आतंकवादी नेटवर्क को फिर से रिवाइव करने, जिंदा करने की साजिश रच रही है। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार ISI और लश्कर तोयबा, LET और जैश ए मोहम्मद जैसे ग्रुप आतंकवादियों को हमास की तर्ज पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसमें एक साथ कई दिशाओं में घुसपैठ, अर्बन असॉल्ट यानी शहरों में हमला करने की रणनीति और समुद्री रास्तों में से ऑपरेशन चलाने के तरीके भी सिखाए जा रहे हैं। इस नापाक संगठन का केंद्र पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर रावलाकोट को बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक यहां आयोजित सम्मेलन में हमास के आतंकियों को लश्कर और जैश के आतंकी सरगनाओं के साथ मंच साझा करते हुए भी देखा गया था। इतना ही नहीं, खुफिया रिपोर्ट में तुर्की में बनी 9mm की जिगाना पिस्टल को लेकर भी एक बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। ये छोटे और आसानी से छिपे वाले हथियार कश्मीर घाटी और पुंछ रजौरी सेक्टर में आतंकियों को भेजे जा रहे हैं। उनसे कई और सुरक्षा बलों ऑपरेशंस के दौरान बरामद भी किए गए। ISI की मंशा गाजा युद्ध के जो भावनात्मक मुद्दा है उसका इस्तेमाल कर सोशल मीडिया के जरिए स्थानीय युवाओं को माइंड वॉश किया जा सके और उन्हें भड़काया जा सके, लेकिन भारतीय सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसी इस पाकिस्तान हमास नेक्सस पर पूरी नजर बनाए हुए हैं और इस नई रणनीति को नाकाम करने के लिए घाटी में घेराबंदी और कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। और अगली खबर का रुख करते हैं जो थाईलैंड से। थाईलैंड में राजधानी बैंकॉक में भारी इलाकों में आ रही है, जहां पर एक छात्र की गोलीबारी में 8 लोगों की मौत हो गई है। बैंकॉक के एक स्कूल में आज सुबह करीब 10 बजे एक 14 वर्षीय छात्र ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। इस दिल दहला देने वाली घटना में कुल 8 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें हमलावर छात्र खुद भी शामिल है। स्कूल आने से पहले 14 साल के छात्र ने अपने घर पर अपने दादा और दादी की गोली मारकर पहले हत्या कर दी। वो उन्हीं के साथ रहता था। इसके बाद वो अपने स्कूल आ गया और बिल्डिंग की 5वीं और 6ठी मंजिल पर पहुंच गया। अंधाधुंध गोली बरसानी यहां शुरू कर दी। हमले में स्कूल के 3 शिक्षकों और 3 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। करीब 1 घंटे तक चले इस खूनी खेल के बाद हमलावर छात्र ने खुद भी गोली मारकर अपने आप को गोली मार ली, जिसमें अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। इस हमले में 15 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई छात्र गोलीबारी से बचने के लिए खिड़कियों या दीवारों से कूदने और भागने के चक्कर में चोटिल भी हो गए। थाईलैंड पुलिस के अनुसार हमलावर ने घटनास्थल पर 26 राउंड फायरिंग किए और पुलिस को मौके से 34 अतिरिक्त जिंदा कारतूस भी मिले, जिससे साफ है कि वो बड़े कत्लेआम की तैयारियों को लेकर यहां पहुंचा था। हमले में इस्तेमाल की गई 9mm की पिस्तल बरामद भी कर ली गई है और हमलावर इसी स्कूल की 9वीं कक्षा का छात्र बताया जा रहा है। और इन खबरों के बाद अब रुख करते हैं दिल्ली का। जी हां, दिल्ली में लगातार हो रही बारिश, जहां से लगातार इस तेज बारिश का असर अब सड़कों पर साफ देखा जा सकता है। दरअसल इस बारिश की वजह से लोग परेशान हैं और खासतौर पर MB रोड पर भारी जलभराव हो गया है, जिससे यातायात बुरी तरीके से प्रभावित हो गया। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें सड़क पर करीब 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। जलभराव की वजह से कई वाहन बीच रास्ते में फंस गए, जबकि दोपहिया और छोटे वाहनों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। लगातार बारिश से कापासहेड़ा बॉर्डर के पास भी भारी जलभराव हो गया।
1: राजधानी दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बीच काफी जलभराव हो रहा है। अभी हम दिल्ली के MB रोड पर हैं, जहां पर आप देखेंगे जलभराव किस तरीके से हुआ है और किस तरीके से बस को निकालने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अब स्कूल का टाइम बीत रहा है, बच्चों को बाहर घर पहुंचाना है और स्कूल को लौटना है, तो जैसे तैसे निकालने का प्रयास। देख सकते हैं कितना सड़क डूबा हुआ है, कुछ लोग भी हैं, हम उनसे बात भी करेंगे। कितना फीट तक पानी भर गया है यहाँ पर?
2: ये मैं ईमानदारी से बताऊँ, मेरी आप देख सकते हैं घुटने से ऊपर और कमर से हल्का सा नीचे पानी है। पर मैं एक सवाल कर, जैसे कि आपको मैं बस इतना जरूर कहूंगा, सरकार कोई भी आ जाए, अगर वो जमीन पे काम नहीं करेगी तो यही हाल रहेंगे।
1: हैं ये आर्मी मैन हैं और इनकी भी गाड़ी बुलेट से जा रहे हैं, इनकी फंस गई है, आपकी भी बंद हो गई।
3: हाँ कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट कर लेंगे।
1: यही स्थिति हो रही है और दरिया जैसा स्थिति यहाँ पर एमबी रोड पर बनता हुआ नजर आ रहा है। जैसे तैसे लोग गाड़ियां निकालने का प्रयास कर रहे हैं और जब गाड़ियां निकाल रहे हैं तो जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं उस तरीके की लहरें जो है सड़क पर देखने को मिल रहा है। आशुतोष कुमार, दिल्ली आज तक।
0: दिल्ली की तस्वीरें तो आपने देख ली, लेकिन अब आपको देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें भी दिखाते हैं। बात करते हैं पंजाब के लुधियाना की, जहां पर सड़क धस गई है और छोटी मोटी नहीं बल्कि 30 फीट तक का गड्ढा हो गया, पूरी ट्रैक्टर ट्रॉली इसमें समा गई। तो वहीं आगरा के कमला नगर में भी कर्मयोगी कॉलोनी में सड़क धस गई है। फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में भी ट्रॉमा सेंटर के पास फवारा फूट पड़ा है। और ये तीनों तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि कैसे लगातार अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें और खबरें आ रही हैं।
4: ये स्मार्ट सिटी लुधियाना है और सामने जो गड्ढा देख रहे हैं यही स्मार्ट सिटी की हकीकत है, जहां देखते ही देखते सड़क जमीन में समा गई। ये तस्वीरें लुधियाना के पौच इलाके किचलू नगर की हैं, जहां अचानक मुख्य सड़क धस गई। सड़क का करीब 30 फीट हिस्सा बैठ गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसा उस वक्त हुआ जब एक ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क किनारे खड़ी थी, अचानक उसका एक पहिया सड़क में धस गया। चालक ने किसी तरह वाहन को बाहर निकाला, लेकिन कुछ ही देर बाद पूरी सड़क तेजी से धसने लगी और देखते ही देखते विशाल गड्ढे में बदल गई।
5: देश के पहले 20 स्मार्ट सिटियों में शामिल होने वाले शहर लुधियाना कितना को स्मार्ट हो पाया है इसकी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि हर बार जब भी लुधियाना में बारिश आती है तो एक बड़ा हादसा लुधियाना की सड़कों पर देखने को मिलता है। कुछ दिन पहले आपको दिखाया कि बरसात में एक सड़क पर चलती गाड़ी खड्डे में समा गई, तो आज सुबह भी लुधियाना में बरसात आई है और तस्वीरें आपको स्मार्ट सिटी लुधियाना की दिखा रहे हैं कि कैसे स्मार्ट के बाद एक सड़क पर सुबह इस सड़क पर गहरा खड्डा पड़ जाता है और उसमें एक ईंटों से भरी हुई ट्राली उसमें फंस जाती है, जिसको जब निकाला जाता है तो देखते ही देखते कई फिट गहरा खड्डा जो है इस सड़क पर दिखाई दे रहा है। क्या वाकई में लुधियाना स्मार्ट हो पाया है, कितना स्मार्ट हो पाया है, तस्वीरें हर बारिश के बाद खुद बयान कर पाती हैं कि पंजाब की सबसे बड़ी नगर निगम और देश के पहले 20 स्मार्ट सिटियों में शामिल लुधियाना शहर की असली तस्वीर क्या है।
4: सड़क धसने के साथ ही नीचे बिछी सीवरेज पाइपलाइन भी टूट गई। तेज बहाव के कारण गड्ढा और बड़ा होने का खतरा पैदा हो गया। इसके बाद नगर निगम और पुलिस ने पूरे इलाके की बैरिकेडिंग कर रास्ता बंद कर दिया। जिस मकान के बाहर सड़क धसी वहां रहने वाले लोगों को भी एहतियातन सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मकान को सहारा देने के लिए निगम की टीम आरसीसी सपोर्ट लगाने में जुटी रही।
5: बात आती है हर बार कोई ना कोई बड़ा हादसा देखने को मिलता है, पहले होटल ओन के बाहर देखने को मिला, फिर पखोवार रोड पर सड़क में कार समागी और अब ये वाला हादसा देखने को मिला।
6: पहले तो आपकी मैं जानकारी में इजाफा कर दूं कि जो पखोवार रोड पे कार नहीं समाई वो गड्ढा पहले हुआ, उसके बाद ड्राइवर की अणगहली के साथ उसने लाके गड्ढे में कार फेंकी है, ठीक है। वो कह रहा है कि मुझे गड्ढा दिखाई नहीं दिया। दूसरा जो होटल ऑन वाला इशू है और ये इशू है, सेम रोड है, सेम प्रॉब्लम है, वहाँ भी ड्रिलिंग की गई है कंपनीज की तरफ से, यहाँ भी वही प्रॉब्लम है।
4: नगर निगम का कहना है कि शुरुआती जांच में आशंका है कि भूमिगत केबल या दूसरी लाइनें बिछाने के दौरान हुई लापरवाही की वजह से जमीन कमजोर हुई, जिसके चलते ये हादसा हुआ।
7: सुबह 7 बजे 6:30 बजे से इन्फॉर्म किया हुआ, 4 बजे जाके इनका थोड़ा सा काम शुरू हुआ है। कभी लेबर नहीं है, कभी गाड़ी नहीं है, मतलब ये इतना बड़ा डिजास्टर की वेट कर रहे हैं कि कोई ना कोई यहाँ हादसा आए उसके बाद हम जागे।
4: अब जरा स्मार्ट सिटी आगरा का भी हाल देख लीजिए। ये आगरा का कमल नगर है, पौच इलाका माना जाता है, लेकिन सड़क के बीचों बीच 5 फीट से अधिक गहरा गड्ढा हो गया। ये समाजवादी पार्टी नेता नितिन कोहली है। आगरा कर्मयोगी कॉलोनी में गड्ढा हुआ तो खुद गड्ढे में उतरकर नापने लगे कि इसकी गहराई क्या है।
8: जहाँ जहाँ देख लीजिए, जब परसों की बात है कि हरिपर्वत एमजी रोड पर गड्ढा हो गया था, आज यहाँ हुआ, कुछ दिन पहले आपका डी ब्लॉक में गड्ढा हो गया, तो जहाँ आप देखेंगे उससे पहले।
4: आगरा में इस तरह से सड़कें धसने से इनकी गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। जलकल विभाग के अफसर भी मौके पर पहुंचे और जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। आज तक ब्यूरो।
0: और चलिए रणभूमि में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: सावन के पवित्र महीने में कांवड़ यात्रा चल रही है और उसी यात्रा के बीच साजिद रशीदी का अपमानजनक और भड़काऊ बयान आया है। ऐसा बयान जिसे लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है।
1: क्या जो लोग सड़कों पर बैठकर भांग मसल रहे हैं वो शिव भक्त हैं? क्या जो लोग सड़कों पर बैठकर शराब पी रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं, क्या वो शिव भक्त हैं? क्या जो लोग पुलिस वालों को वर्दी में होते हुए मार मार कर अधमरा कर दें वो शिव भक्त हैं? क्या वो लोग जो बच्चों की वैन जो स्कूल जा रही थी उसके शीशे तोड़ दें, बच्चों को इंजर्ड कर दें, वो शिव भक्त हैं? ये शिव भक्ति है, ये कांवड़ है? मैं ऐसे लोगों को नशेड़ी, भंगेड़ी, लूटपाट करने वाला और आतंकवादी तक बोलता हूँ।
0: साजिद रशीदी ये ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। मौलाना के ऐसे विवादित बयान को लेकर बीजेपी बौखलाई हुई है। कांवड़ियों को नशेड़ी, भंगेड़ी और आतंकवादी बताने वाले बयान के विरोध में मामला अब पुलिस तक पहुंच गया है। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली पहुंचे और मौलाना के खिलाफ तहरीर दी। उन्होंने आतंकी वाले बयान को लेकर पलटवार भी किया।
2: अब बहुत हो गया है ये मौलाना, अगर कौड़िये खड़े हो गए तो मौलाना की पीढ़ियां नहीं बचेंगी। और ये वही लोग हैं जिनको पाकिस्तान जाना चाहिए था। ये देश धर्म के आधार बटा था कि जो यहाँ राम का नाम लेंगे, सनातन संस्कृति के अनुसार रहेंगे, उनका सम्मान होगा, उन्हें सारी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन अगर सनातन का अपमान करेंगे तो उनके लिए पाकिस्तान बना था।
0: नंद किशोर गुर्जर ने कहा है कि कांवड़ियों को आतंकवादी कहना सनातन का अपमान है। उन्होंने मौलाना पर FIR दर्ज कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने की मांग की है और कहा है कि मौलाना को ऐसे बयान के लिए फांसी होनी चाहिए। आशीष श्रीवास्तव के साथ संतोष कुमार शर्मा, लखनऊ आज तक।
3: हर दिन परगे जी खड़े होते हैं, जो लिख के लाते हैं सेम चीज पढ़ने लग जाता है। बार बार उसका हाथ मौके देते हैं चेयरमैन सर और खड़गे सर सेम चीज बोलते हैं। ये रेपुटेशन है और ये रोल हमारे लीडर ऑपरेशन के लिए। और सर कांग्रेस के ये नए सदस्य आए हैं, इनके नाम है तरुण खेड़ा, इनके अभी मैडम स्पीच भी नहीं हुआ, अभी मैडम स्पीच भी नहीं हुआ,
4: अब रिजू से मुझे सीखना पड़ रहा है। अरे रूल मैं भी ले रहा ना, और आपके चेंबर में आके बोलते हैं रोज वही लिख के आकर पढ़ते हैं। ये अगर रूल्स नहीं पढ़ूंगा, अगर मेरा मैटर अगर नहीं पढ़ूंगा, क्या तुम DSO में पढ़ूं? अरे इट इज माय राइट व्हाट टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, हाउ टू स्पीक। दिस इज द रूल बुक एंड दिस रूल बुक व्हाट इट सेज, यू आर इंसल्टिंग माय मेंबर एंड पवन खेड़ा, यू टुक हिज नेम एंड यू आर इंसल्टिंग हिम एज इफ यू आर एवरीथिंग।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
2: सो सॉरी।

0: दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक मुक्त परीक्षा को लेकर जिन जी ने जो अलग जगाई उसके गूंज अब तक सुनाई दे रही है।
1: I believe in the Shatabdi year, the 100th year, for the first time in terms of young people, in the form of a question answer session, none other than the chief of RSS, Shri Mohan Bhagwat ji.
0: यह मुंबई की तस्वीर है। मौका था इंडिया इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस यानी IIMUN की 15वीं वर्षगांठ का। इस मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जेन जी और जेन अल्फा के साथ संवाद किया और खुलकर अपनी बात रखी।
2: अभी जो हुआ है ग्रीवंस तो जेनाइन है, भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा इसलिए बात होती है, तो डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग के बाद नहीं होता तो क्या करना बात की बात।
0: भागवत की ये बातें जेन जी के आंदोलन पर सवाल उठाने वालों को भी करारा जवाब है।
2: अगर जेन जी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रहे, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला,
3: बिल्कुल
2: उसको ठीक करना चाहिए।
3: तो इसमें आप मानेंगे कि संवाद यदि पहले से शुरू हुआ होता तो ये बाद में विषय ज्यादा ऊपर जाता ही नहीं।
2: जो नहीं होना चाहिए वो जब होता है तो कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जाती, तभी होता है। किसकी है क्या है ये अलग बात है, लेकिन कमी तो रही है, ठीक हो जाएगी।
0: उन्होंने जेन जी को एंटी नेशनल कहने पर भी आपत्ति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जेन जी अपने ही लोग हैं, अपनी ही अगली पीढ़ी है।
2: जेन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है
3: जी सर।
2: इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला, अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है। वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है, ये होता है, तो होना चाहिए। और जेन जी वगैरह ऐसी है ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब पूछा गया तो मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है।
3: अरे वाह बढ़िया है।
2: और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है।
0: संघ प्रमुख भागवत की बातें जेन जी के सीधे दिल में उतर आई। नीट पेपर लीक के खिलाफ देश भर में प्रदर्शनों के बाद इसे संघ का युवाओं के साथ सबसे अहम संवाद माना जा रहा है। जंतर मंतर पर जेन जी के आंदोलन की वजह से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था। ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।

0: संसद में गतिरोध के बीच सोमवार तक स्थगित दोनों सदन। रिजिजू ने विपक्ष को घेरा। कांग्रेस ने 10, 11 और 12 अगस्त के लिए अपने सांसदों को जारी किया व्हिप। जेन जी पर संघ प्रमुख के बयान पर प्रियंका गांधी का तंज। बोली, नहीं चाहिए सर्टिफिकेट। भागवत ने कल कहा था, नई पीढ़ी ज्यादा देशभक्त और ईमानदार। अंबेडकर नगर की रैली में सीएम योगी ने अखिलेश को फिर घेरा। कहा, एसपी सरकार में लूटने निकल जाती थी चाचा भतीजे की जोड़ी, उन्होंने नहीं चलने दी विधानसभा। रांची में सरकार से वार्ता की तैयारी, सिर्फ छात्रों का 7 सदस्यीय दल करेगा बात। सीएम सोरेन ने कहा, समस्याएं सुनेंगे, बड़े सुधार की ओर बढ़ेंगे। लगातार बारिश से दिल्ली एनसीआर में जगह जगह जलजमाव। एमवी रोड पर कई फीट तक भरा पानी, गाड़ियों की आवाजाही में भारी दिक्कत।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत। दंगल में हम लगातार देश के नौजवानों के मुद्दे उठाते रहे हैं और आशाजनक बात यह है कि जंतर मंतर के आंदोलन के बाद अब देश की राजनीति, राजनेता और सिस्टम भी नौजवानों यानी जेन जी को बड़ी संजीदगी से लेने लगा है। यह बदलाव आप भी नोट कर रहे हैं कि देश के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद हर दल, हर नेता, सिस्टम जेन जी से कॉन्टैक्ट, कनेक्ट और डिस्कशन में शामिल होना चाहता है। अचानक से पीएम, सीएम, मंत्री सब रील्स बनाने में जुट गए हैं। संघ प्रमुख तक जेन जी से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनके सवालों के जवाब भी देते हैं। कभी फिंगर क्लैप करते हैं तो कभी क्लॉकेट भी कर जाते हैं। मतलब दशकों से जिस जनरेशन को सत्ता का मोहरा समझा गया, जिसके कंधे पर चढ़कर आंदोलन दर आंदोलन सत्ता की सीढ़ी चढ़ी जाती थी, वो जनरेशन अब बदल चुका है। नई पीढ़ी यानी जेन जी सिस्टम पर सवाल उठा रहा है, सिस्टम को एंगेज करना चाहता है और इसे बदलने की कोशिश भी लगातार कर रहा है। यही वजह है कि आज देश की राजनीति उसी और चलने की ओर करने की कोशिश कर रहे हैं। जिधर जेन जी चल रहा है उधर ही उनकी चलने की कोशिश भी रहेगी, लेकिन सवाल जेन जी के मुद्दों का है, जिसे सुलझाने का मकसद हसरत और फितरत हमारे देश की सियासत को अभी भी नहीं है। आज भी हमारे नेता जेन जी की आवाज को जंतर मंतर में देश विरोधी और रांची में संविधान सम्मत मानते हैं। आज भी हमारे देश के नेता चुनिंदा तौर पर छात्र हित की आवाज उठाते दिख जाते हैं। दंगल में हम यही चर्चा करना चाहते हैं कि जेन जी के मुद्दों पर आज भी सरकारें या राजनीतिक दल सिर्फ चुनावी राजनीति क्यों कर रही है। जेन जी के मुद्दों के समाधान की चर्चा देश में कभी छिड़ेगी भी या नहीं, ऐसे और भी सवाल है, उन पर हम दंगल में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं।

0: भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती। मुल्क की 65% आबादी की नौजवानी अब सियासी रवानी में बहने को तैयार नहीं है। उसने अपना मोर्चा खोल लिया है। चाहे भारी बरसात में 2 हफ्ते से आंदोलन कर रहे रांची के विद्यार्थी हों या कॉलेज में बदइंतजामी बदहाली के खिलाफ सिस्टम को जमीन दिखाते छात्र, ये जेंजी अब नेताओं की सियासत के चक्कर में अपने अधिकारों की अनदेखी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं।
1: बैठिए, पहले सीसीडीसी जमीन में बैठे तब बात करेंगे। बैठिए बैठिए, एहसास कीजिए। हाँ ठीक है, बात कीजिए।
2: आपका इनसे काम कहीं होता
3: है? सारे काम मेरे हाथ में नहीं, हर समस्याओं को मैं बढ़ा देता हूँ आती के साथ, लेकिन विलम्ब आगे होता है।
2: आगे
3: पहले
2: सुनो, ठीक है, आगे होता है।
3: कोई भी फाइल मैं बढ़ाता हूँ रजिस्ट्रार के यहाँ, रजिस्ट्रार के बाद जाता है कुलपति के यहाँ।
1: आपको पता नहीं अभी
0: छात्र नेता के व्यवहार की आलोचना हो सकती है, लेकिन धनबाद के कॉलेज का ये 27 जुलाई का वीडियो गवाही देता है कि विद्यार्थियों के मुद्दों को अनदेखा करने पर आक्रोश अब इस हद तक बढ़ चुका है। और इसी नाराजगी को देखते हुए मुल्क के नेता सतर्क और सियासत सहमी हुई, वरना जंतर मंतर के बाद कुछ ऐसी हवा चली है कि हर दल किसी न किसी तरह से जेन जी से मिलने जुलने उन्हें प्रभावित करने की कोशिश में जुट चुका है। चाहे वो पीएम मोदी के इंस्टा रील्स हो, राहुल गांधी के इंस्टा क्वेश्चन आंसर सेशन, चाहे वो मोहन भागवत का जेन जी कनेक्ट हो या राहुल गांधी का गूंज कार्यक्रम, हर दल को लगता है कि जेन जी से कनेक्ट रहे बिना देश की सियासत में मौजूद नहीं रहा जा सकता। और देश की मौजूदा सत्ता को दिशा दिखाने वाले आरएसएस ने भी माना है कि जेन जी के साथ अन्याय हुआ है। संघ प्रमुख ने माना है कि अगर जेन जी विरोध प्रदर्शन कर रहा है तो वो राष्ट्र विरोधी नहीं हो जाता। जेन जी पिछली पीढ़ी से ज्यादा ईमानदार और संवेदनशील भी है। ये नई पीढ़ी डिक्टेशन नहीं, सवालों का तर्कपूर्ण जवाब चाहती है। सरकार या सिस्टम के स्तर पर जेन जी की आवाज नहीं सुनी गई है और शिक्षा को व्यापार बना चुके सिस्टम को दोबारा सोचने की जरूरत है।
4: अभी जो हुआ है ग्रीवंस तो जेनाइन है। भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा इसलिए बात होती है, तो डायलॉग होना चाहिए।
0: जेन जी के साथ चंद मिनट गुजारने के बाद क्लॉक इट तक के स्लैंग सीख चुके मोहन भागवत को इसी जेन जी ने कबूल करा दिया कि उनकी आवाज सुनने में सरकार नाकाम रही।
5: मैं आप मानेंगे कि संवाद यदि पहले से शुरू हुआ होता तो ये बाद में विषय ज्यादा ऊपर जाता ही नहीं।
4: जो नहीं होना चाहिए वो जब होता है तो कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जाती, तभी होता है। किसकी है क्या है ये अलग बात है, लेकिन कमी तो रही है, ठीक हो जाएगी।
0: लेकिन इस कबूलनामे के बाद भी सियासत अपनी धार और रफ्तार छोड़ने को तैयार नहीं। नेता अब भी जेन जी के मुद्दे को चुनावी और विद्यार्थियों को सियासी मोहरा समझ रहे हैं।
6: हमारी डेलीगेशन गई है, हर चीज राहुल गांधी करेंगे, मोदी कुछ नहीं करेंगे। अमित शाह पार्लियामेंट में भी नहीं आएंगे और आप लोग आके पूछेंगे राहुल जी क्या करेंगे।
7: स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
0: हालांकि राहुल गांधी ने झारखंड के छात्रों के आंदोलन को भी जुबानी समर्थन दे दिया है।
8: राहुल गांधी जी को अभी याद आया कि हाँ झारखंड में भी बच्चे पढ़ते हैं, झारखंड में भी बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, और अभी वो पूरा इसको मिला दिया है कि नेशनल इशू करके। क्यों भाई, पंजाब के लेके बात करो, अभी कर्नाटक को लेके बात करो, केरल को लेके बात करो, इन सब जगह पे तो अपनी ही सरकार है आपकी।
0: नेता छात्रों के आंदोलन को आवाज दे या ना दे, आज का जेन जी सिस्टम से ये सवाल पूछने लगा है कि देश की शिक्षा व्यवस्था में 69% स्कूल शिक्षा का दारोमदार उठा रहे सरकारी स्कूल बदहाल क्यों है और उनमें शिक्षकों की भारी कमी क्यों है। 10 साल में 94,000 सरकारी स्कूल बंद या आपस में मर्ज हुए हैं और निजी स्कूल 2,88,000 से बढ़कर 3,39,000 कैसे हो गए। सरकार ने कहने को तो नई शिक्षा नीति लागू कर दी, लेकिन स्कूली टीचर आज भी पढ़ाई से ज्यादा मिड डे मील से लेकर भेड़ बकरी गिनने तक में परेशान रहते। सरकारी स्कूल कॉलेज से पढ़ लिख कर निकले विद्यार्थियों को नौकरियां नहीं मिल पा रही, लिहाजा शिक्षा के धंधेबाज दिन रात दोगुना चौगुना बढ़ते जा रहे हैं। और आज का जेन जी सिस्टम से सवाल पूछता है कि पिछले एक दशक में सरकारी यूनिवर्सिटी तो 45.4% ही बढ़ी, निजी विश्वविद्यालय में 149.3

0: 3% बढ़त क्यों हो गई? देश के 52,081 कॉलेज में 78% कॉलेज निजी क्यों? देश की उच्च शिक्षा में औसत नामांकन अनुपात सिर्फ 28.4% क्यों है? 2013-14 में 4.6% से 4.7% का शिक्षा बजट 2026-27 में 2.5% से 2.6% ही क्यों रहेगा? जवाब न तो सरकार देने को तैयार है न सिस्टम सुधरने को, लेकिन जंतर मंतर की जागरूकता यूं ही बनी रही तो सरकारों को भी और सिस्टम को भी जेन जी की बातें सुननी भी पड़ेंगी और समझनी भी। आज तक ब्यूरो।
1: तो एक नई चर्चा छिड़ी हुई है, जहां जेन जी वहां नेता, जहां जेन जी वहां राजनीति। एक वक्त था जब इसी जेन जी के आंदोलन को एंटी नेशनल, वायरस और बी टीम ऑफ टेररिस्ट कहा गया था, और आज वहीं पर मोहन भागवत कह रहे हैं कि उनकी समस्याएं जेन्युइन है और उनसे बातचीत होनी चाहिए। असली नेता वही है जो सिर्फ भाषण नहीं देता, असली नेता वही है सिर्फ जो सिर्फ चुनाव नहीं जीतता लेकिन नेतृत्व तैयार करता है। एक नया दौर क्या देश की राजनीति में शुरू होगा और क्या सचमुच में जेन जी की समस्याओं पर कभी इस देश में चर्चा होगी? हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रदीप भंडारी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से रागिनी नायक इस चर्चा में शामिल हो रही है, प्रोफेसर संगीत रागी हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट है और आशुतोष भी इस चर्चा में शामिल होंगे। तीन सवाल हमेशा की तरह इस पैनल के सामने। पहला सवाल, जेन जी के मुद्दों पर आज भी सरकारें या राजनीतिक दल क्या सिर्फ चुनावी राजनीति कर रहे हैं? दूसरा सवाल, जेन जी के मुद्दों के समाधान की चर्चा क्या देश में कभी छिड़ेगी भी या नहीं? और तीसरा सवाल, पढ़ाई और रोजगार देश की सरकारों की प्राथमिकता कब बनेगी? तीनों सवाल है और इसके पीछे के कारण भी हम आपको गिनवाएंगे। लेकिन प्रदीप भंडारी, अब तो मोहन भागवत भी कह चुके हैं कि जेन जी की समस्याएं जेन्युइन है और उस पर चर्चा होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। अगर वो किसी बात को लेकर आंदोलन करते हैं तो उसे एंटी नेशनल नहीं कहा जाना चाहिए। अब तो मोहन भागवत ने भी सभी सवालों के जवाब देते हुए इस बात को साफ कर दिया है। तो क्या अब राजनीति से परे होकर जेन जी के मुद्दों पर चर्चा होगी या सिर्फ राजनीति होती रहेगी?
2: हम हमेशा से साहिल जी जेन जी के मुद्दों को राजनीतिक लेंस से नहीं देखते हैं, इसीलिए भले वो दिल्ली हो जहां पे छात्रों की बात को सुनना हो या झारखंड हो जहां पे पिछले इतने दिनों से छात्र जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, सीबीआई प्रूफ मांग रहे हैं, पेपर कैंसिलेशन मांग रहे हैं, और कोई विपक्ष का नेता एक बार वहां पे नहीं गया, ना वहां पे जाके उनने सीएम आवास के बाहर घिरने का प्रयास किया, ना एक छात्र से मिला, वहां तो पॉलिटिकल रेजिग्नेशन भी नहीं मांग रहे। हम किसी में विभाजनकारी बात नहीं करते, हम दोनों को एक नजरिए से देखते हैं। आज राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि आज हमेशा वो छात्रों को ऐसे लेंस से क्यों देखते हैं कि जब उनके शासनकाल के अंदर छात्र कुछ मारे तो दिक्कत है। जैसे पंजाब में 6 पेपर लीक होते हैं, आप मैंने जितनी बात ना पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया, पंजाब में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा है, वहां के चीफ मिनिस्टर्स की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, 79% एजुकेशन बजट मोदी सरकार ने पिछले 12 साल के अंदर बढ़ाया। अगर मैं स्कूल और एजुकेशन बजट, लिटरेसी बजट की बात करूं तो 52,000 करोड़ से बढ़ाया गया। हायर एजुकेशन बजट की बात करूं तो 26,750 करोड़ से बढ़कर 79,000 करोड़ हुआ। ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बजट की बात करूं तो 1,39,289 करोड़ तक पहुंच गया, जो पहले सिर्फ 55,000 करोड़ और 70,000 करोड़ की तरफ था। अगर मैं सीट्स की बात करूं तो आईआईटीज हो गए जहां पे सीट्स का रिप्रेजेंटेशन 1.5 टाइम्स हो गया, नीट हो गया जहां पे सीट्स का रिप्रेजेंटेशन डबल हो गया। अगर आपकी पेपर लीक की बात हो गई तो डेटरेंट के रूप में हमें एंटी पेपर लीक बिल लेकर आए। तो हम हमेशा से ही सुनते हैं और अपने आप को इंप्रूव करने और फीडबैक लेने वाली सरकार है, पर मापदंड हमेशा दोहरे नहीं हो सकते। अगर हम लीक पे रेजिग्नेशन मांगते हैं दिल्ली में तो फिर उन्हीं लोगों को लीक पे रेजिग्नेशन जो है झारखंड के अंदर भी मांगना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि भाई पेपर लीक गलत है तो ऐसा नहीं हो सकता मेरा पेपर लीक गलत है, तेरा पेपर लीक ठीक है, तो पंजाब का पेपर लीक भी गलत है और वहां पे भी छात्रों को जो लाठियां मारी जा रही है, जो वहां पे छात्रों को वाटर कैनन कर रहा है, वो भी गलत है। तो ये सब हमेशा ही हम सम्मान है। तो मुझे लगता है कि जो आज आदरणीय सरसंचालक जी ने कहा है, जो कांग्रेस पार्टी आरएसएस को कल तक जो है वो देश विरोधी संस्था कह रही थी, आज उसको सोचना चाहिए जो उनको कोट कर रहे हैं कि आज उनके लिए आंखों खोलने की बात जो है आदरणीय सरसंचालक जी ने करी है। हम तो पहले से भी छात्रों की बात कर रहे हैं, तभी आज 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स हो चुके हैं,
1: अच्छी यात्रा है
2: और उसके साथ भी हम फीडबैक लेने को तैयार हैं,
1: बहुत अच्छा है।
2: यात्रा कर रहे हैं
1: नहीं, बहुत अच्छी बात है। प्रदीप भंडारी, मैं इस बात का स्वागत करता हूं क्योंकि जो सरकार या जो भी राजनीतिक दल फीडबैक लेने के लिए तैयार है वही देश को आगे लेके जा सकता है, भले वो बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी हो या इस देश की किसी कोई भी राजनीतिक दल हो जो इस राजनीतिक सिस्टम में फिलहाल काम कर रहा है। लेकिन ये भी एक अच्छी बात है कि जब आंदोलन शुरू हुआ था तब देश के शिक्षा मंत्री इसी आंदोलन को बी टीम ऑफ टेररिस्ट कह रहे थे। जब यह आंदोलन शुरू हो रहा था तब आपके अध्यक्ष इस आंदोलन के में से जुड़े लोगों को वायरसेस कह रहे थे और संघ के सह सर कार्यवाह इस पूरे आंदोलन को एंटी नेशनल कह रहे थे। एक बात अच्छी है कि आज मोहन भागवत ने, कल मैं भी इस कार्यक्रम में था और वहां पर बड़े साफ शब्दों में उन्होंने कह दिया कि इसको इस तरीके से कहना गलत
2: है। वहीं पे था,
1: कुछ आंकड़े आपने दिए, एक आंकड़ा नहीं नहीं बिल्कुल और एक आंकड़ा मैं भी आपको देना चाहता हूं प्रदीप भंडारी, क्योंकि ये भी सरसंघ चालक ने खुद ही इसी चर्चा के दौरान, इसी सवालों के जवाब के दौरान उन्होंने रखा हुआ है। उन्होंने कहा है कि ये दिन इस देश में देखना जरूरी है कि जीडीपी के मुकाबले 6% तक शिक्षा बजट हो तभी इस शिक्षा का कुछ हो पाएगा। शिक्षा के भीतर समस्याएं हैं और इसीलिए देश का युवा यहां पर खड़े होकर सवाल पूछने की कोशिश कर रहा है। प्रदीप भंडारी, तो राजनीति से परे होकर भी बातचीत होना चाहिए, यह बात इंपॉर्टेंट है।
2: आदरणीय साहिल जी, मैं भी उस वक्त वहां पे मौजूद था। आदरणीय सरसंघचालक जी ने ये भी बात कही कि उनने ये भी पढ़ा था कि वहां पे जो दिल्ली के अंदर कई लोग थे वो एंटी सोशल एलिमेंट्स आए थे, जिसको आपने भी कवर किया था, 989 हीनियस एक्यूज थे। तो हमें छात्रों से एंटी सोशल एलिमेंट्स को डिफ्रेंशिएट करना होगा और हमें ये भी मांगना होगा कि जो आम आदमी पार्टी का छोटा रिचार्ज है जो वहां पे रिप्रेजेंटेटिव होने का प्रयास कर रहा है, भले जितने भी तमाम लोग, उन सबका आम आदमी पार्टी का पास्ट प्रेसिडेंट है, तो वो एक पॉलिटिकल विंग है, दैट्स अ यूथ विंग ऑफ आम आदमी पार्टी। जो जेंजी छात्र वहां पे मुद्दों की बात करने आए उन मुद्दों को हमने सुना, तो भले वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो गए या किसी ने भी पास्ट में कहा, वो जो आम आदमी पार्टी का पॉलिटिकल विंग है उसकी बात कर रहा है। और आप और मैं भी ये बात मानते हैं कि छात्र कभी हाथ में पत्थर नहीं उठाता है, तो हमें उनको छात्रों से नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि 6% जीडीपी होना चाहिए, तभी 1.9% जीडीपी तक पहुंचा है, जो पहले 1.2% तक भी जीडीपी तक। और इसका फाइनल सोल्यूशन तो जीडीपी को बढ़ाना है, तभी पिछले 12 साल के अंदर जीडीपी डबल हो चुकी है, $2 trillion से $4 trillion, और IMF कहता है $5 trillion तक होगी। तो जब जीडीपी बढ़ेगी तब जाकर स्पेंड बड़ा होगा। और रिसर्च बजट की भी बात करूं, 1,00,000 करोड़ का पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में जो देश का रिसर्च का एलोकेशन है वो 1% तक जीडीपी तक पहुंच रहा है। तो मैं मानता हूं कि इतने समय तक पहले सोचना चाहिए था, पर अगर आप उठा के देखें साहिल जी, डिस्पैशनेटली किसी भी सेक्टर में एजुकेशन के
1: 0.7% रिसर्च एलोकेशन के आधार पर आज हम सोच रहे हैं, हमारे 0.7% है, 0.7% तक रिसर्च एलोकेशन है, और इसी के आधार पर हम सोच रहे हैं कि हम हमारे देश को 30 साल के बाद, चलिए चेक कर लेंगे। रागिनी नायक ने हाथ उठा लिया है, लेकिन रागिनी नायक सवाल आपकी तरफ भी जाता है, क्योंकि ये सिस्टम आज तैयार नहीं हुई, ये सिस्टम आज तैयार नहीं हुई है रागिनी नायक। कुछ आंकड़े मैं आपके सामने, नहीं नहीं ठीक है, मैं कुछ आंकड़े इनके सामने भी रखना चाहता हूं। पिछले एक दशक में सरकारी यूनिवर्सिटी 45.4% बढ़ी है, निजी विश्वविद्यालय, लेकिन निजी विश्वविद्यालय 150% की बढ़ोतरी हुई है, और इसकी शुरुआत कांग्रेस सरकार के समय पे भी हुई थी। और जो बात प्रदीप भंडारी ने करी, मुझे पता है कि आप भी ये सवाल उठाएंगे कि कहां अमित शाह इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, लाठीचार्ज का जवाब क्यों नहीं मिल रहा है। वो वहां पर सवाल उठा रहे हैं कि रांची के भीतर क्या हो रहा है, झारखंड सरकार में तो आप भी शामिल हैं, उसके तरफ आप क्या करना चाहते हैं। तो एक आंदोलन खड़ा हुआ, उसके जवाब में दूसरा आंदोलन खड़ा हो रहा है। क्या इसी नजर से आज जेंजी के आंदोलनों को देखना चाहिए, या मूलभूत समस्याओं पर भी कभी ना कभी चर्चा होगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी। कल हमने एक सर्वे दिखाया था, उसमें यह कहा गया कि सदन के भीतर जो चर्चा हुई वो चर्चा कारगर साबित नहीं हो रही है, लोग उससे संतुष्ट नहीं है, वो चाहते हैं कि सदन के भीतर चर्चा हो, और खास करके शिक्षा को लेकर, जेन जी के सवालों को लेकर।
3: साहिल जी, बड़ा अच्छा लगा कि कांग्रेस पार्टी क्या सवाल पूछेगी इसका पूर्वानुमान लगाकर आपने मेरे बोलने से पहले ही वो सवाल सामने रख दिए, पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से नहीं पूछा, उनसे पूछ लेते तो शायद कोई जवाब मिलता, पर बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, एक अनरजिस्टर्ड सांस्कृतिक संगठन RSS के सरसंघचालक मुंबई में जाकर स्वयं राजनीति करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपके चैनल पर आकर कहते हैं कि राजनीति नहीं करना चाहिए, प्रवचन देते हैं, तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे, पहले ये कहती हूँ। और जो आपने सवाल सामने रखे हैं उससे इतना एक बहुत ही सटीक और धारदार प्रश्न पूछती हूँ कि मोहन भागवत हैं कौन, कौन है मोहन भागवत इस देश के नौजवानों, छात्रों, जेंजी को देशद्रोही होने या न होने का सर्टिफिकेट देने वाले। और 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, राम बगल में छुरी, ये तो और ही कमाल की बात हो गई कि भाई आप के जो संघ गिरोह के लोग हैं, भले ही वो बजरंग दल हो, बीएचपी हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, युवा मोर्चा हो, यही लोग हैं जो सबसे ज्यादा युवाओं को प्रताड़ित करते हैं, यही लोग हैं जो सबसे ज्यादा विध्वंस यूनिवर्सिटी में पार्क में वैलेंटाइंस डे वाले दिन मनाते हैं। पर मोहन भागवत जी को कुछ याद नहीं आता। और इस मुद्दे से जुड़ी हुई बात मैं एक दो जरूर पूछना चाहती हूं कि मोहन भागवत जी को अचानक से 20-25 दिन बाद जब छात्र लाठियों से पिट गए, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए, लड़कियों के साथ अभद्रता अश्लीलता हो गई, माँ बहन की गाली दे दी, दिल्ली में पैलेट गन चल गई, सिवान में AK-47 चल गई, जब भेड़िया गटर छाप पंचर बनाने वाले दहशतगर्द
2: झूठ बोल रही है,
3: अचानक क्या क्या बोल दिया गया,
2: बोल रही है।
3: उसके बाद मोहन भागवत जी अचानक से अवतरित होते हैं और प्रवचन देने लग जाते हैं। तो पहले मुझे लगता है कि अपने गिरेवान में जरूर झांक कर देख लेना चाहिए कि आपकी बात पर
1: ठीक है। एक क्लैरिफिकेशन,
3: नहीं एक मिनट मुझे पूरा
1: राजनीति जी,
3: एक क्लैरिफिकेशन
1: नहीं, आप अपनी बात, नहीं आप अपनी बात रखिएगा, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। मैं उस कार्यक्रम में कल गया था, मुझे बुलाया था उन छात्रों ने और मैं वो कार्यक्रम सुनने के लिए गया था। सबसे पहले तो बात उनका भाषण वहां पर नहीं हुआ है, जो सवाल पूछे गए उन सवालों के जवाब मोहन भागवत वहां पर दे रहे थे और उनको ये सवाल पूछा गया कि जब भी छात्र इस तरीके से आंदोलन के लिए उतर के आते हैं तब उन्हें एंटी नेशनल करार किया जाता। सुन लीजिए
3: जब भी
1: उन्हें सवाल,
3: इसका संदर्भ क्या है?
1: अरे मेरी बात तो सुन लीजिए रागिनी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मेरी बात तो सुन लीजिए पहले आपको बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन बात तो सुन लीजिएगा। उन्हें सवाल पूछा गया एक जेंजी से एक सवाल पूछा गया कि जब भी वहां पर छात्र आंदोलन के लिए उतरते हैं तब उन्हें एंटी नेशनल करार दिया जाता है। उस पर कहते हुए उन्होंने कहा कि उनको एंटी नेशनल कहना गलत है, ये मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरी बड़ी बात, जो सवाल आप यहां पर उठाने की कोशिश कर रहे हो, जो सवाल हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि राजनीति तो भरपूर होती है, जंतर बंतर के भीतर आंदोलन होता है, कांग्रेस पार्टी विपक्ष उन्हें समर्थन करता है और उसको लेकर बीजेपी कहती है ये पॉलिटिकल आंदोलन है। वही झारखंड में आंदोलन होता है तो बीजेपी उल्टा सवाल उठाना शुरू करती है। कोई भी राजनीतिक पार्टी इस देश में जेंजी के असली मुद्दों पर सवाल उठाएगी कि नहीं उठाएगी, ये सवाल
3: जी। यही सवाल आपने शुरू में भी पूछा, पर अगर आप मुझे 1.5 मिनट के बाद रोक देंगे तो पूरे आपको जवाब मिल जाता, आपने फिर 2 मिनट का सवाल पूछ लिया। पर चलिए आगे बढ़ते हैं,
2: रिपोर्टिंग देने का मौका दीजिएगा।
3: अब आगे भंडारी जी को जरा शांत करिए, बीच में ना बोलिए। पहले मोहन भागवत जी पर 1 मिनट बोलूंगी, फिर 1 मिनट और दे दीजिएगा।
2: सब कुछ कांग्रेस ही बोल दे, कांग्रेस ही मॉडरेट कर ले भैया।
3: अब देखिए बीच में बोलेंगे तो फिर इनसे ही बुलवा लीजिए, इनको सत्ता पक्ष की तरफ से।
1: अरे आपकी बात खत्म करिए, चलिए सुन रहे हैं। आज शांति से चर्चा हो रही है, शांति से।
3: जैसे जैसे मोदी जी विश्व गुरु हैं, वैसे मोहन भागवत जी भी यू टर्न के गुरु हैं। सबसे पहले तो आपने 6% जीडीपी की बात की, उसी पर आ जाती हूँ। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने चुनावी वादा किया था 6% जीडीपी का जो है वो शिक्षा बजट होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा था। आज जब जेंजी ने नाक में नकेल डाल दी भारतीय जनता पार्टी की और संघियों की, तो उन्हें 6% आ गया याद। तो इतने दिनों से क्या कर रहे थे? केशव कुंज और जंतर मंतर के बीच की कितनी दूरी है, इतने दिनों से क्या कर रहे थे? पहले कहते थे आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, राहुल गांधी संविधान हाथ में लेके घूमे तो फिर बोले कि नहीं आरक्षण की समीक्षा नहीं होनी चाहिए। पहले कहते थे ढोल गवार के अधिकारी वर्ण व्यवस्था भगवान ने दी है, राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की बात की तो सारी जातियां समान हो गई और केवल 4 जातियां हो गई। मोरपंत पिंगले जी के पुस्तक विमोचन में जाकर बोले कि 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट होनी चाहिए, जनता ने क्या कहा कि मोदी जी से पूछ रहे हैं क्या, तो बोले नहीं नहीं रिटायरमेंट नहीं होनी चाहिए। तो अब ये केवल लीपापोती करने के लिए आए हैं, उसी तरह से जैसे कि प्रज्ञा ठाकुर ने जब गांधी जी को गाली
2: देने का मौका दिया
3: तो मोदी जी करने के लिए आए थे ये कहते हुए कि मैं मन से माफ नहीं करूंगा। तो अब आप बोलिए कि एंटी नेशनल नहीं है, जो आपकी दुर्गति की छात्रों की वो आपके प्रवचन देने से पूरी नहीं हो जाएगी। और मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं झारखंड
1: की बात जरूर
3: बोलना, मैं एक झारखंड की बात बोलना चाहती हूँ, 30 सेकंड दे दीजिए मुझे।
2: अब आप बिल्कुल
3: आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्ता पक्ष की तरह विफल रही, जंतर मंतर नहीं गए, अनशन तोड़वाने की कोशिश नहीं की, छात्रियों पर लाठी भांजी अत्याचार किया, और झारखंड में विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पाए, यहाँ बैठ के रो रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमने इस्तीफा नहीं मांगा इस्तीफा, अरे तो करते ना, जाकर बैठते छात्रों के बीच में, मांगते इस्तीफा, और इस्तीफा कैसे मांगेंगे? जेपीएससी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के अंतर्गत आता है, वो शिक्षा मंत्रालय में है ही नहीं, तो शिक्षा मंत्री को कहां से मांगोगे इस्तीफा? नहीं आते और यहां बोलते रहते हैं। केवल 1 लाख स्कूल बंद नहीं हुए।
1: ये बड़ी दिलचस्प बात है, जो सवाल मैं ओरिजिनल पूछ रहा था उस पर कोई भी राजनीतिक पार्टी बात करने को तैयार नहीं, और ये नहीं आपको आप ही रिबटल देंगे इसका। लेकिन एक बात मैं भी अग्नि नायक एक बात मैं आपको भी बताना चाहता हूँ,
2: प्रवचन
1: सुनिए सुनिए सुनिए सुनिए नहीं प्रदीप भंडारी इसका जवाब देंगे।
3: जाकर मेरा नहीं है झारखंड में प्रतिनिधि मिला, जी ने फोन पर बात की, झारखंड के सीएम तैयार है, एक लाठी एक गोली चली
1: है। यही यही बात है, बेसिक मुद्दों को लेकर जब भी सवाल उठाया जाता है। 6% की आपने बात करी, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी भी राज्य में, भले वो कर्नाटक हो, जहां पर जीएसडीपी के सिर्फ 2% एजुकेशन बजट है, सिर्फ 2%, और झारखंड के भीतर यह खर्चा 3% का है। कोई भी राज्य सरकार हो, किसी भी सरकार में एजुकेशन प्रायोरिटी ही नहीं है, किसी भी सरकार की प्रायोरिटी नहीं है, ना केंद्र सरकार में। हम देखते हैं आंकड़े, हम यहाँ पर चला रहे हैं, राज्य सरकारों के पास भी जाएंगे। प्रदीप भंडारी आप जवाब, एक मिनट पहले रिबटल ले लीजिए, आप रिबटल ले लीजिएगा।
2: देखिए साहिल जी,
1: उनको पूछ लेंगे आप।
2: साहिल जी ऐसा लग रहा है कि रागिनी,
1: प्रदीप भंडारी जवाब कर रही है, चलिए
2: रागिनी जी ऐसा इतना
1: प्रदीप भंडारी
2: मुझे इतनी उतावली कांग्रेस की प्रवक्ता हो रही है, एक एक कर फैक्ट चेक करना चाहता हूं। फैक्ट चेक नंबर वन, कांग्रेस पार्टी की सरकार की प्रवक्ता कहती है यहाँ पे, जिसकी झारखंड के अंदर है, कि भाई एजुकेशन मिनिस्टर के अंदर आता नहीं है। पहली सुनिए मेरी बात, पहली बात इनको यही नहीं पता हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन अलग है, और एक हेमंत सोरेन के अंदर आता है जिसकी बात हो रही है। झारखंड के अंदर जेएससी क्लास 10 का पेपर लीक होता है, अभी तक एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं, भारतीय जनता पार्टी वहां बैठी हुई है। जेएसएससी का पेपर, झारखंड रिक्रूटमेंट एग्जाम का पेपर लीक आता है। देखिए बीच में बोल रही है साहिल जी, पूरी डिबेट में ना आशुतोष को बोलने दूंगा ना रागिनी नायक को बोलने दूंगा।
1: रागिनी जी प्लीज ऐसा मत करिए,
2: आप जानते हैं अच्छी तरीके से, आप अच्छी तरीके जानते हैं, ये
1: ऐसा मत करिए।
2: देखिए यही है कांग्रेस पार्टी,
1: नहीं अब आप रागिनी जी, आपकी बात पूरी सुनी गई थी, वो बीच में नहीं बोले थे, और मैंने भी आपकी बात सुनी थी, उनकी बात भी आपने सुनी थी, अभी उनको बोलने दीजिए, रिबेटल का मौका आपको भी मिलेगा, उनको बोलने दीजिए प्लीज, ऐसे मत करिए।
2: कोई बात नहीं। देखिए जितनी बार कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ने राहुल गांधी का नाम लिया, उतनी बार उनने जेनजी और युवा का नाम लिया। इससे समझ सकते हैं कि इनके लिए जेनजी नहीं, जेनपी मतलब जैन परिवार की भक्ति करो। इनने बोला सरसंचालक जी कौन है, गांधी वाड्रा परिवार की पूरी जनरेशन ने जितना देशभक्ति नहीं करी होगी, उतनी आरएसएस ने देशभक्ति करी है, ये क्या जानेंगे। तो आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर, जिसको गोल्ड मेडलिस्ट मिला हुआ है, जो जाकर सबसे बड़ा एकेडमिशियन कंप्यूटर साइंटिस्ट, उस तक को गाली बकते हैं। तो जो आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर को गाली बके वो किसी की बात नहीं कर सकता। झारखंड के अंदर बच्चा जो है वो सीबीआई प्रूफ की मांग कर रहा है, सीबीआई प्रूफ ऑर्डर नहीं हुई। झारखंड के अंदर ना अभी तक जाके एजुकेशन मिनिस्टर मिले, चीफ मिनिस्टर खुद एजुकेशन का डिपार्टमेंट रखते हैं, वो जाके नहीं मिले। वो बोले कि भाई जेपीपीएससी के अंदर जिस एजेंसी ने किया, बैंड एजेंसी ने किया, सीटें बेची जा रही है वहां पे, लीक तो छोड़िए सीटें बेची जा रही है यहां पे, तब भी जाकर कुछ नहीं हुआ। तो ये कांग्रेस पार्टी के दोहरे मापदंड है। कर्नाटक में 80 लाख की रिश्वत के ऊपर सीटें बेच रहे हैं और जाके कैंसिलेशन कर रहे हैं, तब भी जाके कुछ नहीं हुआ। अगर आप बजट की बात करते हैं, मैंने तो आपके हर सवाल का जवाब दिया, 78% एजुकेशन बजट बढ़ा है, हायर एजुकेशन का परसेंटेज जीडीपी जो है सबसे ज्यादा, पहली बार जो है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी एजुकेशन, हायर एजुकेशन बढ़ा है। अगर आप नई एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, उठा के देख लीजिए, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी 30-40 साल से बात हो रही थी, पहली बार लेकर आए, पहली बार जाके एंड पेपर लीक के ऊपर कानून आया, जिसमें कहा गया कि पेपर लीक में 10 साल तक की सजा होगी, इसके पहले तो कानून तक नहीं लेके आए। तो मैं कह रहा हूं हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन का बजट घटा है, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर कांग्रेस पार्टी है, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी 20% बेरोजगारी दर क्रॉस कर चुका है। अरे ये क्या युवा की बात करेंगे, इनको तो पता ही नहीं, आज युवा 2 लाख स्टार्टअप क्रिएट कर रहा है, हम जेंजी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, भले वो झारखंड हो या दिल्ली हो, पर हाथ में पत्थर उठाने वाला जेंजी नहीं है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जिस व्यक्ति, मैं भी वहां पे मुंबई के अंदर मौजूद था, जितने भी छात्र थे उनमें से कोई भारतीय जनता पार्टी का वोटर नहीं था, आप भी बात करेंगे, स्कूल्स में अलग अलग जगह से आए थे। यही कांग्रेस पार्टी का घमंड है कि इनने अभी तक नहीं बताया तेलंगाना में क्या किया, इनने नहीं बताया कर्नाटक में एजुकेशन के लिए क्या किया, इनने नहीं बताया कि भाई देश के अंदर जीडीपी
1: दूसरे सरकार के खिलाफ चार्शीट तैयार है, सबके पास चार्शीट तैयार है, लेकिन जब शिक्षा की बात होती है, जब शिक्षा की बात होती है,
2: मैंने अपनी सरकार का पूरा जवाब दिया है, मैंने अपनी सरकार का पूरा जवाब दिया है,
1: बहुत बढ़िया,
2: बेहतर कर,
1: चलिए अभी जरा हम हमारी चार्जशीट रख देते हैं, हमारी इंडिपेंडेंट चार्जशीट रख देते हैं, सरकार किसी की भी हो आप बोल सकती है, लेकिन जरा हम भी हमारी चार्जशीट रख देते हैं, हमारे एनालिस्ट भी बैठे हुए, उनके पास भी जाना है। रागिनी जी एक मिनट, जरा हम दिखा देते हैं कि भाई क्या क्या, जरा बड़ी स्क्रीन पर दिखाइए ताकि सबको पता चल पाए कि आज की स्थिति में देश में शिक्षा की क्या स्थिति है। ठीक है, सबसे पहली बात, देश की शिक्षा व्यवस्था में 69% शिक्षा सरकारी स्कूलों में होती है। सरकारी स्कूलों में 8.4 से 10 लाख टीचर की भर्ती होना बाकी है, 51% से अधिक अब माध्यमिक स्कूलों में प्रयोगशालाएं नहीं है। 1.19 लाख स्कूलों में बिजली कनेक्शन तक नहीं है। 43% से अधिक स्कूलों में खेल का मैदान भी नहीं है। ये स्कूलों के हाल है हमारे देश में। 10 साल में सरकारी स्कूलों में 2.26 करोड़ नामांकन घटे हैं। सरकारी स्कूलों से छात्र बाहर निकल रहे हैं। दूसरा भी देख लीजिएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 29% शिक्षकों के पद खाली है। राज्यों के विश्वविद्यालयों में 40% शिक्षकों के पद खाली है। 90% राज्य विश्वविद्यालयों के पास रिसर्च इंफ्रा नहीं है। शोध विकास के लिए जीडीपी का सिर्फ 0.7% खर्चा होता है। देश के 81% नौजवान राज्य विश्वविद्यालयों के भरोसे हैं। 25 साल से कम के 40% ग्रेजुएट बेरोजगार है और दुनिया के 200 संस्थानों में भारत के सिर्फ तीन संस्था दिखे जाते हैं। आईआईटी दिल्ली 118, आईआईटी बॉम्बे 134 और आईआईटी मद्रास 70वें रैंक पर है। दुनिया में डीयू 322 और जेएनयू 555वें रैंक पर है। ये आज देश में उच्च शिक्षा का हाल है और ये आंकड़े जो है नीति आयोग से ये आंकड़े मिले हुए हैं। ये सबसे बड़ी बात है। ये देश की स्थिति है आज की स्थिति में। और इसीलिए आशुतोष जी और संगीत रागी, जरा आपसे भी पूछना
4: होगा, जवाब दे दूं
1: क्या राजनीतिक दल
3: इस ये गलत बात है।
4: मैं जवाब दूं
1: रागिनी जी, आपको भी प्लीज आपको भी मैंने मौका दिया था, आपको पूरा मौका दिया था। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, मैं आपके पास नहीं ये ठीक है, नहीं गलत है। आप ये रागिनी जी गलत बोल, प्लीज मैं आपके पास आऊंगा, आपको भी रिपोर्टल का मौका मिलेगा। लेकिन बाकी लोग आशुतोष जी और संगीत रागी जी हमारे साथ। आशुतोष जी, ये स्थिति है आज की स्थिति में देश में शिक्षा की स्थिति यह है। लेकिन जब भी जेंजी की बात होती है तब राजनीति दिखाई देती है। आपका जेंजी, मेरा जेंजी, अच्छा जेंजी, बुरा जेंजी, अच्छा प्रदर्शन, बुरा प्रदर्शन, ये कब तक चलेगा इस तरीके से?
5: देखिए साहिल, डिबेट का स्तर तो ये है कि मैं बोला भी नहीं उसके पहले राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता ने कह दिया मैं उनको बोलने नहीं दूंगा। अब ये अगर हाल है तो फिर क्या कहा जाए इसके ऊपर, टिप्पणी करना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए। देखिए महत्वपूर्ण सवाल आपके इस, मैं आज आपको बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने हिंदुस्तान के एजुकेशन को पूरे एजेंडे पे रखा और पूरा खोल के रख दिया। जो राष्ट्रीय स्तर पर इस वक्त जो हालत है इसका एक खाका है और ये इसका पर्चा बनना चाहिए, पूरे देश में जाना चाहिए, दिखना चाहिए कि हमारे देश के अंदर चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इनके प्रायोरिटी पे एजुकेशन है ही नहीं। अगर होता तो 94,000 स्कूल बंद नहीं होते और इस पर गर्व नहीं किया जाता कि हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया। हकीकत क्या है कि आपका जो एजुकेशन का बजट 2.6% है, जबकि खुद मोहन भागवत कह रहे कि 6% होना चाहिए। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी कह चुकी है 6% होना चाहिए। अगर 6% नहीं है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार? क्यों ये एजुकेशन का बजट टोटल GDP से घटा, उसका कंट्रीब्यूशन क्यों घटा, इसकी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर है। और तो और, इस देश के अंदर सेंसस हो, SIR हो, कोई भी गणना करनी हो तो स्कूल में जो टीचर पढ़ाते हैं उनको कहना पढ़ाइए मत, अब आप SIR में लग जाइए, अब आप जो है सेंसस में लगिए। अगर एजुकेशन प्रायोरिटी होती तो इलेक्शन कमीशन जो है इनको SIR में नहीं लगाता, इनको सेंसस में नहीं लगाता, इनको दूसरे कामों में नहीं लगाता। और अगर जो स्कूल टीचर के खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं होती कि अच्छा पढ़ा रहे हैं बुरा पढ़ा रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होती क्योंकि आप SIR में हिस्सा नहीं ले रहे, उनको सस्पेंड किया जाता है। ये प्रायोरिटी अभी आज उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ये गोरखपुर गई जो मुख्यमंत्री का अपना क्षेत्र है और वहां जाके उन्होंने जो टिप्पणियां की हैं वो हमारे ख्याल से उत्तर प्रदेश की सरकार को भी सुनना चाहिए और देखना चाहिए कि खुद गोरखपुर के अंदर यूनिवर्सिटी का क्या हाल है, वहां क्या स्थिति पैदा हो गई। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि ये जो पूरी स्थिति पैदा हुई है वो इसलिए पैदा हुई है क्योंकि इस देश के एजेंडे पर शिक्षा नहीं है। और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे BSP, चाहे NCP, चाहे शिवसेना, किसी के एजेंडे पे नहीं है। एजेंडा क्या है? पार्टी तोड़ो, अपने साथ मिलाओ। आदमी कहीं से जीतेगा और किसी दूसरी पार्टी में जाके शामिल हो जाएगा। जब तक इस तरीके के दल बदलू लोग होंगे, जब तक इस तरीके से दलों को तोड़ा जाएगा, तब तक सत्ता बनाना एकमात्र एजेंडा होगा, एजुकेशन एजेंडे पे नहीं होगा।
1: संगीत रागी, क्या करिकुलम बदलना और चैप्टर्स बदलना यहीं तक शिक्षा नीति रहेगी या इसके आगे भी महाविद्यालयों की स्थिति कैसे बदली जाए शिक्षक कैसे नियुक्त किया जाए, यह भी एक शिक्षा नीति हो सकेगी प्रायोरिटी वाइज।
4: साहिल, करिकुलम बदलना बहुत शिक्षा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और पेडागोजी भी बदलना, ये भी दोनों हिस्सा है बहुत बड़ा। यदि आप एनईपी को दीजिएगा तो आपको स्किल बेस्ड शिक्षा, हैंड्स ऑन लर्निंग, ये सब पेडागोजी में चेंज लाया है, और ये मोदी सरकार ने ही लाया है। तो एक जिसे हम कह दें कि एक ब्रश से सीधे घुमा देना कि कुछ भी नहीं हुआ है, मैं ऐसा नहीं मानता। लेकिन हाँ, मोटा मोटी जो आपने डेटा दिया है वह इस देश की सच्चाई है। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी, और 2012 का मैं डेटा, उस समय मैं एक रिसर्च पेपर लिख रहा था, तो हायर एजुकेशन का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है वो 12.6% था। यानी कि मात्र हमारे देश के युवा हायर एजुकेशन पोर्टल में 12.6% होते थे। कपिल सिब्बल ने, अब पता नहीं कौन सा डेटा मैनिपुलेट किया, उसे डबल, उसके 2.5 गुना उन्होंने कर दिया था, लेकिन सच्चाई धीरे धीरे तुरंत आ गई। इसमें मैं दो आशुतोष से बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि शिक्षा पर ध्यान जितना सरकारों को देना चाहिए था नहीं हुआ, लेकिन कुछ डांके गलत है। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितने मेडिकल कॉलेजेस बनाए, कितने आईआईटी खड़े किए, आप उसे भूल जाएंगे, आप उसे किनारे कर देंगे? उत्तर प्रदेश में यदि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज खड़ा किया गया है, हम कह सकते हैं कि अभी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं उतना अच्छा नहीं है, लेकिन बुनियाद उसकी बहुत अच्छी की गई है, सोच उसके पीछे बहुत अच्छी है, तो उसे आप ब्रश आउट नहीं कर सकते हैं। आपके पास 65,000 से 68,000 के बीच में मेडिकल सीट्स थे, यदि आज वो दुगनी कर दिए गए हैं तो ऐसा तो नहीं है।
1: 12 साल हो गए।
4: हाँ बिल्कुल, 12 साल में दुगनी हो गए।
1: अभी सिर्फ इमारत ही बन रही है।
4: अब तो इमारत ही बन रही है। आपने एक बहुत अच्छा एक डेटा दिया प्राइवेट यूनिवर्सिटी का। साहिल, प्राइवेटाइजेशन कोई टापू नहीं है। यदि इंडस्ट्री मीडिया में यदि प्राइवेटाइजेशन होगा और एजुकेशन में नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता है। अमिटी स्कूल किसके समय आया था प्राइवेटाइजेशन? राहुल गांधी बहुत जोर जोर से उठा रहे हैं प्राइवेटाइजेशन हो गया, कांग्रेस पार्टी, शिक्षा महंगी होगी। अमिटी यूनिवर्सिटी कब आया था? 2005 में आया था, जब कांग्रेस की सरकार थी। जिंदल यूनिवर्सिटी कब आया? जब कांग्रेस की सरकार थी। गलगोटिया कब आया? जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। शिवनादर कब आया? जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। ये चार यूनिवर्सिटी में, बड़े यूनिवर्सिटी का नाम इसलिए जिक्र किया क्योंकि दिल्ली एनसीआर रीजन में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से छोड़ करके जा रहे हैं वो इन्हीं चारों यूनिवर्सिटीज के अंदर जा रहे हैं। और ध्यान रखें, हम पैनल में से जितने भी लोग हैं अपने बच्चे को कहां सरकारी स्कूल में कौन भेजता है? सवाल यह है, क्या यही कहा?
1: निजी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज पर कोई सवाल नहीं है। इस देश में महाविद्यालय बढ़ाने हैं, उच्च शिक्षा बढ़ानी है, तो निजी कॉलेज और निजी इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसा क्या है कि सरकारी यूनिवर्सिटी से 45% से बढ़ती है और निजी विश्वविद्यालय 150% बढ़ जाते हैं 10 साल के भीतर, 150%। यानी प्रायोरिटी नजर आती है कहां पर जाना है इसमें।
4: बिल्कुल,
1: शिक्षा महंगी होती है वहां पर, यह भी आपको पता है। सबसे बड़ी आज की स्थिति में जो मुद्दा जेंजी की तरफ से सड़क पर लेकर आया गया है वो शिक्षा सस्ती कराने को लेकर।
2: जवाब देता हूं,
1: आज भी 2.26 करोड़ नामांकन बाहर निकले हुए हैं, शिक्षा से बाहर निकले हैं, ये भी तो बड़ी बात है। उसमें आंकड़े देखिए
4: साहिल, मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं कि जो बड़े एलीट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जैसे बेनेटन है, बाप के बगल में ही है नोएडा में, शिवनादर है, अशोका है, जिंदल है, आज ये ग्लोबल रैंकिंग में बहुत अच्छे कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है वो सैलरी भी बहुत अच्छे देते हैं और ये भी जो है वो पढ़ाई का स्तर भी अच्छा रखते हैं। आप यदि आप यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में आप चले जाएंगे तो फिर कहने पर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसका स्तर बिल्कुल घट गिरा है, इससे इसे कोई इनकार नहीं
1: जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है
4: और
1: जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है, सरकारी यूनिवर्सिटी से अगर आप ग्रेजुएट होते हो 20,000 खर्चा आता है, और वही अगर निजी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हो तो 10,00,000 तक उसका खर्चा होता है। और यही बात आज जेंजी को खास कर सबसे बड़ी समस्या उनके सामने खड़ी हो रही है। अभी तो जवाब दीजिए और उसके बाद रागिनी जी के पास चलेंगे और आखिर में प्रदीप भंडारी।
2: साहिल जी,
4: साहिल एक लाइन से
5: देखिए, साहिल
4: साहिल एक लाइन से बोल देता हूँ।
1: चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर भी आ रही है, रांची में छात्रों और सरकार की बातचीत पर बड़ी खबर है। 10 लोगों का नया डेलीगेशन सरकार से बातचीत करेगा। छात्रों की तरफ से 10 लोगों के नाम दिए गए हैं जो सरकार से बातचीत करेंगे। छात्रों ने सरकार से बातचीत के लिए एक नई सूची जारी की है। इससे पहले 7 छात्रों के नाम दिए गए थे। अब रांची में छात्रों और सरकार के बीच में 10 युवाओं का, छात्रों का डेलीगेशन सरकार से जाके मिलेगा। नए नाम उसमें दिए गए हैं। यह बातचीत का दौर अब रांची के भीतर भी शुरू होगा और सरकार और छात्रों के बीच में बातचीत का दौर शुरू होगा। आशुतोष जी जल्दी से आपका जवाब दीजिए, उसके बाद रागिनी नायक।
5: साहिल, मैं किसी सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा हूं। मैं हमारे यहां शिक्षा के पर कितना फोकस, इस पर मैं एक डेटा आपके सामने रखना चाहता हूं। बस एक तो डेटा आपने दे दिया कि 4.6 से 2.5, यानी 2013-14 में जो शिक्षा पर बजट था 4.6 था, वो अब घटकर 2.5 हो गया 2025-26 में। स्कूली शिक्षा में 3% से घटकर 1.4% है और जो उच्च शिक्षा है उसमें 1.6 से घटकर 1% हो गया। ये जो फोकस है ना, असल दिक्कत क्यों है? अभी कहा गया कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के खिलाफ हम नहीं है। सवाल ये कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से फीस है, क्या कोई गरीब का बच्चा वहां जाके पढ़ सकता है? यानी आप हिंदुस्तान के गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को आप शिक्षा से पूरी तरीके से दूर कर देना चाहते हैं। दूसरी बात क्या है, आज की तारीख में विद्यालयों के अंदर पर्ची और खर्ची चल रहा
4: है। आशुतोष को ये जानकारी नहीं है,
5: आज की तारीख
4: में पर्ची और खर्ची चल
1: रहा है। रागिनी नायक,
5: पर्ची और खर्ची
1: का जरा शांत करिए दोनों को। रागिनी नायक बात करें, प्रदीप भंडारी आपको जवाब देने का मौका मिलेगा आखिर में। रागिनी नायक,
3: आपने एक बात अच्छी कही, आपने कहा कि सारी पार्टियां जो हैं, सारे राजनीतिक दल जो हैं, नेता हैं, वो जेंजी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बात में मैं जरूर मानती हूं कि मोदी जी सबसे पहले कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो कनेक्ट क्या भलमनसाहत या शिक्षा में सुधार के चलते है या डर के चलते है, ये मैं जनता के विवेक पर छोड़ती हूं। पर ये मित्रों से हाय फ्रांस तक का जो सफर है, ये बड़ी जल्दी मोदी जी ने तय किया। हालांकि बच्चे जरूर ये कह रहे हैं कि हम आपके नाती पोतों की उम्र के हैं, हाय बच्चों बोलिए, फ्रेंड्स मत करिए। और देश के नाम संदेश से लेकर इंस्टाग्राम की रील्स तक का सफर भी मोदी जी ने जल्दी तय कर लिया। पर मैं फिर भी ये जानना चाहती हूँ कि दरभंगा का एम्स सबसे पहले याद आता है जब आप ये बात करने लगते हैं कि हमने कितने कितने कितने बड़े शिक्षा में वृद्धि के काम करके दिखाए। 2015 में मोदी जी ने इस बारे में बात कही थी। 2-4 आंकड़े मैं भी बताती हूँ। आपने 1,00,000 स्कूल बंद होने की बात की। 1,08,443 स्कूलों में, देश भर में सरकारी स्कूलों में केवल एक टीचर है। 1,19,000 स्कूल ऐसे हैं जहां पर बिजली नहीं है। 57% स्कूल ऐसे हैं जहां पर साइंस लैब नहीं है।
1: आंकड़े तो रखे हमने, नीति आयोग के आंकड़े हैं, ये सारे आंकड़े हम बता चुके हैं।
3: शौचालय नहीं है और उसके बाद भी अगर यहाँ पर बैठकर केवल बतौलेबाजी करनी है तो मुझे लगता है अपने गिरेबान में झांक कर जरूर इनको देखना चाहिए कि शिक्षा को कहां से कहां।
1: प्रदीप भंडारी, शिक्षा प्राइमरी एजेंडा बनेगा क्या? मुद्दा यहाँ पर आकर रुकता है।
2: साहिल जी फैक्ट नंबर वन, कांग्रेस को अपने घमंड में बात करने दीजिए, मैं डेटा की बात करूंगा। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हिंदुस्तान के हायर एजुकेशन के अंदर पहले से 44% था, बढ़कर 62% हुआ है। आपने रिसर्च की बात करी, वो क्यूएस रैंकिंग का पूरा डेटा दिखाइए। पहली बार हिंदुस्तान की 54 यूनिवर्सिटीज क्यूएस रैंकिंग के अंदर आई है। इस हिंदुस्तान टॉप 5 के अंदर आए क्यूएस रैंकिंग के अंदर। इसके ऊपर सिर्फ चाइना की यूनिवर्सिटीज है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की यूनिवर्सिटीज है और एक और कंट्री की है। पहली बार टॉप 5 में, पहले हमारी 40 भी यूनिवर्सिटीज में नहीं हुआ करती थी, 12 यूनिवर्सिटीज थी। ये देखिए आप सच्चाई, तो रिसर्च में भी बड़ा है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हेल्थ और एजुकेशन कम हुआ है। 62% था, अब जाके 33% हुआ है। 78% हायर एजुकेशन
1: सबके पास है,
2: स्कूल क्लोज नहीं हुए, स्कूल जो होता है।
1: और ये हर चर्चा में देखा जाता है, एजुकेशन हर पिछली सरकार के मुकाबले आईआईटीज में नई सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाती है, लेकिन जो उपलब्धियां गिनाई जा रही है वो नाकाफी है, क्योंकि छात्र संतुष्ट नहीं है उसे और इसीलिए सड़क पर नजर आते हैं, फिर वो किसी भी राज्य में हो या दिल्ली जैसे देश की राजधानी में। सवाल अभी भी कायम है और इसीलिए जेंजी कहते हैं कि हमसे बातचीत तो करिए लेकिन हमारे सवालों के जवाब भी दीजिए, समय निकल जा रहा है, तो इस पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहेंगे।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Papa!
2: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
3: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
2: छक्का?
3: सब कैशलेस हो गया
2: है। हाँ, ला भाई मेरा बैट।
4: वो अभी तो ठीक हुआ, तू
5: बिलोटे चार्ज हुआ यार।
6: ला बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: मुल्तानी घू का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घू का कॉफ सिरप,

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबा केसरी, हिंट बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
3: जहां जुर्म वहीं कहानी, जहां कहानी वहीं साजिश, जहां साजिश वहां क्राइम। जुर्म चाहे कितना ही उलझा हो, उसकी परतें हम सुलझाते हैं। देखिए क्राइम तक यूट्यूब पर और बचिए हर क्राइम से।
4: अगर इतिहास में जाकर इंडिया टुडे की तरह मुझे किसी खबर को कवर करने का मौका मिला तो मैं इमरजेंसी कवर करना चाहूंगा। 7 अगस्त को पीवीआर आईनॉक्स में देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, आई विटनेस टू अ नेशन।
5: अभी जो हुआ है ग्रीवंस तो जेनाइन है। भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा इसलिए बात होती है, तो डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग के बाद नहीं होता तो क्या करना बात की बात है। अगर जेंजी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला,
6: बिल्कुल
5: उसको ठीक करना चाहिए।
6: तो इसमें आप मानेंगे कि संवाद यदि पहले से शुरू हुआ होता तो ये बाद में विषय ज्यादा ऊपर जाता ही नहीं।
5: जो नहीं होना चाहिए वो जब होता है तो कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जाती, तभी होता है। किसकी है क्या है ये अलग बात है, लेकिन कमी तो रही है, ठीक हो जाएगी। कि जैन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं जी। अपने लोग है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है
6: जी सर।
5: इस अपनेपन से डायलॉग का 7 महीने बोला, अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है। वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है, ये होता है, तो होना चाहिए। और जैन जी वगैरह ऐसी है ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता।
6: आप क्या मानते हैं?
5: विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब जब पूछा गया तब मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जैन जी जैन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है।
6: अरे वाह बढ़िया है।
5: और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है।
7: मोहन भागवत जी, अगर आप ये कह रहे हैं तो सबसे पहले अपने सहकार्यवाहक जो मुंबई में बोले जैन जी को संविधान विरोधी और राष्ट्र विरोधी, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं किया? ये दोहरी बातें करना बंद करें मोहन भागवत जी। आपके एक आरएसएस के डायलॉग ने बोला कि अगर मैं वहां होता जंतर मंतर पे तो लाठियों और गोलियां चलवाता। मुंह देखी बात करते हैं मोहन भागवत जी, मुंह में राम दिल में नाथू राम वाले हैं ये लोग। अभी 2 दिन पहले ही मुंबई के एक कार्यक्रम में किस प्रकार से इनके एक सह कार्यवाहक ने जैन जी के खिलाफ आग उगला, उन्हें देश विरोधी संविधान विरोधी बता रहे, तो यहाँ के ज्ञान दे रहे हैं। जनता आपके मुखौटे को पहचान चुका है, देश का नौजवान आरएसएस के मुखौटे को पहचान चुका है।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर परीक्षा के साथ इन छात्रों में एक उम्मीद जगती कि शायद इस बार कोई गड़बड़ी ना हो, शायद इस बार नतीजा साफ सुथरा हो, शायद इनकी मेहनत का असर दिखे, शायद झारखंड की परीक्षा व्यवस्था इस बार सुधरे। लेकिन बार बार इनकी उम्मीद टूटती है। ये हर बार खुद को ठगा महसूस करते हैं, हर बार सिस्टम की नाकामी का शिकार बनते हैं। भ्रष्टाचार इन छात्रों की मेहनत पर भारी पड़ जाता है और छात्रों के हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। 25 साल के मनीष बताते हैं कि कैसे हर परीक्षा में वो बर्बाद हो चुके सिस्टम का शिकार बनते हैं। मनीष एक नहीं कई कई परीक्षाओं का उदाहरण देते हैं और सवाल करते हैं कि अगर यही हाल रहा तो झारखंड का छात्र कहां जाएगा।
1: आपको 3 एग्जाम का एग्जाम्पल देंगे, जैसे कि CHO का एग्जाम्पल एग्जाम हुआ था, उसमें एक राज्य विशेष लोगों का चयन हुआ। फिर 11-13 JPSC का एग्जाम हुआ, उसमें भी एक राज्य विशेष का सिलेक्शन हुआ। फिर महिला सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ, उसमें भी एक राज्य विशेष महिला अभ्यर्थियों का चयन हुआ। हम लोग झारखंड वाला कहाँ जाएं, क्या करें।
0: मनीष के माता पिता खुद झारखंड आंदोलन में शामिल थे। अब वो सवाल करते हैं कि आखिर अलग सूबा बने 25 साल से भी ज्यादा बीत जाने पर भी झारखंड के लोगों को क्या मिल रहा है।
2: आंदोलन आपको जन्म से मिल गया।
1: हाँ, आंदोलन मैंने जन्म से देखा। और पापा नारा देते थे ना कि घर में कि कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड। तो पापा कभी कभी बोलते हैं कि झारखंड ले लिए, लेकिन हम झारखंडियों को क्या मिला है। यहाँ पे बस अदर स्टेट वाले आते हैं, मलाई खा के चल जाते हैं। झारखंड के हिस्से में वही आता है, कोयला बिछो, बकरी पालो। हेमंत सोरेन भी तो वही बोलते है ना, बकरी पालो, सुअर पालो, और रिच मिनरल रिच है ये, तो कोयला बिछता ही है यहाँ का लोग, क्योंकि नौकरी तो बाहर वाले आके ले जा रहे हैं ना, या फिर जो वो वैसे रसूखदार ले जा रहे हैं।
0: झारखंड के हजारों छात्रों की शिक्षा व्यवस्था से नाराजगी है, क्योंकि ये उनके रोजगार और भविष्य का सवाल है। और इसे लेकर अब रांची के आंदोलन में शामिल छात्रों में जबरदस्त उबाल है।
3: प्रीलिम्स निकला, मेंस निकला, मैं फिर इंटरव्यू भी दिया सर, फाइनली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उस समय लगा मुझे शायद मेरा ही कहीं पे हॉल्ट होगा। उस समय से इंटरव्यू में मुझे मात्र 40 नंबर दिया गया। उस समय ये देखा गया कि वहाँ पे चार बोर्ड है सर, जितने सारे मेंबर है JPSC के अंदर, वो सभी मेंबर किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड है सर। कोई किसी से है, कोई किसी से है, और उन लोग का अपना पर्सनल बायस होता है। तो एक बोर्ड सबको 65 प्लस दे रहा है, एक बोर्ड सबको किसी को 15 दे रहा है, किसी को 20 दे रहा है, मुझे मात्र 40 नंबर दिया गया। और सर एक उसके बाद जब मेरा रिजल्ट नहीं हुआ ना, तो मुझे लगा कि शायद मेरे में ही कोई कमी है, तो मैं अगले बार इसमें सुधार कर लूंगा।
0: झारखंड की इस धरती ने कई आंदोलन देखे और अब बिरसा की इस धरती पर नौजवानों के इस आंदोलन को पूरा देश गौर से देख रहा है। झारखंड का छात्र बदलाव की उम्मीद के साथ आंदोलन कर रहा है। इनके मंच पर गांधी, अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, बिरसा मुंडा की तस्वीर है और इनकी प्रेरणा के साथ बदलाव की उम्मीद। सत्यजीत कुमार के साथ आशुतोष मिश्रा, रांची आज तक।
4: यूपी में भले विधानसभा का सत्र 4 दिन का छोटा हो, लेकिन इस छोटे सत्र में भी सरकार ने ऐसे बड़े बड़े फैसले किए कि सियासत उबल गई है। मदरसे में 12वीं के बाद की पढ़ाई बंद करने के फैसले के बाद अब यूपी सरकार ने मदरसा शिक्षक वेतन बिल भी वापस ले लिया। 10 साल पहले अखिलेश राज में पारित हो चुका ये विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के बिना लटका हुआ था, क्योंकि इसमें बनाए गए प्रावधानों को लेकर कानूनी पहलू के सवाल खड़े किए गए थे। ये विधेयक 2016 में अखिलेश राज में दोनों सदनों में पारित हो गया था, लेकिन गवर्नर राम नाईक ने इस पर सवाल उठाए थे, क्योंकि इसमें प्रावधान था कि मदरसा टीचर और कर्मचारियों को रेगुलर स्कूल की तरह तय तारीख पर वेतन मिले। वेतन में देर होने पर जिम्मेदार अफसर के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने वाला था, जबकि मदरसा कर्मियों के खिलाफ पुलिस FIR दर्ज नहीं कर सकती थी। मदरसा कर्मियों की विभागीय जांच से भी छूट थी। इस बिल को विधानसभा ने औपचारिक रूप से प्रस्ताव पारित करके वापस कर लिया है। इससे पहले यूपी के डिप्टी CM के मदरसों को लेकर दिए गए बयान को लेकर भी हंगामा हुआ था।
5: मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री।
6: ये मानसिक रोगी है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि बांकीपुर इनके अध्यक्ष की सीट जनता ने हरा दी।
4: केशव मौर्य का ये बयान इसीलिए विपक्ष के निशाने पर आया क्योंकि यूपी सरकार मदरसा शिक्षा से जुड़े संशोधनों पर तेजी से आगे बढ़ रही है। अब यूपी के मदरसों में 12वीं तक की पढ़ाई होगी, डिग्री कोर्स पूरी तरह से बंद होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप मदरसों में कामिल यानी ग्रेजुएशन और फाजिल यानी पीजी की पढ़ाई बंद की जाएगी। इसके लिए मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में संशोधन का प्रस्ताव है। दरअसल योगी सरकार में मदरसों की पढ़ाई को लेकर शुरू से ही सख्त सरकारी समीक्षा होती रही है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मदरसों की ओर से ग्रेजुएशन पीजी की डिग्री देना यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 के खिलाफ है, लिहाजा मदरसे 12वीं तक की पढ़ाई ही करा सकते हैं। ऐसे में यूपी में मौजूद कुल 4,536 आलिया स्तर के मदरसों पर असर होगा, जिनमें से करीब 1,000 मदरसों में ये ग्रेजुएशन और पीजी डिग्री दी जा रही थी। इन पाठ्यक्रमों में लगभग 37,000 से 38,000 छात्र पढ़ाई कर रहे थे, जिन्हें अब यूजीसी से मंजूर विश्वविद्यालयों का रुख करना पड़ेगा। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: तो दंगल में मेरे साथ बस इतना ही. खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ. देखते रहिए आज.
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच. प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.

0: रांची में सरकार से बातचीत के लिए छात्रों के नए प्रतिनिधि मंडल की सामने आई लिस्ट, 10 लोगों के नाम, वार्ता का वक्त फिलहाल तय नहीं। संसद में गतिरोध के बीच सोमवार तक स्थगित दोनों सदन, रिजिजू ने विपक्ष को घेरा, कांग्रेस ने 10, 11 और 12 अगस्त के लिए अपने सांसदों को व्हिप जारी किया। जेन जी पर संघ प्रमुख के बयान पर प्रियंका गांधी का तंज, बोली नहीं चाहिए सर्टिफिकेट, भागवत ने कल कहा था नई पीढ़ी ज्यादा देशभक्त है और ज्यादा ईमानदार। अंबेडकर नगर की रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को फिर घेरा, कहा एसपी सरकार में लूटने निकल जाती थी चाचा भतीजे की जोड़ी, इन्होंने नहीं चलने दी विधानसभा। लगातार बारिश से दिल्ली एनसीआर में जगह जगह जल जमाव, एमबी रोड पर कई फीट तक पानी भरा, गाड़ियों की आवाजाही में भारी दिक्कत।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: सदन नहीं चल रहा है तो उनको भी बहुत खराब लग रहा है, बट वो चाहते हैं कि जल्दी से सब कुछ ठीक ठाक हो जाए।
1: बहुत अच्छा चर्चा हुआ है
2: जी,
1: वेरी गुड।
2: किन मुद्दों पे चर्चा हुई सर?
1: हर हर डेवलपमेंट के बारे में
3: करना है तो चर्चा और संवाद इसका रास्ता है।
4: इनको सबको सदन में आना चाहिए और सदन में बुलाना पड़े इनको 15 दिन, ये तो लगता है कुछ दाल में काला है।
5: सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ।

तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जेंजी के नाम पर देश की संसद लगभग रोज ठप हो रही है। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही नहीं हो पा रही है, लेकिन क्या सरकार ने एनडीए की नई शक्ति में विपक्ष को परास्त करने की एक रणनीति बनाई है? बात आज पॉलिटिक्स के उस हिस्से की होगी जिसपे अपनी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश हो रही है। शक्ति प्रदर्शन भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि अपने अपने गुट को मजबूत दिखाकर ही आगे की रणनीति बनेगी। और खास तौर पर दिल्ली में जो जेन जी आंदोलन हुआ है उसके बाद से अपनी ताकत, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए में शामिल होने वाले एनसीपीआई के 20, शिवसेना के 7 सांसदों समेत कुल 45 सांसदों से मुलाकात की है। एकनाथ शिंदे के साथ उनकी ये मुलाकात की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो कई सारी बातें हो रही हैं कि क्या महाराष्ट्र में कुछ नई खिचड़ी पक रही है। प्रधानमंत्री के साथ नाश्ते पर हुई ये मुलाकात जो ये तमाम सांसदों की है, वो मुलाकात न सिर्फ एनडीए की मजबूती की तस्वीर दिखाने की कोशिश है, बल्कि विदेशी फंडिंग पर आ रहे नए बिल के लिए इसे बेहद अहम माना जा रहा है। सोमवार को एफसीआरए के नए बिल के संसद में पेश होने की संभावना है। कांग्रेस ने अभी से ही अपने लोकसभा राज्यसभा के सांसदों को कह दिया है कि 10 11 12 अगस्त को संसद में रहना ही रहना है। व्हिप जारी कर दिया है जिसमें कहा गया है कि बेहद अहम मसलों पर संसद में चर्चा हो सकती है। कांग्रेस ने इंडिया अलायंस के दलों को भी इन तीनों दिनों में संसद की मौजूद रहने की एक तरह से हिदायत दी है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने आज महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे से भी मुलाकात की है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। सवाल है कि क्या अगले हफ्ते संसद में विपक्ष की एकता बनाम एनडीए की नई शक्ति का मुकाबला। ये जो एनसीपीआई आप सुन रहे हैं ना, जी हाँ, उसमें यूसुफ पठान से लेकर सायनी घोष, वो तमाम सांसद हैं जो टीएमसी के टिकट पर जीत कर आए थे। ममता बनर्जी की पार्टी से अलग होकर उन्होंने पार्टी बनाई है, एनडीए को अब समर्थन दे रहे हैं और ये सभी लोग इस बैठक में शामिल थे। तो ये जो शक्ति प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है और अगला सप्ताह संसद में कैसा हंगामेदार होने वाला है, एफसीआरए बिल यानी जो विदेशी फंड आता है या विदेशी पैसा आता है अलग अलग संगठनों को, उसको लेकर जो नया बिल सरकार ला रही है, इन सब पर बवाल होना तय है। संसद में आर पार, एनडीए तैयार, देखिए रिपोर्ट। एनडीए में नई एंट्री लेने वाले सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। पीएम के साथ नाश्ते पर चर्चा ये खास है क्योंकि एनडीए परिवार के विस्तार के बाद इस मुलाकात के राजनीतिक मायने हैं। इस संसद सत्र के दौरान एनडीए की मंगल मिलन बैठकों में नहीं आने वाले एनसीपीआई के सांसदों

0: very, very big honor that he has invited us. And उन्होंने ये भी कहा कि एक्चुअली सदन नहीं चल रहे तो उनको भी बहुत खराब लग रहा है तो, बट वो चाहते हैं कि जल्दी से सब कुछ ठीक ठाक हो जाए. ऐसे ही कहा कि देखिए हम तो देश के लिए काम करते हैं और हमारे साथ जो जो है हमारे ग्रुप के जो है हम आपके साथ है. यही सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ये कहा है कि जैसे हम सोचते हैं आप उसी सोच पे विश्वास रखिए और उस हिसाब से आगे बढ़ते चलिए.
1: बहुत अच्छा चर्चा हुआ है
2: जी.
1: वेरी गुड.
2: किन मुद्दों पे चर्चा हुई सर?
1: हर हर ये डेवलपमेंट के बारे में.
2: कई सारे आपके साथी हैं जो मुस्लिम समुदाय से हैं वो भी मौजूद थे मीटिंग में सर?
1: मीटिंग में मौजूद थे, वो लोग भी सपोर्ट किया.
2: क्या स्पीकर का इशू भी चला इस पे मस्जिदों को लेके जो इशू?
1: नो.
2: ओके सर, आखिरी सवाल सर, FCRA पे क्या रुख रहेगा आप लोगों का सर?
1: हम लोग मदद करेंगे.
3: पीएम मोदी ने उद्धव गुट से शिंदे गुट में शामिल हुए शिवसेना के सांसदों के साथ अलग से बातचीत की. उधर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग से मुलाकात करने पहुंचे. चर्चा है कि महाराष्ट्र में बाढ़ प्रभावित हिस्सों और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को लेकर पीएम ने शिंदे से जानकारी ली है. एनडीए को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकातों के बीच सवाल संसद में गतिरोध का है. लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन अमित शाह के बयान की मांग पर हंगामे के चलते सोमवार तक स्थगित हो गई. सरकार ने भी साफ संकेत दिया है कि वो विपक्ष के आगे झुकने वाली नहीं, जबकि विपक्ष अपने स्टैंड से टस से मस होने को तैयार नहीं.
4: इधर तो ऑपोजिशन हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, सदन में जिसका बिजनेस होता है वही मंत्री जवाब देता है. ऑपोजिशन तय नहीं करेगा कौन सा मंत्री को कब आना है, ये ऑपोजिशन पार्टी तय नहीं करते हैं. आप लोग नाराबाजी करके तुरंत चले जाते हैं पार्लियामेंट छोड़ के, लेकिन होम मिनिस्टर सुबह से लेकर देर रात तक पार्लियामेंट नहीं रहता है, देश का संचालन करता है. और जब होम मिनिस्टर जवाब देगा आप लोग सुन नहीं पाएगा.
5: Biggest joke which I heard today is that biggest joke in this parliament was Kiran Rijiju's statement.
3: वैसे संसद में अड़चन के बावजूद सरकार पेपर लीक रोकने और सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने समेत कुछ अहम बिल पास कराने में कामयाब रही है. लेकिन विदेशी फंडिंग पर रेगुलेशन का नया FCRA बिल सरकार की बड़ी चुनौतियों में से एक है. आज तक ब्यूरो. आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं. गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए, अभय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, आनंद दुबे शिवसेना यूबीटी गुट के और धीरेन्द्र कुमार LJPR के हमारे साथ कुछ देर जुड़ेंगे. तो मुझे लगता है कि अभी टक्कर इन दोनों के बीच में ही देखेंगे इस मुद्दे पर. सबसे पहले तो गौरव जी, एकनाथ शिंदे से प्रधानमंत्री मिले हैं. मुझे पता है आप कहेंगे कि सब कुछ हम ही बता दें आपको, लेकिन अगर आप तक कोई जानकारी हो कि महाराष्ट्र में क्या चल रहा है तो जरूर हमें बताइएगा. वहीं दूसरी तरफ क्या ये जो TMC से अलग हटकर आपकी तरफ आए हैं NCPI बनकर ये सांसद 20, शक्ति प्रदर्शन मतलब पोस्ट जेंजी, क्या एक ताकत दिखाने की कोशिश इस तस्वीर को माना जाए जिसको मसल फ्लेक्सिंग कहते हैं पार्लियामेंट में?
6: नहीं अंजना जी, मैं समझता हूं कि लोकतंत्र का सबसे मजबूत प्रहरी कोई है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी. और आप देखिए कि विचारधारा की ताकत ये होती है कि जो सांसद विभिन्न पार्टियों से चुन के आए हैं उनकी पार्टियों ने क्योंकि संविधान विरोधी कार्य किया है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, उन सबको भी लगने लगा. और मैं पार्टी में जो बड़े प्रमुख सांसद रहे हैं उनमें उनकी बात कर रहा हूं, उनको भी लगता है कि नरेंद्र मोदी जी वो शख्सियत हैं जो देश को आगे बढ़ा रहे हैं, जो संवैधानिक दृष्टि से कार्य कर रहे हैं और बड़े बदलाव ला रहे हैं. तो सबसे पहले तो अगर कोई शिष्टाचार भेंट होती है और हमारी विचारधारा की ताकत बढ़ती है तो ये देश के लिए भी अच्छा है, क्योंकि हमारी विचारधारा वो संविधान के हिसाब से आगे बढ़ रही है. और दूसरी तरफ आप देखिए, ममता बनर्जी को जनता ने हराया, अरविंद केजरीवाल को जनता ने हराया, उद्धव ठाकरे को चुनाव में जनता ने हराया. और क्यों हराया? क्योंकि जनता को ये लगता है कि ये लोग केवल अपने परिवार के लिए ही हैं, उसके अलावा इनको जनता की कोई सुध लेने की आवश्यकता नहीं है. दूसरी बात देखिए, मैं इतना जरूर कहूंगा, हमने अभी कई भगौड़े थे फ्यूजिटिव्स,

0: जो हम वापस लाए भारत, और मैंने उस पर एक प्रेस वार्ता करी थी और मैंने बताया किस तरह से जो भगौड़े वापस आए हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है और जो आतंकी है उन्हें फांसी की सजा होगी। लेकिन एक बात और जनता कह रही है, भारत की जनता कह रही है, अंजना जी, जो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होके संसद से भाग जाए तो उससे बड़ा भगौड़ा कौन होगा, आप मुझे बताइए। दूसरा सवाल जो पूछा जाना चाहिए, हमने देखा कि जब आंदोलन हुआ छात्रों का, हमारे ही सरकार ने उनसे बातचीत करी, जेपी नड्डा जी ने बातचीत करी, जितेंद्र सिंह जी ने बातचीत करी, राहुल गांधी से भी, किरण रिजिजू जी ने पार्लियामेंट में भी उस पर बयान दिया। लेकिन झारखंड में मैं देख रहा हूं 14 दिन से प्रदर्शन चल रहा है अंजना जी, और कोई कार्रवाई वहां नहीं हो रही। वहां पे मुख्यमंत्री जी के पास पोर्टफोलियो भी है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कोई इस्तीफा भी नहीं मांग रहा, राहुल गांधी भी वहां नहीं जा रहे हैं। क्या ये दोहरे मापदंड नहीं है, तो नहीं जा रहे? क्या बच्चे भी अब हम फर्क करेंगे कि झारखंड का बच्चा, उसके भविष्य की चिंता नहीं होगी, केरल के भविष्य बच्चे के भविष्य की चिंता नहीं होगी, लेकिन जहां भाजपा सरकार है वहां हम कूद जाएंगे? तो मैं समझता हूं ये भी चिंताजनक है कि आज का विपक्ष गैर जिम्मेदाराना है, राहुल गांधी की तरह अपरिपक्व है और चयनात्मक राजनीति करता है, प्रदेश देख के कि कहां भाजपा की सरकार है और कहां उनकी सरकार।
1: अब तो क्रिएटिव पोस्टर्स भी अभय जी वहां पर पहुंच गए हैं, आप लोग नहीं पहुंच रहे हैं, वैकेंसी निकलेगी तभी तो शहनाई बजेगी, मेरा सीवी तैयार है, सिस्टम कब तैयार होगा? नौकरियों की खोज में नो जॉब, ये बहुत सारी चीजें लेकर लोग खड़े हो गए वहां पर, छात्र जो है लगातार, कुछ बोलिए अभय जी। और साथ ही ये जो एनसीपीआई और ये जो बैठक हुई है प्रधानमंत्री की, उसको आप कैसे देख रहे हैं? और व्हिप जारी किया है जो कांग्रेस पार्टी ने, तो क्या ये वाकई एफसीआरए बिल के लिए है? महत्वपूर्ण चर्चा के बारे में अगर आप बता सकें जिसको आप लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं।
2: हाँ अंजना जी, पहली बात तो ये कि आजाद भारत के इतिहास में ये कह रहे हैं राहुल गांधी भगोड़ा, नरेंद्र मोदी जी से बड़ा भगोड़ा कोई देखा? सदन आने को तैयार नहीं। अमित शाह जी से बड़ा भगोड़ा कोई देखा? माफी मांगने को तैयार नहीं आकर। आप कह रहे हैं वहां पर क्रिएटिविटी चल रही झारखंड में, लेकिन झारखंड में पैलेट गन नहीं चल रही है, झारखंड में कील लगी हुई लाठियां नहीं चल रही है, झारखंड में बच्चों को पानी के फोर्स से मारा नहीं जा रहा है, शरीर छल्ली नहीं किया जा रहा है, AK-47 नहीं चल रही है। आप पूछ रही हैं कि कब जाएंगे झारखंड, कब जाएंगे रांची, कब जाएंगे? अरे प्रधानमंत्री जी से पूछिए, चार कदम दूर यहां नहीं आए जंतर मंतर पे। अमित शाह जी से पूछिए, चार कदम दूर यहां पार्लियामेंट में नहीं आया। आपने कहा कि ये एनसीपीआई और मोदी जी सांसदों से मिल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि असंवैधानिक काम किया ममता बनर्जी और इनके सांसदों ने। आपने संवैधानिक काम कर लिया? किनसे मिल रहे हैं? शिंदे साहब से? क्या बताया शिंदे साहब को मोदी जी ने? यामिनी जाधव, यशवंत जाधव, प्रदीप सरनाइक, सबके मुकदमे ठंडे बस्ते में डाल रखे हैं। मत चिंता करो, तुम हमारा साथ देते रहो, सारे जो ईडी सीबीआई के छापे तुम पर किसी पर नहीं पड़ेंगे। क्या कहते हैं, बहुत सारे फुजिटिव को पकड़ के ले आए। अरे प्रधानमंत्री जी, अपने चहीतों को कहां लेकर आए? मेहुल भाई कहां गए? मेहुल भाई संदेशरा बंधु कहां गए? पूछिए उनसे। मेहुल चौकसी कहां गए? विजय माल्या कहां गए? एक के बाद एक सत्ता की सरपरस्ती उनको भगोड़ों को दी और यहां पर आकर मुखोटा लगा है। सारे संसद जब भी चल रही है, सारे अवैधानिक काम के लिए चल रही है, चाहे वो किसान कानून काले 3 करोड़ कानून बनाने हो या ये एफसीआरए का कानून हो। जितने भी काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, सब मोटे धन्ना सेठों को मदद करने के लिए कर रही है। एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, अभी आपने पूछा जेनजी का मुद्दा, भागवत साहब से बात की, देश के लोगों आपने देखा, उस जेनजी ने भागवत साहब से पूछा, मोहन भागवत साहब से उस जेनजी ने पूछा कि भागवत साहब 1922 के बाद सबसे ज्यादा इनइक्वेलिटी है, सबसे ज्यादा आर्थिक असमानता है, 1% लोगों के पास देश के 60% संसाधन पहुंच रहे हैं, 24 साल में बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, तो वो क्या कहते हैं? अरे जॉब और एम्प्लॉयमेंट इसमें अंतर समझने की कोशिश करो। और सुझाव क्या देते हैं? पंचर की दुकान, पान की दुकान, प्रधानमंत्री पकौड़े की दुकान। हाँ प्रतिष्ठा है इस काम में, मैं नहीं कहता कि ये काम कोई खराब काम है, लेकिन क्या आईआईटी पढ़ के, क्या आईआईएम में पढ़ के, क्या जेनजी अपने ग्रेजुएशन करके दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप सलाह देते हो पंचर की दुकान? अपना बच्चा लगाए 9000 करोड़ रुपए का
3: एथिनॉल का प्लांट, अपना बच्चा करे T20 में नाम काम तमाम, और हमारे बच्चों को पैलेट गन और लाठी और सुझाव के रूप में पंचर पान और पकौड़े की दुकान, शर्मनाक बात है। जैन जी आपका मुखौटा उतार दिया, वो समझ गया जी, अब इनके बहकावे में आने वाला नहीं।
1: गौरव जी, गौरव जी, जेनजी का ये पूरा आंदोलन क्या आप लोगों को बैकफुट पर डाल चुका है? क्या ये सबसे बड़ा चैलेंज बनकर आपकी सरकार के लिए आने वाले वक्त में आया है?
0: अंजना जी देखिए, इस देश में दो सोच है, एक है नरेंद्र मोदी जी की सोच, आदरणीय मोहन भागवत जी की सोच, जिसमें सकारात्मकता है, जिसमें बातचीत की जगह है, जिसमें हम कार्रवाई करते हैं, दोषियों को जेल में डालते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाते हैं, कानून लाते हैं सख्त। दूसरी तरफ क्या है, झारखंड पे मैंने सवाल पूछे, झारखंड पे कोई उत्तर नहीं दिया, और अभी आज तक की एक रिपोर्ट चल रही थी, मैं बताना चाहूंगा, सविता 28 साल की हमारी बहन 4 दिन से अनशन पे है, कह रही है परीक्षा तो दी थी लेकिन रिजल्ट नहीं आया। लेकिन यहां ना राहुल गांधी बोलते हैं वहां, ना अभय दुबे यहां बोलते हैं। एक मनीष 25 साल का युवा झारखंड में कहता है झारखंड में कोई परीक्षा ठीक से नहीं होती, आज तक दिखा रहा था। इसी तरह से हबीबा, राहुल, ये लोग भी सब लोग अनशन पे बैठे हैं, लेकिन राहुल गांधी को तो नानी के पास जाना है, इटालियन पिज्जा खाने हैं। भाई उनको क्या जरूरत है, वो कर्नाटका क्यों जाए? कर्नाटका में क्या कहते हैं इनके मंत्री कि पहले 24 दिन अनशन करने दो,
1: मैं आपको टोक रही हूँ,
0: देखेंगे।
1: गौरव जी, मैं आपको टोक रही हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, और राहुल गांधी ने अभी पोस्ट किया है, देखिए एथेनॉल को लेकर कहा है दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है, कह रहे हैं राहुल गांधी। एथेनॉल को लेकर अब घेरने की तैयारी है।
0: हाँ अंजना जी,
1: उन्होंने एक पूरा वीडियो डाला है,
0: नकली गांधी परिवार के लिए कह रहे हैं। हाँ इन्होंने, राहुल गांधी ने क्यों कहा, उन्होंने कहा ये दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली। अरे ये कौन सी दाल है, नकली गांधी की दाल है, जहां सोनिया गांधी भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है, राहुल गांधी भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है, रॉबर्ट वाड्रा भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है, तो पूरी दाल ही तो काली हुई नकली गांधी की। दूसरी बात, अमित शाह जी के बारे में बता दूं, झूठा नैरेटिव कांग्रेस फैला रही है। अमित शाह जी रोज संसद में 10:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक रहते हैं। दूसरा, जब आप संसद चलने नहीं देंगे तो गृह मंत्री जी के पास और बहुत महत्वपूर्ण काम भी है, वो काम भी वो कर रहे हैं, निस्तारण कर रहे हैं पार्लियामेंट में रह के। और तीसरी बात जो बहुत जरूरी है, जब अमित शाह जी बोलेंगे, नरेंद्र मोदी जी बोले हैं पहले, तो राहुल गांधी भाग गए हैं। आज तक पे चर्चा पे हम बैठे थे, मणिपुर पे चर्चा हुई, राहुल गांधी ने पहले खूब बकवास करी संसद के पटल पे, जब नरेंद्र मोदी जी बोले तो वो भाग गए। इसी तरह से जब तेल की कीमत जो हम लोग आयात करते हैं उस पर बहस हुई, नरेंद्र मोदी जी बोले तो राहुल गांधी भाग खड़े हुए। सबसे बड़ा भगोड़ा कौन है, यही इटालियन राहुल गांधी है, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं। अगर दम हो, अगर तुम में मादा हो तो संसद पे बहस करके दिखा दो, तुम में इतना मादा नहीं है, तैयारी नहीं करके आते हो, और जब अमित शाह जी शेर की तरह दहाड़ते हैं तो तुम चूहे की तरह भाग जाते हो।
1: यूसुफ पठान से लेकर सायोनी घोष सब एनसीपीआई के साथ ये जो बैठक हुई है सांसदों के साथ उसमें शामिल है, इस पर मैं सवाल पूछूंगी, लेकिन उससे पहले जो वही खबर मैंने आपको बता रही थी, E20 पेट्रोल पर राहुल गांधी का एक पोस्ट है, वो कह रहे हैं, सुनिए आपको सुना ही देते हैं, उन्होंने एक वीडियो पूरा डाला है।
4: मामला है, ये बहुत बड़ा इशू है। नॉर्मली हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, मगर ये दाल ही काली है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दिस इज अ मैटर ऑफ सीक्वेंसिंग इन एनी कैंपेन, वी हैव टू डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ अफेयर्स। आवर प्रॉब्लम राइट नाउ इज दैट देयर इज सो मच करप्शन दैट देयर इज अ ह्यूज लाइन in what we have to sequence. Don't worry, this issue, we're going to take it up in a massive way, because this is destroying people's cars, destroying people's scooters, destroying people's lives, and literally is stealing directly from them. Ye E20 ka jo mamla,
1: इधर E20 पेट्रोल पर राहुल गांधी का ये पोस्ट आया है और दाल में काला नहीं पूरी दाल ही काली है वो कह रहे हैं और उन्होंने बाकायदा एक वीडियो इस पर डाला है। तो अब इस मुद्दे पर भी वो घेरे। आनंद दुबे जी और धीरेन्द्र जी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में जुड़ गए हैं, लेकिन एक जवाब आपका अभय जी चुकी बनता है, इसलिए छोटा सा एक जवाब मैं आपसे चाहती हूँ। ये जो प्रधानमंत्री से 20 सांसद NCPI के मिले हैं और देखिए उनमें तीन नाम जो हम आपको पहले भी बता रहे थे, अभी तक ये तीनों जो मुस्लिम सांसद है वो नहीं आ रहे थे, लेकिन संसद सत्र के NDA की मंगल मिलन बैठक में नहीं आने वाले जो NCPI सांसद हैं वो भी आज बैठे हैं साथ। यूसुफ पठान बहरामपुर से सांसद, खलीलुर रहमान जंगीपुर के सांसद और अबू ताहिर मुर्शिदाबाद के सांसद भी मौजूद रहे इस बैठक में। अब देखिए एक एक जुटता जो वो दिखा रहे हैं, एक ताकत तो दिखा ही रहे हैं, तभी तो आप भी व्हिप जारी कर रहे हैं मंडे के लिए। और FCRA को लेकर क्या रुख रहेगा आपकी पार्टी का अगर सरकार लाती है?
2: अंजना जी, क्या आपको लगता है, ये आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर ही आ रहे? किस बात से प्रभावित हुए? क्या छात्रों को बच्चों को पैलेट गन से छलनी कर दिया उससे प्रभावित हुए होंगे? क्या इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम कर दिया इन लोगों ने उससे प्रभावित हुए होंगे? क्या ये E20 जो इथेनॉल का गेम करा है इनके मंत्रियों के बच्चों के कारोबार खोलने के लिए मुनाफा पहुंचाने के लिए उससे प्रभावित होकर आएंगे? गाड़ियां 17 करोड़ गाड़ियों पर पड़ रहा है जो 2023 के पहले की है। राहुल गांधी जी का विस्तार से वीडियो देखिएगा, सारा खुलासा उसमें हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं किस चीज से प्रभावित हुए? इन्होंने देखा कि सारे जो भगोड़े थे, जो सारे ED और CBI के छापे जिन पर पड़े, उन लोगों को इन्होंने कवरिंग दिया और उन सब लोगों को के केसेस को ठंडे बस्ते में डाल दिया, तो सारे लोगों को डराकर। जेन जी के लिए एक खास मैसेज है, आप याद रखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार दूसरी तरह से दमन करने पर आमादा है। ये अभी कह रहे थे ना, ये भगोड़े भी है इनके दोनों नेता और लपोड़े भी है। वहां जाकर मेलोडी खिलाएंगे मीठी चॉकलेट और तुमको पैलेट गन से वार करेंगे। FCRA की जहां तक बात है तो RSS को CSR की फंडिंग सैकड़ों करोड़ रुपए की कराएंगे प्रधानमंत्री जी, और जो छोटे छोटे से NGO हैं जो गरीबों की भलाई में लगे हैं उनका दमन करना चाहते हैं क्योंकि RSS का वर्चस्व स्थापित रहे। और क्या कह रहे थे, इन्होंने वर्दी विचार और हथियार अंग्रेजों से उधार लिया है, खाकी वर्दी लठ, तो ये डंडा लेकर चलते हैं और ये कलम वालों की लड़ाई है। ये आज भी खाकी और डंडे के साथ खड़े हुए देख लीजिए, और हमारे छात्र कलम लेकर इनका मुकाबला करेंगे। अंग्रेजों का किया तो ये किस खेत की मूली है, इनको भी हम हरा कर रहे हैं।
1: ठीक है, आज तो दुबे जी आनंद के साथ यहाँ स्टूडियो में ही आए हैं, तो गिने जा रहे हैं उधर सांसद, NCPI वाले सानी घोष, यूसुफ पठान, कल्पना की थी आपने, बहुत लोग तो कह रहे हैं दुबे जी भी जाने वाले हैं।
5: नहीं नहीं, अंजना जी नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि NDA के का कुनबा बढ़ रहा है और मंगल मिलन हो रहा है। किस एंगल से मानो कि ये मंगल मिलन हो रहा है? आपने पहले हमारी 2022 में पार्टी तोड़ी, हमें नया नाम नया चुनाव चिन्ह मिला, हमने कहा हम इसमें भी राजी खुशी जी खा लेंगे प्रधानमंत्री जी। हमने फिर से अपनी तैयारी की, हम 2024 में फिर चुनाव में आए, हमारे 9 सांसद चुन के आए, इस उम्मीद में आए कि उद्धव ठाकरे जी का नया नाम है, नया चुनाव चिन्ह है, लेकिन भरोसे का चिन्ह है, मशाल है जो करने वाली कमाल है ताकि देश में हो जाए धमाल है। लेकिन आपने क्या किया आदरणीय प्रधान, वही कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी, आपने क्या किया कि 2026 में हमारी पार्टी के 6 सांसदों को तोड़कर आपने NDA में मिला लिया। अब मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आपके दर्शक जानकार हैं, भावनिक ढंग से हमसे जुड़े रहते हैं, आप बताइए कि क्या किसी दूसरे के नाम पर चुन के आए सांसदों को आप अपने पास मिला के क्या मंगल यात्रा शुरू कर पाएंगे? अरे लोग कहते हैं कि अपनी लकीर को बढ़ाइए, किसी की लकीर को मिटाइए मत। देखिए हमारी सरकार से लाख
1: सवाल पूछ लो दुबे जी,
5: बिल्कुल पूछ लीजिए।
1: आप किसके साथ चुनाव उस वक्त जीत कर आए थे, किसके साथ गठबंधन में
5: 2024 में? हम महाविकास अघाड़ी इंडिया
1: गठबंधन, उससे पहले की बात कर रही हूँ, जब इस बात पर लड़ाई हो गई और आप लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया, किसके साथ अलायंस में जीत कर आए थे?
5: जीत के तो आए थे बीजेपी से, तो क्या आज बीजेपी के साथ मंगल मिलन में हम है? हम तो नहीं, हमारा तो सब अमंगल हो गया।
1: आप कांग्रेस के साथ चले गए?
5: अरे तो हमारा सब अमंगल हो गया ना, तो हम उस मंगल मिलन में तो आए नहीं, लेकिन हम सिर्फ ये सरकार से पूछना चाहते हैं।
1: आप पर इतना शक होता है, हम बता नहीं सकते।
5: नहीं नहीं अंजना जी, देखिए मैं तो देशभक्त हूँ, एक पल के लिए कांग्रेस और बीजेपी को बगल रख दीजिए, हमें आप सिर्फ ये बताइए कि क्या सरकार से सवाल पूछना, सरकार की आलोचना करना, सरकार की कुनीतियों का विरोध करना, क्या गलत बात है?
1: ये तो मोहन भागवत जी भी कह रहे हैं।
5: आज आदरणीय मोहन भागवत जी ने यही कहा कि बच्चों की मांग जायज है, उनके साथ संवाद आपको करना चाहिए था, आपने बहुत देर कर दी और उस देरी की वजह से अंजना जी हमारे पुलिस कर्मी घायल हुए, हमारे मीडिया के साथी घायल हुए, हमारे बहुत सारे बच्चे घायल हुए। अब वो कौन अराजक तत्व थे, कौन उपद्रवी थे, उनको तो आज नहीं कल हमारी पुलिस पकड़ेगी। लेकिन जो भी हुआ देश को अच्छा नहीं लगा। अरे देश क्या चाहता है? वो तो एक चौपाई कह दूंगा कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा और दान पात्र में चोरी होगी और नीत का पेपर भी लीक हो जाएगा। ऐसी कल्पना हमने रामराज में नहीं की आदरणीय गौरव भाटिया जी।
1: धीरेन जी आप लोग
5: गौरव भाटिया ने पूरा किया था, ऐसा
1: पूरा फंसा हुआ नहीं दिख रहा है मामला,
6: कहीं कोई फंसा हुआ नहीं दिख रहा है।
1: चढ़ावा चोरी, पेपर चोरी, अब तो इथेनॉल पर भी राहुल गांधी मोर्चा खोल रहे हैं।
6: मैं बता देता हूँ अंजना जी, इनसे बढ़िया कोई कंटेंट राइटर अभी तक है नहीं।
1: किन से बढ़िया?
6: राहुल गांधी जी से बढ़िया। लगातार छात्रों की भीड़ पर अपनी राजनीति करने वाले, खुद के पार्टी की नीतियों पर कोई आंदोलन कभी खड़ा नहीं कर सकी कांग्रेस ना विपक्ष के लोग। अगर छात्र आंदोलन किया तो उसी आंदोलन में आ गए और उसका भी साथ नहीं दे रहे हैं, उसमें भी वो लोटपोट हो रहे हैं जाकर के प्रधानमंत्री जी के निवास के पास। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास वो लोटपोट नहीं हो रहे हैं क्योंकि वहां पे दलित छात्र, आदिवासी छात्र का आंदोलन है, वह तरीका गांधीवादी है, उनको उपद्रवियों का साथ नहीं मिला है तो वो साथ नहीं दे रहे। विपक्षी लोग उनको राम मंदिर चोरी की बात, चढ़ावा की बात करते हैं। क्या वहां पर कोई साधु ने चोरी किया है, किसी महंत ने चोरी किया है, किसी पंडित ने चोरी करी है? एक एक एक वहां पे ठेकेदार जो रुपये गिनने का काम करता है वो भी जेल के अंदर है, आप उसकी बात कर रहे हैं? दूसरी बात है, आप
1: तो
6: राम मंदिर
1: काहे के लिए बनाया गया था, झाल बजाने के लिए?
6: राम मंदिर
1: क्या कर रहे हैं आप, कहां क्लीन चिट दे रहे हैं?
6: नहीं नहीं, क्लीन चिट नहीं दे रहे ना, क्लीन चिट वो लोग चले गए हैं वहां पे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब जांच रिपोर्ट आई है और जो लोग दोषी हैं वो लोग तो अभी उनके साथ में जेल में ही वो सजा काट रहे हैं, फिर साधु संत के भेष बना करके, और जो आप वहाँ पे नुक्कड़ नाटक संसद में करवा रहे हैं, आपको अभी बिल में बहस में भाग लेना चाहिए था, एफसीआरए वाले में मुद्दे पे आना चाहिए था, जजों की संख्या बढ़ाने वाली बिल है, क्या देश के 72,000 जो मात्र एक साल में केस पेंडिंग है उस पर फैसला नहीं देना चाहिए? क्या न्याय देने की यही प्रक्रिया है? अगर जजों की संख्या, आप कह रहे हैं कि परीक्षा में सुधार के लिए,
1: मेटा के खिलाफ केंद्र सरकार का कड़ा रुख है, आपको बता दें मेटा को लेकर सरकार ने ये कहा है कि जो प्रोपेगेंडा रोकने का रोड मैप देने को मेटा ने निर्देश किया है। मेटा यानी समझ लीजिए फेसबुक और इंस्टाग्राम, जिसका जिसकी जो पेरेंट कंपनी है वो मेटा है। चिन्हित कंटेंट जल्द हटाना होगा क्योंकि मेटा पर ये सवाल है कि डीप फेक वीडियो, अभी भी सोचे ना कि एक बार उनके अधिकारी यहां पर आए, सरकार के सामने आई एम सॉरी भी कह दिया, लेकिन अनेकों बार प्रोफेशनली सॉरी बोलने का एक रिकॉर्ड बना चुका है मेटा, और खुद मार्क जकरबर्ग भी कई बार अमेरिकी पार्लियामेंट में कई जगहों पर सॉरी बोल चुके हैं। लेकिन आज भी अगर आप खोलिएगा तो अनेकों AI, डीप फेक, अपमानजनक, बुलिंग कंटेंट उस पर मौजूद रहता है और उनकी खुद की कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ वाला कंटेंट वहां पर तैरता रहता है, लेकिन उसको रोकने की परवाह या कोई रोडमैप मेटा की तरफ से भारत में दिखता नहीं है। बहरहाल दुबे जी, आप जल्दी से उनकी बात का जवाब दीजिए, पूरा कीजिए एक लाइन में, क्या बोल रहे थे?
6: मैं वही कहना चाह रहा था कि आप राम मंदिर में जाते नहीं है ना, आपका जन का सहयोग ना आपका धन का,
1: भ्रष्टाचार
6: पर जो लोग अंजना जी वहां पे पकड़े गए हैं वो कोई साधु संत पकड़े गए हैं क्या, जो आप उनका संतों का अपमान कर रहे हैं भगवा पहन करके? आप उसका नकल करिए ना, जो लोग पकड़े गए हैं तो क्या आउटसोर्स कंपनी का विरोध कर रहे हैं और संतों को बीच में ला रहे हैं? दूसरी बात है कि
1: दस सेकंड
6: और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, 5 दिन पहले हमारे प्रभारी उत्तर प्रदेश के अरुण भारती जी के साथ मैं राम मंदिर गया था। राम मंदिर ये लोग इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि उसके आधारशिला एक दलित व्यक्ति कामेश्वर चौपाल ने रखी है और आज उसका भी छुआछूत लोगों ने बनाया। दलितों से इन लोगों को नफरत है इसलिए राम मंदिर का भी ये लोग विरोध कर रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ कि दाल काली वाली जो बात कह रही है, मैं कह रहा हूँ कि वो जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि पूरी दाल खाली है, अरे भैया दाल काली नहीं है, उसमें जो काली है ना वो जीरा हमने डाली है, आप उसको पता करिए।
5: ट्रेन की तरह चल रहा है इनको,
6: अरे नहीं नहीं नहीं, आप देखिए जनता के मुद्दों को उठाइए, सदन में जो एक बना है कि हम टास्क फोर्स बनाएंगे, जजों की संख्या बढ़ाइए ताकि रिपोर्ट सही सही आ सके।
1: चुप हो जाइए,
5: देश में गुस्सा है, हमारा अगर सिस्टम खोखला है, कमजोर है, सड़ गया है, उसका नेतृत्व अगर सरकार कर रही है तो हम सरकार से सवाल पूछेंगे। आपको
1: आप
5: इतना
1: पूछ रहे हैं, छात्र निकले तब जाकर तो सरकार को अकाउंटेबल ठहराया, आप लोगों को तो कोई वो ही नहीं हो रहा है।
5: अज्जा जी, ये दतिया और बांकीपुर क्या प्रेम मोहब्बत में हारे हैं? ये गुस्से से हारे हैं, फिर भी नहीं समझ रहे हैं? हम तो धन्यवाद देंगे आदरणीय मोहन भागवत जी का, सरकार को आईना दिखा रहे हैं आदरणीय भागवत जी, फिर भी सरकार अहंकार में।
1: भाटिया जी, इस पर दो सवाल है आपसे। क्या संघ प्रमुख मोहन भागवत जी आप लोगों को आईना दिखा रहे हैं जब वो ये कह रहे हैं कि एंटी नेशनल नहीं है ये, और अगर मुझे पैलेट गन या किसी चीज पर भी भरोसा करना होगा तो मैं जेन जी की बात पर भरोसा करूंगा? बहुत सारी बातें उन्होंने कही है, क्या वो आपको आईना दिखा रहे हैं? सवाल का पहला हिस्सा। सवाल का दूसरा हिस्सा, दिल्ली में राहुल गांधी क्यों आंदोलन कर रहे थे? भाई वो विपक्ष है, अब झारखंड में भी वही जाए आंदोलन करने? आप लोग जाइए ना वहां पर आंदोलन करने, झारखंड में तो आप विपक्ष है ना?
7: हम लोग रचनात्मक विपक्ष है, हमारे विधायक पहले गए हैं, बाद में बीजेपी का प्रतिनिधि।
1: तो गौरव जी को बोलने दीजिए, दो सवाल।
0: आनंद दुबे जी की बात का उत्तर देना चाहूंगा। आनंद दुबे जी ने जो कहा, मैं भी कुछ कहता हूँ। रामचंद्र जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, पिता विरोध करेगा कांग्रेस का, बेटा सोनिया मैं हो जाएगा।
1: उस पुरानी मोहब्बत का समझ ही नहीं आता क्या करें।
0: कहानी
1: और एक दो करते हैं। एक तो आप दोनों का ब्रेकअप स्टोरी है, ब्रेकअप स्टोरी जो है ना आप दोनों की, ब्रेकअप स्टोरी जो है ना आप दोनों की, आपकी भी टीस नहीं जाती, उनकी भी नहीं जाती। बोले बोले गौरव जी।
0: आनंद भाई की मुस्कुराहट के हम सब कायल हैं। सबसे पहले आनंद भाई को ये पता होना चाहिए, उद्धव ठाकरे जी सुप्रीम कोर्ट गए, इनको सिंबल और पार्टी का नाम नहीं मिला। सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है, थोड़ा सम्मान सर्वोच्च न्यायालय का करें। दूसरी बात, उद्धव ठाकरे को जनता ने क्यों हराया 2025 के विधानसभा चुनाव में? इसलिए हराया क्योंकि उद्धव ठाकरे जो हैं वो फेसबुक लाइव सीएम कहलाते थे, पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने रेजिग्नेशन फेसबुक लाइव पे दिया था। और बाला साहब ठाकरे जी आपके लिए भी श्रद्धे हैं, हमारे लिए भी श्रद्धे हैं। बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि सोनिया गांधी के सामने झुकने से पहले, हाथ मिलाने से पहले मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। क्या किया आप बताइए उद्धव ठाकरे ने? उद्धव ठाकरे ने वो किया जो बाला साहब ठाकरे जी के आदर्शों के विपरीत था, इसलिए जनता ने आपको नकार दिया। अब आपके दो सवाल जो हैं अंजना जी, मैं उसका उत्तर देता हूं। देखिए, संघ प्रमुख जी ने जो बात कही और जो नरेंद्र मोदी जी ने कही, मैं समझता हूं परस्पर एक ही है। जेन जी उसी नागरिक की तरह जैसे हम सब हैं, देश से प्रेम करती है। अगर कोई विरोध प्रदर्शन करता है, इसकी इजाजत संविधान भी देता है। और मैं समझता हूं बड़े दिल का परिचय देते हुए आदरणीय मोहन भागवत जी ने यह बात बोली है कि भाई देश प्रेमी है, हमें उनसे बातचीत करनी चाहिए। मोदी जी ने भी यही अपील करी, मोदी जी ने भी बड़ा दिल दिखाया, उन्होंने कहा अगर मुझे कोई गाली भी देता है तो मैं उसे माफ करता हूं, ये हमारे बच्चे हैं, हमें इन्हें गले लगाना है। तो कोई विरोध नहीं है, बल्कि एक ही बात कह रहे हैं। और अच्छा लगता है कि हमारे लिए कोई पिता तुल्य बड़ा व्यक्ति है जो हमें मार्गदर्शन भी देता है, हमें बताता है क्या सही है। आपकी दूसरी बात, झारखंड में जो पर्चा लीक होता है, भारतीय जनता पार्टी ने वहां एक सकारात्मक भूमिका निभाते हुए मजबूत विपक्ष का रोल अदा किया है। सीबीआई जांच की मांग अगर किसी ने करी तो भारतीय जनता पार्टी ने करी, और भारतीय जनता पार्टी ने जब विरोध किया तो हेमंत सोरेन जी जो कि चुप्पी साधे हुए थे, पहली बार दो दिन पहले कुछ बोल पाए। तो मैं समझता हूं आज की कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को भाजपा से सीखना चाहिए कि किस तरह से लोकतंत्र में अगर आप सहमत नहीं हैं, सकारात्मक विरोध भी कर सकते हैं, बिना गाली गलौज करके भी अपनी बात को मनवाया जा सकता है। ये बात राहुल गांधी को समझनी चाहिए। और संसद लोकतंत्र का मंदिर है अंजना जी, एक अच्छी चर्चा, एक बढ़िया चर्चा जो सारे विधेयक अभी पारित होने हैं उस पे हो जाए तो क्या चला जाएगा? या तो आप हमें दूध का दूध और पानी का पानी कर दीजिएगा, और या हम दिखा देंगे कि आपके तर्कों में कोई दम नहीं है।
1: चलिए अब जवाब दीजिए इसका। अभय जी जवाब दीजिए। अभय जी, ऑडियो नहीं आ रहा
8: है। पार्टी के लिए कांग्रेस को भाजपा से सीखना चाहिए क्या? अब आ रहा है अंजना जी?
1: आ रही है सर, बोले।
8: हाँ, गौरव भाटिया कह रहे हैं कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। क्या सीखे तुमसे? 15 साल की बच्ची के घर गुंडे भेजकर उससे माफी मंगवाओगे टेलीविजन पर, और फिर प्रधानमंत्री जी कहेंगे मैंने बच्चों को माफ कर दिया?
2: तुम बच्चों को ट्रोल करोगे गंदे तरीके से, उनको उनको गालियां बकोगे सोशल मीडिया पर।
0: ने भेजे
2: ये जो व्हाट्सएप के झूठ से जन्मी भारतीय जनता पार्टी,
0: आप यहाँ पे प्रूव करिए कि भाजपा ने भेजे,
2: व्हाट्सएप के झूठ से जन्मी,
0: पहले प्रूव करिए
2: व्हाट्सएप के झूठ से जन्मी। अरे चुप रहिए, चुप रहिए आप। अंजना जी, व्हाट्सएप के झूठ से जन्मी भारतीय जनता पार्टी, व्हाट्सएप के झूठ से जन्मी भारतीय जनता पार्टी
1: बारी
2: के सच से समाप्त हो जाएगी। जो अरे चुप रहिए, राम जी के जाप से जन्मी भारतीय जनता पार्टी चंदा चोरी के पाप से खत्म हो जाएगी। व्हाट्सएप के झूठ से जन्मी भारतीय जनता पार्टी इंस्टाग्राम के सच से समाप्त हो जाएगी। अरे चंदा चोरों, क्या क्या क्लीन चिट दे रहे हो? और ये अभी कह रहे थे एक प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के समर्थन।
1: बारी बारी गौरव जी, आवाज जा नहीं रही आपकी। गौरव जी रुक जाइए, बारी बारी से ही आवाज लेंगे प्लीज। गौरव जी रुक जाइए, बीच में आवाज नहीं जा रही, आप हाथ उठाइए, मैं आऊंगी आपके पास। लेट हिम कंप्लीट। अभय जी खत्म कीजिए। अभय जी आप जहां से भी बोल रहे हैं ना, आवाज बहुत मतलब एको गूंज रही है, तो बहुत शार्प आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। आप बोले सर, बोले बोले पूरी कीजिए अपनी बात। सवाल ये है ना कि सर, एक सेकेंड बात सॉलिडारिटी की है ना भाई। दिल्ली में जब छात्र आए वहां पर जंतर मंतर पर राहुल जी नहीं गए, लेकिन अपनी तरीके से उन्होंने सॉलिडारिटी दिखाई। वो पीएम आवास तक गए घेराव करने के लिए, ये किया भाई। हेमंत सोरेन के लिए एक पोस्ट ही आप लोग डाल दीजिए झारखंड के लिए, इतना क्या बचना, इतना क्या चार मंत्रियों का मोह हो गया?
2: तो फिर आपने दिखाया नहीं। राहुल गांधी जी ने खुद छात्रों से चर्चा की, जो आंदोलनरत छात्र हैं उनसे टेलीफोन पर बात की और उन्होंने पूरा समर्थन व्यक्त किया। हमारे जो प्रभारी हैं राजू जी, वो
1: एक सेकंड अभय जी मुझे लिंक भेजिए अभी, व्हाट्सएप पे हम दोनों कनेक्टेड हैं, आप लिंक भेजिए, मैं अभी तुरंत दिखाऊंगी। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि गलत मतलब मैं गलत हूं, अगर मेरे पास वीडियो नहीं है, आज तक ने नहीं दिखाया, तो हम अभी दिखाएंगे सर। अभय जी
2: आप सुनिए, आप ही के चैनल ने आपके चैनल लल्लन टॉप ने वो दिखाया है, और लल्लन टॉप का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने राहुल गांधी जी की जो छात्रों से चर्चा है उसको प्रसारित किया है, मैंने अभी ग्रुप में भेजा है। दूसरी बड़ी बात, हमारे प्रभारी गए हैं यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के साथियों के साथ, और मंत्री मैं अभी यहां पर असमर्थ हूं क्योंकि मैं उस मोबाइल से शो कर रहा हूं, अच्छा, फॉरेस्ट एरिया में बैठा हूं अंजना जी, लेकिन आप
1: कहां पे मिल सकता है मेरी टीम को?
2: अच्छा एक मिनट सुनिए और
1: निकाल दीजिए अगर ललन टॉप का
2: पोस्ट। ललन टॉप ने पूरा इंटरव्यू किया है उन बच्चों का जिन बच्चों ने बात की है जी, और राहुल गांधी जी ने अपने इंस्टाग्राम पर भी छात्रों के सवाल के उत्तर में ये बात कही है कि मैं उनके साथ हूँ। हमारे प्रभारी गए, सारे कांग्रेस के मंत्री मुख्यमंत्री से मिले, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के लोग मिले, और कल संभवतः छात्रों से चर्चा होगी। राहुल गांधी जी का कहना है कि ये राजनीति से परे विषय मेरे लिए है, ये भारतीय जनता पार्टी घृणित राजनीति
9: का उत्तर प्रदेश का मंत्री देश के लोगों की इतनी शर्मनाक बात है, आदित्यनाथ जी का एक मंत्री मंत्री से कह रहा है आओ किसको भर्ती और प्रवेश परीक्षा चाहिए, मैं कराता हूँ, बेबी राम मेरे पास हो, वो बेबी राम एडमिशन कराएगा, दो मुकदमे बेबी राम उनके विधायक है, आज मुकदमे भर्ती और प्रवेश परीक्षा के घोटाले के उस आदमी पे
1: पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का आया है, बायोफ्यूलिंग ब्लेंडिंग प्रोग्राम अच्छा चल रहा है वो कह रहे हैं, बायोफ्यूल कुछ लोग E20 पर विवाद खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि बीते दिन आपको याद हो आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने एक पोस्ट डाला था, आज राहुल गांधी ने पोस्ट डाला है, उसके बाद से हरदीप पुरी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। अब जो अगर गौरव जी हम लोगों ने मांग लिया है वीडियो, अगर वहां पर छात्र बता रहे हैं कि राहुल जी ने बात की है, तो आप सुना दीजिए, दिखा दीजिए।
10: झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनको सपोर्ट करें। देखिए स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है, और इलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ओप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो।
1: बोलिए गौरव जी, अब तो पूरा वीडियो, और ये वीडियो आज तक ने भी दिखाया था, जवाब दीजिए गौरव जी, वो तो झारखंड की कैटेगोरिक चर्चा कर रहे हैं,
7: ये तो अपील कर रहे हैं, यहाँ तो सरकार में है नैना जी, इनको तो डिसीजन लेना है। ये किसको राष्ट्र के नाम संदेश देने का तो समय नहीं है। एक जगह आप जंतर मंतर के लिए तो सड़क पे आ जाते हैं, झारखंड के लिए आप राष्ट्र के नाम संदेश दे रहे हैं।
1: गौरव जी को बोलिए, गौरव जी राहुल जी का बाकायदा वीडियो है पूरा।
0: हाँ अंजना जी, अगर ये राहुल गांधी जी झारखंड के संदर्भ में कह रहे हैं तो ये तो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे थे। तो हेमंत सोरेन और जिसके पास भी बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, ये सारे विभागों, क्योंकि हेमंत सोरेन जी के पास भी शिक्षा विभाग है, तो उनको इस्तीफा तुरंत देना चाहिए। और राहुल गांधी जो तो सरकार का हिस्सा है, राहुल गांधी जी को कहना चाहिए हेमंत सोरेन जी गद्दी खाली करो, वहां के बच्चों का हित आप नहीं साध पा रहे हो। दूसरी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे ने दो झूठ बोले यहां पे। पहला झूठ उन्होंने कहा एक 15 साल की हमारी बच्ची है, उसको भाजपा के गुंडे जाके धमका रहे हैं। मैं चुनौती दे रहा हूं आज तक पे, आप गुंडे का नाम बताइए। मुझे तो ऐसा लगता है राहुल गांधी का ही कोई चिंटू होगा, क्योंकि ये तो कांग्रेसियों का काम है कि वो गुंडे बन के इस तरह की धमकियां देते हैं। और आइंदा से अभय दुबे कभी भी झूठ मत बोलना, अगर भारतीय जनता पार्टी का नाम लेते हो सम्मान से लो, प्रमाण से बताओ कि ये चीज करी है, इस व्यक्ति ने करी है, ये इधर उधर की बातें मत किया।
8: मारा भैया पैलेट गन से,
0: हमने 2024 में
8: ये
0: पर्चा लीक ना हो इसका हम लोग कानून लाए। मैं बीच में नहीं अभय दुबे। धन्यवाद। अब सुनिए अंजना जी, 2024 में हम पहली बार कानून लाए कि अगर पर्चा लीक होगा तो सजा होगी। कांग्रेस 55 साल सत्ता में रही, मैं पूछना चाहता हूं आप कौन सा कानून लाए उसका नाम बताइएगा। प्रश्न एक, प्रश्न दो, हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, पर्चे लीक हुए कांग्रेस की सरकारों में, सजा हो रही है मोदी जी की सरकार में। आपने कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए थे जिसमें पर्चा लीक के केसेस चलेंगे। तीसरा, हम लोग बहुत नियमित तरीके से बदलाव ला रहे हैं, हम छात्रों से बातचीत कर रहे हैं, क्यों राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव ये लोग झारखंड, कर्नाटका, केरला नहीं जाते। राहुल गांधी के वक्तव्य,
1: अरे वो क्यों जाएंगे गौरव जी, गौरव जी
0: झारखंड की बात करें,
1: गौरव जी एक सेकंड, एक बेसिक सवाल पूछ रही हूं मैं। मुझे पता है कि आप लोग पॉलिटिक्स के सब धुरंधर हैं, हम लोग तो कुछ जानते वानते हैं नहीं, लेकिन वो जहां पर उनकी सरकार है, मिलीजुली सरकार, गठबंधन की सरकार, वो वहां क्यों जाएंगे? हेमंत सोरेन का इस्तीफा भी राहुल गांधी मांगे तो बीजेपी वाले क्या करेंगे?
0: नहीं अंजना जी, मुझे अभी आपने यही सवाल पूछा था तो मैंने आपको बताया भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई है। हमने ही हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांगा, हम लोग छात्रों के साथ खड़े हुए और सीबीआई जांच की मांग करी। बात है कि आपकी राजनीति में दोहरे मापदंड कैसे हो सकते हैं। अगर बच्चे हमारे हैं तो झारखंड, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना के बच्चे भी हमारे हैं, वहां पर्चे लीक होते तो कांग्रेस की जवाबदेही होगी। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जो बात करती है सिद्धांतमक तौर पे वो पूरे देश में हम लोग उसका पालन करते हैं। अब मैं अंत करूंगा एक बात कह के, राहुल गांधी ने कहा मैं कोटा गया, भाजपा की सरकार है, देहरादून गए, भाजपा की सरकार है, इलाहाबाद जाने की बात कर रहे, भाजपा की सरकार है। तभी तो मैं पूछ रहा हूं झारखंड क्यों नहीं जाते हैं, कर्नाटका, केरला क्यों नहीं जाते? आपको पता है पंजाब में लाठीचार्ज हुआ छात्रों पे, वहां ही चले जाइए, वहां तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो भी नहीं करेंगे। इसीलिए राहुल गांधी की विश्वसनीयता नहीं बची है।
1: चलिए अब जवाब थोड़ा सा दे दे, उसके बाद आप दोनों के पास तुरंत आ रहे। अभय जी छोटा सा,
8: अंजना जी
1: राहुल जी की वीडियो से खुश नहीं है ना भाटिया जी ना धीरेन्द्र जी,
8: बात की प्रधान नहीं, आप बताइए वो लल्लन टॉप ने एक अलग से स्टोरी की, वहां आंदोलनरत छात्रों से फोन पर भी बात की राहुल जी ने, प्रधानमंत्री जी चार कदम जंतर मंतर नहीं आए, चलो फोन पे बात की क्या प्रधानमंत्री जी ने, क्या दिया सिला प्रधानमंत्री जी ने, पैलेट गन से छलनी कर दिया छात्रों को मेरे, और अब बात कर रहे हैं रांची क्यों नहीं जाते। अरे तुम आओ ना चार कदम जंतर मंतर, क्या मांगा था उन्होंने, तुम उस मंत्री को बर्खास्त करो जो खुलेआम कह रहा है छात्रों को कि आओ मैं भर्ती कराता हूं बेदीराम के माध्यम से, पकड़ो ना संजीव मुखिया को, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, सीबीआई पहले ही दिन फास्ट ट्रैक कोर्ट पर नहीं गई, यहाँ निर्णय होना था फास्ट ट्रैक कोर्ट में, बेशक लोगों ने 2024 में
5: कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक द्वारिका से लेकर कामाख्या तक हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था कमजोर हो गई है। पिछले 12 वर्षों से लगातार आप क्या किए हैं वो आप बता नहीं पाए। आपने अभी अभी कहा कि पिछली कोई भी सरकार ऐसा कड़ा कानून नहीं लाई है, ऐसा अध्यादेश अधिनियम पार्लियामेंट में नहीं लाई है। प्रभु, हम आपसे चाहते हैं कि पेपर लीक ही ना हो। आप हमें कह रहे हैं कि पेपर लीक हो जाएगा तो उनको फांसी पर चढ़ाएंगे, नहीं चाहिए। हम चाहते हैं हमारा 100% पेपर लीक ही ना हो। आधा विषय समाप्त। दूसरी बात, झारखंड देश में ही है, रांची हमारे देश में ही है। अगर प्रहलाद जोशी जी जाकर जेपीएससी के बच्चों से मिल लेंगे तो क्या कोई बिजली नहीं गिर जाएगी गौरव भाटिया जी? ऐसा तो थोड़ी है कि वहां कांग्रेस की सरकार है, वहां तो केंद्र सरकार ध्यान ही नहीं देगी। अरे भाई, आप इस देश के मालिक हैं, आप राजा हैं, आप जाइए अपनी प्रजा से बात करिए, उनसे संवाद करिए और उनको विश्वास दिलाइए कि जेपीएससी के विद्यार्थियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, हम हेमंत सोरेन जी से बात करेंगे, आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे। आप तो इस उम्मीद पे बैठे हैं।
1: कोई आया था क्या जंतर मंतर?
5: हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे।
1: मैंने सोचा कंफर्म कर लूं ताकि गलत जानकारी ना मैं दे दूं। आए थे ना,
5: और हम
1: उद्धव ठाकरे जी आए थे जंतर मंतर।
5: बिल्कुल, हेमंत सोरेन जी से बात कर,
1: आप ही ने बोला सर कि रांची भारत में ही है।
5: हाँ बिल्कुल,
1: है ना,
5: बिल्कुल।
1: तो जंतर मंतर आया जा सकता है वहां?
5: वहां भी जाएंगे, वहां भी जाएंगे, लेकिन क्या सरकार? फिर वही बात, अरे सरकार ने सरकार को, जनता ने सरकार को चुना है, विपक्ष को नहीं।
6: वहां क्यों जाएंगे? वहां के लोग तो पीडीए का नारा देते हैं ना, लेकिन ज्यादातर छात्र वहां पर आदिवासी और दलित समुदाय के हैं।
1: आप इसको कास्ट एंगल दिए चले जा रहे हैं।
6: वो संविधान से चलने वाले लोग हैं, विपक्ष वहां की, जो हम वहां पर सरकार में, वहां विपक्ष में, हम लोग संविधान से चलते हैं। परीक्षा ठीक करने की बात करते तो सदन में चर्चा करना चाहिए था। आप तो गृह मंत्री जी आइए, जवाब दीजिए, ये दीजिए, हल्ला करिए और अर्जन करिए। भाई आप सदन का, आप सदस्य हैं तो सदन में ठीक करने पर आपके क्या सुझाव है, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी ना। आप सदन में चर्चा करना नहीं चाहते, सड़क पे, सड़क के लिए ठीक है। यही काम आप सदन में भी कर रहे हैं, जो आप स्टूडियो में कर रहे हैं। मैं कहता हूँ वहाँ पर सकारात्मक बहस करिए, अगर कोई सुझाव है तो सुझाव दीजिए। परीक्षा ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए?
1: अरे दुबे जी, इतना आसानी से स्टूडियो डिबेट में बोल दीजिएगा हमको एचएम बनाइए, पीएम बनाइए। पीएम जनता बनाती है और एचएम भी वहीं से, जनता से बनता है। वही रास्ते से आना पड़ेगा जहां पहुंचना है। बहरहाल, आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आपको बताएंगे कि क्या आप झारखंड सरकार आंदोलन कर रहे छात्रों की आवाज शहनाई से सुनेगी, क्योंकि छात्र पूछ रहे हैं कि वैकेंसी नहीं निकलेगी तो शहनाई कैसे बजेगी। और इसके बाद आपको बताएंगे कि विपक्ष के बागी सांसदों के अलग अलग गुटों से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात के क्या मायने हैं। देखते रहिए।

0: 爸。
1: सॉरी यार गलती हो गई है ये चोर खर्चा वर्चा
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा
1: छक्का
2: सब कैशलेस हो गया
1: है हां ओ ला भाई मेरा बैट वो अभी तो ठीक हुआ तू
3: बिल्कुल चार्ज हुआ यार
4: बैट किसका है
5: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: मुल्तानी को का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी को का कॉफ सिरप।
7: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
8: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
7: असली शहद, असली स्वाद।
9: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
10: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
11: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
12: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
2: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
3: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
6: In association with
7: Sarah Sanitaryware, it's your moment of Sarah. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: तक, digital first channels, 11 billion views, 85 million unique viewers, one stop solution for your brand, regional or hyper local reach. हर शहर, हर कस्बे तक advertise करने के लिए email करें।
9: अगर मुझे इतिहास का कोई एक पल कवर करने का मौका मिलता तो मैं 1999 का करगिल युद्ध चुनती। वो सिर्फ एक युद्ध नहीं था, वो देश के जज्बे की कहानी थी। ऐसे न जाने कितने ऐतिहासिक लम्हों की गवाह रही है इंडिया टुडे। 7 अगस्त को PVR INOX में आई विटनेस टू अ नेशन जरूर देखिए। मिलते हैं महीने।

0: presented by पतंजलि दंत कांति ट्रूथ पेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: is finding myself. That's my moment of Sarah.
1: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉलमार्क
2: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
3: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।

0: हर परीक्षा के साथ इन छात्रों में एक उम्मीद जगती कि शायद इस बार कोई गड़बड़ी ना हो, शायद इस बार नतीजा साफ सुथरा हो, शायद इनकी मेहनत का असर दिखे, शायद झारखंड की परीक्षा व्यवस्था इस बार सुधरे। लेकिन बार बार इनकी उम्मीद टूटती है। ये हर बार खुद को ठगा महसूस करते हैं, हर बार सिस्टम की नाकामी का शिकार बनते हैं। भ्रष्टाचार इन छात्रों की मेहनत पर भारी पड़ जाता है और छात्रों के हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। 25 साल के मनीष बताते हैं कि कैसे हर परीक्षा में वो बर्बाद हो चुके सिस्टम का शिकार बनते हैं। मनीष एक नहीं कई कई परीक्षाओं का उदाहरण देते हैं और सवाल करते हैं कि अगर यही हाल रहा तो झारखंड का छात्र कहां जाएगा।
1: आपको 3 एग्जाम का एग्जाम्पल देंगे, जैसे कि CHO का एग्जाम्पल एग्जाम हुआ था, उसमें एक राज्य विशेष लोगों का चयन हुआ। फिर 11-13 JPSC का एग्जाम हुआ, उसमें भी एक राज्य विशेष का सिलेक्शन हुआ। फिर महिला सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ, उसमें भी एक राज्य विशेष महिला अभ्यर्थियों का चयन हुआ। हम लोग झारखंड वाला कहां जाएं, क्या करें।
0: मनीष के माता पिता खुद झारखंड आंदोलन में शामिल थे, अब वो सवाल करते हैं कि आखिर अलग सुबह बने 25 साल से भी ज्यादा बीत जाने पर भी झारखंड के लोगों को क्या मिल रहा है।
2: आंदोलन आपको जन्म से मिल गया।
1: हाँ, आंदोलन मैंने जन्म से देखा, और पापा नारा देते थे ना कि घर में कि कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड, तो पापा कभी कभी बोलते हैं कि झारखंड ले लिए, लेकिन हम झारखंडियों को क्या मिला है। यहाँ पे बस अदर स्टेट वाले आते हैं, मलाई खा के चल जाते हैं। झारखंड के हिस्से में वही आता है, कोयला बिछो, बकरी पालो। हेमंत सोरेन भी तो वही बोलते हैं ना, बकरी पालो, सुअर पालो, और रिच मिनरल रिच है ये, तो कोयला बिछता ही है यहाँ का लोग, क्योंकि नौकरी तो बाहर वाले आके ले जा रहे हैं ना, या फिर जो वो वैसे सुखदार ले जा रहे हैं।
0: झारखंड के हजारों छात्रों की शिक्षा व्यवस्था से नाराजगी है, क्योंकि ये उनके रोजगार और भविष्य का सवाल है, और इसे लेकर अब रांची के आंदोलन में शामिल छात्रों में जबरदस्त उबाल है।
3: प्रीलिम्स निकला, मेंस निकला, मैं फिर इंटरव्यू भी दिया सर, फाइनली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उस समय लगा मुझे कि शायद मेरा ही कहीं पे फॉल्ट होगा। उस समय से इंटरव्यू में मुझे मात्र 40 नंबर दिया गया। उस समय ये देखा गया कि वहाँ पे चार बोर्ड हैं सर, जितने सारे मेंबर है JPSC के अंदर, वो सभी मेंबर किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड है सर। कोई किसी से है, कोई किसी से है, और उन लोग का अपना पर्सनल बायस होता है। तो एक बोर्ड सबको 65 प्लस दे रहा है, एक बोर्ड सबको किसी को 15 दे रहा है, किसी को 20 दे रहा है, मुझे मात्र 40 नंबर दिया गया। और सर एक उसके बाद जब मेरा रिजल्ट नहीं हुआ ना, तो मुझे लगा कि शायद मेरे में ही कोई कमी है, तो मैं अगले बार इसमें सुधार कर लूंगा।
0: झारखंड की इस धरती ने कई आंदोलन देखे, और अब बिरसा की इस धरती पर नौजवानों की इस आंदोलन को पूरा देश गौर से देख रहा है। झारखंड का छात्र बदलाव की उम्मीद के साथ आंदोलन कर रहा है। इनके मंच पर गांधी, अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, बिरसा मुंडा की तस्वीर है, और इनकी प्रेरणा के साथ बदलाव की उम्मीद। सत्यजीत कुमार के साथ आशुतोष मिश्रा, रांची आज तक।
4: जब से PDA से वो लोग हारे हैं, तब से PDA की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं PDA में PD पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है।
5: समाजवादी पार्टी अराजकता, गैर लोकतांत्रिक और पूज्य जनेश्वर मिश्र जी के सिद्धांतों से भटक चुकी है। पूज्य जनेश्वर मिश्र जी ने कहा था कि जब सदन चल रहा हो तब लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जनता की आवाज को सदन में उठाना चाहिए। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से पूज्य लोहिया जी और पूज्य जनेश्वर मिश्र जी के सिद्धांतों से भटक चुकी है। वो केवल व्यक्तिवादी पॉलिटिक्स कर रही है, और खासकर अराजकता, गुंडई और पूरी तरह से प्रदेश को दंगों में झोंकने वालों को समर्थन करने वाली पार्टी बन चुकी है। प्रदेश की जनता उन्हें नकार चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ करके चल रही है।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: नरेंद्र मोदी के साथ एनडीए में आए नए नए सांसदों की बड़ी बैठक, जिस पर आज आप देख रहे थे चर्चा, और उसके बाद संसद में भी जबरदस्त कार्यवाही होने वाली है सोमवार से, उसकी क्या तैयारी है। हम ब्रेक नहीं ले रहे, अब देखिए साथ तक मारिया के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूँ मारिया शकील। शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक के इस खास शो में। अगले आधे घंटे में दिन भर की सभी बड़ी खबरें होंगी, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रांची में सरकार से बातचीत के लिए छात्रों के नए डेलीगेशन की सामने आई लिस्ट, 10 लोगों के नाम, मुलाकात का वक्त फिलहाल तय नहीं। संसद में गतिरोध के बीच सोमवार तक स्थगित दोनों सदन। रिजिजू ने विपक्ष पर जड़ा आरोप, कांग्रेस ने 10, 11 और 12 अगस्त के लिए अपने सांसदों को जारी किया व्हिप। इथेनॉल पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, वीडियो पोस्ट में कहा दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का बयान, कुछ लोग खड़ा कर रहे हैं विवाद। अंबेडकर नगर की रैली में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश को फिर घेरा, कहा एसपी सरकार में लूटने निकल जाती थी चाचा भतीजे की जोड़ी, इन्होंने नहीं चलने दी विधानसभा। लगातार बारिश से दिल्ली एनसीआर में जगह जगह भरा पानी, गाड़ियों की आवाजाही में भारी दिक्कत, कई जगह लगा जाम। शो की शुरुआत इस वक्त की सभी सबसे बड़ी खबर के साथ। रांची में सोरेन सरकार के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन जारी है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच जारी डेडलॉक टूट सकता है। छात्रों की तरफ से सरकार को पहले बात करने के लिए 11 लोगों की लिस्ट दी गई थी, जिसमें 8 छात्रों के अलावा 2 मीडियाकर्मी और 1 एडवोकेट शामिल था। इस पर सरकार तैयार नहीं हुई। अब छात्रों की तरफ से जो डेलीगेशन तैयार हुआ है वो 9-10 लोगों का है और वो लिस्ट अब सौंप दिया गया है। अब बातचीत की जगह और वक्त सरकार को तय करना है। कितने जल्दी देगी सरकार जवाब, उस पर तय हो सकता है कब टूटेगा ये गतिरोध और कब ये अनशन पे जो बैठे हैं छात्र वो कब खत्म होगा। आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं रांची से। आशुतोष, क्या माना जाए कि 24 घंटे के अंदर हेमंत सोरेन की जो सरकार है वो स्टूडेंट्स को इनवाइट कर सकती है बातचीत के लिए? आशुतोष अनम्यूट कर लीजिए। तो बात रांची से ये आ रही है इस वक्त की खबर कि एक नया डेलीगेशन की लिस्ट सौंपी गई है, जिसमें 10 नए लोगों का नाम सौंपा गया है, जिस पर सरकार तैयार हो गई है। अब बातचीत की जगह और वक्त तय करना है हेमंत सोरेन सरकार को और उसी के बाद शायद ये डेडलॉक और ये जो अनशन चल रहा है रांची में वो खत्म हो सकता है। और कब तक रिस्पॉन्स करेगी सरकार, कब तक जवाब देगी, कब बुलाएगी स्टूडेंट्स को और छात्रों को, इस पर तय होगा कि कितने जल्दी ये अनशन खत्म होगा। आशुतोष हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। आशुतोष अपडेट दीजिए।
1: मुझे आ रही है, मुझे पहले भी आ रही थी।
0: आशुतोष अपडेट दीजिए।
1: मारिया, मुझे लगता है आपसे किसी भी समय मीटिंग शुरू भी हो सकती है। छात्रों के धड़ों ने यह कंफर्म कर दिया है कि 10 लोगों की टीम है, उस पर सरकार सहमत हो गई है और मेहराबाद के पास मोहराबाद दरफल इलाका है, वहां पर एक सर्किट हाउस और वहां पर ये जो है सरकार के साथ बैठक होगी। तो सुबह से, इसके पहले मैं आपको बता दूं, लगभग 2:30 बजे सरकार की ओर से अधिकारियों की टीम गई थी। उन्होंने कहा था कि ठीक है सरकार तैयार है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम 11 का प्रतिनिधिमंडल होगा और मुख्यमंत्री ही चाहते हैं। लेकिन बातचीत में नेगोशिएशन का दौर था, छात्रों ने थोड़ा नरम रुख दिखाया और सरकार बातचीत के लिए तैयार थी। तो अब से थोड़ी ही देर में बैठक शुरू हो सकती है और 11 की बजाय दरअसल अब ये 10 छात्र होंगे। छात्रों का जो पूरा प्रतिनिधिमंडल है उसमें 10 लोग होंगे, 8 छात्र होंगे, 2 और कौन है उनकी भी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। तो बड़ी खबर ये कि आखिरकार 14 दिन बीतते बीतते सरकार और छात्रों के बीच बातचीत

हो रही है और ये कोशिश हो रही है कि जो डेडलॉक है वो खत्म हो जाए। सरकार हालांकि परसों शाम में ये खबर आई थी कि वो चाहती है कि कोई फैसला ले। आज भी हेमंत सोरेन ने जो बयान जारी किया था, उन्होंने कहा था कि पॉलिसी के तहत हम एक बड़ा कदम जरूर उठाना चाहते हैं, हालांकि उसके पीछे कुछ तकनीकी वजह जरूर है जांच का और उसी का इंतजार किया जाए। लेकिन बड़ी खबर ये, 14 दिन बीतते बीतते सरकार छात्रों के बीच बातचीत हो रही है और अगर ऐसा होता है तो पूरी संभावना यह है कि सोमवार को जो विधानसभा घेराव का कॉल छात्र

0: उम्मीद है वो तकरार तक पहुंच जाए। तो इस समय बड़ा अपडेट ये है और जल्दी हम थोड़ी जानकारी लेकर के और भी लौटेंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल ये कि छात्रों के बीच अब से थोड़ी देर में बातचीत होगी। रांची,
1: शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब बात यूपी पॉलिटिक्स की, जहां अब जेन जी को लेकर पार्टियां अपनी रणनीति बदल रही हैं। धर्म और जाति की सियासत के बीच अब हर पार्टी की नजर युवा वोट बैंक पर है, जो 2027 के चुनाव में एक अहम रोल निभा सकता है।
2: दिल्ली के जंतर मंतर से निकली जेन जी आंदोलन की इस चिंगारी ने सत्ता की रणनीति को नए सिरे से गढ़ने पर मजबूर कर दिया है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नई युवा नीति को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें 2027 से पहले जेन जी पर सरकार का फोकस है।
3: युवाओं को लेकर एक आयोग गठित होने वाला है, जिसमें 18 से 35 वर्ष के युवा, यानी कि आसान भाषा में कहें तो कुछ हद तक जेन जी से सलाह मशवरा लिया जाएगा युवाओं को लेकर बनाई जाने वाली नीतियों को लेकर। यानी कि योगी सरकार को ये मालूम पड़ गया है कि जेन जी एक बहुत बड़ा वोटर है और ऐसे में उन्हें साथ लेकर ही चलना होगा।
2: जेन जी वोट बैंक पर योगी सरकार के मिशन पर सियासत तेज हो गई है।
4: पर अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार एक युवा नीति लेकर के आ रही है। ये युवा नीति युवाओं के सपनों को साकार करने वाली होगी।
5: तो उत्तर प्रदेश का जो जेन जी है, जो जेन अल्फा है, जो मिलेनियम है, वो समझ रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ भी किसी चीज के अगर शिकार है योगी आदित्यनाथ जी, तो आत्ममुग्धता के शिकार है। अगर आत्ममुग्धता के शिकार न होते तो अपने चेहरे चमकाने पर 3 करोड़ रुपए न खर्च करते, बल्कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को आप पेपर लीक की जगह अच्छी व्यवस्था, पारदर्शी और निष्पक्ष आपने कोई व्यवस्था दी होती।
2: उधर राहुल गांधी भी कल पेपर लीक के मुद्दे पर गूंज कार्यक्रम के तहत प्रयागराज में जेन जी छात्रों के साथ संवाद करने जा रहे हैं। प्रयागराज आ रहा हूँ, देश के उस शहर में जहाँ सबसे ज्यादा नौजवान तैयारी करते हैं। एक बात साफ है, यहाँ का हर छात्र जानता है कि सिस्टम बेईमान हो चुका है। आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं, कमी उस सिस्टम की नीयत में है जो आपकी मेहनत का दाम नहीं देती। ये सरकार झुकती है, बस आवाज एक साथ उठनी चाहिए। अखिलेश यादव की नजर भी जेन जी से लेकर जेन अल्फा तक है, जिनके मुद्दों पर वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया, 7,000 करोड़ का कॉस्मेटिक फेशियल करवाया। हम इतनी ही राशि में केजी से पीजी और रिसर्च तक की वर्ल्ड क्लास 2-3 यूनिवर्सिटी बनाकर बच्चों युवाओं का भविष्य सुधार कर दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर ले जाएंगे। वही योगी आदित्यनाथ लगातार रैलियों में समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की याद दिला रहे हैं।
6: कुछ लोग जीवन भर बच्चे ही बने रहते हैं और बबुआ भी यही करते थे, 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और 7 बजे के बाद तो महफिल जम जाती थी, तब तो फिर देश और दुनिया से उनका संबंध ही समाप्त हो जाता था। तो प्रदेश के बारे में कहां से सोच उनके पास थे। इसी कारण दंगे होते थे, महीनों कर्फ्यू रहता था।
2: बहरहाल यूपी में भी सियासी रणनीति बदलती जा रही है, जहां सबकी नजरें जेन जी वोट बैंक पर है। आज तक ब्यूरो।
1: उधर कल संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी जेन जी के साथ संवाद किया और नई युवा पीढ़ी की जमकर तारीफ की, जिसे लेकर अब सियासत हो रही है।
2: जेन जी आंदोलन के बाद जब संघ प्रमुख मोहन भागवत जेन जी के संवाद कार्यक्रम में पहुंचे, तो उन्होंने जेन जी की जमकर तारीफ की, प्रदर्शन को संवाद से निपटाने की नसीहत दी, तो वहीं जेन जी की देशभक्ति पर सवाल करने वालों को कटघरे में खड़ा किया।
7: मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है।
8: अरे वाह, बढ़िया है।
7: और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है।
2: मोहन भागवत के बयान विपक्ष को रास नहीं आ रहे।
9: सर्टिफिकेट फ्रॉम मोहन भागवत जी,
10: समर्थन तो किया है, लेकिन उन्हीं के अनुयायियों ने तो जैन जी को देशद्रोही कहा है
11: जी।
10: उन्हीं के अनुयायियों ने तो खालिस्तानी से लेके पाकिस्तानी तक तमाम हमारे बच्चों के, जो इनोसेंट बच्चे हैं शायद, जिन्होंने घर स्कूल के अलावा कभी कुछ देखा भी नहीं था, ऐसे बच्चों को बदनाम किसने किया। सदे नेताजी कहते थे ये बीजेपी आरएसएस के कई मुंह होते हैं, जब देखते हैं कि समाज में विरोध हो रहा है तो उन्हीं में से एक सकारात्मक बयान देने लगता है।
2: जंतर मंतर में प्रदर्शन करने वाले जेन जी पर सवाल खड़े करने वाली कंगना रनौत भी प्रदर्शनकारियों और जेन जी में फर्क बता रही हैं।

0: जयंती जो है सरकार का हिस्सा है, उन्हीं का तो मैंडेट है, जो हमारी सरकार जो है इतने सालों से जो है, तो जयंती का ही मैंडेट है। और जयंती जो है हमारी बहुत बड़ी, ऐसा नहीं है जो प्रोटेस्ट पे 10-15 जो है गालियां देने वाले ही जयंती है, ये कुछ ही हाथ, जैसे मैं कहती हूँ कुछ हैंडफुल ऑफ पीपल है जो जयंती का नाम खराब कर रहे हैं। जयंती जो है हमारी सबसे बड़ी ताकत है और हमें गर्व है अपनी जयंती।
1: हर दल किसी न किसी तरह से जेन जी से मिलने जुलने, उन्हें प्रभावित करने की कोशिश में जुटा है, चाहे वो पीएम मोदी के इंस्टा रील्स हो या राहुल गांधी के इंस्टा क्वेश्चन आंसर सेशन, चाहे वो मोहन भागवत का जेन जी कनेक्ट हो या राहुल गांधी के गूंज कार्यक्रम। हर दल को लगता है कि जेन जी से कनेक्ट रहे बिना देश की सियासत में मौजूद नहीं रहा जा सकता। आज तक विरोध।
2: इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी ने E20 को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें कहा है कि पूरी दाल ही काली है।
3: ये E20 का जो मामला है, ये बहुत बड़ा इशू है। नॉर्मली हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, मगर ये दाल ही काली है। दिस इज अ मैटर ऑफ सीक्वेंसिंग इन एनी कैंपेन। वी हैव टू डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ अफेयर्स। आवर प्रॉब्लम राइट नाउ इज दैट देयर इज सो मच करप्शन दैट देयर इज अ ह्यूज लाइन इन व्हाट वी हैव टू सीक्वेंस। डोंट वरी, दिस इशू वी आर गोना टेक इट अप in a massive way, because this is destroying people's cars, destroying people's scooters, destroying people's lives, and literally is stealing directly from them.
2: अब बात संसद की, जहां सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म होता नहीं दिख रहा। क्या कुछ हुआ आज संसद में, देखिए इस रिपोर्ट में।
4: मॉनसून सत्र में संसद में जुबानी बिजलियां कड़क रही हैं, कार्यवाही ठप है और विपक्ष अमित शाह के पैलेट गन पर जवाब को लेकर अड़ा हुआ है।
5: लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, सदन में जिसका बिजनेस होता है वही मंत्री जवाब देता है। ऑपोजिशन तय नहीं करेगा कौन सा मंत्री को कब आना है, ये ऑपोजिशन पार्टी तय नहीं करते हैं। आप लोग नाराबाजी करके तुरंत चले जाते हैं पार्लियामेंट छोड़ के, लेकिन होम मिनिस्टर सुबह से लेकर देर रात तक पार्लियामेंट नहीं रहता है, देश का संचालन करता है। और जब होम मिनिस्टर जवाब देगा आप लोग सुन नहीं पाएगा।
6: ठीक है सर, यू सेड इफ एचएम विल कम टू द पार्लियामेंट द अपोजिशन विल नॉट एबल टू लिसन हिम।
7: बिगेस्ट जोक व्हिच आई हर्ड टुडे इज दैट biggest joke in this parliament was Kiran Rijiju's statement।
4: इस बीच एनडीए में नई एंट्री लेने वाले सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। पीएम के साथ नाश्ते पर यह चर्चा खास है क्योंकि एनडीए परिवार के विस्तार के बाद इस मुलाकात के राजनीतिक मायने हैं। सांसदों से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने संसद न चलने पर चिंता जाहिर की और सांसदों को भरोसा दिया कि अगर विकास योजनाओं में कोई अड़चन आए तो सीधे पीएमओ से संपर्क करें।
8: It was a very, very big honor that he has invited us. And उन्होंने ये भी कहा कि actually सदन नहीं चल रहे तो उनको भी बहुत खराब लग रहा है, but वो चाहते हैं कि जल्दी से सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। उन्होंने ऐसे ही कहा कि देखिए हम तो देश के लिए काम करते हैं और हमारे साथ जो जो है हमारे ग्रुप के जो है हम आपके साथ है, यही सबसे बड़ी बात है। कि उन्होंने ये कहा है कि जैसे हम सोचते हैं आप उसी सोच पे विश्वास रखिए और उस हिसाब से आगे बढ़ते चलिए।
9: बहुत अच्छा चर्चा हुआ है
10: जी,
9: वेरी गुड।
10: किन मुद्दों पे चर्चा हुई सर?
9: हर हर ये डेवलपमेंट के बारे में।
10: कई सारे आपके साथी हैं जो मुस्लिम समुदाय से हैं, वो भी मौजूद थे मीटिंग में?
9: मीटिंग में मौजूद थे, वो लोग भी सपोर्ट किया।
10: क्या स्पीकर का इशू भी चला इस पे मस्जिदों को लेके जो इशू?
9: नो नो नो नो।
10: ओके सर, आखिरी सवाल सर, FCRA पे क्या रुख रहेगा आप लोगों का? सर
9: हम लोग मदद करेंगे।
4: पीएम मोदी ने उद्धव गुट से शिंदे गुट में शामिल हुए शिवसेना के सांसदों के साथ अलग से बातचीत की। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग से मुलाकात करने पहुंचे। विदेशी फंडिंग पर रेगुलेशन का नया FCRA बिल सरकार की बड़ी चुनौतियों में से एक है। वहीं हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित है। आज तक ब्यूरो।
2: अब बात पंजाब की, जहां चुनाव से पहले सियासी समीकरण तैयार किए जा रहे हैं कांग्रेस के सामने, जहां बड़ी चुनौती ये है कि अंदरूनी कलह सामने आ रही है, तो वहीं पीएम मोदी और सुखबीर बादल की मुलाकात ने पंजाब में पुराने गठबंधन के फिर से साथ आने की अटकलों को हवा दिया है।
1: पंजाब कांग्रेस में चरणजीत सिंह चन्नी और राजा वेडिंग के घमासान के बीच राहुल गांधी ने कैप्टन अमरिंदर को अपना पसंदीदा नेता बताया है।
11: कैप्टन अमरिंदर सिंह डेफिनेटली आई गेट अलोंग विद हिम, ही इज कूल एंड ही इज एन एक्सपर्ट ऑन मिलिट्री हिस्ट्री, सो आई लाइक हिम क्वाइट अ लॉट। हेलो अंकल अमरिंदर।
1: राहुल के बयान के बाद पंजाब कांग्रेस के नेताओं के स्वरूप बदले हुए हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी अमरिंदर के कांग्रेस में वापस जाने की आशंका जताई जा रही है।
12: अगर वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपना फेवरेट लीडर मानते हैं, जो सबसे लेजी ऑफिसर्स लेजी जो पॉलिटिशियन है उनमें से जाना जाता है और उन पॉलिटिशियंस में जाना जाता है जो कि किसी भी समय किसी भी जगह पे पलटी मार सकता है, अगर राहुल जी का वो आइडियल है तो फिर राहुल जी की सियासत क्या होगी?
13: अच्छे इंसान है, अच्छी चीजें भी है यार, किसको मेरा ख्याल है हर देखो जो आदमी दो बार चीफ मिनिस्टर रह गया उसमें कोई चीजें तो ऐसी है जो सीखने लायक है।
14: तो अच्छी बात है, हर लीडर की अपनी चॉइसेस होती हैं और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी की फ्राक दिली है। उन्होंने ये बोला है कि किसी ने पूछा कि बीजेपी में आपका फेवरेट लीडर कौन है, तो बोला कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, ही इज माय अंकल एंड दैट ही इज द मिलिट्री हिस्टोरियन, उनके साथ उन्होंने काफी साल काम किया, वो अलग बात है अलग पार्टी। लेकिन इसमें आप देखेंगे राहुल गांधी की फ्राक दिली है जो ऑपोजिशन के लीडर्स को भी अप्रिशिएट करते हैं।
1: उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल से मुलाकात हुई। हालांकि अकाली दल की ओर से साफ किया गया कि ये मुलाकात पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है। वहीं बीजेपी भी कह रही है कि वो पंजाब में किसी से गठबंधन करने नहीं जा रही।
15: तो प्रधानमंत्री साहब नूं कोई भी मिल सकता, तो मैनूं उम्मीद है कि सुखबीर सिंह बादल पंजाब दे भले लई कोई चंगी गल करके बिल्कुल क्लीयर करना चाहुंदा कि साडे वल्लों भारतीय जनता पार्टी पंजाब वल्लों 117 सीटां दी तैयारी है, 117 सीटां ते असीं कल्ले लड़ांगे।
1: इस बीच मान सरकार के खिलाफ सरकारी नौकरी को लेकर आज जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस के साथ कई संगठनों ने मोर्चा संभाला और मान सरकार को घेरने की कोशिश की।
16: ये देखिए ये वाटर कैनन चला, आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब दोबारा वाटर कैनन चला है और आपको बता दें यहाँ पे तितर बितर करने की पूरी कोशिश, ये आप देखिएगा, ये लगातार हम आपको अपने कैमरे में दिखा रहे हैं कि किस तरह से सड़कों पे उतरे हुए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, लेकिन इनका हौसला कम नहीं हो रहा है, अपने मांगों को लेके अड़ंग है, अड़े हुए हैं और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से चंडीगढ़ पुलिस ने इनको बैरिकेड लगा के यहीं पे रोकने की कोशिश और उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल। लेकिन क्या ये खामियाजा भुगतना पड़ सकता है सरकार को इलेक्शन में, ये बड़ी बात है और इसी वजह से जो अपोजिशन पार्टीज है वो भी पंजाब गवर्नमेंट का पूरा साथ दे रही है।
1: बहरहाल पंजाब में चुनाव से पहले के समीकरण का खेल जारी है, जहां हर पार्टी ने पूरा जोर लगा रखा है। कमलजीत संधू के साथ असीम बस्सी, चंडीगढ़ आज तक।
2: सावन का महीना यूं तो शिव भक्तों के लिए श्रद्धा भक्ति आराधना उपासना का होता है, लेकिन यूपी में सावन के दौरान जबरदस्त सियासी हरियाली छाती है। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी में हर साल होने वाली सियासत एक बार फिर शुरू हो गई है।
1: सावन के मौसम में कांवड़ पर सियासत का नया चैप्टर खुला। मौलाना के एक विवादित बयान ने यूपी में नया घमासान छेड़ दिया।
17: जो लोग सड़कों पर बैठकर तमाशा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं लड़के और लड़कियां मिलकर, ये शिवभक्ति है, ये कांवड़ है। मैं ऐसे लोगों को नशेड़ी, भंगेड़ी, लूटपाट करने वाला और आतंकवादी तक बोलता हूं। ये शिवभक्त नहीं हो सकते। शिवभक्त वो लोग हैं जो चुपचाप जाते हैं, चुपचाप आते हैं।
18: ऐसे कट्टरपंथी मौलानाओं पर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए।
1: वैसे मौलाना पहले भी विवादों में रहे हैं। जुलाई 2025 में संसद के पास की मस्जिद में जाने पर डिंपल यादव के कपड़े और शरीर को लेकर बेहद अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। उस मामले में मुकदमे से लेकर समाजवादियों के थप्पड़ मुक्के झेल चुके मौलाना के खिलाफ अब बीजेपी विधायक ने थाने में शिकायत दी है।
19: और हमने रासुका के तहत FIR की मांग की और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले। ये अपराध फांसी का अपराध है। इस मौलाना को फांसी हो जिससे कि और को भी जाए, कि इनकी हैसियत कैसे होगी। ये इस्लाम में तमाम जो गलतियां हैं, भाई हलाला कर रहा है, चाचा कर रहा है, ताऊ कर रहा है, उस पर बोलना चाहिए, उसका करना चाहिए इनको। तमाम जो इन्होंने नरक मचाया हुआ है, बेटियां सड़क पे घूम रही हैं, लेकिन उन पे नहीं बोलेंगे। कावड़ियों ने पत्थर फेंका, एक सबूत नहीं है। पिछली बार भी मुस्लिम लड़के पकड़े गए।
1: मौलाना रशीदी का बयान कावड़ियों को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ वीडियोस को लेकर था, जिसमें कावड़ियों के अशोभनीय व्यवहार पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
17: सड़कों पर बैठकर भांग मसल रहे हैं वो शिव भक्त हैं क्या? जो लोग सड़कों पर बैठकर शराब पी रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं, क्या वो शिव भक्त हैं क्या? जो लोग पुलिस वालों को वर्दी में होते हुए मार मार कर अधमरा कर दें, वो शिव भक्त हैं क्या? वो लोग जो बच्चों की वैन जो स्कूल जा रही थी उसके शीशे तोड़ दें, बच्चों को इंजर्ड कर दें, वो शिव भक्त हैं क्या? वो लोग जो एक ट्रक को के पूरे माल को लूट लें।
1: इससे पहले ओवैसी की पार्टी की ओर से भी कांवड़ियों के रुख सलूक को लेकर सवाल उठाए गए थे, जिसके बाद सियासत गर्म हो गई थी। संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
2: और अब बात बाजार की, क्या है शेयर बाजार का हाल और कहां पहुंचा सोना चांदी का रेट, आइए देखते हैं।
4: कारोबार के दौरान घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए। इस दौरान सेंसेक्स 456 अंक टूटकर 78,499 पर बंद हुआ और निफ्टी 65 अंक की गिरावट के साथ 24,571 के स्तर पर बंद हुआ। लगातार दो कारोबारी सत्रों की तेजी के बाद आज बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिली। बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों में बिकवाली से बाजार पर दबाव रहा। वहीं पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच कच्चे तेल की ऊंची कीमतों ने भी निवेशकों का रुख सतर्क बनाए रखा। शेयर बाजार में गिरावट के बीच रुपए में मामूली मजबूती देखने को मिली और डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे मजबूत होकर 95.20 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सराफा बाजार में आज भी तेजी का रुख रहा और सोना 659 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़कर 149,020 रुपए पर पहुंच गया, जबकि चांदी 4,457 रुपए बढ़कर 229,950 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने चांदी की कीमतों में मजबूती और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग के चलते घरेलू सराफा बाजार में दोनों कीमती धातुओं के दाम बढ़े हैं।
2: अब बात मौसम की, जहां दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश की वजह से लोगों की मुसीबत बढ़ रही है।
4: एक बार फिर बारिश की बूंदें दिल्ली एनसीआर में गिरी तो प्रशासन के दावे खुलने शुरू हो गए।
20: दरिया जैसा स्थिति यहां पर एमबी रोड पर बनता हुआ नजर आ रहा है। जैसे तैसे लोग गाड़ियां निकालने का प्रयास कर रहे हैं, जो गाड़ियां निकाल रहे हैं तो जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, उस तरीके की लहरें जो है सड़क पर देखने को मिल रहा है।
21: बस नहीं, वो तो हमारी स्कूल की कार थी तो उससे हम आए
20: तो फिर पीछे
21: कार के अंदर इतना पानी,
20: देखो ना पूरा पानी
22: बंद हो गई है।
20: हां, सब ऐसे ही लेके जा रहे हैं।
22: हां जी, हां जी।
20: घुटने से ऊपर और कमर से हल्का सा नीचे पानी है, पर मैं एक सवाल कर, जैसे कि आपको मैं बस इतना जरूर कहूंगा, सरकार कोई भी आ जाए अगर वो जमीन पे काम नहीं करेगी तो यही हाल रहेंगे।
2: अब बात दिल्ली में वसंत वैली स्कूल में हुई आज तक हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता की, जिसमें देश भर के 22 से ज्यादा स्कूल ने हिस्सा लिया, जहां छात्रों ने अपनी स्पीच और तर्क से सबका दिल जीत लिया। डिबेट में पर्सनल कैटेगरी में दून स्कूल के अभिनव और सरदार पटेल विद्यालय की झीलम ज्वाइंट विनर रही। वहीं टीम कैटेगरी में सरदार पटेल विद्यालय जीता। 2 दिन तक चले इस कार्यक्रम में छात्रों को संवाद के जरिए सीखने का मौका मिला।
23: जब हमने आज तक वाद विवाद शुरू किया था 16 साल पहले, हमने सोचा था हिंदी डिबेट है, कौन आएगा? और वसंत वैली स्कूल जो इंडिया टुडे डिबेट करती है, अंग्रेजी की डिबेट करती है, हिंदी डिबेट में कौन आएगा? But we were really surprised. So, congratulations to both the students, both the schools who are sitting here and have done well. Smile. Come on. Give a big smile. You've done a great job. Okay? Winning or not winning is different. But you've done a great job. Please smile.
2: वक्त है अब एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।
24: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
25: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस तेल में।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: मुल्तानी खू का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाए और खांसी को कहे गुड बाय। मुल्तानी खू का कॉफ सिरप।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
4: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
3: असली शहद, असली स्वाद।
5: पापा।
6: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
5: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
6: छक्का?
5: सब कैशलेस हो गया है।
6: हाँ
7: ला भाई मेरा बैट,
6: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
7: चार्ज हुआ यार,
8: बैट किसका है?
9: टाटा AIG है तो भरोसा है।
10: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान।
11: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
12: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
13: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबा केसरी, हिंट बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
3: एक जर्नलिस्ट के लिए इससे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नहीं हो सकता है कि अगर आप टाइम में पीछे जाके कोई चीज कवर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं, क्योंकि मैंने स्टार्ट एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर किया था, 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप लॉर्ड्स, वो फाइनल अगर मैं कवर कर पाती। लेकिन हमारा ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसने वो सब कुछ देखा है जो एक देश को गढ़ते हुए, अगर आपकी इच्छा है देखने की, तो वो सारा कुछ इंडिया टुडे का सफर है। और यही एक डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में जब पीवीआर आईनॉक्स में आप देखेंगे, तो वाकई इसे मिस नहीं करना चाहिए। इसे जरूर देखिए, पीवीआर आईनॉक्स 7th अगस्त ऑनवर्ड्स।

0: समुद्र की सफर देखा होती है।
1: भारतीय जनता पार्टी के सांसद नवीन जैन के भाई की कंपनी, तो डर काहे का, एक्सप्रेस वे हो या फिर हाईवे, टेंडर भला कौन रोक सकता है। फिर चाहे गड्ढे में एक्सप्रेस वे हो या फिर एक्सप्रेस वे में गड्ढा, सियासी रसूख और पहुंच ऐसी कि एनएचएआई का पूरा निजाम आंखों पर पट्टी बांध कर बैठा रहा। सांसद नवीन जैन के भाई की कंपनी पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड के घटिया निर्माण पर नजर रखने वाले अपनी आंखें मूंद कर बैठे रहे।
2: ऐसा नहीं कि एनएचएआई का रोड खराब होता, आप दूसरे रोड से भी देखें तो ऐसा नहीं कि बारिश के कारण रोड खराब होते हैं। ये बारिश में फ्लेक्सिबल पेमेंट जहां रहते हैं वहां तक रोटी आती है।
1: सोचिए 13 जुलाई को पूरे तामझाम के साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता के लिए नए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। आज जिम्मेदारों को घटिया निर्माण करने वाली बीजेपी सांसद के भाई की कंपनी की जवाबदेही तय करनी चाहिए, क्योंकि सवाल सिर्फ घटिया निर्माण का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के फेल होने का है। एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करने वालों की सुरक्षा से जुड़ा है।
3: ये वास्तव में केवल एक्सप्रेसवे नहीं, हमारी स्पीड को बढ़ाने के साथ ही हमारी प्रगति को भी आगे बढ़ाने के और आने वाली समृद्धि के लिए हमारा द्वार खोलने के लिए के राजमार्ग है।
4: मुझे विश्वास है कि हम एक के पीछे एक ऐसे महामार्ग बना रहे कि उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय महामार्ग ये निश्चित रूप से अमेरिका के बराबर होंगे, ये वचन मैं आपको देना चाहता हूँ।
1: आज जिम्मेदारों को गड्ढे वाला एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनी पीएनसी इंफ्राटेक को मिल रहे ठेकों पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, पीएनसी इंफ्राटेक कंपनी के घटिया निर्माण पर उठे सवालों की फाइलों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। बीजेपी के मौजूदा सांसद के भाई की कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड इन दो तस्वीरों से समझिए। साल 2018 में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन का 50 फीट हिस्सा धंस गया, जिसकी चपेट में एक कार आ गई थी। कार में सवार चार लोग बाल बाल बच गए। तत्कालीन उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ अवधीश कुमार अवस्थी ने माना था, जहां एक्सप्रेसवे धंसा वहां घटिया निर्माण पीएनसी इंफ्राटेक कंपनी ने किया था। यानी 2018 में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता को लेकर पीएनसी इंफ्राटेक कंपनी पर सवाल उठे, लेकिन उसके बावजूद इसी कंपनी पर पाबंदी लगाने के बजाय इनाम मिला, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का ठेका मिला। परिणाम सामने है, उद्घाटन के चंद दिनों के बाद ही लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे जगह जगह धंस रहा है। मतलब यूपी का सबसे महंगा एक्सप्रेसवे आज निर्माण में हुई अंधेर गर्दी की सबसे बड़ी गवाही दे रहा है। सोचिए 2018 में कागजों पर पीएनसी इंफ्राटेक को नॉन परफॉर्मर घोषित किया गया, लेकिन इसके बावजूद एक के बाद एक बड़े बड़े हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाने का ठेका कंपनी को मिलता रहा। अंधेर गर्दी ऐसी है कि गड्ढे वाला एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनी को एनएचएआई से करीब 3483 करोड़ के दो नए हाईवे प्रोजेक्ट मिल गए हैं।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। रांची में छात्रों के प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। अब लग रहा है कि सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच अब ये डेडलॉक खत्म हो सकता है। रांची में छात्रों और सरकार के बीच ये डेडलॉक खत्म होगा, क्योंकि जो 10 छात्रों का जो लिस्ट है, जो डेलीगेशन है, अब वो सरकार से मिलने गेस्ट हाउस पहुंच चुका है। डेडलॉक कुछ वक्त में शायद ये खत्म हो जाए। याद होगा आपको कि पहले 11 लोगों की लिस्ट छात्रों ने दी थी, उस पर सरकार तैयार नहीं हुई क्योंकि उसमें 2 मीडियाकर्मी और 1 एडवोकेट भी शामिल थे। अब छात्रों की तरफ से ये डेलीगेशन पहुंच चुका है सरकार से बातचीत करने के लिए। सरकार का डेलीगेशन में शामिल कौन लोग हैं उस पर हम चर्चा करेंगे और आशुतोष हमें बताएंगे। सत्यजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं रांची से। सत्यजीत, सरकार की तरफ से स्टूडेंट से, छात्रों से बात कौन कर रहा है? इस पूरी घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी रहेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं तस्वीरें सीधे रांची से आ रही हैं। ये गेस्ट हाउस है जहां पर मुलाकात हो रही है सरकार और छात्रों के बीच। छात्रों की जो डिमांड है उस पर सरकार, ज्यादातर डिमांड्स पर को मान लिया है सरकार ने। आगे क्या बातचीत होगी, कब तक ये पूरा अनशन और प्रोटेस्ट खत्म होगा, क्योंकि सरकार का ये मानना है और के मंडे से पहले, जो सोमवार जिस दिन उन्होंने तय किया है, जो छात्रों ने तय किया है कि विधानसभा को वो घेरेंगे, उससे पहले ये पूरा प्रोटेस्ट और अनशन वो चाहते हैं कि खत्म हो जाए। सत्यजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं इस गेस्ट हाउस रांची में, जो इस गेस्ट हाउस के में ये मीटिंग हो रही है उसके सामने वो मौजूद हैं। सत्यजीत, वहां पर अभी सरकार की तरफ से कौन कौन है इस बातचीत में?
3: देखिए, 4 मंत्री का पैनल बना था जिसमें जेएमएम कोटे से 2 मंत्री थे, चामरा लिंडा सुदीव्य सोनू, कांग्रेस से दीपिका पांडे सिंह और इसके अलावा आरजेडी से संजय प्रसाद यादव। चारों मंत्री का पैनल बना था खुद मुख्यमंत्री के निर्देश पे, ताकि जो है डायलॉग हो सके, आइस ब्रेक किया जा सके स्टूडेंट्स के साथ। जो प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स हैं रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में पिछले 15 दिनों से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जेपीएससी और जेएसएससी में लार्ज स्केल करप्शन के खिलाफ, उनसे बातचीत करने के लिए। उनकी मांग जो है सीबीआई प्रोब की थी, इसके अलावा 14th जेपीएससी का जो प्रीलिम्स हुआ था उसको रद्द करने की थी, कंप्लीट रिफॉर्म्स की थी जेपीएससी और जेएसएससी में, ताकि जो है आगे इस तरह का स्कोप या आयोटा ऑफ चांसेस भी ना रहे करप्शन का। इसके अलावा जो ओएमआर सीट्स थी उसमें जो है जिन्होंने कम कलर, जो बबल्स है उसको कम कलर किया था, उनका नाम जो है सक्सेसफुल लिस्ट में फिगर कर रहा था, बाकी जिन्होंने ज्यादा परफॉर्म किया था उनका, जिन्होंने ज्यादा सॉल्व किया था वो नहीं था, तो उसमें भी फॉरेंसिक जांच चल रही है। सीआईडी के छापे जो है वो लगातार पड़े हैं, 19 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई है। जो ख्यांगते थे जेपीएससी के फॉर्मर चेयरमैन, जैसे ही ये इशू रेकअप होता है उनको जो है रेजिग्नेशन टेंडर करने के लिए कह दिया जाता है, उन्होंने रिजाइन कर दिया। सीआईडी लगातार जो है क्वेश्चनिंग कर रही है, क्विज कर रही है, सम्मन्स भेज रही है, जहां जहां जिसकी कॉम्प्लिसिटी हो सकती है उसको बुलाया जा रहा है। और ये देखिए स्टेट गेस्ट हाउस है जहां पे जो है मंत्री पहुंच चुके हैं, 4 जो है पैनल में है 4 मंत्री, जिनको डायलॉग करना है, आइस ब्रेक करना है इन प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स के साथ। और जो ये स्टूडेंट्स हैं इनका 2 सेंटर है, अलग अलग सेंटर्स पे ये लोग जो है विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। एक जो है वो दैट इज हेडेड बाय देवेंद्र नाथ महतो, जो जेएलकेएम के नेता हैं, लगातार इनडेफिनिट फास्ट पे हैं, आज 6th दिन है उनका फास्ट का। दूसरा जो प्रोटेस्टिंग ग्रुप है उसमें स्टूडेंट्स जो है वो भी फास्ट पे हैं, 4 लोग फास्ट पे हैं।
2: सत्यजीत, जो स्टूडेंट्स की, जो छात्रों की जो डिमांड सूची है, जो छात्रों की डिमांड सूची है उसमें ज्यादातर हेमंत सोरेन सरकार ने मान लिया है उनके डिमांड्स को, जो किस इशू पर अग्रीमेंट नहीं हो रहा, कौन सी ऐसी मांग है जो सरकार मानने को तैयार नहीं है?
3: डिमांड्स को देखिए पहले तो अभी डायलॉग ही नहीं हुआ है, तो कौन सी मांग मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी ये तो बाद की बात है, लेकिन स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं, बार बार प्रेशर माउंट कर रहे हैं कि अगर उनके डिमांड्स को कंसीड नहीं किया गया तो ये आंदोलन जारी रहेगा। और डिमांड जो है वो पब्लिक डोमेन में है कि पहले तो आप 14 जेपीएससी का जो प्रीलिम्स है उसको रद्द कर दीजिए, इसके अलावा कंप्लीट रिफॉर्म्स का एश्योरेंस चाहेंगे, ब्लैंकेट एश्योरेंस चाहेंगे सरकार के तरफ से, इसके अलावा जो है सीबीआई प्रोब की मांग थी वो एक बोन ऑफ कंटेंशन हो सकता है, उस पर जो है जिच हो सकती है, लेकिन एमिकेबल सॉल्यूशन कैसे निकलता है इसीलिए पैनल बनाया गया है मंत्रियों का। इसके अलावा जो है स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने भी अपने डेलीगेशन में जो बातचीत करेंगे उनके नाम भेजे हैं, तो बातचीत अगर डायलॉग होगा तो रास्ता निकलेगा, ये कयास ये उम्मीद स्टूडेंट्स को भी है, प्रोटेस्टर्स को भी है।
2: जी, जेपीएससी के जो चेयरमैन थे उन्होंने रिजाइन कर दिया है, सीआईडी जांच कर रही है, सवाल ये है कि उसमें से बहुत सारे ऐसे डिमांड्स हैं जो पब्लिक डोमेन में थे जिस पर सरकार मान गई है, लेकिन सबसे बड़ा डिमांड ये भी है कि सीबीआई प्रोब क्या जो दो तरह के जो प्रदर्शन हो रहे हैं वहां पर रांची में, उसमें से एक गुट मानता है कि सीबीआई प्रोब हो और दूसरा गुट ये शायद मानता हो सत्यजीत के जो जिस तरह का इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है वो सही है?
3: नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं, ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि डे वन से ही सरकार एक्शन में है, लगातार जो है कार्रवाई की जा रही है, लगातार रेड्स कंडक्ट किए गए, लगातार गिरफ्तारियां की गई, लगातार जो है क्वेश्चनिंग की जा रही है, ये सरकार की तरफ से कही जा रही है। और लेकिन अगर बात करें स्टूडेंट्स की, वो बार बार यही कह रहे हैं कि सीबीआई प्रोब होना चाहिए, अब ये इस मुद्दे पे किस तरह की बातचीत होती है ये देखना होगा, लेकिन सरकार ये कह रही है कि वो ठोस कार्रवाई कर रही है और स्टूडेंट्स के हित में ही कार्रवाई कर रही है। और जो भी रिक्वायर्ड है, मुख्यमंत्री ने सबसे पहले नेमरा में जब उनके पिता का पुण्यतिथि था उस दिन कहा कि जो भी रिक्वायर्ड है वो किया जा रहा है।
2: आशुतोष को भी हमारे साथ अब जोड़ते हैं, आशुतोष आपका रुख करेंगे, मुझे बताइए कि स्टूडेंट्स का, छात्रों का सबसे बड़ा डिमांड क्या है, वो कौन सा ऐसा डिमांड है जिसके लिए वो सरकार को हर तरह से वो चाहते हैं सरकार मान ले?
4: मारिया, उसके लिए मैं सीधा आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कोर मेंबर हैं जेएसपीसी के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर इस समय। आनंद, सबसे पहली बात तो ये कि कब आपको पता चला, उसके बाद बातचीत हो रही है, इस बातचीत में जो लोग गए हैं पहली शर्त क्या होगी आपकी?
5: पहली शर्त सर हमें की जो मांगे है ना वो तीन पॉइंट ही है, जेएसएससी रद्द, जेपीएससी 11वीं से 13वीं और 14वीं रद्द, और रिफॉर्म। रिफॉर्म में बहुत सारे पॉइंट है सर, हम लोग दिल्ली के टीम जो हमारी गई है बस सीधा उनसे वार्ता है सीएम साहब से कि आप मेरी हमेशा जारी रहेगा।
4: आनंद, दो चीजें हैं कि ये बात भी हो सकता है कि क्या सरकार सीबीआई जांच पर मांगेगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या आप लोग से परीक्षा स्थगित करके नतीजों के लिए, नए एग्जाम के लिए तैयार होंगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए अगर सरकार बातचीत करती है तो ऐसे में क्या आप लोग परीक्षा रद्द करने के लिए या फिर सीबीआई जांच, कोई ऐसी एक चीज है जहां पर शर्तों में थोड़ी सी नरमी आ सकती है?
5: सरकार यदि सीबीआई को मांग हम मान ले, और इतना लड़कों लोग को यहाँ पे
4: तो आज जो अभी छात्र आपके जो डेलीगेशन गया है वो क्या मांगे रखने वाला है सामने?
5: नहीं मांगे सर, हम अभी जो बताए जो हम लोग को मांग जो आपके पास यदि मांग नहीं होगा तो हम आपको भेज सकते हैं।
4: बोली मांगे तो हमारे पास हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ शर्तों को लेकर के कुछ ढिलाई हो कि शुरुआत में बातचीत शुरू करने के लिए एक मौका हो, और क्या आज ही जो है आखिरी नतीजे पर आप पहुंचेंगे आगे भी बातचीत का दौर जारी रहेगा?
5: सर देखिए, हम लोग बात को नहीं मानेंगे, यदि सीबीएल को रद्द नहीं किया जाता है और रद्द नहीं किया जाता है, रिफॉर्म की प्रक्रिया नहीं की जाती है, तब तक हम लोग एकदम डटे रहेंगे एकदम।
4: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद हमसे बातचीत करने के लिए। तुम्हारी आप आनंद को छोड़ देती हूँ, ये कोर ग्रुप के साथ छात्रों में से एक हैं और इनका जो प्रतिनिधि मंडल गया है आगे बातचीत के लिए, दरअसल वो किसी नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं और बातचीत की शुरुआत से थोड़ी देर में होगी, और आज तक ने ही सबसे पहले बताया था कि आज शाम 7 बजे बातचीत होगी, हमारे पास ये जानकारी थी। कि सरकार का प्रतिनिधि मंडल पहुंचेगा और मैं आपसे बस थोड़ी सी समय ये चाहूंगा ताकि
2: आशुतोष आशुतोष जल्दी से ये बताइए, तो उनकी पहली डिमांड ये है कि जेपीएससी की जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ था वो परीक्षा रद्द की जाए, उसको स्थगित किया जाए,
4: वो चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, और अगर सरकार उस पर भी तैयार हो जाती है, देखिए मेरी सरकार के सूत्रों से बात, उनका ये कहना है कि अगर हम परीक्षा सीधे से स्थगित कर देते हैं नतीजे, तो कल को जो छात्र चयन हुए वो अदालत चले जाएंगे और उनके पास एक ग्राउंड होगा कि किस आधार पर आपने रद्द किया है, क्योंकि अभी तक पुलिस की जांच है। कम से कम ओएमआर शीट में अगर अनियमितता हुई है तो उसके लिए एक फॉरेंसिक रिपोर्ट चाहिए होगी, तो जब वो फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद पुलिस उसके बाद एक रिपोर्ट बनाएगी और उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार को कैबिनेट में फैसला लाना होगा, विभाग को भेजना होगा और तब ये प्रक्रिया, अगर कानूनी प्रक्रिया सरकार ने नहीं अपनाई तो इसका भी खामियाजा छात्रों को ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि फिर एक कानूनी लड़ाई बन जाएगी, फिर कब तारीख लगेगी, कब उस पर स्टे लग जाए, तो ये आंदोलन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो सरकार देखिए, एक चीज यहां जरूर देखने को मिलेगी, सरकार ने रवैया सकारात्मक अपनाया है। आज भी अगर आपको हेमंत सोरेन का बयान याद हो कि हम छात्रों के लिए जो है चाहते हैं कि इस बातचीत हो और इसीलिए बातचीत में बुलाया गया है, हम जो तस्वीरें देख पा रहे हैं कि सर्किट हाउस पे तमाम सारे लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और इसीलिए पल पल की जानकारी हम लगातार आपको देते रहेंगे। छात्रों के ग्रुप से मेरी जो बातचीत हो रही है, देखिए वो यहां तक तैयार हुए जब सरकार ने कहा कि नहीं इसमें पत्रकार या वकील नहीं होंगे, तो छात्रों ने कहा ठीक है 10 लोगों का प्रतिनिधिमंडल है, आप इनसे ही मिल लीजिए। छात्रों ने ये तक कहा था कि हम कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग, कोई डिवाइस नहीं जाएगा, हम सिर्फ अच्छे माहौल में बातचीत चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने मंच को गैर राजनीतिक मंच बनाए रखा हमारे।
2: जी चलिए सत्यजीत के पास अब चलते हैं, सत्यजीत वहां पर क्या देख रहे हैं, क्या अपडेट है आपके पास?
3: देखिए बिल्कुल, अब डायलॉग जो है वो होगा, एक आइस ब्रेक करने की जो बात थी 14वां 15वां दिन वो अब शुरू होगा। ये देखिए स्टेट गेस्ट हाउस आपको यहाँ अंदर है, चार मंत्री जो पैनल में थे जिनको डायलॉग करना था, सुदिव्य सोनू, चमरा लिंडा, दीपिका पांडे और इसके अलावा संजय प्रसाद यादव, ये चारों पहुंच चुके हैं। अब जो स्टूडेंट्स का डेलीगेशन है उनका इंतजार किया जा रहा है। अब ये देखना होगा कि दोनों जो सेंटर थे जहां प्रोटेस्ट हो रहे थे, देवेंद्रनाथ महतो फैक्शन जो था वो और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स दूसरा ग्रुप जो था वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, दोनों को बुलाया गया या नहीं। लेकिन नाम दोनों से ही मांगे गए थे, एक तरफ से 7 नाम दिया गया था, एक तरफ से 10 नाम दिया गया था। तो अब ये देखना होगा कि वो तमाम लोगों को बुलाया जा रहा है या एक ग्रुप से मिला जाएगा, फिर बाद में दूसरे ग्रुप से मिला जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि बातचीत होगी। अभी हम लोगों ने देखा कि अंदर लोगों का आना जाना हो रहा है, शायद कोई प्रेजेंटेशन भी हो, शायद ये भी बताया जाए कि रिफॉर्म्स के लिए क्या क्या सरकार सोच रही है, किस तरह की जो है यहाँ पे नए इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं, नए जो है किस तरह से जो है स्टेप्स उठाए जा सकते हैं ताकि जो है पारदर्शी तरीके से आने वाले समय में ट्रांसपेरेंसी के साथ परीक्षा लिए जा सके, एंट्रेंस एग्जाम लिए जा सके, रिक्रूटमेंट जो होता है उसमें ट्रांसपेरेंसी आ सके, इसकी कोशिशें जो हैं वो ज़रूर की जा रही है सरकार के तरफ से। ये जो है लाउड एंड क्लियर मैसेज देने की कोशिश जो प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनके सामने सरकार करेगी। और ये देखिए गाड़ियों का आना जाना शुरू हो गया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो है यहाँ लगातार जो है ये SDM की गाड़ी है, ये जो है लगातार स्टूडेंट्स और जो है सरकार के बीच, देखिए स्टूडेंट्स जो है वो जा रहे हैं अंदर, जो है गाड़ियों में गए हैं, उनको ले जाया जा रहा है। देखिए इन गाड़ियों में जो है उनको ले जाया जा रहा है, वार्ता यहाँ पे होगी।
2: जी बिल्कुल, क्योंकि छात्र अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं सत्यजीत, परीक्षा की तैयारी करते हैं, परीक्षा भी ठीक से होती है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उनको सफलता नहीं मिलती, तो सवाल तो उठेंगे ना उनके मन में, जो भी सवाल है वो तो उठेंगे ही। अब इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से है, दिल्ली NCR में भारी बारिश से हर जगह ट्रैफिक जाम है और जल भराव भी दिख रहा है, जहां पे ये लंबी क्यूज दिख रहे हैं ट्रैफिक के, और इस तरह की तस्वीरें दिल्ली के बहुत सारे इलाकों से आ रही हैं, क्योंकि अब ऑफिस आवर्स शुरू हो चुका है, लोग घर वापस जाने जा रहे हैं और इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं दिल्ली में भारी बारिश से, हर जगह वाटर लॉगिंग है और ट्रैफिक जैम दिख रहा है।

0: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
1: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
2: कुछ तो बात है इस तेल में।

मैं देख रहा था कैसे खत्म हो रहा था बंगाल, डेमोग्राफी हैज बीन चेंज, हमारी सीमा असुरक्षित। भारत सरकार, पहले राजनाथ सिंह जी, उसका बाद अमित शाह जी, बार बार लेटर दे रहा है, भाई बॉर्डर के लिए जमीन तो दे दो, ये तो कोई पार्टी का मामला नहीं है, देश का मामला है, देश सबका है। नो नो नो नो, वोट बैंक, तुष्टिकरण, देश तो बर्बाद करो और पश्चिम बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश बना दो। मेरा घर का आदमी विपिन अधिकारी जी लेट, स्वतंत्रता संग्रामी, 8 साल ब्रिटिश का जेल में था। हम लोग पेट्रियोटिक फैमिली से आता हूं, भाई देश बर्बाद हो जाएगा, बंगाल खत्म हो रहा है, इसको सपोर्ट करना, ममता बनर्जी को सपोर्ट करना और मोहम्मद अली जिन्ना का सपना पूरा करना, ये दो एक ही बात ही था, इसको छोड़ना चाहिए।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में।

0: हर परीक्षा के साथ इन छात्रों में एक उम्मीद जगती कि शायद इस बार कोई गड़बड़ी ना हो, शायद इस बार नतीजा साफ सुथरा हो, शायद इनकी मेहनत का असर दिखे, शायद झारखंड की परीक्षा व्यवस्था इस बार सुधरे। लेकिन बार बार इनकी उम्मीद टूटती है। ये हर बार खुद को ठगा महसूस करते हैं, हर बार सिस्टम की नाकामी का शिकार बनते हैं। भ्रष्टाचार इन छात्रों की मेहनत पर भारी पड़ जाता है और छात्रों के हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। 25 साल के मनीष बताते हैं कि कैसे हर परीक्षा में वो बर्बाद हो चुके सिस्टम का शिकार बनते हैं। मनीष एक नहीं कई कई परीक्षाओं का उदाहरण देते हैं और सवाल करते हैं कि अगर यही हाल रहा तो झारखंड का छात्र कहां जाएगा।
1: आपको तीन एग्जाम का एग्जाम्पल देंगे, जैसे कि CHO का एग्जाम हुआ था, उसमें एक राज्य विशेष लोगों का चयन हुआ। फिर 11-13 JPSC का एग्जाम हुआ, उसमें भी एक राज्य विशेष का सिलेक्शन हुआ। फिर महिला सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ, उसमें भी एक राज्य विशेष महिला अभ्यर्थियों का चयन हुआ। हम लोग झारखंड वाला कहां जाएं, क्या करें।
0: मनीष के माता पिता खुद झारखंड आंदोलन में शामिल थे। अब वो सवाल करते हैं कि आखिर अलग सुबह बने 25 साल से भी ज्यादा बीत जाने पर भी झारखंड के लोगों को क्या मिल रहा है।
2: आंदोलन आपको जन्म से मिल गया।
1: हाँ, आंदोलन मैंने जन्म से देखा। और पापा नारा देते थे ना कि घर में कि कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड। तो पापा कभी कभी बोलते हैं कि झारखंड ले लिए, लेकिन हम झारखंडियों को क्या मिला है। यहाँ पे बस अदर स्टेट वाले आते हैं, मलाई खा के चल जाते हैं। झारखंड के हिस्से में वही आता है, कोयला बिछो, बकरी पालो। हेमंत सोरेन भी तो वही बोलते हैं ना, बकरी पालो, सुअर पालो, और रिच मिनरल रिच है ये, तो कोयला बिछता ही है यहाँ का लोग, क्योंकि नौकरी तो बाहर वाले आके ले जा रहे हैं ना, या फिर जो वो वैसे रसूखदार ले जा रहे हैं।
0: झारखंड के हजारों छात्रों की शिक्षा व्यवस्था से नाराजगी है, क्योंकि ये उनके रोजगार और भविष्य का सवाल है, और इसे लेकर अब रांची के आंदोलन में शामिल छात्रों में जबरदस्त उबाल है।
3: प्रीलिम्स निकला, मेंस निकला, मैं फिर इंटरव्यू भी दिया सर, फाइनली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उस समय लगा मुझे शायद मेरा ही कहीं पे फॉल्ट होगा। उस समय से इंटरव्यू में मुझे मात्र 40 नंबर दिया गया। उस समय ये देखा गया कि वहाँ पे चार बोर्ड है सर, जितने सारे मेंबर है JPSC के अंदर, वो सभी मेंबर किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड है सर। कोई किसी से है, कोई किसी से है, और उन लोगों का अपना पर्सनल बायस होता है। तो एक बोर्ड सबको 65+ दे रहा है, एक बोर्ड सबको किसी को 15 दे रहा है, किसी को 20 दे रहा है, मुझे मात्र 40 नंबर दिया गया। और सर एक उसके बाद जब मेरा रिजल्ट नहीं हुआ ना, तो मुझे लगा कि शायद मेरे में ही कोई कमी है, तो मैं अगले बार इसमें सुधार कर लूंगा।
0: झारखंड की इस धरती ने कई आंदोलन देखे, और अब बिरसा की इस धरती पर नौजवानों की इस आंदोलन को पूरा देश गौर से देख रहा है। झारखंड का छात्र बदलाव की उम्मीद के साथ आंदोलन कर रहा है। इनके मंच पर गांधी, अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, बिरसा मुंडा की तस्वीर है, और इनकी प्रेरणा के साथ बदलाव की उम्मीद। सत्यजीत कुमार के साथ आशुतोष मिश्रा, रांची आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: विशेष में मेरे साथ इतना ही, आगे देखिए खबरदार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: रांची में सरकार और छात्रों में आज वार्ता, मोराबादी गेस्ट हाउस में हो रही है बातचीत। मुलाकात से पहले सीएम सोरेन बोले, छात्र हित में लेंगे निर्णय। संसद में गतिरोध के बीच सोमवार तक स्थगित दोनों सदन। रिजिजू ने विपक्ष पर जड़ा आरोप, कांग्रेस ने 10, 11 और 12 अगस्त के लिए अपने सांसदों को जारी किया व्हिप। एथेनॉल पर राहुल ने सरकार को घेरा, वीडियो पोस्ट में कहा, दाल में काला नहीं पूरी दाल ही काली। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान, कुछ लोग खड़ा कर रहे हैं विवाद। अंबेडकर नगर की रैली में मुख्यमंत्री योगी ने अखिलेश को फिर घेरा, कहा एसपी सरकार में लूटने निकल जाती थी चाचा भतीजे की जोड़ी, इन्होंने नहीं चलने दी विधानसभा। और लगातार बारिश से दिल्ली एनसीआर में जगह जगह भरा पानी, कई जगह लंबा लंबा जाम, 9 घर गिरे। पुष्प विहार में सबसे ज्यादा हुई बारिश।
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health का सच, in association with
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। आज की हर बड़ी खबर से खबरदार करने का ये समय है। तो शुरुआत आइए इस समय की एक बड़ी खबर से हम करते हैं। रांची में 14 दिन बाद सरकार के साथ प्रदर्शनकारी छात्रों की बातचीत होने वाली है। बातचीत के लिए सरकार की ओर से मंत्री और अधिकारियों का एक दल, छात्रों की ओर से 10 प्रतिनिधियों का दल मोरादाबादी स्टेट गेस्ट हाउस पहुंच चुका है। तस्वीरें हम आपको वहीं की दिखा रहे हैं। अब ये बातचीत किसी भी समय शुरू हो सकती है। प्रदर्शनकारी छात्र अपनी मांगों पर अड़े हैं। वो चाहते हैं कि 14वीं सिविल सर्विसेज परीक्षा, जिसमें प्रीलिम्स की परीक्षा हो चुकी है, रिजल्ट आ चुका है, वो रद्द की जाए, क्योंकि धांधली का आरोप है जिसकी जांच सीआईडी कर रही है। लेकिन छात्र ये भी कहते हैं कि जांच सीबीआई से कराई जाए। तो क्या हमारा देश जल्द ही अब दूसरे बड़े जेंजी आंदोलन का असर झारखंड की राजधानी रांची में देखने वाला है? क्योंकि पिछले ही महीने जंतर मंतर पर जेंजी आंदोलन करके अपनी सबसे बड़ी बात मनवा चुके हैं। जेन अल्फा के शहर शहर आंदोलन का असर भी दिखने लगा है। सरकारें मांग सुनने लगी हैं और इन सब के बीच रांची में 14 दिन से चलते छात्रों के प्रदर्शन में सरकार और छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत बस अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। और तब खबरदार करता हुआ सीधा सा सवाल ये है कि क्या संघ, सरकार, विपक्ष और समाज के दूसरे प्रभाव डालने वाले वर्ग ये समझ चुके हैं कि जेंजी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता?
1: हाय फ्रेंड्स, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
2: हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए।
3: नई पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूँ, उनके मनोबल को और उनकी एकता को।
4: देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा।
2: स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है।
5: झारखंड के कुछ बच्चों से भी राहुल गांधी का इंटरेक्शन होना चाहिए।
6: सरकार ये चाहती है कहीं ना कहीं जो छात्रों का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए।
7: सबको युवाओं की चिंता है, जेन जी से लेकर जेन अल्फा तक की चिंता, और ये चिंता यूं ही नहीं आई। बात देश की करें तो फरवरी 2024 के आंकड़ों के मुताबिक जब देश में कुल वोटर 96,88,21,926 है, तो 18 से 29 साल के वोटर यानी जेन जी की संख्या 21,59,18,770 यानी देश के कुल वोटर में 22.29% हिस्सेदारी केवल जेन जी की। और अगर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में कुल वोटर जब 15,44,03,112 है, तो 18 से 29 साल वाले जेन जी की तादाद 3,27,18,019 यानी कुल वोटर में 21.19% जेन जी है। तो क्या यही वजह है कि जब जंतर मंतर के आंदोलन ने देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्या दिलाया, नेता सहम गए, सियासत सतर्क हो गई और विद्यार्थी सजग, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती, मुल्क की 65% आबादी की नौजवानी अब सियासी रवानी में बहने को तैयार नहीं है, उसने अपना मोर्चा खोल लिया है। चाहे भारी बरसात में 2 हफ्ते से आंदोलन कर रहे रांची के विद्यार्थी हों या कॉलेज में बद इंतजामी बदहाली के खिलाफ सिस्टम को जमीन दिखाते छात्र, ये जेन जी अब नेताओं की सियासत के चक्कर में अपने अधिकारों की अनदेखी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं।
8: बैठिए, पहले सीसीडीसी जमीन में बैठे तब बात करेंगे। बैठिए बैठिए, ऐसा कीजिए। हाँ ठीक है, बात कीजिए।
9: आपका इनसे काम कहीं होता?
10: सारे काम मेरे हाथ में नहीं, हर समस्याओं को मैं बढ़ा देता हूँ नाती के साथ हूँ, लेकिन विलंब आगे होता है।
9: आगे पहले सुनो, ठीक है, आगे होता है।
10: कोई भी फाइल मैं बढ़ाता हूँ रजिस्ट्रार के यहाँ, रजिस्ट्रार

0: रजिस्ट्री के आगे होता है।
1: कोई भी फाइल मैं बढ़ाता हूँ रजिस्ट्रार के यहाँ, रजिस्ट्रार के बाद जाता है कुलपति के यहाँ।
2: आपको पता नहीं अभी स्टूडेंट
3: छात्र नेता के व्यवहार की आलोचना हो सकती है, लेकिन धनबाद के कॉलेज का ये 27 जुलाई का वीडियो गवाही देता है कि विद्यार्थियों के मुद्दों को अनदेखा करने पर आक्रोश अब इस हद तक बढ़ चुका है। और इसी नाराजगी को देखते हुए मुल्क के नेता सतर्क और सियासत सहमी हुई, वरना जंतर मंतर के बाद कुछ ऐसी हवा चली है कि हर दल किसी न किसी तरह से जेन जी से मिलने जुलने उन्हें प्रभावित करने की कोशिश में जुट चुका है। चाहे वो पीएम मोदी के इंस्टा रील्स हो, राहुल गांधी के इंस्टा क्वेश्चन आंसर सेशन, चाहे वो मोहन भागवत का जेन जी कनेक्ट हो या राहुल गांधी का गूंज कार्यक्रम, हर दल को लगता है कि जेन जी से कनेक्ट रहे बिना देश की सियासत में मौजूद नहीं रहा जा सकता।
4: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज की आवश्यकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की आवश्यकता है। हम बदलती हुई दुनिया में इससे पीछे नहीं रह सकते, इससे मुंह नहीं मोड़ सकते।
3: और देश की मौजूदा सत्ता को दिशा दिखाने वाले आरएसएस ने भी माना है कि जेन जी के साथ अन्याय हुआ है। संघ प्रमुख ने माना है कि अगर जेन जी विरोध प्रदर्शन कर रहा है तो वो राष्ट्र विरोधी नहीं हो जाता। जेन जी पिछली पीढ़ी से ज्यादा ईमानदार और संवेदनशील भी है। ये नई पीढ़ी डिक्टेशन नहीं, सवालों का तर्कपूर्ण जवाब चाहती है। सरकार या सिस्टम के स्तर पर जेन जी की आवाज नहीं सुनी गई है और शिक्षा को व्यापार बना चुके सिस्टम को दोबारा सोचने की जरूरत है।
5: अभी जो हुआ है ग्रीवंस तो जेनाइन है। भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा इसलिए बात होती है, तो डायलॉग होना चाहिए।
3: जेन जी के साथ चंद मिनट गुजारने के बाद क्लॉक इट तक के स्लैंग सीख चुके मोहन भागवत को इसी जेन जी ने कबूल करा दिया कि उनकी आवाज सुनने में सरकार नाकाम रही।
6: इसमें आप मानेंगे कि संवाद यदि पहले से शुरू हुआ होता तो ये बाद में विषय ज्यादा ऊपर जाता ही नहीं।
5: जो नहीं होना चाहिए वो जब होता है तो कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जाती, तभी होता है। किसकी है क्या है ये अलग बात है, लेकिन कमी तो रही है, ठीक हो जाएगी।
3: लेकिन इस कबूलनामे के बाद भी सियासत अपनी धार और रफ्तार छोड़ने को तैयार नहीं। नेता अब भी जेन जी के मुद्दे को चुनावी और विद्यार्थियों को सियासी मोहरा समझ रहे हैं।
7: हमारी डेलीगेशन गई है, हर चीज राहुल गांधी करेंगे, मोदी कुछ नहीं करेंगे, अमित शाह पार्लियामेंट में भी नहीं आएंगे और आप लोग आके पूछेंगे राहुल जी क्या करेंगे।
8: स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
3: हालांकि राहुल गांधी ने झारखंड के छात्रों के आंदोलन को भी जुबानी समर्थन दे दिया है।
9: राहुल गांधी जी को अभी याद आया कि हाँ झारखंड में भी बच्चे पढ़ते हैं, झारखंड में भी बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, और अभी वो पूरा इसको मिला दिया है कि नेशनल इशू करके। क्यों भाई, पंजाब के लेके बात करो, अभी कर्नाटक को लेके बात करो, केरल को लेके बात करो, इन सब जगह पे तो अपनी ही सरकार है आपकी।
3: नेता छात्रों के आंदोलन को आवाज दे या ना दे, आज का जेन जी सिस्टम से ये सवाल पूछने लगा है कि देश की शिक्षा व्यवस्था में 69% स्कूली शिक्षा का दारोमदार उठा रहे सरकारी स्कूल बदहाल क्यों है और उनमें शिक्षकों की भारी कमी क्यों है। 10 साल में 94,000 सरकारी स्कूल बंद या आपस में मर्ज हुए हैं और निजी स्कूल 2,88,000 से बढ़कर 3,39,000 कैसे हो गए। सरकार ने कहने को तो नई शिक्षा नीति लागू कर दी, लेकिन स्कूली टीचर आज भी पढ़ाई से ज्यादा मिड डे मील से लेकर भेड़ बकरी गिनने तक में परेशान रहते। सरकारी स्कूल कॉलेज से पढ़ लिख कर निकले विद्यार्थियों को नौकरियां नहीं मिल पा रही, लिहाजा शिक्षा के धंधेबाज दिन रात दोगुना चौगुना बढ़ते जा रहे हैं। और आज का जेन जी सिस्टम से सवाल पूछता है कि पिछले एक दशक में सरकारी यूनिवर्सिटी तो 45.4% ही बढ़ी, निजी विश्वविद्यालय में 149.3% बढ़त क्यों हो गई? देश के 52,081 कॉलेज में 78% कॉलेज निजी क्यों है? देश की उच्च शिक्षा में औसत नामांकन अनुपात सिर्फ 28.4% क्यों है? 2013-14 में 4.6% से 4.7% का शिक्षा बजट 2026-27 में 2.5% से 2.6% ही क्यों रहेगा? जवाब न तो सरकार देने को तैयार है न सिस्टम सुधरने को, लेकिन जंतर मंतर की जागरूकता यूं ही बनी रही तो सरकारों को भी और सिस्टम को भी जेन जी की बातें सुननी भी पड़ेंगी। और

0: समझनी भी। आज तक ब्यूरो।
1: युवाओं में बेरोजगारी का बड़ा कारण पेपर लीक, भर्तियों में भ्रष्टाचार तो है ही, लेकिन इसके साथ ही नौजवानों में बेरोजगारी का एक बड़ा कारण स्कूल एजुकेशन सिस्टम का बंटाधार होना भी है। और यह हाल एक राज्य नहीं बल्कि हर राज्य का है, जिसमें आज हम आपको सबसे पहले बिहार की ग्राउंड रिपोर्ट से खबरदार कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी AI क्लास AI टीचर की बात स्कूल शिक्षा में करते हैं। शिक्षा मंत्री बिहार के विभिन्न दावे करते हैं, लेकिन आज बिहार की सरकार का जमीनी सच आप देखिए। जहां बिहार में सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने की बात लगातार हो रही है, नई बिल्डिंग, स्मार्ट क्लासेस और क्लासरूम के अलावा बेहतर सुविधाओं के दावे किए जा रहे हैं, पर जब आज तक की टीम सहरसा, पश्चिमी चंपारण, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और कैमूर से लेकर जहानाबाद तक के सरकारी स्कूलों तक पहुंची, तो जमीनी हकीकत हमें कुछ और ही मिली। कई स्कूल आज भी अपने भवन का इंतजार कर रहे हैं, कहीं बच्चे झोपड़ी में स्कूल के नाम पर पढ़ रहे हैं, कहीं स्कूल के नाम पर पेड़ के नीचे, तो कहीं टिन शेड में ही, तो कहीं एक ही कमरे में कई कई कक्षाओं की पढ़ाई एक साथ चल रही है।
2: AI से जुड़ जाए तो 5 मिनट में पता चलेगा कि फलाना पंचायत में फलाना बूथ नंबर पर जनता को क्या कष्ट हो रहा है, वहां क्या दिक्कत आ रही है, वहां लोग क्यों चिंतित हैं।
3: काश वो AI आने से पहले सरकार की आई यानी आंखें खुल जाती तो दिख जाता कि झोपड़ी में एक ही जगह बिहार में पहली से लेकर पांचवी तक के बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं।
4: ये एक झोपड़ी है और इस झोपड़ी के अंदर पहली से पांचवी क्लास के बच्चे पढ़ाई करते हैं।
2: AI और कंप्यूटर साइंस पर एक यूनिवर्सिटी बनाने की कल्पना को सर जमीन पर लाया और आप तमाम विधायकों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, सबने समर्थन करके दोनों सदन से पारित करके महामहिम के पास भेजने का काम किया, क्योंकि हमको टेक्नोलॉजी चाहिए।
3: लेकिन काश मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक टेक्नोलॉजी ऐसी भी खो जाते जहां दिख जाता कि बिहार के बच्चे अब भी जमीन पर बोरिया बिछाकर पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं, जहां सपना AI यूनिवर्सिटी और कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी का संजोया जा रहा है।
4: पेड़ के नीचे ठंडी हवा में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, इसलिए क्योंकि स्कूल का अपना भवन नहीं है।
2: इसलिए मैंने कहा बिहार में जनता की सरकार है और गरीब बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता था, मॉडल स्कूल नहीं था, लोग पहले कहते थे नेटरहाट से पढ़ रहे, सैनिक स्कूल से पढ़े, देवघर में मिशन स्कूल है वहां पढ़े, और गरीब बच्चे को इंतजार करना पड़ता था। लेकिन हम लोगों ने एक दिन में 551 मॉडल स्कूल खोला। साथियों,
3: जो खुला हुआ है उसको कौन देखेगा सरकार? देखिए ना पश्चिमी चंपारण का ये स्कूल, जो मॉडल तो छोड़िए, अब तक मॉडर्न युग में नहीं आ पाए। नन्हे मुन्ने बच्चे जमीन पर पढ़ते हैं, लगे आपको कि अरे ये सब तो होता रहता है। तो देखिए ना मुख्यमंत्री जी, आज आपके AI वाले युग स्वप्न के समय में बच्चे गलियारे में तीन तीन चार चार क्लास एक साथ लगाकर पढ़ने के लिए मजबूर है।
5: तीन के बरामदे के नीचे एक साथ 1, 2, 3, 4 क्लास की कक्षाएं चल रही है।
2: बच्चा घर जाएगा उसको कौन बताएगा, क्योंकि उनके माता पिता उतने शिक्षित नहीं है। हम लोगों ने एक ऐप दिया है जिसको रात के 11 बजे यदि बच्चा खोलेगा तो रात के 11 बजे भी 1 मिनट के अंदर उसको शिक्षक उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार करेगा।
3: लेकिन एक स्कूल की इमारत तो दिला देती सरकार पहले, वरना बिहार में एक मंदिर में स्कूल चलाकर बच्चों को पढ़ाना ना पड़ता।
6: सर यहाँ क्लास यही चलता है, स्कूल नहीं बन
7: नहीं इसका, हाँ। भवन नहीं है, भवन नहीं रहने के कारण विद्यालय यहाँ चल रहा है, और ये विद्यालय आज से नहीं चल रहा है, 1962 से चल रहा है।
6: 1962 से सरकारी स्कूल को बिल्डिंग नहीं मिला,
7: बिल्डिंग नहीं मिला है।
6: आप लोग कोशिश तो किए ही होंगे?
7: कोशिश की है, अभी हाल ही में हमने आवेदन दिया है, लेकिन उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है।
6: क्योंकि खुले में होने से दिक्कत तो होता होगा कि लोग पूजा पाठ के लिए आ रहे हैं, बच्चे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी होते होंगे।
7: बहुत बहुत परेशानी होती है।
3: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी। आज तक की खबरदार करते इस रिपोर्ट को आज बहुत ध्यान से देखें, वक्त निकाल कर देखें, क्योंकि ये देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है।
1: ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिहार की सरकार को पता नहीं, पता मिथिलेश तिवारी और सम्राट चौधरी को सब कुछ है। बीते दिनों मॉनसून सत्र के दौरान सरकारी स्कूलों में भवनों की कमी का मामला विधानसभा में भी उठा है। सरकार ने सदन में खुद ये माना है कि राज्य के 35 जिलों में 2,276 प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनके पास अपना भवन तक नहीं है। सम्राट चौधरी सरकार ने यह भी बताया कि बिहार के 9,297 उच्चतर माध्यमिक यानी कि प्लस टू स्कूल्स में से 720 विद्यालय अब भी बिना अपने भवन के ही चल रहे हैं, संचालित हो रहे हैं। सरकार के अनुसार 720 में से 677 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि जिस बिहार में 2005 से अधिकतर बीजेपी जेडीयू की ही सरकार रही, वहां स्थिति अभी तक बदली क्यों नहीं? जहां बातें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एआई क्लास की कर रहे हैं और सच्चाई उनके राज्य में पेड़ के नीचे हो रही पढ़ाई की।
3: सरकार को जगाना और बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ऑनलाइन बिहार स्कूल लाइव क्लासेस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हैं तो देखकर ये लगता है कि सरकार शायद कुछ बेहतर करने जा रही है। जहां मुख्यमंत्री के पास बैठने के लिए कुर्सी है, सामने बोतल बंद साफ सुथरा बढ़िया पानी है, सामने 50 से 55 इंच के टीवी पर एआई क्लास से बिहार के स्कूल में कैसे सब कुछ बदल जाएगा उसकी प्रेजेंटेशन चल रही है। लेकिन ये तो भविष्य की बात है, भगवान करे भविष्य में ऐसा हो, सब एआई से पढ़े और बढ़े, वरना हकीकत बिहार के स्कूलों की ये भी है कि ये घर है या फिर ये झोपड़ी है, ये क्या है?
4: बच्चों को अगर कहीं पढ़ाई करने के लिए जाना हो तो उन्हें स्कूल जाना पड़ता है और स्कूल का एक अपना भवन होता है। ये सबसे न्यूनतम जो है कहें तो एक जरूरत होती है बच्चों की पढ़ाई के लिए। लेकिन बिहार सरकार में शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से ध्वस्त है, इसकी तस्वीर दिखाने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं सहरसा जिले के सोनबरसा प्रखंड अंतर्गत मैनापट्टी गांव में। और मेरे सामने आप ये देखिए, अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर एक स्कूल चल रहा है, आप सामने देख रहे हैं प्राइमरी स्कूल चल रहा है, पहली से पाँचवीं क्लास तक के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे क्योंकि आपको पीछे कुछ नज़र नहीं आएगा। लेकिन हकीकत है क्योंकि ये जो आप झोपड़ी देख रहे हैं, ये झोपड़ी बिहार सरकार का एक प्राइमरी स्कूल है।
3: बधाई दीजिए सहरसा के सोनबरसा प्रखंड के मैनापट्टी गांव के 55 बच्चों को, एक झोपड़ी में एक साथ 5 क्लास वाला स्कूल दिया गया है।
4: ये मेरे सामने ये 2 बेंच लगा, ये क्लास 1 है, फिलहाल 3 बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, ये हो गया क्लास 1। मेरे बाएं तरफ यहाँ 2 बेंच, ये हो गया क्लास 2, यहाँ पर फिलहाल 4 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इस तरफ आ जाइए, फिर उसके बगल में ठीक 2 बेंच इधर भी, ये क्लास 3 हो गया, यहाँ भी आपको 5-6 बच्चे पढ़ाई करते हुए दिख रहे होंगे। अब उसके बगल में ये है चौथी कक्षा, चौथी कक्षा भी 2 बेंच और यहाँ 2 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और अंत में पांचवी कक्षा, यहाँ पर एक ही बेंच है और 3 छात्राएं यहाँ पर पढ़ाई कर रही हैं।
1: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मिथिलेश तिवारी, शिक्षा मंत्री, दोनों साथ में एक प्रेजेंटेशन के दौरान आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर हो रही हैं। एआई के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की बात हो रही है। सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री बिहार का ये सपना है कि बिहार के बच्चे, उनके सरकारी स्कूल के बच्चे एआई से पढ़ाई करें, वहाँ पर स्मार्ट क्लासेस हों, क्लासरूम्स स्मार्ट क्लासरूम हों और आधुनिक पढ़ाई वहाँ पर करवाई जाए, उन्हें मॉडर्न एजुकेशन दिया जाए और देश और दुनिया के बच्चों के साथ वो कदम ताल करके चल सकें। लेकिन आज हम आपको सच्चाई दिखा रहे हैं।
3: पानी छोड़ दीजिए, वो सब तो दूर की बातें हैं। कहने को सरकार बस ये कहकर पीठ थपथपा सकती है कि अरे ऑर्गेनिक माहौल में एक झोपड़ी में 5 क्लास चलाकर सबका साथ सबका विकास का इससे बड़ा उदाहरण और कहाँ दिखेगा।
8: कौन है?
9: शौचालय भी जाने के लिए बहुत कष्ट है, पढ़ने में भी दिक्कत है। बारिश का समय आते हैं तो सबका देह पर पानी गिरता है, हम लोग भींग जाते हैं।
4: बिल्कुल, छत तो देख रहे हैं, छत भी कई जगहों से टूटा हुआ है, तो पानी तो टपकता ही होगा।
9: जी, इस तरह का बहुत समस्या है सर।
4: शौचालय है स्कूल में?
9: जी नहीं है शौचालय।
4: पीने के पानी की व्यवस्था है?
9: जी नहीं है।
8: बिहार के शिक्षा मंत्री जो है, नए शिक्षा मंत्री बने, उनका क्या नाम है?
10: और कुछ दे नहीं पाई सरकार यहाँ, जो उर्दू पढ़ने वाला कोई बच्चा था नहीं तो उर्दू का टीचर जरूर दे दिया।
11: हम उर्दू के टीचर हैं लेकिन यहाँ उर्दू के बच्चे एक भी नहीं है, तो हम 1 to 5, 1 to 8 जो सभी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, तो हम कभी मैथ्स पढ़ा देते हैं, तो कभी जीके पढ़ा देते हैं, कभी पर्यावरण पढ़ा लेते हैं।
4: मेनली आप उर्दू के टीचर हैं, उर्दू के कोई बच्चे हैं?
11: उर्दू के बच्चे नहीं, इस पोषक क्षेत्र में उर्दू बच्चे नहीं है।
4: तो आप सारे बच्चों को क्या क्या पढ़ा लेते हैं?
11: मैथ साइंस नहीं है, पर्यावरण पढ़ा लेते हैं, इंग्लिश पढ़ा लेते हैं, ट्रांसलेशन पढ़ा लेते हैं, जीके जीएस पढ़ा लेते हैं।
10: इन बच्चों की नींव ही सरकार खोखली कर देगी तो भविष्य में ये क्या कर लेंगे? इनके साथ अपराध किया जा रहा है और दुख की बात है कि अपराधी बिहार की ही सरकारी व्यवस्था है।
4: अगर इस हालात में बिहार में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी छोटे बच्चे, पहली से पांचवी प्राइमरी के बच्चे, जिनकी बुनियाद अगर इस तरीके से अगर सींची जा रही है इस तबेले नुमा स्कूल में, झोपड़ी है यहाँ पे सिर्फ केवल, तो फिर बहुत हैरानी होती है और देख के ये तस्वीरें बहुत दुख भी होता है।
10: लेकिन संवाददाता रोहित सिंह को तो अभी और चौंकना बाकी। सहरसा के सोनबरसा का झिटकिया गांव, 2007 में यहां प्राथमिक स्कूल शुरू हुआ, 20 साल बाद भी सरकार कह सकती है कि बच्चों को जमीन से जोड़कर रखा है। काहे कि ना उनके लिए कुर्सी है, ना मेज, ना स्कूल की इमारत, जमीन है, बोरा है, पेड़ है, पेड़ भी बांस वाला और बांस के सहारे बोर्ड है, क्योंकि सरकारी व्यवस्था में बच्चों को लेकर खोट है।
4: पिछले तकरीबन 20 सालों से यही स्थिति है, बच्चे इसी तरीके से पेड़ की छांव में रोजाना आते हैं, पढ़ाई करते हैं। ये प्राइमरी स्कूल जो है, इसमें पहली से लेकर पांचवी कक्षा तक के बच्चे आते हैं, और फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर पहली और दूसरी क्लास के बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे बाप दादा, हम लोग सुना करते थे कि बोरे पर रख कर पढ़ाई किया करते थे, लेकिन बिहार की स्थिति आज भी ऐसी है कि सब लोग को देखिए अपना अपना बोरा लेकर खुद आना पड़ता है या बोरा यहाँ दिया जाता है, लेकिन बोरे पर ही बैठकर आज बिहार के ये नौनिहाल जो हैं वो यहाँ पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि सरकार के लाख दावों के बावजूद भी कोई सुनने वाला नहीं है, कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है। देख लीजिए क्या स्थिति है यहाँ पर। और जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं उनको ज़रा समझना चाहिए, ज़रा उनको देखना चाहिए कि अगर इस तरीके से बिहार का विकास हो रहा है, बिहार के नौनिहालों को पढ़ाया जा रहा है राज्य में, जहाँ पर आज एडवांस पढ़ाई होती है, कंप्यूटर से पढ़ाई होती है, स्मार्ट टीवी से पढ़ाई होती है, स्मार्ट क्लासेस चलते हैं, हाईटेक पढ़ाई हो गई है, और इसका दावा भी किया जाता है कि बिहार में भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो हकीकत देखने के लिए स्कूल पे आ जाइए। टीचर है आप यहाँ पे?
12: जी जी।
4: 2007 से ही पढ़ा रही
12: हैं? जी, 7 से, फरवरी से।
4: बहुत पुरानी टीचर है, 20 साल से यही व्यवस्था है जी।
12: जी,
4: बोले बोले कि नहीं, बीओ को, डीओ को, डीएम को
12: बोले हैं, बीओ सबको बोला हुआ,
4: कोई देखने नहीं आता है?
12: बीओ सब आते थे, सब आते थे, सब अपना
4: 20 साल में सिर्फ आते थे, देख के चले गए, कुछ किया नहीं है किसी ने?
12: नहीं, कुछ नहीं।
10: बिहार के इस स्कूल में सरकारी दावों की हालत इस हैंडपंप की तरह है, जहां का पानी केवल हाथ पैर धोने के काम आता है, पीने के काम नहीं आता, क्योंकि इस पानी में दावा है आयरन बहुत है। जैसे सरकारी दावों में आयरन शक्ति बहुत होती है, लेकिन हकीकत आपके सामने है। बाकी भीतर एक गोदाम नुमा कमरे में बापू और देश के असली लौह पुरुष सरदार पटेल की तस्वीर,
4: जहां प्रिंसिपल
10: जो इस इंतजार में होंगे कि एक दिन कम से कम स्कूली शिक्षा के बुनियादी अधिकार की आजादी बिहार के इन स्कूल तक भी पहुंचेगी। रोहित सिंह, सहरसा, आज तक।
1: बिहार में 90 के दशक से कहा जाता है कि स्कूल व्यवस्था का बट्टादार होना शुरू हुआ। पहले लंबे समय तक बिहार में लालू राज रहा, फिर लंबे समय तक नीतीश राज रहा और अब सम्राट राज शुरू हुआ है। अभी 125 दिन ही सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन सरकार तो एनडीए की बिहार में लंबे समय से रही है, आप जानते हैं। फिर भी अब तक सैकड़ों स्कूल में लाखों बच्चे अगर पेड़ के नीचे एक झोपड़ी के नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं, टाट पट्टी पर बैठकर पढ़ रहे हैं, तो ये शर्मनाक है। और ये स्थिति इसलिए भी शायद है क्योंकि बच्चे वोटर नहीं होते, वरना इनकी चिंता भी सरकारें जरूर करती।
10: मुख्यमंत्री बिहार के और शिक्षा मंत्री बिहार के, जरा जहानाबाद का हाल देख लें। भगवान भरोसे बिहार के सैकड़ों स्कूल चल रहे हैं, जहां भगवान ना हो, मंदिर ना हो, तो शायद स्कूल ना चल पाए। भगवान भरोसे सरकार, भगवान भरोसे बच्चे, भगवान भरोसे भविष्य। खबर जहानाबाद की, जहां 64 साल से स्कूल है लेकिन स्कूल की इमारत नहीं, स्कूल मंदिर के भरोसे चल रहा है।
6: यहाँ पर स्कूल चल रहा है पर आपको जूता खोल कर जाना पड़ रहा है, वो इसलिए क्योंकि मंदिर के परिसर में सरकारी स्कूल चल रहा है। यहाँ पर सर यहाँ क्लास यहीं चलता है, स्कूल नहीं बन
7: नहीं है इसका। हाँ, भवन नहीं है, भवन नहीं रहने के कारण विद्यालय यहाँ चल रहा है और ये विद्यालय आज से नहीं चल रहा है, 1962 से चल रहा है।
6: 1962 से सरकारी स्कूल को बिल्डिंग नहीं मिला,
7: बिल्डिंग नहीं मिला है।
6: आप लोग कोशिश तो किए ही होंगे?
7: कोशिश की है, अभी हाल ही में हमने आवेदन दिया है।
6: हाँ,
7: लेकिन उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है।
6: क्योंकि खुले में होने से दिक्कत तो होता होगा कि लोग पूजा पाठ के लिए आ रहे हैं, बच्चे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी होते होंगे।
7: हाँ, बहुत बहुत परेशानी होती है, लेकिन अब हम लोग को जिस भी परिस्थिति में हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छा ही करें।
6: हाँ,
7: बेहतर ही करें। जब शादी ब्याह का टाइम आता है तो बहुत सारी भीड़ होती है, जिसकी वजह से फिर भी बच्चों को हम लोग संभाल के ही रखते हैं, लेकिन परेशानी हमें बहुत ज्यादा होती है।
6: देखिए बच्चों की लिखावट भी बड़ी अच्छी है, कोशिश भी यहाँ पर टीचरों की तरफ से हो रही है कि पढ़ाई पूरी शिक्षा अच्छे से दी जाए, लेकिन हाथ बंध जाते हैं आपके उस जगह पर आकर जहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही है। मैम आप लोग कोशिश कर रही हैं?
13: तो कोशिश तो करिए रहे, तो क्या करेंगे, बिल्डिंग न है तब तो जैसे यहाँ करना हो वैसे ही करेंगे ना।
6: तो मंदिर ने आप लोगों को ये जगह कम से कम दे रखी है 62 से,
13: तो सार्वजनिक है तो यहीं पर 62 से चल रहा है, तो यहीं पर पढ़ा रहे हैं हम लोग।
6: सब बच्चे नियमित आते हैं?
14: यही है, ये है, आज से नहीं, बहुत दिन से स्कूल यहीं पर चल रहा है, तो हम लोग बचा के देखिए, आप लोग तो खुद देख रहे हैं,
6: आंखों से देख रहे हैं, सब
14: आंखों से देख रहे हैं कि हम लोग बचा के किस तरह से रखते
6: हैं। स्कूल में मजा आता है, पढ़ने में अच्छा लगता है सबको? क्या बनोगी बड़ी होके?
15: पुलिस बनना।
6: पुलिस? और तुम?
15: पुलिस।
6: पुलिस? कितने बच्चे पुलिस बनेंगे बड़े होके?
10: बिहार की सरकारी व्यवस्था के अपराध के हाथों ठगे जाते ये बच्चे बड़े होकर पुलिस बनना चाहते हैं। जहां पहले सरकारें बदलती रहीं, बाद में मुख्यमंत्री बदलते रहे, बस नहीं बदला बच्चों का भविष्य।
6: बिहार में मेधावी छात्रों की कमी नहीं होती है, ज्ञान की कमी नहीं होती है, पर इस सुविधा के बारे में तो हर एक पार्टी, 62 से अगर बात हो रही है, हर एक पार्टी की जिम्मेदारी है इन बच्चों के भविष्य की।
10: मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री पश्चिमी चंपारण का हाल देखें। बगहा के तरवनवा पंचायत का कुनई लक्ष्मीपुर सरकारी प्राथमिक विद्यालय 14 साल से अपनी बिल्डिंग का इंतजार कर रहा है। लाल रंग की पुरानी बिल्डिंग, ये पुराना स्कूल है, खंडहर हो चुका है, कभी इसे सरकार ने बनवाया नहीं। गांव के एक शख्स ने बाद में जमीन दी, गाँव वालों ने चंदा दिया तो 4 कमरा 3 शेड वाला बन गया। वहाँ 2 से 5 क्लास चलती है, 1 क्लास बाहर जमीन पर खुले में बच्चे पढ़ते हैं, 106 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन पार्टी दफ्तरों को बनाने की चिंता करने वाले लोग बच्चों के स्कूल नहीं बनवा पाते हैं।
16: गर्मी में परेशानी होती, गर्मी गर्म हो जाता है कटरेन, तो बगल में है पेड़ पौधा, उसी के नीचे बैठकर हम लोग पढ़ाई करते हैं।
17: यह जो है भवन गांव के ग्रामीणों द्वारा सहयोग के से बनाया गया है, जिससे हम लोग अपनी बच्चों को यहाँ एडजस्ट कर पढ़ा पा रहे हैं। और हमारी जो है कटरेना में बहुत सारी समस्या होता है गर्मी के मौसम में, हम लोग बच्चे के साथ हम लोग भी झुलस जाते हैं।
10: मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री बिहार के बेगूसराय का हाल देखें। मटिहानी प्रखंड का प्राथमिक विद्यालय एक सामुदायिक भवन के एक कमरे और एक बरामदे में चलता है, 112 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। और जुगाड़ देखिए, एक ब्लैक बोर्ड को आधा आधा बांट कर 2 टीचर पढ़ाती है, एक तरफ क्लास 1 दूसरी तरफ क्लास 2 की पढ़ाई हो रही है। एक मैडम जब पढ़ाने लगती है बच्चों को बुलवाती है, दूसरी तब तक किनारे खड़ी रहती है। ये सब 21वीं सदी में चल रहा है। जहां जेन जी जेन अल्फा की बात हो रही है, बच्चों को मिलेनियल से भी पुराने दौर वाली शिक्षा व्यवस्था में फंसा कर रखा गया है, जहां न बेंच, न कुर्सी, न टॉयलेट, न साफ पानी की व्यवस्था। महिला टीचर तक टॉयलेट के लिए आसपास के घरों में जाती है।
17: तो यहां जो है ये एक कम्युनिटी हॉल है, सामुदायिक भवन है जो जीर्ण अवस्था में था, फिर इसे हम जो है क्या कहते हैं कंपोजिट ग्रांट के फंड से इसको रेनोवेट करा के जो है यहाँ पे दो क्लासरूम चला रहे हैं। एक अंदर में है जिसमें कि 3, 4 और 5 के बच्चे पढ़ते हैं, और बाहर जो है बरामदा में 1 और 2 के बच्चे पढ़ते हैं।
15: वर्ग एक कमरा में 3 क्लास 3, 4, 5 की पढ़ाई चलती है, जिसमें पढ़ाई के दौरान भी बहुत कठिनाई सामने आती है। ना तो चापाकल की व्यवस्था है, पानी पीने के लिए भी समस्या होती है, और बाथरूम की भी व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे दूसरे के घर जाना पड़ता है।
10: मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मुजफ्फरपुर का हाल देख रहे, 228 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, 2 कमरे हैं, 1 जर्जर टीन शेड, 1ली से 5वीं तक की क्लास 1 कमरे में चलती है, 6ठी से 8वीं के छात्र टीन शेड के नीचे बाहर पढ़ते हैं, स्कूल में न बेंच न डेस्क, बच्चे दरी पर बैठते हैं, बारिश में टीन शेड से पानी टपकता है, ब्लैक बोर्ड हवा से गिर जाता, कई क्लास एक साथ चलती है, पढ़ाई क्या होती होगी आप समझते हैं।
18: 2 कमरे हैं जिसमें 1 कार्यालय और 1 जो है वो वर्ग कक्ष कह सकते हैं आप, जिसमें हम कई संयुक्त क्लास चलाते हैं, कभी 2, कभी 3, कभी 4-4 क्लास चलाते हैं, और उसके बाद जो है वो शेष सभी कक्षाएं जो है वो बरामदे पर चलाते हैं यहाँ से वहाँ तक। अभी तेज हवा चल रही है, ब्लैक बोर्ड उलट जाता है, कभी कभी बारिश का मौसम है, अभी बारिश में झपास से बच्चे भींग जाते हैं, बेंच डेस्क तो है नहीं, दड़ी पे बिछा बच्चों को बैठाए हुए हैं।
10: मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री कैमूर का हाल देखिए, अखलासपुर के प्राथमिक विद्यालय में 99 बच्चों के लिए 3 टीचर, स्कूल के 3 कमरों में 2 खंड है। शिक्षक कहते हैं कुछ समय पहले छत से प्लास्टर गिरा, 1 टीचर और छात्र घायल हो गए। ऐसा नहीं कि सरकार जानती नहीं, वो सब जानती है, क्योंकि बिहार के स्कूलों की इस हालत पर सवाल विधानसभा में सरकार के साथ ही उठाते हैं।
19: राज्य के कुल 35 जिलों में कुल 2276 माध्यमिक एवं प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के पास अपना भवन नहीं है। 75 माध्यमिक प्लस 2 विद्यालयों की संख्या 9,297 है, जिसमें से 34 जिलों के 720 विद्यालयों के पास अपना भवन नहीं है।
20: शिक्षकों की संख्या बढ़ रही है, छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ रही है, अध्यक्ष महोदय उसके अनुपात में माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि प्रारंभिक हो, उच्चतर मध्य विद्यालय हो, 10+2 है, उसमें भवनों का निर्माण नहीं है, तो बच्चे हमारे पढ़ेंगे कैसे।
10: बिहार के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि 600 से ज्यादा स्कूलों को बनाने का फैसला लिया जा चुका है, बाकी सब जल्द बनेंगे। क्या आपको लगता है कि ये काम बिहार में होगा? यकीन मानिए आज तक संवाददाता एक बार फिर जल्द इन्हीं स्कूलों में रिपोर्ट करेंगे, ताकि सरकार के दावों का सच हम आप तक फिर ला सके।
1: आशा है बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस स्थिति को बच्चों की बदलेंगे। आगे बढ़ते हैं। लोग ये कहते हैं कि प्रेम जताने के लिए भाषा की जरूरत नहीं होती, प्रेम बिना बोले बताया और जताया जा सकता है, बात भाषा की आती है, बोली की आती है तो लोग जंतर मंतर पर चले आंदोलन में चंद लोगों की भाषा को लेकर पूरे आंदोलन पर सवाल उठाने का प्रयास करते हैं। उन्हें एक जवाब आज राजस्थान के एक प्रदर्शन से मिलेगा, वो प्रदर्शन जहां छात्रों ने इशारों से इनकलाब ले आने की बात कही, जहां दिव्यांग छात्रों ने मौन क्रांति करके स्कूल में टूटे क्लासरूम, गंदे टॉयलेट्स की शिकायत सरकार के सामने ऐसी रखी कि सरकार के कान तक वो आवाज बहुत तेज पहुंची।
10: सबसे तेज नारे, सबसे तेज आवाज, ऐसा प्रदर्शन जहां अपना अधिकार पाने को आवाज उठाने के लिए ये नहीं देखा गया कि आवाज है या नहीं, ये देखा गया आवाज उठाने की ताकत है या नहीं। राजस्थान में ऐसा आंदोलन देखने को मिला जिसने ये साबित कर दिया कि आवाज सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि हौसलों से आती है। राजस्थान ने पहली बार मौन दिव्यांग छात्रों की ताकत देखी है, जहां मूक बधिर विद्यार्थियों ने बिना एक शब्द बोले ऐसा संदेश दिया, सरकार को भी झुकना पड़ा।
3: अब इस तीसरे वीडियो को देखिए। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सरकारी सेठ आनंदीलाल पोद्दार मूक बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के ये वो बच्चे हैं जो थक गए थे चुप रहकर। चुप्पी उस कुव्यवस्था के खिलाफ जो रोज इन्हें चीख कर अपनी आवाज उठाने को कहती थी, वही आवाज जब फूटती है तो प्रदर्शन को देख सब अचरज में रह जाते हैं। लेकिन ये नौबत आई क्यों, जहां जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, उन्होंने आवाज उठाकर अब तक आंख कान बंद करके रखने वाले सरकारी प्रशासन को जगाया। इसीलिए आज तक संवाददाता शरद कुमार जयपुर की इस मौन क्रांति की वजह आप तक पहुंचाने के लिए जयपुर के इस सरकारी स्कूल पहुंचते हैं, जहां पहुंचते ही पता चल गया कि क्यों छात्रों की पीर पर्वत सी पिघलकर इस स्कूल से निकली, जहां छत से बारिश का पानी टपकता है।
0: दिव्यांग बच्चे जो पढ़ने आते हैं क्लास में वो डरते हैं, इस तरह से देख सकते हैं पानी टपक रहा है, किस तरह से छतों से यहाँ पर पानी टपकता है। बाहर भी देख सकते हैं आप किस तरह की स्थिति, अभी भी आपको पानी टपकता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। और इस तरह से कभी भी इन्हें डर सताते रहता है कि ये छत नीचे आ सकती है, जिसकी वजह से ये हमेशा डरे रहते हैं।

0: जहां क्लासरूम में जंग लगी कुर्सी और मेज है,
1: ये क्लासरूम है दिव्यांग बच्चों का, जहां पर देख सकते हैं किस तरह से ये टेबल और कुर्सियां हैं जिस पर ये बैठते हैं जंग लगे हुए। इस तरह से दीवारें झड़ रही है, छतों से पपड़िया नीचे गिरते रहती हैं, सिर पर जो पढ़ने बैठते हैं और ये सारे परेशान रहते हैं।
0: और बात सिर्फ इतनी ही नहीं, तस्वीर बदलने को ये दिव्यांग केवल क्लासरूम की हालत भर से सड़क तक नहीं आए, साफ पानी तक जयपुर में स्कूल में बच्चे नहीं पा रहे थे।
1: यहाँ पर बच्चों को पानी पीने के लिए वाटर कूलर लगाया गया है जो खराब पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से, किस स्थिति में यहाँ पर पड़ा हुआ है, और इन सब कहना है कि यहाँ पर पानी पीने के लिए आता नहीं है। पानी का कहना है कि पानी आता नहीं, जो पानी पहले आता भी था वो खराब आता था, और इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नल की व्यवस्था की गई है मगर नलों में पानी आता नहीं है, किसी भी नल में पानी आता नहीं है। इस अव्यवस्था को लेकर ये सड़क पर उतरे हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं।
0: हालत ये कि टॉयलेट के भीतर तक स्कूल का बच्चा नहीं जा सकता, इतनी दुर्दशा है। दिव्यांग बच्चों के स्कूल बस की हालत देख लीजिए, लोहे का टुकड़ा भर बची। और समस्या केवल इतनी नहीं, गबन का भ्रष्टाचारी टीचर तक स्कूल में काम करता मिल गया।
1: निलंबित हैं आप?
2: जी निलंबित हैं।
1: जहाँ यहाँ क्या करते हैं
2: अभी? जो भी प्रधानाचार्य जी या मैनेजमेंट जो मेरे को काम देते हैं, जैसे बच्चों की देखभाल है, मॉनिटरिंग है, या कोई क्लास में अगर खाली है तो मैं उसमें चला जाता हूँ।
0: जिस स्कूल में बच्चों को पानी, टॉयलेट, सुरक्षित क्लासरूम नहीं मिल पाया, वहाँ एक सच ऐसा है जो सुनेंगे तो आपको लगेगा मजाक है, लेकिन ये आपको अब तक किसी ने नहीं बताया कि राजधानी जयपुर के सरकारी स्कूल में जहाँ 17 क्लासरूम है और 592 दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ इन्हें पढ़ाने वाले टीचर की संख्या है 76। ऐसा दिव्य स्कूल तो कभी देखा सुना नहीं गया, जहाँ प्रति 7 से 8 बच्चे पर एक टीचर रख दिया गया। मतलब ये आप कहेंगे कि राम राज्य हो गया, लेकिन हकीकत ये है कि ये वो टीचर हैं जो वीआईपी होने की वजह से यहाँ तबादला कराकर आराम करते हैं। आज तक के सवाल पर कि आखिर इतने टीचर यहाँ करते क्या हैं, सब भागने लगे।
1: 76 लोग आप लोग हो तो 76 लोग क्या करते हो?
2: सर से बात करो, बड़े सर से।
1: नहीं, 76 टीचर हो, क्या करते हो आप?
3: मैं क्यों बात करनी है
1: सर? 76 टीचर हो, आप लोग क्या करते हो यहाँ?
3: यस, आप हमारे किसी को पढ़ने?
1: अरे मैं तो सबसे पूछ रहा हूँ।
0: एक एक करके जब इतनी समस्या इकट्ठा हो गई, तो जयपुर के सरकारी कॉलेज के दिव्यांग बच्चे सड़क पर उतर गए, किसी नारे, भाषण या शोर शराबे से नहीं, इशारों की भाषा में हुए मौन धरने से प्रशासन को जगाया।
4: मैंने मेरा नंबर दे दिया है, मोबाइल नंबर, इनको सुनो, साइन से काम नहीं हो और बताओ, कोई परेशान करे, कोई परेशान करे सीधा मेरे को फोन करना।
0: अब यहाँ प्रिंसिपल भरत जोशी को हटा दिया गया है और दूसरी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया गया। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ये मूक बधिर बच्चे बोल भी नहीं सकते थे, तब उनकी सुनने वाला कोई क्यों नहीं था? शायद इसी दर्द ने इनके मौन को आंदोलन बना दिया। ये सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं, बल्कि उन हजारों दिव्यांग बच्चों की आवाज है जिन्हें अक्सर व्यवस्था के शोर में अनदेखा कर दिया जाता है। जयपुर के इस मौन आंदोलन ने साबित कर दिया कि जब अधिकारों की लड़ाई इशारों में लड़ी जाती है, तब खामोशी भी सत्ता के दरवाजे खटखटाकर अपना अधिकार ले लेती है। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
5: राजस्थान के जनरल फा यानी स्कूलों के छात्रों के लगातार अलग अलग प्रदर्शन के कारण सरकार ने आज एक बड़ा निर्णय लिया है। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने फौरन आदेश जारी किए हैं, सभी स्कूलों में टीचर्स की व्यवस्था हो, सरप्लस टीचर शहरों से गांव में भेजे जाएं। अगर किसी स्कूल में बच्चे टीचर के लिए और सुविधाओं के लिए प्रदर्शन करते नजर आए तो अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। ये होती है जेन जी जेन अल्फा की शक्ति ताकत। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी सबकी नजरें जेन जी पर हैं, जहां 3 करोड़ से अधिक जेन जी वोटर्स हैं। देखिए,
6: दिल्ली के जंतर मंतर से निकली जेन जी आंदोलन की इस चिंगारी ने सत्ता की रणनीति को नए सिरे से गढ़ने पर मजबूर कर दिया है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नई युवा नीति को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें 2027 से पहले जेन जी पर सरकार का फोकस है।
7: युवाओं को लेकर एक आयोग गठित होने वाला है, जिसमें 18 से 35 वर्ष के युवा, यानी कि आसान भाषा में कहें तो कुछ हद तक जेन जी से सलाह मशवरा लिया जाएगा युवाओं को लेकर बनाई जाने वाली नीतियों को लेकर। यानी कि योगी सरकार को ये मालूम पड़ गया है कि जेन जी एक बहुत बड़ा वोटर है और ऐसे में उन्हें साथ लेकर ही चलना होगा।
6: जेन जी वोट बैंक पर योगी सरकार के मिशन पर सियासत तेज हो गई है।
8: पर अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार एक युवा नीति लेकर के आ रही है। यह युवा नीति युवाओं के सपनों को साकार करने वाली होगी।
9: तो उत्तर प्रदेश का जो जेन जी है, जो जेन अल्फा है, जो मिलेनियम है, वो समझ रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ भी किसी चीज के अगर शिकार हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो आत्ममुग्धता के शिकार हैं। अगर आत्ममुग्धता के शिकार न होते तो अपने चेहरे चमकाने पर 3 करोड़ रुपए न खर्च करते, बल्कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को आप पेपर लीक की जगह अच्छी व्यवस्था, पारदर्शी और निष्पक्ष आपने कोई व्यवस्था दी होती।
6: उधर राहुल गांधी भी कल पेपर लीक के मुद्दे पर गूंज कार्यक्रम के तहत प्रयागराज में जेन जी छात्रों के साथ संवाद करने जा रहे हैं। प्रयागराज आ रहा हूँ, देश के उस शहर में जहाँ सबसे ज्यादा नौजवान तैयारी करते हैं। एक बात साफ है, यहाँ का हर छात्र जानता है कि सिस्टम बेईमान हो चुका है। आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं, कमी उस सिस्टम की नीयत में है जो आपकी मेहनत का दाम नहीं देती। ये सरकार झुकती है, बस आवाज एक साथ उठनी चाहिए। अखिलेश यादव की नजर भी जेन जी से लेकर जेन अल्फा तक है, जिनके मुद्दों पर वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया, 7,000 करोड़ का कॉस्मेटिक फेशियल करवाया। हम इतनी ही राशि में केजी से पीजी और रिसर्च तक की वर्ल्ड क्लास 2-3 यूनिवर्सिटी बनाकर बच्चों युवाओं का भविष्य सुधार कर दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर ले जाएंगे। वही योगी आदित्यनाथ लगातार रैलियों में समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की याद दिला रहे हैं।
10: कुछ लोग जीवन भर बच्चे ही बने रहते हैं और बबुआ भी यही करते थे, 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और 7 बजे के बाद तो महफिल जम जाती थी, तब तो फिर देश और दुनिया से उनका संबंध ही समाप्त हो जाता था। तो प्रदेश के बारे में कहां से सोच उनके पास थे। इसी कारण दंगे होते थे, महीनों कर्फ्यू रहता था।
6: बहरहाल यूपी में भी सियासी रणनीति बदलती जा रही है, जहां सबकी नजरें जेन जी वोट बैंक पर है। आज तक ब्यूरो।
5: और आइए अब आपको पंजाब की खबर से खबरदार किए देते हैं, जहां डीए यानी कि महंगाई भत्ता और पुरानी पेंशन स्कीम की मांग को लेकर पंजाब सरकार के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी विधानसभा घेरने के लिए आगे बढ़े तो पुलिस ने बैरिकेडिंग करके इलाका सील कर दिया। वहीं बैरिकेडिंग से कर्मचारी आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछार उन पर कर दी।
11: एम्प्लॉयज अब रोष प्रदर्शन में बैठे हैं। क्यों बैठे हैं, क्या इनकी मांगे हैं, इन सब पे बात करते हैं। पहली बात है कि 18% डीए की मांग कर रहे हैं, कई जगह कॉन्ट्रैक्चुअल है वहां पे परमानेंट बदलने की बात कर रहे हैं। जहां तक नजर जा रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, कितने एम्प्लॉयज आप एक साथ जुटा पाए हैं और किन मांगों को लेकर ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है।
12: देखिए, 4.5 साल हो गए हैं इस सरकार को आए हुए, पूरे 4 साल और 4-5 महीने होने के बावजूद इस सरकार ने हमें इग्नोर किया है। जो हमारे सेंटीमेंट है, हमारे हाव भावों को इन्होंने कुचल के रखा हुआ है। सब लोगों में एक गुस्सा था कि जो उनके हक है, जो उनकी मांगे हैं, डिमांड है, उनकी तो बात छोड़ दो, जो हक है वो भी छीने जा रहे हैं।
13: मैम इसका मकसद यही है कि जो पंजाब सरकार की जो गलत जो राजनीति ये कर रहे हैं मुलाजिमों के साथ, उसके विरोध में हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं।
5: और अब आपको दिल्ली एनसीआर में जारी बारिश से खबरदार हम कर दें। दिल्ली एनसीआर में आज हुई तेज बारिश ने एक बार फिर से शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। भारी बारिश के कारण राजधानी और आसपास के कई इलाकों में पानी भर गया, स्थिति गंभीर हो गई, लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देर शाम ऑफिस से लौट रहे लोगों के लिए सफर काफी मुश्किल हो गया। कई प्रमुख सड़कों पर लंबा लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है, गाड़ियां घंटों से रेंगती नजर आ रही हैं। उधर मौसम विभाग ने बारिश को लेकर दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया है और आने वाले कुछ घंटों में कल हल्की से मध्यम बारिश की संभावना भी व्यक्त की है। ऐसे में लोगों को यह सलाह दी जाती है कि बहुत जरूरी होने पर ही आप अपने घर से बाहर निकलें, पानी भरने वाले रास्तों से बचें, ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें और तभी घर से बाहर आप निकलें, अगर बहुत जरूरी हो तभी। खबरदार में यहां पर हम रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आगे आगे
2: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
3: मुल्तानी घू का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घू का कॉफ सिरप।
4: ये मजबूर हैं पर आप नहीं। बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
5: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।
6: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
7: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
6: असली शहद, असली स्वाद।
8: पापा।
9: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
8: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
9: छक्का?
8: सब कैशलेस हो गया है।
9: हाँ
10: तो भरोसा है।
11: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
12: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
13: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
14: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
15: टैंकर ने घुसकर मारी अलमारी को टक्कर।
16: आश्चर्यजनक, एक खरोच भी नहीं आई अलमारी पे। कैसे कदम?
15: क्रॉसबॉन्ड सुपर स्ट्रॉन्ग।
16: सुपर स्ट्रॉन्ग
15: और मॉइस्चर प्रूफ।
16: वारंटी
15: 15 साल की।
16: कदम
15: सर प्लीज
16: ऑर्डर करो और मेरे घर भिजवाओ। वार्डरोब्स क्रॉसबॉन्ड से ही बनेंगे।
17: क्रॉसबॉन्ड HDMR मैक्स, फर्नीचर बने स्ट्रॉन्ग, चले वेरी वेरी लॉन्ग।
2: Where the software engineer meets the cool UI UX designer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
18: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
19: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
7: कुछ तो बात है इस तेल में।
9: आगे आगे।
5: अरे उधर
9: उधर।
5: करेक्ट करेक्ट।
6: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
11: इन एसोसिएशन विद
13: सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा। E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
11: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: आगे आगे,
1: अरे उधर
0: उधर गया।
1: करेक्ट करेक्ट,
2: मिल गया।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
5: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस तेल में।
7: मोहन भागवत जी, अगर आप ये कह रहे हैं तो सबसे पहले अपने सहकार्यवाहक जो मुंबई में बोले जैन जी को संविधान विरोधी और राष्ट्र विरोधी, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं किया? ये दोहरी बातें करना बंद करें मोहन भागवत जी। आपके एक आरएसएस के आइडियोलॉग ने बोला कि अगर मैं वहां होता जंतर मंतर पे तो लाठियों और गोलियां चलवाता। मुंह देखी बात करते हैं मोहन भागवत जी, मुंह में राम दिल में नाथू राम वाले हैं ये लोग। अभी दो दिन पहले ही मुंबई के एक कार्यक्रम में किस प्रकार से इनके से एक सह कार्यवाहक ने जैन जी के खिलाफ आग उगला, उन्हें देश विरोधी संविधान विरोधी बता रहे, तो यहाँ के ज्ञान दे रहे हैं। जनता आपके मुखौटे को पहचान चुका है, देश का नौजवान आरएसएस के मुखौटे को पहचान चुका है।
8: अभी जो हुआ है ग्रीवंस तो जेनाइन है। भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा इसलिए बात होती है, तो डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग के बाद नहीं होता तो क्या करना बात की बात है। अगर जैन जी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला,
9: बिल्कुल
8: उसको ठीक करना चाहिए।
9: तो इसमें आप मानेंगे कि संवाद यदि पहले से शुरू हुआ होता तो ये बाद में विषय ज्यादा ऊपर जाता ही नहीं।
8: जो नहीं होना चाहिए वो जब होता है तो कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जाती, तभी होता है। किसकी है क्या है ये अलग बात है, लेकिन कमी तो रही है, ठीक हो जाएगी। कि जैन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है
9: जी सर।
8: इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला, अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है। वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है, ये होता है, तो होना चाहिए। और जैन जी वगैरह ऐसी है ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता।
9: आपके
8: विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब जब पूछा गया तो मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जैन जी जैन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है।
9: अरे वाह, बढ़िया है।
8: और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है।

0: खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। आज तक बड़ी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ ही क्षणों में ब्लैक एंड व्हाइट लेकर हमारी साथी अंजना होंगी आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको रांची लेकर चलेंगे, जहां प्रदर्शनकारी छात्रों का 10 सदस्य प्रतिनिधि मंडल स्टेट गेस्ट हाउस पहुंच चुका है और सरकार की तरफ से 4 मंत्रियों का पैनल छात्रों से बातचीत कर रहा है। सरकार ने सिर्फ परीक्षा में धांधली से प्रभावित छात्रों को बुलाया है, जबकि 6 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे युवा नेता देवेंद्रनाथ महतो और उनके साथियों को बातचीत से पूरी तरह अलग रखा गया है। आज आपको बताएंगे कि देश का हर छात्र एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर उनकी मेहनत की कीमत कब मिलेगी। हालत यह हो गई है कि इन युवाओं को अपनी बात हुक्मरानों को सुनाने के लिए प्लकार्ड्स पर लिखना पड़ रहा है कि नौकरी नहीं मिली तो शादी नहीं होगी। सोचिए, जो युवा देश की टेक्नोलॉजी और भविष्य बना सकते थे, उन्हें आज सिर्फ इसलिए क्रिएटिव होकर ये प्लकार्ड्स बनाना पड़ रहा है ताकि शहनाई के जरिए ही सही सरकार तक उनकी आवाज तो पहुंच सके। इसके बाद आपको बताएंगे कि एक तरफ संसद में गतिरोध और हंगामे का दौर है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी से मिले विपक्ष के बागी सांसदों ने समीकरण पूरी तरह बदल दिए हैं। टीएमसी से बागी होकर एनडीए खेमे में आए 20 सांसदों, खासकर यूसुफ पठान समेत उन 3 मुस्लिम सांसदों की मौजूदगी ने सारी अटकलों पर फुल स्टॉप लगा दिया है, जिन्हें लेकर विपक्ष सबसे ज्यादा बेचैन था। उधर महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरणों के बीच एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना सांसदों के साथ हुई सीक्रेट मीटिंग और विदेशी फंडिंग से जुड़े बिल पर नंबर गेम की बिछी इस बिसात ने बता दिया है कि संसद के इस सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मुकाबला बहुत दिलचस्प और आर पार का होने वाला है। और आखिर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने मक्का जॉइंट डिफेंस अग्रीमेंट साइन किया है, जिसे इस्लामिक नेटो कहा जा रहा है। इस समझौते के तहत किसी एक देश पर हमला होने पर तीनों मिलकर जवाब देंगे, सऊदी का पैसा, तुर्की के हथियार, पाकिस्तान की परमाणु ताकत। इस गठबंधन को बड़ा रूप दे रही है, लेकिन क्या वाकई ये कागजी समझौता जमीन पर टिक पाएगा? लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यह है कि प्रदर्शनकारी छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल रांची के स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचा है, जहां पिछले 1 घंटे से लगातार उनकी सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक चल रही है। और इस बातचीत के लिए प्रदर्शनकारी छात्रों ने 10 सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल भेजा। सरकार की तरफ से 4 मंत्रियों का पैनल है, जिनमें नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे, श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव और SC/ST कल्याण मंत्री चमरा लंडा शामिल है। अहम बात यह है कि सरकार ने छात्रों को सिर्फ एक ही गुट को, 2 गुट थे हमने आपको पहले बताया था, एक गुट इधर है और दूसरा गुट है जिसमें अनशन भी चल रहा है देवेंद्र महतो का, तो देवेंद्रनाथ महतो का जो गुट है उससे बात नहीं हो रही है, जो ये दूसरा गुट है, सिर्फ एक ही गुट को बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया है। 6 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्रनाथ महतो के प्रतिनिधियों से अब भी सरकार ने कोई संपर्क नहीं किया है और अभी ऐसा लग रहा है कि सरकार की कोशिश यही है कि वो सिर्फ परीक्षा में धांधली से प्रभावित हुए छात्रों से ही बात करना चाहती है। जबकि देवेंद्रनाथ महतो एक सामाजिक कार्यकर्ता और नेता है, 2024 के लोकसभा विधानसभा चुनाव और 19 के विधानसभा चुनाव वो लड़ चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि सरकार अभी उन्हें इस आंदोलन से अलग करके देख रही है, उनके प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया है। अब हम आपको ये बताएंगे कि देश में छात्रों के जो आंदोलन हुए या हो रहे हैं, उन्हें किसी राजनीति, किसी पार्टी, किसी नेता, किसी सरकार या किसी नैरेटिव के छोटे से दायरे में नहीं बांधा जा सकता। यह आंदोलन किसी विचारधारा के नहीं, बल्कि उस पीढ़ी का है जो अपने हिस्से का इंसाफ मांग रहा है। ये तमाम युवा सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमें हमारा हक दे दीजिए, हमें हमारी इस मेहनत की कीमत दे दीजिए, हमारी नौकरियां दे दीजिए, हमारी परीक्षाओं को ईमानदार बना दीजिए और हमारे सपनों को बार बार लीक होने वाले पेपर धांधली और भ्रष्ट व्यवस्था के नीचे मत दबाइए। दिल्ली का जंतर मंतर हो या झारखंड का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, जगह अलग अलग हो सकती है, चेहरे अलग अलग हो सकते हैं, नारे अलग हो सकते हैं, लेकिन इन आंदोलनों की आत्मा एक है, क्योंकि हर शहर में सड़कों पर उतरा ये छात्र एक ही दर्द लेकर आया है। उनका दर्द क्या है, उनकी मेहनत आप सोचिए, मतलब कल्पना कीजिए, जो लोग नौकरी करते हैं या अलग अलग जगहों पर काम करते हैं, मेहनत तो सबको करनी पड़ती है, लेकिन इतनी कम उम्र में छात्रों को सब कुछ भूलकर, खाना पीना, नींद, जागना, सोना सब भूलकर उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी पड़ती है और फिर पता चलता है पेपर लीक हो गया, पता चलता है नौकरी नहीं मिली। ये दर्द जो है ना कि उसने मेहनत की लेकिन व्यवस्था ने इंसाफ नहीं किया, इस दर्द की वजह से ही आए हैं। उसने रातें जागकर किताबें पढ़ी,
उसकी किस्मत का फैसला कभी पेपर लीक ने कर दिया, कभी धांधली ने कर दिया, कभी लापरवाही ने, कभी उस सिस्टम ने जिसने उसकी ईमानदारी की कोई कीमत समझी ही नहीं। आज आप रांची से आई इन तस्वीरों को पहले देखिए, जिनमें प्रदर्शनकारी युवा ऐसे प्लकार्ड्स लेकर आए हैं जिन पर लिखा है कि अगर नौकरी नहीं मिली तो उनकी शादी नहीं होगी। वो पोस्टर्स भी दिखा दीजिए जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन प्लकार्ड्स की आज खूब चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि इन छात्रों का विरोध जताने का तरीका कितना नया है, कितना अलग है और कितना अलग है। मतलब अलग अलग तरह की बातें लिखी हैं। हम भी मानते हैं कि ये क्रिएटिविटी अद्भुत है, लेकिन एक बार ये भी तो सोचिए कि क्या ये क्रिएटिविटी जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, इन बच्चों को तो सारी मेहनत क्रिएटिविटी अपने एग्जाम्स अपनी पढ़ाई पर लगानी थी, नौकरियां हासिल करने में लगानी थी, लेकिन वो हो ही नहीं रहा है। जो युवा इस देश के लिए नई टेक्नोलॉजी बना सकते थे, जो हाथ नए उद्योग खड़े कर सकते थे, जो युवा भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने में अपना योगदान दे सकते थे, आज यहां बारिश, धूप, गर्मी, पसीना, मतलब अपनी पीड़ा समझाने के लिए उनको नारे गढ़ने पड़ रहे हैं। उन्हें अपने सपनों की भाषा छोड़कर विरोध की भाषा सीखनी पड़ रही है, और यह इनकी उपलब्धि नहीं है, ये इनके साथ अन्याय है। दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां छात्र आंदोलनों को सबसे ज्यादा गंभीरता से लिया जाता है, क्योंकि वहां यह समझा जाता है कि अगर पढ़ने लिखने वाले छात्रों पर उत्तर आए हैं तो समस्या छात्रों में नहीं, व्यवस्था में है। लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि इन युवाओं को अब सिर्फ अपने भविष्य की चिंता नहीं है, उन्हें इस बात की भी चिंता है कि कहीं उनकी आवाज अनसुनी ना रह जाए। वो ऐसे प्लाकार्ड्स बनाते हैं, ऐसे नारे

ध्यान अपने मुद्दों पर खींच सके। ये बैनर्स, ये प्लेकार्ड, ये तराजू, ये गीत, ये देखिए। वैकेंसी निकलेगी तभी शहनाई बजेगी, ऐसे प्रकाश लेकर आना पड़ रहा है। और चेहरों की मायूसी देखिए, व्यंग, ये प्रतीक जो है ये सबको, मेरा सीवी तैयार है, सिस्टम कब तैयार होगा। ये उस पीढ़ी की मौन चीख है जो कहना चाहती है कि हमें विरोध करने का शौक नहीं है। नो जॉब नो शादी, हमें तो सिर्फ एक निष्पक्ष परीक्षा चाहिए, एक निष्पक्ष, एक ईमानदार परीक्षा जिसमें पेपर लीक ना हो, नौकरियों में धांधली ना हो। मेरे होने वाले ससुर कहते हैं पहले नौकरी फिर लड़की, नो जॉब। शायद इस पूरे आंदोलन का सबसे दर्दनाक सच यही है। जब आप इस तरह के पोस्टर देखते हैं और पीछे इन मायूस चेहरों को देखते हैं, इन युवाओं ने अपनी क्रिएटिविटी विरोध के लिए नहीं सीखी थी, उन्होंने ये कल्पनाशीलता भारत का भविष्य बनाने के लिए सीखी थी। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। उन्होंने अपने सपनों के पोस्टर बनाने के लिए नहीं बल्कि देश बनाने के लिए संजोया था, लेकिन व्यवस्था ने उन्हें ऐसी जगह खड़ा कर दिया जहां उन्हें अपने भविष्य की लड़ाई लड़ने के लिए अपना दर्द आकर्षक बनाना पड़ रहा है ताकि लोग रुकें, तस्वीरें तो देखें, पोस्ट शेयर करें, उनकी बात तो फैले, बहस करें, और शायद तब जाकर सत्ता तक उनकी आवाज पहुंचेगी। किसी भी देश के लिए इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि उसके सबसे होनहार युवा अपने सपनों का निर्माण करने के बजाय टूटे हुए सपनों का प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो। इसीलिए इन तस्वीरों को सिर्फ एक आंदोलन की तस्वीर मत समझिए, यह भी मत समझिए कि आंदोलन रील बनाने के लिए है। ये छात्र सिर्फ इसलिए अपने आंदोलन को आकर्षक बनाने के लिए मजबूर है क्योंकि वो अपने मुद्दों पर समाज, देश, सरकारों का ध्यान चाहते हैं, और यही इन संघर्ष कर रहे युवाओं की असली पीड़ा है। देखिए,

0: 지금 저기 양성선에서 타이거로 그렇게 타이거로 아니라 이 아미력과 맞춰 어떻게 지키고 맞춰 이 가도록 맞춰
1: हमारा सिर्फ ये कहना है कि ये क्रिएटिविटी जो आज इस आंदोलन में दिख रहा है ये वाकई काबिले तारीफ है और बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं उस क्रिएटिविटी की हर तरफ प्रशंसा हो भी रही है, लेकिन इन बच्चों को ऐसी स्थिति में लाने पर मजबूर किसने किया उसके खिलाफ हमारी आवाज है। ये क्रिएटिविटी आंदोलन तक सीमित नहीं रहनी चाहिए थी, ये क्रिएटिविटी उनकी जिंदगी के सपनों के पूरे करने की यात्रा में शामिल होना चाहिए था कि भाई उनकी नौकरी लगी और नौकरी में उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई, उनके अच्छे जगह दाखिला लगा और उस पढ़ाई में उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकी। लेकिन ताकत कहां झोंकनी पड़ रही है? आंदोलन में। सरकार कहती है उसके दरवाजे हमेशा अपने युवाओं के लिए खुले हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये ऐसे दरवाजे हैं जिन पर भले ताला नहीं है लेकिन इन पर सुनने वाले कान भी नहीं है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके लिए आपको 13 साल के इस बच्चे को सुनना होगा जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और रांची से आने वाले पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी से अपील करता है। और जानते हैं क्या कहता है? ये कहता है कि गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों इंसान है खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं। सुनिए।
2: गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं। मैं तुझे और तू मुझे इल्जाम देते हैं मगर अपने अंदर झांकता तू भी नहीं मैं भी नहीं। माना कि गलत फहमियों ने कर दी दोनों में पैदा दूरियां, वरना बुरा तू भी नहीं मैं भी नहीं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी 2-3 ईयर्स 5 ईयर्स की मेहनत यूं ही रायगढ़

0: चली गई। जब वो आते तो पता चलता कि ये पेपर कैंसिल हो गया, ये पेपर रद्द कर दिया गया, तो पेपर लीक हो गई। तो मैं सोचा नहीं, मुझे भी आवाज उठानी चाहिए फॉर माय फ्यूचर एंड फॉर दीदीज एंड भैयाज फ्यूचर। सो जस्ट वी आर अपीलिंग दैट एवरी एग्जाम शुड बी टेकन विद कंडक्टेड विद द ट्रांसपेरेंसी एंड विद द फेयर ओपिनियन। जनरली सर रांची एक बार पॉपुलर हुआ था एमएस धोनी सर की वजह से, और जंतर मंतर जो कि दिल्ली है और उसमें ज्यादा तादाद में प्रोटेस्ट भी हुई, इसलिए सेलिब्रिटीज और जितने भी इन्फ्लुएंसर थे वो भी इस सड़क पर आए थे इस प्रोटेस्ट को देखने। यहाँ पे जो हमारा प्रोटेस्ट हो रहा है वो पूरे पीसफुली तरीके से हो रहा है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल वे में हो रहा था। मुझे यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे तादाद की डिफरेंस है, वहाँ पे तादाद और क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी और यहाँ पे तादाद और क्वांटिटी कम है। बस हम एक ही मांग कर रहे हैं सरकार से, सिर्फ हम एक ही मांग कर रहे हैं माननीय हेमंत सोरेन सर से, बिकॉज वी वांट आवर राइट्स, आवर अकाउंटेबिलिटी। वी वांट दैट एवरी एग्जाम शुड बी कंडक्टेड नॉट ओनली जेपीएससी, नॉट ओनली जेएसएससी, एवरी एग्जाम शुड बी कंडक्टेड इन द फेयर एंड ट्रांसपेरेंट वे।
1: कई लोग कहते हैं कि उन्हें झारखंड में आंदोलन कर रहे छात्रों का मुद्दा अब तक समझ नहीं आया है, तो ऐसे लोगों को आज हम एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं जिसमें इस आंदोलन की वजह साफ साफ नजर आती है। ये तस्वीर है उस तराजू की जिसमें सरकारी नौकरियों का पूरा रेट चार्ट बनाया गया है। जैसे इसमें लिखा है कि एफआरओ की नौकरी का रेट 50 लाख रुपए, महिला सुपरवाइजर की नौकरी का रेट 20 लाख रुपए, माध्यमिक आचार्य की नौकरी का रेट 35 लाख रुपए, आबकारी पुलिस की नौकरी का रेट 15 लाख रुपए और पंचायत सचिव की नौकरी का रेट भी 15 लाख रुपए। सोचिए अगर किसी व्यवस्था में सचमुच नौकरियों का रेट कार्ड छप जाए तो फिर परीक्षा, मेरिट, मेहनत, ईमानदारी, इसका क्या मतलब रह जाएगा। आज ये तमाम युवा प्रदर्शनकारी इसी रेट कार्ड को लेकर रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे हैं और सरकार के लिए ये गाना गा रहे हैं कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते। देखिए
2: 30 लाख, डीजीटी के लिए 20 लाख, वीडियो सीओ के लिए 1 करोड़ और डीएसपी के लिए जो है सो आपको निर्धारित यहां पर नहीं किए हैं, काहे कि उसमें 1.25 करोड़।
3: इस तराजू के माध्यम से हेमंत सोरेन को बता दे रहे हैं कि देखिए हेमंत सोरेन जी, ये रेट देखिए, रेट आप एफआरओ का 50 लाख, लेडी सुपरवाइजर का 20 लाख, मध्यमिक आचार्य का 35 लाख, उत्पाद सिपाही का 15 लाख, पंचायत सचिव का 15 लाख रुपया। अब यहाँ जिस तरह के आप यहाँ पर एग्जाम लेते हैं, एग्जाम लेने के बाद यहाँ पर नेपाल ले जाते हैं, ये होता है झारखंड में एग्जाम होता है, बाप रे बाप ले जाता है बिहार और उत्तर प्रदेश यहाँ पर रटवाने के लिए कोशिश है, रटवाने के बाद जब रट नहीं पाता है तो फिर अंदर से रंगवा देता है और यही देखिए यही रेट होता है। तो आप एक रेट बता दीजिए, फिक्स रेट बता दीजिए, है मेरा में दम रहेगा तो हम लेंगे नौकरी, नहीं तो नहीं लेंगे।
1: इनकी व्यथा कौन सुनेगा। इस आंदोलन में शहीद आजम भगत सिंह, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लोकनायक बिरसा मुंडा जी और दिवंगत नेता शिबू सोरेन जी की तस्वीर को मंच पर रखा गया है। और सोचिए ये बात कितनी खूबसूरत है, ये बच्चे हेमंत सोरेन की सरकार से इंसाफ मांग रहे हैं, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी विरोध प्रदर्शन में उन्होंने उनके पिता शिबू सोरेन की तस्वीर को प्रेरणा के तौर पर अपने साथ रखा है। इससे पता चलता है कि यह आंदोलन छात्रों के असली मुद्दों का है, उन्हें भी बातों की गंभीरता समझ में आ रही है, वो दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। ये युवा कैसे देशभक्ति के गानों से अपना जोश बढ़ा रहे हैं, जरा वो भी देख लीजिए। आज आमरण अनशन पर बैठे प्रदर्शनकारी छात्र राहुल क्रांति की काफी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें रांची के सदर अस्पताल ले जाया गया है। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि कई बार अनुरोध करने के बाद भी मेडिकल जांच के लिए डॉक्टर्स की टीम को धरनास्थल पर नहीं भेजा गया और सरकार को शायद इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि उसके राज्य के छात्र अपनी मांगों के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं। शुरुआत में केवल देवेंद्र नाथ महतो अनशन पर बैठे थे, लेकिन 4 अगस्त की रात से 4 और छात्र, जिनमें 2 छात्राएं भी शामिल हैं, अनशन में शामिल हो गए। इनमें 40 वर्षीय राहुल क्रांति की कहानी हमारी सरकारों पर कई सवाल उठाती है। राहुल क्रांति पिछले 20 सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और उनका दावा है कि 172 अंक लाकर वो एक बार परीक्षा में पास भी हो गए थे, लेकिन सिस्टम की बेईमानी ने उनसे उनके हक को छीन लिया। दूसरी छात्रा है हबीबा, जो रांची की रहने वाली है और वो भी लंबे समय से झारखंड लोक सेवा आयोग की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है। तीसरे छात्र है रुपेश, जो कई सालों से सरकारी नौकरी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उनका आरोप है कि बार बार पेपर लीक और भर्ती में धांधलियों ने उनके जैसे ही कई युवाओं का भविष्य बर्बाद ही कर दिया है। वो इस आंदोलन में इसलिए शामिल हुए ताकि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बने, निष्पक्ष हो। और चौथी छात्रा है सविता कुमारी, जिनका कहना है कि परीक्षाओं की धांधलियों ने उनके भी कई साल बर्बाद किए और अब तो उनके माता पिता भी कहते हैं कि ये व्यवस्था कभी नहीं बदलेगी। यानी भूख हड़ताल पर बैठे इन छात्रों की कहानी, इनका संघर्ष, इनकी पीड़ा एक जैसी है जिसे अभी तक किसी ने समझा नहीं। सुनिए।
4: अगर सोच लिए ना कि अगर नहीं नौकरी करना है छोड़ देंगे, लेकिन क्या करें, घर से बाहर ना, नौकरी के नाम से ही घर से बाहर निकले हैं। ये तकलीफ ना इसीलिए है, अगर घर से निकलते ना कि पापा जा रहे हैं कुछ करने के लिए, तो शायद इतना तकलीफ ना होता।
5: राहुल, आपने भी प्रतियोगी परीक्षाएं दी थी अपने समय में?
6: जेपीएससी का लगातार परीक्षा लिखते हैं, पहले तो पीटी निकल जाता था, इस बार तो हमारे लीक हो गया तो बिक गया, तो निकलना तो दूर की बात है। सहायक आचार्य का भी परीक्षा क्वालिफाई हूँ, सीट खाली है, फिर भी सरकार नियुक्ति नहीं दे रही है।
7: मैंने पंचायत सचिव का एग्जाम दिया था, 2017 की वैकेंसी थी, तो उसमें मैं पास हो गई थी। फिर उसमें सेकेंड एग्जाम था हिंदी टाइपिंग का, तो उसमें भी क्वालिफाई हुई। फिर डीवी भी हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। वह ऐसे भी तो डिले कर ही रही थी, तुरंत नहीं कर रही थी एग्जाम वगैरह, फिर 1 साल लगे, फिर 2 साल लगे उस एग्जाम को। उसके बाद जब उसका रिजल्ट देना था तो 5 साल तक प्रोटेस्ट करना पड़ा, 5 साल तक।
8: करते करते अब तो मेरा उम्र भी निकलते जा रहा है, 28 साल होने जा रहा है, 28 में पार होने जा रहा है, अब 29 में पहुंच जाएंगे, 1 से 2 साल में मेरा एज भी खत्म होने को रहेगा। फिर हम तो कोई फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं, अरे पढ़ाई के चक्कर में हम आगे कुछ और पढ़ाई नहीं किया। मेरा घर की स्थिति बहुत खराब था सर, इसीलिए हमको यही लगता था कि एगो जॉब ले ले, उसके बाद जो आगे के भविष्य होगा आगे देखा जाएगा।
1: इस बीच आज ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा पर एक व्यक्ति ने स्याही फेंक दी। ये घटना रांची में उस वक्त हुई जब नेहा बोरा उनके छात्र संगठन के कार्यकर्ता और समर्थक विधानसभा की ओर मार्च कर रहे थे। पुलिस ने स्याही फेंकने वाले व्यक्ति को मौके पर ही हिरासत में ले लिया, जिसका कहना यह है कि नेहा बोरा उमर खालिद की समर्थक है और इसीलिए वो उनके आंदोलन में शामिल होने का विरोध कर रहा था। हालांकि नेहा बोरा ने आरोप लगाया कि उन्हें इस आंदोलन में हिस्सा लेने से कुछ राजनीतिक लोग रोकना चाहते हैं। सुनिए।
9: भाई क्या कहोगे, क्यों?
10: वो भाजपा और आरएसएस के गुंडे जो स्टेडियम में बैठ करके बोल रहे हैं कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं, जब जेपीएससी को रद्द करने के लिए, जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने के लिए छात्र विधानसभा तक मार्च निकाल रहे हैं, तो वही गुंडे जो खुद को छात्रों का हितैषी कहते हैं मेरे ऊपर इंक फेंकते हैं, ये कौन सा छात्रों का हितैषी है? खैर आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि कभी चाय पर चर्चा से सियासत की नई परिभाषा तय कर चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नाश्ते पर चर्चा की तो उसके चर्चे संसद के गलियारों तक होने लगे। जब संसद में गतिरोध है, हंगामों की वजह से लगातार कार्यवाही बाधित हो रही है, तब आज एनडीए कुछ तस्वीरों में पहले से ज्यादा मजबूत नजर आने की कोशिश में दिखा। पहले आप इन तस्वीरों का ये एल्बम देखिए, फिर बताते हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात आज 45 सांसदों से हुई। इनमें अधिकतर वो सांसद हैं जो हाल ही में एनडीए का हिस्सा बने हैं। अब पूरी स्ट्रैटेजी समझिए। इनमें 20 सांसद वो हैं जिन्हें आप टीएमसी के बागी कह लीजिए। जी हां, ऐसे बागी जो अब एनसीपीआई यानी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के सांसद बन गए। आज प्रधानमंत्री मोदी से मिलने वाले एनसीपीआई के सांसदों में काकोली घोष दस्तेदार, मतलब एक वक्त पर ममता बनर्जी की सबसे मजबूत सिपहसालार और मोदी के खिलाफ बोलने में सबसे आगे, सुदीप बंदोपाध्याय, ठीक ऐसा ही सायोनी घोष, वो तो बीजेपी के किसी नेता को छोड़ती नहीं थी, शताब्दी रॉय और बापी हल्दर समेत 17 सांसदों के अलावा 3 सांसदों का खास जिक्र हो रहा है। यह बहरामपुर के सांसद यूसुफ पठान, याद होगा आपको बहरामपुर वही सीट है जहां पर एक वक्त पर यूसुफ पठान को जब ममता बनर्जी ने टिकट दिया तो खूब हंगामा हुआ था। जांगीपुर के सांसद खलीलुर रहमान, मुर्शिदाबाद के सांसद अबू ताहिर, इनका जिक्र खास है और वो क्यों है ये समझिए। ये तीनों मुस्लिम सांसद 28 जुलाई और 4 अगस्त को एनडीए की मंगल मिलन बैठकों में शामिल नहीं हुए। फिर चर्चा शुरू हो गई कि भाई मुस्लिम संघ जो सांसद है वो तो मोदी की बैठक में जाने को तैयार नहीं है, बाकी के एनसीपीआई के सांसद उन बैठकों में आए थे, इसीलिए इन तीनों सांसदों को लेकर अटकलें लगनी शुरू हो गई थी। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री मोदी के साथ नाश्ते पर चर्चा के बाद तस्वीरें आई तो अटकलों पर फुल स्टॉप लगा। यहां मैं बता दूं कि एनसीपीआई में टीएमसी के बागी सांसदों के विलय को लोकसभा स्पीकर ने भी मान्यता नहीं दी है और टीएमसी के चुने हुए 27 लोकसभा सांसदों में से अलग गुट बनाने के लिए 2/3 नंबर 18 है, यानी ये 3 सांसद बहुत अहम है। एनसीपीआई के 20 सांसदों की प्रधानमंत्री के साथ बैठक का आधिकारिक ब्यौरा तो सामने नहीं आया है, लेकिन कुछ सांसदों ने आज तक से बातचीत की है। वो इस बैठक को लेकर क्या कह रहे हैं, पहले वो सुनिए।
1: Few moments what we spent together that will be ever memorable for me. जिंदगी में बहुत कुछ आते हैं जाते हैं, सब कुछ होता रहता है, पर आज का सुबह का जो ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग को इनवाइट मिला था हमारे ऑनरेबल पीएम से और उनसे बात किए और उनका जो राय है, उनका जो देखने का अंदाज है देश के ऊपर और जैसे वो काम कर रहे हैं सबके लिए, सभी लोगों के लिए, बच्चों से बुजुर्ग तक सबके लिए सोच के जैसे हमारे पीएम काम कर रहे हैं, उनके साथ 2 मिनट वक्त गुजारना हमारे लिए बहुत बहुत भाग्यशाली।
2: क्या खास मैसेज दिया है कुछ उन्होंने सांसदों को आज जो मुलाकात हुई?
1: नहीं, उन्होंने ऐसे ही कहा कि देखिए हम तो देश के लिए काम करते हैं और हमारे साथ जो है हमारे ग्रुप के जो है हम आपके साथ है, यही सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ये कहा है कि जैसे हम सोचते हैं आप उसी सोच पे विश्वास रखिए और उस हिसाब से आगे बढ़ते चलिए।
3: बहुत अच्छा चर्चा हुआ है
4: जी,
3: वेरी गुड।
4: किन मुद्दों पे चर्चा हुई सर?
3: हर ये डेवलपमेंट के बारे में।
4: कई सारे आपके साथी हैं जो मुस्लिम समुदाय से हैं, खासतौर पे मुर्शिदाबाद के जो सांसद हैं तीनों,
3: सब ठीक है? सब ठीक है,
4: पीएम वो भी मौजूद थे मीटिंग में?
3: सर मीटिंग में मौजूद थे, वो लोग भी सपोर्ट किया।
4: क्या स्पीकर का इशू भी चला इस पे मस्जिदों को लेके जो इशू?
3: नो।
4: ओके सर, आखिरी सवाल सर, एफसीआरए पे क्या रुख रहेगा आप लोगों का? सर
3: हम लोग मदद करेंगे।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन सांसदों से मुलाकात की है उनमें शिवसेना उद्धव गुट के शिंदे गुट में शामिल हुए सांसद भी शामिल है। महाराष्ट्र के इन सांसदों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की अलग से भी मुलाकात हुई है। एकनाथ शिंदे के साथ ये तस्वीर देखिए। खास बात यह है कि उस दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात में एकनाथ शिंदे ने उन्हें भगवान विट्ठल और देवी रुक्मिणी की मूर्ति भेंट की। सोलापुर से आने वाली शिवसेना की राज्यसभा सांसद ज्योति वाघमारे ने उन्हें सोलापुर हैंडलूम धवल उपहार में दिया। धवल सोलापुर का पारंपरिक और एक विशिष्ट हस्तकरघा वस्त्र है। आज नेशनल हैंडलूम डे भी है। अब देखिए, एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री के साथ अपनी मुलाकात की तस्वीरों को एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि इस बैठक के दौरान लोकसभा के वर्तमान संसदीय सत्र, उसकी कार्यवाही, शिवसेना के सांसदों की भूमिका, राज्य में चल रहे विकास कार्यों, केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय तथा राज्य में बारिश और बाढ़ की मौजूदा स्थिति जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से पीएम से चर्चा हुई। एकनाथ शिंदे के इस बयान से आपको अंदाजा लग गया होगा कि संसद में चल रहे गतिरोध को लेकर प्रधानमंत्री के साथ शिवसेना सांसदों की चर्चा हुई है। ये बात अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि विदेशी फंडिंग पर सोमवार को सरकार संसद में नया एफसीआरए बिल पेश कर सकती है। एफसीआरए बिल को पास कराने के लिए साधारण बहुमत चाहिए, लेकिन इस बिल के खिलाफ जिस तरह आशंकाओं को खड़ा करने की कोशिश हुई है, उसके बाद सरकार संसद में एकजुट शक्ति के साथ दिखने की कोशिश कर रही है। यहां यह भी बता दें कि कांग्रेस ने भी 10, 11, 12 अगस्त यानी सोमवार से लेकर बुधवार तक अपने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। व्हिप में कहा गया है कि संसद में महत्वपूर्ण चर्चा होनी है, इसलिए आपका संसद में रहना जरूरी है। चलिए, संसद तो सब आएंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि संसद में गतिरोध है, संसद में जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर दिल्ली पुलिस के एक्शन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की विपक्ष में मांग कर रहा है, हंगामा कर रहा है। इन्हीं परिस्थितियों में न्यू एनडीए की शक्ति से सरकार विपक्ष का मुकाबला करने की कोशिश में तैयार होती दिख रही है, यानी शक्ति प्रदर्शन का ये पूरा एक जो है डिस्प्ले है। आपको एनडीए का नंबर गेम भी बता देती हूँ। लोकसभा में एनडीए के 318 सांसद हैं, जिनमें बीजेपी के 240, एनसीपीआई के 20 जोड़ लीजिए, शिवसेना 12, एनसीपी अजित पवार गुट 1, टीडीपी 16, जेडीयू 12, अन्य दलों के 16 सांसद हैं। जबकि राज्यसभा में एनडीए के 142 सांसद हैं, जिनमें बीजेपी के 117, टीडीपी के 4, जेडीयू के 4, एनसीपी अजित पवार गुट 4, शिवसेना के 2 और अन्य दलों के 11 सांसद मौजूद हैं। खैर, इन मुलाकातों के बीच चर्चा यही है कि सरकार परिसीमन और विदेशों से मिलने वाली फंडिंग को लेकर जो नए बिल लाना चाहती है, उनके लिए सांसदों को एकजुट किया जा रहा है। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि एक दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने जॉइंट एक्शन फोरम ऑन माइनॉरिटीज के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, जिसमें चर्चेस से जुड़े पादरी और कुछ प्रतिनिधि शामिल थे। ये बैठक एक घंटे तक चली थी, जिसमें विदेशी फंडिंग से जुड़े बिल को लेकर इनकी आपत्तियां रखी गई थी। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सांसद रैली मूर ने यह कहा था कि अगर भारत सरकार इस कानून को लेकर आई तो यह कानून भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय रिश्तों में बड़ा मुद्दा बन जाएगा। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि भारत सरकार का यह नया कानून ईसाई धर्म से जुड़ी संस्थाओं और चर्चों पर कब्जा करने के लिए लाया गया है। इसे ईसाई पर सीधा, क्रिश्चियनिटी पर सीधा हमला माना जाएगा। बड़ी बात यह है, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है और हम आपको बता दें कि फिलहाल रांची में छात्रों के साथ जो बैठक चल रही थी सरकार के प्रतिनिधियों की, वो बैठक खत्म हो गई है। सरकार और छात्रों में आज की वार्ता खत्म हो गई है। अब इस वार्ता में क्या निकला है, क्या छात्र वहां पर आंदोलन वापस लेने को तैयार हो रहे हैं, क्या सरकार उनकी बात मान पाई है, इन सब पर आइए आपको सुना देते हैं क्या जानकारी है।
5: हल्ला मत कीजिएगा ना, इधर की बात सुन पाइएगा ना उधर की बात सुन पाइए।
6: छात्रों के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल में हम लोगों ने तमाम वार्ता को किया। छात्रों की मांग
0: तो ऐसा प्रतीत होता है कि फिलहाल जानकारी दी जा रही है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है। बातचीत से क्या निष्कर्ष अभी निकला है, दूसरे दौर की बातचीत क्या होगी, वो सब हम आपको लगातार नीचे ब्रेकिंग न्यूज में बताते रहेंगे। लेकिन बात हो रही थी अमेरिका की, अब बड़ी बात यह है कि हमारे देश में मूर के इस बयान पर कई नेताओं और लोगों ने चिंता जताई है, क्योंकि वो उसको सीधा सीधा इस बिल को कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते खराब होंगे, अगर ये बिल आया तो ये क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है। इस बिल पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। आज समझना बहुत जरूरी हो गया है कि आखिर इस बिल में ऐसा क्या है और इस सवाल इतने सारे इस एफसीआरए बिल को लेकर क्यों उठ रहे हैं। तो हमने सोचा सरल भाषा में आपको बता दें कि ये बिल है क्या। इस नए बिल का नाम है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026, और ये पुराने एफसीआरए जो एफसीआरए कानून है उसका एक बदला हुआ रूप है। सरल शब्दों में समझे तो एफसीआरए विदेशी फंडिंग की निगरानी के लिए बनाया गया एक कानून है, जिसमें सरकार ये कहती है कि एनजीओ, ट्रस्ट, चर्च, मंदिर, मस्जिद, स्कूल अस्पताल या सामाजिक संस्थाओं के विदेशी फंडिंग लेने पर रोक नहीं है, लेकिन इसके लिए इन संस्थाओं को कुछ नियमों का पालन करना होगा। क्या नियम होंगे? जैसे ये बताना होगा कि पैसा किसने भेजा, कितना भेजा, क्यों भेजा और इसका इस्तेमाल कहां हुआ है, यानी लेखा जोखा देना होगा। ऐसा भी नहीं कि ये कानून मौजूदा सरकार में पहली बार आया। आज से 50 साल पहले साल 1976 में तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार ने विदेशी फंडिंग के लिए पहली बार इस कानून को लागू किया था। उस वक्त कांग्रेस सरकार का ऐसा मानना था कि अगर विदेशी फंडिंग की निगरानी नहीं हुई तो इससे चुनाव प्रभावित होंगे, सरकार पर दूसरे देशों का प्रभाव पड़ेगा, आतंकवाद अलगाववाद को फंडिंग हो सकती है। यानी सरकार को जब ऐसा लगा कि विदेशी फंडिंग से सरकारें गिराई जा सकती हैं, कहीं कोई विरोध प्रदर्शन आंदोलन कराया जा सकता है, कहीं किसी प्रोजेक्ट फैक्ट्री या प्लांट को बंद कराया जा सकता है, तब ये कानून बना। ये दावा भी गलत है कि मौजूदा सरकार इस कानून में पहली बार बदलाव कर रही है। इस कानून में पहला संशोधन 1984 में हुआ जब विदेशी फंडिंग लेने वाले संगठनों और धार्मिक संस्थाओं के लिए रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया गया। इसके बाद 2010 में यूपीए की सरकार ने इस कानून को और सख्त बनाया। ये तय हुआ कि अब किसी भी एनजीओ का रजिस्ट्रेशन केवल 5 सालों के लिए होगा। नियमों का पालन नहीं करने पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा और निगरानी को लेकर ज्यादा सख्ती की जाएगी। इसके बाद साल 2020 में मौजूदा सरकार ने पहला संशोधन किया, दूसरा संशोधन साल 2022 में किया गया। यानी समय के साथ इस कानून में बदलाव होते रहे और सरकार अभी ऐसा कह रही है कि वो पहली बार ऐसे संशोधन इस कानून में नहीं कर रही है। अब ये समझिए कि मौजूदा कानून में सरकार ऐसे कौन से बदलाव करना चाहती है जिन पर विवाद है, जिसको लेकर लोग विरोध कर रहे हैं। इसमें पहला प्रावधान है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का। इसके तहत अगर विदेशों से फंडिंग लेने वाली कोई संस्था बंद हो जाती है या उसका लाइसेंस रद्द हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उस संस्था की सारी संपत्ति इस अथॉरिटी के अधिकार में चली जाएगी। यानी मान लीजिए अगर किसी संस्था ने विदेशों से फंडिंग लेकर अस्पताल बनाया, स्कूल बनाया या कोई धार्मिक स्थल बनाया, बाद में वो संस्था बंद हो गई तो उसकी संपत्ति इस अथॉरिटी के पास चली जाएगी। अब इस पर विरोध करने वाले लोगों और संस्थाओं का ये कहना है कि सरकार इस कानून का दुरुपयोग कर सकती है, यानी उन्हें डर है कि सरकार अगर जानबूझकर किसी संस्था का लाइसेंस ही कैंसिल कर दे तो उसकी संपत्तियां इस अथॉरिटी के पास चली जाएंगी। जबकि सरकार ये कह रही है कि ये डर या ऐसी कोई भी आशंका सही नहीं है। सरकार का कहना है कि अगर किसी संस्था का लाइसेंस दोबारा बहाल होता है तो उसे उसकी संपत्तियां वापस लौटा दी जाएंगी। अगर हमेशा के लिए लाइसेंस रद्द हो जाता है तब ऐसी स्थिति में इन संपत्तियों को पब्लिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसी बात को लेकर बहुत सारे लोग अभी ये कह रहे हैं कि ऐसा होने से कई चर्च सरकार के कब्जे में चले जाएंगे, जबकि सरकार कहती है कि ये सब झूठ है। सरकार का कहना है कि जो चर्च, मस्जिद, मंदिर विदेशी फंडिंग से बनाए गए हैं उनका कभी भी धार्मिक स्वरूप नहीं बदला जाएगा। यहां यह समझना भी जरूरी है कि इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी। सरकार कहती है कि इसके पीछे ऐसे कई मामले हैं जिनमें कुछ लोग एनजीओ बनाकर पहले विदेशी फंडिंग लेते थे, फिर उस एनजीओ को बंद कर देते थे और बाद में संपत्तियों की ट्रैकिंग मुश्किल हो जाती थी। ऐसा ना हो और इन संपत्तियों की ट्रैकिंग की जा सके, यही सोचकर सरकार ने इस बिल में यह प्रावधान जोड़ा है। दूसरा प्रावधान इसमें यह है कि अगर किसी एनजीओ ने अपना रजिस्ट्रेशन 5 साल में फिर से रिन्यू नहीं कराया तो उसका रजिस्ट्रेशन अपने आप रद्द हो जाएगा। इसी में यह नियम भी जोड़ा गया है कि अगर किसी एनजीओ ने 2 साल में कम से कम 10 लाख रुपए की विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल नहीं किया तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इस पर विरोध करने वाले लोगों का बड़ा तर्क यह है कि जो छोटे एनजीओ हैं, जो छोटे संगठन हैं और जो ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते वो बंद हो जाएंगे। हालांकि सरकार का कहना है कि वो ये नियम इसलिए ला रही है क्योंकि अभी बहुत सारे एनजीओ रजिस्ट्रेशन लेकर बैठ जाते हैं लेकिन काम नहीं करता। यानी सरकार का दावा है कि जो डमी एनजीओ हैं, जिन पर विदेशी फंडिंग को एक जगह से दूसरी जगह घुमाने का आरोप लगता है पैसा इधर से उधर करने के लिए, उनके लिए यह बदलाव किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार ने इसमें तीसरा और सबसे अहम प्रावधान यह जोड़ा है कि अब से एक एनजीओ दूसरे एनजीओ को विदेशों से मिली फंडिंग ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। चौथा प्रावधान रिपोर्टिंग को लेकर है। इसमें विदेशी फंडिंग लेने वाले संगठनों को यह बताना होगा कि उन्होंने विदेशों में किस संस्था से पैसा लिया, किससे लिया, किस उद्देश्य से लिया, किस राज्य में खर्च किया और किस चीज पर खर्च किया, मतलब कहां कहां खर्च हुआ है उसका ब्यौरा। यानी अगर किसी एनजीओ ने मध्य प्रदेश में स्कूल बनाने के लिए विदेशी फंडिंग ली होगी तो उसे उस पैसों को किसी और चीज पर खर्च नहीं करना है, वो नहीं कर सकते हैं। अगर आपका उद्देश्य था स्कूल बनाना तो आपको स्कूल ही बनाना होगा। और यही नहीं, वो एनजीओ इस पैसे को किसी दूसरे राज्य में नहीं बेच सकेगा। यानी ऐसा नहीं है कि आप पैसा ले रहे हैं कि हम यहाँ पर स्कूल बनाएंगे और उससे आप अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं या उससे आप आपस में बांट रहे हैं। विदेशों से पैसा अगर किसी राज्य में स्कूल या कोई भी चीज बनाने के लिए आया है तो उससे वही काम किया जाएगा और वो विदेशी फंडिंग दूसरे कामों में इस्तेमाल हो ही नहीं पाएगा। माना जा रहा है कि ये प्रावधान इसलिए लाया गया क्योंकि अभी सरकार को लगता है कि पैसा तो किसी और काम के लिए आता है, खर्च किसी और काम पर होता है। और ऐसा भी नहीं है कि ये बात सिर्फ मौजूदा सरकार को लग रही है। साल 2012 तमिलनाडु के कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन हुए। ये तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शन करने वाले लोगों का कहना था कि इससे पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। उस वक्त जब इस पूरे मामले की जांच हुई तो तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने साइंस पत्रिका को दिए इंटरव्यू में कहा था कि विदेशों से फंडिंग लेने वाले कुछ एनजीओज इन विरोध प्रदर्शनों को करवा रहे। बाद में यूपीए सरकार में ही गृह मंत्रालय ने इस मामले की जांच संभाली थी और ये कहा था कि 3 एनजीओ ने सामाजिक कामों के लिए विदेशों से फंडिंग ली और बाद में यही पैसा इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कराने में लगाया जो कि भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अब इस बिल के सबसे अहम बिंदु पर आते हैं जिसमें धर्म परिवर्तन का जिक्र किया गया है। सरकार कहती है कि उसने ऐसे सभी धार्मिक कामों और गतिविधियों की एक सूची बनाई है जो विदेशों से फंडिंग लेकर किए जा सकते हैं, लेकिन इन कामों में धर्म परिवर्तन और उसके प्रचार प्रसार को शामिल नहीं किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब विदेशों से फंडिंग लेकर धार्मिक स्थलों का रखरखाव हो सकता है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, गरीबों की मदद भी हो सकती है, अस्पताल चलाए जा सकते हैं, स्कूल खोले जा सकते हैं, लेकिन विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल धर्म परिवर्तन के लिए नहीं हो सकता। भारत में 52,156 एनजीओ और संस्थानों को विदेशी फंडिंग का लाइसेंस दिया गया है जिनमें सिर्फ 14,435 के करीब एनजीओ हैं जो सक्रिय हैं, एक्टिव हैं। 22,496 हैं जो कि लाइसेंस रद्द है। अब देखिए जो 14,435 हैं जो सक्रिय हैं, जबकि 72% एनजीओ के लाइसेंस जो है वो या तो रद्द है या रिन्यू नहीं हुए हैं। दूसरा, भारत उन देशों में शामिल है जहां इन एनजीओ को सबसे ज्यादा विदेशों से फंडिंग आती है। गृह मंत्रालय के मुताबिक साल 2019 से 22 के बीच 55,741 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग आई। अगर सिर्फ 2024-25 की बात करें तो सिर्फ इस एक साल में 22,963 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग आई और यह पैसा कम नहीं है। अगर आप भारत के इस नक्शे को देखेंगे तो हमारे देश के जिन 5 राज्यों में विदेशी फंडिंग लेने वाले एनजीओ की संख्या सबसे ज्यादा है उसमें तमिलनाडु पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, आंध्र प्रदेश तीसरे, पश्चिम बंगाल चौथे और कर्नाटक 5वें स्थान पर है। इसके अलावा रेंटेक डिजिटल के मुताबिक 2023 के मुकाबले भारत में चर्चेस की संख्या 6% बढ़ी है। इनमें भी सबसे ज्यादा एनजीओ आंध्र प्रदेश में है, फिर तमिलनाडु में है, तीसरे स्थान पर सूची में तेलंगाना है। यहां सरकार एक और बात यह कहती है कि इस कानून में सांसद, विधायक, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार, सरकारी कर्मचारी, जज, राजनीतिक दल, पत्रकारों के विदेशी फंडिंग लेने पर रोक लगाई गई है और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि भारत का लोकतंत्र प्रभावित ना हो। लेकिन सरकार कहती है कि अगर ये विदेशी फंडिंग भारत के लोकतंत्र को प्रभावित करने लगे तो वो क्या करेगी। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि आज नेशनल हैंडलूम डे है, यानी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। हमारी तरफ से इस देश के असंख्य बुनकरों को बहुत बहुत बधाई। उनके हाथों से, मेहनत से जो कपड़े बनते हैं, इस देश की वही शान है। अगर आप देखें तो कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पिछले हफ्ते ही फ्रेंडशिप डे मनाया होगा, लेकिन उन्हें अपने देश का नेशनल हैंडलूम डे पता है। इस दिन को समझने के लिए सबसे अच्छा शब्द है ताना बाना। आप अक्सर सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और जातीय ताने बाने के बारे में सुनते हैं। कई बार हम भी कहते हैं कि इन चुनावों का या भारतीय समाज का या हमारे रिश्तों का ताना बाना किन चीजों पर बुना गया है, लेकिन जानते हैं ताना बाना शब्द कहाँ से आया? ये शब्द इसी हैंडलूम यानी कपड़ों की बुनाई से आया है। पुराने जमाने में जब दो धागों को एक दूसरे से गूंथा जाता था तब उसे ताना बाना कहते थे। इनमें ताना ऊपर से नीचे आने वाले धागे को कहा जाता है, जबकि बाना एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने वाले धागे को कहा जाता था। लेकिन सोचिए आज इस बात को कितने लोग जानते हैं। हकीकत यह है कि भारत में हैंडलूम का इतिहास हजारों साल पुराना है। कपड़े की बुनाई ने भारत को सांस्कृतिक रूप से बुना है और हमें 1000 साल पहले दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाया। लेकिन धीरे धीरे हम इसकी ताकत को भूल गए, ये भी भूल गए कि भारत के सांस्कृतिक विरासत का ताना बाना कितना विशाल है, कितना बड़ा है। दुनिया में सबसे पहले कपास की खेती, सूती वस्त्र बनाने वाले देशों में भारत सबसे आगे हुआ करता था। इसका प्रमाण हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और राखीगढ़ी, जो राखीगढ़ी की प्राचीन सभ्यता है, उनमें मिले हैं, जहां कपास के रेशे, सूत काटने की कलियां और कपड़े के निशान मिले। द वेजिटेबल लैम्प ऑफ टार्ट्री नाम की एक पुस्तक में बताया गया है कि यूरोप में लंबे समय तक लोग यही मानते थे कि कपास किसी पौधे पर उगने वाले भेड़ जैसी चीज होती है। और ऐसा इसलिए मानते थे क्योंकि यूरोप के लोगों ने कभी कपास का पौधा देखा ही नहीं था, जिसके कारण उनके लिए समझना ही मुश्किल था कि कपास बनता कैसे। ये उस दौर की बात है जब ज्यादातर सभ्यताओं और देशों में उनके कपड़े, जो ऊन के कपड़े हैं, वो पहने जाते थे और भारत में कपास की खेती होती थी, सूती वस्त्र पहने जाते थे। मौर्य काल, गुप्त काल में भारतीय सूती कपड़ों का स्वर्ण काल आया। रोमन इतिहासकार लिखते हैं कि उस युग में भारत से इतनी मात्रा में कपड़ा खरीदा जाता था कि रोम का सोना भारत चला जाता था और यही सोना बाद में भारत के राजा महाराजा मंदिरों में दान कर देते थे। सोचिए आज भारत समेत कई देशों में पश्चिमी देशों के फैशन को फॉलो किया जाता है, जबकि उस दौर में रोमन महिलाएं भारतीय सूती और मलमल के वस्त्र पहनना पसंद करती थी और ये बड़ी बात थी। सिल्क रूट और समुद्री व्यापार के जरिए भारत में बने कपड़े रोम, मिस्र, अरब, फारस तक कई क्षेत्रों में भेजे जाते थे। जब मध्यकाल और मुगल काल आया तब भी भारतीय कपड़ों की प्रभाव, उनका जो प्रभाव है वो कम नहीं हुआ। मुगलों ने बनारसी सिल्क, जामदानी, ब्रोकेट, पश्मीना, किनखाब को संरक्षण दिया। अपने दरबारों में विशेष बुनकर नियुक्त किए। ये वही बुनकर थे जो उस दौर में मुगलों के लिए खास कपड़े बुनते थे। इसके कारण एंगस मैडिसन के मुताबिक साल 1700 तक दुनिया की अर्थव्यवस्था में अकेले भारत की हिस्सेदारी, जानते हैं, 24% थी। लेकिन जब अंग्रेज भारत आए तो सब कुछ बर्बाद हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से कच्चा कपास खरीदा, सस्ता कच्चा कपास। उससे इंग्लैंड को मिलों में लगी मशीनों में से कपड़ा बनाया और फिर वही कपड़ा भारत में बेचना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि भारत का कपड़ा उद्योग खत्म होने लगा। भारतीय बुनकरों को मजबूरन अंग्रेजों को कपास बेचने के लिए मजबूर किया गया और इससे लाखों बुनकरों की आजीविका समाप्त हुई। साल 1905 में जब अंग्रेज संयुक्त बंगाल का धर्म के आधार पर विभाजन करना चाहते थे, तब भारतीयों ने ही अंग्रेजों की इस क्रूरता का विरोध किया। उस जमाने में क्रांतिकारी बिपिन चंद्र पाल ने स्वदेशी का नारा दिया और यह आह्वान किया कि भारत के लोग अंग्रेजों की मिलों में बना कपड़ा नहीं खरीदेंगे, और क्योंकि स्वदेशी कपड़ा जो है उसका आह्वान किया कि भारत के लोग अब अंग्रेजी कपड़ा नहीं पहनेंगे और स्वदेशी कपड़ा ही चलेगा। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के एक चुनाव में फिलिस्तीनी समर्थक और इसराइल विरोधी मुस्लिम नेता की जीत ने सबको हैरान कर दिया है। अमेरिका के मिशिगन में यह डेमोक्रेटिक प्राइमरी चुनाव था। इसमें डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से डॉक्टर अब्दुल अल सैयद को जीत मिली है और उन्होंने पार्टी की तरफ से सेनेट चुनाव का टिकट दिया गया है। डेमोक्रेटिक प्राइमरी चुनाव का मतलब है डेमोक्रेटिक पार्टी के ही कुछ उम्मीदवारों के बीच होने वाला ऐसा चुनाव जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को सेनेट पद के चुनाव में उतारा गया। इस बार इस रेस में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से 3 उम्मीदवार थे। मुकाबला डॉक्टर अब्दुल अल सैयद, हेली स्टीवंस और मेलरी मैकमोरो के बीच में था, जिसमें अब्दुल अल सैयद ने जीत दर्ज की। उन्होंने हेली स्टीवंस को बहुत कम अंतर से हरा दिया। चुनाव में तीसरे नंबर पर मेलरी मैकलोरो थी, मैकमोरो माफ कीजिएगा। हेली स्टीवंस की हार और अब्दुल अल सैयद की जीत लोगों को चौंका रही है और इस पर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। वजह यह है कि हेली स्टीवंस पिछले 4 बार से सांसद रही है। वो एक ऐसे व्यक्ति से हार गई जो इसराइल का विरोधी माना जाता है और पहली बार किसी पार्टी की तरफ से सेनेट पद का कोई मुस्लिम उम्मीदवार अमेरिका में बना है। अमेरिकी सेनेट के पिछले 250 वर्षों के इतिहास में आज तक कोई मुस्लिम उम्मीदवार सेनेट में नहीं पहुंचा। अगर अब्दुल अल सैयद जीतते हैं तो पहली बार कोई मुस्लिम व्यक्ति सेनेटर बनेगा और यही बात पॉलिटिकल पंडितों को हैरान कर रही है। अब्दुल अल सैयद के माता पिता मिस्र से थे। अब्दुल फिलिस्तीन के समर्थक हैं। वो मानते हैं कि गाजा में हो रहे इजरायली हमलों को नरसंहार कहा था, उन्होंने कहा है, और युद्ध विराम की अपील की थी। अब्दुल अल सैयद ये भी मानते हैं कि अमेरिका को इसराइल की सैन्य मदद नहीं करनी चाहिए। इसराइल को लेकर विचारों की वजह से माना जा रहा था कि अब्दुल को समर्थन नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका में एक बड़ा तबका अब ऐसी सोच रखता है जिसमें वो इसराइल को लगातार हथियार देना और लगातार फिलिस्तीन पर बमबारी के खिलाफ है। एली स्टीवंस का दावा बहुत मजबूत था क्योंकि वो 4 बार की सांसद थी और उन्हें डेमोक्रेटिक सेनेट के वरिष्ठ नेताओं का समर्थन भी मिला हुआ था। एली स्टीवंस को इसराइल समर्थक लॉबी जैसे अमेरिकन इसराइल पब्लिक अफेयर्स कमिटी, डेमोक्रेटिक मेजोरिटी फॉर इसराइल का पूरा समर्थन मिला था। इन लोगों ने हेली को चुनाव जितवाने के लिए करीब 514 करोड़ रुपए खर्च किए थे। ये पैसा अब्दुल अल सैयद के चुनावी खर्च के मुकाबले बहुत ज्यादा था। बावजूद इसके अब्दुल अल सैयद ने हेली स्टीवंस को हरा दिया। इस जीत ने अमेरिकी चुनावी पंडितों को नए बदलाव का इशारा दिया। मिशिगन राज्य अमेरिका की राजनीति में एक स्विंग स्टेट माना जाता है। स्विंग स्टेट का मतलब ऐसे राज्य से है जहां डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी की जीत की संभावना 50-50 होती है। कई बार ऐसे राज्यों को वहां बैटल ग्राउंड स्टेट या पर्पल स्टेट भी कहा जाता है। यही वजह है कि स्विंग स्टेट्स पर दोनों पार्टियों और पूरे अमेरिका की नजर होती है। इसी के साथ बुलेटिन में हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा, देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: क्रिकेट में हर खिलाड़ी का अलग रोल होता है। कोई विकेट कीपर, कोई फील्डर, कोई बॉलर, तो कोई बैट्समैन होता है। और जब सब एक साथ मिलकर खेलते हैं तब बनती है कंप्लीट टीम। जैसे पीएनबी वन ऐप, जिसमें फंड ट्रांसफर्स हो या अकाउंट ओपनिंग, लोन हो या एफडी, सब कुछ है जो बनाता है इसे कंप्लीट बैंकिंग ऐप।
1: पीएनबी वन ऐप, बैंकिंग का कैप्टन।
2: Where the software engineer meets the cool UI UX designer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
3: टैंकर ने घुसकर मारी अलमारी को टक्कर।
4: आश्चर्यजनक, एक खरोच भी नहीं आई अलमारी पे। कैसे कदम?
3: क्रॉसबॉन्ड सुपर स्ट्रॉन्ग।
4: सुपर स्ट्रॉन्ग
3: और मॉइस्चर प्रूफ।
5: वारंटी
3: 15 साल की।
4: कदम
3: सर प्लीज
4: ऑर्डर करो और मेरे घर भिजवाओ। वार्डरोब्स क्रॉसबॉन्ड से ही बनेंगे।
6: क्रॉसबॉन्ड HGMR Max फर्नीचर बने स्ट्रॉन्ग, चले वेरी वेरी लॉन्ग।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: ये मजबूर हैं पर आप नहीं, बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
2: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हर परीक्षा के साथ इन छात्रों में एक उम्मीद जगती कि शायद इस बार कोई गड़बड़ी ना हो, शायद इस बार नतीजा साफ सुथरा हो, शायद इनकी मेहनत का असर दिखे, शायद झारखंड की परीक्षा व्यवस्था इस बार सुधरे। लेकिन बार बार इनकी उम्मीद टूटती है। ये हर बार खुद को ठगा महसूस करते हैं, हर बार सिस्टम की नाकामी का शिकार बनते हैं। भ्रष्टाचार इन छात्रों की मेहनत पर भारी पड़ जाता है और छात्रों के हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। 25 साल के मनीष बताते हैं कि कैसे हर परीक्षा में वो बर्बाद हो चुके सिस्टम का शिकार बनते हैं। मनीष एक नहीं कई कई परीक्षाओं का उदाहरण देते हैं और सवाल करते हैं कि अगर यही हाल रहा तो झारखंड का छात्र कहां जाएगा।
3: आपको तीन एग्जाम का एग्जाम्पल देंगे, जैसे कि CHO का एग्जाम्पल एग्जाम हुआ था, उसमें एक राज्य विशेष लोगों का चयन हुआ। फिर 11-13 JPSC का एग्जाम हुआ, उसमें भी एक राज्य विशेष का सिलेक्शन हुआ। फिर महिला सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ, उसमें भी एक राज्य विशेष महिला अभ्यर्थियों का चयन हुआ। हम लोग झारखंड वाला कहां जाएं, क्या करें।
2: मनीष के माता पिता खुद झारखंड आंदोलन में शामिल थे। अब वो सवाल करते हैं कि आखिर अलग सुबह बने 25 साल से भी ज्यादा बीत जाने पर भी झारखंड के लोगों को क्या मिल रहा है।
4: आंदोलन आपको जन्म से मिल गया।
3: हाँ, आंदोलन मैंने जन्म से देखा। और पापा नारा देते थे ना कि घर में कि कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड। तो पापा कभी कभी बोलते हैं कि झारखंड ले लिए, लेकिन हम झारखंडियों को क्या मिला है। यहाँ पे बस अदर स्टेट वाले आते हैं, मलाई खा के चल जाते हैं। झारखंड के हिस्से में वही आता है, कोयला बिछो, बकरी पालो। हेमंत सोरेन भी तो वही बोलते है ना, बकरी पालो, सुअर पालो, और रिच मिनरल रिच है ये तो कोयला बिछता ही है यहाँ का लोग, क्योंकि नौकरी तो बाहर वाले आके ले जा रहे हैं ना, या फिर जो वो वैसे रसूखदार ले जा रहे हैं।
2: झारखंड के हजारों छात्रों की शिक्षा व्यवस्था से नाराजगी है, क्योंकि ये उनके रोजगार और भविष्य का सवाल है। और इसे लेकर अब रांची के आंदोलन में शामिल छात्रों में जबरदस्त उबाल है।
5: प्रीलिम्स निकला, मेंस निकला, मैं फिर इंटरव्यू भी दिया सर, फाइनली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उस समय लगा मुझे शायद मेरा ही कहीं पे फॉल्ट होगा। उस समय से इंटरव्यू में मुझे मात्र 40 नंबर दिया गया। उस समय ये देखा गया कि वहाँ पे चार बोर्ड है सर, और जितने सारे मेंबर है JPSC के अंदर, वो सभी मेंबर किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड है सर। कोई किसी से है, कोई किसी से है, और उन लोग का अपना पर्सनल बायस होता है। तो एक बोर्ड सबको 65+ दे रहा है, एक बोर्ड सबको किसी को 15 दे रहा है, किसी को 20 दे रहा है, मुझे मात्र 40 नंबर दिया गया। और सर एक उसके बाद जब मेरा रिजल्ट नहीं हुआ ना, तो मुझे लगा कि शायद मेरे में ही कोई कमी है, तो मैं अगले बार इसमें सुधार कर लूंगा।
2: झारखंड की इस धरती ने कई आंदोलन देखे और अब बिरसा की इस धरती पर नौजवानों की इस आंदोलन को पूरा देश गौर से देख रहा है। झारखंड का छात्र बदलाव की उम्मीद के साथ आंदोलन कर रहा है। इनके मंच पर गांधी, अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, बिरसा मुंडा की तस्वीर है और इनकी प्रेरणा के साथ बदलाव की उम्मीद। सत्यजीत कुमार के साथ आशुतोष मिश्रा, रांची आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और कितना फरेबी हो चुका है इंसान, पीठ पीछे जिसकी धज्जियां उड़ाता है उसी के साथ ठहाके भी लगाता है। नमस्कार।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: रांची में चार मंत्रियों और छात्र प्रतिनिधिमंडल में आज की वार्ता खत्म। मुलाकात के बाद दोनों पक्षों ने कहा बातचीत सकारात्मक, लेकिन छात्रों का प्रदर्शन जारी। संसद में गतिरोध के बीच सोमवार तक स्थगित दोनों सदन। रिजिजू ने विपक्ष पर जड़ा आरोप, कांग्रेस ने 10, 11 और 12 अगस्त के लिए अपने सांसदों को जारी किया व्हिप। एथेनॉल पर सरकार, राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, वीडियो पोस्ट में कहा दाल में काला नहीं पूरी दाल ही काली। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान, कुछ लोग खड़ा कर रहे हैं विवाद। सीएम योगी ने अखिलेश को फिर घेरा, कहा एसपी सरकार में लूटने निकल जाती थी चाचा भतीजे की जोड़ी, इन्होंने नहीं चलने दी विधानसभा। लगातार बारिश से दिल्ली एनसीआर में जगह जगह भरा पानी, कई जगहों पर लगा जाम, 9 घर गिरे। पुष्प विहार में सबसे अधिक बारिश हुई।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक, पर आप देख रहे हैं दस्तक। और आज हम दस्तक देंगे गड्ढा सिस्टम के खिलाफ। आज हम जवाबदेही से भागते जिम्मेदारों की अंधेर गर्दी पर दस्तक देंगे। आज हमारे देश के अलग अलग शहरों में जारी बारिश से धसती उखड़ती सड़कों के पीछे भ्रष्टाचार वाले गठजोड़ का सच आपको दिखाएंगे। कैसे आपके हमारे टैक्स पेयर्स के पैसों से बनने वाली करोड़ों रुपए की सड़कें एक ही बारिश में धुल जाती हैं। और सवाल यही

0: लुधियाना के पौश इलाके किचलू नगर में सड़क पर 20 फुट गहरा गड्ढा, आगरा के पौश इलाके कर्मयोगी रोड पर सड़क धंसने से 10 फीट गहरा और 5 फीट चौड़ा गड्ढा हो गया। मुंबई नासिक हाईवे पर मौत के जानलेवा गड्ढे राहगीरों को बेमौत मार रहे हैं, तो ठाणे के घोड़बंदर रोड पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। क्या नेशनल हाईवे, क्या स्टेट हाईवे और क्या शहरों की सड़कें, इलाके अलग लेकिन बद इंतजामी की तस्वीर एक जैसी। यही है गड्ढा सिस्टम। जिम्मेदारों की ना तो कोई जवाबदेही है और न ही आम जनता की जिंदगी के साथ चल रहे जानलेवा खिलवाड़ की सुध लेने वाला कोई तैयार है। सरकारी सिस्टम मतलब आम जनता की जान भगवान भरोसे है, क्योंकि सड़क की जमीन कहीं भी खिसक सकती है और हाईवे पर जानलेवा गड्ढे आम जनता को बेमौत मार सकते हैं। गड्ढा सिस्टम की गवाही देती इन तस्वीरों को बहुत गौर से देखिए, स्मार्ट सिटी लुधियाना के बड़े बड़े दावों की बदहाली समझ में आ जाएगी। वादे और सपने तो स्मार्ट सिटी के दिखाए, लेकिन आज स्मार्ट सिटी गड्ढे में है। मतलब सिस्टम फेल है और सरकारी सिस्टम के इरादे खोखले हैं। सड़क करीब 20 फीट गहरी और लगभग 30 फीट लंबाई तक धंस गई।
1: तस्वीरें आपको स्मार्ट सिटी लुधियाना की दिखा रहे हैं कि कैसे स्मार्ट के बाद एक सड़क पर, सुबह इस सड़क पर गहरा खड्डा पड़ जाता है और उसमें एक ईंटों से भरी हुई ट्राली उसमें फंस जाती है, जिसको जब निकाला जाता है तो देखते ही देखते कई फीट गहरा खड्डा जो है इस सड़क पर दिखाई दे रहा है। क्या वाकई में लुधियाना स्मार्ट हो पाया है, कितना स्मार्ट हो पाया है, तस्वीरें हर बारिश के बाद खुद बयान कर पाती हैं कि पंजाब की सबसे बड़ी नगर निगम और देश के पहले 20 स्मार्ट सिटियों में शामिल लुधियाना शहर की असली तस्वीर क्या है।
0: 4 अगस्त को यहां छोटा सा गड्ढा हुआ, स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन नगर निगम के जिम्मेदार आंख कान बंद करके बैठे रहे। 6 अगस्त को यही छोटा गड्ढा एक बड़े गड्ढे में तब्दील हो गया। गनीमत रही जब सड़क धसी तो तस्वीरों में नजर आ रहा ट्रैक्टर चालक बाल बाल बच गया। अगर वक्त रहते जिला प्रशासन की नींद टूट गई होती तो आज स्मार्ट सिटी लुधियाना की बदहाल तस्वीर सामने नहीं आती। बीते कुछ दिनों में मानसून के मौसम में स्मार्ट सिटी के अलग अलग इलाकों में सड़कें धस रही हैं। अब नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर जसदेव सिंह अपने विभाग की बद इंतजामी का ठीकरा दूसरों पर फोड़ रहे हैं।
2: होटल ऑन वाला इशू है और ये इशू है, सेम रोड है, सेम प्रॉब्लम है, वहाँ भी ड्रिलिंग की गई है कंपनीज की तरफ से, यहाँ भी वही प्रॉब्लम है। अब जब ड्रिल करोगे किसी चीज को, पंचर करोगे, उसकी रिपेयर नहीं होगी, जिम्मेवार तो कंपनीज ही है।
0: सवाल यही है, अगर गड्ढे की वजह केबल बिछाने वाली कंपनी की तरफ से हुई लापरवाही है तो जिला प्रशासन ने ऐसी कंपनी को लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने का लाइसेंस क्यों दिया? आखिर जवाबदेही तय करने के बजाय ब्लेम गेम कब तक चलता रहेगा? सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि जवाबदेही की कमी शहर शहर सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे की वजह है। शहर अलग है लेकिन आगरा का हाल जुदा नहीं है।
3: हालत ये है कि आज से 15 दिन पहले जहां एक बड़ा हादसा हुआ था, वहां से कुछ मीटर पर एक बड़ा गड्ढा सड़क पर देखने को मिल रहा है और आप देख सकते हैं कि ये काफी गहरा गड्ढा है, 10 से 15 फीट गहरा गड्ढा और करीब 8 से 10 फीट का आप जो लंबा जो गड्ढा देख रहे हैं, ये गड्ढा बता रहा है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के सीमेंट बालू से ये सड़क बनाई गई है।
0: आगरा के पौश इलाके में अचानक सड़क धस गई। चंद महीने पहले करोड़ों की लागत से बनी सड़क के बीच करीब 5 फुट चौड़ा और 10 फुट गहरा गड्ढा हो गया। जिम्मेदारों की अंधेर गर्दी ऐसी है कि एक महीने के अंदर दूसरी बार सड़क धसी है। आरोप यही है कि नगर निगम के जिम्मेदारों की अनदेखी की सजा आम जनता भुगतने के लिए मजबूर है। आज तक ने जिम्मेदारों की अंधेर गर्दी पर दस्तक दी तो चंद घंटों के अंदर आगरा नगर निगम ने गड्ढों को भर दिया। गड्ढा तो भर गया लेकिन गड्ढा सिस्टम की पोल खुलते देर नहीं लगी। एक गड्ढा भरा तो आगरा के ताजगंज इलाके में सड़क फिर धस गई। गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया, लेकिन सड़कों के धसने के सिलसिले ने भ्रष्टाचार के खेल से पर्दा उठा दिया
3: कि पीछे एक तरफ जो स्थानीय सांसद है उनकी जिम्मेदारी है, स्थानीय विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, आगरा के जो मेयर है हेमलता देवा

डॉक्टर कुशवा, और इसके साथ ही जो जलकल विभाग और सीवर मैनेजमेंट कंपनी वबाग, जिसका काम पूरे आगरा के 1180 किलोमीटर के सीवर मैनेजमेंट का काम है, सिल्ट उठाने का काम है, डक्ट होल की सफाई का काम है, पूरा जो ड्रेनेज सिस्टम है, सीवर मैनेजमेंट सिस्टम है, उसका काम है, वो पूरी तरह से लगातार सवालों के घेरे में है। और ऐसे में आज एक बड़ा गड्ढा फिर से हुआ है।

0: सरकार तक, जिम्मेदारों तक पहुंचाना है ताकि जवाबदेही तय हो सके। आज एनएचएआई की अंधेर गर्दी का पर्दाफाश करती रिपोर्ट हमारे देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी को जरूर देखनी चाहिए। आज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को ठाणे की घोड़ बंदर रोड की बदहाली से त्रस्त आम जनता की पीड़ा को जरूर सुनना चाहिए। सड़कों पर जानलेवा गड्ढों से जनता पस्त है, लेकिन सरकारी अफसर मंत्री मस्त हैं। सोते सिस्टम को जगाने वाली हमारी ये रिपोर्ट आप जरूर देखिए।
1: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अंधेर गर्दी की कीमत विकास गोरे को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। गोरे की जान गड्ढे वाले हाईवे की वजह से गई।
2: देखिए, ये सड़क बहुत अच्छी है तो इसलिए काफी स्पीड में वो आ रहे थे और बताया जाए यही जा रहा है कि विकास जब अपनी गाड़ी अपनी टू व्हीलर को जब इससे लेके जा रहे थे तो यहाँ पानी भरा हुआ था। उससे वो समझ नहीं पाए कि आखिर यहाँ पर ये पॉट होल है। उनकी गाड़ी जो कि तेज रफ्तार में थी इसको हिट किया उन्होंने और सीधे गाड़ी थोड़ी दूर और वो उससे भी आगे दूर जाके गिरे।
1: नेशनल हाईवे पर मौत के जानलेवा गड्ढों पर हमने 5 अगस्त को दस्तक दी थी, क्योंकि गोरे की मृत्यु के बाद भी एनएचएआई के अफसरों की नींद नहीं टूटी, तो हमने जिम्मेदारों को जगाने वाली रिपोर्ट दिखाई।
2: उस पॉट होल में जहां से विकास गोरे की मौत हुई उसको तो भर दिया, लेकिन उससे ठीक आप देख लीजिए 500 मीटर की दूरी पर कम से कम 10 पॉट होल्स हैं और छोटे मोटे नहीं, आप देख लीजिए काफी, आप देखिए इतने तकरीबन 3-4 इंच का ये अंदर पानी गड्ढा है और बड़े बड़े गड्ढे हैं, छोटे मोटे नहीं। इसमें अगर कोई बाइक चला जाए तो उसमें वाकई किसी की दुर्घटना हो सकती है।
1: 5 अगस्त को एनएचएआई ने उस गड्ढे को भर दिया था जिसकी वजह से गोरे की मौत हुई थी, लेकिन हादसे वाली जगह से चंद कदमों की दूरी पर गड्ढों को भरा नहीं गया था।
3: अभी आप देख सकते हैं कि बहुत जगह पर इस तरीके से पेवर ब्लॉक लगाकर हाईवे पर, मुंबई नासिक हाईवे पर गड्ढे बुझाए गए हैं।
1: अगर सही वक्त पर जिम्मेदारों ने अपना काम किया होता तो शायद विकास गोरे जिंदा होते, क्योंकि परिवार ने अपना सब कुछ खो दिया है।
4: हमारी यही मांग है सरकार से कि हमारे घर में जो मेरा जब भाई था वो अकेला घर में कमाने वाला था, मैं भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहा हूँ, जो पगार मिलता था वो वही हैंडल करता था घर के अंदर। अभी हमारे सरकार से यही गुजारिश है हमारे घर के, तो जो मदद कर सकता है हमारे सरकार हमारी मदद करे। अभी मेरा भाई तो गुजर गया, तभी हमारे मेरे ऊपर तो घर की पूरी जवाबदारी है, तो हमारे जो मदद कर सकते है सरकार वो कर सके।
3: क्या परिवार पे अभी किसी तरीके का कोई प्रेशर या कोई दबाव बना रहे?
4: ऐसा तो लग रहा है वो, हम लोग को ऐसा लग रहा है कि कोई तो प्रेशराइज कर रहा है हम लोग को, बार बार हम लोग को कॉल किया जा रहा है, ऐसा तो लग रहा है हम लोग को। क्यों हम आदिवासी इसलिए हमारा हक नहीं, कोई मेरा भाई गुजर गया, भाई गुजर गया तो हम लोग जो आदिवासी रहते हैं उनके ऊपर न्याय मांगने की ये नहीं क्या? हमारी यही गुजारिश है सरकार को कि समझो आदिवासी जो इंसान है उनको न्याय मांगने का अधिकार नहीं है क्या?
1: इस परिवार पर टूटे पहाड़ के जिम्मेदार एनएचएआई के अफसर हैं, लेकिन अभी तक लापरवाही बरतने वाले अफसरों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। जवाबदेही की यही कमी आम जनता को मरने के लिए छोड़ देती है, जैसे मीरा भयंदर नगर निगम ने छोड़ रखा है।
5: जब यहाँ पे पूरा पानी भर जाता है, ये गड्ढा दिखता नहीं, आप एक सोच सकते हैं ये गड्ढे में अगर किसी की गाड़ी आ जाती है तो उसके पीठ का, स्पाइन का क्या हाल है। ये गड्ढा गिनने की अपन कोशिश करेंगे, और टेप मेरे पास है, ये गड्ढा हम अगर गिनते हैं तो ये गड्ढा आप देख सकते हैं 7 फुट, मतलब ये टेप पूरी तरह से खत्म हो गई, 7 फुट का ये गड्ढा है। और ये गड्ढे को अगर हम ऐसा गिनते हैं तो ये गड्ढा हम देख सकते हैं 38 इंच, यानी 3 फुट के भी ऊपर ये गड्ढा है।
1: कैमरे में दिखाई दे रही ये तस्वीरें घोड़ बंदर रोड की हैं। दिल्ली और मुंबई को जोड़ने वाले इस अहम नेशनल हाईवे की हालत बेहद खराब है। हाईवे पर गड्ढे ही गड्ढे हैं, ना कोई सुध लेने वाला है और ना ही जिम्मेदारों की नींद टूट रही है। 5 अगस्त को हमने मौत के इस गड्ढे पर दस्तक दी थी, लेकिन 48 घंटों के बाद भी मीरा भयंदर नगर निगम के अफसरों की नींद नहीं टूटी। आज भी सड़क के बीचों बीच गड्ढे मौजूद हैं, यानी जिम्मेदारों ने आम जनता को भगवान भरोसे छोड़ रखा है।
6: सर अभी वहाँ पे काम चल रहा है, कई दिनों से काम चल रहा है, एक गड्ढा पूछते कल दूसरा तैयार हो जाता है, जल्दी से जल्दी प्रशासन करना चाहिए इसको।
1: नगर निगम का कहना है कि उनके पास इतना फंड नहीं है कि

0: रोड को रिपेयर कर सके, लिहाजा राज्य सरकार को सड़क का मेंटेनेंस देखना चाहिए। मतलब ये गड्ढा विभागों की फाइलों में चकर घिरनी बना हुआ है। ये तब है जब ये डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का इलाका है। जरूरत है वक्त रहते जानलेवा गड्ढों को भरने की, नहीं तो विभागों के चक्कर में यही गड्ढा किसी हादसे की वजह बन सकता है। आज तक ब्यूरो।
1: आपने सिस्टम के गड्ढे देखे, और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। सड़कों पर पानी भर गया, ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया, अगले 10 अगस्त तक बारिश का अनुमान है। दिल्ली के साथ साथ नोएडा, गुरुग्राम में भी तेज बारिश के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं दिल्ली एनसीआर में बारिश आई तो कैसे अपने साथ लाई आफत।
0: सुबह से दिल्ली एनसीआर में सावन ऐसे झूम कर आया कि दिन ढल गया, रात हो गई, लेकिन मूसलाधार बारिश मुसलसल होती रही। लोग सड़कों पर परेशान दिखे, ट्रैफिक से जूझते दिखे, गाड़ियां खराब होती दिखी, सड़कों पर जल भराव दिखा। बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, और 10 अगस्त तक ऐसे ही कभी हल्की तो कभी तेज बारिश होते रहने की संभावना है। पहले बारिश में हिचकोले खाती दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें एमबी रोड की हैं।
2: राजधानी दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है, और बारिश के बीच काफी जलभराव हो रहा है। अभी हम दिल्ली के एमबी रोड पर हैं, जहां पर आप देखेंगे जलभराव किस तरीके से हुआ है और किस तरीके से बस को निकालने का प्रयास किया जा रहा है।
3: कितना फीट तक पानी भर गया है यहाँ पर?
4: ये मैं ईमानदारी से बताऊं, मेरी आप देख सकते हैं घुटने से ऊपर और कमर से हल्का सा नीचे पानी है।
3: सर ये 4 फीट लमसम होगा पानी, ठीक है? और जिस तरीके से आप आगे की तरफ जाएंगे ना, आगे की तरफ और देखेंगे तो और भी पानी जिस तरीके से लबालब भरा हुआ है, ठीक है? ये बहुत संकेत है।
2: महिला आ रही है, स्कूल के टीचर है आप?
4: हाँ जी।
2: कहाँ से आ रही है?
4: बाल निकेतन संगम बिहार।
2: तो अब कितना पानी बस वस नहीं मिला?
4: बस नहीं, वो तो हमारी स्कूल की कार थी तो उससे हम आए
2: तो फिर
4: भी कार के अंदर इतना पानी।
2: आप देख सकते हैं ये आर्मी मैन है और इनकी भी गाड़ी बुलेट से जा रहे हैं, इनकी फंस गई है।
3: आपकी भी बंद हो गई?
2: हाँ कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट कर लेंगे।
3: यही स्थिति हो रही है और दरिया जैसा स्थिति यहाँ पर एमबी रोड पर बनता हुआ नजर आ रहा है।
0: आपको बता दें कि एमबी रोड पर ओखला मोड़, संगम बिहार, खानपुर और देवली में जल भराव हुआ है, जिसके कारण एमबी रोड का यातायात खानपुर से ओखला मोड़ के बीच प्रभावित हुआ और लोग परेशान होते रहे। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में 7 अगस्त को 59.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो इस साल अगस्त महीने का अब तक का सबसे बरसाती दिन रहा है। जबकि दिल्ली के छतरपुर में 104.5 मिलीमीटर बारिश, पुष्प विहार में 111.5 मिलीमीटर बारिश, पालम में 73.5 मिलीमीटर बारिश और आया नगर में 87.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और बारिश में दरिया बनती दिल्ली की तस्वीरें वसंत कुंज से भी आई हैं। देखिए वसंत कुंज का हाल।
5: दूर देखिए बच्चे, वहाँ जो स्कूली बच्चे हैं वो आ रहे हैं, और देखिए उन वो पानी में कैसे खेलते हुए आ रहे हैं। लेकिन ये स्कूल का टाइम है, स्कूल से छुट्टी हुई है, और बच्चे देखिए यहाँ पर सड़क पे या फुटपाथ हो हर तरफ पानी ही पानी है। बेहद अहम मार्ग है, मैं फिर से बता दूं, वसंत कुंज का ये रोड है जो एयरपोर्ट को जोड़ता है, इसके आसपास कई सारे स्कूल हैं और यहाँ पर जलजमाव की स्थिति बनी है। दिल्ली वालों की ये आफत बन के निकला है ये मानसून की ये बरसात।
0: बारिश की वजह से बहरोली बदरपुर रोड, आईटीओ वजीराबाद रोड, पटेल रोड, रोहतक रोड, शंकर रोड, कीर्ति नगर, दिल्ली जयपुर हाईवे, पीरागढ़ी और शाहीन बाग जैसे इलाकों में भारी ट्रैफिक देखा गया। हालांकि इस बारिश से दिल्ली के तापमान में भी गिरावट आई है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी सुबह से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ दिन भर चलता रहा। बारिश होने से कई जगहों पर भारी जल भराव हो गया है, जिस वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं झमाझम बारिश के बीच नोएडा सेक्टर 95 स्थित अंडरपास में जल भराव हो गया, जिसमें एक एम्बुलेंस फंस गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे बंद पड़ी एम्बुलेंस को ड्राइवर ने धक्का मारकर निकालने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। गनीमत ये रही कि एम्बुलेंस में कोई मरीज नहीं था। और बारिश से गुरुग्राम की दुर्गति भी देख लीजिए। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर पानी भरा है और पानी में गड्ढे हैं। ये देखिए कैसे एक ऑटो पानी में हिचकोले खाते हुए चल रहा है। बारिश इतनी तेज हुई कि पहले सड़कें लबालब हुई और फिर पानी गुरुग्राम के सिविल अस्पताल के अंदर भी घुसपैठ कर गया। और गुरुग्राम की पुलिस लाइन की ये तस्वीरें भी देखिए, कैसे बारिश के पानी में बच्चे तैराकी कर रहे हैं। और जैसा कि हर बारिश में गुरुग्राम में ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है, ठीक वैसा ही नजारा आज भी दिखा। गुरुग्राम में पिछले कुछ घंटों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। भारी जलभराव और यातायात जाम को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने कंपनियों को कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की सलाह भी दी है। दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
1: और अब खबर झारखंड के छात्र आंदोलन की। सरकार और छात्रों के प्रतिनिधिमंडल की बातचीत खत्म हो गई। आंदोलन के 14 दिन बाद सरकार और छात्रों के बीच ये बातचीत शुरू हुई थी, जो अब से कुछ देर पहले खत्म हो गई। बातचीत में शामिल हुए छात्रों के डेलीगेशन का कहना है कि सरकार उनकी मांगों पर विचार कर रही है और ये बातचीत बहुत ही सकारात्मक रही।

0: और क्या निर्णय लिया गया?
1: अभी बस धरना पर लिया गया है और आगे का वार्ता भी चलेगा, आंदोलन कंटिन्यू।
0: क्या कहा गया? चलेगा। मंत्री ने क्या कहा आप लोगों की बात कर?
1: हम लोगों की बात को सकारात्मक लिया गया है और मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, उसका समाधान किया जाएगा।
0: ठीक,
1: सकारात्मक बात हुई है, हम लोग का डिमांड लिया गया है, डिमांड पे चर्चा भी आगे और भी चलेगा, अभी आंदोलन कंटिन्यू है।
2: हाँ, जारी रहेगा। दिस इज द फर्स्ट राउंड।
3: जब रांची में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हैं, सरकार से अपनी मांगे बनवाने के लिए अड़े हुए हैं, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब परीक्षाओं को लेकर आंदोलन चल रहा है तो उसमें अभिजीत देव के या फिर कॉकरोच जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता अब तक इस आंदोलन में शामिल क्यों नहीं हुआ। इस बीच महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में कॉकरोच जनता पार्टी की दो दिन बैठक भी होती है। सीजेपी अपनी आगे की पूरी रणनीति तय करती है, पूरी टीम के पद तय किए जाते हैं और सितंबर से क्या बोलती पब्लिक कैंपेन शुरू करने का ऐलान भी होता है। सवाल यही है कि सीजेपी के सारे बड़े चेहरे छत्रपति संभाजी नगर में दीपके के घर तो दिखते हैं, रांची के आंदोलन में क्यों नहीं? कॉकरोच जनता पार्टी और उसके संस्थापक अभिजीत दीपके से लगातार सवाल हो रहे हैं कि सीजेपी के नेता रांची के छात्र आंदोलन में अब तक क्यों नहीं पहुंचे। हालांकि इस पर कॉकरोच जनता पार्टी और उसके संस्थापक अभिजीत दीपके से लगातार सवाल हो रहे हैं कि सीजेपी के नेता रांची के छात्र आंदोलन में अब तक क्यों नहीं पहुंचे। हालांकि इस पर सीजेपी ने कहा कि उन्होंने बारिश में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के लिए रेनकोट भेजे हैं, छाते भेजे हैं, खाने का सामान भी भेजा है और पार्टी का नेतृत्व भी रांची जाएगा। सवाल यही है कब तक? आपको बता दें कि जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ भूख हड़ताल करने वाली आयसा अध्यक्ष नेहा बोरा रांची में छात्र आंदोलन के मंच पर जरूर पहुंची। नेहा बोरा ने मंच से इस आंदोलन के समर्थन का ऐलान भी किया। नेहा बोरा ने कहा कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराई जानी चाहिए और इसकी तारीख जल्द घोषित होनी चाहिए।
4: तो जो सब साथी भूख हड़ताल पर बैठे हैं स्टेडियम में, उनको बहुत बधाई। आपने ये जो संघर्ष किया हुआ है उस संघर्ष को पूरा देश देख रहा है और इस मंच से वो मांगे जो यहाँ पे भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की है, संघर्ष कर रहे छात्रों की है, उन मांगों को मैं अपनी सॉलिडारिटी और समर्थन यहाँ से देना चाहूंगी।
3: लेकिन रांची के छात्र आंदोलन के दौरान आयसा अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंकने का मामला भी सामने आया और इसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ। एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई। नेहा बोरा की उम्र अभी 29 साल है और वो अपनी बेबाक आवाज के लिए जानी जाती हैं। मूल रूप से नेहा बोरा उत्तराखंड के खटीमा से आती हैं। आपको बता दें कि रांची आंदोलन को लेकर सवाल राहुल गांधी पर भी उठ रहे थे। बीजेपी कह रही थी कि जंतर मंतर पर सीजेपी के आंदोलन पर बोलने वाले राहुल गांधी रांची के छात्र आंदोलन पर क्यों चुप हैं? तो राहुल गांधी ने 6 अगस्त को प्रदर्शनकारी छात्रों से फोन पर बात की। एक छात्र नेता रविंद्र पासवान ने बताया कि उनकी राहुल गांधी से बात हुई है। साथ ही राहुल गांधी ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने छात्रों के समर्थन की बात कही।
5: झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है और अलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ओप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए, और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो।
3: लेकिन जैसे जैसे रांची आंदोलन के दिन बढ़ रहे हैं, छात्रों का सब्र टूट रहा है और अब अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत भी बिगड़ने लगी है। ये 40 साल के राहुल हैं, जो पिछले 4 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन उन्हें बहुत तेज बुखार हो गया। बाकायदा डॉक्टरों की टीम आई और इस अनशनकारी को यहां से ले जाकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
2: पर हूँ, 4 छात्र अनशन पर बैठे हुए थे बीते 4 दिनों से। इनमें 40 साल के राहुल, जिनको आप देख रहे हैं, इनकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई है और अब डॉक्टरों ने मेडिकल रिपोर्ट के बाद ये देख लिया है कि इनके वाइटल्स जो है काफी ज्यादा बिगड़ गए और इसलिए अब इनको जो है यहाँ से अस्पताल ले जा रहा है। डॉक्टर ने कहा इनको यहाँ बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। डॉक्टर क्या कह रहे हैं भैया, क्या कुछ बताया उन्होंने,
6: क्या बोले
2: डॉक्टर, क्या कह रहे हैं?
6: डॉक्टर ये बताया कि उसका तबीयत खराब है, उसको अभी सदर अस्पताल ले जाया जाएगा।
7: अभी एक ही लोग का देखा गया है, अभी इनका ठीक लग रहा है, बाकी लोग का देख रहे हैं।
2: उनको आप ले जा रहे हैं, किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हुई है?
7: उनका पल्स रेट काफी ज्यादा हाई मिल रहा है, जिसके वजह से उनका बीपी भी थोड़ा शूट टूट कर
2: यहाँ रखा जा सकता है बिल्कुल भी
7: अब? नहीं नहीं, अब इनको एडमिट ही करना पड़ेगा, अब इनको सदर में ही रेफर करना पड़ेगा।
8: दशक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दशक के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे विद्रोह के चक्रव्यूह में मुनि। आप देखते रहिए दशक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
10: इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: where the software engineer meets the cool UI UX designer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
1: Papa!
2: सॉरी यार गलती हो गई है ये चोट खर्चा वर्चा
3: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा
2: छक्का
3: सब कैशलेस हो गया है
2: हां ओ ले ला भाई मेरा बैट
4: वो अभी तो ठीक हुआ तू
5: बिल्कुल चार्ज हुआ यार
6: ओ ले बैट किसका है
7: टाटा एआईजी है तो भरोसा है
8: आपके पास दो ऑप्शंस हैं या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो E3 प्रोडक्ट्स ये रिश्ता लंबा चलेगा

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
8: मुल्तानी खू का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाए और खांसी को कहे गुड बाय। मुल्तानी खू का कॉफ सिरप।
9: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
10: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
11: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with
1: Sera Sanitary Wear. It's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
2: 6000 करोड़ रुपए का AUM था, उसको बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए कर दिया.
3: ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़. यस, मैंने कमाना 2005 में शुरू किया, निवेश करना 2006 में किया और सब पैसा इक्विटी में डाल दिया. एंड यू कैन इमेजिन 2008 में आधा हो गया. आपको एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए दाल चावल फंड. एवरीवन एस्पायर्स टू बी अ मैंगो मिलियनेयर. उसको वॉरेन बफेट नहीं बनना, उसको लेट राकेश झुनझुनवाला नहीं बनना. सिर्फ महीने के 1.5 लाख की ऐसा है, 18 साल तक अगर आप करते हैं इक्विटी फंड में आपके 10 करोड़, क्योंकि आपने वो पैसा डाला मार्केट में, उसने रिटर्न कमाया, रिटर्न के ऊपर रिटर्न कमाया, वो पावरफुल.
4: अगर इतिहास में जाकर इंडिया टुडे की तरह मुझे किसी खबर को कवर करने का मौका मिला तो मैं इमरजेंसी कवर करना चाहूँगा. 7 अगस्त को PVR INOX में देखना बिल्कुल मत भूलिएगा. आई विटनेस टू अ नेशन.

0: आज जिम्मेदारों को जवाब देना चाहिए। क्या आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के घटिया निर्माण में फंसी कंपनी को नए हाईवे या एक्सप्रेसवे बनाने का टेंडर मिलना चाहिए? क्या लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण की गुणवत्ता से खुल्लम खुल्ला खिलवाड़ करने वाली कंपनी को मिला नया टेंडर निरस्त होना चाहिए? क्या भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोपों में घिरी कंपनी को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाना चाहिए? एनएचएआई के अधिकारियों को घूस देकर प्रोजेक्ट पाने का खेल पुराना है। आरोपों पर यकीन करें तो इस खेल में पीएनसी पुरानी खिलाड़ी है। 2024 में सीबीआई ने हाईवे प्रोजेक्ट से जुड़े कथित रिश्वत मामले में केस दर्ज किया था। मामले में एक एनएचएआई अधिकारी की गिरफ्तारी हुई थी। पीएनसी से जुड़े अधिकारियों की भूमिका की भी जाँच की गयी थी। यही नहीं, अवैध खनन से जुड़े मामले में कंपनी पर करीब 104 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया था। पीएनसी कंपनी के दामन पर दाग ही दाग हैं, लेकिन एनएचएआई को ये दाग अच्छे लगते हैं। क्या इसकी वजह कंपनी से जुड़ा बीजेपी सांसद का नाम है? पीएनसी इंफ्राटेक के घटिया निर्माण के बावजूद मिल रहे ठेकों पर उठ रहे सवालों की कई वजह हैं, क्योंकि कंपनी का सीधा कनेक्शन बीजेपी सांसद से जुड़ा हुआ है। बीजेपी सांसद नवीन जैन 2017 तक पीएनसी इंफ्राटेक के फुल टाइम डायरेक्टर रहे। साल 2017 में नवीन जैन बीजेपी के टिकट पर आगरा के महापौर बने। फरवरी 2024 में नवीन जैन को बीजेपी ने राज्यसभा का सांसद बनाया। राज्यसभा चुनाव के हलफनामे में पीएनसी के 291 करोड़ के शेयर होने की घोषणा की। साथ ही ये भी बताया कि नवीन जैन कंपनी में सीधे तौर पर नहीं जुड़े हैं, लेकिन बड़े शेयर होल्डर होने की वजह से उनके हित जुड़े हुए हैं। पीएनसी इंफ्राटेक कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन नवीन जैन के बड़े भाई प्रदीप कुमार जैन हैं। नवीन जैन के भाई योगेश कुमार जैन और चक्रेश कुमार जैन कंपनी के प्रबंध निदेशक हैं। नवीन जैन खुद कंपनी में फुल टाइम डायरेक्टर रह चुके हैं। वक्त के साथ राजनीति में सक्रिय होते गए और कंपनी के ऑपरेशंस और कंट्रोल उनके भाइयों के हाथ में रहा, लेकिन कंपनी के शेयरों में बड़ी हिस्सेदारी आज भी बीजेपी सांसद नवीन जैन की है। यही वजह है कि कंपनी और कंपनी से जुड़े सांसद की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। सोचिए, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी उत्तर प्रदेश को वर्ल्ड क्लास हाईवे देने का दावा करते हैं, अमेरिका जैसे हाईवे की उम्मीदें जगाते हैं, लेकिन अमेरिका तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश के सबसे महंगे एक्सप्रेस वे की मरम्मत आज पेडेस्टल पंखों के भरोसे है।
1: झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है और अलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ओप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो।

0: आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत एक बार फिर से आपका, और आइए अब हम आपको दिखाएं कि कैसे पाकिस्तान में स्थिति हर दिन बिगड़ती जा रही है। आसिम मुनीर विद्रोह के चक्रव्यूह में फंस चुका है। बड़ी बात यह है कि आसिम मुनीर ने पाकिस्तान में तख्ता पलट का जो प्लान तैयार किया था वो मोहसिन नकवी की वजह से एक्सपोज हो गया। फिलहाल तो आसिम मुनीर शहबाज शरीफ के साथ सऊदी अरब के दौरे पर है और वहां उमरा कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इस समय विद्रोह की जो आग भड़की है वो आसानी से शांत होती नहीं दिख रही। तो आइए दिखाएं आपको पाकिस्तान में कैसे आसिम मुनीर अब बुरी तरह से फंस चुका है। सवाल यही है कि वो पाकिस्तान में तख्ता पलट करेगा या फिर उसी के साथ कोई गेम हो जाएगा।
1: पाकिस्तान में भड़का विद्रोह, चक्रव्यूह में आसिम मुनीर। पाकिस्तान में तख्ता पलट या फिर मुनीर के साथ होगा खेल। इमरान खान के समर्थकों की यलगार, 27 सितंबर का अल्टीमेटम। मौलाना फजलुर रहमान का मुनीर को चैलेंज, वर्दी उतारकर मैदान में आओ। पीओके, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में विद्रोह की भड़की आग। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की ये तस्वीरें पाकिस्तान से आई हैं और खुद शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर इन्हें पोस्ट किया है। आपको बता दें कि शहबाज और मुनीर 3 दिन के सऊदी अरब के दौरे पर हैं। इस यात्रा का मकसद ईरान में अमेरिकी हमलों के चलते रेड सी से हॉर्मुज स्ट्रेट तक फैले संघर्ष पर चर्चा बताया गया है, लेकिन इस दौरे पर शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर और दूसरे मंत्रियों के साथ उमरा किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर और प्रतिनिधि मंडल ने मस्जिद अल हरम का दौरा करते हुए वहां नमाज अदा की और फिर उमरे की रस्म अदा की। इस दौरान शहबाज और उनके मंत्रिमंडल को काबे के अंदर जाने का मौका मिला। पाकिस्तानी डेलीगेशन के लिए खास तौर से काबे का दरवाजा खोला गया। मक्का में पवित्र काबे का सुनहरा दरवाजा आम लोगों के लिए नहीं खोला जाता। अब सवाल यही है कि जिस तरह से आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साथ साथ दिख रहे हैं, क्या वाकई पाकिस्तान में दोनों के बीच ऐसे ही रिश्ते चल रहे हैं? पहले पाकिस्तानी पत्रकारों की जुबानी आसिम मुनीर का गेम और सच सुन लेते हैं।
2: ये कहानी जो है वो शुरू होती है इमरान खान की रजीम चेंज से। आ जाइए 9 मई के ऊपर, जब एक ड्रामा किया जाता है, इमरान खान की पार्टी को कलदम कर दिया जाता है। आ जाइए फरवरी के ऊपर 2024 में, जब इलेक्शन को धांधली की जाती है, फॉर्म 45 को 47 कर दिया जाता है, मौजूदा रजीम को लाया जाता है, जो 7 सीटें होती हैं उनको पूरी की पूरी हुकूमत पंजाब की दे दी जाती है और उनकी हुकूमत जो है उनको सेंटर में भी दे दी जाती है। आसिम मुनीर की मर्जी के ऊपर, जो कि इस वक्त नंगा बादशाह है, और नंगा बादशाह जो है उसके बारे में खबरें आती हैं कि दिन के वक्त वो कुरानी आयात पढ़ता है और शाम के वक्त वो चाचू विस्की बन जाता है। विस्की बड़ी पसंद है उनको फौजी के अंदर, तमाम फौजी जर्नैलों के अंदर ये एक बहुत बड़ी समझा जाता है कि इसको, खैरल खामी फौज के अंदर नहीं समझा जाता, अब खूबी ही समझा जाता है। लेकिन बहरहाल ये काम तो चल ही रहा होता है, लेकिन दरमियान में खबरें आती हैं कि आसिम मुनीर ने, जो बचपन से एहसास महरूमी का शिकार रहा है, उसको जो है वो मोहतरमा मरियम नवाज पसंद आ गई है, या मोहतरमा मरियम नवाज ने कुछ इस तरह के जेस्चर्स दिखाए हैं जो चाहती थी कि शायद वो पसंद कर ली जाए। लेकिन बहरहाल एक इसके ऊपर स्कैंडल, बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टॉर्म खड़ा हो जाता है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर से लोग कहते हैं कि मोहसिन नकवी तो साला है, वो पहले दिन से सबको पता है साला है, आधा घर वाला है। और मोहसिन नकवी और मरियम नवाज, जो मशूक आजम का भी, जिनको या मशूक आला का खिताब भी दिया जाता है फौज के अंदर, और आसिम मुनीर को मिस्त्री कहा जाता है, आसिम मुनीर साले और मशूक की आपस के अंदर लड़ाई शुरू हो जाती है और इसकी रिपोर्टिंग मैं आपको पिछले 2 साल में करता रहा हूं। और उस लड़ाई की वजह से आसिम मुनीर को इंटरवीन करना पड़ता है। जब आपका भाई जो है गलती करता है और एक्सपोज कर देता है, जब अवाम को पता चल जाता है, जब इरम आपा को घर में मिसेज आसिम मुनीर को मिसेज इरम को पता चलता है, आसिम मुनीर के घर के अंदर अमन खराब होता है, तो वैसे तो आसिम मुनीर साहब शाम के वक्त जाके अपने दोस्त उनके पहले से इंतजार कर रहे होते हैं आर्मी हाउस के पीछे कैंप ऑफिस के अंदर ड्राइंग रूम के अंदर जो है वो महफिल शराब जो चलती है वो तो एक अलहदा कहानी है, और घर तो जाते ही कम है, सिर्फ सोने के लिए जाते हैं या कैंप ऑफिस के अंदर भी उनका बेडरूम मौजूद है वहां भी सो जाते हैं, लेकिन बहरहाल वो इंटरवीन करते हैं और फिर मरियम नवाज और मोहसिन नकवी की मुलाकात होती है और मामला कुछ अरसे के लिए संभल जाते हैं, लेकिन अवाम की गालियों का रुख पूरी की पूरी फौज के ऊपर बेतहाशा होता है क्योंकि ये फौज लेके आई है मौजूदा निजाम को और मौजूदा निजाम जो है मुल्की मईशत संभालने में नाकाम रहा है।
1: जिस तरह से पिछले दिनों पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी के बयान आए हैं उससे इन रिश्तों में दरार साफ नजर आती है। मोहसिन नकवी आसिम मुनीर के रिश्तेदार भी लगते हैं और करीबी भी, और जब वो कहते हैं कि पाकिस्तान में सिस्टम फेल हो चुका है तो पाकिस्तान के अंदर से आवाज आने लगती है कि ये मुनीर का तख्ता पलट वाला प्लान है जिसमें मुनीर खुद राष्ट्रपति और मोहसिन नकवी को रबर स्टैम्प प्रधानमंत्री बनाने का सपना देखा जा रहा है।
3: आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे, इसने ऐसे का ऐसा रहना है क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने।
4: नकवी साहब हमारे बरखुरदार हैं लेकिन कुछ वक्त से पहले बालिग हो गए हैं, अब ये मालूम नहीं है कि उन्होंने ये बात जो है वो अपनी जाती कैपेसिटी में की है, लेकिन अपनी जाती हैसियत में बात करना कैसे मुमकिन है जबकि वो इस वक्त एक काबीना के मेंबर है, क्या वो ये कह सकते हैं या वजीर आजम पाकिस्तान ये कह सकता है कि ये मेरी आशीर्वाद पे हुआ है या मेरी इजाज़त से हुआ है या काबीना ये कह सकती है वफाकी के ये हमारी इजाज़त से हुआ है या किसी और तरफ से कोई बात हुई हो तो वो भी वाजह कर दी जाए। क्या मुल्क इस बात के लिए तैयार है कि सूबे बनाए जाएं? सूबे बनाना कोई बुरी बात नहीं है, इंडिया में भी बन रहे हैं और जगह भी बनते हैं, ये कोई केक तो नहीं है कि आप आराम से छुरी लेकर उसको बस जिस तरह चाहें काट दें। सूबे बनाने की बात के लिए क्या मुल्क तैयार है?
1: अब एक तरफ पाकिस्तान में सिस्टम फेल पर उबाल आया हुआ है तो दूसरी तरफ इमरान खान की रिहाई के लिए फिर से उनके समर्थक सड़कों पर हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सोहेल अफरीदी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी 27 सितंबर को इस्लामाबाद मार्च करेगी। उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि इस मार्च से पहले सरकार इमरान खान पर लगी पाबंदियां हटा ले, उनके डॉक्टर परिवार और वकीलों को उनसे मिलने दे, नहीं तो उनकी पार्टी इस्लामाबाद कूच करेगी।
5: मेरे नौजवानों, आज नौजवानों उसको आपकी जरूरत है, तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो, तो इंशाल्लाह ताला 27 सितंबर को इस्लामाबाद का रुख करेंगे।
1: खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो आस्तीन में पाले गए सांप अब खुद पाकिस्तान को डस रहे हैं। आतंकी गुट DTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के सिलसिलेवार हमलों ने फौज की नाक में दम कर रखा है जबकि बलूचिस्तान में सशस्त्र विद्रोह और आजादी का रण छिड़ चुका है। बलोच स्वतंत्रता सेनानी पाकिस्तानी कब्जे को उखाड़ फेंकने के लिए आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। लंबे समय से पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे बलूच राष्ट्रवादियों ने पिछले दिनों बलूचिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 11 अगस्त घोषित कर दिया है। बलूच नेताओं ने दुनिया भर में रह रहे बलूच नागरिकों से अपील की है कि वो 11 अगस्त को अपने घरों, बाजारों, दुकानों, शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर स्वतंत्र बलूचिस्तान का झंडा फहराएं, इस दिन को राष्ट्रीय एकता के रूप में मनाएं।
6: उस इलाकों में बगावतें थी, पूरा बलोच इलाका पाकिस्तान के इख्तियार से निकल चुका था, आज भी वहां पर पाकिस्तान हुकूमत की कोई रिट मौजूद नहीं है। لیکن ہم تو بلوچ علاقے کو رو رہے تھے, اب تو پشتون علاقہ بھی, پشتون علاقہ بھی خون میں نہا رہا ہے. پشتون علاقے میں ہم نے دو تین دن کے اندر 50 سے زیادہ لاشیں وصول کی ہیں.
1: سندھ میں پوری طرح سے سسٹم فیل ہو چکا ہے, لوگ دانے دانے کو ترس رہے ہیں, اور بدحالی کا عالم یہ ہے کہ حکومت نام کی کوئی چیز بچی ہی نہیں ہے. تو پی او کے میں ہو رہے چناؤوں کا بہشکار کرتے ہوئے منیر اور شہباز شریف کے خلاف آر پار کی جنگ چھیڑ دی ہے. یعنی منیر اب ودروہ کے چکربیو میں پوری طرح سے پھنس چکے ہیں. آج تک بیورو.
0: اور اب خبر سعودی عرب پر حملے کی. امریکہ اور ایران کے بیچ استھائی یدھ ورام اس سمے چل رہا ہے, لیکن سعودی عرب پر ایران کے پروکسی سنگٹھن ہوتی نے بڑا حملہ کر دیا. اس حملے میں کئی لوگوں کے گمبھیر روپ سے گھائل ہونے کی خبر آئی. اب سوال یہ ہے کہ ایران امریکہ کی بات چیت کے بیچ سعودی عرب پر حملے کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس حملے میں امریکہ کے لیے کوئی سندیش ہے؟ کیونکہ ہوتی کی یدھ میں سیدھی انٹری ٹرمپ کے اس اعلان کے بعد ہوئی جب انہوں نے کہا کہ بہت جلد دونوں دیشوں کے بیچ سمجھوتا ہو جائے گا اور ہرمز پر ایران کا نہیں بلکہ امریکہ کا نینترن ہے. تو کیا ایران نے اپنا وار پلان بدلا ہے؟ اب ایران نہیں بلکہ اس کے پروکسی نیٹورک مڈل ایسٹ پر حملہ کر رہے ہیں. کیا ہے مشتبہ کا نیا وار پلان؟ دیکھیے.

0: ईरान के इशारे पर सऊदी पर हमला। यमन में हूतियों ने बरपाया बारूदी कहर। हमले में यमन के 58 सैनिकों की मौत। सऊदी में हूती के हमले में 11 जख्मी। हॉर्मुज पर ट्रंप और मुश्तबा में फंसा पेच। ट्रंप झुकेंगे या ईरान करेगा आत्मसमर्पण। बीते कुछ दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध थमा हुआ है। न तो अमेरिका ने ईरान को निशाना बनाया और न ही ईरान की तरफ से हॉर्मुज पर कोई नया हमला हुआ है। दावा यही है कि अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थों के जरिए पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है, लेकिन इसी बातचीत के बीच हूती ने यमन और सऊदी अरब पर बड़ा हमला किया है। ये हमले एक वक्त पर एक साथ किए गए हैं। हूती ने यमन के सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से कहर बरपाया, जिसमें 58 सैनिकों की मौत हो गई। दूसरी तरफ सऊदी के नजरान में हुए हमले में 11 नागरिक जख्मी हुए हैं। यमन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस हमले का जवाब सही वक्त और सही जगह पर दिया जाएगा। वहीं सऊदी अरब ने हूती के नए हमलों से निपटने की रणनीति बना ली है। संभव है कि हूती के ठिकानों पर सऊदी अरब बहुत जल्द एयर स्ट्राइक करे, क्योंकि IRGC के इशारे पर हूती की तरफ से सऊदी के सैन्य ठिकाने और तेल रिफाइनरी पर हमला हो सकता है। अब सवाल यही है कि हूती युद्ध में क्यों कूदा। दरअसल हूती एक आतंकी संगठन है जो ईरानी सेना के इशारे पर काम करता है। ईरान ही हूतियों को हथियार, ड्रोन और मिसाइल तकनीक मुहैया कराता है। जब भी अमेरिका या इसराइल ईरान पर सैन्य दबाव बढ़ाते हैं, हूती अपने हमले तेज कर देते हैं। इसका मकसद अमेरिका इसराइल को एक साथ कई मोर्चों पर उलझाए रखना है, ताकि ईरान पर पड़ने वाला दबाव कम किया जा सके। माना जा रहा है कि बातचीत के बीच हूती का यमन और सऊदी अरब पर हमला इसी रणनीति का हिस्सा है। सऊदी पर हमले के चंद घंटे पहले ही ईरान ने धमकी दी थी, अगर अमेरिका ने ईरान पर दोबारा हमला किया तो अब की बार ईरान की मिसाइलें मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को नहीं बल्कि तेल रिफाइनरी और गैस प्लांट को निशाना बनाएंगी। इसी धमकी के बाद खाड़ी देश अमेरिका के संपर्क में है। बड़ी बात यह है कि ईरान न तो हॉर्मुज पर झुकने को तैयार है और न ही अमेरिका की शर्तों पर युद्ध विराम पर। तेहरान में लगा नया पोस्टर भी ट्रंप को यही संदेश दे रहा है। आप देख सकते हैं कि तेहरान में अमेरिका के खिलाफ बदले का संदेश देने वाले बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। एक पोस्टर में गिरती हुई स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखाई गई है। उस पर लिखा है, जिसने मेरे इमाम को मारा उसे क्यों न मारे। अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये हमारी बेइज्जती होगी। यहाँ इमाम से मतलब ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई से है। ईरानी सेना ने अमेरिका के नाम नई चेतावनी जारी करते हुए कहा है, हम किसी भी संभावित खतरे का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सेना लगातार अपनी ऑपरेशनल क्षमता बढ़ाने पर काम कर रही है। इसके लिए क्षतिग्रस्त सिस्टम को आधुनिक बनाया जा रहा है और घरेलू तकनीक के आधार पर नए सैन्य उपकरण शामिल किए जा रहे हैं। नई सैन्य सामग्री मिलने के साथ ही सेना अपने हथियारों और उपकरणों की तैनाती भी जरूरत के मुताबिक बदल रही है, ताकि किसी भी चुनौती का तुरंत जवाब दिया जा सके। ईरान हर हालात से निपटने का दावा कर रहा है। इसी बीच ईरान के साथ युद्ध विराम को लेकर ट्रंप का नया बयान सामने आया है। मुझे लगता है कि युद्ध जल्द ही खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि वो इसे बहुत लंबे समय तक जारी रख सकते हैं। हॉर्मुज को लेकर मैं ये नहीं कहना चाहता कि समझौता हो गया है, लेकिन अभी ये एक तरह से खुला ही है। इस पर हमारा नियंत्रण है। मैं ईरान के साथ बातचीत में शामिल हूँ। हम अच्छा काम कर रहे हैं। जल्द ही कोई समझौता हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि वो इसे ज्यादा देर तक जारी रख सकते हैं। अब ट्रंप यही संकेत दे रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत से स्थायी समाधान निकल आएगा, यानी बहुत जल्द दोनों मुल्कों के बीच स्थायी युद्ध विराम संभव है। ट्रंप मानते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच समझौता होते ही हालात पहले जैसे हो जाएंगे।
1: Oil down to less than two in many places like Iowa. Oil was down to gasoline was down at numbers that people hadn't seen in years. $1.85, $1.95. So it passed Tuesday. I was in Iowa at a stop and we had 195, another one, 185 a gallon. And we'll see those days pretty soon again, based on everything I see, as soon as the war ends. And I think it's going to end pretty soon. I don't think they can go much longer. Yeah.
0: तो क्या हथियारों की कमी की वजह से ट्रंप के सुर ईरान को लेकर बदल गए हैं? क्योंकि बीते कुछ दिनों में अमेरिकी मीडिया में छपी रिपोर्ट में यही दावा किया गया है कि ईरान युद्ध के चलते अमेरिका के पास लंबी दूरी की मिसाइलों का स्टॉक खत्म हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान जंग में अमेरिका अपने थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के करीब 80% और पैट्रियट सिस्टम के करीब आधे इंटरसेप्टर इस्तेमाल कर चुका है, यानी अमेरिका के पास ईरानी मिसाइलों को रोकने की क्षमता घट गई है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया है कि अमेरिका के पास हथियारों का बड़ा जखीरा मौजूद है और जरूरत के मुताबिक नए हथियार भी तेजी से तैयार किए जा रहे हैं। हथियारों की कमी से जुड़ी रिपोर्ट को लेकर ट्रंप ने पेंटागन के गोला बारूद भंडारों से संबंधित जानकारी लीक होने की जांच के आदेश दिए हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका के पास किसी भी अभियान के लिए पर्याप्त गोला बारूद मौजूद है। साथ ही चेतावनी दी है कि गोपनीय सैन्य जानकारी लीक करने वाले किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाएगा। दरअसल अमेरिका के कुछ अखबारों में दावा किया गया है कि अमेरिकी सेना के पास हथियार तेजी से खत्म होते जा रहे हैं। इनमें थार्ड और ATACMS जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें शामिल हैं। डिफेंस एक्सपर्ट भी मानते हैं कि ईरान युद्ध के दौरान अमेरिका की मिसाइलों का स्टॉक कम हुआ है, यहां तक कि ईरान की मिसाइलों को रोकने की क्षमता कम हुई है। ऐसे में अब अमेरिकी राष्ट्रपति के पास सिर्फ दो रास्ते बचे हैं, ट्रंप अपने पैर पीछे खींचे या फिर निर्णायक जंग के लिए सबसे बड़ा हमला करें। आज तक ब्यूरो।
2: दर्शक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों,
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: In association with
8: Cera Sanitaryware, it's your moment of Cera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: मोहन भागवत जी, अगर आप ये कह रहे हैं तो सबसे पहले अपने सहकार्यवाहक जो मुंबई में बोले जैन जी को संविधान विरोधी और राष्ट्र विरोधी, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं किया? ये दोहरी बातें करना बंद करें मोहन भागवत जी। आपके एक आरएसएस के आइडियोलॉग ने बोला कि अगर मैं वहां होता जंतर मंतर पे तो लाठियों और गोलियां चलवाता। मुंह देखी बात करते हैं मोहन भागवत जी, मुंह में राम दिल में नाथू राम वाले हैं ये लोग। अभी दो दिन पहले ही मुंबई के एक कार्यक्रम में किस प्रकार से इनके एक कार्यवाहक ने जैन जी के खिलाफ आग उगला, उन्हें देश विरोधी संविधान विरोधी बता रहे, तो यहाँ के ज्ञान दे रहे हैं। जनता आपके मुखौटे को पहचान चुका है, देश का नौजवान आरएसएस के मुखौटे को पहचान चुका है।
10: जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है।
11: समाजवादी पार्टी अराजकता, गैर लोकतांत्रिक और पूज्य जनेश्वर मिश्र जी के सिद्धांतों से भटक चुकी है। पूज्य जनेश्वर मिश्र जी ने कहा था कि जब सदन चल रहा हो तब लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जनता की आवाज को सदन में उठाना चाहिए। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से पूज्य लोहिया जी और पूज्य जनेश्वर मिश्र जी के सिद्धांतों से भटक चुकी है। वो केवल व्यक्तिवादी पॉलिटिक्स कर रही है और खासकर अराजकता, गुंडई और पूरी तरह से प्रदेश को दंगों में झोंकने वालों को समर्थन करने वाली पार्टी बन चुकी है। प्रदेश की जनता उन्हें नकार चुकी है और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ करके चल रही है।

0: है ना मैंने क्या सिखाया था, सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
1: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
2: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
3: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक मुक्त परीक्षा को लेकर जिन जी ने जो अलग जगाई उसकी गूंज अब तक सुनाई दे रही है।
6: आई बिलीव इन द शताब्दी ईयर, द 100th ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन टर्म्स ऑफ यंग पीपल इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन आंसर सेशन, नन अदर देन द चीफ ऑफ आरएसएस श्री मोहन भागवत जी।
5: यह मुंबई की तस्वीर है। मौका था इंडिया इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस यानी IIMUN की 15वीं वर्षगांठ का। इस मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जेन जी और जेन अल्फा के साथ संवाद किया और खुलकर अपनी बात रखी।
7: अभी जो हुआ है ग्रीवंस तो जेनाइन है, भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा इसलिए बात होती है, तो डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग के बाद नहीं होता तो क्या करना बात की बात।
5: भागवत की ये बातें जेन जी के आंदोलन पर सवाल उठाने वालों को भी करारा जवाब है।
7: अगर जेन जी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला रही।
8: बिल्कुल,
7: उसको ठीक करना चाहिए।
8: तो इसमें आप मानेंगे कि संवाद यदि पहले से शुरू हुआ होता तो ये बाद में विषय ज्यादा ऊपर जाता ही नहीं।
7: जो नहीं होना चाहिए वो जब होता है तो कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जाती, तभी होता है। किसकी है क्या है ये अलग बात है, लेकिन कमी तो रही है, ठीक हो जाएगी।
5: उन्होंने जेन जी को एंटी नेशनल कहने पर भी आपत्ति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जेन जी अपने ही लोग हैं, अपनी ही अगली पीढ़ी है।
7: जेन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है।
8: जी सर,
7: इस अपनेपन से डायलॉग का 7 महीने बोला, अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है। वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है, ये होता है, तो होना चाहिए। और जेन जी वगैरह ऐसी है ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता।
8: आप क्या मानते हैं?
7: विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब पूछा गया तब मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है।
8: अरे वाह, बढ़िया है।
7: और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है।
5: संघ प्रमुख भागवत की बातें जेन जी के सीधे दिल में उतर आई। नीट पेपर लीक के खिलाफ देश भर में प्रदर्शनों के बाद इसे संघ का युवाओं के साथ सबसे अहम संवाद माना जा रहा है। जंतर मंतर पर जेन जी के आंदोलन की वजह से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था। ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
9: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
11: आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ ही क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

रांची में चार मंत्रियों और छात्र प्रतिनिधि मंडल में आज की वार्ता खत्म। मुलाकात के बाद दोनों पक्षों ने कहा बातचीत सकारात्मक, लेकिन छात्रों का प्रदर्शन जारी। संसद में गतिरोध के बीच सोमवार तक स्थगित दोनों सदन। रिजिजू ने विपक्ष पर जड़ा आरोप, कांग्रेस ने 10, 11, 12 अगस्त के लिए अपने सांसदों को जारी किया व्हिप। एथेनॉल पर राहुल ने सरकार को घेरा, वीडियो पोस्ट में कहा दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली। पेट्रोलियम मंत्री पुरी का बयान, कुछ लोग खड़ा कर रहे हैं विवाद। सीएम योगी ने अखिलेश को फिर घेरा, कहा एसपी सरकार में लूटने निकल जाती थी चाचा भतीजे की जोड़ी, इन्होंने नहीं चलने दी विधानसभा। लगातार बारिश से दिल्ली एनसीआर में जगह जगह पानी भरा, कई जगह लगा लंबा लंबा जाम, 9 घर गिरे। पुष्प विहार में हुई सबसे ज्यादा बारिश।

0: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। मरने के 3 साल बाद भी दिल्ली के एक थाने के मालखाने में प्लास्टिक के चंद डब्बों में बंद श्रद्धा अपनी रिहाई का इंतजार कर रही है। इंतजार कर रही है कि कानून इजाजत दे तो उसका अंतिम संस्कार हो। 3 साल से कुछ ऊपर हो गए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलते हुए, लेकिन श्रद्धा केस का फैसला अब तक नहीं हो पाया। उधर तिहाड़ जेल में बैठे बैठे श्रद्धा का आरोपी कातिल आफताब पूनावाला एमए के एग्जाम देने की तैयारी में लगा है। ये दिल्ली का महरौली थाना है और इसी थाने के अंदर ये थाने का मालखाना है। पिछले 3.5 साल से इसी मालखाने में छोटे छोटे प्लास्टिक के बक्से में श्रद्धा वॉल्कर बंद है। महरौली थाने से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर ये साकेत कोर्ट है। 1 जून 2023 यानी लगभग पिछले 3 साल से इसी कोर्ट में श्रद्धा केस की सुनवाई हो रही है। इस सुनवाई के दौरान ऐसा लगभग 30 बार से ज्यादा हुआ जब प्लास्टिक के छोटे छोटे बक्से में बंद श्रद्धा को महरौली थाने के मालखाने से निकालकर इस कोर्ट में पेश किया गया। ये विकास वॉल्कर है, श्रद्धा के पिता। नवंबर 2022 में इन्हें पहली बार पता चला था कि इनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी बेटी श्रद्धा के इसी दोस्त यानी आफताब पूनावाला ने श्रद्धा का कत्ल करने के बाद लाश के टुकड़ों को महरौली के जंगलों में किश्तों में ठिकाने लगाया था। ये जानते हुए कि उनकी बेटी श्रद्धा अब इस दुनिया में नहीं है, श्रद्धा के नाम पर कुछ है तो बस छोटे छोटे से बक्से में बंद उसकी चंद हड्डियां। मगर इस बदकिस्मत बाप की बदनसीबी देखिए कि श्रद्धा तो छोड़िए, उसकी लाश के बचे कुचे टुकड़े तक उन्हें अंतिम संस्कार के लिए नहीं मिले। विकास वॉल्कर बेटी की अंतिम संस्कार की ख्वाहिश दिल में लिए ही पिछले साल फरवरी में इस दुनिया से चले गए। हालांकि मौत से पहले विकास वॉल्कर ने जो आखिरी इंटरव्यू दिया था, तब उन्होंने ये कहा था कि वो अपनी बेटी की अस्थियां तभी देख पाते हैं जब वो अदालत में पेश होते हैं, सबूत और केस प्रॉपर्टी के तौर पर तब वो अपनी बेटी को देखते हैं।
1: जहां रखे वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन कोर्ट में जब उसकी गवाही जो भी विटनेसेस है उनकी गवाही के तौर पे उसको पेश किया जाता है तभी मैं देखता हूँ।
0: पिता की मौत के बाद अब श्रद्धा के भाई श्री विकास ने केस लड़ने की जिम्मेदारी संभाल रखी है। पिता की जगह अब वो मुंबई से दिल्ली के चक्कर काट रहा है। विकास ने पिछले महीने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी लगाकर ये गुजारिश की थी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट को मुकदमे का निपटारा जल्दी करने का आदेश दिया जाए। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश देने से मना कर दिया।

0: असल में पिता की तरह अब बेटा यानी श्रद्धा का भाई भी चाहता है कि कम से कम उसे उसकी बहन की अस्थियां तो सौंप दी जाए ताकि वो उनका अंतिम संस्कार कर सके।
1: 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं और अभी तक कुछ ज्यादा प्रोग्रेस ऐसा लग रहा नहीं है, क्योंकि जिस गति से ये चल रहा है केस, उस गति से तो बहुत सबको दिक्कत दे रहा है। ये मेरी फैमिली को तो बहुत दिक्कत दिया है, और फिर देखा जाए तो और कितने साल कोई रुक सकता है। एक सिर्फ लास्ट राइट्स के लिए हम लोग को रुकना पड़ रहा है, जैसे कि मेरे सिस्टर के रिमेन्स जो है वो नहीं मिल पा रहे जस्ट बिकॉज ऑफ द केस प्रोसीडिंग, और हम लोग पूरी तरह ट्राई कर रहे हैं कि ये केस जल्द से जल्द हो सके।
0: न जाने ये कैसा मजाक है जो कानून के नाम पर पहले एक बेबस बाप के साथ और फिर अब भाई के साथ किया जा रहा है। जिस बाप की जवान बेटी को पहले ही छीन लिया गया हो, जिसके कत्ल और कत्ल के तरीके की कहानी को सुनकर श्रद्धा को न जानने वाले भी गमजदा हो जाते हो, उसी श्रद्धा के अंतिम संस्कार का इंतजार करते करते वो दुनिया से रुखसत हो गए।
1: इनिशियल स्टेजेस में पापा ये सब चीजें हैंडल कर रहे थे, होल एंड सोल वो अकेले पूरा केस हैंडल कर रहे थे, और इनिशियल स्टेजेस पे तो मेरा स्टडी चल रहा था, तो मुझे इन सब चीजों से बाहर रखा गया था जस्ट बिकॉज मुझे स्टडीज पे फोकस कर पाए। तो स्टार्टिंग में तो पापा ने यही बोल के रखा था कि हम लोग जल्द से जल्द करवाएंगे, और जैसे कि जब रिमेन्स मिले तभी लास्ट राइट्स हो पाए, बट वही चीज अभी कितना साल लगा रही है, 3 साल प्लस हो गए और अभी तक वो मिल नहीं पाया। और जैसे मैंने पापा की बात ध्यान में अभी भी रखी है कि वो लास्ट राइट्स बोन्स के बिना तो हो नहीं पाएगा, और शास्त्रों के हिसाब से भी वो गलत है।
0: ऊपर से सितम देखिए कि महरौली थाने के इस मालखाने से 4 किलोमीटर दूर साकेत कोर्ट के रास्ते 1200 किलोमीटर दूर मुंबई तक श्रद्धा कब पहुंचेगी, ये अब भी कोई बताने वाला नहीं। श्रद्धा केस की सुनवाई करने वाला फास्ट ट्रैक कोर्ट कितना फास्ट है ये इसी से समझ लीजिए कि 3 साल हो चुके हैं लेकिन अब भी न ट्रायल पूरा हुआ है न सारे गवाहों की गवाहियां खत्म हुई है। श्रद्धा के भाई के लिए सबसे तकलीफ दे घड़ी वो होती है जब अदालत में सुनवाई के दौरान उसके सामने प्लास्टिक के बक्से में उसकी बहन की हड्डियां लाई जाती है।
1: जी मुझे तो यही बुरा लग रहा है कि हर बार इतने टाइम ये केस प्रॉपर्टी जो बोन्स और बाकी सब है ये सामने खोली जा रही है, और मतलब विटनेसेस के सामने ये बयान दे रहे हैं और ये सब प्रोसेस हो रहा है, तो मुझे यही लग रहा है कि ये और कितना टाइम लेगा और कितने टाइम खोला जाएगा।
2: जब श्रद्धा के बोन्स खोले जाते हैं उस बेटी के वो बाल जो घने से जो बाल हैं वो जो लिटरली बता रही हूँ एज ए ह्यूमन बीइंग ना अंदर से ना मतलब एक कहा जाता ना कि एक कलेजा कांपता है कि जो बेटी
3: किस चीज में लेके आते हैं सीमा जी, वो
2: बॉक्सेस हैं प्लास्टिक के बॉक्सेस हैं उसमें
3: प्लास्टिक के बॉक्सेस
2: हाँ बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस के अंदर भी जो पॉलिथिन है उसमें रख करके वो बॉन्स है वो एनवेलप में कागज के एनवेलप उनके कागज के एनवेलप के बाद ऊपर से बॉक्स में कवर कर रखा है।
0: कायदे से हमारा देश का जुडिशियल सिस्टम एक है, फास्ट ट्रैक कोर्ट के काम करने का तरीका भी एक है, फिर क्या वजह है कि कोलकाता आरजीकर अस्पताल की जूनियर डॉक्टर के रेप और मर्डर केस का फैसला 2 महीने में ही हो जाता है, मगर कोलकाता से दूर दिल्ली में एक दूसरा फास्ट ट्रैक कोर्ट श्रद्धा केस की सुनवाई में 3 साल ले लेता है, फिर भी फैसले का पता नहीं कब आएगा। ये वही श्रद्धा केस था जो जब खुला तो पूरा देश श्रद्धा की कहानी सुनकर सन्न रह गया था। न्यूज चैनल और अखबारों में लगातार ये खबर सुर्खियों पर टंगी थी, नेता पुलिस सब बढ़ चढ़ कर दावे कर रहे थे, फिर सभी ने इस केस को भी फास्ट ट्रैक से उतार कर शायद मालगाड़ी के ट्रैक पर डाल दिया। कैसे आइए आपको बताता हूं। श्रद्धा मर्डर केस का खुलासा 12 नवंबर 2022 को हुआ था जब दिल्ली के महरौली इलाके से आफताब पूनावाला पकड़ा गया। आफताब की गिरफ्तारी के बाद पता चला कि श्रद्धा का

0: 18 मई 2022 को ही कर दिया गया था, मगर श्रद्धा की लाश नहीं मिली थी क्योंकि आफताब ने श्रद्धा की लाश के टुकड़े कर उन्हें महरौली के किराए के घर में फ्रिज में रख दिया था। फिर अगले 3 महीने तक वो किश्तों में उन टुकड़ों को फ्रिज से निकाल निकाल कर महरौली के जंगलों में फेंकता रहा। क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा बीत चुका था, लिहाजा पुलिस को लाश के नाम पर श्रद्धा की चंद हड्डियां ही मिली। डीएनए टेस्ट से ये साबित हो गया कि हड्डियां श्रद्धा की ही है।
1: 18th of May 2022 में श्रद्धा का मर्डर किया गया है, वो डेट है। उसके बाद से अगर हम जोड़ेंगे तो ऑलमोस्ट 4 साल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, कंप्लीट हुई हो गए। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ। इन्वेस्टिगेशन जनरली चार्जशीट फाइल करने का जो टाइम पीरियड होता है 90 डेज होता है, इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगा। उसके पीछे रीजन ये भी था कि श्रद्धा के जो बॉन्स हैं, जिस तरीके से उसने पीसेस करके उनकी बॉडी को डिस्पर्स किया महरौली के जंगलों में, तो ढूंढने में ही काफी समय लगा। और उसके बाद जब चार्जशीट फाइल हुई है, तो चार्जशीट फाइल हुई है 24/1/2023 को, जनवरी में फाइल हुई है। और माना यह जाता है कि जिस दिन से चार्जशीट फाइल हुई उसी दिन से हमारा ट्रायल जो शुरू हो जाता है, तब से ये हमारा मैटर ट्रायल पर है 2023 से लेकर के, 3 साल हो गए।
0: मीडिया की सुर्खियों के चलते श्रद्धा केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेज दिया गया। FIR दर्ज होने के 75 दिन बाद 24 जनवरी 2023 को दिल्ली पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट दाखिल होने के बाद लगभग 3 महीने फास्ट ट्रैक कोर्ट ने चार्ज फ्रेम करने में ही लगा दिया। 9 मई 2023 को चार्ज फ्रेम हुआ, मगर चार्ज फ्रेम होने के बाद भी ट्रायल शुरू करने के लिए अदालत ने लगभग 1 महीने का और वक्त लिया। 1 जून 2023 से श्रद्धा केस के मुकदमे की सुनवाई इसी साकेत कोर्ट में शुरू हुई। उम्मीद थी कि 6-9 महीने में फैसला आ ही जाएगा। निर्भया केस में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 9 महीने में अपना फैसला सुना दिया था, लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। मुकदमे की कार्यवाही बीते 3 सालों से जारी है और आलम यह है कि अभी भी केस से जुड़े तमाम गवाहों की गवाहियां ही खत्म नहीं हुई है। क्रॉस एग्जामिनेशन तो बात की बात है।
2: हमें लग रहा था कि 1 साल या फिर उससे भी कम समय में होना चाहिए था, बट ये 3 साल और प्लस हो चुका है और अभी तक मेजर ऐसा कोई अचीवमेंट हुआ नहीं है ये केस में एज सच, क्योंकि केस फाइल अभी तक पूरा कंप्लीट हुआ ही नहीं। और केस फाइल कंप्लीट होने के बाद उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स पे चला जाएगा, तो देखा जाए तो और कितना टाइम लगेगा कुछ आइडिया नहीं है। और बहुत महीने तो लग सकते हैं, मुझे आगे का टाइम तो पता नहीं कितना और लग सकता है।
0: अब सवाल यह है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा होने के बावजूद इतना वक्त क्यों लग रहा है, तो इसकी एक बड़ी सीधी सी वजह है। शुरुआत में श्रद्धा का केस जिस फास्ट ट्रैक कोर्ट में था, उस कोर्ट को कहीं ये डायरेक्शन ही नहीं था कि इस मुकदमे की सुनवाई डे टू डे होगी या आम केस की तरह। शुरुआत के करीब 2 साल बीत जाने के बाद ये तय हुआ कि सुनवाई डे टू डे होगी, लेकिन डे टू डे की सुनवाई में भी एक खेल हो गया। कहने को सुनवाई डे टू डे थी, लेकिन सुनवाई के लिए रोजाना सिर्फ 2 घंटे का वक्त दिया गया, दोपहर 2 से 4 बजे तक। आरोपी आफताब के वकील ने इसका भी भरपूर फायदा उठाया। उन्हें पता था कि सुनवाई 2 घंटे ही चलेगी, इसीलिए वो ज्यादातर कोर्ट में जानबूझकर 15 मिनट, आधा घंटा और कई बार तो 45 मिनट तक देरी से पहुंचते। अब जाहिर है ऐसे में सुनवाई घंटा या 1.5 घंटा ही हो पाती। केस को डिले करने का इससे बेहतर टैक्टिक्स क्या होता। इतना ही नहीं, केस में वकील के साथ साथ आरोपी आफताब पूनावाला ने भी कम कमाल नहीं दिखाया। अकेले आफताब की वजह से ऐसा कई बार हुआ जब सुनवाई टालनी पड़ी। अभी पिछले महीने ही 20 जुलाई को कोर्ट में इसलिए सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि आफताब को उस दिन MA का एग्जाम देना था। वो इग्नू से जेल में रहते हुए पढ़ाई कर रहा है। इससे पहले कभी डेंटिस्ट के पास जाने के नाम पर, तो कभी एंजाइटी के लिए डॉक्टर को दिखाने के नाम पर भी आफताब सुनवाई को टलवाता रहा है।
2: 20th जुलाई को कोर्ट हियरिंग थी, डे टू डे बेसिस से 20th को चालू हो रही थी, 20th ऑफ जुलाई को। और उसी दिन अक्यूज ने एप्लीकेशन दिया था हायर स्टडीज के एग्जाम्स के लिए, और उसी के कारण वो डेट कैंसिल करवाई गई थी और 21st को रखा गया था। तो ये सब ऐसी चीजें हैं, जैसे कि आपने बोला एग्जाम्स के लिए या फिर डेंटल हो या फिर कोई भी लीजर रीजन हो, तो उस कारण ये उसको मतलब ये नहीं देना चाहिए, छूट नहीं देनी चाहिए हर एक चीज को लेकर, क्योंकि ये बहुत सीवियर केस है, बहुत जनों को मतलब इससे तकलीफ हो रही है और ये इतना लाइटली ले रहे हैं, और मतलब इसी कारण की वजह से डिले हो रहा है ये केस।
1: क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हम क्रिमिनल्स के लिए बैठे हुए हैं। आपने जो श्री विकास वालकर जी से सवाल किया, जो कि अकेला ये बेटा है उस परिवार में जो अब अपनी सिस्टर के लिए फाइट कर रहे हैं, कि एक अपराधी जिसने इतना हीनियस क्राइम किया, हम जानते हैं कि जब तक किसी को कोई इनोसेंट कंसीडर करती है कोर्ट या हमारा सिस्टम, जब तक उसका कन्विक्शन नहीं हो जाता तब तक अनटिल प्रूवन गिल्टी वाला कॉन्सेप्ट चलता ही है कि वो इनोसेंट हम कंसीडर करेंगे। लेकिन ये हेयर लाइन तो आपको खींचनी पड़ेगी ना कि आप कितना उसके लिए लीनियंसी दिखाएंगे, कितना आप लिबरल हो जाएंगे। आप उसको एग्जाम देने के लिए परमिट कर रहे हैं, टीथ के ट्रीटमेंट के लिए आप परमिट कर रहे हैं, आप उसके एंजाइटी, वो बता रहा है कि उसको एंजाइटी इश्यूज हैं, तो आप उसको परमिट कर रहे हैं, हर चीज के लिए आप परमिट कर रहे हैं।
0: कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही श्रद्धा के भाई श्रीजय का कई बार आफताब पूनावाला से आमना सामना हुआ। हालांकि कभी दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन जब जब श्रीजय आफताब को देखता उसे बहुत गुस्सा आता।
3: कभी कोर्ट में आपका आफताब पूनावाला के साथ भी आमना सामना हुआ?
2: हर बार हुआ है, मतलब मैं जब भी गया हूँ हर बार हुआ है। रेयरली ऐसा हुआ है कि अक्यूज्ड अटेंड नहीं कर पाए फॉर सिक्योरिटी रीजंस और अदर रीजंस, या मोस्टली तो हुआ है।
3: कभी कोई ऐसा मौका जब कोई बातचीत की हो, या उसने कभी सॉरी या पछतावा कुछ बोला आपसे?
2: बिल्कुल भी नहीं, उसके चेहरे पर एक्सप्रेशंस पछतावे की या फिर बुरा लगने की कि फैमिली किस दौर से गुजर रही है, ऐसा कुछ भी उसके चेहरे पर नहीं लग रहा था। उल्टा वो कोर्ट में तो मतलब आराम से बैठा हुआ था, जैसे कि हम लोग दोस्तों के साथ बैठते हैं और बात करते बातचीत करते, वैसे ही लग रहा था वो। उसको कुछ टेंशन नहीं है कि उसने क्या किया है, उसको कुछ आइडिया ही नहीं, ऐसा वो बर्ताव करता है कभी भी।
3: इससे पहले कभी मुंबई में जब श्रद्धा
2: जी,
3: थी
2: तब
3: तब
2: आपकी
3: आपकी
2: कभी
3: कभी
2: आफताब
3: आफताब
2: से
3: से
2: इस
3: इस
2: केस
3: केस
2: से
3: से
2: पहले
3: पहले मुलाकात
2: मुलाकात
3: हुई
2: हुई
3: थी?
2: थी?
3: नहीं
2: जी, केस से पहले हुई थी। जब ही मेरे मॉम का देहांत हुआ था, तभी तभी दीदी आई थी और उसके साथ अक्यूज भी वो आफताब भी आया था, और तभी मुलाकात हुई थी और तभी बातचीत हुई थी।
3: आपने आफताब से तो बात नहीं कभी कोशिश की थी कोर्ट में पूछने की तुमने ऐसा क्यों किया, या कभी लगा कि जाकर पूछना चाहिए?
2: कोर्ट में तो मुझे कभी भी ऐसा लगा नहीं, क्योंकि मुझे उसका चेहरा देख के बहुत गुस्सा आता था और मैं कुछ मतलब उससे बात करने के हालात में ही नहीं था।
0: श्रद्धा की वकील के मुताबिक कोर्ट के अंदर ऐसा कई बार हुआ जब मुलजिम के कटघरे की जगह आफताब कोर्ट रूम में सबसे अगली बेंच पर, जहां वकील बैठते हैं, आकर बैठ जाता। इस बारे में उन्होंने बाकायदा जज से शिकायत भी की।
1: एक बार ऐसा माहौल बना कि एज ए कंप्लेनेंट एडवोकेट और जज साहब हम लोग आमने सामने थे उसमें। मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि फर्स्ट लाइन जो है, फर्स्ट रो है, वो एडवोकेट्स के लिए रिजर्व है। एक्यूज्ड आपता पूनावाला पैरेलली एडवोकेट के बैठ रहा है फ्रंट पर। हमारा ऑब्जेक्शन ये था। बाद में उस
3: तो
1: हमारे
3: फिर जज ने क्या कहा, कोर्ट ने क्या कहा?
1: आगे तो कोर्ट ने यही कहा कि हम कंटेम्प्ट में, अगर आप बार बार हमें इरिटेट करेंगी इससे क्या प्रॉब्लम है, अल्टीमेट प्रूवन गिल्टी का कॉन्सेप्ट है, तब तक हम इनोसेंट कंसीडर करके चलते हैं, तो डेफिनेटली आप करिए, लेकिन हेयर लाइन आपको खींचनी पड़ेगी। अगर वो अंटिल प्रूवन गिल्टी तो फिर आप उसको फ्री मूव करने के लिए परमिशन दे दीजिए, उसको बेल ग्रांट कर दीजिए, उसको जेल से बाहर जब वो पनिशमेंट उसका होगा तब आकर के जेल भेज देंगे, राइट? फिर तो यही इंटरप्रिटेशन होगी सर उसकी।
0: अभी भी केस का आलम यह है कि इसमें जो सबसे अहम गवाह हैं, उनकी गवाहियां होनी बाकी हैं, जिनमें केस के आईओ या डीएनए करने वाले डॉक्टर भी शामिल हैं।
3: कि कितने मतलब अभी आपको क्या लगता है, क्योंकि आप डेली हियरिंग में भी शामिल हो रही हैं, इतना वक्त तो हो चुका है, कितना और वक्त, कितने महीने, कितने हफ्ते, कितने दिन, जब आपको लगता है कि शायद कोर्ट का फैसला है?
1: प्रोसीडिंग एक साल में हमारे 134 विटनेस इसमें एग्जामिन हुए। 2024 के बाद से प्रोसीडिंग हमारी स्लो हुई और हमारे सिर्फ 35 विटनेस एग्जामिन हुए 2 साल में. अभी क्या है कि जब ये मैटर थोड़ा सा आप लोगों ने जब मीडिया में ये चीजें आती हैं कि उस बेटी का जो बॉडी पार्ट्स हैं जो रिमेन्स है वो केस प्रॉपर्टी है इस केस में, और जब तक इस केस प्रॉपर्टी के रूप में उनके जो रिमेन्स हैं उनको रिलीज नहीं किया जाएगा तब तक उनके लास्ट राइट को परफॉर्म नहीं कर सकती फैमिली, और वो तब तक रिलीज नहीं किए जा सकते हैं दिए जा सकते हैं फैमिली को जब तक ये ट्रायल कंक्लूड नहीं हो जाएगा. क्योंकि ड्यूरिंग फाइनल आर्गुमेंट ड्यूरिंग जो भी एविडेंसेस चल रहे हैं जो क्रॉस हो रहा उसमें भी बॉडी पार्ट्स को खोला जाता दिखाया जाता कि ये इतने जो बोन्स थे ये बरामद हुए, ये हेयर है श्रद्धा के, ये उनका जॉ लाइन है, ये सब.
3: कितनी बार अब तक की इस हियरिंग में इस बॉडी पार्ट्स को कोर्ट के सामने पेश किया गया, खोला गया, दिखाया गया, रफली एक आइडिया?
1: देखिए एक रफली आइडिया तो मैं ये कहूंगी समझर कि जो रिलेवेंट उसमें एग्जिबिट है विटनेसेस जो रिलेवेंट विटनेस है जैसे आयो जिन्होंने रिकवर्ड किया, जैसे फैमिली मेंबर्स जो कंप्लेनेंट हमारे श्री विकास भाई साहब जो हमारे बीच नहीं है वो उन्होंने उनके सामने वो बोन्स बरामद हुए, जैसे श्री जय विकास वालकर जो कि ब्रदर ऑफ डिसीज्ड है श्रद्धा के ब्रदर हैं, तो जितने लोग इसमें जो FSL की टीम है जिसमें जो जिन्होंने DNA टेस्ट किया है एग्जामिन किया है और इसमें जो भी पुलिस ऑफिसर से लेकर के फॉरेंसिक की टीम इन सभी के जो उस बॉडी पार्ट्स के उन रिमेन्स के जो भी विटनेसेस हैं जब बरामदगी हुई वहां पर जब जिन्होंने कलेक्ट किया है जिन्होंने उसको एग्जामिन किया है तो आप मान के चलिए कि मल्टीपल टाइम्स आप कितना भी कहेंगे तो मैं कहूंगी कि कम से कम इसमें 30 times से अबव भी जा सकते.
3: एक चीज जानना चाहता हूं मैं आपसे और बाकी लोग भी जानना चाहते हैं, एक केस प्रॉपर्टी ये हम सब जानते होता जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आया, लेकिन एक ह्यूमन रिमेन्स एक लाश उसकी हड्डियां वो भी नहीं है मतलब हैं, उसका DNA हो गया, उसके सारे रिपोर्ट्स आ गए, ठीक है, और बाकायदा वो सारी चीजें अब हैं पेपर पे भी है, तो फिर उसको मालखाने में या केस प्रॉपर्टी कहकर रखना और फैमिली को ना देना ताकि वो लास्ट राइट ना कर सकें, ये क्या सही है? क्योंकि आपके पास बाकी दस्तावेज फॉरेंसिक रिपोर्ट DNA की रिपोर्ट डॉक्टरों की रिपोर्ट सब कुछ तो है, उस रिपोर्ट पे भी आगे कार्रवाई हो सकती है.
1: बिल्कुल, देखिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ना बहुत रिलेवेंसी रखते हैं हमारे किसी भी केस में, लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और उस पार्ट को जिसको डॉक्टर ने एग्जामिन किया जिसको कलेक्ट किया गया किसी आई विटनेस के सामने उस पर्टिकुलर रिमेन को, तो फिर उस विटनेस को जब एग्जामिन किया जा रहा है तो उसको वो बॉडी पार्ट दिखाए जाते हैं, वो बार बार खोले जाते हैं कोर्ट रूम के सामने कि यही वो तेरा जो है बोन्स थी, ये कलेक्ट किए गए थे, ये कहां से मिली थी, किस जगह से मिली थी, ये मेहरौली के जंगल, तो ये सारी चीजें तो जितने भी विटनेसेस उन वॉन्स से रिलेटेड है रिलेवेंट है तो वो तब तक नहीं दिया जा सकता है. क्योंकि इसमें क्या होगा अगर सपोज दैट कोर्ट इसमें रिलीज कर भी देती, हमने जो कि एप्लीकेशन लगाई थी, मेरे एप्लीकेशन का पर्पस शुरुआत में ही जब हमारा ट्रायल शुरू हुआ था कि ये ट्रायल हमारा फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, SPG ट्रायल हो जिससे हम अपनी बेटी श्रद्धा की जो लास्ट राइट है उनको परफॉर्म कर सकें, भाई साहब विकास जी की तरफ से हमने ये एप्लीकेशन मूव की थी, तो कोर्ट ने उसको स्पीडी भी किया, बाद में ये डिले होता चला गया, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि हम रिलीज कर देते हैं इसको, लेकिन जो विटनेसेस बचे हुए हैं वो विटनेसेस के जो एविडेंसेस है जो उनके बयान है जो उनका क्रॉस है उस पर डिफेंस को बेनिफिट मिलेगा. फिर कि सपोज दैट इसमें जो आयो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, अगर वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ये नहीं दिखा पा रहे कि यही वो बॉन्स है तो फिर वो कैसे प्रूफ कर पाएंगे? तो जब तक सारे विटनेसेस क्रॉस नहीं हो जाते, एविडेंस नहीं हो जाते, वो एग्जामिन नहीं हो जाते, इवन की ड्यूरिंग फाइनल आर्गुमेंट भी इस बॉडी पार्ट्स को फिर से ओपन किया जाएगा कोर्ट रूम.
0: मनीषा झा और सुप्रतीम बैनर्जी के साथ शम्स ताहिर खान आज तक. उम्मीद की जा रही है कि ये साल खत्म होने से पहले पहले शायद मुकदमे का फैसला हो जाए, लेकिन लड़ाई अभी लंबी है. फास्ट ट्रैक कोर्ट के बाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों अदालतों में मेरिट के हिसाब से इस केस की सुनवाई होगी, यानी आफताब पुनावाला के पास अभी अच्छा खासा वक्त है. वो जेल में रहकर भी अभी कई और डिग्रियां हासिल कर सकता है। श्रद्धा के भाई का कहना है कि फैसले में बेशक देरी हो रही, लेकिन वो चाहता है कि जिस तरह आफताब ने श्रद्धा को मारा, ठीक वैसी ही आफताब को भी मौत मिलनी चाहिए।
2: पापा तो यही चाहते थे कि जैसा अक्यूज आफताब ने दीदी के साथ किया था, वैसा ही उसके साथ हो, जो कि एक एग्जाम्पल सेट हो जाए कि कोई भी हिम्मत ना कर पाए ऐसा कोई हमारी बहनों के साथ बुरा करने में। और मुझे भी यही लगता है कि उसको डेथ पेनल्टी तो मिनिमम होनी ही चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए।
0: हालांकि श्रद्धा की वकील को भरोसा है कि इस साल शर्तिया कोर्ट का फैसला आ जाएगा और ये फैसला उनके हक में होगा।
1: मैं फैसला 100% हमारे फेवर में होगा और इस अपराधी को सजा मिलेगी। मैं जितना इस चीज को लेकर के कॉन्फिडेंट हूँ कि इसको इस साल पनिशमेंट ये ट्रायल कंक्लूड होगा, उतना ही मैं इस चीज को लेकर के कॉन्फिडेंट हूँ कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली इसने जो क्राइम किया है, हीनियस क्राइम किया है, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी का केस है, तो डेफिनेटली ये एज पर अगर मेरिट जाया जाएगा तो डेथ पेनल्टी से तो कम नहीं होना चाहिए, किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए।
0: पर कहानी इस साल भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो भी फैसला आए उसे कोई ना कोई हाई कोर्ट में चैलेंज करेगा। अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट आफताब पूनावाला को सजाए मौत देता है तो उस सूरत में भी उस फैसले पर मुहर हाई कोर्ट को ही लगाना है। हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट, इसके बाद न जाने कितने पिटीशन, रिव्यू पिटीशन। जाहिर है श्रद्धा को मरकर भी अभी कई अदालतों के चक्कर काटने होंगे, और जब तक ये चक्कर खत्म नहीं हो जाता तब तक श्रद्धा के भाई को भी मुंबई से दिल्ली के न जाने कितने ही चक्कर काटने होंगे। इधर श्रीजय विकास वॉलकर अपनी बहन के बाद पिता और दादी को भी खोकर इंसाफ की खातिर मुंबई से दिल्ली के चक्कर काट रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ असली गुनहगार यानी आफताब पूनावाला आराम से तिहाड़ में पढ़ाई कर रहा है, एग्जाम दे रहा है। उसे भी पता है कि अपने देश में इंसाफ जल्दी नहीं मिलता। उसे ये भी पता है कि अभी तो फास्ट ट्रैक कोर्ट एक शुरुआत है, अगर गलती से फांसी की सजा मिल भी गई तो फांसी का वो फंदा उसके गले से न जाने कितने बरस तक दूर रहेगा। पर क्या सचमुच आफताब पूनावाला को श्रद्धा मर्डर केस में सजाए मौत मिलेगी? क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट की नजर में ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की कैटेगरी में आएगा? आरजी कर अस्पताल की जूनियर डॉक्टर के केस में हाई कोर्ट के फैसले ने इस सवाल को और गहरा बना दिया है। मनीषा झा और सुप्रतीम बैनर्जी के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
5: अगर इतिहास में जाकर इंडिया टुडे की तरह मुझे किसी खबर को कवर करने का मौका मिला तो मैं इमरजेंसी कवर करना चाहूंगा। 7 अगस्त को पीवीआर आईनॉक्स में देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, आई विटनेस टू अ नेशन।
4: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

रांची में चार मंत्रियों और छात्र प्रतिनिधिमंडल में आज की वार्ता खत्म। मुलाकात के बाद दोनों पक्षों ने कहा बातचीत सकारात्मक लेकिन प्रदर्शन जारी। संसद में गतिरोध के बीच सोमवार तक स्थगित दोनों सदन। रिजिजू ने विपक्ष पर जरा आरोप, कांग्रेस ने 10, 11, 12 अगस्त के लिए सांसदों को जारी किया व्हिप। एथेनॉल पर राहुल ने सरकार को घेरा, वीडियो पोस्ट में कहा दाल में काला नहीं पूरी दाल काली। हरदीप सिंह पुरी बोले कुछ लोग खड़ा कर रहे हैं विवाद। सीएम योगी ने अखिलेश को घेरा, कहा एसपी सरकार में लूटने निकल जाती थी चाचा भतीजे की जोड़ी, इन्होंने नहीं चलने दी विधानसभा। लगातार बारिश से दिल्ली एनसीआर में जगह जगह पानी भरा, कई जगह लंबा लंबा जाम लगा, 9 घर गिरे। पुष्प विहार में सबसे अधिक बारिश हुई।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। बिहार के बाकीपुर में बीजेपी को झटका देने के बाद मुंबई पहुंचे जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर की महाराष्ट्र की राजनीति में सरगर्मी बढ़ा देने वाली एंट्री हो गई। प्रशांत किशोर ने एनसीपी सुप्रीमो और डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार और उनके बेटे पार्थ पवार के साथ करीब 6 घंटे की मैराथन बैठक की, जिसके बाद ये प्रश्न उठ रहा है कि क्या प्रशांत किशोर अब एनसीपी आलाकमान को नई दिशा और चुनावी धार देने वाले हैं, और क्या एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरण बनने जा रहे हैं।

0: क्या सुनित्रा पवार की एनसीपी को नई धार देंगे प्रशांत किशोर? ये सवाल इसलिए क्योंकि प्रशांत किशोर ने सुनित्रा पवार और उनके सांसद बेटे पार्थ पवार के साथ 6 घंटे की मैराथन बैठक की, जिसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं।
1: बिहार के बाकीपुर उपचुनाव सीट पर बीजेपी को शिकस्त देने के बाद जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर अचानक मुंबई पहुंचे। मुंबई के देवगिरी बंगले पर, जहां पर महाराष्ट्र राज्य की उपमुख्यमंत्री सुनित्रा पवार रहती है, उनसे मिलने पहुंचे। बुधवार देर रात एनसीपी के सांसद और अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार के साथ, कहा जा रहा है कि चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली से मुंबई प्रशांत किशोर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने सुनित्रा पवार के साथ लगभग 6 घंटे लंबी बैठक की। अब बताया जा रहा है कि अजीत पवार के गुजरने के बाद सुनित्रा पवार अपनी पार्टी पर अपना वर्चस्व और नेतृत्व बनाने के लिए काफी कोशिश कर रही है। इस बीच सिर्फ पार्टी की अंदरूनी खींचतान ही नहीं, बल्कि सहयोगी दल बीजेपी से आ रहे सियासी दबाव का भी उन्हें सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में एक कुशल रणनीतिकार के रूप में प्रशांत किशोर, उनके साथ आना बेहद मायने रखता है।
0: मुंबई में डिप्टी सीएम सुनित्रा पवार के देवगिरी निवास पर हुई इस बैठक में खबर है कि आगामी स्थानीय निकाय चुनावों और संगठन को मजबूत करने पर लंबी चर्चा हुई। ऐसी अटकलें हैं कि प्रशांत किशोर एनसीपी के लिए राजनीतिक सलाहकार बन सकते हैं। हालांकि बिहार और यूपी में बीजेपी के खिलाफ राजनीति करने वाले प्रशांत किशोर का महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोगी दल के साथ काम करना विरोधियों के निशाने पर आ गया है। कांग्रेस इसे प्रशांत किशोर का दोहरा रवैया बता रही है।
2: अजब किशोर की गजब कहानी, खुद की पार्टी की विचारधारा जनसुराज की बीजेपी के खिलाफ, चुनाव भी उनके खिलाफ ताकत से लड़ेंगे, बीजेपी की हर खामियां दिखाएंगे और धंधे के लिए एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार जो कि गठबंधन में बीजेपी के साथ, उसकी स्ट्रेटेजी तय करेंगे, यानी यहां बीजेपी के साथ। तो ये समझ के बाहर की बात है। आपने कहा था कि मैंने अभी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट का रोल छोड़ दिया है, मैं सीधे राजनीति में आया हूं और अभी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बना रहे हैं बीजेपी के अलायंस के पार्टनर के साथ, तो ये थोड़ा समझ के बाहर है। आप एक्चुअली हो कहां?
0: कांग्रेस के हमले के बीच बीजेपी ने इस मुद्दे पर अपना रुख साफ कर दिया। बीजेपी का कहना है कि सलाहकार तय करना एनसीपी का अंदरूनी मामला है, लेकिन महायुति गठबंधन में पहले की तरह तालमेल बना रहेगा।
3: त्यांच्या पक्षाचा जो काही निर्णय घ्यायचे अधिकार त्यांना आहेत, ते सुनित्रा पवारजींना आहेत, परंतु महायुतीमध्ये कुठल्याही शंका कुशंका डॅमेजेस होणार नाही याची काळजी घेण्याची संपूर्ण जबाबदारी आमची सर्वांची आहे। म्हणजे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी आणि देवेंद्रजी आणि सुनित्रा पवारजी या सर्वांनी आणि आम्ही सर्वांनी हा या ठिकाणी एक आचारसंहिता बांधलेली आहे सर्वांनी आम्ही, की महायुतीला समजा शिवसेनेला भाजपाने कुठल्याही पद्धतीने डॅमेज करायचं नाही, राष्ट्रवादीने भाजप शिवसेनेला डॅमेज करायचं नाही, आम्ही एकमेकाच्या समोर येणार नाही, असा सर्वांनी विचार करून चालायचा आहे। तर मला वाटतं की जे काही तुम्ही सांगताय त्यामध्ये सुनित्रा पवारजी निश्चितपणे वेगळा काहीतरी विचार करतील।
0: दूसरी तरफ एनसीपी नेतृत्व ने प्रशांत किशोर से जुड़ी किसी भी आधिकारिक डील और पार्टी में अंदरूनी कलह की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है।
4: लेकिन उसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, वो उनसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके साथ उनकी कर्सी मीटिंग हो गई है, इतनी मेरे पास जानकारी है। उनको कहां भी एक कंसल्टेंट करके, पॉलिटिकल कंसल्टेंट करके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपॉइंट किया, इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है। जब तक मुझे जानकारी नहीं है तब तक मैं इतना बोल सकता हूँ कि उनकी अपॉइंटमेंट नहीं होगी। चल कुछ नहीं रहा है, मैं बार बार एक बात अधोरेखित कर चुका हूँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने दादा के नेतृत्व में एक सामूहिक निर्णय लिया था कि हम एनडीए में शामिल हो जाएं। 2023 में हम सब लोग एनडीए में शामिल हो गए, उसके बाद 2024 में चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, हमारे यहाँ की असेंबली का, विधानसभा का चुनाव, हम एनडीए के पार्टनर्स के नाते हम चुनाव को सामने गए और चुनाव में हमने लोकसभा में नहीं लेकिन विधानसभा में अच्छा यश वहाँ पे हासिल किया। हम एनडीए में हैं और एनडीए में रहेंगे।
0: ऐसी खबरें हैं कि अगर प्रशांत किशोर एनसीपी से जुड़े तो सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार कुछ बड़े एनसीपी नेताओं को जिम्मेदारी से मुक्त करके अपने नए भरोसेमंद चेहरों को संगठन में शामिल कर सकते हैं।
1: अब इस बीच अगर आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर के साथ एनसीपी अजीत पवार की पार्टी सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहती है तो क्या राज्य में कुछ नए राजनीतिक समीकरण देखने को मिलेंगे, इस पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई है। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋतिक भालेकर, मुंबई आज तक।
5: संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कल मुंबई में जेनजी से खुलकर बात की। मोहन भागवत ने माना था कि युवाओं से संवाद करने में चूक हुई है और उन्होंने कहा था कि आंदोलनकारी छात्रों को एंटी नेशनल कहना बिल्कुल ठीक नहीं। अब विपक्ष कह रहा है कि जब बीजेपी बुरी तरह से फंस गई तो संघ प्रमुख मोहन भागवत को डैमेज कंट्रोल के लिए खुद उतरना पड़ा। वहीं अभिजीत दिपके ने कहा कि मोहन भागवत बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं समझाते। और प्रियंका गांधी
6: संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 6 अगस्त को मुंबई में हुए जेनजी से संवाद के दौरान मान लिया कि चूक तो हुई है, अगर सरकार समय रहते आंदोलनकारी छात्रों से संवाद करती तो इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता।
7: एजिटेशन जो होना है वो आपके खिलाफ या मेरे खिलाफ न होकर वो सिस्टम करेक्शन के लिए होना चाहिए।
8: करेक्ट,
7: तब सब ठीक रहेगा।
8: तो इसमें आप मानेंगे कि संवाद यदि पहले से शुरू हुआ होता तो ये बाद में विषय ज्यादा ऊपर जाता ही नहीं।
7: जो नहीं होना चाहिए वो जब होता है तो कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जाती, तभी होता है।
6: इतना ही नहीं, देश की मौजूदा सत्ता को दिशा दिखाने वाले आरएसएस ने माना कि अगर जेनजी विरोध प्रदर्शन कर रहा है तो वो राष्ट्र विरोधी नहीं हो जाता। जेनजी पिछली पीढ़ी से ज्यादा ईमानदार और संवेदनशील है। ये नई पीढ़ी सवालों का तर्कपूर्ण जवाब चाहती है। सरकार या सिस्टम के स्तर पर जेनजी की आवाज नहीं सुनी गई और शिक्षा को व्यापार बना चुके सिस्टम को दोबारा सोचने की जरूरत है।
8: लोग हमें बोलेंगे saying that these people are agents of some country and so and so, तो सर इसमें
7: वो मैं कह रहा हूँ ना,
8: इसमें
7: मैं कह रहा हूँ कि जेनजी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है।
8: जी सर,
7: इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला, अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है।
6: भागवत के जयंती से संवाद के बाद विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जब बीजेपी फंस गई तो संघ प्रमुख को डैमेज कंट्रोल के लिए उतरना पड़ा।
9: ऐसा है, जेन जी से जब बीजेपी की सरकार घबरा गई है तो मोहन भागवत जी को वो संभालने के लिए लगा दिया। जब ये बिल्कुल फंस जाते हैं तब आरएसएस की शरण में जाते हैं, तो भाई कुछ रास्ता निकालो, तुम ही कहो।
6: वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी बोली, जेन जी एंटी नेशनल नहीं, इसके लिए संघ का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। वहीं महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके भागवत के बयान पर बोले कि आखिर संघ प्रमुख बीजेपी और पीएम मोदी को क्यों नहीं समझा रहे।
10: नहीं, मुझे जो लगता है मोहन भागवत का जो कल का जो स्टेटमेंट था, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट था, वो ये था कि जेनजी को एंटी नेशनल मत कहो, प्रोटेस्ट करना उनका अधिकार है और जेन्युइन इश्यूज है। तो उन्होंने जो ये चीज कही है मैं पूरी तरह अग्री करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मोहन भागवत, क्योंकि वो बीजेपी के एक तरीके से मेंटर है, तो एक बार वो सेम चीज बीजेपी वालों को बता दे, नरेंद्र मोदी जी को बता दे कि ये जो स्टूडेंट्स है, यूथ है, उनको एंटी नेशनल्स ना कहा है, क्योंकि ये लोग तो सारे बीजेपी वाले लोग एंटी नेशनल कह रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा था, दहशतगर्दों की बी टीम है। और जो नितिन नबी जी भाजपा के प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा था कि ये वायरस है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब मोहन भागवत जी की ये बात सुनेंगे, ये उनकी बात मानेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि बीजेपी वाले आरएसएस के अगेंस्ट जाकर कुछ बात कहते हैं, और अगर ऐसा कहते हैं तो कहीं ना कहीं फिर आरएसएस को भी सोचने की जरूरत पड़ेगी कि बीजेपी वाले मोहन भागवत जी की भी बात नहीं मान रहे।
6: जेनजी के साथ थोड़ा सा समय गुजारने के बाद भागवत ने फिंगर क्लैप से लेकर क्लॉकेट को अपना कर ये संदेश दिया कि हमारी पीढ़ी को भी युवाओं के तौर तरीके सीखने चाहिए।
11: पिछले दिनों देश में चल रहे नीट पेपर लीक मामले के आंदोलन के बाद कल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई में एक कार्यक्रम में जेन जी और जेन अल्फा से बातचीत की। इस कार्यक्रम में मोहन भागवत ने अपने विचार सामने रखते हुए कहा कि उनको जेन जी पर आंख मूंद कर भरोसा है और वो देश का भविष्य है। साथ ही जेन जी के हुए आंदोलन पर उन्होंने कहा कि एक प्रोटेस्ट के लिए या आंदोलन के लिए जेन जी को राष्ट्र विरोधी कहना गलत है। लोकतंत्र में विरोध करना भी संवाद का एक तरीका होता है। साथ ही मोहन भागवत ने यह भी माना कि शिक्षा विभाग में अभी काफी सुधार की गुंजाइश है और उसे तुरंत करना भी चाहिए। मोहन भागवत का ये बयान ऐसे समय में आया है और इसीलिए इस बयान के मायने राजनीतिक और सामाजिक तौर पर काफी बढ़ जाते हैं।
6: लेकिन आज का जेन जी सिस्टम से ये सवाल पूछ रहा है कि देश की शिक्षा व्यवस्था में 69% स्कूली शिक्षा का दारोमदार उठा रहे सरकारी स्कूल बदहाल क्यों है, उनमें शिक्षकों की भारी कमी क्यों है, 10 साल में 94,000 सरकारी स्कूल बंद या मर्ज हुए और निजी स्कूल 2,88,000 से बढ़कर 3,39,000 क्यों हो गए। जहां बीजेपी और उसके सहयोगी दल भागवत के युवाओं से संवाद को जरूरी और सफल बता रहे हैं, तो विपक्ष अभी भी कह रहा है कि सरकार अब युवाओं को गुमराह नहीं कर सकती।
12: आदरणीय सरसंघचालक जी ने बिल्कुल सही कहा कि प्रोटेस्ट या आंदोलन करने से कोई एंटी नेशनल नहीं बनता है। जेन जी जो है वो सिर्फ संवाद चाहती है, संवाद के जवाब, और जेन जी हो या जेन अल्फा वो बहुत ही ईमानदार हैं और जिस ईमानदारी के साथ आदरणीय सरसंघचालक जी ने उनके सवालों का जवाब दिया है, सादगी के साथ, सरलता के साथ, यही संवाद की आवश्यकता है, क्योंकि आते हुए दिन में जब संवाद है तब राष्ट्रवाद बढ़ सकता है।
13: समर्थन तो किया है, लेकिन उन्हीं के अनुयायियों ने तो जैन जी को देशद्रोही कहा है
14: जी।
13: उन्हीं के अनुयायियों ने तो खालिस्तानी से लेकर पाकिस्तानी तक तमाम हमारे बच्चों के जो इनोसेंट बच्चे हैं, शायद जिन्होंने घर स्कूल के अलावा कभी कुछ देखा भी नहीं था, ऐसे बच्चों को बदनाम किसने किया। सदे नेताजी कहते थे ये बीजेपी आरएसएस के कई मुंह होते हैं, जब देखते हैं कि समाज में विरोध हो रहा है तो उन्हीं में से एक सकारात्मक बयान देने लगता है।
6: नई शिक्षा नीति लागू होने के बावजूद युवा सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि पिछले एक दशक में सरकारी यूनिवर्सिटी तो 45.4% ही बढ़ी तो निजी विश्वविद्यालयों में करीब 150% की बढ़त क्यों हो गई। देश के 52,081 कॉलेजों में 78% कॉलेज निजी क्यों है। सरकार की नई टेंशन ये है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने सितंबर से पूरे देश में क्या बोले पब्लिक के नाम से कैंपेन चलाकर बेरोजगारी और महंगी शिक्षा के खिलाफ आवाज बुलंद करने का ऐलान कर दिया है। सवाल है कि क्या सरकार समय रहते युवाओं के मन में पनप रहे आक्रोश को कम कर पाएगी। मुंबई से दीपेश त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो।
5: बीजेपी की सांसद कंगना रनौत एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। कंगना ने सीजेपी के आंदोलन में गाली देने वाले जेंजीज को गटर जनरेशन बताकर हमला किया था। कंगना ने कहा था ऐसी अश्लील हरकतें करने वाले युवाओं को शर्म आनी चाहिए, लेकिन जब से संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जेंजी से संवाद किया, देशभक्त कहा, उसके बाद आज संसद में कंगना के सुर बदल गए। कंगना ने कहा जेंजी हमारी असली शक्ति है, इतने वर्षों से बीजेपी जेंजी की वजह से सत्ता में। सुनिए कंगना के दोनों बयान, गटर वाला भी और शक्ति वाला भी।
15: क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्शुअलाइज कर दे। हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर। स्काई रूट जैसे स्टार्टअप की मैंने कितनी बड़ाई की, हमारे देश के जेंजी जो हमें इतनी ऊंचाइयों पर लेके जा रहे हैं, नीट के छात्रों को मैंने खुद स्वयं जो है कितनी बधाई दी, और ऐसे बच्चे जो कि अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, हमारी टीम में भी ऐसे बच्चे हैं, हमारे घरों में रिश्तेदारी में भी जेंजी भाई बहन है।
16: मोहन भागवत जी ने जेंजी से आउटरीच किया है, मोहन भागवत जी ने जेंजी की
17: बात सुननी चाहिए, सरकार को जेंजी की बात सुननी चाहिए।
15: जेंजी जो है सरकार का हिस्सा है, उन्हीं का तो मैंडेट है, जो हमारी सरकार जो है इतने सालों से जो है, तो जेंजी का ही मैंडेट है, और जेंजी जो है हमारी बहुत बड़ी, ऐसा नहीं है जो प्रोटेस्ट पे 10-15 जो है गालियां देने वाले ही जेंजी हैं। आज जो झारखंड में बच्चे बैठे हैं और इतने अच्छे से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सरकार के इतने जो युवा जो मेडल लेके आए देश के लिए, प्रधानमंत्री जी के नाम समर्पित किए, आज ये जो जितनी भी ब्रिगेड है, चाहे वो एनवायरमेंट डे के दिन पेड़ लगाने की बात होती है, ये कोई दिखते नहीं है। आज हैंडलूम के दिन मैं देखना चाहूंगी कि कितने ट्रेंड जो है, जो सारा दिन जो ज्ञान देते हैं, कितने लोग हैंडलूम खरीदते हैं,
14: और हथकरघाओं को कितना सपोर्ट करते हैं वो भी देखने वाली बात है। ये कुछ ही हाथ, जैसे मैं कहती हूँ, कुछ हैंडफुल ऑफ पीपल हैं जो जेंजी का नाम खराब कर रहे हैं। जेंजी जो है हमारी सबसे बड़ी ताकत है और हमें गर्व है अपनी जेंजी।
5: मुंबई क्राइम ब्रांच ने गोवा में 500 करोड़ से अधिक के साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़ किया है। यह गिरोह गोवा के बीच के किनारे एक आलीशान बंगले में साइबर क्राइम और हवाला के द्वारा जो रकम आती थी उसे कुछ डमी बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर करते थे। पुलिस ने 12 को गिरफ्तार किया, 150 करोड़ का अमाउंट बैंक में फ्रीज किया। अब पुलिस इनके पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है।
0: सैलानियों से साल भर गुलजार रहने वाले गोवा के कलंगुट बीच के पास 500 करोड़ से ज्यादा के साइबर फ्रॉड का खुलासा हुआ है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने बताया कि कलंगुट बीच के पास किराए पर लिए गए एक आलिशान बंगले में ये फर्जीवाड़ा करीब 8 महीने से चल रहा था। यहां ज्यादातर आरोपी गुजरात से थे, जिन्हें 35,000 महीने की सैलरी और फ्रॉड की रकम के 3% कमीशन पर रखा गया था। आरोपी मुंबई के कई खातों में ऑनलाइन सट्टेबाजी सिंडिकेट और साइबर फ्रॉड के जरिए हवाला का पैसा ट्रांसफर करते थे।
18: साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन गेमिंग के जो पैसे इलीगल तरीके से आ रहे थे उनको एक दूसरे अकाउंट से लॉन्डर किया जा रहा था, लेयरिंग की जा रही थी और उसमें बहुत सारे अलग अलग अकाउंट्स खरीद के यूज किए जा रहे थे। इसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपर लिंक का शोध चालू था और उस दरमियान हमें लिंक मिली कि जो अकाउंट्स हैं वो मुंबई से गोवा भेजे जाते हैं, इन द सेंस फिजिकली वो नोट करके गोवा जाते हैं बस से और उसके बाद गोवा में वो अकाउंट्स यूज करके वहां एक जगह बैठ के ये जो पैसों का ट्रांसफर है अलग अलग अकाउंट्स के थ्रू हो रहा है।
0: मुंबई क्राइम ब्रांच ने 6 महीनों में 500 करोड़ से ज्यादा के साइबर फ्रॉड का दावा किया है, जिसमें से कई के बैंक खातों में 50 से 100 करोड़ तक अमाउंट को फ्रीज कर दिया गया।
19: मुंबई पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो कि साइबर ठगी और ऑनलाइन बेटिंग द्वारा कमाए गए करोड़ों रुपए को आगे लेयरिंग कर रहा था, आगे अन्य अकाउंट्स में भेज रहा था। ये गिरोह गोवा के एक 2 मंजिला विला से ऑपरेट कर रहा था जो कि कलंगुट बीच के पास स्थित था और पायदुनी पुलिस स्टेशन के एक केस को इन्वेस्टिगेट करते करते मुंबई क्राइम ब्रांच के अफसरों को टिप मिली, इन्फॉर्मेशन मिली, जिसके तहत इस विला में रेड की गए और वहां पर बहुत से लैपटॉप मोबाइल फोन जब्त किए गए और जब ट्रांजैक्शंस खंगाले गए तो ये पता चला कि यह गिरोह जो कि जिसमें कि 12 लोग थे और वो सब इसी गोवा स्थित विला से ऑपरेट कर रहे थे, ये लोग 500 करोड़ से ज्यादा की ट्रांजैक्शन पिछले 6 महीने में कर चुके थे। 500 करोड़ से ज्यादा की ट्रांजैक्शंस इस विला से इन 12 लोगों ने लेयरिंग और हवाला के लिए अंजाम दिया था।
0: गोवा के विला के अंदर जिन 12 आरोपियों के जरिए ये फ्रॉड हो रहा था वो 10वीं या 12वीं पास है, लेकिन उन्हें साइबर फ्रॉड से आई रकम को दूसरे खातों में ट्रांसफर करने की ट्रेनिंग दी गई थी।
18: तो इनको जब हमने पकड़ा तो उनके पास से आपके सामने है करीब 15 लैपटॉप जब्त हुए हैं, 85 मोबाइल मिले हैं, बहुत सारे पासबुक हैं, चेकबुक हैं, बहुत सारे एटीएम कार्ड्स हैं और करीब 150 से ज्यादा अकाउंट्स हमें मिले हैं, जिसके थ्रू लास्ट अराउंड 6 to 8 मंथ्स में इन्होंने मोर देन 500 crore का ट्रांजेक्शन किया है, मोर देन 500 crore रुपए का ट्रांजेक्शन किया है।
0: गोवा से मुंबई पुलिस को कैश नहीं मिला, यहाँ सिर्फ अकाउंट मैनेजमेंट और पैसे के डायवर्जन के लिए ऑपरेशनल यूनिट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस ने आरोपियों के पास से 15 लैपटॉप, 83 मोबाइल, 150 से ज्यादा खातों की पासबुक बरामद की है। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि साइबर फ्रॉड का मास्टरमाइंड यूएई में बैठकर इस फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहा था। मुंबई क्राइम ब्रांच ने मीडिया के सामने आरोपियों से साइबर फ्रॉड का डेमो करके भी दिखाया कैसे एक क्लिक से ये साइबर अपराधी दूसरों के अकाउंट से पैसे गायब कर रहे थे। पुलिस अब इनके पूरे नेटवर्क।
5: ठाणे के डोंबिवली में शास्त्री नगर म्युनिसिपल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के साथ मारपीट करने वाले शिवसेना कॉर्पोरेटर रमेश महात्रे को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन उन्हें तब तक महाराष्ट्र से बाहर रहने को कहा गया जब तक इस मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं हो जाती। महात्रे और दूसरे आरोपियों की वकील सना रईस खान ने बताया कि बॉम्बे हाईकोर्ट में क्या हुआ। महात्रे के साथ बाकी आरोपियों की जमानत की शर्तें क्या है?
20: कॉरपोरेटर रमेश मात्रे और अन्य आरोपी जिन पर आरोप है कि उन्होंने शास्त्री नगर डोंबिवली के अस्पताल में डॉक्टर्स की पिटाई की थी, उस मामले में एडवोकेट सना रईस खान आज रमेश मात्रे और अन्य आरोपियों को रिप्रेजेंट कर रही थी। बॉम्बे हाईकोर्ट में आज हियरिंग हुई है। आइए एडवोकेट सना रईस खान से जानते हैं कि आज कोर्ट में क्या हुआ। सना जी, ये बताइए कि आज बॉम्बे हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई वहां पर क्या हुआ?
21: आज उन्हें बेल ग्रांट की गई है और आफ्टर ग्रांटिंग बेल कुछ कंडीशंस है जो इम्पोज किए गए हैं, जैसे कि टैम्पर नहीं करना इन्वेस्टिगेशन के साथ। जब तक चार्जशीट फाइल नहीं होती तब तक वो महाराष्ट्र एंटर नहीं कर सकते। तो उन्होंने अपना अल्टरनेटिव अकोमोडेशन के डिटेल्स भी दिए, अपने अल्टरनेटिव नंबर, फोन नंबर, ये सारी डिटेल्स दी गई है। और फिर ये भी हमें बोला गया है कि विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट वो नहीं छोड़ सकते हैं इंडिया। और पासपोर्ट भी जो है रमेश मात्रे जी को वो सरेंडर करने की कंडीशन दी गई।
20: उन्होंने कौन सी जगह का चयन किया है, वो कहाँ जाकर रहेंगे जब तक चार्जशीट फाइल नहीं?
21: गोवा में रहेंगे जब तक चार्जशीट फाइल नहीं होती है। और उन्हें वहां के लोकल पुलिस स्टेशन जो अंजुना पुलिस स्टेशन है वहां पे उन्हें अटेंडेंस मार्क करनी है।
20: क्या ये केस फास्ट ट्रैक पर चलाया जाएगा?
21: यस, ये भी कंडीशन दी गई है कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर इसमें अपॉइंट किया जाएगा और ये फास्ट ट्रैक बेसिस पे ये केस चलाया जाएगा।
20: तो रमेश मात्रे अन्य आरोपियों को बेल जरूर मिल गई है पर वो महाराष्ट्र के अंदर नहीं रह सकते जब तक इस केस में चार्जशीट फाइल नहीं होती। रमेश मात्रे और जो अन्य आरोपी हैं उन्होंने गोवा इस जगह का चयन किया है और वो गोवा में रहेंगे जब तक चार्जशीट फाइल नहीं होगी और हर हफ्ते अंजुना पुलिस स्टेशन में अटेंडेंस भी लगाएंगे। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ दिवेश सिंह, मुंबई आज तक।
5: और खबरों के साथ कुछ ही पलों में दोबारा आपके साथ होंगे, आप देखते रहिए मुंबई मेट्रो।
22: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: महाराष्ट्र में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। आईआईटी बॉम्बे कैंपस की दो कैंटीन को बंद कर दिया गया क्योंकि यहां की कैंटीन को एफडीए की ओर से फूड सेफ्टी नियमों का पालन नहीं करने के कारण से नोटिस मिला था। शिकायत के आधार पर आईआईटी बॉम्बे पवई के दो हॉस्टल मेस की जांच की गई। दो जगहों पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत जरूरी फूड लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नहीं पाया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र एफडीए ने साफ सफाई और हाइजीन के नियमों का उल्लंघन करने के कारण दादर में नीनो बर्गर का फूड बिजनेस लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया है। मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: रांची में चार मंत्रियों और छात्र प्रतिनिधिमंडल में पहले दौर की वार्ता खत्म। मुलाकात के बाद दोनों पक्षों ने कहा बातचीत सकारात्मक, लेकिन प्रदर्शन जारी। संसद में गतिरोध के बीच सोमवार तक स्थगित दोनों सदन। रिजिजू बोले कांग्रेस ने 10, 11, 12 अगस्त के लिए अपने सांसदों को जारी किया व्हिप। एथेनॉल पर राहुल ने सरकार को घेरा, कहा दाल में काला नहीं पूरी दाल काली। हरदीप सिंह पुरी बोले कुछ लोग खड़ा कर रहे हैं विवाद। सीएम योगी ने अखिलेश को घेरा, कहा एसपी सरकार में लूटने निकल जाती थी चाचा भतीजे की जोड़ी, इन्होंने विधानसभा नहीं चलने दी। लगातार बारिश से दिल्ली एनसीआर में जगह जगह पानी भरा, लंबा लंबा जाम लगा, लोग परेशान, 9 घर गिरे। आज भी भारी बारिश का मौसम विभाग का अलर्ट।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: अमित शाह का दो दिन का दौरा, तमिलनाडु और पुडुचेरी का करेंगे दौरा। विदेश मंत्रालय की अमेरिका को नसीहत, एमईए प्रवक्ता बोले एफसीआरए बिल हमारा आंतरिक मामला, संसद लेगी निर्णय। G20 पेट्रोल पर राहुल का पोस्ट, सरकार को घेरते हुए कहा दाल काली नहीं, पूरी दाल काली। हरदीप सिंह पुरी का बयान, मिलावट तो किसी भी चीज में हो सकती है, कुछ लोग तथ्यों पर विवाद खड़ा कर रहे हैं। तमिलनाडु में डीम लिमिटेशन पर सीएम विजय की आज होने वाली मीटिंग का डीएमके ने किया बहिष्कार, नहीं होंगे शामिल। संसद में गतिरोध के बीच सोमवार तक दोनों सदन स्थगित, कांग्रेस ने 10, 11, 12 अगस्त के लिए अपने सांसदों को व्हिप जारी किया। राष्ट्रपति भवन में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह का आयोजन, विजेताओं को सम्मानित किया गया। हथकरघा दिवस पर निर्मला सीतारमण ने पहना असम का पारंपरिक मेखला चादर, लोगों से इसे बढ़ावा देने की अपील की। अरुणाचल में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर प्रदर्शनी, मुख्यमंत्री खांडू ने उत्कृष्ट बुनकरों को पुरस्कार दिए। दिल्ली कैबिनेट ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल को स्वीकृति दी, नए नियमों के तहत विश्वविद्यालयों को अपनी जमीन खरीदनी होगी, 25% सीटें दिल्ली के छात्रों के लिए आरक्षित करनी होंगी। रांची में चार मंत्रियों और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत खत्म हुई, दोनों ने कहा सकारात्मक। बातचीत के बाद रांची में 15वें दिन छात्रों का प्रदर्शन, कहा जब तक मांगे नहीं तब तक हमारा धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं। विधानसभा मार्च के दौरान आईसा की अध्यक्ष नेहा बोरा ने आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाए, कहा कि उनके एक सदस्य ने मुझ पर स्याही फेंकी। जेपीएससी परीक्षा विवाद पर नेहा बोरा बोली, री एग्जाम और निजी एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट करो। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले जयंत को बड़ा झटका, प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने दिया आरएलडी से इस्तीफा। यूपी के अम्बेडकर नगर में सीएम योगी ने विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा, एसपी सरकार में गुंडागर्दी चरम पर थी, चाचा भतीजे किया करते थे वसूली। सीएम योगी बोले एसपी सरकार में कानून व्यवस्था थी ध्वस्त, डबल इंजन की सरकार ने यूपी को माफिया मुक्त बनाया। योगी का दंगाइयों के खिलाफ बयान, बोले दंगा कराने की धमकी देने वालों को सिखा दूंगा सबक। चरखी दादरी गैंगवार मामले में बड़ी कार्रवाई, मुख्य आरोपी रोहित कातिया पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल में सीएम शुभेंदु ने अपने भवानीपुर में तिरंगा यात्रा निकाली, हजारों लोग शामिल हुए। ग्वालियर नगर निगम परिषद की बैठक में हंगामा, महापौर और सभापति में तीखी नोकझोंक, मारपीट तक की नौबत आई। मध्य प्रदेश के विदिशा में बेतवा नदी पार कर स्कूल जाने वाले छात्रों का मामला, एनएचआरसी ने सरकार को नोटिस दिया। चंडीगढ़ में डीए बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर विधानसभा कूच कर रहे सरकारी कर्मचारी, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। दिल्ली जयपुर हाईवे पर टोल फ्री की मांग को लेकर प्रदर्शन, शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर स्थानीय लोगों का धरना प्रदर्शन। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने नई दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की, विकास राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की। महाराष्ट्र के सांसदों से बोले पीएम मोदी, कहा विकास कार्यों में कोई दिक्कत ना आए तो मुझसे सीधे मिलें। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर शिवसेना सांसद ज्योति वाघमारे की पीएम मोदी को भेंट, पारंपरिक हथकरघा प्रधानमंत्री को भेंट किया। मुंबई में प्रशांत किशोर ने सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार से मुलाकात की, एनसीपी को मजबूत करने पर चर्चा। मुंबई की मेयर रितु तावड़े को ईमेल के द्वारा बॉम्ब की धमकी, सभी संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाई गई। दिल्ली के वसंत वाले स्कूल में आज तक हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन, देश भर के 22 से ज्यादा स्कूलों ने हिस्सा लिया। दून स्कूल के अभिनव और सरदार पटेल की झीलम संयुक्त विनर रहे।
1: आज तक वाद विवाद शुरू किया था 16 साल पहले, हमने सोचा था हिंदी डिबेट है कौन आएगा, और वसंत वैली स्कूल जो इंडिया टुडे डिबेट करती है, अंग्रेजी की डिबेट करती है, हिंदी डिबेट में कौन आएगा, बट वी वर रियली सरप्राइज।
0: रामराज कॉटन ने पंचा टीएम नाम से एक नई हैंडलूम पेशकश लॉन्च की, ओडिशा के मयूरभंज की संथाली बुनाई परंपरा को पुनर्जीवित किया। हरिद्वार में कांवड़ मेले पर सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी, जिलाधिकारी ने

जोरदार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भरा, लंबा लंबा दिल्ली में जाम लगा, कापासहेड़ा जाने वाली सड़क की तस्वीरें। दिल्ली में बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत, लेकिन छतरपुर समेत कई इलाके जलमग्न हुए, गलियों में पानी ही पानी। गुरुग्राम में आफत की बारिश हुई, तेज बारिश के बाद पानी भर गया, गाड़ी चलाने में हो रही है परेशानी। गुरुग्राम में भारी बारिश के बीच अस्पताल में पानी भरा, बेसमेंट की दीवारों में पानी ही पानी, चिकित्सा सेवाएं प्रभावित हुई। भारी बारिश के कारण नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भीषण ट्रैफिक जाम, लंबी लाइन के बीच रेंगती नजर आई एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां। दिल्ली एनसीआर में अगले दो दिनों तक यूं ही जारी रहेगी भारी बारिश, यूपी उत्तराखंड हिमाचल में भी अलर्ट। हिमाचल में 10-11 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट, बाढ़ भूस्खलन के खतरे को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी। उत्तराखंड के बागेश्वर कांडा हाईवे पर भूस्खलन, सड़क किनारे खड़े वाहन पर गिरा मलबा, प्रशासन ने रास्ता ठीक करवाया। चमोली में भूस्खलन के बीच पोकलैंड मशीन की बकेट में बैठकर सड़क पार कर रहे ग्रामीण, जान जोखिम में डालकर मजबूर। जम्मू कश्मीर के शोपियां में तेज आंधी से सेब की फसल तबाह हो गई, करोड़ों का नुकसान हुआ, किसानों ने मुआवजे की मांग की। इटावा में एक घंटे की भारी बारिश से पानी भरा, अंडरपास में 4 फीट पानी भरा, जिला अस्पताल में भी पानी भरा, नगर निगम की व्यवस्था पर उठे सवाल। मध्य प्रदेश के दतिया में बारिश से नगर निगम की पोल खुली, कला चौक समेत कई इलाकों में पानी भरा, लोग परेशान। आगरा में तेज बारिश से धस गई सड़क, ताजगंज में गड्ढे में फंसा ट्रक, समय रहते वाहन रोकने पर टला बड़ा हादसा। झारखंड के धनबाद में धसी जमीन, कई घर मलबे में दबे, 12 लोग घायल। उत्तराखंड के पौड़ी में अनियंत्रित होकर 250 मीटर गहरी खाई में गिरी बोलेरो, दुर्घटना में 5 की मौत, 1 घायल। ओडिशा के कटक में तेज रफ्तार कार सवार ने स्कूटी सवार महिला को मारी टक्कर, दूर तक सड़क पर घसीटा, महिला की स्थिति गंभीर। मुंगेर में पानी लेने गए व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत, डब्बा साइकिल पर रखते ही सड़क पर गिरा व्यक्ति, घटना सीसीटीवी में कैद। झांसी की सड़कों पर आवारा पशुओं का आतंक, तेज रफ्तार बाइक गाय से टकराई, 2 युवक कई फीट दूर जाकर गिरे, गंभीर रूप से घायल। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पानी भरा, गड्ढों का कहर, ई रिक्शा पलटने से पुजारी ने हाथ गवाया, प्रशासन पर सवाल। वाराणसी में लव जिहाद धर्मांतरण का मामला, पहचान छिपाकर शादी, धर्म परिवर्तन के दबाव में युवक गिरफ्तार। जयपुर में बोनस अंक की मांग पर 100 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ी संविदा नर्सिंग कर्मी, भर्ती को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा। ओडिशा के गजपति में घर में सो रहे माँ बेटे को जहरीले सांप ने काटा, दोनों की मौत। गोरखपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापा मारा, 5 क्विंटल काली मिर्च सीज, बिना लाइसेंस के हो रहा था व्यापार। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में नदी किनारे भिड़ गए 2 विशाल हाथी, दहाड़ और टक्कर से दहला इलाका, लोगों ने कैमरे में कैद किया रोमांचक दृश्य। गोरखपुर में रोडवेज बस का कहर, अनियंत्रित बस ने पैदल जा रहे यात्री को रौंदा, मौके पर मौत। पटना में सड़क हादसे के बाद भारी बवाल, आगजनी पथराव में कई पुलिस वाहन फूके, युवक की मौत पर हाईवे जाम किया। राजस्थान के कोटपुतली में पिता ने बच्चे के हाथ में पकड़ाया सांप, घटना का वीडियो वायरल। जूनागढ़ में कार ने रिक्शा बाइक को मारी टक्कर, 5 घायल, ट्रिपल दुर्घटना सीसीटीवी में कैद। मुंबई के बोरीवली में जन्मदिन पार्टी पर एयरगन से फायरिंग, दहशत फैलाने के आरोप में 10 को पुलिस ने हिरासत में लिया। गुजरात के नवसारी में भीषण हादसा, डिवाइडर से टकराकर 2 बार पलटी फॉर्चूनर, बाल बाल बचे 2 लोग। गुजरात के दाहौद में ज्वेलरी शॉप में चोरी, 5 लाख के गहने लेकर फरार हुए चोर, सीसीटीवी में कैद वारदात। गुजरात के बनासकांठा में शराब की तस्करी का खुलासा, कपड़ों की आड़ में ले जाई जा रही करोड़ों की विदेशी शराब जब्त। जूनागढ़ में कुएं में शेरनी का सफल रेस्क्यू, सफल स्वस्थ होने के बाद वन विभाग ने वापस जंगल में छोड़ा। अमित राय की ओ माय डॉग सिनेमाघरों में रिलीज, फिल्म में लीड रोल में है पंकज त्रिपाठी। हिंदी ड्रामा फिल्म आर्यभट्ट का 0 भी रिलीज, हिमांशु कोहली, रवि किशन, शिल्पा शिंदे जैसे स्टार्स हैं शामिल। आर माधवन की फिल्म GDN रिलीज, GD नायडू की भूमिका में दिखेंगे माधवन, फिल्म में प्रियमणि, जयराम, सत्यराज। सिनेमाघरों में धूम मचाने के लिए OTT पर रिलीज मैं वापस आऊंगा, नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई दलजीत वेदांग शेरवरी नसीरुद्दीन की फिल्म। जिबी शेरगिल सिद्धार्थ जैसे कलाकारों से सजी वॉर ड्रामा वेब सीरीज ऑपरेशन सफेद सागर भी रिलीज, देशभक्ति मिलिट्री ऑपरेशन पर बेस्ड ये सीरीज। ट्रंप को फेडरल कोर्ट से झटका, $400 मिलियन के व्हाइट हाउस बॉलरूम प्रोजेक्ट पर रोक लगाई, कहा कि स्वीकृति लेना जरूरी। पाकिस्तान तुर्की सऊदी अरब के बीच रक्षा समझौता, एक देश पर हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। रूस से युद्ध के बीच सर्बिया दौरे पर जेलेंस्की, एयरपोर्ट पर भव्य

स्वागत। आर्थिक सहयोग बढ़ाने, यूरोपीय संघ से रिश्ते को लेकर चर्चा। यूक्रेन में ओडिशा के पास ब्लैक सी में मालवाहक जहाज पर हमला, धुएं का होबार, यूक्रेनी सामान ले जा रहा था, 3 जहाजों को बनाया निशाना। रूसी उप विदेश मंत्री का यूरोपीय देशों पर प्रहार, कहा अगर सच में शांति चाहते हैं तो यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति तुरंत बंद करें। चीन से तनाव के बीच ताइवान का शक्ति प्रदर्शन, मिराज फाइटर्स का किया युद्ध अभ्यास। ट्रंप का नया टैरिफ झटका, सोलर मटेरियल पर 15% टैरिफ का ऐलान, 4 दिसंबर से नियम लागू। अंधाधुंध फायरिंग से दहला थाईलैंड का स्कूल, 1 शिक्षक समेत 8 छात्रों की मौत, संदिग्ध ने की आत्महत्या। श्रीलंका में 2 अलग अलग जेलों में खूनी झड़प, 3 की मौत, 20 से ज्यादा घायल, 40 कैदियों ने बैरक तोड़ी, हंगामा किया, आपस में भिड़े। चीन में बारिश के बाद बाढ़ से बड़ी तबाही, घरों में घुसा बाढ़ का पानी, सड़कें लबालब, गांव में पानी, 17,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको रांची लेकर चलेंगे, जहां प्रदर्शनकारी छात्रों का 10 सदस्य प्रतिनिधि मंडल स्टेट गेस्ट हाउस पहुंच चुका है और सरकार की तरफ से 4 मंत्रियों का पैनल छात्रों से बातचीत कर रहा है। सरकार ने सिर्फ परीक्षा में धांधली से प्रभावित छात्रों को बुलाया है, जबकि 6 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे युवा नेता देवेंद्रनाथ महतो और उनके साथियों को बातचीत से पूरी तरह अलग रखा गया है। आज आपको बताएंगे कि देश का हर छात्र एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर उनकी मेहनत की कीमत कब मिलेगी। हालत यह हो गई है कि इन युवाओं को अपनी बात हुक्मरानों को सुनाने के लिए प्लकार्ड्स पर लिखना पड़ रहा है कि नौकरी नहीं मिली तो शादी नहीं होगी। सोचिए, जो युवा देश की टेक्नोलॉजी और भविष्य बना सकते थे, उन्हें आज सिर्फ इसलिए क्रिएटिव होकर ये प्लकार्ड्स बनाना पड़ रहा है ताकि शहनाई के जरिए ही सही सरकार तक उनकी आवाज तो पहुंच सके। इसके बाद आपको बताएंगे कि एक तरफ संसद में गतिरोध और हंगामे का दौर है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी से मिले विपक्ष के बागी सांसदों ने समीकरण पूरी तरह बदल दिए हैं। टीएमसी से बागी होकर एनडीए खेमे में आए 20 सांसदों, खासकर यूसुफ पठान समेत उन 3 मुस्लिम सांसदों की मौजूदगी ने सारी अटकलों पर फुल स्टॉप लगा दिया है, जिन्हें लेकर विपक्ष सबसे ज्यादा बेचैन था। उधर महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरणों के बीच एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना सांसदों के साथ हुई सीक्रेट मीटिंग और विदेशी फंडिंग से जुड़े बिल पर नंबर गेम की बिछी इस बिसात ने बता दिया है कि संसद के इस सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मुकाबला बहुत दिलचस्प और आर पार का होने वाला है। और आखिर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने मक्का ज्वाइंट डिफेंस अग्रीमेंट साइन किया है, जिसे इस्लामिक नेटो कहा जा रहा है। इस समझौते के तहत किसी एक देश पर हमला होने पर तीनों मिलकर जवाब देंगे, सऊदी का पैसा, तुर्की के हथियार, पाकिस्तान की परमाणु ताकत इस गठबंधन को बड़ा रूप दे रही है। लेकिन क्या वाकई यह कागजी समझौता जमीन पर टिक पाएगा? लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यह है कि प्रदर्शनकारी छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल रांची के स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचा है, जहां पिछले 1 घंटे से लगातार उनकी सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक चल रही है। और इस बातचीत के लिए प्रदर्शनकारी छात्रों ने 10 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल भेजा। सरकार की तरफ से 4 मंत्रियों का पैनल है, जिनमें नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे, श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव और SC/ST कल्याण मंत्री चमरा लंडा शामिल है। अहम बात यह है कि सरकार ने छात्रों को सिर्फ एक ही गुट को, 2 गुट थे हमने आपको पहले बताया था, एक गुट इधर है और दूसरा गुट है जिसमें अनशन भी चल रहा है देवेंद्र महतो का, तो देवेंद्रनाथ महतो का जो गुट है उससे बात नहीं हो रही है, जो ये दूसरा गुट है, सिर्फ एक ही गुट को बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया है। 6 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्रनाथ महतो के प्रतिनिधियों से अब भी सरकार ने कोई संपर्क नहीं किया है और अभी ऐसा लग रहा है कि सरकार की कोशिश यही है कि वो सिर्फ परीक्षा में धांधली से प्रभावित हुए छात्रों से ही बात करना चाहती है। जबकि देवेंद्रनाथ महतो एक सामाजिक कार्यकर्ता और नेता है, 2024 के लोकसभा विधानसभा चुनाव और 19 के विधानसभा चुनाव वो लड़ चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि सरकार अभी उन्हें इस आंदोलन से अलग करके देख रही है, उनके प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया है। अब हम आपको ये बताएंगे कि देश में छात्रों के जो आंदोलन हुए या हो रहे हैं, उन्हें किसी राजनीति, किसी पार्टी, किसी नेता, किसी सरकार या किसी नैरेटिव के छोटे से दायरे में नहीं बांधा जा सकता। यह आंदोलन किसी विचारधारा के नहीं, बल्कि उस पीढ़ी का है जो अपने हिस्से का इंसाफ मांग रहा है। ये तमाम युवा सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमें हमारा हक दे दीजिए, हमें हमारी इस मेहनत की कीमत दे दीजिए, हमारी नौकरियां दे दीजिए, हमारी परीक्षाओं को ईमानदार बना दीजिए और हमारे सपनों को बार बार लीक होने वाले पेपर धांधली और भ्रष्ट व्यवस्था के नीचे मत दबाइए। दिल्ली का जंतर मंतर हो या झारखंड का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, जगह अलग अलग हो सकती है, चेहरे अलग अलग हो सकते हैं, नारे अलग हो सकते हैं, लेकिन इन आंदोलनों की आत्मा एक है, क्योंकि हर शहर में सड़कों पर उतरा ये छात्र एक ही दर्द लेकर आया है। उनका दर्द क्या है, उनकी मेहनत आप सोचिए, मतलब कल्पना कीजिए, जो लोग नौकरी करते हैं या अलग अलग जगहों पर काम करते हैं, मेहनत तो सबको करनी पड़ती है, लेकिन इतनी कम उम्र में छात्रों को सब कुछ भूलकर, खाना पीना, नींद, जागना, सोना सब भूलकर उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी पड़ती है और फिर पता चलता है पेपर लीक हो गया, पता चलता है नौकरी नहीं मिली। ये दर्द जो है ना, कि उसने मेहनत की लेकिन व्यवस्था ने इंसाफ नहीं किया, इस दर्द की वजह से ही आए हैं। उसने रातें जागकर किताबें पढ़ी,
उसकी किस्मत का फैसला कभी पेपर लीक ने कर दिया, कभी धांधली ने कर दिया, कभी लापरवाही ने, कभी उस सिस्टम ने जिसने उसकी ईमानदारी की कोई कीमत समझी ही नहीं। आज आप रांची से आई इन तस्वीरों को पहले देखिए, जिनमें प्रदर्शनकारी युवा ऐसे प्लकार्ड्स लेकर आए हैं जिन पर लिखा है कि अगर नौकरी नहीं मिली तो उनकी शादी नहीं होगी। सोशल मीडिया पर इन प्लकार्ड्स की आज खूब चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि इन छात्रों का विरोध जताने का तरीका कितना नया है, कितना अलग है और कितना अलग है। मतलब अलग अलग तरह की बातें लिखी हैं। हम भी मानते हैं कि ये क्रिएटिविटी अद्भुत है, लेकिन एक बार ये भी तो सोचिए कि क्या ये क्रिएटिविटी जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, इन बच्चों को तो सारी मेहनत क्रिएटिविटी अपने एग्जाम्स, अपनी पढ़ाई पर लगानी थी, नौकरियां हासिल करने में लगानी थी, लेकिन वो हो ही नहीं रहा है। जो युवा इस देश के लिए नई टेक्नोलॉजी बना सकते थे, जो हाथ नए उद्योग खड़े कर सकते थे, जो युवा भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने में अपना योगदान दे सकते थे, आज यहां बारिश, धूप, गर्मी, पसीना, मतलब अपनी पीड़ा समझाने के लिए उनको नारे गढ़ने पड़ रहे हैं। उन्हें अपने सपनों की भाषा छोड़कर विरोध की भाषा सीखनी पड़ रही है। और ये इनकी उपलब्धि नहीं है, ये इनके साथ अन्याय है। दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां छात्र आंदोलनों को सबसे ज्यादा गंभीरता से लिया जाता है, क्योंकि वहां यह समझा जाता है कि अगर पढ़ने लिखने वाले छात्रों पर उत्तर आए हैं तो समस्या छात्रों में नहीं, व्यवस्था में है। लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि इन युवाओं को अब सिर्फ अपने भविष्य की चिंता नहीं है, उन्हें इस बात की भी चिंता है कि कहीं उनकी आवाज अनसुनी ना रह जाए। वो ऐसे प्लाकार्ड्स बनाते हैं, ऐसे नारे लिखते हैं जो प्रतीकात्मक चीजें लेकर आते हैं, जिन पर लोगों और सरकार की नजर तो पड़े। यानी ये सारे युवा आंदोलन भी कर रहे हैं और इन्हीं पर यह भी जिम्मेदारी है कि वो किसी तरह सरकार का ध्यान अपने मुद्दों पर खींच सके। ये बैनर्स, ये प्लाकार्ड, ये तराजू, ये गीत, ये देखिए। वैकेंसी निकलेगी तभी शहनाई बजेगी, ऐसे प्रकाश लेकर आना पड़ रहा है। और चेहरों की मायूसी देखिए, व्यंग, ये प्रतीक जो है, ये सबको, मेरा सीवी तैयार है, सिस्टम कब तैयार होगा। ये उस पीढ़ी की मौन चीख है जो कहना चाहती है कि हमें विरोध करने का शौक नहीं है। नो जॉब नो शादी, हमें तो सिर्फ एक निष्पक्ष परीक्षा चाहिए, एक निष्पक्ष, एक ईमानदार परीक्षा जिसमें पेपर लीक ना हो, नौकरियों में धांधली ना हो। मेरे होने वाले ससुर कहते हैं पहले नौकरी फिर लड़की, नो जॉब। शायद इस पूरे आंदोलन का सबसे दर्दनाक सच यही है। जब आप इस तरह के पोस्टर देखते हैं और पीछे इन मायूस चेहरों को देखते हैं, इन युवाओं ने अपनी क्रिएटिविटी विरोध के लिए नहीं सीखी थी, उन्होंने ये कल्पनाशीलता भारत का भविष्य बनाने के लिए सीखी थी। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। उन्होंने अपने सपनों के पोस्टर बनाने के लिए नहीं बल्कि देश बनाने के लिए संजोया था, लेकिन व्यवस्था ने उन्हें ऐसी जगह खड़ा कर दिया जहां उन्हें अपने भविष्य की लड़ाई लड़ने के लिए अपना दर्द आकर्षक बनाना पड़ रहा है ताकि लोग रुकें, तस्वीरें तो देखें, पोस्ट शेयर करें, उनकी बात तो फैले, बहस करें और शायद तब जाकर सत्ता तक उनकी आवाज पहुंचेगी। किसी भी देश के लिए इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि उसके सबसे होनहार युवा अपने सपनों का निर्माण करने के बजाय टूटे हुए सपनों का प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो। इसीलिए इन तस्वीरों को सिर्फ एक आंदोलन की तस्वीर मत समझिए, यह भी मत समझिए कि आंदोलन रील बनाने के लिए है। ये छात्र सिर्फ इसलिए अपने आंदोलन को आकर्षक बनाने के लिए मजबूर हैं क्योंकि वो अपने मुद्दों पर समाज, देश, सरकारों का ध्यान चाहते हैं और यही इन संघर्ष कर रहे युवाओं की असली पीड़ा है। देखिए,

0: dengan kemenangan semasa kantor. Setiap hari kita berdua, ini hari ini kemasai. Setiap hari ini kemasai. Ini kabel kemasai.
1: हमारा सिर्फ ये कहना है कि ये क्रिएटिविटी जो आज इस आंदोलन में दिख रहा है ये वाकई काबिले तारीफ है और बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं उस क्रिएटिविटी की हर तरफ प्रशंसा हो भी रही है, लेकिन इन बच्चों को ऐसी स्थिति में लाने पर मजबूर किसने किया उसके खिलाफ हमारी आवाज है। ये क्रिएटिविटी आंदोलन तक सीमित नहीं रहनी चाहिए थी, ये क्रिएटिविटी उनकी जिंदगी के सपनों के पूरे करने की यात्रा में शामिल होना चाहिए था कि भाई उनकी नौकरी लगी और नौकरी में उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई, उनके अच्छे जगह दाखिला लगा और उस पढ़ाई में उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकी। लेकिन ताकत कहां झोंकनी पड़ रही है? आंदोलन में। सरकार कहती है उसके दरवाजे हमेशा अपने युवाओं के लिए खुले हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये ऐसे दरवाजे हैं जिन पर भले ताला नहीं है लेकिन इन पर सुनने वाले कान भी नहीं है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके लिए आपको 13 साल के इस बच्चे को सुनना होगा जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और रांची से आने वाले पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी से अपील करता है और जानते हैं क्या कहता है। ये कहता है कि गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों इंसान है, खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं। सुनिए।
2: गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं। मैं तुझे और तू मुझे इल्जाम देते हैं मगर अपने अंदर झांकता तू भी नहीं मैं भी नहीं। माना कि गलत फहमियों ने कर दी दोनों में पैदा दूरियां, वरना बुरा तू भी नहीं मैं भी नहीं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी 2-3 years 5 years की मेहनत यूं ही रायगढ़ चली गई, जब वो आते तो पता चलता कि ये पेपर कैंसिल हो गया, ये पेपर रद्द कर दिया गया, तो पेपर लीक हो गई। तो मैं सोचा नहीं, मुझे भी आवाज उठानी चाहिए फॉर माय फ्यूचर एंड फॉर दीदीज एंड भैयास फ्यूचर। सो जस्ट वी आर अपीलिंग दैट एवरी एग्जाम शुड बी टेकन विद कंडक्टेड विद द ट्रांसपेरेंसी एंड विद द फेयर ओपिनियन। जनरली सर रांची एक बार पॉपुलर हुआ था एमएस धोनी सर की वजह से, और जंतर मंतर जो कि दिल्ली है और उसमें ज्यादा तादाद में प्रोटेस्ट भी हुई, इसलिए सेलिब्रिटीज और जितने भी इन्फ्लुएंसर थे वो भी इस सड़क पर आए थे इस प्रोटेस्ट को देखने। यहाँ पे जो हमारा प्रोटेस्ट हो रहा है वो पूरे पीसफुली तरीके से हो रहा है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल वे में हो रहा था। मुझे यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे तादाद की डिफरेंस है, वहाँ पे तादाद और क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी और यहाँ पे तादाद और क्वांटिटी कम है। बस हम एक ही मांग कर रहे हैं सरकार से, सिर्फ हम एक ही मांग कर रहे हैं माननीय हेमंत सोरेन सर से, बिकॉज वी वांट आवर राइट्स, आवर अकाउंटेबिलिटी। वी वांट दैट एवरी एग्जाम शुड बी कंडक्टेड, नॉट ओनली जेपीएससी, नॉट ओनली जेएसएससी, एवरी एग्जाम शुड बी कंडक्टेड इन द फेयर एंड ट्रांसपेरेंट वे।
1: कई लोग कहते हैं कि उन्हें झारखंड में आंदोलन कर रहे छात्रों का मुद्दा अब तक समझ नहीं आया है, तो ऐसे लोगों को आज हम एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं जिसमें इस आंदोलन की वजह साफ साफ नजर आती है। ये तस्वीर है उस तराजू की जिसमें सरकारी नौकरियों का पूरा रेट चार्ट बनाया गया है। जैसे इसमें लिखा है कि एफआरओ की नौकरी का रेट 50 लाख रुपए, महिला सुपरवाइजर की नौकरी का रेट 20 लाख रुपए, माध्यमिक आचार्य की नौकरी का रेट 35 लाख रुपए, आबकारी पुलिस की नौकरी का रेट 15 लाख रुपए और पंचायत सचिव की नौकरी का रेट भी 15 लाख रुपए। सोचिए अगर किसी व्यवस्था में सचमुच नौकरियों का रेट कार्ड छप जाए तो फिर परीक्षा, मेरिट, मेहनत, ईमानदारी, इसका क्या मतलब रह जाएगा? आज ये तमाम युवा प्रदर्शनकारी इसी रेट कार्ड को लेकर रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे हैं और सरकार के लिए ये गाना गा रहे हैं कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। देखिए,
3: 20 लाख, डीजीटी के लिए 20 लाख, वीडियो सीओ के लिए 1 करोड़ और डीएसपी के लिए जो है सो आपको निर्धारित यहां पर नहीं किया है, काहे कि उसमें 1.25 करोड़।
4: रोज तुम जो पेपर लीक करोगे छाते उठ जाएंगे तो हाथ मारोगे, तुम तो धोखे बाज हो वादा करके भूल जाते हो।
5: इतराजू के माध्यम से हेमंत सोरेन को बता दे रहे हैं कि देखिए हेमंत सोरेन जी, ये रेट देखिए रेट, आप एफ आर ओ का 50 लाख, लेडीज सुपरवाइजर का 20 लाख, मध्यम आचार का 35 लाख, उत्पाद सिपाही का 15 लाख, पंचायत सचिव का 15 लाख रुपया। अब यहाँ जिस तरह के आप यहाँ पर एग्जाम लेते हैं, एग्जाम लेने के बाद यहाँ पर नेपाल ले जाते हैं, ये होता है झारखंड में एग्जाम होता है, बाप रे बाप ले जाता है बिहार और उत्तर प्रदेश यहाँ पर रटवाने के लिए कोशिश, रटवाने के बाद जब रट नहीं पाता है तो फिर अंदर से रंगवा देता है, और यही देखिए यही रेट होता है। तो आप एक रेट बता दीजिए, फिक्स रेट बता दीजिए, है मेरा में दम रहेगा तो हम लेंगे नौकरी, नहीं तो नहीं लेंगे।
1: इनकी व्यथा कौन सुनेगा? इस आंदोलन में शहीद आजम भगत सिंह, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लोकनायक बिरसा मुंडा जी और दिवंगत नेता शिबू सोरेन जी की तस्वीर को मंच पर रखा गया है। और सोचिए ये बात कितनी खूबसूरत है, ये बच्चे हेमंत सोरेन की सरकार से इंसाफ मांग रहे हैं, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसी विरोध प्रदर्शन में उन्होंने उनके पिता शिबू सोरेन की तस्वीर को प्रेरणा के तौर पर अपने साथ रखा है। इससे पता चलता है कि यह आंदोलन छात्रों के असली मुद्दों का है, उन्हें भी बातों की गंभीरता समझ में आ रही है, वो दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। ये युवा कैसे देशभक्ति के गानों से अपना जोश बढ़ा रहे हैं, जरा वो भी देख लीजिए। आज आमरण अनशन पर बैठे प्रदर्शनकारी छात्र राहुल क्रांति की काफी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें रांची के सदर अस्पताल ले जाया गया है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि कई बार अनुरोध करने के बाद भी मेडिकल जांच के लिए डॉक्टर्स की टीम को धरनास्थल पर नहीं भेजा गया, और सरकार को शायद इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि उसके राज्य के छात्र अपनी मांगों के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं। शुरुआत में केवल देवेंद्र नाथ महतो अनशन पर बैठे थे, लेकिन 4 अगस्त की रात से 4 और छात्र, जिनमें 2 छात्राएं भी शामिल हैं, अनशन में शामिल हो गए। इनमें 40 वर्षीय राहुल क्रांति की कहानी हमारी सरकारों पर कई सवाल उठाती है। राहुल क्रांति पिछले 20 सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, और उनका दावा है कि 172 अंक लाकर वो एक बार परीक्षा में पास भी हो गए थे, लेकिन सिस्टम की बेईमानी ने उनसे उनके हक को छीन लिया। दूसरी छात्रा है हबीबा, जो रांची की रहने वाली है, और वो भी लंबे समय से झारखंड लोक सेवा आयोग की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है। तीसरे छात्र है रुपेश, जो कई सालों से सरकारी नौकरी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उनका आरोप है कि बार बार पेपर लीक और भर्ती में धांधलियों ने उनके जैसे ही कई युवाओं का भविष्य बर्बाद ही कर दिया है। वो इस आंदोलन में इसलिए शामिल हुए ताकि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बने, निष्पक्ष हो। और चौथी छात्रा है सविता कुमारी, जिनका कहना है कि परीक्षाओं की धांधलियों ने उनके भी कई साल बर्बाद किए, और अब तो उनके माता पिता भी कहते हैं कि ये व्यवस्था कभी नहीं बदलेगी। यानी भूख हड़ताल पर बैठे इन छात्रों की कहानी, इनका संघर्ष, इनकी पीड़ा एक जैसी है, जिसे अभी तक किसी ने समझा नहीं। सुनिए।
6: लेकिन क्या करें, घर से बाहर ना, नौकरी के नाम से ही घर से बाहर निकले हैं। ये तकलीफ ना इसीलिए है, अगर घर से निकलते ना कि पापा जा रहे हैं कुछ करने के लिए, तो शायद इतना तकलीफ ना होता।
7: राहुल, आपने भी प्रतियोगी परीक्षाएं दी थी अपने समय में?
8: जेपीएससी का लगातार परीक्षा लिखते हैं, पहले तो पीटी निकल जाता था, इस बार तो वो हमारे लीक हो गया तो बिक गया, तो निकलना तो दूर की बात है। सहायक एचआर का भी परीक्षा क्वालिफाई हूँ, सीट खाली है फिर भी सरकार नियुक्ति नहीं दे रही है।
9: मैंने पंचायत सचिव का एग्जाम दिया था, 2017 की वैकेंसी थी तो उसमें मैं पास हो गई थी। फिर उसमें सेकेंड एग्जाम था हिंदी टाइपिंग का, तो उसमें भी क्वालिफाई हुई। फिर डीवी भी हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। वह ऐसे भी तो डिले कर ही रही थी, तुरंत नहीं कर रही थी एग्जाम वगैरह। फिर एक साल लगे, फिर दो साल लगे उस एग्जाम को। उसके बाद जब उसका रिजल्ट देना था तो 5 साल तक प्रोटेस्ट करना पड़ा, 5 साल तक।
10: करते करते अब तो मेरा उम्र भी निकलते जा रहा है, 28 साल होने जा रहा है, 28 में पार होने जा रहा है, अब 29 में पहुंच जाएंगे। 1 से 2 साल में मेरा एज भी खत्म होने को रहेगा। फिर हम तो कोई फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं, अभी पढ़ाई के चक्कर में हम आगे कुछ और पढ़ाई नहीं किया। मेरा घर की स्थिति बहुत खराब था सर, इसीलिए हमको यही लगता था कि एगो जॉब ले ले, उसके बाद जो आगे के भविष्य होगा आगे देखा जाएगा।
1: इस बीच आज ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा पर एक व्यक्ति ने स्याही फेंक दी। ये घटना रांची में उस वक्त हुई जब नेहा बोरा उनके छात्र संगठन के कार्यकर्ता और समर्थक विधानसभा की ओर मार्च कर रहे थे। पुलिस ने स्याही फेंकने वाले व्यक्ति को मौके पर ही हिरासत में ले लिया, जिसका कहना यह है कि नेहा बोरा उमर खालिद की समर्थक है और इसीलिए वो उनके आंदोलन में शामिल होने का विरोध कर रहा था। हालांकि नेहा बोरा ने आरोप लगाया कि उन्हें इस आंदोलन में हिस्सा लेने से कुछ राजनीतिक लोग रोकना चाहते हैं। सुनिए।
11: भाई क्या कहोगे? क्यों?
12: वो भाजपा और आरएसएस के गुंडे जो स्टेडियम में बैठ करके बोल रहे हैं कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं, जब जेपीएससी को रद्द करने के लिए, जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने के लिए छात्र विधानसभा तक मार्च निकाल रहे हैं, तो वही गुंडे जो खुद को छात्रों का हितैषी कहते हैं मेरे ऊपर इंक फेंकते हैं, ये कौन सा छात्रों का हितैषी है?
1: खैर आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि कभी चाय पर चर्चा से सियासत की नई परिभाषा तय कर चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नाश्ते पर चर्चा की तो उसके चर्चे संसद के गलियारों तक होने लगे। जब संसद में गतिरोध है, हंगामों की वजह से लगातार कार्यवाही बाधित हो रही है, तब आज एनडीए कुछ तस्वीरों में पहले से ज्यादा मजबूत नजर आने की कोशिश में दिखा। पहले आप इन तस्वीरों का ये एल्बम देखिए, फिर बताते हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात आज 45 सांसदों से हुई। इनमें अधिकतर वो सांसद हैं जो हाल ही में एनडीए का हिस्सा बने हैं। अब पूरी स्ट्रैटेजी समझिए। इनमें 20 सांसद वो हैं जिन्हें आप टीएमसी के बागी कह लीजिए। जी हां, ऐसे बागी जो अब एनसीपीआई यानी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के सांसद बन गए। आज प्रधानमंत्री मोदी से मिलने वाले एनसीपीआई के सांसदों में काकोली घोष दस्तेदार, मतलब एक वक्त पर ममता बनर्जी की सबसे मजबूत सिपहसालार और मोदी के खिलाफ बोलने में सबसे आगे, सुदीप बंदोपाध्याय, ठीक ऐसा ही सायोनी घोष, वो तो बीजेपी के किसी नेता को छोड़ती नहीं थी, शताब्दी रॉय और बापी हल्दर समेत 17 सांसदों के अलावा 3 सांसदों का खास जिक्र हो रहा है। यह बहरामपुर के सांसद यूसुफ पठान, याद होगा आपको बहरामपुर वही सीट है जहां पर एक वक्त पर यूसुफ पठान को जब ममता बनर्जी ने टिकट दिया तो खूब हंगामा हुआ था। जांगीपुर के सांसद खलीलुर रहमान, मुर्शिदाबाद के सांसद अबू ताहिर, इनका जिक्र खास है और वो क्यों है ये समझिए। ये तीनों मुस्लिम सांसद 28 जुलाई और 4 अगस्त को एनडीए की मंगल मिलन बैठकों में शामिल नहीं हुए। फिर चर्चा शुरू हो गई कि भाई मुस्लिम संघ जो सांसद है वो तो मोदी की बैठक में जाने को तैयार नहीं है, बाकी के एनसीपीआई के सांसद उन बैठकों में आए थे, इसीलिए इन तीनों सांसदों को लेकर अटकलें लगनी शुरू हो गई थी। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री मोदी के साथ नाश्ते पर चर्चा के बाद तस्वीरें आई तो अटकलों पर फुल स्टॉप लगा। यहां मैं बता दूं कि एनसीपीआई में टीएमसी के बागी सांसदों के विलय को लोकसभा स्पीकर ने भी मान्यता नहीं दी है और टीएमसी के चुने हुए 27 लोकसभा सांसदों में से अलग गुट बनाने के लिए 2/3 नंबर 18 है, यानी ये 3 सांसद बहुत अहम है। एनसीपीआई के 20 सांसदों की प्रधानमंत्री के साथ बैठक का आधिकारिक ब्यौरा तो सामने नहीं आया है, लेकिन कुछ सांसदों ने आज तक से बातचीत की है। वो इस बैठक को लेकर क्या कह रहे हैं, पहले वो सुनिए।
1: Few moments what we spent together that will be ever memorable for me. जिंदगी में बहुत कुछ आते हैं जाते हैं, सब कुछ होता रहता है, पर आज का सुबह का जो ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग को इनवाइट मिला था हमारे ऑनरेबल पीएम से और उनसे बात किए और उनका जो राय है, उनका जो देखने का अंदाज है देश के ऊपर और जैसे वो काम कर रहे हैं सबके लिए, सभी लोगों के लिए, बच्चों से बुजुर्ग तक सबके लिए सोच के जैसे हमारे पीएम काम कर रहे हैं, उनके साथ 2 मिनट वक्त गुजारना हमारे लिए बहुत बहुत भाग्यशाली।
2: क्या खास मैसेज दिया है कुछ उन्होंने सांसदों को आज जो मुलाकात हुई?
1: नहीं, उन्होंने ऐसे ही कहा कि देखिए हम तो देश के लिए काम करते हैं और हमारे साथ जो जो है हमारे ग्रुप के जो है हम आपके साथ है, यही सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ये कहा है कि जैसे हम सोचते हैं आप उसी सोच पे विश्वास रखिए और उस हिसाब से आगे बढ़ते चलिए।
3: बहुत अच्छा चर्चा हुआ है
4: जी,
3: वेरी गुड।
4: किन मुद्दों पे चर्चा हुई सर?
3: हर ये डेवलपमेंट के बारे में।
4: कई सारे आपके साथी हैं जो मुस्लिम समुदाय से हैं, खासतौर पे मुर्शिदाबाद के जो सांसद हैं तीनों,
3: सब ठीक है, सब ठीक है।
4: पीएम वो भी मौजूद थे मीटिंग में?
3: मीटिंग में मौजूद थे, वो लोग भी सपोर्ट किया।
4: क्या स्पीकर का इशू भी चला इस पे मस्जिदों को लेके जो इशू?
3: नो।
4: ओके, आखिरी सवाल सर, एफसीआरए पे क्या रुख रहेगा आप लोगों का सर?
3: हम लोग मदद करेंगे।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन सांसदों से मुलाकात की है उनमें शिवसेना उद्धव गुट के शिंदे गुट में शामिल हुए सांसद भी शामिल है। महाराष्ट्र के इन सांसदों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की अलग से भी मुलाकात हुई है। एकनाथ शिंदे के साथ ये तस्वीर देखिए। खास बात यह है कि उस दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात में एकनाथ शिंदे ने उन्हें भगवान विट्ठल और देवी रुक्मिणी की मूर्ति भेंट की। सोलापुर से आने वाली शिवसेना के राज्यसभा सांसद ज्योति वाघमारे ने उन्हें सोलापुर हैंडलूम धवल उपहार में दिया। धवल सोलापुर का पारंपरिक और एक विशिष्ट हस्तकरघा वस्त्र है। आज नेशनल हैंडलूम डे भी है। अब देखिए, एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री के साथ अपनी मुलाकात की तस्वीरों को एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि इस बैठक के दौरान लोकसभा के वर्तमान संसदीय सत्र, उसकी कार्यवाही, शिवसेना के सांसदों की भूमिका, राज्य में चल रहे विकास कार्यों, केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय तथा राज्य में बारिश और बाढ़ की मौजूदा स्थिति जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से पीएम से चर्चा हुई। एकनाथ शिंदे के इस बयान से आपको अंदाजा लग गया होगा कि संसद में चल रहे गतिरोध को लेकर प्रधानमंत्री के साथ शिवसेना सांसदों की चर्चा हुई है। ये बात अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि विदेशी फंडिंग पर सोमवार को सरकार संसद में नया एफसीआरए बिल पेश कर सकती है। एफसीआरए बिल को पास कराने के लिए साधारण बहुमत चाहिए, लेकिन इस बिल के खिलाफ जिस तरह आशंकाओं को खड़ा करने की कोशिश हुई है, उसके बाद सरकार संसद में एकजुट शक्ति के साथ दिखने की कोशिश कर रही है। यहां यह भी बता दें कि कांग्रेस ने भी 10, 11, 12 अगस्त यानी सोमवार से लेकर बुधवार तक अपने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। व्हिप में कहा गया है कि संसद में महत्वपूर्ण चर्चा होनी है, इसलिए आपका संसद में रहना जरूरी है। चलिए, संसद तो सब आएंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि संसद में गतिरोध है, संसद में जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर दिल्ली पुलिस के एक्शन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की विपक्ष में मांग कर रहा है, हंगामा कर रहा है। इन्हीं परिस्थितियों में न्यू एनडीए की शक्ति से सरकार विपक्ष का मुकाबला करने की कोशिश में तैयार होती दिख रही है, यानी शक्ति प्रदर्शन का ये पूरा एक जो है डिस्प्ले है। आपको एनडीए का नंबर गेम भी बता देती हूँ। लोकसभा में एनडीए के 318 सांसद हैं, जिनमें बीजेपी के 240, एनसीपीआई के 20 जोड़ लीजिए, शिवसेना 12, एनसीपी अजित पवार गुट 1, टीडीपी 16, जेडीयू 12, अन्य दलों के 16 सांसद हैं। जबकि राज्यसभा में एनडीए के 142 सांसद हैं, जिनमें बीजेपी के 117, टीडीपी के 4, जेडीयू के 4, एनसीपी अजित पवार गुट 4, शिवसेना के 2 और अन्य दलों के 11 सांसद मौजूद हैं। खैर, इन मुलाकातों के बीच चर्चा यही है कि सरकार परिसीमन और विदेशों से मिलने वाली फंडिंग को लेकर जो नए बिल लाना चाहती है, उनके लिए सांसदों को एकजुट किया जा रहा है। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि एक दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने जॉइंट एक्शन फोरम ऑन माइनॉरिटीज के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, जिसमें चर्चेस से जुड़े पादरी और कुछ प्रतिनिधि शामिल थे। ये बैठक एक घंटे तक चली थी, जिसमें विदेशी फंडिंग से जुड़े बिल को लेकर इनकी आपत्तियां रखी गई थी। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सांसद रैली मूर ने यह कहा था कि अगर भारत सरकार इस कानून को लेकर आई तो यह कानून भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय रिश्तों में बड़ा मुद्दा बन जाएगा। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि भारत सरकार का यह नया कानून ईसाई धर्म से जुड़ी संस्थाओं और चर्चों पर कब्जा करने के लिए लाया गया है। इसे ईसाई पर सीधा, क्रिश्चियनिटी पर सीधा हमला माना जाएगा। बड़ी बात यह है कि हमारे देश में मूर के इस बयान पर कई नेताओं और लोगों ने चिंता जताई है, क्योंकि वो इसको सीधा सीधा इस बिल को कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते खराब होंगे, अगर ये बिल आया तो ये क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है। इस बिल पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। आज समझना बहुत जरूरी हो गया है कि आखिर इस बिल में ऐसा क्या है और इस सवाल इतने सारे इस एफसीआरए बिल को लेकर क्यों उठ रहे हैं। तो हमने सोचा सरल भाषा में आपको बता दें कि ये बिल है क्या। इस नए बिल का नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026, और ये पुराने एफसीआरए जो एफसीआरए कानून है उसका एक बदला हुआ रूप है। सरल शब्दों में समझे तो एफसीआरए विदेशी फंडिंग की निगरानी के लिए बनाया गया एक कानून है, जिसमें सरकार ये कहती है कि एनजीओ, ट्रस्ट, चर्च, मंदिर, मस्जिद, स्कूल, अस्पताल या सामाजिक संस्थाओं के विदेशी फंडिंग लेने पर रोक नहीं है, लेकिन इसके लिए इन संस्थाओं को कुछ नियमों का पालन करना होगा। क्या नियम होंगे? जैसे ये बताना होगा कि पैसा किसने भेजा, कितना भेजा, क्यों भेजा और इसका इस्तेमाल कहां हुआ है, यानी लेखा जोखा देना होगा। ऐसा भी नहीं कि ये कानून मौजूदा सरकार में पहली बार आया। आज से 50 साल पहले साल 1976 में तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार ने विदेशी फंडिंग के लिए पहली बार इस कानून को लागू किया था। उस वक्त कांग्रेस सरकार का ऐसा मानना था कि अगर विदेशी फंडिंग की निगरानी नहीं हुई तो इससे चुनाव प्रभावित होंगे, सरकार पर दूसरे देशों का प्रभाव पड़ेगा, आतंकवाद, अलगाववाद को फंडिंग हो सकती है। यानी सरकार को जब ऐसा लगा कि विदेशी फंडिंग से सरकारें गिराई जा सकती हैं, कहीं कोई विरोध प्रदर्शन आंदोलन कराया जा सकता है, कहीं किसी प्रोजेक्ट, फैक्ट्री या प्लांट को बंद कराया जा सकता है, तब यह कानून बना। यह दावा भी गलत है कि मौजूदा सरकार इस कानून में पहली बार बदलाव कर रही है। इस कानून में पहला संशोधन 1984 में हुआ, जब विदेशी फंडिंग लेने वाले संगठनों और धार्मिक संस्थाओं के लिए रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया गया। इसके बाद 2010 में यूपीए की सरकार ने इस कानून को और सख्त बनाया। यह तय हुआ कि अब किसी भी एनजीओ का रजिस्ट्रेशन केवल 5 सालों के लिए होगा। नियमों का पालन नहीं करने पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा और निगरानी को लेकर ज्यादा सख्ती की जाएगी। इसके बाद साल 2020 में मौजूदा सरकार ने पहला संशोधन किया, दूसरा संशोधन साल 2022 में किया गया। यानी समय के साथ इस कानून में बदलाव होते रहे और सरकार अभी ऐसा कह रही है कि वो पहली बार ऐसे संशोधन इस कानून में नहीं कर रही है। अब ये समझिए कि मौजूदा कानून में सरकार ऐसे कौन से बदलाव करना चाहती है जिन पर विवाद है, जिसको लेकर लोग विरोध कर रहे हैं। इसमें पहला प्रावधान है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का। इसके तहत अगर विदेशों से फंडिंग लेने वाली कोई संस्था बंद हो जाती है या उसका लाइसेंस रद्द हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उस संस्था की सारी संपत्ति इस अथॉरिटी के अधिकार में चली जाएगी। यानी मान लीजिए अगर किसी संस्था ने विदेशों से फंडिंग लेकर अस्पताल बनाया, स्कूल बनाया या कोई धार्मिक स्थल बनाया, बाद में वो संस्था बंद हो गई तो उसकी संपत्ति इस अथॉरिटी के पास चली जाएगी। अब इस पर विरोध करने वाले लोगों और संस्थाओं का ये कहना है कि सरकार इस कानून का दुरुपयोग कर सकती है, यानी उन्हें डर है कि सरकार अगर जानबूझकर किसी संस्था का लाइसेंस ही कैंसिल कर दे तो उसकी संपत्तियां इस अथॉरिटी के पास चली जाएंगी। जबकि सरकार ये कह रही है कि ये डर या ऐसी कोई भी आशंका सही नहीं है। सरकार का कहना है कि अगर किसी संस्था का लाइसेंस दोबारा बहाल होता है तो उसे उसकी संपत्तियां वापस लौटा दी जाएंगी। अगर हमेशा के लिए लाइसेंस रद्द हो जाता है तब ऐसी स्थिति में इन संपत्तियों को पब्लिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसी बात को लेकर बहुत सारे लोग अभी ये कह रहे हैं कि ऐसा होने से कई चर्च सरकार के कब्जे में चले जाएंगे, जबकि सरकार कहती है कि ये सब झूठ है। सरकार का कहना है कि जो चर्च, मस्जिद, मंदिर विदेशी फंडिंग से बनाए गए हैं उनका कभी भी धार्मिक स्वरूप नहीं बदला जाएगा। यहां यह समझना भी जरूरी है कि इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी। सरकार कहती है कि इसके पीछे ऐसे कई मामले हैं जिनमें कुछ लोग एनजीओ बनाकर पहले विदेशी फंडिंग लेते थे, फिर उस एनजीओ को बंद कर देते थे और बाद में संपत्तियों की ट्रैकिंग मुश्किल हो जाती थी। ऐसा ना हो और इन संपत्तियों की ट्रैकिंग की जा सके, यही सोचकर सरकार ने इस बिल में यह प्रावधान जोड़ा है। दूसरा प्रावधान इसमें यह है कि अगर किसी एनजीओ ने अपना रजिस्ट्रेशन 5 साल में फिर से रिन्यू नहीं कराया तो उसका रजिस्ट्रेशन अपने आप रद्द हो जाएगा। इसी में यह नियम भी जोड़ा गया है कि अगर किसी एनजीओ ने 2 साल में कम से कम 10 लाख रुपए की विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल नहीं किया तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इस पर विरोध करने वाले लोगों का बड़ा तर्क यह है कि जो छोटे एनजीओ हैं, जो छोटे संगठन हैं और जो ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते वो बंद हो जाएंगे। हालांकि सरकार का कहना है कि वो ये नियम इसलिए ला रही है क्योंकि अभी बहुत सारे एनजीओ रजिस्ट्रेशन लेकर बैठ जाते हैं लेकिन काम नहीं करता। यानी सरकार का दावा है कि जो डमी एनजीओ है जिन पर विदेशी फंडिंग को एक जगह से दूसरी जगह घुमाने का आरोप लगता है, पैसा इधर से उधर करने के लिए, उनके लिए ये बदलाव किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार ने इसमें तीसरा और सबसे अहम प्रावधान ये जोड़ा है कि अब से एक एनजीओ दूसरे एनजीओ को विदेशों से मिली फंडिंग ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। चौथा प्रावधान रिपोर्टिंग को लेकर है। इसमें विदेशी फंडिंग लेने वाले संगठनों को यह बताना होगा कि उन्होंने विदेशों में किस संस्था से पैसा लिया, किससे लिया, किस उद्देश्य से लिया, किस राज्य में खर्च किया और किस चीज पर खर्च किया, मतलब कहां कहां खर्च हुआ है उसका ब्यौरा। यानी अगर किसी एनजीओ ने मध्य प्रदेश में स्कूल बनाने के लिए विदेशी फंडिंग ली होगी तो उसे उस पैसों को किसी और चीज पर खर्च नहीं करना है, वो नहीं कर सकते हैं। अगर आपका उद्देश्य था स्कूल बनाना तो आपको स्कूल ही बनाना होगा। और यही नहीं, वो एनजीओ इस पैसे को किसी दूसरे राज्य में नहीं भेज सकेगा। यानी ऐसा नहीं है कि आप पैसा ले रहे हैं कि हम यहाँ पर स्कूल बनाएंगे और उससे आप अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं या उससे आप आपस में बांट रहे हैं। विदेशों से पैसा अगर किसी राज्य में स्कूल या कोई भी चीज बनाने के लिए आया है तो उससे वही काम किया जाएगा और वो विदेशी फंडिंग दूसरे कामों में इस्तेमाल हो ही नहीं पाएगा। माना जा रहा है कि ये प्रावधान इसलिए लाया गया क्योंकि अभी सरकार को लगता है कि पैसा तो किसी और काम के लिए आता है, खर्च किसी और काम पर होता है। और ऐसा भी नहीं है कि ये बात सिर्फ मौजूदा सरकार को लग रही है। साल 2012 तमिलनाडु के कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन हुए। ये तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शन करने वाले लोगों का कहना था कि इससे पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। उस वक्त जब इस पूरे मामले की जांच हुई तो तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने साइंस पत्रिका को दिए इंटरव्यू में कहा था कि विदेशों से फंडिंग लेने वाले कुछ एनजीओज इन विरोध प्रदर्शनों को करवा रहे। बाद में यूपीए सरकार में ही गृह मंत्रालय ने इस मामले की जांच संभाली थी और ये कहा था कि 3 एनजीओ ने सामाजिक कामों के लिए विदेशों से फंडिंग ली और बाद में यही पैसा इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कराने में लगाया, जो कि भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अब इस बिल के सबसे अहम बिंदु पर आते हैं जिसमें धर्म परिवर्तन का जिक्र किया गया है। सरकार कहती है कि उसने ऐसे सभी धार्मिक कामों और गतिविधियों की एक सूची बनाई है जो विदेशों से फंडिंग लेकर किए जा सकते हैं, लेकिन इन कामों में धर्म परिवर्तन और उसके प्रचार प्रसार को शामिल नहीं किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब विदेशों से फंडिंग लेकर धार्मिक स्थलों का रखरखाव हो सकता है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, गरीबों की मदद भी हो सकती है, अस्पताल चलाए जा सकते हैं, स्कूल खोले जा सकते हैं, लेकिन विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल धर्म परिवर्तन के लिए नहीं हो सकता। भारत में 52,156 एनजीओ और संस्थानों को विदेशी फंडिंग का लाइसेंस दिया गया है, जिनमें सिर्फ 14,435 के करीब एनजीओ हैं जो सक्रिय हैं, एक्टिव हैं। 22,496 हैं जो कि लाइसेंस रद्द है। अब देखिए, जो 14,435 हैं जो सक्रिय हैं, जबकि 72% एनजीओ के लाइसेंस जो है वो या तो रद्द है या रिन्यू नहीं हुए हैं। दूसरा, भारत उन देशों में शामिल है जहां इन एनजीओ को सबसे ज्यादा विदेशों से फंडिंग आती है। गृह मंत्रालय के मुताबिक साल 2019 से 22 के बीच 55,741 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग आई। अगर सिर्फ 2024-25 की बात करें तो सिर्फ इस एक साल में 22,963 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग आई, और यह पैसा कम नहीं है। अगर आप भारत के इस नक्शे को देखेंगे तो हमारे देश के जिन 5 राज्यों में विदेशी फंडिंग लेने वाले एनजीओ की संख्या सबसे ज्यादा है, उसमें तमिलनाडु पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, आंध्र प्रदेश तीसरे, पश्चिम बंगाल चौथे और कर्नाटक 5वें स्थान पर है। इसके अलावा रेंटेक डिजिटल के मुताबिक 2023 के मुकाबले भारत में चर्चेस की संख्या 6% बढ़ी है। इनमें भी सबसे ज्यादा एनजीओ आंध्र प्रदेश में है, फिर तमिलनाडु में है, तीसरे स्थान पर सूची में तेलंगाना है। यहां सरकार एक और बात यह कहती है कि इस कानून में सांसद, विधायक, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार, सरकारी कर्मचारी, जज, राजनीतिक दल, पत्रकारों के विदेशी फंडिंग लेने पर रोक लगाई गई है, और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि भारत का लोकतंत्र प्रभावित ना हो। लेकिन सरकार कहती है कि अगर ये विदेशी फंडिंग भारत के लोकतंत्र को प्रभावित करने लगे तो वो क्या करेगी। खैर, आगे बढ़ते और आपको ये बताते हैं कि आज नेशनल हैंडलूम डे है, यानी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। हमारी तरफ से इस देश के असंख्य बुनकरों को बहुत बहुत बधाई। उनके हाथों से, मेहनत से जो कपड़े बनते हैं, इस देश की वही शान है। अगर आप देखिए तो कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पिछले हफ्ते ही फ्रेंडशिप डे मनाया होगा, लेकिन उन्हें अपने देश का नेशनल हैंडलूम डे पता है। इस दिन को समझने के लिए सबसे अच्छा शब्द है ताना बाना। आप अक्सर सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और जातीय ताने बाने के बारे में सुनते हैं। कई बार हम भी कहते हैं कि इन चुनावों का या भारतीय समाज का या हमारे रिश्तों का ताना बाना किन चीजों पर बुना गया है, लेकिन जानते हैं ताना बाना शब्द कहां से आया? ये शब्द इसी हैंडलूम यानी कपड़ों की बुनाई से आया है। पुराने जमाने में जब दो धागों को एक दूसरे से गूंथा जाता था तब उसे ताना बाना कहते थे। इनमें ताना ऊपर से नीचे आने वाले धागे को कहा जाता है, जबकि बाना एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने वाले धागे को कहा जाता था। लेकिन सोचिए आज इस बात को कितने लोग जानते हैं। हकीकत यह है कि भारत में हैंडलूम का इतिहास हजारों साल पुराना है। कपड़े की बुनाई ने भारत को सांस्कृतिक रूप से बुना है और हमें 1000 साल पहले दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाया, लेकिन धीरे धीरे हम इसकी ताकत को भूल गए। ये भी भूल गए कि भारत के सांस्कृतिक विरासत का ताना बाना कितना विशाल है, कितना बड़ा है। दुनिया में सबसे पहले कपास की खेती, सूती वस्त्र बनाने वाले देशों में भारत सबसे आगे हुआ करता था। इसका प्रमाण हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और राखीगढ़ी, जो राखीगढ़ी की प्राचीन सभ्यता है, उनमें मिले, जहां कपास के रेशे, सूत काटने की कलियां और कपड़े के निशान मिले। द वेजिटेबल लैम्प ऑफ टार्टरी नाम की एक पुस्तक में बताया गया है कि यूरोप में लंबे समय तक लोग यही मानते थे कि कपास किसी पौधे पर उगने वाले भेड़ जैसी चीज होती है, और ऐसा इसलिए मानते थे क्योंकि यूरोप के लोगों ने कभी कपास का पौधा देखा ही नहीं था, जिसके कारण उनके लिए समझना ही मुश्किल था कि कपास बनता कैसे। ये उस दौर की बात है जब ज्यादातर सभ्यताओं और देशों में उनके कपड़े, जो ऊन के कपड़े हैं, वो पहने जाते थे, और भारत में कपास की खेती होती थी, सूती वस्त्र पहने जाते थे। मौर्य काल, गुप्त काल में भारतीय सूती कपड़ों का स्वर्ण काल आया। रोमन इतिहासकार लिखते हैं कि उस युग में भारत से इतनी मात्रा में कपड़ा खरीदा जाता था कि रोम का सोना भारत चला जाता था, और यही सोना बाद में भारत के राजा महाराजा मंदिरों में दान कर देते थे। सोचिए, आज भारत समेत कई देशों में पश्चिमी देशों के फैशन को फॉलो किया जाता है, जबकि उस दौर में रोमन महिलाएं भारतीय सूती और मलमल के वस्त्र पहनना पसंद करती थी और ये बड़ी बात थी। सिल्क रूट और समुद्री व्यापार के जरिए भारत में बने कपड़े रोम, मिस्र, अरब, फारस तक कई क्षेत्रों में भेजे जाते थे। जब मध्यकाल और मुगल काल आया तब भी भारतीय कपड़ों की प्रभाव उनका जो प्रभाव है वो कम नहीं हुआ। मुगलों ने बनारसी सिल्क, जामदानी, ब्रोकेट, पश्मीना, किनखाब को संरक्षण दिया, अपने दरबारों में विशेष बुनकर नियुक्त किए। ये वही बुनकर थे जो उस दौर में मुगलों के लिए खास कपड़े बुनते थे। इसके कारण एंगस मैडिसन के मुताबिक साल 1700 तक दुनिया की अर्थव्यवस्था में अकेले भारत की हिस्सेदारी जानते हैं 24% थी। लेकिन जब अंग्रेज भारत आए तो सब कुछ बर्बाद हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से कच्चा कपास खरीदा, सस्ता कच्चा कपास, उससे इंग्लैंड को मिलों में लगी मशीनों में से कपड़ा बनाया और फिर वही कपड़ा भारत में बेचना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि भारत का कपड़ा उद्योग खत्म होने लगा। भारतीय बुनकरों को मजबूरन अंग्रेजों को कपास बेचने के लिए मजबूर किया गया और इससे लाखों बुनकरों की आजीविका समाप्त हुई। साल 1905 में जब अंग्रेज संयुक्त बंगाल का धर्म के आधार पर विभाजन करना चाहते थे तब भारतीयों ने ही अंग्रेजों की इस क्रूरता का विरोध किया। उस जमाने में क्रांतिकारी बिपिन चंद्र पाल ने स्वदेशी का नारा दिया और यह आह्वान किया कि भारत के लोग अंग्रेजों की मिलों में बना कपड़ा नहीं खरीदेंगे, और क्योंकि स्वदेशी कपड़ा जो है उसका आह्वान किया कि भारत के लोग अब अंग्रेजी कपड़ा नहीं पहनेंगे और स्वदेशी कपड़ा ही चलेगा। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के एक चुनाव में फिलिस्तीनी समर्थक और इसराइल विरोधी मुस्लिम नेता की जीत ने सबको हैरान कर दिया है। अमेरिका के मिशिगन में यह डेमोक्रेटिक प्राइमरी चुनाव था। इसमें डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से डॉक्टर अब्दुल अल सैयद को जीत मिली है और उन्होंने पार्टी की तरफ से सेनेट चुनाव का टिकट दिया गया है। डेमोक्रेटिक प्राइमरी चुनाव का मतलब है डेमोक्रेटिक पार्टी के ही कुछ उम्मीदवारों के बीच होने वाला ऐसा चुनाव जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को सेनेट पद के चुनाव में उतारा गया। इस बार इस रेस में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से 3 उम्मीदवार थे। मुकाबला डॉक्टर अब्दुल अल सैयद, हेली स्टीवंस और मेलरी मैकमोरो के बीच में था, जिसमें अब्दुल अल सैयद ने जीत दर्ज की। उन्होंने हेली स्टीवंस को बहुत कम अंतर से हरा दिया। चुनाव में तीसरे नंबर पर मेलरी मैकलोरो थी, मैकमोरो माफ कीजिएगा। हेली स्टीवंस की हार और अब्दुल अल सैयद की जीत लोगों को चौंका रही है और इस पर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। वजह यह है कि हेली स्टीवंस पिछले 4 बार से सांसद रही हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति से हार गईं जो इसराइल का विरोधी माना जाता है और पहली बार किसी पार्टी की तरफ से सेनेट पद का कोई मुस्लिम उम्मीदवार अमेरिका में बना है। अमेरिकी सेनेट के पिछले 250 वर्षों के इतिहास में आज तक कोई मुस्लिम उम्मीदवार सेनेट में नहीं पहुंचा। अगर अब्दुल अल सैयद जीतते हैं तो पहली बार कोई मुस्लिम व्यक्ति सेनेटर बनेगा और यही बात पॉलिटिकल पंडितों को हैरान कर रही है। अब्दुल अल सैयद के माता पिता मिस्र से थे। अब्दुल फिलिस्तीन के समर्थक हैं। वो मानते हैं कि गाजा में हो रहे इसराइली हमलों को नरसंहार कहा था और युद्ध विराम की अपील की थी। अब्दुल अल सैयद ये भी मानते हैं कि अमेरिका को इसराइल की सैन्य मदद नहीं करनी चाहिए। इसराइल को लेकर विचारों की वजह से माना जा रहा था कि अब्दुल को समर्थन नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका में एक बड़ा तबका अब ऐसी सोच रखता है जिसमें वो इसराइल को लगातार हथियार देना और लगातार फिलिस्तीन पर बमबारी के खिलाफ है। हेली स्टीवंस का दावा बहुत मजबूत था क्योंकि वो 4 बार की सांसद थी और उन्हें डेमोक्रेटिक सेनेट के वरिष्ठ नेताओं का समर्थन भी मिला हुआ था। हेली स्टीवंस को इसराइल समर्थक लॉबी जैसे अमेरिकन इसराइल पब्लिक अफेयर्स कमिटी, डेमोक्रेटिक मेजोरिटी फॉर इसराइल का पूरा समर्थन मिला था। इन लोगों ने हेली को चुनाव जितवाने के लिए करीब 514 करोड़ रुपए खर्च किए थे। यह पैसा अब्दुल अल सैयद के चुनावी खर्च के मुकाबले बहुत ज्यादा था। बावजूद इसके अब्दुल अल सैयद ने हेली स्टीवंस को हरा दिया। इस जीत ने अमेरिकी चुनावी पंडितों को नए बदलाव का इशारा दिया। मिशिगन राज्य अमेरिका की राजनीति में एक स्विंग स्टेट माना जाता है। स्विंग स्टेट का मतलब ऐसे राज्य से है जहां डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी की जीत की संभावना 50-50 होती है। कई बार ऐसे राज्यों को वहां बैटल ग्राउंड स्टेट या पर्पल स्टेट भी कहा जाता है। यही वजह है कि स्विंग स्टेट्स पर दोनों पार्टियों और पूरे अमेरिका की नजर होती है। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और कितना फरेबी हो चुका है इंसान, पीठ पीछे जिसकी धज्जियां उड़ाता है उसी के साथ ठहाके भी लगाता है। नमस्कार।
5: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों की राज्य सरकार के साथ पहले दौर की मीटिंग खत्म हो गई। हेमंत सोरेन सरकार ने चार मंत्रियों का एक पैनल बनाया था जिसने 10 छात्रों के डेलीगेशन से बात की। स्टेट गेस्ट हाउस में बातचीत के लिए पहुंचा प्रतिनिधिमंडल आंदोलन कर रहे मुख्य छात्र समूह का है जो देवेंद्र महतो के गुट से अलग है। प्रतिनिधिमंडल ने बैठक में शामिल होकर छात्रों का पक्ष रखा। बात खत्म होने के बाद छात्र नेता रविन्द्र पासवान ने कहा, यह हमारी पहली मीटिंग थी जो बहुत सकारात्मक रही। भरोसा है सरकार, मुख्यमंत्री और सभी मंत्री हमारी मांगों पर विचार करेंगे।
6: ये आप लोगों की और क्या निर्णय लिया गया?
7: अभी बस धरना पर लिया गया है और आगे का वार्ता भी चलेगा, आंदोलन कंटिन्यू।
6: क्या कहा चलेगा मंत्री ने, क्या कहा आप लोगों की बात पर?
7: हम लोगों की बात को सकारात्मक लिया गया है और मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, उसमें समाधान किया जाएगा।
6: ठीक,
7: सकारात्मक बात हुई है, हम लोगों का डिमांड लिया गया है, डिमांड पे चर्चा भी आगे और भी चलेगा, अभी आंदोलन कंटिन्यू है।
8: हाँ, जारी रहेगा। This is the first round.
5: झारखंड आंदोलन को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल उठा वो ये कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके या फिर इनका कोई बड़ा नेता अब तक इस आंदोलन में शामिल क्यों नहीं हुआ। हालांकि आंदोलन के 14वें दिन जंतर मंतर पर अनशन करने वाली आइसा की अध्यक्ष नेहा बोरा नजर आईं और समर्थन देने की बात करती हैं। उन पर स्याही फेंकने की घटना भी हुई, तो इस आंदोलन में आगे क्या होने वाला है ये भी हम आपको बताएं। लेकिन आज सरकार से इनकी बातचीत हो चुकी है और दोनों पक्षों ने सकारात्मक बताया है।
9: जब रांची में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हैं, सरकार से अपनी मांगे बनवाने के लिए अड़े हुए हैं, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब परीक्षाओं को लेकर आंदोलन चल रहा है तो उसमें अभिजीत दीपके या फिर कॉकरोच जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता अब तक इस आंदोलन में शामिल क्यों नहीं हुआ। इस बीच महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में कॉकरोच जनता पार्टी की दो दिन बैठक भी होती है। सीजेपी अपनी आगे की पूरी रणनीति तय करती है, पूरी टीम के पद तय किए जाते हैं और सितंबर से क्या बोलती पब्लिक कैंपेन शुरू करने का ऐलान भी होता है। सवाल यही है कि सीजेपी के सारे बड़े चेहरे छत्रपति संभाजी नगर में दीपके के घर तो दिखते हैं, रांची के आंदोलन में क्यों नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी और उसके संस्थापक अभिजीत दीपके से लगातार सवाल हो रहे हैं कि सीजेपी के नेता रांची के छात्र आंदोलन में अब तक क्यों नहीं पहुंचे। हालांकि इस पर सीजेपी ने कहा कि उन्होंने बारिश में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के लिए रेनकोट भेजे हैं, छाते भेजे हैं, खाने का सामान भी भेजा है और पार्टी का नेतृत्व भी रांची जाएगा। सवाल यही है कब तक। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ भूख हड़ताल करने वाली आयसा अध्यक्ष नेहा बोरा रांची में छात्र आंदोलन के मंच पर जरूर पहुंची। नेहा बोरा ने मंच से इस आंदोलन के समर्थन का ऐलान भी किया। नेहा बोरा ने कहा कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराई जानी चाहिए और इसकी तारीख जल्द घोषित होनी चाहिए।
10: तो जो सब साथी भूख हड़ताल पे बैठे हैं स्टेडियम में, उनको बहुत बधाई। आपने ये जो संघर्ष किया हुआ है उस संघर्ष को पूरा देश देख रहा है और इस मंच से वो मांगे जो यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे छात्रों की है, संघर्ष कर रहे छात्रों की है, उन मांगों को मैं अपनी सॉलिडारिटी और समर्थन यहाँ से देना चाहूंगी।
9: लेकिन रांची के छात्र आंदोलन के दौरान ऐसा अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंकने का मामला भी सामने आया और इसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ। एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ

0: है। आपको बता दें कि रांची आंदोलन को लेकर सवाल राहुल गांधी पर भी उठ रहे थे। बीजेपी कह रही थी कि जंतर मंतर पर सीजेपी के आंदोलन पर बोलने वाले राहुल गांधी रांची के छात्र आंदोलन पर क्यों चुप हैं? तो राहुल गांधी ने 6 अगस्त को प्रदर्शनकारी छात्रों से फोन पर बात की। एक छात्र नेता रविंद्र पासवान ने बताया कि उनकी राहुल गांधी से बात हुई है। साथ ही राहुल गांधी ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने छात्रों के समर्थन की बात कही।
1: झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है और अलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ओप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो।
0: लेकिन जैसे जैसे रांची आंदोलन के दिन बढ़ रहे हैं, छात्रों का सब्र टूट रहा है और अब अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत भी बिगड़ने लगी है। ये 40 साल के राहुल हैं, जो पिछले 4 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन उन्हें बहुत तेज बुखार हो गया। बाकायदा डॉक्टरों की टीम आई और इस अनशनकारी को यहाँ से ले जाकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
2: पर हूँ, 4 छात्र अनशन पर बैठे हुए थे बीते 4 दिनों से। इनमें 40 साल के राहुल, जिनको आप देख रहे हैं, इनकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई है और अब डॉक्टरों ने मेडिकल रिपोर्ट के बाद ये देख लिया है कि इनके वाइटल्स जो है काफी ज्यादा बिगड़ गए और इसलिए अब इनको जो है यहाँ से अस्पताल ले जा रहा है। डॉक्टर ने कहा इनको यहाँ बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। डॉक्टर क्या कह रहे हैं भैया, क्या कुछ बताया उन्होंने,
3: क्या बोले
2: डॉक्टर, क्या कह रहे हैं?
3: डॉक्टर ये बताया कि उसका तबीयत खराब है, उसको अभी सदर अस्पताल ले जाया जाएगा।
4: अभी एक ही लोग का देखा गया है, अभी इनका ठीक लग रहा है, बाकी लोग का देख रहे हैं।
2: उनको आप ले जा रहे हैं, किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हुई है?
4: उनका पल्स रेट काफी ज्यादा हाई मिल रहा है, जिसके वजह से उनका बीपी भी थोड़ा शूट उठ
2: कर यहाँ रखा जा सकता है बिल्कुल भी
4: अब? नहीं नहीं, अब इनको एडमिट ही करना पड़ेगा, अब इनको सदर में ही रेफर करना पड़ेगा।
0: डॉक्टरों की सलाह के बाद अनशनकारी राहुल को अस्पताल ले जाया गया। वो बेहोश हो गए थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा से बात की।
2: 4th दिन हो गया, स्वास्थ्य से बढ़कर तो आंदोलन नहीं है ना?
5: लेकिन झारखंड के नौजवानों का सौदा नहीं भी हो, ये मेरा संकल्प है, तो उसको तो हम अंतिम सांस तक।
2: मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि आपको बुखार काफी ज्यादा है, बहुत तेज हो चुका है, शरीर तप रहा है।
5: तप रहा है, लेकिन यहाँ डॉक्टर भी तो आते हैं, चेकअप करते हैं, दवा भी लिखते हैं, आप बोलते हैं कि 2 घंटा में दवा पहुंचा रहे हैं।
2: देखिए, जब एक अनशन खत्म हुआ तब आप लोगों ने समर्थन किया, आपको नहीं लगता 4 दिन हो चुका और हर युवा को अनशन की आदत नहीं होती, आपकी जगह कोई और अब जगह ले सकता है, आप लोग नहीं दबाव डालते, तबीयत इनकी बहुत ज्यादा खराब हो?
6: नहीं, हम लोग बिल्कुल आज सभी जो कमेटी मेंबर्स हैं वो सीरियसली इस विषय को देख रहे हैं कि हमारे जो दोस्त हैं उनकी हालत ज्यादा नाजुक ना हो। हम लोग चाहेंगे कि इसका विकल्प के तौर पे हम लोग कुछ आगे की कार्रवाई करें, क्योंकि ये
2: इनका नाम राहुल है
6: जी।
2: कितने साल के हैं ये?
7: 40 साल।
2: 40 राहुल, आपने भी प्रतियोगी परीक्षाएं दी थी अपने समय में?
5: JPSC का लगातार परीक्षा लिखते हैं, पहले तो PT निकल जाता था, इस बार तो MRA लीक हो गया तो बिक गया, तो निकलना तो दूर की बात है। सहायक HR का भी परीक्षा क्वालिफाई हूँ, सीट खाली है, फिर भी सरकार नियुक्ति नहीं दे रही है, टुकड़ों टुकड़ों में नियुक्ति देती है, जितना सीटों का सेटिंग होता है उतने ही को नियुक्ति देती है। जब विज्ञापन एक बार आया तो नियुक्ति उनको एक बार देना चाहिए था।
2: दरअसल झारखंड की पीड़ा ये है कि छात्र पेपर सेट करते हैं, लगाते हैं, तैयारियां करते हैं, लेकिन पीछे से सेटिंग हो जाती है, नौकरियां कोई और ले जाता है और उसी के साथ साथ उम्र सीमा भी खत्म हो जाती है। और जब सब्र का बांध टूटा है तो उन छात्रों को यहां आंदोलन पर ले आया। तबीयत बिगड़ रही है, नासाज हो रही है, डॉक्टर भी कह रहे हैं शरीर तप रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक हिम्मत, एक हौसला है, क्योंकि उन्हें लगता है ये लड़ाई सिर्फ अब उनके भविष्य की नहीं है, उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है।
0: इसी अनशन के मंच पर 2 छात्राएं भी हैं जो भूख हड़ताल पर हैं, 27 साल की हबीबा और 28 साल की सरिता। इन छात्रों की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनकी उम्र लगातार बढ़ती जा रही है, पिछले 8-10 सालों से ये परीक्षाएं देती हैं, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिलती, क्योंकि पता चलता है कि नौकरी बिक गई।
2: कितनी परीक्षाएं इस 27 साल की उम्र में हबीबा ने दे दी, प्रतियोगी परीक्षाएं?
8: जी 2017 से लगातार मैं देती आई हूं, तो जेएसएससी की भी, जेपीएससी के भी, तो हो गए होंगे 15-20।

0: इतने प्लस टू ही गए होंगे सर।
1: कितनी परीक्षाओं में आप पास हुई, क्वालिफाई कर गए?
0: जी मैंने पंचायत सचिव का एग्जाम दिया था, 2017 की वैकेंसी थी तो उसमें मैं पास हो गई थी। फिर उसमें सेकेंड एग्जाम था हिंदी टाइपिंग का, तो उसमें भी क्वालिफाई हुई। फिर डीवी भी हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हुआ। ऐसे भी तो डिले कर ही रही थी, तुरंत नहीं कर रही थी एग्जाम वगैरह। फिर एक साल लगे, फिर दो साल लगे उस एग्जाम को। उसके बाद जब उसका रिजल्ट देना था तो 5 साल तक प्रोटेस्ट करना पड़ा।
2: 28 साल की सरिता की कहानी तो बिल्कुल झकझोर कर रख देने वाली है। गरीब परिवार की सरिता ने अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर पढ़ाई की। होमगार्ड से लेकर जेपीएससी तक की परीक्षा दे चुकी है। 2019 से परीक्षाएं दे रही हैं, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिल पाई। घर के हालात भी ठीक नहीं है।
3: तो मेरा उम्र भी निकलते जा रहा है, 28 साल होने जा रहा है, 28 में पार होने जा रहा है, 29 में पहुंच जाएंगे। 1 से 2 साल में मेरा एज भी खत्म होने को रहेगा। फिर हम तो कोई फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं यार, ये पढ़ाई के चक्कर में हम आगे कुछ और पढ़ाई नहीं किया। मेरा घर की स्थिति बहुत खराब था सर, इसलिए हमको यही लगता था कि एगो जॉब ले ले, उसके बाद जो आगे के भविष्य होगा आगे देखा जाएगा।
1: आपने कितनी परीक्षाएं दी
3: अभी तक सर? हम 2019 से परीक्षा दे रहे हैं, 2019 हम तैयारी कर रहे हैं।
1: 7 साल हो गए,
3: 7 साल होने जा रहा है, आज तक एक रिजल्ट नहीं हो पाया। ये
2: पिछले 14 दिनों से रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि उनका ये प्रदर्शन कहीं व्यर्थ तो नहीं चला जाएगा। क्या सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बात बन पाएगी? आज तक ब्यूरो।
4: खबर यूपी की पॉलिटिक्स की, जहां जेनजी को लेकर पार्टियां अपनी रणनीति बदल रही हैं। धर्म और जाति की राजनीति के बीच अब हर पार्टी की नजर युवा वोट बैंक पर है, जो 2027 के चुनाव में एक महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है।
5: दिल्ली के जंतर मंतर से निकली जेनजी आंदोलन की इस चिंगारी ने सत्ता की रणनीति को नए सिरे से गढ़ने पर मजबूर कर दिया है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नई युवा नीति को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें 2027 से पहले जेनजी पर सरकार का फोकस है।
6: युवाओं को लेकर एक आयोग गठित होने वाला है, जिसमें 18 से 35 वर्ष के युवा, यानी कि आसान भाषा में कहें तो कुछ हद तक जेनजी से सलाह मशवरा लिया जाएगा युवाओं को लेकर बनाई जाने वाली नीतियों को लेकर। यानी कि योगी सरकार को ये मालूम पड़ गया है कि जेनजी एक बहुत बड़ा वोटर है और ऐसे में उन्हें साथ लेकर ही चलना होगा।
5: जेनजी वोट बैंक पर योगी सरकार के मिशन पर सियासत तेज हो गई है।
7: और अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार एक युवा नीति लेकर के आ रही है। यह युवा नीति युवाओं के सपनों को साकार करने वाली होगी।
8: तो उत्तर प्रदेश का जो जेनजी है, जो जेन अल्फा है, जो मिलेनियम है, वो समझ रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ भी किसी चीज के अगर शिकार हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो आत्ममुग्धता के शिकार हैं। अगर आत्ममुग्धता के शिकार न होते तो अपने चेहरे चमकाने पर 3 करोड़ रुपए न खर्च करते, बल्कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को आप पेपर लीक की जगह अच्छी व्यवस्था, पारदर्शी और निष्पक्ष आपने कोई व्यवस्था दी होती।
5: उधर राहुल गांधी भी कल पेपर लीक के मुद्दे पर गूंज कार्यक्रम के तहत प्रयागराज में जेनजी छात्रों के साथ संवाद करने जा रहे हैं। प्रयागराज आ रहा हूँ, देश के उस शहर में जहाँ सबसे ज्यादा नौजवान तैयारी करते हैं। एक बात साफ है, यहाँ का हर छात्र जानता है कि सिस्टम बेईमान हो चुका है। आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं, कमी उस सिस्टम की नीयत में है जो आपकी मेहनत का दाम नहीं देती। ये सरकार झुकती है, बस आवाज एक साथ उठनी चाहिए। अखिलेश यादव की नजर भी जेनजी से लेकर जेन अल्फा तक है, जिनके मुद्दों पर वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया, 7,000 करोड़ का कॉस्मेटिक फेशियल करवाया। हम इतनी ही राशि में केजी से पीजी और रिसर्च तक की वर्ल्ड क्लास 2-3 यूनिवर्सिटी बनाकर बच्चों युवाओं का भविष्य सुधार कर दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर ले जाएंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ लगातार रैलियों में समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की याद दिला रहे हैं।
9: कुछ लोग जीवन भर बच्चे ही बने रहते हैं और बबुआ भी यही करते थे, 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और 7 बजे के बाद तो महफिल जम जाती थी, तब तो फिर देश और दुनिया से उनका संबंध ही समाप्त हो जाता था। तो प्रदेश के बारे में कहां से सोच उनके पास थे। इसी कारण दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था।
5: बहरहाल यूपी में भी सियासी रणनीति बदलती जा रही है, जहां सबकी नजरें जेनजी वोट बैंक पर है। आज तक ब्यूरो।
4: संघ प्रमुख मोहन भागवत भी जेन जी के साथ संवाद कर रहे थे। नई युवा पीढ़ी की जमकर तारीफ उन्होंने की, जिसे लेकर अब राजनीति हो रही है।
5: जेन जी आंदोलन के बाद जब संघ प्रमुख मोहन भागवत जेन जी के संवाद कार्यक्रम में पहुंचे तो उन्होंने जेन जी की जमकर तारीफ की, प्रदर्शन को संवाद से निपटाने की नसीहत दी तो वहीं जेन जी की देशभक्ति पर सवाल करने वालों को कटघरे में खड़ा किया।
10: मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है।
11: अरे वाह, बढ़िया है।
10: और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है।
5: मोहन भागवत के बयान विपक्ष को रास नहीं आ रहे।
12: मोहन भागवत जी
13: समर्थन तो किया है, लेकिन उन्हीं के अनुयायियों ने तो जैन जी को देशद्रोही कहा है
11: जी।
13: उन्हीं के अनुयायियों ने तो खालिस्तानी से लेके पाकिस्तानी तक तमाम हमारे बच्चों के जो इनोसेंट बच्चे हैं, शायद जिन्होंने घर स्कूल के अलावा कभी कुछ देखा भी नहीं था, ऐसे बच्चों को बदनाम किसने किया। सदे नेताजी कहते थे ये बीजेपी आरएसएस के कई मुंह होते हैं, जब देखते हैं कि समाज में विरोध हो रहा है तो उन्हीं में से एक सकारात्मक बयान देने लगता है।
5: जंतर मंतर में प्रदर्शन करने वाले जेन जी पर सवाल खड़े करने वाली कंगना रनौत भी प्रदर्शनकारियों और जेन जी में फर्क बता रही हैं।
14: जेन जी जो है सरकार का हिस्सा है, उन्हीं का तो मैंडेट है, जो हमारी सरकार जो है इतने सालों से जो है, तो जेन जी का ही मैंडेट है। और जेन जी जो है हमारी बहुत बड़ी, ऐसा नहीं है जो प्रोटेस्ट पे 10-15 जो है गालियां देने वाले ही जेन जी है, ये कुछ ही हाथ, जैसे मैं कहती हूँ कुछ हैंडफुल ऑफ पीपल है जो जेन जी का नाम खराब कर रहे हैं। जेन जी जो है हमारी सबसे बड़ी ताकत है और हमें गर्व है अपनी जेन जी।
5: हर दल किसी न किसी तरह से जेन जी से मिलने जुलने, उन्हें प्रभावित करने की कोशिश में जुटा है, चाहे वो पीएम मोदी के इंस्टा रील्स हों या राहुल गांधी के इंस्टा क्वेश्चन आंसर सेशन, चाहे वो मोहन भागवत का जेन जी कनेक्ट हो या राहुल गांधी के गूंज कार्यक्रम। हर दल को लगता है कि जेन जी से कनेक्ट रहे बिना देश की सियासत में मौजूद नहीं रहा जा सकता। आज तक विरोध।
4: खबर संसद की, जहां सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। क्या कुछ शुक्रवार को संसद में हुआ, आइए हम आपको दिखाते हैं।
15: मॉनसून सत्र में संसद में जुबानी बिजलियां कड़क रही हैं, कार्यवाही ठप है और विपक्ष अमित शाह के पैलेट गन पर जवाब को लेकर अड़ा हुआ है।
16: लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, सदन में जिसका बिजनेस होता है वही मंत्री जवाब देता है। ऑपोजिशन तय नहीं करेगा कौन सा मंत्री को कब आना है, ये अपोजिशन पार्टी तय नहीं करते हैं। आप लोग नाराबाजी करके तुरंत चले जाते हैं पार्लियामेंट छोड़ के, लेकिन होम मिनिस्टर सुबह से लेकर देर रात तक पार्लियामेंट में ही रहता है, देश का संचालन करता है, और जब होम मिनिस्टर जवाब देगा आप लोग सुन नहीं पाएगा।
15: इस बीच एनडीए में नई एंट्री लेने वाले सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। पीएम के साथ नाश्ते पर ये चर्चा खास है क्योंकि एनडीए परिवार के विस्तार के बाद इस मुलाकात के राजनीतिक मायने हैं। सांसदों से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने संसद न चलने पर चिंता जाहिर की और सांसदों को भरोसा दिया कि अगर विकास योजनाओं में कोई अड़चन आए तो सीधे पीएमओ से संपर्क करें।
17: It was a very, very big honor that he has invited us. And उन्होंने ये भी कहा कि एक्चुअली सदन नहीं चल रहे तो उनको भी बहुत खराब लग रहा है, तो बट वो चाहते हैं कि जल्दी से सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। ऐसे ही कहा कि देखिए हम तो देश के लिए काम करते हैं और हमारे साथ जो जो है हमारे ग्रुप के जो है हम आपके साथ है, यही सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ये कहा है कि जैसे हम सोचते हैं आप उसी सोच पे विश्वास रखिए और उस हिसाब से आगे बढ़ते चलिए।
18: बहुत अच्छा चर्चा हुआ है
11: जी,
18: वेरी गुड।
11: किन मुद्दों पे चर्चा हुई सर?
18: हर हर डेवलपमेंट के बारे में।
11: कई सारे आपके साथी हैं जो मुस्लिम समुदाय से हैं, वो भी मौजूद थे मीटिंग में?
18: मीटिंग में मौजूद थे, वो लोग भी सपोर्ट किया।
11: क्या स्पीकर का इशू भी चला इस पे मस्जिदों को लेके जो इशू?
18: नो।
11: ओके सर, आखिरी सवाल सर, एफसीआरए पे क्या रुख रहेगा आप लोगों का सर?
18: हम लोग मदद करेंगे।
15: पीएम मोदी ने उद्धव गुट से शिंदे गुट में शामिल हुए शिवसेना के सांसदों के साथ अलग से बातचीत की। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग से मुलाकात करने पहुंचे। विदेशी फंडिंग पर रेगुलेशन का नया एफसीआरए बिल सरकार की बड़ी चुनौतियों में से एक है। वहीं हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित है।
2: आज तक ब्यूरो।
4: पंजाब चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरण तैयार किए जा रहे हैं। कांग्रेस के सामने चुनौती अंदरूनी कलह की है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुखबीर सिंह बादल की मुलाकात ने पंजाब में पुराने गठबंधन को फिर से साथ आने की हटकलों को हवा दी है।
5: पंजाब कांग्रेस में चरणजीत सिंह चन्नी और राजा वेडिंग के घमासान के बीच राहुल गांधी ने कैप्टन अमरिंदर को अपना पसंदीदा नेता बताया है।
19: कैप्टन अमरिंदर सिंह डेफिनेटली आई गेट अलोंग विद हिम, ही इज कूल एंड ही इज एन एक्सपर्ट ऑन मिलिट्री हिस्ट्री, सो आई लाइक हिम क्वाइट अ लॉट। हेलो अंकल अमरिंदर।
5: राहुल के बयान के बाद पंजाब कांग्रेस के नेताओं के सुर बदले हुए हैं तो वहीं आम आदमी पार्टी अमरिंदर के कांग्रेस में वापस जाने की आशंका जताई जा रही है।
20: अगर वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपना फेवरेट लीडर मानते हैं, जो सबसे लेजी ऑफिसर्स लेजी जो पॉलिटिशियन है उनमें से जाना जाता है और उन पॉलिटिशियंस में जाना जाता है जो कि किसी भी समय किसी भी जगह पे पलटी मार सकता है, अगर राहुल जी का वो आइडियल है तो फिर राहुल जी की सियासत क्या होगी?
21: अच्छे इंसान है, अच्छी चीजें भी है यार, किसको मेरा ख्याल है हर देखो जो आदमी दो बार चीफ मिनिस्टर रह गया उसमें
5: किसी से गठबंधन करने नहीं जा रही
22: तो प्रधानमंत्री साहब कोई भी मिल सकता है। तो मैं उम्मीद है कि सुखबीर सिंह बादल पंजाब के भले लिए कोई चंगी गल करके क्लीयर करना चाहना कि साढ़े वालों भारतीय जनता पार्टी पंजाब वालों 117 सीटा की तैयारी है, 117 सीटा तो असं कले लड़ा।
5: इस बीच मान सरकार के खिलाफ सरकारी नौकरी को लेकर आज जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस के साथ कई संगठनों ने मोर्चा संभाला और मान सरकार को घेरने की कोशिश की।
23: ये देखिए ये वाटर कैनन चला, आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब दोबारा वाटर कैनन चला है और आपको बता दें यहाँ पे तिथर बितर करने की पूरी कोशिश, ये आप देखिएगा लगातार हम आपको अपने कैमरे में दिखा रहे हैं कि किस तरह से सड़कों पे उतरे हुए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है लेकिन इनका हौसला कम नहीं हो रहा है, अपने मांगों को लेके अड़ंग है अड़े हुए हैं और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से चंडीगढ़ पुलिस ने इनको बैरिकेड लगा के यहीं पे रोकने की कोशिश और उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल। लेकिन क्या ये खामियाजा भुगतना पड़ सकता है सरकार को इलेक्शन में, ये बड़ी बात है और इसी वजह से जो अपोजिशन पार्टीज है वो भी पंजाब गवर्नमेंट का पूरा साथ दे रही है।
5: बहरहाल पंजाब में चुनाव से पहले के समीकरण का खेल जारी है जहां हर पार्टी ने पूरा जोर लगा रखा है। कमलजीत संधू के साथ असीम बस्सी, चंडीगढ़ आज तक।
4: दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश ने मुश्किलें लोगों की बढ़ा दी, सड़कों पर पानी भर गया, ट्रैफिक जाम हो गया, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया, 10 अगस्त तक बारिश का अनुमान है। दिल्ली के साथ नोएडा गुरुग्राम में भी तेज बारिश के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली एनसीआर में बारिश आफत लेकर आई, सलाह दी गई है बहुत जरूरी न हो तो घर से बाहर न निकलें।

0: सुबह से दिल्ली एनसीआर में सावन ऐसे झूम कर आया कि दिन ढल गया, रात हो गई, लेकिन मूसलाधार बारिश मुसलसल होती रही। लोग सड़कों पर परेशान दिखे, ट्रैफिक से जूझते दिखे, गाड़ियां खराब होती दिखी, सड़कों पर जल भराव दिखा। बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है और 10 अगस्त तक ऐसे ही कभी हल्की तो कभी तेज बारिश होते रहने की संभावना है। पहले बारिश में हिचकोले खाती दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें एमबी रोड की हैं।
1: राजधानी दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बीच काफी जलभराव हो रहा है। अभी हम दिल्ली के एमबी रोड पर हैं, जहां पर आप देखेंगे जलभराव किस तरीके से हुआ है और किस तरीके से बस को निकालने का प्रयास किया जा रहा है।
2: कितना फीट तक पानी भर गया है यहाँ पर?
3: ये मैं ईमानदारी से बताऊं, मेरी आप देख सकते हैं घुटने से ऊपर और कमर से हल्का सा नीचे पानी है।
2: सर ये 4 फीट लमसम होगा पानी, ठीक है, और जिस तरीके से आप आगे की तरफ जाएंगे ना, आगे की तरफ और देखेंगे तो और भी पानी जिस तरीके से लबा लब भरा हुआ है, ठीक है, ये बहुत संकेत है।
1: महिला आ रही है, स्कूल के टीचर है आप?
3: हाँ जी।
1: कहाँ से आ रही है?
3: बाल निकेतन संगम विहार।
1: तो अब कितना पानी बस वस नहीं मिला?
3: बस नहीं, वो तो हमारी स्कूल की कार थी तो उससे हम आए
1: तो फिर वो
3: पीछे कार के अंदर इतना पानी।
1: आप देख सकते हैं ये आर्मी मैन है और इनकी भी गाड़ी बुलेट से जा रहे हैं, इनकी फंस गई है।
2: आपकी भी बंद हो गई?
4: हाँ कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट कर लेंगे।
1: आप देख सकते हैं यही स्थिति हो रही है और दरिया जैसा स्थिति यहाँ पर एमबी रोड पर बनता हुआ नजर आ रहा है।
0: आपको बता दें कि एमबी रोड पर ओखला मोड़, संगम विहार, खानपुर और देवली में जल भरा हुआ है, जिसके कारण एमबी रोड

0: का यातायात खानपुर से ओखला मोड़ के बीच प्रभावित हुआ और लोग परेशान होते रहे। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में 7 अगस्त को 59.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो इस साल अगस्त महीने का अब तक का सबसे बरसाती दिन रहा है, जबकि दिल्ली के छतरपुर में 104.5 मिलीमीटर बारिश, पुष्प विहार में 111.5 मिलीमीटर बारिश, पालम में 73.5 मिलीमीटर बारिश और आया नगर में 87.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और बारिश में दरिया बनती दिल्ली की तस्वीरें वसंत कुंज से भी आई हैं। देखिए वसंत कुंज का हाल,
1: दूर देखिए बच्चे, वहाँ जो स्कूली बच्चे हैं वो आ रहे हैं और देखिए उन वो पानी में कैसे खेलते हुए आ रहे हैं। लेकिन ये स्कूल का टाइम है, स्कूल से छुट्टी हुई है और बच्चे देखिए यहाँ पर सड़क पे या फुटपाथ हो हर तरफ पानी ही पानी है। बेहद अहम मार्ग है, मैं फिर से बता दूं, वसंत कुंज का ये रोड है जो एयरपोर्ट को जोड़ता है, इसके आसपास कई सारे स्कूल हैं और यहाँ पर जलजमाव की स्थिति बनी है। दिल्ली वालों की आफत बन के निकला है ये मानसून की ये बरसात।
0: बारिश की वजह से मेहरोली बदरपुर रोड, ITO वजीराबाद रोड, पटेल रोड, रोहतक रोड, शंकर रोड, कीर्ति नगर, दिल्ली जयपुर हाईवे, पीरागढ़ी और शाहीन बाग जैसे इलाकों में भारी ट्रैफिक देखा गया। हालांकि इस बारिश से दिल्ली के तापमान में भी गिरावट आई है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी सुबह से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ दिन भर चलता रहा। बारिश होने से कई जगहों पर भारी जल भराव हो गया है, जिस वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं झमाझम बारिश के बीच नोएडा सेक्टर 95 स्थित अंडरपास में जल भराव हो गया, जिसमें एक एम्बुलेंस फंस गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे बंद पड़ी एम्बुलेंस को ड्राइवर ने धक्का मारकर निकालने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। गनीमत ये रही कि एम्बुलेंस में कोई मरीज नहीं था। और बारिश से गुरुग्राम की दुर्गति भी देख लीजिए। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर पानी भरा है और पानी में गड्ढे हैं। ये देखिए कैसे एक ऑटो पानी में हिचकोले खाते हुए चल रहा है। बारिश इतनी तेज हुई कि पहले सड़कें लबालब हुई और फिर पानी गुरुग्राम के सिविल अस्पताल के अंदर भी घुसपैठ कर गया। और गुरुग्राम की पुलिस लाइन की ये तस्वीरें भी देखिए, कैसे बारिश के पानी में बच्चे तैराकी कर रहे हैं। और जैसा कि हर बारिश में गुरुग्राम में ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है, ठीक वैसा ही नजारा आज भी दिखा। गुरुग्राम में पिछले कुछ घंटों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। भारी जलभराव और यातायात जाम को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने कंपनियों को कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की सलाह भी दी है। दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
2: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

रांची में चार मंत्रियों और छात्र प्रतिनिधि मंडल में पहले दौर की वार्ता खत्म। मुलाकात के बाद दोनों पक्षों ने कहा बातचीत सकारात्मक, लेकिन प्रदर्शन जारी। संसद में गतिरोध के बीच सोमवार तक स्थगित दोनों सदन। रिजिजू ने विपक्ष पर जड़ा आरोप, कांग्रेस ने 10, 11, 12 के लिए सांसदों को व्हिप जारी किया। एथेनॉल पर राहुल ने सरकार को घेरा, कहा दाल में काला नहीं पूरी दाल ही काली। हरदीप सिंह पुरी बोले कुछ लोग खड़ा कर रहे हैं विवाद। सीएम योगी ने अखिलेश को घेरा, कहा एसपी सरकार में लूटने निकल जाती थी चाचा भतीजे की जोड़ी, विधानसभा नहीं चलने दी इन्होंने। लगातार बारिश से दिल्ली एनसीआर में जगह जगह पानी भरा, लंबा लंबा जाम, लोगों को घर से निकलना मुश्किल हुआ, 9 घर गिरे। आज फिर मौसम विभाग का भारी बारिश का अलर्ट। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों की राज्य

0: सरकार के साथ पहले दौर की मीटिंग खत्म हो गई। हेमंत सोरेन सरकार ने चार मंत्रियों का एक पैनल बनाया था जिसने 10 छात्रों के डेलीगेशन से बात की। स्टेट गेस्ट हाउस में बातचीत के लिए पहुंचा प्रतिनिधिमंडल आंदोलन कर रहे मुख्य छात्र समूह का है जो देवेंद्र महतो के गुट से अलग है। प्रतिनिधिमंडल ने बैठक में शामिल होकर छात्रों का पक्ष रखा। बात खत्म होने के बाद छात्र नेता रविन्द्र पासवान ने कहा, यह हमारी पहली मीटिंग थी जो बहुत सकारात्मक रही। भरोसा है सरकार, मुख्यमंत्री और सभी मंत्री हमारी मांगों पर विचार करेंगे।
1: ये आप लोगों की और क्या निर्णय लिया गया?
2: अभी बस डिमांड लिया गया है और आगे का वार्ता भी चलेगा, आंदोलन कंटिन्यू
1: होगा। क्या कहा चलेगा? मंत्री ने क्या कहा आप लोगों की बात पर?
2: हम लोगों की बात को सकारात्मक लिया गया है और मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, उसका समाधान किया जाएगा।
1: ठीक,
2: सकारात्मक बात हुई है, हम लोग का डिमांड लिया गया है, डिमांड पे चर्चा भी आगे और भी चलेगा, अभी आंदोलन कंटिन्यू है।
3: हाँ, जारी रहेगा। दिस इज द फर्स्ट राउंड।
0: झारखंड आंदोलन को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल उठा वो ये कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके या फिर इनका कोई बड़ा नेता अब तक इस आंदोलन में शामिल क्यों नहीं हुआ। हालांकि आंदोलन के 14वें दिन जंतर मंतर पर अनशन करने वाली आईसा की अध्यक्ष नेहा बोरा नजर आई और समर्थन देने की बात करती हैं। उन पर स्याही फेंकने की घटना भी हुई, तो इस आंदोलन में आगे क्या होने वाला है ये भी हम आपको बताएं। लेकिन आज सरकार से इनकी बातचीत हो चुकी है और दोनों पक्षों ने सकारात्मक बताया है।
4: जब रांची में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हैं, सरकार से अपनी मांगे बनवाने के लिए अड़े हुए हैं, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब परीक्षाओं को लेकर आंदोलन चल रहा है तो उसमें अभिजीत दीपके या फिर कॉकरोच जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता अब तक इस आंदोलन में शामिल क्यों नहीं हुआ। इस बीच महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में कॉकरोच जनता पार्टी की दो दिन बैठक भी होती है। सीजेपी अपनी आगे की पूरी रणनीति तय करती है, पूरी टीम के पद तय किए जाते हैं और सितंबर से क्या बोलती पब्लिक कैंपेन शुरू करने का ऐलान भी होता है। सवाल यही है कि सीजेपी के सारे बड़े चेहरे छत्रपति संभाजी नगर में दीपके के घर तो दिखते हैं, रांची के आंदोलन में क्यों नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी और उसके संस्थापक अभिजीत दीपके से लगातार सवाल हो रहे हैं कि सीजेपी के नेता रांची के छात्र आंदोलन में अब तक क्यों नहीं पहुंचे। हालांकि इस पर सीजेपी ने कहा कि उन्होंने बारिश में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के लिए रेनकोट भेजे हैं, छाते भेजे हैं, खाने का सामान भी भेजा है और पार्टी का नेतृत्व भी रांची जाएगा। सवाल यही है कब तक। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ भूख हड़ताल करने वाली आयसा अध्यक्ष नेहा बोरा रांची में छात्र आंदोलन के मंच पर जरूर पहुंची। नेहा बोरा ने मंच से इस आंदोलन के समर्थन का ऐलान भी किया। नेहा बोरा ने कहा कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराई जानी चाहिए और इसकी तारीख जल्द घोषित होनी चाहिए।
5: तो जो सब साथी भूख हड़ताल पे बैठे हैं स्टेडियम में, उनको बहुत बधाई। आपने ये जो संघर्ष किया हुआ है उस संघर्ष को पूरा देश देख रहा है और इस मंच से वो मांगे जो यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे छात्रों की है, संघर्ष कर रहे छात्रों की है, उन मांगों को मैं अपनी सॉलिडारिटी और समर्थन यहाँ से देना चाहूंगी।
4: लेकिन रांची के छात्र आंदोलन के दौरान आयसा अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंकने का मामला भी सामने आया और इसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ। एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई। नेहा बोरा की उम्र अभी 29 साल है और वो अपनी बेबाक आवाज के लिए जानी जाती हैं। मूल रूप से नेहा बोरा उत्तराखंड के खटीमा से आती है। आपको बता दें कि रांची आंदोलन को लेकर सवाल राहुल

0: गांधी पर भी उठ रहे थे। बीजेपी कह रही थी कि जंतर मंतर पर सीजेपी के आंदोलन पर बोलने वाले राहुल गांधी रांची के छात्र आंदोलन पर क्यों चुप हैं? तो राहुल गांधी ने 6 अगस्त को प्रदर्शनकारी छात्रों से फोन पर बात की। एक छात्र नेता रविंद्र पासवान ने बताया कि उनकी राहुल गांधी से बात हुई है। साथ ही राहुल गांधी ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने छात्रों के समर्थन की बात कही।
1: झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है और अलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ओप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो।
0: लेकिन जैसे जैसे रांची आंदोलन के दिन बढ़ रहे हैं, छात्रों का सब्र टूट रहा है और अब अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत भी बिगड़ने लगी है। ये 40 साल के राहुल हैं, जो पिछले 4 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन उन्हें बहुत तेज बुखार हो गया। बाकायदा डॉक्टरों की टीम आई और इस अनशनकारी को यहां से ले जाकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
2: यहां पर हूं, 4 छात्र अनशन पर बैठे हुए थे बीते 4 दिनों से। इनमें 40 साल के राहुल, जिनको आप देख रहे हैं, इनकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई है और अब डॉक्टरों ने मेडिकल रिपोर्ट के बाद ये देख लिया है कि इनके वाइटल्स जो है काफी ज्यादा बिगड़ गए और इसलिए अब इनको जो है यहां से अस्पताल ले जा रहे हैं। डॉक्टर ने कहा इनको यहां बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। डॉक्टर क्या कह रहे हैं भैया, क्या कुछ बताया उन्होंने,
3: क्या बोले
2: डॉक्टर, क्या कह रहे हैं?
3: डॉक्टर ये बताया कि उसका तबीयत खराब है, उसको अभी सदर अस्पताल ले जाया जाएगा।
4: अभी एक ही लोग का देखा गया है, अभी इनका ठीक लग रहा है, बाकी लोग का देख रहे हैं।
2: उनको आप ले जा रहे हैं, किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हुई है?
4: उनका पल्स रेट काफी ज्यादा हाई मिल रहा है, जिसके वजह से उनका बीपी भी थोड़ा शूट टूट कर
2: यहाँ रखा जा सकता है बिल्कुल भी
4: अब? नहीं नहीं, अब इनको एडमिट ही करना पड़ेगा, अब इनको सदर में ही रेफर करना पड़ेगा।
0: डॉक्टरों की सलाह के बाद अनशनकारी राहुल को अस्पताल ले जाया गया। वो बेहोश हो गए थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा से बात की।
2: 4th दिन हो गया, स्वास्थ्य से बढ़कर तो आंदोलन नहीं है ना?
5: लेकिन झारखंड के नौजवानों का सौदा नहीं हो, ये मेरा संकल्प है, तो उसको तो हम अंतिम सांस तक।
2: मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि आपको बुखार काफी ज्यादा है, बहुत तेज हो चुका है, शरीर तप रहा है।
5: तप रहा है, लेकिन यहाँ डॉक्टर भी तो आते हैं, चेकअप करते हैं, दवा भी लिखते हैं, आप बोलते हैं कि 2 घंटा में दवा पहुंचा रहे हैं।
2: देखिए, जब एक अनशन खत्म हुआ तब आप लोगों ने समर्थन किया, आपको नहीं लगता 4 दिन हो चुका और हर युवा को अनशन की आदत नहीं होती, आपकी जगह कोई और जगह ले सकता है, आप लोग नहीं दबाव डालते, तबीयत इनकी बहुत ज्यादा खराब हो?
6: नहीं, हम लोग बिल्कुल, आज सभी जो कमेटी मेंबर्स हैं वो सीरियसली इस विषय को देख रहे हैं कि हमारे जो दोस्त हैं उनकी हालत ज्यादा नाजुक ना हो। हम लोग चाहेंगे कि इसका विकल्प के तौर पे हम लोग कुछ आगे की कार्रवाई करें, क्योंकि ये
2: इनका नाम राहुल है
6: जी।
2: कितने साल के हैं ये?
7: 40 साल।
2: राहुल, आपने भी प्रतियोगी परीक्षाएं दी थी अपने समय में?
5: JPSC का लगातार परीक्षा लिखते हैं, पहले तो PT निकल जाता था, इस बार तो वो MRA लीक हो गया तो बिक गया, तो निकलना तो दूर की बात है। सहायक आचार्य का भी परीक्षा क्वालिफाई हूँ, सीट खाली है फिर भी सरकार नियुक्ति नहीं दे रही है, टुकड़ों टुकड़ों में नियुक्ति देती है, जितना सीटों का सेटिंग होता है उतने ही को नियुक्ति देती है, जब विज्ञापन एक बार आया तो नियुक्ति उनको एक बार देना चाहिए था।
2: दरअसल झारखंड की पीड़ा ये है कि छात्र पेपर सेट करते हैं, लगाते हैं, तैयारियां करते हैं, लेकिन पीछे से सेटिंग हो जाती है, नौकरियां कोई और ले जाता है और उसी के साथ साथ उम्र सीमा भी खत्म हो जाती है, और जब सब्र का बांध टूटा है तो उन छात्रों को यहां आंदोलन पर ले आया। तबीयत बिगड़ रही है, नासाज हो रही है, डॉक्टर भी कह रहे हैं शरीर तप रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक हिम्मत, एक हौसला है, क्योंकि उन्हें लगता है ये लड़ाई सिर्फ अब उनके भविष्य की नहीं है, उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है।
0: इसी अनशन के मंच पर 2 छात्राएं भी हैं जो भूख हड़ताल पर हैं, 27 साल की हबीबा और 28 साल की सरिता। इन छात्रों की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनकी उम्र लगातार बढ़ती जा रही है, पिछले 8-10 सालों से ये परीक्षाएं देती हैं, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिलती, क्योंकि पता चलता है कि नौकरी बिक गई।
2: कितनी परीक्षाएं इस 27 साल की उम्र में हबीबा ने दे दी, प्रतियोगी परीक्षाएं?
8: जी, 2017 से लगातार मैं देती आई हूं, तो JSC की भी, JPSC के भी, तो हो गए होंगे 15-20, इतने प्लस तो हो ही गए होंगे सर।
2: कितनी परीक्षाओं में आप पास हुई, क्वालिफाई कर गए?

0: जी, मैंने पंचायत सचिव का एग्जाम दिया था, 2017 की वैकेंसी थी तो उसमें मैं पास हो गई थी। फिर उसमें सेकेंड एग्जाम था हिंदी टाइपिंग का, तो उसमें भी क्वालिफाई हुई। फिर डीवी भी हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। वो ऐसे भी तो डिले कर ही रही थी, तुरंत नहीं कर रही थी एग्जाम वगैरह। फिर एक साल लगे, फिर दो साल लगे उस एग्जाम को। उसके बाद जब उसका रिजल्ट देना था तो 5 साल तक प्रोटेस्ट करना पड़ा।
1: 28 साल की सरिता की कहानी तो बिल्कुल झकझोर कर रख देने वाली है। गरीब परिवार की सरिता ने अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर पढ़ाई की, होमगार्ड से लेकर जेपीएससी तक की परीक्षा दे चुकी है, 2019 से परीक्षाएं दे रही हैं, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिल पाई। घर के हालात भी ठीक नहीं हैं।
2: तो मेरा उम्र भी निकलते जा रहा है, 28 साल होने जा रहा है, 28 में पार होने जा रहा है, 29 में पहुंच जाएंगे। 1 से 2 साल में मेरा एज भी खत्म होने को रहेगा। फिर हम तो कोई फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं यार, ये पढ़ाई के चक्कर में हम आगे कुछ और पढ़ाई नहीं किया। मेरा घर की स्थिति बहुत खराब था सर, इसीलिए हमको यही लगता था कि एगो जॉब ले ले, उसके बाद जो आगे के भविष्य होगा आगे देखा जाएगा।
3: आपने कितनी परीक्षाएं दी
2: अभी तक सर? हम 2019 से परीक्षा दे रहे हैं, 2019 हम तैयारी कर रहे हैं।
3: 7 साल हो गए,
2: 7 साल होने जा रहा है, आज तक एक रिजल्ट नहीं हो पाया। ये
1: पिछले 14 दिनों से रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि उनका ये प्रदर्शन कहीं व्यर्थ तो नहीं चला जाएगा। क्या सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बात बन पाएगी? आज तक ब्यूरो।
4: खबर यूपी की पॉलिटिक्स की, जहां जेनजी को लेकर पार्टियां अपनी रणनीति बदल रही हैं। धर्म और जाति की राजनीति के बीच अब हर पार्टी की नजर युवा वोट बैंक पर है, जो 2027 के चुनाव में एक महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है।
5: दिल्ली के जंतर मंतर से निकली जेनजी आंदोलन की इस चिंगारी ने सत्ता की रणनीति को नए सिरे से गढ़ने पर मजबूर कर दिया है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नई युवा नीति को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें 2027 से पहले जेनजी पर सरकार का फोकस है।
6: युवाओं को लेकर एक आयोग गठित होने वाला है, जिसमें 18 से 35 वर्ष के युवा, यानी कि आसान भाषा में कहें तो कुछ हद तक जेनजी से सलाह मशवरा लिया जाएगा युवाओं को लेकर बनाई जाने वाली नीतियों को लेकर। यानी कि योगी सरकार को ये मालूम पड़ गया है कि जेनजी एक बहुत बड़ा वोटर है और ऐसे में उन्हें साथ लेकर ही चलना होगा।
5: जेनजी वोट बैंक पर योगी सरकार के मिशन पर सियासत तेज हो गई है।
7: पर अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार एक युवा नीति लेकर के आ रही है। ये युवा नीति युवाओं के सपनों को साकार करने वाली होगी।
8: तो उत्तर प्रदेश का जो जेनजी है, जो जेन अल्फा है, जो मिलेनियम है, वो समझ रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ भी किसी चीज के अगर शिकार है योगी आदित्यनाथ जी, तो आत्ममुग्धता के शिकार है। अगर आत्ममुग्धता के शिकार न होते तो अपने चेहरे चमकाने पर 3 करोड़ रुपए न खर्च करते, बल्कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को आप पेपर लीक की जगह अच्छी व्यवस्था, पारदर्शी और निष्पक्ष आपने कोई व्यवस्था दी होती।
5: उधर राहुल गांधी भी कल पेपर लीक के मुद्दे पर गूंज कार्यक्रम के तहत प्रयागराज में जेनजी छात्रों के साथ संवाद करने जा रहे हैं। प्रयागराज आ रहा हूँ, देश के उस शहर में जहाँ सबसे ज्यादा नौजवान तैयारी करते हैं। एक बात साफ है, यहाँ का हर छात्र जानता है कि सिस्टम बेईमान हो चुका है। आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं, कमी उस सिस्टम की नीयत में है जो आपकी मेहनत का दाम नहीं देती। ये सरकार झुकती है, बस आवाज एक साथ उठनी चाहिए। अखिलेश यादव की नजर भी जेनजी से लेकर जेन अल्फा तक है, जिनके मुद्दों पर वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया, 7,000 करोड़ का कॉस्मेटिक फेशियल करवाया। हम इतनी ही राशि में केजी से पीजी और रिसर्च तक की वर्ल्ड क्लास 2-3 यूनिवर्सिटी बनाकर बच्चों युवाओं का भविष्य सुधार कर दिखाएंगे, उत्तर प्रदेश को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर ले जाएंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ लगातार रैलियों में समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की याद दिला रहे हैं।
9: कुछ लोग जीवन भर बच्चे ही बने रहते हैं और बबुआ भी यही करते थे, 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और 7 बजे के बाद तो महफिल जम जाती थी, तब तो फिर देश और दुनिया से उनका संबंध ही समाप्त हो जाता था। तो प्रदेश के बारे में कहां से सोच उनके पास थे। इसी कारण दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था।
5: बहरहाल यूपी में भी सियासी रणनीति बदलती जा रही है, जहां सबकी नजरें जेनजी वोट बैंक पर है। आज तक ब्यूरो।
4: खबर संसद की, जहां सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। क्या कुछ शुक्रवार को संसद में हुआ, आइए हम आपको दिखाते हैं।

0: मानसून सत्र में संसद में जुबानी बिजलियां कड़क रही हैं, कार्यवाही ठप है और विपक्ष अमित शाह के पैलेट गन पर जवाब को लेकर अड़ा हुआ है।
1: लीडर ऑफ द अपोजिशन हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, सदन में जिसका बिजनेस होता है वही मंत्री जवाब देता है। अपोजिशन तय नहीं करेगा कौन सा मंत्री को कब आना है, ये अपोजिशन पार्टी तय नहीं करते हैं। आप लोग नाराबाजी करके तुरंत चले जाते हैं पार्लियामेंट छोड़ के, लेकिन होम मिनिस्टर सुबह से लेकर देर रात तक पार्लियामेंट में नहीं रहता है, देश का संचालन करता है, और जब होम मिनिस्टर जवाब देगा आप लोग सुन नहीं पाएगा।
2: ठीक है सर, यू सेड इफ एचएम विल कम टू द पार्लियामेंट द अपोजिशन विल नॉट एबल टू लिसन हिम।
3: बिगेस्ट जोक विच आई हर्ड टुडे इज दैट biggest joke in this parliament was Kiran Rijiju's statement.
0: इस बीच एनडीए में नई एंट्री लेने वाले सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। पीएम के साथ नाश्ते पर यह चर्चा खास है क्योंकि एनडीए परिवार के विस्तार के बाद इस मुलाकात के राजनीतिक मायने हैं। सांसदों से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने संसद न चलने पर चिंता जाहिर की और सांसदों को भरोसा दिया कि अगर विकास योजनाओं में कोई अड़चन आए तो सीधे पीएमओ से संपर्क करें।
4: It was a very, very big honor that he has invited us. And उन्होंने ये भी कहा कि एक्चुअली सदन नहीं चल रहे तो उनको भी बहुत खराब लग रहा है, तो बट वो चाहते हैं कि जल्दी से सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। उन्होंने ऐसे ही कहा कि देखिए हम तो देश के लिए काम करते हैं और हमारे साथ जो जो है हमारे ग्रुप के जो है हम आपके साथ है, यही सबसे बड़ी बात है। कि उन्होंने ये कहा है कि जैसे हम सोचते हैं आप उसी सोच पे विश्वास रखिए और उस हिसाब से आगे बढ़ते चलिए।
5: बहुत अच्छा चर्चा हुआ है
6: जी,
5: वेरी गुड।
6: किन मुद्दों पे चर्चा हुई सर?
5: हर हर ये डेवलपमेंट के बारे में।
6: कई सारे आपके साथी हैं जो मुस्लिम समुदाय से हैं, वो भी मौजूद थे मीटिंग में?
5: मीटिंग में मौजूद थे, वो लोग भी सपोर्ट किया।
6: क्या स्पीकर का इशू भी चला इस पे मस्जिदों को लेके जो इशू?
5: नो।
6: ओके सर, आखिरी सवाल सर, एफसीआरए पे क्या रुख रहेगा आप लोगों का सर?
5: हम लोग मदद करेंगे।
0: पीएम मोदी ने उद्धव गुट से शिंदे गुट में शामिल हुए शिवसेना के सांसदों के साथ अलग से बातचीत की। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग से मुलाकात करने पहुंचे। विदेशी फंडिंग पर रेगुलेशन का नया एफसीआरए बिल सरकार की बड़ी चुनौतियों में से एक है। वहीं हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित है। आज तक ब्यूरो।
7: पंजाब चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरण तैयार किए जा रहे हैं। कांग्रेस के सामने चुनौती अंदरूनी कलह की है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुखबीर सिंह बादल की मुलाकात ने पंजाब में पुराने गठबंधन को फिर से साथ आने की हटकलों को हवा दी है।
8: पंजाब कांग्रेस में चरणजीत सिंह चन्नी और राजा वेडिंग के घमासान के बीच राहुल गांधी ने कैप्टन अमरिंदर को अपना पसंदीदा नेता बताया है।
9: कैप्टन अमरिंदर सिंह डेफिनेटली आई गेट अलोंग विद हिम, ही इज कूल एंड ही इज एन एक्सपर्ट ऑन मिलिट्री हिस्ट्री, सो आई लाइक हिम क्वाइट अ लॉट। हेलो अंकल अमरिंदर।
8: राहुल के बयान के बाद पंजाब कांग्रेस के नेताओं के सुर बदले हुए हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी अमरिंदर के कांग्रेस में वापस जाने की आशंका जताई जा रही है।
10: अगर वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपना फेवरेट लीडर मानते हैं, जो सबसे लेजी ऑफिसर्स लेजी जो पॉलिटिशियन है उनमें से जाना जाता है और उन पॉलिटिशियंस में जाना जाता है जो कि किसी भी समय किसी भी जगह पे पलटी मार सकता है, अगर राहुल जी का वो आइडियल है तो फिर राहुल जी की सियासत क्या होगी?
11: अच्छे इंसान है, अच्छी चीजें भी है यार, किसको मेरा ख्याल है हर देखो जो आदमी दो बार चीफ मिनिस्टर रह गया उसमें कोई चीजें तो ऐसी है जो सीखने लायक है।
12: तो अच्छी बात है, हर लीडर की अपनी चॉइसेस होती हैं और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी की फ्राक दिली है। उन्होंने ये बोला है कि किसी ने पूछा कि बीजेपी में आपका फेवरेट लीडर कौन है, तो बोला कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, ही इज माई अंकल एंड दैट ही इज द मिलिट्री हिस्टोरियन, उनके साथ उन्होंने काफी साल काम किया, वो अलग बात है अलग पार्टी। लेकिन इसमें आप देखेंगे राहुल गांधी की फराख दिली है जो ऑपोजिशन के लीडर्स को भी अप्रिशिएट करते हैं।
8: उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल से मुलाकात हुई। हालांकि अकाली दल की ओर से साफ किया गया कि ये मुलाकात पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है। वहीं बीजेपी भी कह रही है कि वो पंजाब में किसी से गठबंधन करने नहीं जा रही।
13: तो प्रधानमंत्री साहब नु कोई भी मिल सकता, तो मैंने उम्मीद है कि सुखबीर सिंह बादल पंजाब दे भले लई कोई चंगी गल करके बिल्कुल क्लियर करना चाहना कि साडे वल्लों भारतीय जनता पार्टी पंजाब वल्लों 117 सीटा की तैयारी है, 117 सीटा तो असीं कल्ले लड़ांगे।
8: इस बीच मान सरकार के खिलाफ सरकारी नौकरी को लेकर आज जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस के साथ कई संगठनों ने मोर्चा संभाला और मान सरकार को घेरने की कोशिश की।
14: ये देखिए, ये वाटर कैनन चला, आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब दोबारा वाटर कैनन चला है। और आपको बता दें, यहाँ पे तिथर बितर करने की पूरी कोशिश, ये आप देखिएगा, लगातार हम आपको अपने कैमरे में दिखा रहे हैं कि किस तरह से सड़कों पे उतरे हुए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, लेकिन इनका हौसला कम नहीं हो रहा है, अपने मांगों को लेके अड़ंग है, अड़े हुए हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से चंडीगढ़ पुलिस ने इनको बैरिकेड लगा के यहीं पे रोकने की कोशिश, और उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल। लेकिन क्या ये खामियाजा भुगतना पड़ सकता है सरकार को इलेक्शन में, ये बड़ी बात है। और इसी वजह से जो अपोजिशन पार्टीज है वो भी पंजाब गवर्नमेंट का पूरा साथ दे रही है।
8: बहरहाल पंजाब में चुनाव से पहले के समीकरण का खेल जारी है, जहां हर पार्टी ने पूरा जोर लगा रखा है। कमलजीत संधू के साथ असीम बस्सी, चंडीगढ़ आज तक।
7: दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश ने मुश्किलें लोगों की बढ़ा दी, सड़कों पर पानी भर गया, ट्रैफिक जाम हो गया, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया, 10 अगस्त तक बारिश का अनुमान है। दिल्ली के साथ नोएडा, गुरुग्राम में भी तेज बारिश के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली एनसीआर में बारिश आफत लेकर आई, सलाह दी गई है बहुत जरूरी न हो तो घर से बाहर न निकलें।

0: सुबह से दिल्ली NCR में सावन ऐसे झूम कर आया कि दिन ढल गया, रात हो गई। लेकिन मूसलाधार बारिश मुसलसल होती रही, लोग सड़कों पर परेशान दिखे, ट्रैफिक से जूझते दिखे, गाड़ियां खराब होती दिखी, सड़कों पर जल भराव दिखा। बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग ने दिल्ली NCR के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है और 10 अगस्त तक ऐसे ही कभी हल्की तो कभी तेज बारिश होते रहने की संभावना है। पहले बारिश में हिचकोले खाती दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें NB रोड की हैं।
1: राजधानी दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बीच काफी जलभराव हो रहा है। अभी हम दिल्ली के NB रोड पर हैं, जहां पर आप देखेंगे जलभराव किस तरीके से हुआ है और किस तरीके से बस को निकालने का प्रयास किया जा रहा है।
2: कितना फीट तक पानी भर गया है यहाँ पर?
3: ये मैं ईमानदारी से बताऊं, मेरी आप देख सकते हैं घुटने से ऊपर और कमर से हल्का सा नीचे पानी है।
2: सर ये 4 फीट लमसम होगा पानी, ठीक है? और जिस तरीके से आप आगे की तरफ जाएंगे ना, आगे की तरफ और देखेंगे तो और भी पानी जिस तरीके से लबालब भरा हुआ है, ठीक है? ये बहुत संकेत है।
1: महिला आ रही है, स्कूल के टीचर हैं आप?
3: हाँ जी।
1: कहाँ से आ रही हैं?
3: बाल निकेतन संगम विहार।
1: तो अब कितना पानी बस नहीं मिला?
3: बस नहीं, वो तो हमारी स्कूल की कार थी तो उससे हम आए
1: तो फिर
3: कार के अंदर इतना पानी।
1: आप देख सकते हैं ये आर्मी मैन है और इनकी भी गाड़ी बुलेट से जा रहे हैं, इनकी फंस गई है।
2: आपकी भी बंद हो गई?
4: हाँ कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट कर लेंगे।
1: यही स्थिति हो रही है और दरिया जैसा स्थिति यहाँ पर MB रोड पर बनता हुआ नजर आ रहा है।
0: आपको बता दें कि MB रोड पर ओखला मोड़, संगम विहार, खानपुर और देवली में जल भराव हुआ है, जिसके कारण MB रोड का यातायात खानपुर से ओखला मोड़ के बीच प्रभावित हुआ और लोग परेशान होते रहे। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में 7 अगस्त को 59.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो इस साल अगस्त महीने का अब तक का सबसे बरसाती दिन रहा है। जबकि दिल्ली के छतरपुर में 104.5 मिलीमीटर बारिश, पुष्प विहार में 111.5 मिलीमीटर बारिश, पालम में 73.5 मिलीमीटर बारिश और आया नगर में 87.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और बारिश में दरिया बनती दिल्ली की तस्वीरें वसंत कुंज से भी आई हैं। देखिए वसंत कुंज का हाल।
5: दूर देखिए बच्चे, वहाँ जो स्कूली बच्चे हैं वो आ रहे हैं और देखिए उन वो पानी में कैसे खेलते हुए आ रहे हैं। लेकिन ये स्कूल का टाइम है, स्कूल से छुट्टी हुई है और बच्चे देखिए यहाँ पर सड़क पे या फुटपाथ हो हर तरफ पानी ही पानी है। बेहद अहम मार्ग है, मैं फिर से बता दूं, वसंत कुंज का ये रोड है जो एयरपोर्ट को जोड़ता है, इसके आसपास कई सारे स्कूल हैं और यहाँ पर जलजमाव की स्थिति बनी है। दिल्ली वालों की ये आफत बन के निकला है ये मानसून की ये बरसात।
0: बारिश की वजह से मेहरोली बदरपुर रोड, ITO वजीराबाद रोड, पटेल रोड, रोहतक रोड, शंकर रोड, कीर्ति नगर, दिल्ली जयपुर हाईवे, पीरागढ़ी और शाहीन बाग जैसे इलाकों में भारी ट्रैफिक देखा गया। हालांकि इस बारिश से दिल्ली के तापमान में भी गिरावट आई है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी सुबह से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ दिन भर चलता रहा। बारिश होने से कई जगहों पर भारी जल भराव हो गया है, जिस वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं झमाझम बारिश के बीच नोएडा सेक्टर 95 स्थित अंडरपास में जल भराव हो गया, जिसमें एक एम्बुलेंस फंस गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे बंद पड़ी एम्बुलेंस को ड्राइवर ने धक्का मारकर निकालने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। गनीमत ये रही कि एम्बुलेंस में कोई मरीज नहीं था। और बारिश से गुरुग्राम की दुर्गति भी देख लीजिए। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर पानी भरा है और पानी में गड्ढे हैं। ये देखिए कैसे एक ऑटो पानी में हिचकोले खाते हुए चल रहा है। बारिश इतनी तेज हुई कि पहले सड़कें लबालब हुई और फिर पानी गुरुग्राम के सिविल अस्पताल के अंदर भी घुसपैठ कर गया। और गुरुग्राम की पुलिस लाइन की ये तस्वीरें भी देखिए, कैसे बारिश के पानी में बच्चे तैराकी कर रहे हैं। और जैसा कि हर बारिश में गुरुग्राम में ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है, ठीक वैसा ही नजारा आज भी दिखा। गुरुग्राम में पिछले कुछ घंटों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। भारी जलभराव और यातायात जाम को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने कंपनियों को कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की सलाह भी दी है। दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
6: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: रांची में चार मंत्रियों और छात्र प्रतिनिधि मंडल में पहले दौर की वार्ता खत्म। मुलाकात के बाद दोनों पक्षों ने कहा बातचीत सकारात्मक लेकिन प्रदर्शन जारी। संसद में गतिरोध के बीच सोमवार तक स्थगित दोनों सदन। रिजिजू ने विपक्ष पर जड़ा आरोप। कांग्रेस ने 10, 11, 12 के लिए सांसदों को व्हिप जारी किया। एथेनॉल पर राहुल ने सरकार को घेरा, कहा दाल में काला नहीं पूरी दाल ही काली। हरदीप सिंह पुरी बोले कुछ लोग खड़ा कर रहे हैं विवाद। सीएम योगी ने अखिलेश को घेरा, कहा एसपी सरकार में लूटने निकल जाती थी चाचा भतीजी की जोड़ी, विधानसभा नहीं चलने दी इन्होंने। लगातार बारिश से दिल्ली एनसीआर में जगह जगह पानी भरा, लंबा लंबा जाम, लोगों को घर से निकलना मुश्किल हुआ, 9 घर गिरे। आज फिर मौसम विभाग का भारी बारिश का अलर्ट। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों की राज्य सरकार के साथ पहले दौर की मीटिंग खत्म हो गई। हेमंत सोरेन सरकार ने चार मंत्रियों का एक पैनल बनाया था जिसने 10 छात्रों के डेलीगेशन से बात की। स्टेट गेस्ट हाउस में बातचीत के लिए पहुंचा प्रतिनिधिमंडल आंदोलन कर रहे मुख्य छात्र समूह का है जो देवेंद्र महतो के गुट से अलग है। प्रतिनिधिमंडल ने बैठक में शामिल होकर छात्रों का पक्ष रखा। बात खत्म होने के बाद छात्र नेता रविन्द्र पासवान ने कहा यह हमारी पहली मीटिंग थी जो बहुत सकारात्मक रही। भरोसा है सरकार, मुख्यमंत्री और सभी मंत्री हमारी मांगों पर विचार करेंगे।
1: ये आप लोगों की और क्या निर्णय लिया गया?
2: अभी बस धरना लिया गया है और आगे का वार्ता भी चलेगा, आंदोलन कंटिन्यू।
1: क्या कहा चलेगा मंत्री ने, क्या कहा आप लोगों की बात पर?
2: हम लोगों की बात को सकारात्मक लिया गया है और मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, उसका समाधान किया जाएगा।
1: ठीक,
2: सकारात्मक बात हुई है, हम लोग का डिमांड लिया गया है, डिमांड पे चर्चा भी आगे और भी चलेगा, अभी आंदोलन कंटिन्यू है।
3: हाँ, जारी रहेगा। This is the first round.
0: झारखंड आंदोलन को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल उठा वो ये कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके या फिर इनका कोई बड़ा नेता अब तक इस आंदोलन में शामिल क्यों नहीं हुआ। हालांकि आंदोलन के 14वें दिन जंतर मंतर पर अनशन करने वाली आइसा की अध्यक्ष नेहा बोरा नजर आईं और समर्थन देने की बात करती हैं।

0: उन पर स्याही फेंकने की घटना भी हुई। तो इस आंदोलन में आगे क्या होने वाला है ये भी हम आपको बताएं, लेकिन आज सरकार से इनकी बातचीत हो चुकी है और दोनों पक्षों ने सकारात्मक बताया है।
1: जब रांची में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हैं, सरकार से अपनी मांगे बनवाने के लिए अड़े हुए हैं, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब परीक्षाओं को लेकर आंदोलन चल रहा है तो उसमें अभिजीत दिपके या फिर कॉकरोच जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता अब तक इस आंदोलन में शामिल क्यों नहीं हुआ। इस बीच महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में कॉकरोच जनता पार्टी की दो दिन बैठक भी होती है। सीजेपी अपनी आगे की पूरी रणनीति तय करती है, पूरी टीम के पद तय किए जाते हैं और सितंबर से क्या बोलती पब्लिक कैंपेन शुरू करने का ऐलान भी होता है। सवाल यही है कि सीजेपी के सारे बड़े चेहरे छत्रपति संभाजी नगर में दिपके के घर तो दिखते हैं, रांची के आंदोलन में क्यों नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी और उसके संस्थापक अभिजीत दिपके से लगातार सवाल हो रहे हैं कि सीजेपी के नेता रांची के छात्र आंदोलन में अब तक क्यों नहीं पहुंचे। हालांकि इस पर सीजेपी ने कहा कि उन्होंने बारिश में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के लिए रेनकोट भेजे हैं, छाते भेजे हैं, खाने का सामान भी भेजा है और पार्टी का नेतृत्व भी रांची जाएगा। सवाल यही है कब तक। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ भूख हड़ताल करने वाली आयसा अध्यक्ष नेहा बोरा रांची में छात्र आंदोलन के मंच पर जरूर पहुंची। नेहा बोरा ने मंच से इस आंदोलन के समर्थन का ऐलान भी किया। नेहा बोरा ने कहा कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराई जानी चाहिए और इसकी तारीख जल्द घोषित होनी चाहिए।
2: तो जो सब साथी भूख हड़ताल पे बैठे हैं स्टेडियम में, उनको बहुत बधाई। आपने ये जो संघर्ष किया हुआ है उस संघर्ष को पूरा देश देख रहा है और इस मंच से वो मांगे जो यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे छात्रों की है, संघर्ष कर रहे छात्रों की है, उन मांगों को मैं अपनी सॉलिडारिटी और समर्थन यहाँ से देना चाहूंगी।
1: लेकिन रांची के छात्र आंदोलन के दौरान आयसा अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंकने का मामला भी सामने आया और इसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ। एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई। नेहा बोरा की उम्र अभी 29 साल है और वो अपनी बेबाक आवाज के लिए जानी जाती हैं। मूल रूप से नेहा बोरा उत्तराखंड के खटीमा से आती हैं। आपको बता दें कि रांची आंदोलन को लेकर सवाल राहुल गांधी पर भी उठ रहे थे। बीजेपी कह रही थी कि जंतर मंतर पर सीजेपी के आंदोलन पर बोलने वाले राहुल गांधी रांची के छात्र आंदोलन पर क्यों चुप हैं? तो राहुल गांधी ने 6 अगस्त को प्रदर्शनकारी छात्रों से फोन पर बात की। एक छात्र नेता रविंद्र पासवान ने बताया कि उनकी राहुल गांधी से बात हुई है। साथ ही राहुल गांधी ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने छात्रों के समर्थन की बात कही।
3: झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है और अलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ओप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो।
1: लेकिन जैसे जैसे रांची आंदोलन के दिन बढ़ रहे हैं छात्रों का सब्र टूट रहा है और अब अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत भी बिगड़ने लगी है। ये 40 साल के राहुल हैं जो पिछले 4 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन उन्हें बहुत तेज बुखार हो गया। बाकायदा डॉक्टरों की टीम आई

0: जो पिछले 4 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन उन्हें बहुत तेज बुखार हो गया। बाकायदा डॉक्टरों की टीम आई और इस अनशनकारी को यहां से ले जाकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
1: पर हूँ, 4 छात्र अनशन पर बैठे हुए थे बीते 4 दिनों से। इनमें 40 साल के राहुल, जिनको आप देख रहे हैं, इनकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई है और अब डॉक्टरों ने मेडिकल रिपोर्ट के बाद ये देख लिया है कि इनके वाइटल्स जो है काफी ज्यादा बिगड़ गए और इसलिए अब इनको जो है यहाँ से अस्पताल ले जा रहा है। डॉक्टर ने कहा इनको यहाँ बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। डॉक्टर क्या कह रहे हैं भैया, क्या कुछ बताया उन्होंने,
2: क्या बोले
1: डॉक्टर, क्या कह रहे हैं?
2: डॉक्टर ये बताया कि उसका तबीयत खराब है, उसको अभी सदर अस्पताल ले जाया जाएगा।
3: अभी एक ही लोग का देखा गया है, अभी इनका ठीक लग रहा है, बाकी लोग का देख रहे हैं।
1: उनको आप ले जा रहे हैं, किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हुई है?
3: उनका पल्स रेट काफी ज्यादा हाई मिल रहा है, जिसके वजह से उनका बीपी भी थोड़ा शूट उठ कर
1: यहाँ रखा जा सकता है बिल्कुल भी
3: अब? नहीं नहीं, अब इनको एडमिट ही करना पड़ेगा, अब इनको सदर में ही रेफर करना पड़ेगा।
0: डॉक्टरों की सलाह के बाद अनशनकारी राहुल को अस्पताल ले जाया गया। वो बेहोश हो गए थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा से बात की।
1: 4th दिन हो गया, स्वास्थ्य से बढ़कर तो आंदोलन नहीं है ना?
4: लेकिन झारखंड के नौजवानों का सौदा नहीं हो, ये मेरा संकल्प है, तो उसको तो हम अंतिम सांस तक।
1: मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि आपको बुखार काफी ज्यादा है, बहुत तेज हो चुका है, शरीर तप रहा है।
4: तप रहा है, लेकिन यहाँ डॉक्टर भी तो आते हैं, चेकअप करते हैं, दवा भी लिखते हैं, आप बोलते हैं कि 2 घंटा में दवा पहुंचा रहे हैं।
1: देखिए, जब एक अनशन खत्म हुआ तब आप लोगों ने समर्थन किया, आपको नहीं लगता 4 दिन हो चुका और हर युवा को अनशन की आदत नहीं होती, आपकी जगह कोई और जगह ले सकता है, आप लोग नहीं दबाव डालते, तबीयत इनकी बहुत ज्यादा खराब हो?
5: नहीं, हम लोग बिल्कुल, आज सभी जो कमेटी मेंबर्स हैं वो सीरियसली इस विषय को देख रहे हैं कि हमारे जो दोस्त हैं उनकी हालत ज्यादा नाजुक ना हो। हम लोग चाहेंगे कि इसका विकल्प के तौर पे हम लोग कुछ आगे की कार्रवाई करें, क्योंकि ये
1: इनका नाम राहुल है
5: जी।
1: कितने साल के हैं ये?
6: 40 साल हो गए। 40।
1: राहुल, आपने भी प्रतियोगी परीक्षाएं दी थी अपने समय में?
4: JPSC का लगातार परीक्षा लिखते हैं, पहले तो PT निकल जाता था, इस बार तो वो MRA लीक हो गया तो बिक गया, तो निकलना तो दूर की बात है। सहायक आचार्य का भी परीक्षा क्वालिफाई हूँ, सीट खाली है, फिर भी सरकार नियुक्ति नहीं दे रही है। टुकड़ों टुकड़ों में नियुक्ति देती है, जितना सीटों का सेटिंग होता है उतना ही को नियुक्ति देती है। जब विज्ञापन एक बार आया तो नियुक्ति उनको एक बार देना चाहिए था।
1: दरअसल झारखंड की पीड़ा ये है कि छात्र पेपर सेट करते हैं, लगाते हैं, तैयारियां करते हैं, लेकिन पीछे से सेटिंग हो जाती है, नौकरियां कोई और ले जाता है और उसी के साथ साथ उम्र सीमा भी खत्म हो जाती है। और जब सब्र का बांध टूटा है तो उन छात्रों को यहां आंदोलन पर ले आया। तबीयत बिगड़ रही है, नासाज हो रही है, डॉक्टर भी कह रहे हैं शरीर तप रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक हिम्मत, एक हौसला है, क्योंकि उन्हें लगता है ये लड़ाई सिर्फ अब उनके भविष्य की नहीं है, उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है।
0: इसी अनशन के मंच पर 2 छात्राएं भी हैं जो भूख हड़ताल पर हैं, 27 साल की हबीबा और 28 साल की सरिता। इन छात्रों की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनकी उम्र लगातार बढ़ती जा रही है, पिछले 8-10 सालों से ये परीक्षाएं देती हैं, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिलती, क्योंकि पता चलता है कि नौकरी बिक गई।
1: कितनी परीक्षाएं इस 27 साल की उम्र में हबीबा ने दे दी, प्रतियोगी परीक्षाएं?
7: जी, 2017 से लगातार मैं देती आई हूं, तो JSSC की भी, JPSC के भी तो हो गए होंगे, 15-20 इतने प्लस तो हो ही गए होंगे।
1: कितनी परीक्षाओं में आप पास हुई, क्वालिफाई कर गए?
7: जी, मैंने पंचायत सचिव का एग्जाम दिया था, 2017 की वैकेंसी थी तो उसमें मैं पास हो गई थी। फिर उसमें सेकेंड एग्जाम था हिंदी टाइपिंग का, तो उसमें भी क्वालिफाई हुई। फिर DV भी हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, वह ऐसे भी तो डिले कर ही रही थी, तुरंत नहीं कर रही थी एग्जाम वगैरह, फिर 1 साल लगे, फिर 2 साल लगे उस एग्जाम को। उसके बाद जब उसका रिजल्ट देना था तो 5 साल तक प्रोटेस्ट करना पड़ा।
0: 28 साल की सरिता की कहानी तो बिल्कुल झकझोर कर रख देने वाली है। गरीब परिवार की सरिता ने अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर पढ़ाई की, होमगार्ड से लेकर JPSC तक की परीक्षा दे चुकी है, 2019 से परीक्षाएं दे रही हैं, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिल पाई, घर के हालात भी ठीक नहीं हैं।
8: तो मेरा उम्र भी निकलते जा रहा है, 28 साल होने जा रहा है, 28 में पार होने जा रहा है, अब 29 में पहुंच जाएंगे, 1 से 2 साल में मेरा एज भी खत्म होने को रहेगा, फिर हम तो कोई फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। अभी पढ़ाई के चक्कर में हम आगे कुछ और पढ़ाई नहीं किया, मेरा घर की स्थिति बहुत खराब था सर, इसीलिए हमको यही लगता था कि एक जॉब ले ले, उसके बाद जो आगे के भविष्य होगा आगे देखा जाएगा।
1: आपने कितनी परीक्षाएं दी
8: अभी तक सर? हम 2019 से परीक्षा दे रहे हैं, 2019 हम तैयारी कर रहे हैं।
1: 7 साल हो गए,
8: 7 साल होने जा रहा है, आज तक एक रिजल्ट नहीं हो पाया। ये
0: पिछले 14 दिनों से रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की सबसे बड़ी चिंता यही है

0: कि उनका ये प्रदर्शन कहीं व्यर्थ तो नहीं चला जाएगा। क्या सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बात बन पाएगी? आज तक ब्यूरो।
1: खबर यूपी की पॉलिटिक्स की, जहां जेनजी को लेकर पार्टियां अपनी रणनीति बदल रही हैं। धर्म और जाति की राजनीति के बीच अब हर पार्टी की नजर युवा वोट बैंक पर है, जो 2027 के चुनाव में एक महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है।
2: दिल्ली के जंतर मंतर से निकली जेनजी आंदोलन की इस चिंगारी ने सत्ता की रणनीति को नए सिरे से गढ़ने पर मजबूर कर दिया है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नई युवा नीति को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें 2027 से पहले जेनजी पर सरकार का फोकस है।
3: युवाओं को लेकर एक आयोग गठित होने वाला है, जिसमें 18 से 35 वर्ष के युवा, यानी कि आसान भाषा में कहें तो कुछ हद तक जेनजी से सलाह मशवरा लिया जाएगा युवाओं को लेकर बनाई जाने वाली नीतियों को लेकर। यानी कि योगी सरकार को ये मालूम पड़ गया है कि जेनजी एक बहुत बड़ा वोटर है और ऐसे में उन्हें साथ लेकर ही चलना होगा।
2: जेनजी वोट बैंक पर योगी सरकार के मिशन पर सियासत तेज हो गई है।
4: और अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार एक युवा नीति लेकर के आ रही है। यह युवा नीति युवाओं के सपनों को साकार करने वाली होगी।
5: तो उत्तर प्रदेश का जो जेनजी है, जो जेन अल्फा है, जो मिलेनियम है, वो समझ रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ भी किसी चीज के अगर शिकार हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो आत्ममुग्धता के शिकार हैं। अगर आत्ममुग्धता के शिकार न होते तो अपने चेहरे चमकाने पर 3 करोड़ रुपए न खर्च करते, बल्कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को आप पेपर लीक की जगह अच्छी व्यवस्था, पारदर्शी और निष्पक्ष आपने कोई व्यवस्था दी होती।
2: उधर राहुल गांधी भी कल पेपर लीक के मुद्दे पर गूंज कार्यक्रम के तहत प्रयागराज में जेनजी छात्रों के साथ संवाद करने जा रहे हैं। प्रयागराज आ रहा हूँ, देश के उस शहर में जहाँ सबसे ज्यादा नौजवान तैयारी करते हैं। एक बात साफ है, यहाँ का हर छात्र जानता है कि सिस्टम बेईमान हो चुका है। आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं, कमी उस सिस्टम की नीयत में है जो आपकी मेहनत का दाम नहीं देती। ये सरकार झुकती है, बस आवाज एक साथ उठनी चाहिए। अखिलेश यादव की नजर भी जेनजी से लेकर जेन अल्फा तक है, जिनके मुद्दों पर वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया, 7,000 करोड़ का कॉस्मेटिक फेशियल करवाया। हम इतनी ही राशि में केजी से पीजी और रिसर्च तक की वर्ल्ड क्लास 2-3 यूनिवर्सिटी बनाकर बच्चों युवाओं का भविष्य सुधार कर दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर ले जाएंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ लगातार रैलियों में समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की याद दिला रहे हैं।
6: कुछ लोग जीवन भर बच्चे ही बने रहते हैं और बबुआ भी यही करते थे, 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और 7 बजे के बाद तो महफिल जम जाती थी, तब तो फिर देश और दुनिया से उनका संबंध ही समाप्त हो जाता था। तो प्रदेश के बारे में कहां से सोच उनके पास थे। इसी कारण दंगे होते थे, महीनों कर्फ्यू रहता था।
2: बहरहाल यूपी में भी सियासी रणनीति बदलती जा रही है, जहां सबकी नजरें जेनजी वोट बैंक पर है। आज तक ब्यूरो।
1: संघ प्रमुख मोहन भागवत भी जेनजी के साथ संवाद कर रहे थे। नई युवा पीढ़ी की जमकर तारीफ उन्होंने की, जिसे लेकर अब राजनीति हो रही है।
2: जेनजी आंदोलन के बाद जब संघ प्रमुख मोहन भागवत जेनजी के संवाद कार्यक्रम में पहुंचे, तो उन्होंने जेनजी की जमकर तारीफ की, प्रदर्शन को संवाद से निपटाने की नसीहत दी, तो वहीं जेनजी की देशभक्ति पर सवाल करने वालों को कटघरे में खड़ा किया।
7: मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेनजी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है।
8: अरे वाह, बढ़िया है।
7: और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है।
2: मोहन भागवत के बयान विपक्ष को रास नहीं आ रहे।
9: सर्टिफिकेट फ्रॉम मोहन भागवत जी,
10: समर्थन तो किया है, लेकिन उन्हीं के अनुयायियों ने तो जेनजी को देशद्रोही कहा है जी। उन्हीं के अनुयायियों ने तो खालिस्तानी से लेके पाकिस्तानी तक तमाम हमारे बच्चों के, जो इनोसेंट बच्चे हैं, शायद जिन्होंने घर स्कूल के अलावा कभी कुछ देखा भी नहीं था, ऐसे बच्चों को बदनाम किसने किया। सदैव नेताजी कहते थे ये बीजेपी आरएसएस के कई मुंह होते हैं, जब देखते हैं कि समाज में विरोध हो रहा है तो उन्हीं में से एक सकारात्मक बयान देने लगता है।
2: जंतर मंतर में प्रदर्शन करने वाले जेनजी पर सवाल खड़े करने वाली कंगना रनौत भी प्रदर्शनकारियों और जेनजी में फर्क बता रही हैं।
11: जेंजी जो है सरकार का हिस्सा है, उन्हीं का तो मैंडेट है, जो हमारी सरकार जो है इतने सालों से जो है, तो जेंजी का ही मैंडेट है। और जेंजी जो है हमारी बहुत बड़ी, ऐसा नहीं है जो प्रोटेस्ट पे 10-15 जो है गालियां देने वाले ही जेंजी हैं, ये कुछ ही हाथ, जैसे मैं कहती हूँ कुछ हैंडफुल ऑफ पीपल हैं जो जेंजी का नाम खराब कर रहे हैं। जेंजी जो है हमारी सबसे बड़ी ताकत है और हमें गर्व है अपनी जेंजी।
2: हर दल किसी न किसी तरह से जेंजी से मिलने जुलने, उन्हें प्रभावित करने की कोशिश में जुटा है, चाहे वो पीएम मोदी के इंस्टा रील्स हो या राहुल गांधी के इंस्टा क्वेश्चन आंसर सेशन, चाहे वो मोहन भागवत का जेंजी कनेक्ट हो या राहुल गांधी के गूंज कार्यक्रम। हर दल को लगता है कि जेंजी से कनेक्ट रहे बिना देश की सियासत में मौजूद नहीं रहा जा सकता। आज तक विरोध।
1: खबर संसद की, जहां सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। क्या कुछ शुक्रवार को संसद में हुआ, आइए हम आपको दिखाते हैं।
0: मॉनसून सत्र में संसद में जुबानी बिजलियां कड़क रही हैं, कार्यवाही ठप है और विपक्ष अमित शाह के पैलेट गन पर जवाब को लेकर अड़ा हुआ है।
12: लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, सदन में जिसका बिजनेस होता है वही मंत्री जवाब देता है। ऑपोजिशन तय नहीं करेगा कौन सा मंत्री को कब आना है, ये ऑपोजिशन पार्टी तय नहीं करते हैं। आप लोग नाराबाजी करके तुरंत चले जाते हैं पार्लियामेंट छोड़ के, लेकिन होम मिनिस्टर सुबह से लेकर देर रात तक पार्लियामेंट नहीं रहता है, देश का संचालन करता है। और जब होम मिनिस्टर जवाब देगा आप लोग सुन नहीं पाएगा।
13: बिगेस्ट जोक विच आई हर्ड टुडे इज दैट बिगेस्ट जोक इन दिस पार्लियामेंट वाज किरण रिजिजू स्टेटमेंट।
0: इस बीच एनडीए में नई एंट्री लेने वाले सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। पीएम के साथ नाश्ते पर यह चर्चा खास है क्योंकि एनडीए परिवार के विस्तार के बाद इस मुलाकात के राजनीतिक मायने हैं। सांसदों से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने संसद न चलने पर चिंता जाहिर की और सांसदों को भरोसा दिया कि अगर विकास योजनाओं में कोई अड़चन आए तो सीधे पीएमओ से संपर्क करें।
14: एंड उन्होंने ये भी कहा कि एक्चुअली सदन नहीं चल रहे तो उनको भी बहुत खराब लग रहा है, तो बट वो चाहते हैं कि जल्दी से सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। ऐसे ही कहा कि देखिए हम तो देश के लिए काम करते हैं और हमारे साथ जो जो है हमारे ग्रुप के जो है हम आपके साथ है, यही सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ये कहा है कि जैसे हम सोचते हैं आप उसी सोच पे विश्वास रखिए और उस हिसाब से आगे बढ़ते चलिए।
15: बहुत अच्छा चर्चा हुआ है
16: जी,
15: वेरी गुड।
16: किन मुद्दों पे चर्चा हुई सर?
15: हर डेवलपमेंट के बारे में।
16: कई सारे आपके साथी हैं जो मुस्लिम समुदाय से हैं, वो भी मौजूद थे मीटिंग में?
15: थे, मीटिंग में मौजूद थे, वो लोग भी सपोर्ट किया।
16: क्या स्पीकर का इशू भी चला इस पे मस्जिदों को लेके जो इशू?
15: नो।
16: ओके सर, आखिरी सवाल सर, एफसीआरए पे क्या रुख रहेगा आप लोगों का सर?
15: हम लोग मदद करेंगे।
0: पीएम मोदी ने उद्धव गुट से शिंदे गुट में शामिल हुए शिवसेना के सांसदों के साथ अलग से बातचीत की। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग से मुलाकात करने पहुंचे। विदेशी फंडिंग पर रेगुलेशन का नया एफसीआरए बिल सरकार की बड़ी चुनौतियों में से एक है। वहीं हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित है। आज तक ब्यूरो।
1: पंजाब चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरण तैयार किए जा रहे हैं। कांग्रेस के सामने चुनौती अंदरूनी कलह की है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुखबीर सिंह बादल की मुलाकात ने पंजाब में पुराने गठबंधन को फिर से साथ आने की हटकलों को हवा दी है।
2: पंजाब कांग्रेस में चरणजीत सिंह चन्नी और राजा वेडिंग के घमासान के बीच राहुल गांधी ने कैप्टन अमरिंदर को अपना पसंदीदा नेता बताया है।
17: कैप्टन अमरिंदर सिंह डेफिनेटली आई गेट अलोंग विद हिम, ही इज कूल एंड ही इज एन एक्सपर्ट ऑन मिलिट्री हिस्ट्री, सो आई लाइक हिम क्वाइट अ लॉट। हेलो अंकल अमरिंदर।
2: राहुल के बयान के बाद पंजाब कांग्रेस के नेताओं के सुर बदले हुए हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी अमरिंदर के कांग्रेस में वापस जाने की आशंका जताई जा रही है।
18: अगर वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपना फेवरेट लीडर मानते हैं, जो सबसे लेजी ऑफिसर्स लेजी जो पॉलिटिशियन है उनमें से जाना जाता है और उन पॉलिटिशियंस में जाना जाता है जो कि किसी भी समय किसी भी जगह पे पलटी मार सकता है, अगर राहुल जी का वो आइडियल है तो फिर राहुल जी की सियासत क्या होगी?
19: अच्छे इंसान है, अच्छी चीजें भी है यार, किसको, मेरा ख्याल है हर, देखो जो आदमी दो बार चीफ मिनिस्टर रह गया उसमें कोई चीजें तो ऐसी है जो सीखने लायक है।
20: तो अच्छी बात है, हर लीडर की अपनी चॉइसेस होती हैं और मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी की फ्राक दिली है, उन्होंने ये बोला है कि किसी ने पूछा कि बीजेपी में आपका फेवरेट लीडर कौन है, तो बोला कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, ही इज माय अंकल एंड दैट ही इज द मिलिट्री हिस्टोरियन, उनके साथ उन्होंने काफी साल काम किया, वो अलग बात है, अलग पार्टी। लेकिन इसमें आप देखेंगे राहुल गांधी की फराख दिली है जो ऑपोजिशन के लीडर्स को भी अप्रिशिएट करते हैं।
2: उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल से मुलाकात हुई। हालांकि अकाली दल की ओर से साफ किया गया कि ये मुलाकात पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है। वहीं बीजेपी भी कह रही है कि वो पंजाब में किसी से गठबंधन करने नहीं जा रही।
3: तो प्रधानमंत्री साहब को कोई भी मिल सकता, तो मैंने उम्मीद है कि सुखबीर सिंह बादल पंजाब के भले लिए कोई चंगी गल करके क्लियर करना चाहना कि साडे वालों भारतीय जनता पार्टी पंजाब वालों 117 सीटा की तैयारी है, 117 सीटा तो असीं कल्ले लड़ांगे।
2: इस बीच मान सरकार के खिलाफ सरकारी नौकरी को लेकर आज जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस के साथ कई संगठनों ने मोर्चा संभाला और मान सरकार को घेरने की कोशिश की।
21: ये देखिए, ये वाटर कैनन चला, आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब दोबारा वाटर कैनन चला है। और आपको बता दें यहाँ पे तिथर बितर करने की पूरी कोशिश, ये आप देखिएगा, लगातार हम आपको अपने कैमरे में दिखा रहे हैं कि किस तरह से सड़कों पे उतरे हुए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, लेकिन इनका हौसला कम नहीं हो रहा है, अपने मांगों को लेके अड़ंग है, अड़े हुए हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से चंडीगढ़ पुलिस ने इनको बैरिकेड लगा के यहीं पे रोकने की कोशिश, और उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल। लेकिन क्या ये खामियाजा भुगतना पड़ सकता है सरकार को इलेक्शन में, ये बड़ी बात है। और इसी वजह से जो अपोजिशन पार्टीज है वो भी पंजाब गवर्नमेंट का पूरा साथ दे रही है।
2: बहरहाल पंजाब में चुनाव से पहले के समीकरण का खेल जारी है, जहां हर पार्टी ने पूरा जोर लगा रखा है। कमलजीत संधू के साथ असीम बस्सी, चंडीगढ़ आज तक।
1: दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश ने मुश्किलें लोगों की बढ़ा दी, सड़कों पर पानी भर गया, ट्रैफिक जाम हो गया, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया, 10 अगस्त तक बारिश का अनुमान है। दिल्ली के साथ नोएडा गुरुग्राम में भी तेज बारिश के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली एनसीआर में बारिश आफत लेकर आई, सलाह दी गई है बहुत जरूरी न हो तो घर से बाहर न निकलें।

0: सुबह से दिल्ली एनसीआर में सावन ऐसे झूम कर आया कि दिन ढल गया, रात हो गई, लेकिन मूसलाधार बारिश मुसलसल होती रही। लोग सड़कों पर परेशान दिखे, ट्रैफिक से जूझते दिखे, गाड़ियां खराब होती दिखी, सड़कों पर जल भराव दिखा। बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है और 10 अगस्त तक ऐसे ही कभी हल्की तो कभी तेज बारिश होते रहने की संभावना है। पहले बारिश में हिचकोले खाती दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें एमबी रोड की हैं।
1: राजधानी दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बीच काफी जलभराव हो रहा है। अभी हम दिल्ली के एमबी रोड पर हैं, जहां पर आप देखेंगे जलभराव किस तरीके से हुआ है और किस तरीके से बस को निकालने का प्रयास किया जा रहा है।
2: कितना फीट तक पानी भर गया है यहाँ पर?
3: ये मैं ईमानदारी से बताऊं, मेरी आप देख सकते हैं घुटने से ऊपर और कमर से हल्का सा नीचे पानी है।
2: सर ये 4 फीट लमसम होगा पानी, ठीक है, और जिस तरीके से आप आगे की तरफ जाएंगे ना, आगे की तरफ और देखेंगे तो और भी पानी जिस तरीके से लबालब भरा हुआ है, ठीक है, ये बहुत संकेत है।
1: महिला आ रही है, स्कूल के टीचर है आप?
3: हाँ जी।
1: कहाँ से आ रही है?
3: बाल निकेतन संगम बिहार।
1: तो अब कितना पानी बस उस नहीं मिला?
3: बस नहीं, वो तो हमारी स्कूल की कार थी तो उससे हम आए
1: तो फिर
3: पीछे कार के अंदर इतना पानी।
1: आप देख सकते हैं ये आर्मी मैन है और इनकी भी गाड़ी बुलेट से जा रहे हैं, इनकी फंस गई है,
2: आपकी भी बंद हो गई?
4: हाँ कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट कर लेंगे।
1: आप देख सकते हैं यही स्थिति हो रही है और दरिया जैसा स्थिति यहाँ पर एमबी रोड पर बनता हुआ नजर आ रहा है।
0: आपको बता दें कि एमबी रोड पर ओखला मोड़, संगम बिहार, कानपुर और देवली में जल भराव हुआ है, जिसके कारण एमबी रोड का यातायात खानपुर से ओखला मोड़ के बीच प्रभावित हुआ और लोग परेशान होते रहे। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में 7 अगस्त को 59.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो इस साल अगस्त महीने का अब तक का सबसे बरसाती दिन रहा है, जबकि दिल्ली के छतरपुर में 104.5 मिलीमीटर बारिश, पुष्प विहार में 111.5 मिलीमीटर बारिश, पालम में 73.5 मिलीमीटर बारिश और आया नगर में 87.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और बारिश में दरिया बनती दिल्ली की तस्वीरें वसंत कुंज से भी आई हैं। देखिए वसंत कुंज का हाल।
5: दूर देखिए बच्चे, वहाँ जो स्कूली बच्चे हैं वो आ रहे हैं और देखिए उन वो पानी में कैसे खेलते हुए आ रहे हैं। लेकिन ये स्कूल का टाइम है, स्कूल से छुट्टी हुई है और बच्चे देखिए यहाँ पर सड़क पे या फुटपाथ हो हर तरफ पानी ही पानी है। बेहद अहम मार्ग है, मैं फिर से बता दूं, वसंत कुंज का ये रोड है जो एयरपोर्ट को जोड़ता है, इसके आसपास कई सारे स्कूल हैं और यहाँ पर जलजमाव की स्थिति बनी है। दिल्ली वालों की ये आफत बन के निकला है ये मानसून की ये बरसात।
0: बारिश की वजह से मेहरोली बदरपुर रोड, ITO वजीराबाद रोड, पटेल रोड, रोहतक रोड, शंकर रोड, कीर्ति नगर, दिल्ली जयपुर हाईवे, पीरागढ़ी और शाहीन बाग जैसे इलाकों में भारी ट्रैफिक देखा गया। हालांकि इस बारिश से दिल्ली के तापमान में भी गिरावट आई है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी सुबह से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ दिन भर चलता रहा। बारिश होने से कई जगहों पर भारी जल भराव हो गया है, जिस वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं झमाझम बारिश के बीच नोएडा सेक्टर 95 स्थित अंडरपास में जल भराव हो गया, जिसमें एक एम्बुलेंस फंस गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे बंद पड़ी एम्बुलेंस को ड्राइवर ने धक्का मारकर निकालने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। गनीमत ये रही कि एम्बुलेंस में कोई मरीज नहीं था। और बारिश से गुरुग्राम की दुर्गति भी देख लीजिए। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर पानी भरा है और पानी में गड्ढे हैं। ये देखिए कैसे एक ऑटो पानी में हिचकोले खाते हुए चल रहा है। बारिश इतनी तेज हुई कि पहले सड़कें लबालब हुई और फिर पानी गुरुग्राम के सिविल अस्पताल के अंदर भी घुसपैठ कर गया। और गुरुग्राम की पुलिस लाइन की ये तस्वीरें भी देखिए, कैसे बारिश के पानी में बच्चे तैराकी कर रहे हैं। और जैसा कि हर बारिश में गुरुग्राम में ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है, ठीक वैसा ही नजारा आज भी दिखा। गुरुग्राम में पिछले कुछ घंटों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। भारी जलभराव और यातायात जाम को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने कंपनियों को कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की सलाह भी दी है। दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
6: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: रांची में चार मंत्रियों और छात्र प्रतिनिधि मंडल में पहले दौर की वार्ता खत्म। मुलाकात के बाद दोनों पक्षों ने कहा बातचीत सकारात्मक, लेकिन प्रदर्शन जारी। संसद में गतिरोध के बीच सोमवार तक स्थगित दोनों सदन। रिजिजू ने विपक्ष पर जड़ा आरोप, कांग्रेस ने 10, 11, 12 के लिए सांसदों को व्हिप जारी किया। एथेनॉल पर राहुल ने सरकार को घेरा, कहा दाल में काला नहीं पूरी दाल ही काली। हरदीप सिंह पुरी बोले कुछ लोग खड़ा कर रहे हैं विवाद। सीएम योगी ने अखिलेश को घेरा, कहा एसपी सरकार में लूटने निकल जाती थी चाचा भतीजी की जोड़ी, विधानसभा नहीं चलने दी इन्होंने। लगातार बारिश से दिल्ली एनसीआर में जगह जगह पानी भरा, लंबा लंबा जाम, लोगों को घर से निकलना मुश्किल हुआ, 9 घर गिरे। आज फिर मौसम विभाग का भारी बारिश का अलर्ट। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों की राज्य सरकार के साथ पहले दौर की मीटिंग खत्म हो गई। हेमंत सोरेन सरकार ने चार मंत्रियों का एक पैनल बनाया था जिसने 10 छात्रों के डेलीगेशन से बात की। स्टेट गेस्ट हाउस में बातचीत के लिए पहुंचा प्रतिनिधिमंडल आंदोलन कर रहे मुख्य छात्र समूह का है जो देवेंद्र महतो के गुट से अलग है। प्रतिनिधिमंडल ने बैठक में शामिल होकर छात्रों का पक्ष रखा। बात खत्म होने के बाद छात्र नेता रविन्द्र पासवान ने कहा, यह हमारी पहली मीटिंग थी जो बहुत सकारात्मक रही। भरोसा है सरकार, मुख्यमंत्री और सभी मंत्री हमारी मांगों पर विचार करेंगे।
1: ये आप लोगों की और क्या निर्णय लिया गया?
2: अभी बस धरना पर लिया गया है और आगे का वार्ता भी चलेगा, आंदोलन कंटिन्यू।
1: क्या कहा चलेगा? मंत्री ने क्या कहा आप लोगों की बात पर?
2: हम लोगों की बात को सकारात्मक लिया गया है और मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, उसमें समाधान किया जाएगा।
1: ठीक,
2: सकारात्मक बात हुई है, हम लोग का डिमांड लिया गया है, डिमांड पे चर्चा भी आगे और भी चलेगा, अभी आंदोलन कंटिन्यू है।
3: हाँ, जारी रहेगा। This is the first round.
0: झारखंड आंदोलन को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल उठा वो ये कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके या फिर इनका कोई बड़ा नेता अब तक इस आंदोलन में शामिल क्यों नहीं हुआ। हालांकि आंदोलन के 14वें दिन जंतर मंतर पर अनशन करने वाली आइसा की अध्यक्ष नेहा बोरा नजर आईं और समर्थन देने की बात करती हैं। उन पर स्याही फेंकने की घटना भी हुई, तो इस आंदोलन में आगे क्या होने वाला है ये भी हम आपको बताएं। लेकिन आज सरकार से इनकी बातचीत हो चुकी है और दोनों पक्षों ने सकारात्मक बताया है।
4: जब रांची में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हैं, सरकार से अपनी मांगे बनवाने के लिए अड़े हुए हैं, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब परीक्षाओं को लेकर आंदोलन चल रहा है तो उसमें अभिजीत दीपके या फिर कॉकरोच जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता अब तक इस आंदोलन में शामिल क्यों नहीं हुआ। इस बीच महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में कॉकरोच जनता पार्टी की 2 दिन बैठक भी होती है। सीजेपी अपनी आगे की पूरी रणनीति तय करती है, पूरी टीम के पद तय किए जाते हैं और सितंबर से क्या बोलती पब्लिक कैंपेन शुरू करने का ऐलान भी होता है। सवाल यही है कि सीजेपी के सारे बड़े चेहरे छत्रपति संभाजी नगर में दीपके के घर तो दिखते हैं, रांची के आंदोलन में क्यों नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी और उसके संस्थापक अभिजीत दीपके से लगातार सवाल हो रहे हैं कि सीजेपी के नेता रांची के छात्र आंदोलन में अब तक क्यों नहीं पहुंचे। हालांकि इस पर सीजेपी ने कहा कि उन्होंने बारिश में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के लिए रेनकोट भेजे हैं, छाते भेजे हैं, खाने का सामान भी भेजा है और पार्टी का नेतृत्व भी रांची जाएगा। सवाल यही है कब तक। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ भूख हड़ताल करने वाली आयसा अध्यक्ष नेहा बोरा रांची में छात्र आंदोलन के मंच पर जरूर पहुंची। नेहा बोरा ने मंच से इस आंदोलन के समर्थन का ऐलान भी किया। नेहा बोरा ने कहा कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराई जानी चाहिए और इसकी तारीख जल्द घोषित होनी चाहिए।
5: देश भर में जो छात्र आपको देख रहे हैं, आपसे बहुत बहुत प्रेरणा ले रहे हैं, जो तमाम तमाम साथी भूख हड़ताल पे बैठे हैं, साथियों को चौथा महीना पांचवा दिन है, मैं खुद भूख हड़ताल पे बैठी हूँ। मुझे समझ आ रहा है कि किस तरीके का कष्ट शरीर में महसूस होता है जब साथी भूख हड़ताल पे बैठते हैं। तो जो सब साथी भूख हड़ताल पे बैठे हैं स्टेडियम में, उनको बहुत बधाई। आपने ये जो संघर्ष किया हुआ है, उस संघर्ष को पूरा देश देख रहा है, और इस मन से वो मांगे जो यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे छात्रों की है, संघर्ष कर रहे छात्रों की है, उन मांगों को मैं अपनी सॉलिडारिटी और समर्थन कहाँ से देना चाहूंगी।
4: लेकिन रांची के छात्र आंदोलन के दौरान ऐसा अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंकने का मामला भी सामने आया और इसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ। एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई। नेहा बोरा की उम्र अभी 29 साल है और वो अपनी बेबाक आवाज के लिए जानी जाती हैं। मूल रूप से नेहा बोरा उत्तराखंड के खटीमा से आती है। आपको बता दें कि रांची आंदोलन को लेकर सवाल राहुल गांधी पर भी उठ रहे थे। बीजेपी कह रही थी कि जंतर मंतर पर सीजेपी के आंदोलन पर बोलने वाले राहुल गांधी रांची के छात्र आंदोलन पर क्यों चुप हैं? तो राहुल गांधी ने 6 अगस्त को प्रदर्शनकारी छात्रों से फोन पर बात की। एक छात्र नेता रविंद्र पासवान ने बताया कि उनकी राहुल गांधी से बात हुई है। साथ ही राहुल गांधी ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमे उन्होंने छात्रों के समर्थन की बात कही।
6: झारखण्ड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है, और अलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ओप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो।
4: लेकिन जैसे जैसे रांची आंदोलन के दिन बढ़ रहे हैं, छात्रों का सब्र टूट रहा है और अब अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत भी बिगड़ने लगी है। ये 40 साल के राहुल हैं, जो पिछले 4 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन उन्हें बहुत तेज बुखार हो गया। बाकायदा डॉक्टरों की टीम आई और इस अनशनकारी को यहां से ले जाकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
7: यहां पर हूं, 4 छात्र अनशन पर बैठे हुए थे बीते 4 दिनों से। इनमें 40 साल के राहुल, जिनको आप देख रहे हैं, इनकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई है और अब डॉक्टरों ने मेडिकल रिपोर्ट के बाद ये देख लिया है कि इनके वाइटल्स जो है काफी ज्यादा बिगड़ गए और इसलिए अब इनको जो है यहां से अस्पताल ले जा रहा है। डॉक्टर ने कहा इनको यहां बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। डॉक्टर क्या कह रहे हैं भैया, क्या कुछ बता रहे हैं?
8: क्या बोले
7: डॉक्टर, क्या कह रहे हैं?
8: डॉक्टर ये बताया कि उसका तबीयत खराब है, उसको अभी सदर अस्पताल ले जाया जाएगा।
9: अभी एक ही लोग का देखा गया है, अभी इनका ठीक लग रहा है, बाकी लोग का देख रहे हैं।
7: उनको आप ले जा रहे हैं, किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हुई है?
9: उनका पल्स रेट काफी ज्यादा हाई मिल रहा है, जिसके वजह से उनका बीपी भी थोड़ा शूट उठ कर
7: यहाँ रखा जा सकता है बिल्कुल भी
9: अब? नहीं नहीं, अब इनको एडमिट ही करना पड़ेगा, अब इनको सदर में ही रेफर करना पड़ेगा।
4: डॉक्टरों की सलाह के बाद अनशनकारी राहुल को अस्पताल ले जाया गया। वो बेहोश हो गए थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा से बात की।
7: चौथा दिन हो गया, स्वास्थ्य से बढ़कर तो आंदोलन नहीं है ना?
10: लेकिन झारखंड के नौजवानों का सौदा नहीं हो, ये मेरा संकल्प है, तो उसको तो हम अंतिम सांस तक।
7: मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि आपको बुखार काफी ज्यादा है, बहुत तेज हो चुका है, शरीर तप रहा है।
10: तप रहा है, लेकिन यहाँ डॉक्टर भी तो आते हैं, चेकअप करते हैं, दवा भी लिखते हैं, आप बोलते हैं कि 2 घंटा में दवा पहुंचा रहे हैं।
7: देखिए, जब एक अनशन खत्म हुआ तब आप लोगों ने समर्थन किया, आपको नहीं लगता 4 दिन हो चुका और हर युवा को अनशन की आदत नहीं होती, आपकी जगह कोई और जगह ले सकता है, आप लोग नहीं दबाव डालते, तबीयत इनकी बहुत ज्यादा खराब हो?
11: नहीं, हम लोग बिल्कुल आज सभी जो कमेटी मेंबर्स हैं वो सीरियसली इस विषय को देख रहे हैं कि हमारे जो दोस्त हैं उनकी हालत ज्यादा नाजुक ना हो। हम लोग चाहेंगे कि इसका विकल्प के तौर पे हम लोग कुछ आगे की कार्रवाई करें, क्योंकि ये
7: इनका नाम राहुल है
11: जी।
7: राहुल कितने साल के हैं ये?
12: 40 साल।
7: राहुल, आपने भी प्रतियोगी परीक्षाएं दी थी अपने समय में?
10: JPSC का लगातार परीक्षा लिखते हैं, पहले तो PT निकल जाता था, इस बार तो वो MRA लीक हो गया तो बिक गया, तो निकलना तो दूर की बात है। सहायक आचार्य का भी परीक्षा क्वालिफाई हूँ, सीट खाली है, फिर भी सरकार नियुक्ति नहीं दे रही है। टुकड़ों टुकड़ों में नियुक्ति देती है, जितना सीटों का सेटिंग होता है उतना ही को नियुक्ति देती है। जब विज्ञापन एक बार आया तो नियुक्ति उनको एक बार देना चाहिए था।
7: दरअसल झारखंड की पीड़ा ये है कि छात्र पेपर सेट करते हैं, लगाते हैं, तैयारियां करते हैं, लेकिन पीछे से सेटिंग हो जाती है, नौकरियां कोई और ले जाता है और उसी के साथ साथ उम्र सीमा भी खत्म हो जाती है। और जब सब्र का बांध टूटा है तो उन छात्रों को यहां आंदोलन पर ले आया। तबीयत बिगड़ रही है, नासाज हो रही है, डॉक्टर भी कह रहे हैं शरीर तप रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक हिम्मत एक हौसला है, क्योंकि उन्हें लगता है ये लड़ाई सिर्फ अब उनके भविष्य की नहीं है, उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है।
4: इसी अनशन के मंच पर दो छात्राएं भी हैं जो भूख हड़ताल पर हैं। 27 साल की हबीबा और 28 साल की सरिता। इन छात्रों की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनकी उम्र लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 8-10 सालों से ये परीक्षाएं देती हैं, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिलती, क्योंकि पता चलता है कि नौकरी बिक गई।
7: कितनी परीक्षाएं इस 27 साल की उम्र में हबीबा ने दे दी, प्रतियोगी परीक्षाएं?
12: जी 2017 से लगातार मैं देती आई हूं, तो जेएसएससी की भी जेपीएससी के भी तो हो गए होंगे 15-20 इतने प्लस तो हो ही गए होंगे।
7: कितनी परीक्षाओं में आप पास हुई, क्वालिफाई कर गई?
12: जी मैंने पंचायत सचिव का एग्जाम दिया था, 2017 की वैकेंसी थी तो उसमें मैं पास हो गई थी। फिर उसमें सेकेंड एग्जाम था हिंदी टाइपिंग का, तो उसमें भी क्वालिफाई हुई। फिर डीवी भी हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, वह ऐसे भी तो डिले कर ही रही थी, तुरंत नहीं कर रही थी एग्जाम वगैरह। फिर 1 साल लगे, फिर 2 साल लगे उस एग्जाम को। उसके बाद जब उसका रिजल्ट देना था तो 5 साल तक प्रोटेस्ट करना पड़ा।
4: 28 साल की सरिता की कहानी तो बिल्कुल झकझोर कर रख देने वाली है। गरीब परिवार की सरिता ने अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर पढ़ाई की, होमगार्ड से लेकर जेपीएससी तक की परीक्षा दे चुकी है, 2019 से परीक्षाएं दे रही हैं, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिल पाई। घर के हालात भी ठीक नहीं हैं।
13: तो मेरा उम्र भी निकलते जा रहा है, 28 साल होने जा रहा है, 28 में पार होने जा रहा है, अब 29 में पहुंच जाएंगे, 1-2 साल में मेरा एज भी खत्म होने को रहेगा। फिर हम तो कोई फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं, अभी पढ़ाई के चक्कर में हम आगे कुछ और पढ़ाई नहीं किया। मेरा घर की स्थिति बहुत खराब था सर, इसीलिए हमको यही लगता था कि एक जॉब ले ले, उसके बाद जो आगे के भविष्य होगा आगे देखा जाएगा।
7: आपने कितनी परीक्षाएं दी
13: अभी तक? सर हम 2019 से परीक्षा दे रहे हैं, 2019 हम तैयारी कर रहे हैं।
7: 7 साल हो गए,
13: 7 साल होने जा रहा है, आज तक एक रिजल्ट नहीं हो पाया।
4: पिछले 14 दिनों से रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि उनका ये प्रदर्शन कहीं व्यर्थ तो नहीं चला जाएगा, क्या सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बात बन पाएगी। आज तक ब्यूरो।
0: खबर यूपी की पॉलिटिक्स की, जहां जेनजी को लेकर पार्टियां अपनी रणनीति बदल रही हैं। धर्म और जाति की राजनीति के बीच अब हर पार्टी की नजर युवा वोट बैंक पर है, जो 2027 के चुनाव में एक महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है।
14: दिल्ली के जंतर मंतर से निकली जेनजी आंदोलन की इस चिंगारी ने सत्ता की रणनीति को नए सिरे से गढ़ने पर मजबूर कर दिया है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नई युवा नीति को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें 2027 से पहले जेनजी पर सरकार का फोकस है।
15: युवाओं को लेकर एक आयोग गठित होने वाला है, जिसमें 18 से 35 वर्ष के युवा, यानी कि आसान भाषा में कहें तो कुछ हद तक जेनजी से सलाह मशवरा लिया जाएगा युवाओं को लेकर बनाई जाने वाली नीतियों को लेकर। यानी कि योगी सरकार को ये मालूम पड़ गया है कि जेनजी एक बहुत बड़ा वोटर है और ऐसे में उन्हें साथ लेकर ही चलना होगा।
14: जेनजी वोट बैंक पर योगी सरकार के मिशन पर सियासत तेज हो गई है।
16: और अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार एक युवा नीति लेकर के आ रही है, यह युवा नीति युवाओं के सपनों को साकार करने वाली होगी।
17: तो उत्तर प्रदेश का जो जेनजी है, जो जेन अल्फा है, जो मिलेनियम है, वो समझ रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ भी किसी चीज के अगर शिकार है योगी आदित्यनाथ जी, तो आत्ममुग्धता के शिकार है। अगर आत्ममुग्धता के शिकार न होते तो अपने चेहरे चमकाने पर 3 करोड़ रुपए न खर्च करते, बल्कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को आप पेपर लीक की जगह अच्छी व्यवस्था, पारदर्शी और निष्पक्ष आपने कोई व्यवस्था दी होती।
14: उधर राहुल गांधी भी कल पेपर लीक के मुद्दे पर गूंज कार्यक्रम के तहत प्रयागराज में जेनजी छात्रों के साथ संवाद करने जा रहे हैं। प्रयागराज आ रहा हूँ, देश के उस शहर में जहाँ सबसे ज्यादा नौजवान तैयारी करते हैं। एक बात साफ है, यहाँ का हर छात्र जानता है कि सिस्टम बेईमान हो चुका है। आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं, कमी उस सिस्टम की नीयत में है जो आपकी मेहनत का दाम नहीं देती। ये सरकार झुकती है, बस आवाज एक साथ उठनी चाहिए। अखिलेश यादव की नजर भी जेनजी से लेकर जेन अल्फा तक है, जिनके मुद्दों पर वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया, 7,000 करोड़ का कॉस्मेटिक फेशियल करवाया। हम इतनी ही राशि में केजी से पीजी और रिसर्च तक की वर्ल्ड क्लास 2-3 यूनिवर्सिटी बनाकर बच्चों युवाओं का भविष्य सुधार कर दिखाएंगे, उत्तर प्रदेश को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर ले जाएंगे। वही योगी आदित्यनाथ लगातार रैलियों में समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की याद दिला रहे हैं।
18: कुछ लोग जीवन भर बच्चे ही बने रहते हैं और बबुआ भी यही करते थे, 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और 7 बजे के बाद तो महफिल जम जाती थी, तब तो फिर देश और दुनिया से उनका संबंध ही समाप्त हो जाता था। तो प्रदेश के बारे में कहां से सोच उनके पास थे। इसी कारण दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था।
14: बहरहाल यूपी में भी सियासी रणनीति बदलती जा रही है, जहां सबकी नजरें जेंजी वोट बैंक पर है। आज तक ब्यूरो
0: खबर संसद की, जहां सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। क्या कुछ शुक्रवार को संसद में हुआ, आइए हम आपको दिखाते हैं।
4: मॉनसून सत्र में संसद में जुबानी बिजलियां कड़क रही हैं, कार्यवाही ठप है और विपक्ष अमित शाह के पैलेट गन पर जवाब को लेकर अड़ा हुआ है।
19: लीडर ऑफ द अपोजिशन हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, सदन में जिसका बिजनेस होता है वही मंत्री जवाब देता है। अपोजिशन तय नहीं करेगा कौन सा मंत्री को कब आना है, ये अपोजिशन पार्टी तय नहीं करते हैं। आप लोग नाराबाजी करके तुरंत चले जाते हैं पार्लियामेंट छोड़ के, लेकिन होम मिनिस्टर सुबह से लेकर देर रात तक पार्लियामेंट नहीं रहता है, देश का संचालन करता है, और जब होम मिनिस्टर जवाब देगा आप लोग सुन नहीं पाएगा।
20: पार्लियामेंट द अपोजिशन विल नॉट एबल टू लिसन हिम
21: बिगेस्ट जोक विच आई हर्ड टुडे इज दैट Biggest joke in this parliament was Kiran Rijiju's statement.
4: इस बीच एनडीए में नई एंट्री लेने वाले सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। पीएम के साथ नाश्ते पर ये चर्चा खास है क्योंकि एनडीए परिवार के विस्तार के बाद इस मुलाकात के राजनीतिक मायने हैं। सांसदों से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने संसद न चलने पर चिंता जाहिर की और सांसदों को भरोसा दिया कि अगर विकास योजनाओं में कोई अड़चन आए तो सीधे पीएमओ से संपर्क करें।
22: It was a very, very big honor that he has invited us. And उन्होंने ये भी कहा कि actually सदन नहीं चल रहे तो उनको भी बहुत खराब लग रहा है, तो बट वो चाहते हैं कि जल्दी से सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। ऐसे ही कहा कि देखिए हम तो देश के लिए काम करते हैं और हमारे साथ जो जो है हमारे ग्रुप के जो है हम आपके साथ है, यही सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ये कहा है कि जैसे हम सोचते हैं आप उसी सोच पे विश्वास रखिए और उस हिसाब से आगे बढ़ते चलिए।
23: बहुत अच्छा चर्चा हुआ है
24: जी,
23: वेरी गुड।
24: किन मुद्दों पे चर्चा हुई सर?
23: हर ये डेवलपमेंट के बारे में।
24: कई सारे आपके साथी हैं जो मुस्लिम समुदाय से हैं, वो भी मौजूद थे मीटिंग में?
23: सर मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया।
24: क्या स्पीकर का इशू भी चला इस पे मस्जिदों को लेके जो इशू?
23: नो।
24: ओके सर, आखिरी सवाल सर, FCRA पे क्या रुख रहेगा आप लोगों का? सर
23: हम लोग मदद करेंगे।
4: पीएम मोदी ने उद्धव गुट से शिंदे गुट में शामिल हुए शिवसेना के सांसदों के साथ अलग से बातचीत की। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग से मुलाकात करने पहुंचे। विदेशी फंडिंग पर रेगुलेशन का नया FCRA बिल सरकार की बड़ी चुनौतियों में से एक है। वहीं हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित है। आज तक ब्यूरो।
0: पंजाब चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरण तैयार किए जा रहे हैं। कांग्रेस के सामने चुनौती अंदरूनी कलह की है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुखबीर सिंह बादल की मुलाकात ने पंजाब में पुराने गठबंधन को फिर से साथ आने की हटकलों को हवा दी है।
14: पंजाब कांग्रेस में चरणजीत सिंह चन्नी और राजा वेडिंग के घमासान के बीच राहुल गांधी ने कैप्टन अमरिंदर को अपना पसंदीदा नेता बताया है।
25: कैप्टन अमरिंदर सिंह डेफिनेटली आई गेट अलोंग विद हिम, ही इज कूल एंड ही इज एन एक्सपर्ट ऑन मिलिट्री हिस्ट्री, सो आई लाइक हिम क्वाइट अ लॉट। हेलो अंकल अमरिंदर।
14: राहुल के बयान के बाद पंजाब कांग्रेस के नेताओं के सुर बदले हुए हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी अमरिंदर के कांग्रेस में वापस जाने की आशंका जताई जा रही है।
26: अगर वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपना फेवरेट लीडर मानते हैं, जो सबसे लेजी ऑफिसर्स लेजी जो पॉलिटिशियन है उनमें से जाना जाता है और उन पॉलिटिशियंस में जाना जाता है जो कि किसी भी समय किसी भी जगह पे पलटी मार सकता है। अगर राहुल जी का वो आइडियल है तो फिर राहुल जी की सियासत क्या होगी?
1: अच्छे इंसान है, अच्छी चीजें भी है यार किसको। मेरा ख्याल है हर, देखो जो आदमी दो बार चीफ मिनिस्टर रह गया उसमें कोई चीजें तो ऐसी है जो सीखने लायक है।
2: तो अच्छी बात है, हर लीडर की अपनी चॉइसेस होती हैं और मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी की फ्राक दिली है। उन्होंने ये बोला है कि किसी ने पूछा कि बीजेपी में आपका फेवरेट लीडर कौन है, तो बोला कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, ही इज माई अंकल एंड दैट ही इज द मिलिट्री हिस्टोरियन। उनके साथ उन्होंने काफी साल काम किया, वो अलग बात है अलग पार्टी, लेकिन इसमें आप देखेंगे राहुल गांधी की फराख दिली है जो ऑपोजिशन के लीडर्स को भी अप्रिशिएट करते हैं।
14: उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल से मुलाकात हुई। हालांकि अकाली दल की ओर से साफ किया गया कि ये मुलाकात पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है। वहीं बीजेपी भी कह रही है कि वो पंजाब में किसी से गठबंधन करने नहीं जा रही।
3: तो प्रधानमंत्री साहब नु कोई भी मिल सकता, तो मैंने उम्मीद है कि सुखबीर सिंह बादल पंजाब दे भले लई कोई चंगी गल करके क्लियर करना चाहना कि साडे वल्लों भारतीय जनता पार्टी पंजाब वल्लों 117 सीटा की तैयारी है। 117 सीटा तो असीं कल्ले लड़ांगे।
14: इस बीच मान सरकार के खिलाफ सरकारी नौकरी को लेकर आज जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस के साथ कई संगठनों ने मोर्चा संभाला और मान सरकार को घेरने की कोशिश की।
5: ये देखिए ये वाटर कैनन चला, आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब दोबारा वाटर कैनन चला है। और आपको बता दें यहाँ पे तिथर बितर करने की पूरी कोशिश, ये आप देखिएगा लगातार हम आपको अपने कैमरे में दिखा रहे हैं कि किस तरह से सड़कों पे उतरे हुए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, लेकिन इनका हौसला कम नहीं हो रहा है, अपने मांगों को लेके अड़ंग है, अड़े हुए हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से चंडीगढ़ पुलिस ने इनको बैरिकेड लगा के यहीं पे रोकने की कोशिश, और उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल। लेकिन क्या ये खामियाजा भुगतना पड़ सकता है सरकार को इलेक्शन में, ये बड़ी बात है। और इसी वजह से जो अपोजिशन पार्टीज है वो भी पंजाब गवर्नमेंट का पूरा साथ दे रही है।
14: बहरहाल पंजाब में चुनाव से पहले के समीकरण का खेल जारी है, जहां हर पार्टी ने पूरा जोर लगा रखा है। कमलजीत संधू के साथ असीम बस्सी, चंडीगढ़ आज तक।
0: दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश ने मुश्किलें लोगों की बढ़ा दी। सड़कों पर पानी भर गया, ट्रैफिक जाम हो गया। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया, 10 अगस्त तक बारिश का अनुमान है। दिल्ली के साथ नोएडा, गुरुग्राम में भी तेज बारिश के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली एनसीआर में बारिश आफत लेकर आई, सलाह दी गई है बहुत जरूरी न हो तो घर से बाहर न निकलें।

0: सुबह से दिल्ली एनसीआर में सावन ऐसे झूम कर आया कि दिन ढल गया, रात हो गई, लेकिन मूसलाधार बारिश मुसलसल होती रही। लोग सड़कों पर परेशान दिखे, ट्रैफिक से जूझते दिखे, गाड़ियां खराब होती दिखी, सड़कों पर जल भराव दिखा। बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है और 10 अगस्त तक ऐसे ही कभी हल्की तो कभी तेज बारिश होते रहने की संभावना है। पहले बारिश में हिचकोले खाती दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें एमबी रोड की हैं।
1: राजधानी दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बीच काफी जलभराव हो रहा है। अभी हम दिल्ली के एमबी रोड पर हैं, जहां पर आप देखेंगे जलभराव किस तरीके से हुआ है और किस तरीके से बस को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। कितना फीट तक पानी भर गया है यहाँ पर?
2: ये मैं ईमानदारी से बताऊँ, मेरी आप देख सकते हैं घुटने से ऊपर और कमर से हल्का सा नीचे पानी है।
3: सर ये 4 फीट लमसम होगा पानी, ठीक है? और जिस तरीके से आप आगे की तरफ जाएंगे ना, आगे की तरफ और देखेंगे तो और भी पानी जिस तरीके से लबालब भरा हुआ है, ठीक है? ये बहुत संकेत है।
1: महिला आ रही है, स्कूल के टीचर हैं आप?
2: हाँ जी।
1: कहाँ से आ रही है?
2: बाल निकेतन संगम विहार।
1: तो अब कितना पानी बस उस नहीं मिला?
2: बस नहीं, वो तो हमारी स्कूल की कार थी तो उससे हम आए
1: तो फिर
2: भी कार के अंदर इतना पानी।
1: आप देख सकते हैं ये आर्मी मैन है और इनकी भी गाड़ी बुलेट से जा रहे हैं, इनकी फंस गई है। आपकी भी बंद हो गई?
4: हाँ कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट कर लेंगे।
1: यही स्थिति हो रही है और दरिया जैसा स्थिति यहाँ पर एमबी रोड पर बनता हुआ नजर आ रहा है।
0: आपको बता दें कि एमबी रोड पर ओखला मोड़, संगम विहार, खानपुर और देवली में जल भराव हुआ है, जिसके कारण एमबी रोड का यातायात खानपुर से ओखला मोड़ के बीच प्रभावित हुआ और लोग परेशान होते रहे। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में 7 अगस्त को 59.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो इस साल अगस्त महीने का अब तक का सबसे बरसाती दिन रहा है। जबकि दिल्ली के छतरपुर में 104.5 मिलीमीटर बारिश, पुष्प विहार में 111.5 मिलीमीटर बारिश, पालम में 73.5 मिलीमीटर बारिश और आया नगर में 87.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और बारिश में दरिया बनती दिल्ली की तस्वीरें वसंत कुंज से भी आई हैं। देखिए वसंत कुंज का हाल।
5: दूर देखिए बच्चे, वहाँ जो स्कूली बच्चे हैं वो आ रहे हैं और देखिए उन वो पानी में कैसे खेलते हुए आ रहे हैं। लेकिन ये स्कूल का टाइम है, स्कूल से छुट्टी हुई है और बच्चे देखिए यहाँ पर सड़क पे या फुटपाथ हो हर तरफ पानी ही पानी है। बेहद अहम मार्ग है, मैं फिर से बता दूं, वसंत कुंज का ये रोड है जो एयरपोर्ट को जोड़ता है। इसके आसपास कई सारे स्कूल हैं और यहाँ पर जलजमाव की स्थिति बनी है। दिल्ली वालों की ये आफत बन के निकला है ये मानसून की ये बरसात।
0: बारिश की वजह से मेहरोली बदरपुर रोड, ITO वजीराबाद रोड, पटेल रोड, रोहतक रोड, शंकर रोड, कीर्ति नगर, दिल्ली जयपुर हाईवे, पीरागढ़ी और शाहीन बाग जैसे इलाकों में भारी ट्रैफिक देखा गया। हालांकि इस बारिश से दिल्ली के तापमान में भी गिरावट आई है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी सुबह से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ दिन भर चलता रहा। बारिश होने से कई जगहों पर भारी जल भराव हो गया है, जिस वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं झमाझम बारिश के बीच नोएडा सेक्टर 95 स्थित अंडरपास में जल भराव हो गया, जिसमें एक एम्बुलेंस फंस गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे बंद पड़ी एम्बुलेंस को ड्राइवर ने धक्का मारकर निकालने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। गनीमत ये रही कि एम्बुलेंस में कोई मरीज नहीं था। और बारिश से गुरुग्राम की दुर्गति भी देख लीजिए। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर पानी भरा है और पानी में गड्ढे हैं। ये देखिए कैसे एक ऑटो पानी में हिचकोले खाते हुए चल रहा है। बारिश इतनी तेज हुई कि पहले सड़कें लबालब हुई और फिर पानी गुरुग्राम के सिविल अस्पताल के अंदर भी घुसपैठ कर गया। और गुरुग्राम की पुलिस लाइन की ये तस्वीरें भी देखिए, कैसे बारिश के पानी में बच्चे तैराकी कर रहे हैं। और जैसा कि हर बारिश में गुरुग्राम में ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है, ठीक वैसा ही नजारा आज भी दिखा। गुरुग्राम में पिछले कुछ घंटों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। भारी जलभराव और यातायात जाम को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने कंपनियों को कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की सलाह भी दी है। दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
6: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: रांची में चार मंत्रियों और छात्र प्रतिनिधि मंडल में पहले दौर की वार्ता खत्म। मुलाकात के बाद दोनों पक्षों ने कहा बातचीत सकारात्मक, लेकिन प्रदर्शन जारी। संसद में गतिरोध के बीच सोमवार तक स्थगित दोनों सदन। रिजिजू ने विपक्ष पर जड़ा आरोप, कांग्रेस ने 10, 11, 12 के लिए सांसदों को व्हिप जारी किया। एथेनॉल पर राहुल ने सरकार को घेरा, कहा दाल में काला नहीं पूरी दाल ही काली। हरदीप सिंह पुरी बोले कुछ लोग खड़ा कर रहे हैं विवाद। सीएम योगी ने अखिलेश को घेरा, कहा एसपी सरकार में लूटने निकल जाती थी चाचा भतीजे की जोड़ी, विधानसभा नहीं चलने दी इन्होंने। लगातार बारिश से दिल्ली एनसीआर में जगह जगह पानी भरा, लंबा लंबा जाम, लोगों को घर से निकलना मुश्किल हुआ, 9 घर गिरे। आज फिर मौसम विभाग का भारी बारिश का अलर्ट। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों की राज्य सरकार के साथ पहले दौर की मीटिंग खत्म हो गई। हेमंत सोरेन सरकार ने चार मंत्रियों का एक पैनल बनाया था जिसने 10 छात्रों के डेलीगेशन से बात की। स्टेट गेस्ट हाउस में बातचीत के लिए पहुंचा प्रतिनिधिमंडल आंदोलन कर रहे मुख्य छात्र समूह का है जो देवेंद्र महतो के गुट से अलग है। प्रतिनिधिमंडल ने बैठक में शामिल होकर छात्रों का पक्ष रखा। बात खत्म होने के बाद छात्र नेता रविन्द्र पासवान ने कहा यह हमारी पहली मीटिंग थी जो बहुत सकारात्मक रही, भरोसा है सरकार मुख्यमंत्री और सभी मंत्री हमारी मांगों पर विचार करेंगे।
1: ये आप लोगों की और क्या निर्णय लिया गया?
2: अभी बस डिमांड लिया गया है और आगे का वार्ता भी चलेगा, आंदोलन कंटिन्यू।
1: आप लोगों की
2: बात को सकारात्मक लिया गया है और मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और उसका समाधान किया जाएगा।
3: सकारात्मक बात हुई है, हम लोग का डिमांड लिया गया है, डिमांड पे चर्चा भी आगे और भी चलेगा, अभी आंदोलन कंटिन्यू है।
4: हाँ, जारी रहेगा। दिस इज द फर्स्ट राउंड।
0: झारखंड आंदोलन को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल उठा वो ये कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके या फिर इनका कोई बड़ा नेता अब तक इस आंदोलन में शामिल क्यों नहीं हुआ। हालांकि आंदोलन के 14वें दिन जंतर मंतर पर अनशन करने वाली आईसा की अध्यक्ष नेहा बोरा नजर आई और समर्थन देने की बात करती हैं। उन पर स्याही फेंकने की घटना भी हुई, तो इस आंदोलन में आगे क्या होने वाला है ये भी हम आपको बताएं। लेकिन आज सरकार से इनकी बातचीत हो चुकी है और दोनों पक्षों ने सकारात्मक बताया है।
5: जब रांची में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हैं, सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए अड़े हुए हैं, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब परीक्षाओं को लेकर आंदोलन चल रहा है तो उसमें अभिजीत दीपके या फिर कॉकरोच जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता अब तक इस आंदोलन में शामिल क्यों नहीं हुआ। इस बीच महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में कॉकरोच जनता पार्टी की 2 दिन बैठक भी होती है। सीजेपी अपनी आगे की पूरी रणनीति तय करती है, पूरी टीम के पद तय किए जाते हैं और सितंबर से क्या बोलती पब्लिक कैंपेन शुरू करने का ऐलान भी होता है। सवाल यही है कि सीजेपी के सारे बड़े चेहरे छत्रपति संभाजी नगर में दीपके के घर तो दिखते हैं, रांची के आंदोलन में क्यों नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी और उसके संस्थापक अभिजीत दीपके से लगातार सवाल हो रहे हैं कि सीजेपी के नेता रांची के छात्र आंदोलन में अब तक क्यों नहीं पहुंचे। हालांकि इस पर सीजेपी ने कहा कि उन्होंने बारिश में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के लिए रेनकोट भेजे हैं, छाते भेजे हैं, खाने का सामान भी भेजा है और पार्टी का नेतृत्व भी रांची जाएगा। सवाल यही है कब तक। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ भूख हड़ताल करने वाली आयसा अध्यक्ष नेहा बोरा रांची में छात्र आंदोलन के मंच पर जरूर पहुंची। नेहा बोरा ने मंच से इस आंदोलन के समर्थन का ऐलान भी किया। नेहा बोरा ने कहा कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराई जानी चाहिए और इसकी तारीख जल्द घोषित होनी चाहिए।
6: जो छात्र आपको देख रहे हैं आपसे बहुत बहुत प्रेरणा ले रहे हैं, जो तमाम साथी साथी भूख हड़ताल पे बैठे हैं, साथियों को चौथा देना पांचवा दिन है। मैं खुद भूख हड़ताल पे बैठी हूँ, मुझे समझ आ रहा है कि किस तरीके का कष्ट शरीर में महसूस होता है जब साथी भूख हड़ताल पे बैठते हैं। तो जो सब साथी भूख हड़ताल पे बैठे हैं स्टेडियम में, उनको बहुत बधाई। आपने ये जो संघर्ष किया हुआ है उस संघर्ष को पूरा देश देख रहा है, और इस मन से वो मांगे जो यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे छात्रों की है, संघर्ष कर रहे छात्रों की है, उन मांगों को मैं अपनी सॉलिडारिटी और समर्थन यहाँ से देना चाहूंगी।
5: लेकिन रांची के छात्र आंदोलन के दौरान ऐसा अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंकने का मामला भी सामने आया और इसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ। एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई। नेहा बोरा की उम्र अभी 29 साल है और वो अपनी बेबाक आवाज के लिए जानी जाती हैं। मूल रूप से नेहा बोरा उत्तराखंड के खटीमा से आती है। आपको बता दें कि रांची आंदोलन को लेकर सवाल राहुल गांधी पर भी उठ रहे थे। बीजेपी कह रही थी कि जंतर मंतर पर सीजेपी के आंदोलन पर बोलने वाले राहुल गांधी रांची के छात्र आंदोलन पर क्यों चुप हैं? तो राहुल गांधी ने 6 अगस्त को प्रदर्शनकारी छात्रों से फोन पर बात की। एक छात्र नेता रविंद्र पासवान ने बताया कि उनकी राहुल गांधी से बात हुई है। साथ ही राहुल गांधी ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने छात्रों के समर्थन की बात कही।
7: झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है और अलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ओप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो।
5: लेकिन जैसे जैसे रांची आंदोलन के दिन बढ़ रहे हैं छात्रों का सब्र टूट रहा है और अब अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत भी बिगड़ने लगी है। ये 40 साल के राहुल हैं जो पिछले 4 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन उन्हें बहुत तेज बुखार हो गया। बाकायदा डॉक्टरों की टीम आई और इस अनशनकारी को यहां से ले जाकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
8: यहां पर हूं, 4 छात्र अनशन पर बैठे हुए थे बीते 4 दिनों से। इनमें 40 साल के राहुल जिनको आप देख रहे हैं, इनकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई है और अब डॉक्टरों ने मेडिकल रिपोर्ट के बाद ये देख लिया है कि इनके वाइटल्स जो है काफी ज्यादा बिगड़ गए और इसलिए अब इनको जो है यहां से अस्पताल ले जा रहा है। डॉक्टर ने कहा इनको यहां बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। डॉक्टर क्या कह रहे हैं भैया, क्या कुछ बताया उन्होंने,
9: क्या बोले
8: डॉक्टर, क्या कह रहे हैं?
9: डॉक्टर ये बताया कि उसका तबीयत खराब है, उसको अभी सदर अस्पताल ले जाया जाएगा।
10: अभी एक ही लोग का देखा गया है, अभी इनका ठीक लग रहा है, बाकी लोग का देख रहे हैं।
8: उनको आप ले जा रहे हैं, किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हुई है?
10: उनका पल्स रेट काफी ज्यादा हाई मिल रहा है जिसके वजह से उनका बीपी भी थोड़ा शूट टूट कर
8: यहाँ रखा जा सकता है बिल्कुल भी
10: अब? नहीं नहीं, अब इनको एडमिट ही करना पड़ेगा, अब इनको सदर में ही रेफर करना पड़ेगा।
5: डॉक्टरों की सलाह के बाद अनशनकारी राहुल को अस्पताल ले जाया गया। वो बेहोश हो गए थे लेकिन उससे पहले उन्होंने आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा से बात की।
8: चौथा दिन हो गया, स्वास्थ्य से बढ़कर तो आंदोलन नहीं है ना?
11: लेकिन झारखंड के नौजवानों का सौदा

0: तप रहा है, लेकिन यहाँ डॉक्टर भी तो आते हैं, चेकअप करते हैं, दवा भी लिखते हैं, अब बोलते हैं कि 2 घंटा में दवा पहुंचा रहे हैं।
1: देखिए, जब एक अनशन खत्म हुआ तब आप लोगों ने समर्थन किया, आपको नहीं लगता 4 दिन हो चुका और हर युवा को अनशन की आदत नहीं होती, आपकी जगह कोई और जगह ले सकता है, आप लोग नहीं दबाव डालते, तबीयत इनकी बहुत ज्यादा खराब हो?
2: नहीं, हम लोग बिल्कुल आज सभी जो कमेटी मेंबर्स हैं वो सीरियसली इस विषय को देख रहे हैं कि हमारे जो दोस्त हैं उनकी हालत ज्यादा नाजुक ना हो। हम लोग चाहेंगे कि इसका विकल्प के तौर पे हम लोग कुछ आगे की कार्रवाई करें, क्योंकि ये
1: इनका नाम राहुल है
2: जी।
1: कितने साल के हैं ये?
3: 40 साल।
1: राहुल, आपने भी प्रतियोगी परीक्षाएं दी थी अपने समय में?
0: JPSC का लगातार परीक्षा लिखते हैं, पहले तो PT निकल जाता था, इस बार तो MRA लीक हो गया तो बिक गया, तो निकलना तो दूर की बात है। सहायक HR का भी परीक्षा क्वालिफाई हूँ, सीट खाली है फिर भी सरकार नियुक्ति नहीं दे रही है, टुकड़ों टुकड़ों में नियुक्ति देती है, जितना सीटों का सेटिंग होता है उतना ही को नियुक्ति देती है। जब विज्ञापन एक बार आया तो नियुक्ति उनको एक बार देना चाहिए था।
1: दरअसल झारखंड की पीड़ा ये है कि छात्र पेपर सेट करते हैं, लगाते हैं, तैयारियां करते हैं, लेकिन पीछे से सेटिंग हो जाती है, नौकरियां कोई और ले जाता है और उसी के साथ साथ उम्र सीमा भी खत्म हो जाती है। और जब सब्र का बांध टूटा है तो उन छात्रों को यहां आंदोलन पर ले आया, तबीयत बिगड़ रही है, नासाज हो रही है, डॉक्टर भी कह रहे हैं शरीर तप रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक हिम्मत एक हौसला है, क्योंकि उन्हें लगता है ये लड़ाई सिर्फ अब उनके भविष्य की नहीं है, उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है।
4: इसी अनशन के मंच पर 2 छात्राएं भी हैं जो भूख हड़ताल पर हैं। 27 साल की हबीबा और 28 साल की सरिता। इन छात्रों की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनकी उम्र लगातार बढ़ती जा रही है, पिछले 8-10 सालों से ये परीक्षाएं देती हैं, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिलती, क्योंकि पता चलता है कि नौकरी बिक गई।
1: कितनी परीक्षाएं इस 27 साल की उम्र में हबीबा ने दे दी, प्रतियोगी परीक्षाएं?
5: जी, 2017 से लगातार मैं देती आई हूं, तो JSC की भी, JPSC के भी तो हो गए होंगे, 15-20 प्लस तो हो ही गए होंगे सर।
1: कितनी परीक्षाओं में आप पास हुई, क्वालिफाई कर गए?
5: जी, मैंने पंचायत सचिव का एग्जाम दिया था, 2017 की वैकेंसी थी तो उसमें मैं पास हो गई थी। फिर उसमें सेकेंड एग्जाम था हिंदी टाइपिंग का, तो उसमें भी क्वालिफाई हुई। फिर DV भी हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हुआ। ऐसे भी तो डिले कर ही रही थी, तुरंत नहीं कर रही थी एग्जाम वगैरह, फिर 1 साल लगे, फिर 2 साल लगे उस एग्जाम को। उसके बाद जब उसका रिजल्ट देना था तो 5 साल तक प्रोटेस्ट करना पड़ा।
4: 28 साल की सरिता की कहानी तो बिल्कुल झकझोर कर रख देने वाली है। गरीब परिवार की सरिता ने अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर पढ़ाई की, होमगार्ड से लेकर JPSC तक की परीक्षा दे चुकी है, 2019 से परीक्षाएं दे रही हैं, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिल पाई, घर के हालात भी ठीक नहीं हैं।
6: तो मेरा उम्र भी निकलते जा रहा है, 28 साल होने जा रहा है, 28 में पार होने जा रहा है, 29 में पहुंच जाएंगे, 1 से 2 साल में मेरा एज भी खत्म होने को रहेगा, फिर हम तो कोई फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं यार। ये पढ़ाई के चक्कर में हम आगे कुछ और पढ़ाई नहीं किया, मेरा घर की स्थिति बहुत खराब था सर, इसीलिए हमको यही लगता था कि एक जॉब ले ले, उसके बाद जो आगे के भविष्य होगा आगे देखा जाएगा।
1: आपने कितनी परीक्षाएं दी
6: अभी तक सर? हम 2019 से परीक्षा दे रहे हैं, 2019 हम तैयारी कर रहे हैं।
1: 7 साल हो गए,
6: 7 साल होने जा रहा है, आज तक एक रिजल्ट नहीं हो पाया।
4: पिछले 14 दिनों से रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि उनका ये प्रदर्शन कहीं व्यर्थ तो नहीं चला जाएगा, क्या सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बात बन पाएगी? आज तक ब्यूरो।
7: खबर यूपी की पॉलिटिक्स की, जहां जेनजी को लेकर पार्टियां अपनी रणनीति बदल रही हैं। धर्म और जाति की राजनीति के बीच अब हर पार्टी की नजर युवा वोट बैंक पर है, जो 2027 के चुनाव में एक महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है।
8: दिल्ली के जंतर मंतर से निकली जेनजी आंदोलन की इस चिंगारी ने सत्ता की रणनीति को नए सिरे से गढ़ने पर मजबूर कर दिया है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नई युवा नीति को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें 2027 से पहले जेनजी पर सरकार का फोकस है।
9: युवाओं को लेकर एक आयोग गठित होने वाला है, जिसमें 18 से 35 वर्ष के युवा, यानी कि आसान भाषा में कहें तो कुछ हद तक जेनजी से सलाह मशवरा लिया जाएगा युवाओं को लेकर बनाई जाने वाली नीतियों को लेकर। यानी कि योगी सरकार को ये मालूम पड़ गया है कि जेनजी एक बहुत बड़ा वोटर है और ऐसे में उन्हें साथ लेकर ही चलना होगा।
8: जेनजी वोट बैंक पर योगी सरकार के मिशन पर सियासत तेज हो गई है।
10: पर अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार एक युवा नीति लेकर के आ रही है, यह युवा नीति युवाओं के सपनों को साकार करने वाली होगी।
11: तो उत्तर प्रदेश का जो जेनजी है, जो जेन अल्फा है, जो मिलेनियम है, वो समझ रहा है कि उत्तर प्रदेश

0: मुख्यमंत्री कुछ भी किसी चीज के अगर शिकार हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो आत्ममुग्धता के शिकार हैं। अगर आत्ममुग्धता के शिकार न होते तो अपने चेहरे चमकाने पर 3 करोड़ रुपए न खर्च करते, बल्कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को आप पेपर लीक की जगह अच्छी व्यवस्था, पारदर्शी और निष्पक्ष आपने कोई व्यवस्था दी होती।
1: उधर राहुल गांधी भी कल पेपर लीक के मुद्दे पर गूंज कार्यक्रम के तहत प्रयागराज में जेंजी छात्रों के साथ संवाद करने जा रहे हैं। प्रयागराज आ रहा हूँ, देश के उस शहर में जहाँ सबसे ज्यादा नौजवान तैयारी करते हैं। एक बात साफ है, यहाँ का हर छात्र जानता है कि सिस्टम बेईमान हो चुका है। आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं, कमी उस सिस्टम की नीयत में है जो आपकी मेहनत का दाम नहीं देती। ये सरकार झुकती है, बस आवाज एक साथ उठनी चाहिए। अखिलेश यादव की नजर भी जेन जी से लेकर जेन अल्फा तक है, जिनके मुद्दों पर वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया, 7,000 करोड़ का कॉस्मेटिक फेशियल करवाया। हम इतनी ही राशि में केजी से पीजी और रिसर्च तक की वर्ल्ड क्लास 2-3 यूनिवर्सिटी बनाकर बच्चों युवाओं का भविष्य सुधार कर दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर ले जाएंगे। वही योगी आदित्यनाथ लगातार रैलियों में समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की याद दिला रहे हैं।
2: कुछ लोग जीवन भर बच्चे ही बने रहते हैं और बबुआ भी यही करते थे, 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और 7 बजे के बाद तो महफिल जम जाती थी, तब तो फिर देश और दुनिया से उनका संबंध ही समाप्त हो जाता था। तो प्रदेश के बारे में कहां से सोच उनके पास थे। इसी कारण दंगे होते थे, महीनों कर्फ्यू रहता था।
1: बहरहाल यूपी में भी सियासी रणनीति बदलती जा रही है, जहां सबकी नजरें जेन जी वोट बैंक पर है। आज तक ब्यूरो।
3: संघ प्रमुख मोहन भागवत भी जेन जी के साथ संवाद कर रहे थे। नई युवा पीढ़ी की जमकर तारीफ उन्होंने की, जिसे लेकर अब राजनीति हो रही है।
1: जेन जी आंदोलन के बाद जब संघ प्रमुख मोहन भागवत जेन जी के संवाद कार्यक्रम में पहुंचे, तो उन्होंने जेन जी की जमकर तारीफ की, प्रदर्शन को संवाद से निपटाने की नसीहत दी, तो वहीं जेन जी की देशभक्ति पर सवाल करने वालों को कटघरे में खड़ा किया।
4: मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है।
5: अरे वाह, बढ़िया है।
4: और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है।
1: मोहन भागवत के बयान विपक्ष को रास नहीं आ रहे।
6: सर्टिफिकेट फ्रॉम मोहन भागवत जी,
7: समर्थन तो किया है, लेकिन उन्हीं के अनुयायियों ने तो जैन जी को देशद्रोही कहा है जी। उन्हीं के अनुयायियों ने तो खालिस्तानी से लेके पाकिस्तानी तक तमाम हमारे बच्चों के, जो इनोसेंट बच्चे हैं शायद, जिन्होंने घर स्कूल के अलावा कभी कुछ देखा भी नहीं था, ऐसे बच्चों को बदनाम किसने किया। सदे नेताजी कहते थे ये बीजेपी आरएसएस के कई मुंह होते हैं, जब देखते हैं कि समाज में विरोध हो रहा है तो उन्हीं में से एक सकारात्मक बयान देने लगता है।
1: जंतर मंतर में प्रदर्शन करने वाले जेन जी पर सवाल खड़े करने वाली कंगना रनौत भी प्रदर्शनकारियों और जेन जी में फर्क बता रही हैं।
8: जेन जी जो है सरकार का हिस्सा है, उन्हीं का तो मैंडेट है, जो हमारी सरकार जो है इतने सालों से जो है, तो जेन जी का ही मैंडेट है। और जेन जी जो है हमारी बहुत बड़ी, ऐसा नहीं है जो प्रोटेस्ट पे 10-15 जो है गालियां देने वाले ही जेन जी है, ये कुछ ही हाथ, जैसे मैं कहती हूँ कुछ हैंडफुल ऑफ पीपल है जो जेन जी का नाम खराब कर रहे हैं। जेन जी जो है हमारी सबसे बड़ी ताकत है और हमें गर्व है अपनी जेन जी।
1: हर दल किसी न किसी तरह से जेन जी से मिलने जुलने, उन्हें प्रभावित करने की कोशिश में जुटा है, चाहे वो पीएम मोदी के इंस्टा रील्स हो या राहुल गांधी के इंस्टा क्वेश्चन आंसर सेशन, चाहे वो मोहन भागवत का जेन जी कनेक्ट हो या राहुल गांधी के गूंज कार्यक्रम। हर दल को लगता है कि जेन जी से कनेक्ट रहे बिना देश की सियासत में मौजूद नहीं रहा जा सकता। आज तक विरोध।
3: खबर संसद की, जहां सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। क्या कुछ शुक्रवार को संसद में हुआ, आइए हम आपको दिखाते हैं।
9: मॉनसून सत्र में संसद में जुबानी बिजलियां कड़क रही हैं, कार्यवाही ठप है और विपक्ष अमित शाह के पैलेट गन पर जवाब को लेकर अड़ा हुआ है।
10: लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, सदन में जिसका बिजनेस होता है वही मंत्री जवाब देता है। ऑपोजिशन तय नहीं करेगा कौन सा मंत्री को कब आना है, ये ऑपोजिशन पार्टी तय नहीं करते हैं। आप लोग नाराबाजी करके तुरंत चले जाते हैं पार्लियामेंट छोड़ के, लेकिन होम मिनिस्टर सुबह से लेकर देर रात तक पार्लियामेंट में ही रहता है, देश का संचालन करता है, और जब होम मिनिस्टर जवाब देगा आप लोग सुन नहीं पाएगा।
11: ठीक है सर, यू सेड इफ एचएम विल कम टू द पार्लियामेंट द अपोजिशन विल नॉट एबल टू लिसन हिम।
12: Biggest joke which I heard today is that biggest joke in this parliament was Kiran Rijiju's statement.
9: इस बीच एनडीए में नई एंट्री लेने वाले सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। पीएम के साथ नाश्ते पर ये चर्चा खास है क्योंकि एनडीए परिवार के विस्तार के बाद इस मुलाकात के राजनीतिक मायने हैं। सांसदों से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने संसद न चलने पर चिंता जाहिर की और सांसदों को भरोसा दिया कि अगर विकास योजनाओं में कोई अड़चन आए तो सीधे पीएमओ से संपर्क करें।
13: It was a very, very big honor that he has invited us. And उन्होंने ये भी कहा कि एक्चुअली सदन नहीं चल रहे तो उनको भी बहुत खराब लग रहा है, तो बट वो चाहते हैं कि जल्दी से सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। उन्होंने ऐसे ही कहा कि देखिए हम तो देश के लिए काम करते हैं और हमारे साथ जो जो है हमारे ग्रुप के जो है हम आपके साथ है, यही सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ये कहा है कि जैसे हम सोचते हैं आप उसी सोच पे विश्वास रखिए और उस हिसाब से आगे बढ़ते चलिए।
10: बहुत अच्छा चर्चा हुआ है
14: जी,
10: वेरी गुड।
14: किन मुद्दों पे चर्चा हुई सर?
10: हर हर डेवलपमेंट के बारे में।
14: कई सारे आपके साथी हैं जो मुस्लिम समुदाय से हैं, वो भी मौजूद थे मीटिंग में सर?
10: मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया।
14: क्या स्पीकर का इशू भी चला इस पे मस्जिदों को लेके जो इशू?
10: नो।
14: ओके सर, आखिरी सवाल सर, एफसीआरए पे क्या रुख रहेगा आप लोगों का सर?
10: हम लोग मदद करेंगे।
9: पीएम मोदी ने उद्धव गुट से शिंदे गुट में शामिल हुए शिवसेना के सांसदों के साथ अलग से बातचीत की। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग से मुलाकात करने पहुंचे। विदेशी फंडिंग पर रेगुलेशन का नया एफसीआरए बिल सरकार की बड़ी चुनौतियों में से एक है। वहीं हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित है। आज तक ब्यूरो।
3: पंजाब चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरण तैयार किए जा रहे हैं। कांग्रेस के सामने चुनौती अंदरूनी कलह की है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुखबीर सिंह बादल की मुलाकात ने पंजाब में पुराने गठबंधन को फिर से साथ आने की हटकलों को हवा दी है।
1: पंजाब कांग्रेस में चरणजीत सिंह चन्नी और राजा वेडिंग के घमासान के बीच राहुल गांधी ने कैप्टन अमरिंदर को अपना पसंदीदा नेता बताया है।
15: कैप्टन अमरिंदर सिंह डेफिनेटली आई गेट अलोंग विद हिम, ही इज कूल एंड ही इज एन एक्सपर्ट ऑन मिलिट्री हिस्ट्री, सो आई लाइक हिम क्वाइट अ लॉट। हेलो अंकल अमरिंदर।
1: राहुल के बयान के बाद पंजाब कांग्रेस के नेताओं के सुर बदले हुए हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी अमरिंदर के कांग्रेस में वापस जाने की आशंका जताई जा रही है।
16: अगर वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपना फेवरेट लीडर मानते हैं, जो सबसे लेजी ऑफिसर्स लेजी जो पॉलिटिशियन है उनमें से जाना जाता है और उन पॉलिटिशियंस में जाना जाता है जो कि किसी भी समय किसी भी जगह पे पलटी मार सकता है, अगर राहुल जी का वो आइडियल है तो फिर राहुल जी की सियासत क्या होगी?
17: अच्छे इंसान है, अच्छी चीजें भी है यार, किसको मेरा ख्याल है हर देखो जो आदमी दो बार चीफ मिनिस्टर रह गया उसमें कोई चीजें तो ऐसी है जो सीखने लायक है।
18: तो अच्छी बात है, हर लीडर की अपनी चॉइसेस होती हैं और मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी की फ्राक दिली है। उन्होंने ये बोला है कि किसी ने पूछा कि बीजेपी में आपका फेवरेट लीडर कौन है, तो बोला कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, ही इज माई अंकल एंड दैट ही इज अ मिलिट्री हिस्टोरियन, उनके साथ उन्होंने काफी साल काम किया, वो अलग बात है अलग पार्टी। लेकिन इसमें आप देखेंगे राहुल गांधी की फराक दिली है जो ऑपोजिशन के लीडर्स को भी अप्रिशिएट करते हैं।
1: उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल से मुलाकात हुई। हालांकि अकाली दल की ओर से साफ किया गया कि ये मुलाकात पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है। वहीं बीजेपी भी कह रही है कि वो पंजाब में किसी से गठबंधन करने नहीं जा रही।
19: तो प्रधानमंत्री साहब नु कोई भी मिल सकता, तो मैंने उम्मीद है कि सुखबीर सिंह बादल पंजाब दे भले लई कोई चंगी गल करके क्लियर करना चाहना कि साडे वल्लों भारतीय जनता पार्टी पंजाब वल्लों 117 सीटा दी तैयारी है, 117 सीटा ते असीं कल्ले लड़ांगे।
1: इस बीच मान सरकार के खिलाफ सरकारी नौकरी को लेकर आज जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस के साथ कई संगठनों ने मोर्चा संभाला और मान सरकार को घेरने की कोशिश की।
20: ये देखिए ये वाटर कैनन चला, आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब दोबारा वाटर कैनन चला है और आपको बता दें यहाँ पे तिथर बितर करने की पूरी कोशिश, ये आप देखिएगा ये लगातार हम आपको अपने कैमरे में दिखा रहे हैं कि किस तरह से सड़कों पे उतरे हुए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, लेकिन इनका हौसला कम नहीं हो रहा है, अपने मांगों को लेके अडंग है, अड़े हुए हैं और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से चंडीगढ़ पुलिस ने इनको बैरिकेड लगा के यहीं पे रोकने की कोशिश और उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल। लेकिन क्या ये खामियाजा भुगतना पड़ सकता है सरकार को इलेक्शन में, ये बड़ी बात है। और इसी वजह से जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो भी पंजाब गवर्नमेंट का पूरा साथ दे रही हैं।
1: बहरहाल पंजाब में चुनाव से पहले के समीकरण का खेल जारी है, जहां हर पार्टी ने पूरा जोर लगा रखा है। कमलजीत संधू के साथ असीम बस्सी, चंडीगढ़ आज तक।
3: दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश ने मुश्किलें लोगों की बढ़ा दी, सड़कों पर पानी भर गया, ट्रैफिक जाम हो गया, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया, 10 अगस्त तक बारिश का अनुमान है। दिल्ली के साथ नोएडा गुरुग्राम में भी तेज बारिश के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली एनसीआर में बारिश आफत लेकर आई, सलाह दी गई है बहुत जरूरी न हो तो घर से बाहर न निकलें।

0: सुबह से दिल्ली एनसीआर में सावन ऐसे झूम कर आया कि दिन ढल गया, रात हो गई, लेकिन मूसलाधार बारिश मुसलसल होती रही। लोग सड़कों पर परेशान दिखे, ट्रैफिक से जूझते दिखे, गाड़ियां खराब होती दिखी, सड़कों पर जल भराव दिखा। बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है और 10 अगस्त तक ऐसे ही कभी हल्की तो कभी तेज बारिश होते रहने की संभावना है। पहले बारिश में हिचकोले खाती दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें एमबी रोड की हैं।
1: राजधानी दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बीच काफी जलभराव हो रहा है। अभी हम दिल्ली के एमबी रोड पर हैं, जहां पर आप देखेंगे जलभराव किस तरीके से हुआ है और किस तरीके से बस को निकालने का प्रयास किया जा रहा है।
2: कितना फीट तक पानी भर गया है यहाँ पर?
3: ये मैं ईमानदारी से बताऊं, मेरी आप देख सकते हैं घुटने से ऊपर और कमर से हल्का सा नीचे पानी है।
2: सर ये 4 फीट लमसम होगा पानी, ठीक है, और जिस तरीके से आप आगे की तरफ जाएंगे ना, आगे की तरफ और देखेंगे तो और भी पानी जिस तरीके से लबा लब भरा हुआ है, ठीक है, ये बहुत संकेत है।
1: महिला आ रही है, स्कूल के टीचर है आप?
3: हाँ जी।
1: कहाँ से आ रही है?
3: बाल निकेतन संगम बिहार।
1: तो अब कितना पानी बस उस नहीं मिला?
3: बस नहीं, वो तो हमारी स्कूल की कार थी तो उससे हम आए
1: तो फिर
3: भी कार के अंदर इतना पानी।
1: आप देख सकते हैं ये आर्मी मैन है और इनकी भी गाड़ी बुलेट से जा रहे हैं, इनकी फंस गई है।
2: आपकी भी बंद हो गई?
1: हाँ कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट कर लेंगे।
2: यही स्थिति हो रही है और दरिया जैसा स्थिति यहाँ पर एमबी रोड पर बनता हुआ नजर आ रहा है।
0: आपको बता दें कि एमबी रोड पर ओखला मोड़, संगम बिहार, कानपुर और देवली में जल भराव हुआ है, जिसके कारण एमबी रोड का यातायात खानपुर से ओखला मोड़ के बीच प्रभावित हुआ और लोग परेशान होते रहे। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में 7 अगस्त को 59.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो इस साल अगस्त महीने का अब तक का सबसे बरसाती दिन रहा है, जबकि दिल्ली के छतरपुर में 104.5 मिलीमीटर बारिश, पुष्प विहार में 111.5 मिलीमीटर बारिश, पालम में 73.5 मिलीमीटर बारिश और आया नगर में 87.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और बारिश में दरिया बनती दिल्ली की तस्वीरें वसंत कुंज से भी आई हैं। देखिए वसंत कुंज का हाल।
4: दूर देखिए बच्चे, वहाँ जो स्कूली बच्चे हैं वो आ रहे हैं और देखिए उन वो पानी में कैसे खेलते हुए आ रहे हैं। लेकिन ये स्कूल का टाइम है, स्कूल से छुट्टी हुई है और बच्चे देखिए यहाँ पर सड़क पे या फुटपाथ हो हर तरफ पानी ही पानी है। बेहद अहम मार्ग है, मैं फिर से बता दूं, वसंत कुंज का ये रोड है जो एयरपोर्ट को जोड़ता है, इसके आसपास कई सारे स्कूल हैं और यहाँ पर जलजमाव की स्थिति बनी है। दिल्ली वालों की ये आफत बन के निकला है ये मानसून की ये बरसात।
0: बारिश की वजह से मेहरोली बदरपुर रोड, ITO वजीराबाद रोड, पटेल रोड, रोहतक रोड, शंकर रोड, कीर्ति नगर, दिल्ली जयपुर हाईवे, पीरागढ़ी और शाहीन बाग जैसे इलाकों में भारी ट्रैफिक देखा गया। हालांकि इस बारिश से दिल्ली के तापमान में भी गिरावट आई है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी सुबह से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ दिन भर चलता रहा। बारिश होने से कई जगहों पर भारी जल भराव हो गया है, जिस वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं झमाझम बारिश के बीच नोएडा सेक्टर 95 स्थित अंडरपास में जल भराव हो गया। का मारकर निकालने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। गनीमत ये रही कि एम्बुलेंस में कोई मरीज नहीं था। और बारिश से गुरुग्राम की दुर्गति भी देख लीजिए। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर पानी भरा है और पानी में गड्ढे हैं। ये देखिए कैसे एक ऑटो पानी में हिचकोले खाते हुए चल रहा है। बारिश इतनी तेज हुई कि पहले सड़कें लबालब हुई और फिर पानी गुरुग्राम के सिविल अस्पताल के अंदर भी घुसपैठ कर गया। और गुरुग्राम की पुलिस लाइन की ये तस्वीरें भी देखिए, कैसे बारिश के पानी में बच्चे तैराकी कर रहे हैं। और जैसा कि हर बारिश में गुरुग्राम में ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है, ठीक वैसा ही नजारा आज भी दिखा। गुरुग्राम में पिछले कुछ घंटों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। भारी जलभराव और यातायात जाम को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने कंपनियों को कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की सलाह भी दी है। दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
5: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: राज्य में चार मंत्रियों और छात्र प्रतिनिधि मंडल में पहले दौर की वार्ता खत्म। मुलाकात के बाद दोनों पक्षों ने कहा बातचीत सकारात्मक, लेकिन प्रदर्शन जारी। संसद में गतिरोध के बीच सोमवार तक स्थगित दोनों सदन। रिजिजू ने विपक्ष पर जड़ा आरोप। कांग्रेस ने 10, 11, 12 के लिए सांसदों को व्हिप जारी किया। एथेनॉल पर राहुल ने सरकार को घेरा, कहा दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली। हरदीप सिंह पुरी बोले कुछ लोग खड़ा कर रहे हैं विवाद। सीएम योगी ने अखिलेश को घेरा, कहा एसपी सरकार में लूटने निकल जाती थी चाचा भतीजी की जोड़ी, विधानसभा नहीं चलने दी इन्होंने। लगातार बारिश से दिल्ली एनसीआर में जगह जगह पानी भरा, लंबा लंबा जाम, लोगों को घर से निकलना मुश्किल हुआ, 9 घर गिरे। आज फिर मौसम विभाग का भारी बारिश का अलर्ट। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों की राज्य सरकार के साथ पहले दौर की मीटिंग खत्म हो गई। हेमंत सोरेन सरकार ने चार मंत्रियों का एक पैनल बनाया था जिसने 10 छात्रों के डेलीगेशन से बात की। स्टेट गेस्ट हाउस में बातचीत के लिए पहुंचा प्रतिनिधिमंडल आंदोलन कर रहे मुख्य छात्र समूह का है जो देवेंद्र महतो के गुट से अलग है। प्रतिनिधिमंडल ने बैठक में शामिल होकर छात्रों का पक्ष रखा। बात खत्म होने के बाद छात्र नेता रविन्द्र पासवान ने कहा, यह हमारी पहली मीटिंग थी जो बहुत सकारात्मक रही। भरोसा है सरकार, मुख्यमंत्री और सभी मंत्री हमारी मांगों पर विचार करेंगे।
1: आप लोगों की और क्या निर्णय लिया गया?
2: अभी बस धरना लिया गया है और आगे का वार्ता भी चलेगा, आंदोलन कंटिन्यू।
1: क्या कहा चलेगा? मंत्री ने क्या कहा आप लोगों की बात कर?
2: हम लोगों की बात को सकारात्मक लिया गया है और मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, उसमें समाधान किया जाएगा।
1: ठीक,
2: सकारात्मक बात हुई है, हम लोगों का डिमांड लिया गया है, डिमांड पे चर्चा भी आगे और भी चलेगा, अभी आंदोलन कंटिन्यू है।
3: हाँ, जारी रहेगा। This is the first round.
0: झारखंड आंदोलन को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल उठा वो ये कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके या फिर इनका कोई बड़ा नेता अब तक इस आंदोलन में शामिल क्यों नहीं हुआ। हालांकि आंदोलन के 14वें दिन जंतर मंतर पर अनशन करने वाली आइसा की अध्यक्ष नेहा बोरा नजर आईं और समर्थन देने की बात करती हैं। उन पर स्याही फेंकने की घटना भी हुई, तो इस आंदोलन में आगे क्या होने वाला है ये भी हम आपको बताएं। लेकिन आज सरकार से इनकी बातचीत हो चुकी है और दोनों पक्षों ने सकारात्मक बताया है।
4: जब रांची में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हैं, सरकार से अपनी मांगे बनवाने के लिए अड़े हुए हैं, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब परीक्षाओं को लेकर आंदोलन चल रहा है तो उसमें अभिजीत दीपके या फिर कॉकरोच जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता अब तक इस आंदोलन में शामिल क्यों नहीं हुआ। इस बीच महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में कॉकरोच जनता पार्टी की 2 दिन बैठक भी होती है। सीजेपी अपनी आगे की पूरी रणनीति तय करती है, पूरी टीम के पद तय किए जाते हैं और सितंबर से क्या बोलती पब्लिक कैंपेन शुरू करने का ऐलान भी होता है। सवाल यही है कि सीजेपी के सारे बड़े चेहरे छत्रपति संभाजी नगर में दीपके के घर तो दिखते हैं, रांची के आंदोलन में क्यों नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी और उसके संस्थापक अभिजीत दीपके से लगातार सवाल हो रहे हैं कि सीजेपी के नेता रांची के छात्र आंदोलन में अब तक क्यों नहीं पहुंचे। हालांकि इस पर सीजेपी ने कहा कि उन्होंने बारिश में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के लिए रेनकोट भेजे हैं, छाते भेजे हैं, खाने का सामान भी भेजा है और पार्टी का नेतृत्व भी रांची जाएगा। सवाल यही है कब तक। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ भूख हड़ताल करने वाली आयसा अध्यक्ष नेहा बोरा रांची में छात्र आंदोलन के मंच पर जरूर पहुंची। नेहा बोरा ने मंच से इस आंदोलन के समर्थन का ऐलान भी किया। नेहा बोरा ने कहा कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराई जानी चाहिए और इसकी तारीख जल्द घोषित होनी चाहिए।
5: देश भर में जो छात्र आपको देख रहे हैं, आपसे बहुत बहुत प्रेरणा ले रहे हैं, जो तमाम साथी भूख हड़ताल पे बैठे हैं, साथियों को चौथा महीना पांचवा दिन है, मैं खुद भूख हड़ताल पे बैठी हूँ। मुझे समझ आ रहा है कि किस तरीके का कष्ट शरीर में महसूस होता है जब साथी भूख हड़ताल पे बैठते हैं। तो जो सब साथी भूख हड़ताल पे बैठे हैं स्टेडियम में, उनको बहुत बधाई। आपने ये जो संघर्ष किया हुआ है, उस संघर्ष को पूरा देश देख रहा है, और इस मन से वो मांगे जो यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे छात्रों की है, संघर्ष कर रहे छात्रों की है, उन मांगों को मैं अपनी सॉलिडारिटी और समर्थन यहाँ से देना चाहूंगी।
4: लेकिन रांची के छात्र आंदोलन के दौरान ऐसा अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंकने का मामला भी सामने आया और इसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ। एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई। नेहा बोरा की उम्र अभी 29 साल है और वो अपनी बेबाक आवाज के लिए जानी जाती हैं। मूल रूप से नेहा बोरा उत्तराखंड के खटीमा से आती है। आपको बता दें कि रांची आंदोलन को लेकर सवाल राहुल गांधी पर भी उठ रहे थे। बीजेपी कह रही थी कि जंतर मंतर पर सीजेपी के आंदोलन पर बोलने वाले राहुल गांधी रांची के छात्र आंदोलन पर क्यों चुप हैं? तो राहुल गांधी ने 6 अगस्त को प्रदर्शनकारी छात्रों से फोन पर बात की। एक छात्र नेता रविंद्र पासवान ने बताया कि उनकी राहुल गांधी से बात हुई है। साथ ही राहुल गांधी ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने छात्रों के समर्थन की बात कही।
6: झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है, और अलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ओप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो।
4: लेकिन जैसे जैसे रांची आंदोलन के दिन बढ़ रहे हैं, छात्रों का सब्र टूट रहा है और अब अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत भी बिगड़ने लगी है। ये 40 साल के राहुल हैं, जो पिछले 4 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन उन्हें बहुत तेज बुखार हो गया। बाकायदा डॉक्टरों की टीम आई और इस अनशनकारी को यहां से ले जाकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
7: यहां पर हूं, 4 छात्र अनशन पर बैठे हुए थे बीते 4 दिनों से। इनमें 40 साल के राहुल, जिनको आप देख रहे हैं, इनकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई है और अब डॉक्टरों ने मेडिकल रिपोर्ट के बाद ये देख लिया है कि इनके वाइटल्स जो है काफी ज्यादा बिगड़ गए और इसलिए अब इनको जो है यहां से अस्पताल ले जा रहा है। डॉक्टर ने कहा इनको यहां बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। डॉक्टर क्या कह रहे हैं भैया, क्या कुछ बताया उन्होंने,
8: क्या बोले
7: डॉक्टर, क्या कह रहे हैं?
8: डॉक्टर ये बताया कि उसका तबीयत खराब है, उसको अभी सदर अस्पताल ले जाया जाएगा।
9: अभी एक ही लोग का देखा गया है, अभी इनका ठीक लग रहा है, बाकी लोग का देख रहे हैं।
7: उनको आप ले जा रहे हैं, किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हुई है?
9: उनका पल्स रेट काफी ज्यादा हाई मिल रहा है, जिसके वजह से उनका बीपी भी थोड़ा शूट टूट कर
7: यहाँ रखा जा सकता है बिल्कुल भी
9: अब? नहीं नहीं, अब इनको एडमिट ही करना पड़ेगा, अब इनको सदर में ही रेफर करना पड़ेगा।
4: डॉक्टरों की सलाह के बाद अनशनकारी राहुल को अस्पताल ले जाया गया। वो बेहोश हो गए थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा से बात की।
7: चौथा दिन हो गया, स्वास्थ्य से बढ़कर तो आंदोलन नहीं है ना?
10: लेकिन झारखंड के नौजवानों का सौदा नहीं हो, ये मेरा संकल्प है, तो उसको तो हम अंतिम सांस तक।
7: मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि आपको बुखार काफी ज्यादा है, बहुत तेज हो चुका है, शरीर तप रहा है।
10: तप रहा है, लेकिन यहाँ डॉक्टर भी तो आते हैं, चेकअप करते हैं, दवा भी लिखते हैं, आप बोलते हैं कि 2 घंटा में दवा पहुंचा रहे हैं।
7: देखिए, जब एक अनशन खत्म हुआ तब आप लोगों ने समर्थन किया, आपको नहीं लगता 4 दिन हो चुका और हर युवा को अनशन की आदत नहीं होती, आपकी जगह कोई और जगह ले सकता है, आप लोग नहीं दबाव डालते, तबीयत इनकी बहुत ज्यादा खराब हो?
11: नहीं, हम लोग बिल्कुल आज सभी जो कमेटी मेंबर्स हैं वो सीरियसली इस विषय को देख रहे हैं कि हमारे जो दोस्त हैं उनकी हालत ज्यादा नाजुक ना हो। हम लोग चाहेंगे कि इसका विकल्प के तौर पे हम लोग कुछ आगे की कार्रवाई करें, क्योंकि ये
7: इनका नाम राहुल है
11: जी।
7: कितने साल के हैं ये?
12: 40 साल हो गए।
7: 40 राहुल, आपने भी प्रतियोगी परीक्षाएं दी थी अपने समय में?
10: JPSC का लगातार परीक्षा लिखते हैं, पहले तो PT निकल जाता था, इस बार तो वो MRA लीक हो गया तो बिक गया, तो निकलना तो दूर की बात है। सहायक आचार्य का भी परीक्षा क्वालिफाई हूँ, सीट खाली है, फिर भी सरकार नियुक्ति नहीं दे रही है। टुकड़ों टुकड़ों में नियुक्ति देती है, जितना सीटों का सेटिंग होता है उतना ही को नियुक्ति देती है। जब विज्ञापन एक बार आया तो नियुक्ति उनको एक बार देना चाहिए था।
7: दरअसल झारखंड की पीड़ा ये है कि छात्र पेपर सेट करते हैं, लगाते हैं, तैयारियां करते हैं, लेकिन पीछे से सेटिंग हो जाती है, नौकरियां कोई और ले जाता है और उसी के साथ साथ उम्र सीमा भी खत्म हो जाती है। और जब सब्र का बांध टूटा है तो उन छात्रों को यहां आंदोलन पर ले आया। तबीयत बिगड़ रही है, नासाज हो रही है, डॉक्टर भी कह रहे हैं शरीर तप रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक हिम्मत एक हौसला है, क्योंकि उन्हें लगता है ये लड़ाई सिर्फ अब उनके भविष्य की नहीं है, उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है।
4: इसी अनशन के मंच पर दो छात्राएं भी हैं जो भूख हड़ताल पर हैं। 27 साल की हबीबा और 28 साल की सरिता। इन छात्रों की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनकी उम्र लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 8-10 सालों से ये परीक्षाएं देती हैं, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिलती, क्योंकि पता चलता है कि नौकरी बिक गई।
7: कितनी परीक्षाएं इस 27 साल की उम्र में हबीबा ने दे दी, प्रतियोगी परीक्षाएं?
13: जी 2017 से लगातार मैं देती आई हूं, तो जेएसएससी की भी, जेपीएससी के भी, तो हो गए होंगे 15-20, इतने प्लस तो हो ही गए होंगे।
7: कितनी परीक्षाओं में आप पास हुई, क्वालिफाई कर गए?
13: जी मैंने पंचायत सचिव का एग्जाम दिया था, 2017 की वैकेंसी थी, तो उसमें मैं पास हो गई थी। फिर उसमें सेकेंड एग्जाम था हिंदी टाइपिंग का, तो उसमें भी क्वालिफाई हुई। फिर डीवी भी हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, वो ऐसे भी तो डिले कर ही रही थी, तुरंत नहीं कर रही थी एग्जाम वगैरह। फिर 1 साल लगे, फिर 2 साल लगे उस एग्जाम को। उसके बाद जब उसका रिजल्ट देना था तो 5 साल तक प्रोटेस्ट करना पड़ा।
4: 28 साल की सरिता की कहानी तो बिल्कुल झकझोर कर रख देने वाली है। गरीब परिवार की सरिता ने अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर पढ़ाई की, होमगार्ड से लेकर जेपीएससी तक की परीक्षा दे चुकी है, 2019 से परीक्षाएं दे रही हैं, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिल पाई। घर के हालात भी ठीक नहीं हैं।
14: तो मेरा उम्र भी निकलते जा रहा है, 28 साल होने जा रहा है, 28 में पार होने जा रहा है, अब 29 में पहुंच जाएंगे, 1 से 2 साल में मेरा एज भी खत्म होने को रहेगा। फिर हम तो कोई फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं यार, पढ़ाई के चक्कर में हम आगे कुछ और पढ़ाई नहीं किया। मेरा घर की स्थिति बहुत खराब था सर, इसलिए हमको यही लगता था कि एक जॉब ले ले, उसके बाद जो आगे के भविष्य होगा आगे देखा जाएगा।
7: आपने कितनी परीक्षाएं दी
14: अभी तक सर? हम 2019 से परीक्षा दे रहे हैं, 2019 हम तैयारी कर रहे हैं।
7: 7 साल हो गए,
14: 7 साल होने जा रहा है, आज तक एक रिजल्ट नहीं हो पाया। ये
4: पिछले 14 दिनों से रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि उनका ये प्रदर्शन कहीं व्यर्थ तो नहीं चला जाएगा, क्या सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बात बन पाएगी? आज तक ब्यूरो।
0: खबर यूपी की पॉलिटिक्स की, जहां जेनजी को लेकर पार्टियां अपनी रणनीति बदल रही हैं। धर्म और जाति की राजनीति के बीच अब हर पार्टी की नजर युवा वोट बैंक पर है, जो 2027 के चुनाव में एक महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है।
15: दिल्ली के जंतर मंतर से निकली जेनजी आंदोलन की इस चिंगारी ने सत्ता की रणनीति को नए सिरे से गढ़ने पर मजबूर कर दिया है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नई युवा नीति को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें 2027 से पहले जेनजी पर सरकार का फोकस है।
16: युवाओं को लेकर एक आयोग गठित होने वाला है, जिसमें 18 से 35 वर्ष के युवा, यानी कि आसान भाषा में कहें तो कुछ हद तक जेनजी से सलाह मशवरा लिया जाएगा युवाओं को लेकर बनाई जाने वाली नीतियों को लेकर। यानी कि योगी सरकार को ये मालूम पड़ गया है कि जेनजी एक बहुत बड़ा वोटर है और ऐसे में उन्हें साथ लेकर ही चलना होगा।
15: जेनजी वोट बैंक पर योगी सरकार के मिशन पर सियासत तेज हो गई है।
17: और अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार एक युवा नीति लेकर के आ रही है, यह युवा नीति युवाओं के सपनों को साकार करने वाली होगी।
18: तो उत्तर प्रदेश का जो जेनजी है, जो जेन अल्फा है, जो मिलेनियम है, वो समझ रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ भी किसी चीज के अगर शिकार हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो आत्ममुग्धता के शिकार हैं। अगर आत्ममुग्धता के शिकार न होते तो अपने चेहरे चमकाने पर 3 करोड़ रुपए न खर्च करते, बल्कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को आप पेपर लीक की जगह अच्छी व्यवस्था, पारदर्शी और निष्पक्ष आपने कोई व्यवस्था दी होती।
15: उधर राहुल गांधी भी कल पेपर लीक के मुद्दे पर गूंज कार्यक्रम के तहत प्रयागराज में जेनजी छात्रों के साथ संवाद करने जा रहे हैं। प्रयागराज आ रहा हूँ, देश के उस शहर में जहाँ सबसे ज्यादा नौजवान तैयारी करते हैं। एक बात साफ है, यहाँ का हर छात्र जानता है कि सिस्टम बेईमान हो चुका है। आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं, कमी उस सिस्टम की नीयत में है जो आपकी मेहनत का दाम नहीं देती। ये सरकार झुकती है, बस आवाज एक साथ उठनी चाहिए। अखिलेश यादव की नजर भी जेनजी से लेकर जेन अल्फा तक है, जिनके मुद्दों पर वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया, 7,000 करोड़ का कॉस्मेटिक फेशियल करवाया। हम इतनी ही राशि में केजी से पीजी और रिसर्च तक की वर्ल्ड क्लास 2-3 यूनिवर्सिटी बनाकर बच्चों युवाओं का भविष्य सुधार कर दिखाएंगे, उत्तर प्रदेश को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर ले जाएंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ लगातार रैलियों में समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की याद दिला रहे हैं।
19: कुछ लोग जीवन भर बच्चे ही बने रहते हैं और बबुआ भी यही करते थे, 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और 7 बजे के बाद तो महफिल जम जाती थी, तब तो फिर देश और दुनिया से उनका संबंध ही समाप्त हो जाता था। तो प्रदेश के बारे में कहां से सोच उनके पास थे। इसी कारण दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था।
15: बहरहाल यूपी में भी सियासी रणनीति बदलती जा रही है, जहां सबकी नजरें जेन ज़ी वोट बैंक पर है। आज तक ब्यूरो
0: खबर संसद की, जहां सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। क्या कुछ शुक्रवार को संसद में हुआ, आइए हम आपको दिखाते हैं।
4: मॉनसून सत्र में संसद में जुबानी बिजलियां कड़क रही हैं, कार्यवाही ठप है और विपक्ष अमित शाह के पैलेट गन पर जवाब को लेकर अड़ा हुआ है।
20: लीडर ऑफ द अपोजिशन हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, सदन में जिसका बिजनेस होता है वही मंत्री जवाब देता है। अपोजिशन तय नहीं करेगा कौन सा मंत्री को कब आना है, ये अपोजिशन पार्टी तय नहीं करते हैं। आप लोग नाराबाजी करके तुरंत चले जाते हैं पार्लियामेंट छोड़ के, लेकिन होम मिनिस्टर सुबह से लेकर देर रात तक पार्लियामेंट नहीं रहता है, देश का संचालन करता है, और जब होम मिनिस्टर जवाब देगा आप लोग सुन नहीं पाएगा।
21: पार्लियामेंट द अपोजिशन विल नॉट एबल टू लिसन हिम,
22: बिगेस्ट जोक विच आई हर्ड टुडे इज दैट Biggest joke in this parliament was Kiran Rijiju's statement.
4: इस बीच एनडीए में नई एंट्री लेने वाले सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। पीएम के साथ नाश्ते पर ये चर्चा खास है क्योंकि एनडीए परिवार के विस्तार के बाद इस मुलाकात के राजनीतिक मायने हैं। सांसदों से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने संसद न चलने पर चिंता जाहिर की और सांसदों को भरोसा दिया कि अगर विकास योजनाओं में कोई अड़चन आए तो सीधे पीएमओ से संपर्क करें।
23: It was a very, very big honor that he has invited us. And उन्होंने ये भी कहा कि एक्चुअली सदन नहीं चल रहे तो उनको भी बहुत खराब लग रहा है, तो बट वो चाहते हैं कि जल्दी से सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। ऐसे ही कहा कि देखिए हम तो देश के लिए काम करते हैं और हमारे साथ जो जो है हमारे ग्रुप के जो है हम आपके साथ है, यही सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ये कहा है कि जैसे हम सोचते हैं आप उसी सोच पे विश्वास रखिए और उस हिसाब से आगे बढ़ते चलिए।
24: बहुत अच्छा चर्चा हुआ है
0: जी,
24: वेरी गुड।
0: किन मुद्दों पे चर्चा हुई सर?
24: हर हर ये डेवलपमेंट के बारे में।
0: कई सारे आपके साथी हैं जो मुस्लिम समुदाय से हैं, वो भी मौजूद थे मीटिंग में?
24: थे, मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया।
0: क्या स्पीकर का इशू भी चला इस पे मस्जिदों को लेके जो इशू?
24: नो।
0: ओके सर, आखिरी सवाल सर, FCRA पे क्या रुख रहेगा आप लोगों का सर?
24: हम लोग मदद करेंगे।
4: पीएम मोदी ने उद्धव गुट से शिंदे गुट में शामिल हुए शिवसेना के सांसदों के साथ अलग से बातचीत की। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग से मुलाकात करने पहुंचे। विदेशी फंडिंग पर रेगुलेशन का नया FCRA बिल सरकार की बड़ी चुनौतियों में से एक है। वहीं हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित है। आज तक ब्यूरो।
0: पंजाब चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरण तैयार किए जा रहे हैं। कांग्रेस के सामने चुनौती अंदरूनी कलह की है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुखबीर सिंह बादल की मुलाकात ने पंजाब में पुराने गठबंधन को फिर से साथ आने की हटकलों को हवा दी है।
15: पंजाब कांग्रेस में चरणजीत सिंह चन्नी और राजा वेडिंग के घमासान के बीच राहुल गांधी ने कैप्टन अमरिंदर को अपना पसंदीदा नेता बताया है।
25: कैप्टन अमरिंदर सिंह डेफिनेटली आई गेट अलोंग विद हिम, ही इज कूल एंड ही इज एन एक्सपर्ट ऑन मिलिट्री हिस्ट्री, सो आई लाइक हिम क्वाइट अ लॉट। हेलो अंकल अमरिंदर।
15: राहुल के बयान के बाद पंजाब कांग्रेस के नेताओं के सुर बदले हुए हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी अमरिंदर के कांग्रेस में वापस जाने की आशंका जताई जा रही है।
26: अगर वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपना फेवरेट लीडर मानते हैं, जो सबसे लेजी ऑफिसर्स लेजी जो पॉलिटिशियन है उनमें से जाना जाता है और उन पॉलिटिशियंस में जाना जाता है, जो कि किसी भी समय किसी भी जगह पे पलटी मार सकता है। अगर राहुल जी का वो आइडियल है तो फिर राहुल जी की सियासत क्या होगी?
1: अच्छे इंसान है, अच्छी चीजें भी है यार। किसको, मेरा ख्याल है हर, देखो जो आदमी दो बार चीफ मिनिस्टर रह गया उसमें कोई चीजें तो ऐसी है जो सीखने लायक है।
2: तो अच्छी बात है, हर लीडर की अपनी चॉइसेस होती हैं और मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी की फ्राक दिली है। उन्होंने ये बोला है कि किसी ने पूछा कि बीजेपी में आपका फेवरेट लीडर कौन है, तो बोला कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, ही इज माई अंकल एंड दैट ही इज अ मिलिट्री हिस्टोरियन। उनके साथ उन्होंने काफी साल काम किया, वो अलग बात है, अलग पार्टी। लेकिन इसमें आप देखेंगे राहुल गांधी की फराक दिली है जो ऑपोजिशन के लीडर्स को भी अप्रिशिएट करते हैं।
15: उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल से मुलाकात हुई। हालांकि अकाली दल की ओर से साफ किया गया कि ये मुलाकात पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है। वहीं बीजेपी भी कह रही है कि वो पंजाब में किसी से गठबंधन करने नहीं जा रही।
3: तो प्रधानमंत्री साहब नु कोई भी मिल सकता, तो मैंने उम्मीद है कि सुखबीर सिंह बादल पंजाब के भले लिए कोई चंगी गल करके क्लीयर करना चाहना कि साडे वालों भारतीय जनता पार्टी पंजाब वालों 117 सीटा की तैयारी है। 117 सीटा तो असि कल्ले लड़ांगे।
15: इस बीच मान सरकार के खिलाफ सरकारी नौकरी को लेकर आज जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस के साथ कई संगठनों ने मोर्चा संभाला और मान सरकार को घेरने की कोशिश की।
5: ये देखिए ये वाटर कैनन चला, आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब दोबारा वाटर कैनन चला है। और आपको बता दें यहाँ पे तिथर बितर करने की पूरी कोशिश, ये आप देखिएगा लगातार हम आपको अपने कैमरे में दिखा रहे हैं कि किस तरह से सड़कों पे उतरे हुए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, लेकिन इनका हौसला कम नहीं हो रहा है। अपने मांगों को लेके अड़ंग है, अड़े हुए हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से चंडीगढ़ पुलिस ने इनको बैरिकेड लगा के यहीं पे रोकने की कोशिश और उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल। लेकिन क्या ये खामियाजा भुगतना पड़ सकता है सरकार को इलेक्शन में, ये बड़ी बात है। और इसी वजह से जो अपोजिशन पार्टीज है वो भी पंजाब गवर्नमेंट का पूरा साथ दे रही है।
15: बहरहाल पंजाब में चुनाव से पहले के समीकरण का खेल जारी है, जहां हर पार्टी ने पूरा जोर लगा रखा है। कमलजीत संधू के साथ असीम बस्सी, चंडीगढ़ आज तक।
0: दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश ने मुश्किलें लोगों की बढ़ा दी। सड़कों पर पानी भर गया, ट्रैफिक जाम हो गया। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया, 10 अगस्त तक बारिश का अनुमान है। दिल्ली के साथ नोएडा, गुरुग्राम में भी तेज बारिश के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली एनसीआर में बारिश आफत लेकर आई, सलाह दी गई है बहुत जरूरी न हो तो घर से बाहर न निकले।
4: सुबह से दिल्ली एनसीआर में सावन ऐसे झूम कर आया कि दिन ढल गया, रात हो गई। लेकिन मूसलाधार बारिश मुसलसल होती रही, लोग सड़कों पर परेशान दिखे, ट्रैफिक से जूझते दिखे, गाड़ियां खराब होती दिखी, सड़कों पर जल भराव दिखा। बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है और 10 अगस्त तक ऐसे ही कभी हल्की तो कभी तेज बारिश होते रहने की संभावना है। पहले बारिश में हिचकोले खाती दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें एमबी रोड की हैं।
6: राजधानी दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बीच काफी जलभराव हो रहा है। अभी हम दिल्ली के एमबी रोड पर हैं, जहां पर आप देखेंगे जलभराव किस तरीके से हुआ है और किस तरीके से बस को निकालने का प्रयास किया जा रहा है।
8: कितना फीट तक पानी भर गया है यहाँ पर?
6: ये मैं ईमानदारी से बताऊं, मेरी आप देख सकते हैं घुटने से ऊपर और कमर से हल्का सा नीचे पानी है।
8: सर ये 4 फीट लमसम होगा पानी, ठीक है? और जिस तरीके से आप आगे की तरफ जाएंगे ना, आगे की तरफ और देखेंगे तो और भी पानी जिस तरीके से लबालब भरा हुआ है, ठीक है? ये बहुत संकेत है।
6: महिला आ रही है, स्कूल के टीचर है आप?
8: हाँ जी।
6: कहाँ से आ रही है?
8: बाल निकेतन संगम विहार।
6: तो अब कितना पानी बस उस नहीं मिला?
8: बस नहीं, वो तो हमारी स्कूल की कार थी तो उससे हम आए
6: तो फिर
8: कार के अंदर इतना पानी।
6: आप देख सकते हैं ये आर्मी मैन है और इनकी भी गाड़ी बुलेट से जा रहे हैं, इनकी फंस गई है।
8: आपकी भी बंद हो गई?
6: हाँ कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट कर लेंगे।
8: यही स्थिति हो रही है और दरिया जैसा स्थिति यहाँ पर एमबी रोड पर बनता हुआ नजर आ रहा है।
4: आपको बता दें कि एमबी रोड पर ओखला मोड़, संगम विहार, कानपुर और देवली में जल भराव हुआ है, जिसके कारण एमबी रोड का यातायात खानपुर से ओखला मोड़ के बीच प्रभावित हुआ और लोग परेशान होते रहे। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में 7 अगस्त को 59.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो इस साल अगस्त महीने का अब तक का सबसे बरसाती दिन रहा है, जबकि दिल्ली के छतरपुर में 104.5 मिलीमीटर बारिश, पुष्प विहार में 111.5 मिलीमीटर बारिश, पालम में 73.5 मिलीमीटर बारिश और आया नगर में 87.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और बारिश में दरिया बनती दिल्ली की तस्वीरें वसंत कुंज से भी आई हैं। देखिए वसंत कुंज का हाल,
7: दूर देखिए बच्चे, वहाँ जो स्कूली बच्चे हैं वो आ रहे हैं और देखिए उन वो पानी में कैसे खेलते हुए आ रहे हैं। लेकिन ये स्कूल का टाइम है, स्कूल से छुट्टी हुई है और बच्चे देखिए यहाँ पर सड़क पे या फुटपाथ हो हर तरफ पानी ही पानी है। बेहद अहम मार्ग है, मैं फिर से बता दूं, वसंत कुंज का ये रोड है जो एयरपोर्ट को जोड़ता है, इसके आसपास कई सारे स्कूल हैं और यहाँ पर जलजमाव की स्थिति बनी है। दिल्ली वालों की आफत बन के निकला है ये मानसून की ये बरसात।
4: बारिश की वजह से मेहरोली बदरपुर रोड, आईटीओ वजीराबाद रोड, पटेल रोड, रोहतक रोड, शंकर रोड, कीर्ति नगर, दिल्ली जयपुर हाईवे, पीरागढ़ी और शाहीन बाग जैसे इलाकों में भारी ट्रैफिक देखा गया। हालांकि इस बारिश से दिल्ली के तापमान में भी गिरावट आई है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी सुबह से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ दिन भर चलता रहा। बारिश होने से कई जगहों पर भारी जल भराव हो गया है, जिस वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं झमाझम बारिश के बीच नोएडा सेक्टर 95 स्थित अंडरपास में जल भराव हो गया, जिसमें एक एम्बुलेंस फंस गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे बंद पड़ी एम्बुलेंस को ड्राइवर ने धक्का मारकर निकालने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। गनीमत ये रही कि एम्बुलेंस में कोई मरीज नहीं था। और बारिश से गुरुग्राम की दुर्गति भी देख लीजिए। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर पानी भरा है और पानी में गड्ढे हैं। ये देखिए कैसे एक ऑटो पानी में हिचकोले खाते हुए चल रहा है। बारिश इतनी तेज हुई कि पहले सड़कें लबालब हुई और फिर पानी गुरुग्राम के सिविल अस्पताल के अंदर भी घुसपैठ कर गया। और गुरुग्राम की पुलिस लाइन की ये तस्वीरें भी देखिए, कैसे बारिश के पानी में बच्चे तैराकी कर रहे हैं। और जैसा कि हर बारिश में गुरुग्राम में ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है, ठीक वैसा ही नजारा आज भी दिखा। गुरुग्राम में पिछले कुछ घंटों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। भारी जलभराव और यातायात जाम को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने कंपनियों को कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की सलाह भी दी है। दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
0: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: रांची में चार मंत्रियों और छात्र प्रतिनिधि मंडल में पहले दौर की वार्ता खत्म। मुलाकात के बाद दोनों पक्षों ने कहा बातचीत सकारात्मक, लेकिन प्रदर्शन जारी। संसद में गतिरोध के बीच सोमवार तक स्थगित दोनों सदन। रिजिजू ने विपक्ष पर जड़ा आरोप, कांग्रेस ने 10, 11, 12 के लिए सांसदों को व्हिप जारी किया। एथेनॉल पर राहुल ने सरकार को घेरा, कहा दाल में काला नहीं पूरी दाल ही काली। हरदीप सिंह पुरी बोले कुछ लोग खड़ा कर रहे हैं विवाद। सीएम योगी ने अखिलेश को घेरा, कहा एसपी सरकार में लूटने निकल जाती थी चाचा भतीजी की जोड़ी, विधानसभा नहीं चलने दी इन्होंने। लगातार बारिश से दिल्ली एनसीआर में जगह जगह पानी भरा, लंबा लंबा जाम, लोगों को घर से निकलना मुश्किल हुआ, 9 घर गिरे। आज फिर मौसम विभाग का भारी बारिश का अलर्ट। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों की राज्य सरकार के साथ पहले दौर की मीटिंग खत्म हो गई। हेमंत सोरेन सरकार ने चार मंत्रियों का एक पैनल बनाया था जिसने 10 छात्रों के डेलीगेशन से बात की। स्टेट गेस्ट हाउस में बातचीत के लिए पहुंचा प्रतिनिधिमंडल आंदोलन कर रहे मुख्य छात्र समूह का है जो देवेंद्र महतो के गुट से अलग है। प्रतिनिधिमंडल ने बैठक में शामिल होकर छात्रों का पक्ष रखा। बात खत्म होने के बाद छात्र नेता रविन्द्र पासवान ने कहा यह हमारी पहली मीटिंग थी जो बहुत सकारात्मक रही, भरोसा है सरकार मुख्यमंत्री और सभी मंत्री हमारी मांगों पर विचार करेंगे।
1: ये आप लोगों की और क्या निर्णय लिया गया?
2: अभी बस धरना लिया गया है और आगे का वार्ता भी चलेगा, आंदोलन कंटिन्यू।
1: क्या कहा चलेगा मंत्री ने, क्या कहा आप लोगों की बात पर?
2: हम लोगों की बात को सकारात्मक लिया गया है और मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, उसका समाधान किया जाएगा।
1: ठीक,
2: सकारात्मक बात हुई है, हम लोगों का डिमांड लिया गया है, डिमांड पे चर्चा भी आगे और भी चलेगा, अभी आंदोलन कंटिन्यू है।
3: हाँ, जारी रहेगा। This is the first round.
0: झारखंड आंदोलन को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल उठा वो ये कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके या फिर इनका कोई बड़ा नेता अब तक इस आंदोलन में शामिल क्यों नहीं हुआ। हालांकि आंदोलन के 14वें दिन जंतर मंतर पर अनशन करने वाली आइसा की अध्यक्ष नेहा बोरा नजर आईं और समर्थन देने की बात करती हैं। उन पर स्याही फेंकने की घटना भी हुई, तो इस आंदोलन में आगे क्या होने वाला है ये भी हम आपको बताएं। लेकिन आज सरकार से इनकी बातचीत हो चुकी है और दोनों पक्षों ने सकारात्मक बताया है।
4: जब रांची में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हैं, सरकार से अपनी मांगे बनवाने के लिए अड़े हुए हैं, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब परीक्षाओं को लेकर आंदोलन चल रहा है तो उसमें अभिजीत दीपके या फिर कॉकरोच जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता अब तक इस आंदोलन में शामिल क्यों नहीं हुआ। इस बीच महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में कॉकरोच जनता पार्टी की 2 दिन बैठक भी होती है। सीजेपी अपनी आगे की पूरी रणनीति तय करती है, पूरी टीम के पद तय किए जाते हैं और सितंबर से क्या बोलती पब्लिक कैंपेन शुरू करने का ऐलान भी होता है। सवाल यही है कि सीजेपी के सारे बड़े चेहरे छत्रपति संभाजी नगर में दीपके के घर तो दिखते हैं, रांची के आंदोलन में क्यों नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी और उसके संस्थापक अभिजीत दीपके से लगातार सवाल हो रहे हैं कि सीजेपी के नेता रांची के छात्र आंदोलन में अब तक क्यों नहीं पहुंचे। हालांकि इस पर सीजेपी ने कहा कि उन्होंने बारिश में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के लिए रेनकोट भेजे हैं, छाते भेजे हैं, खाने का सामान भी भेजा है और पार्टी का नेतृत्व भी रांची जाएगा। सवाल यही है कब तक। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ भूख हड़ताल करने वाली आयसा अध्यक्ष नेहा बोरा रांची में छात्र आंदोलन के मंच पर जरूर पहुंची। नेहा बोरा ने मंच से इस आंदोलन के समर्थन का ऐलान भी किया। नेहा बोरा ने कहा कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराई जानी चाहिए और इसकी तारीख जल्द घोषित होनी चाहिए।
5: देश भर में जो छात्र आपको देख रहे हैं आपसे बहुत बहुत प्रेरणा ले रहे हैं जो तमाम साथी भूख हड़ताल पे बैठे हैं, साथियों को चौथा महीना पांचवा दिन है, मैं खुद भूख हड़ताल पे बैठी हूँ। मुझे समझ आ रहा है कि किस तरीके का कष्ट शरीर में महसूस होता है जब साथी भूख हड़ताल पे बैठते हैं। तो जो सब साथी भूख हड़ताल पे बैठे हैं स्टेडियम में, उनको बहुत बधाई। आपने ये जो संघर्ष किया हुआ है, उस संघर्ष को पूरा देश देख रहा है, और इस मन से वो मांगे जो यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे छात्रों की है, संघर्ष कर रहे छात्रों की है, उन मांगों को मैं अपनी सॉलिडारिटी और समर्थन यहाँ से देना चाहूंगी।
4: लेकिन रांची के छात्र आंदोलन के दौरान ऐसा अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंकने का मामला भी सामने आया और इसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ। एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई। नेहा बोरा की उम्र अभी 29 साल है और वो अपनी बेबाक आवाज के लिए जानी जाती हैं। मूल रूप से नेहा बोरा उत्तराखंड के खटीमा से आती है। आपको बता दें कि रांची आंदोलन को लेकर सवाल राहुल गांधी पर भी उठ रहे थे। बीजेपी कह रही थी कि जंतर मंतर पर सीजेपी के आंदोलन पर बोलने वाले राहुल गांधी रांची के छात्र आंदोलन पर क्यों चुप हैं? तो राहुल गांधी ने 6 अगस्त को प्रदर्शनकारी छात्रों से फोन पर बात की। एक छात्र नेता रविंद्र पासवान ने बताया कि उनकी राहुल गांधी से बात हुई है। साथ ही राहुल गांधी ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने छात्रों के समर्थन की बात कही।
6: झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है, और अलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ओप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो।
4: लेकिन जैसे जैसे रांची आंदोलन के दिन बढ़ रहे हैं, छात्रों का सब्र टूट रहा है और अब अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत भी बिगड़ने लगी है। ये 40 साल के राहुल हैं, जो पिछले 4 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन उन्हें बहुत तेज बुखार हो गया। बाकायदा डॉक्टरों की टीम आई और इस अनशनकारी को यहां से ले जाकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
7: यहां पर हूं, 4 छात्र अनशन पर बैठे हुए थे बीते 4 दिनों से। इनमें 40 साल के राहुल, जिनको आप देख रहे हैं, इनकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई है और अब डॉक्टरों ने मेडिकल रिपोर्ट के बाद ये देख लिया है कि इनके वाइटल्स जो है काफी ज्यादा बिगड़ गए और इसलिए अब इनको जो है यहां से अस्पताल ले जा रहा है। डॉक्टर ने कहा इनको यहां बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। डॉक्टर क्या कह रहे हैं भैया, क्या कुछ बताया?
8: क्या बोले
7: डॉक्टर, क्या कह रहे हैं?
8: डॉक्टर ये बताया कि उसका तबीयत खराब है, उसको अभी सदर अस्पताल ले जाया जाएगा।
9: अभी एक ही लोग का देखा गया है, अभी इनका ठीक लग रहा है, बाकी लोग का देख रहे हैं।
7: उनको आप ले जा रहे हैं, किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हुई है?
9: उनका पल्स रेट काफी ज्यादा हाई मिल रहा है, जिसके वजह से उनका बीपी भी थोड़ा शूट उठ कर
7: यहाँ रखा जा सकता है बिल्कुल भी
9: अब? नहीं नहीं, अब इनको एडमिट ही करना पड़ेगा, अब इनको सदर में ही रेफर करना पड़ेगा।
4: डॉक्टरों की सलाह के बाद अनशनकारी राहुल को अस्पताल ले जाया गया। वो बेहोश हो गए थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा से बात की।
7: चौथा दिन हो गया, स्वास्थ्य से बढ़कर तो आंदोलन नहीं है ना?
10: लेकिन झारखंड के नौजवानों का सौदा नहीं हो, ये मेरा संकल्प है, तो उसको तो हम अंतिम सांस तक।
7: मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि आपको बुखार काफी ज्यादा है, बहुत तेज हो चुका है, शरीर तप रहा है।
10: तप रहा है, लेकिन यहाँ डॉक्टर भी तो आते हैं, चेकअप करते हैं, दवा भी लिखते हैं, आप बोलते हैं कि 2 घंटा में दवा पहुंचा रहे हैं।
7: देखिए, जब एक अनशन खत्म हुआ तब आप लोगों ने समर्थन किया, आपको नहीं लगता 4 दिन हो चुका और हर युवा को अनशन की आदत नहीं होती, आपकी जगह कोई और जगह ले सकता है, आप लोग नहीं दबाव डालते, तबीयत इनकी बहुत ज्यादा खराब हो?
11: नहीं, हम लोग बिल्कुल आज सभी जो कमेटी मेंबर्स हैं वो सीरियसली इस विषय को देख रहे हैं कि हमारे जो दोस्त हैं उनकी हालत ज्यादा नाजुक ना हो। हम लोग चाहेंगे कि इसका विकल्प के तौर पे हम लोग कुछ आगे की कार्रवाई करें, क्योंकि ये
7: इनका नाम राहुल है
11: जी।
7: कितने साल के हैं ये?
12: 40 साल।
7: 40 राहुल, आपने भी प्रतियोगी परीक्षाएं दी थी अपने समय में?
10: JPSC का लगातार परीक्षा लिखते हैं, पहले तो PT निकल जाता था, इस बार तो वो MRA लीक हो गया तो बिक गया, तो निकलना तो दूर की बात है। सहायक आचार्य का भी परीक्षा क्वालिफाई हूँ, सीट खाली है, फिर भी सरकार नियुक्ति नहीं दे रही है। टुकड़ों टुकड़ों में नियुक्ति देती है, जितना सीटों का सेटिंग होता है उतने ही को नियुक्ति देती है। जब विज्ञापन एक बार आया तो नियुक्ति उनको एक बार देना चाहिए था।
7: दरअसल झारखंड की पीड़ा ये है कि छात्र पेपर सेट करते हैं, लगाते हैं, तैयारियां करते हैं, लेकिन पीछे से सेटिंग हो जाती है, नौकरियां कोई और ले जाता है और उसी

0: है, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक हिम्मत एक हौसला है, क्योंकि उन्हें लगता है ये लड़ाई सिर्फ अब उनके भविष्य की नहीं है, उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है।
1: इसी अनशन के मंच पर दो छात्राएं भी हैं जो भूख हड़ताल पर हैं। 27 साल की हबीबा और 28 साल की सरिता। इन छात्रों की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनकी उम्र लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 8-10 सालों से ये परीक्षाएं देती हैं, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिलती, क्योंकि पता चलता है कि नौकरी बिक गई।
0: कितनी परीक्षाएं इस 27 साल की उम्र में हबीबा ने दे दी, प्रतियोगी परीक्षाएं?
2: जी, 2017 से लगातार मैं देती आई हूं, तो जेएससी की भी, जेपीएससी के भी, तो हो गए होंगे 15-20, इतने प्लस तो हो ही गए होंगे सर।
0: कितनी परीक्षाओं में आप पास हुई, क्वालिफाई कर गए?
2: जी, मैंने पंचायत सचिव का एग्जाम दिया था, 2017 की वैकेंसी थी, तो उसमें मैं पास हो गई थी। फिर उसमें सेकेंड एग्जाम था हिंदी टाइपिंग का, तो उसमें भी क्वालिफाई हुई। फिर डीवी भी हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हुआ। ऐसे भी तो डिले कर ही रही थी, तुरंत नहीं कर रही थी एग्जाम वगैरह। फिर 1 साल लगे, फिर 2 साल लगे उस एग्जाम को। उसके बाद जब उसका रिजल्ट देना था तो 5 साल तक प्रोटेस्ट करना पड़ा।
1: 28 साल की सरिता की कहानी तो बिल्कुल झकझोर कर रख देने वाली है। गरीब परिवार की सरिता ने अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर पढ़ाई की। होमगार्ड से लेकर जेपीएससी तक की परीक्षा दे चुकी है। 2019 से परीक्षाएं दे रही हैं, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिल पाई। घर के हालात भी ठीक नहीं हैं।
3: तो मेरा उम्र भी निकलते जा रहा है, 28 साल होने जा रहा है, 28 में पार होने जा रहा है, 29 में पहुंच जाएंगे। 1-2 साल में मेरा एज भी खत्म होने को रहेगा। फिर हम तो कोई फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं यार, ये पढ़ाई के चक्कर में हम आगे कुछ और पढ़ाई नहीं किया। मेरे घर की स्थिति बहुत खराब था सर, इसीलिए हमको यही लगता था कि एक जॉब ले ले, उसके बाद जो आगे के भविष्य होगा आगे देखा जाएगा।
0: आपने कितनी परीक्षाएं दी
3: अभी तक सर? हम 2019 से परीक्षा दे रहे हैं, 2019 हम तैयारी कर रहे हैं।
0: 7 साल हो गए,
3: 7 साल होने जा रहा है, आज तक एक रिजल्ट नहीं हो पाया।
1: पिछले 14 दिनों से रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि उनका ये प्रदर्शन कहीं व्यर्थ तो नहीं चला जाएगा। क्या सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बात बन पाएगी? आज तक ब्यूरो।
4: खबर यूपी की पॉलिटिक्स की, जहां जेनजी को लेकर पार्टियां अपनी रणनीति बदल रही हैं। धर्म और जाति की राजनीति के बीच अब हर पार्टी की नजर युवा वोट बैंक पर है, जो 2027 के चुनाव में एक महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है।
5: दिल्ली के जंतर मंतर से निकली जेनजी आंदोलन की इस चिंगारी ने सत्ता की रणनीति को नए सिरे से गढ़ने पर मजबूर कर दिया है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नई युवा नीति को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें 2027 से पहले जेनजी पर सरकार का फोकस है।
6: युवाओं को लेकर एक आयोग गठित होने वाला है, जिसमें 18 से 35 वर्ष के युवा, यानी कि आसान भाषा में कहें तो कुछ हद तक जेनजी से सलाह मशवरा लिया जाएगा युवाओं को लेकर बनाई जाने वाली नीतियों को लेकर। यानी कि योगी सरकार को ये मालूम पड़ गया है कि जेनजी एक बहुत बड़ा वोटर है, और ऐसे में उन्हें साथ लेकर ही चलना होगा।
5: जेनजी वोट बैंक पर योगी सरकार के मिशन पर सियासत तेज हो गई है,
7: और अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार एक युवा नीति लेकर के आ रही है। यह युवा नीति युवाओं के सपनों को साकार करने वाली होगी।
8: तो उत्तर प्रदेश का जो जेनजी है, जो जेन अल्फा है, जो मिलेनियम है, वो समझ रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ भी किसी चीज के अगर शिकार हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो आत्ममुग्धता के शिकार हैं। अगर आत्ममुग्धता के शिकार न होते तो अपने चेहरे चमकाने पर 3 करोड़ रुपए न खर्च करते, बल्कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को आप पेपर लीक की जगह अच्छी व्यवस्था, पारदर्शी और निष्पक्ष आपने कोई व्यवस्था दी होती।
5: उधर राहुल गांधी भी कल पेपर लीक के मुद्दे पर गूंज कार्यक्रम के तहत प्रयागराज में जेनजी छात्रों के साथ संवाद करने जा रहे हैं। प्रयागराज आ रहा हूँ, देश के उस शहर में जहाँ सबसे ज्यादा नौजवान तैयारी करते हैं। एक बात साफ है, यहाँ का हर छात्र जानता है कि सिस्टम बेईमान हो चुका है। आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं, कमी उस सिस्टम की नीयत में है जो आपकी मेहनत का दाम नहीं देती। ये सरकार झुकती है, बस आवाज एक साथ उठनी चाहिए। अखिलेश यादव की नजर भी जेनजी से लेकर जेन अल्फा तक है, जिनके मुद्दों पर वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया, 7,000 करोड़ का कॉस्मेटिक फेशियल करवाया। हम इतनी ही राशि में केजी से पीजी और रिसर्च तक की वर्ल्ड क्लास 2-3 यूनिवर्सिटी बनाकर बच्चों युवाओं का भविष्य सुधार कर दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर ले जाएंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ लगातार रैलियों में समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की याद दिला रहे हैं।
9: कुछ लोग जीवन भर बच्चे ही बने रहते हैं, और बबुआ भी यही करते थे, 12 बजे शो के

0: उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और 7 बजे के बाद तो महफिल जम जाती थी, तब तो फिर देश और दुनिया से उनका संबंध ही समाप्त हो जाता था। तो प्रदेश के बारे में कहां से सोच उनके पास थे। इसी कारण दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था।
1: बहरहाल यूपी में भी सियासी रणनीति बदलती जा रही है, जहां सबकी नजरें जेन जी वोट बैंक पर है। आज तक ब्यूरो।
2: संघ प्रमुख मोहन भागवत भी जेन जी के साथ संवाद कर रहे थे। नई युवा पीढ़ी की जमकर तारीफ उन्होंने की, जिसे लेकर अब राजनीति हो रही है।
1: जेन जी आंदोलन के बाद जब संघ प्रमुख मोहन भागवत जेन जी के संवाद कार्यक्रम में पहुंचे, तो उन्होंने जेन जी की जमकर तारीफ की, प्रदर्शन को संवाद से निपटाने की नसीहत दी, तो वहीं जेन जी की देशभक्ति पर सवाल करने वालों को कटघरे में खड़ा किया।
3: मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है।
4: अरे वाह, बढ़िया है।
3: और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है।
1: मोहन भागवत के बयान विपक्ष को रास नहीं आ रहे।
5: सर्टिफिकेट फ्रॉम मोहन भागवत जी,
6: समर्थन तो किया है, लेकिन उन्हीं के अनुयायियों ने तो जैन जी को देशद्रोही कहा है
4: जी।
6: उन्हीं के अनुयायियों ने तो खालिस्तानी से लेके पाकिस्तानी तक तमाम हमारे बच्चों के, जो इनोसेंट बच्चे हैं शायद, जिन्होंने घर स्कूल के अलावा कभी कुछ देखा भी नहीं था, ऐसे बच्चों को बदनाम किसने किया। सदे नेताजी कहते थे ये बीजेपी आरएसएस के कई मुंह होते हैं, जब देखते हैं कि समाज में विरोध हो रहा है तो उन्हीं में से एक सकारात्मक बयान देने लगता है।
1: जंतर मंतर में प्रदर्शन करने वाले जेन जी पर सवाल खड़े करने वाली कंगना रनौत भी प्रदर्शनकारियों और जेन जी में फर्क बता रही हैं।
7: जेन जी जो है सरकार का हिस्सा है, उन्हीं का तो मैंडेट है, जो हमारी सरकार जो है इतने सालों से जो है, तो जेन जी का ही मैंडेट है। और जेन जी जो है हमारी बहुत बड़ी, ऐसा नहीं है जो प्रोटेस्ट पे 10-15 जो है गालियां देने वाले ही जेन जी है, ये कुछ ही हाथ, जैसे मैं कहती हूँ कुछ हैंडफुल ऑफ पीपल है जो जेन जी का नाम खराब कर रहे हैं। जेन जी जो है हमारी सबसे बड़ी ताकत है और हमें गर्व है अपनी जेन जी।
1: हर दल किसी न किसी तरह से जेन जी से मिलने जुलने, उन्हें प्रभावित करने की कोशिश में जुटा है, चाहे वो पीएम मोदी के इंस्टा रील्स हों या राहुल गांधी के इंस्टा क्वेश्चन आंसर सेशन, चाहे वो मोहन भागवत का जेन जी कनेक्ट हो या राहुल गांधी के गूंज कार्यक्रम। हर दल को लगता है कि जेन जी से कनेक्ट रहे बिना देश की सियासत में मौजूद नहीं रहा जा सकता। आज तक विरोध।
2: खबर संसद की, जहां सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। क्या कुछ शुक्रवार को संसद में हुआ, आइए हम आपको दिखाते हैं।
8: मॉनसून सत्र में संसद में जुबानी बिजलियां कड़क रही हैं, कार्यवाही ठप है और विपक्ष अमित शाह के पैलेट गन पर जवाब को लेकर अड़ा हुआ है।
9: लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, सदन में जिसका बिजनेस होता है वही मंत्री जवाब देता है। ऑपोजिशन तय नहीं करेगा कौन सा मंत्री को कब आना है, ये ऑपोजिशन पार्टी तय नहीं करते हैं। आप लोग नाराबाजी करके तुरंत चले जाते हैं पार्लियामेंट छोड़ के, लेकिन होम मिनिस्टर सुबह से लेकर देर रात तक पार्लियामेंट में नहीं रहता है, देश का संचालन करता है। और जब होम मिनिस्टर जवाब देगा आप लोग सुन नहीं पाएगा।
10: बिगेस्ट जोक विच आई हर्ड टुडे इज दैट बिगेस्ट जोक इन दिस पार्लियामेंट वाज किरण रिजिजू स्टेटमेंट।
8: इस बीच एनडीए में नई एंट्री लेने वाले सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। पीएम के साथ नाश्ते पर यह चर्चा खास है, क्योंकि एनडीए परिवार के विस्तार के बाद इस मुलाकात के राजनीतिक मायने हैं। सांसदों से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने संसद न चलने पर चिंता जाहिर की और सांसदों को भरोसा दिया कि अगर विकास योजनाओं में कोई अड़चन आए तो सीधे पीएमओ से संपर्क करें।
11: उन्होंने ये भी कहा कि एक्चुअली सदन नहीं चल रहा है तो उनको भी बहुत खराब लग रहा है, तो बट वो चाहते हैं कि जल्दी से सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। ऐसे ही कहा कि देखिए हम तो देश के लिए काम करते हैं और हमारे साथ जो जो है हमारे ग्रुप के जो है हम आपके साथ है, यही सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ये कहा है कि जैसे हम सोचते हैं आप उसी सोच पे विश्वास रखिए और उस हिसाब से आगे बढ़ते चलिए।
12: बहुत अच्छा चर्चा हुआ है
4: जी,
12: वेरी गुड।
4: किन मुद्दों पे चर्चा हुई सर?
12: हर डेवलपमेंट के बारे में, कई सारे आपके साथी हैं जो मुस्लिम समुदाय से हैं, वो भी मौजूद थे मीटिंग में?
13: थे, मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया।
12: क्या स्पीकर का इशू भी चला इस पे मस्जिदों को लेके जो इशू?
13: नो।
12: ओके सर, आखिरी सवाल सर, FCRA पे क्या रुख रहेगा आप लोगों का? सर
13: हम लोग मदद करेंगे।
8: पीएम मोदी ने उद्धव गुट से शिंदे गुट में शामिल हुए शिवसेना के सांसदों के साथ अलग से बातचीत की। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग से मुलाकात करने पहुंचे। विदेशी फंडिंग पर रेगुलेशन का नया FCRA बिल सरकार की बड़ी चुनौतियों में से एक है। वहीं हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित है। आज तक ब्यूरो।
2: पंजाब चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरण तैयार किए जा रहे हैं। कांग्रेस के सामने चुनौती अंदरूनी कलह की है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुखबीर सिंह बादल की मुलाकात ने पंजाब में पुराने गठबंधन को फिर से साथ आने की हटकलों को हवा दी है।
1: पंजाब कांग्रेस में चरणजीत सिंह चन्नी और राजा वेडिंग के घमासान के बीच राहुल गांधी ने कैप्टन अमरिंदर को अपना पसंदीदा नेता बताया है।
14: कैप्टन अमरिंदर सिंह डेफिनेटली आई गेट अलोंग विद हिम, ही इज कूल एंड ही इज एन एक्सपर्ट ऑन मिलिट्री हिस्ट्री, सो आई लाइक हिम क्वाइट अ लॉट। हेलो अंकल अमरिंदर।
1: राहुल के बयान के बाद पंजाब कांग्रेस के नेताओं के सुर बदले हुए हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी अमरिंदर के कांग्रेस में वापस जाने की आशंका जताई जा रही है।
15: अगर वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपना फेवरेट लीडर मानते हैं, जो सबसे लेजी ऑफिसर्स लेजी जो पॉलिटिशियन है उनमें से जाना जाता है, और उन पॉलिटिशियंस में जाना जाता है जो कि किसी भी समय किसी भी जगह पे पलटी मार सकता है, अगर राहुल जी का वो आइडियल है तो फिर राहुल जी की सियासत क्या होगी?
16: अच्छे इंसान है, अच्छी चीजें भी है यार, किसको मेरा ख्याल है हर देखो जो आदमी दो बार चीफ मिनिस्टर रह गया उसमें कोई चीजें तो ऐसी है जो सीखने लायक है।
17: तो अच्छी बात है, हर लीडर की अपनी चॉइसेस होती हैं, और मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी की फ्राक दिली है। उन्होंने ये बोला है कि किसी ने पूछा कि बीजेपी में आपका फेवरेट लीडर कौन है, तो बोला कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, ही इज माय अंकल एंड दैट ही इज द मिलिट्री हिस्टोरियन, उनके साथ उन्होंने काफी साल काम किया। वो अलग बात है, अलग पार्टी, लेकिन इसमें आप देखेंगे राहुल गांधी की फराक दिली है जो ऑपोजिशन के लीडर्स को भी अप्रिशिएट करते हैं।
1: उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल से मुलाकात हुई। हालांकि अकाली दल की ओर से साफ किया गया कि ये मुलाकात पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है। वहीं बीजेपी भी कह रही है कि वो पंजाब में किसी से गठबंधन करने नहीं जा रही।
18: तो प्रधानमंत्री साहब कोई भी मिल सकता, तो मैं उम्मीद है कि सुखबीर सिंह बादल पंजाब के भले लिए कोई चंगी गल करके क्लियर करना चाहना कि साढ़े वालों भारतीय जनता पार्टी पंजाब वालों 117 सीटा की तैयारी है, 117 सीटा तो असं कले लड़ा।
1: इस बीच मान सरकार के खिलाफ सरकारी नौकरी को लेकर आज जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस के साथ कई संगठनों ने मोर्चा संभाला और मान सरकार को घेरने की कोशिश की।
19: ये देखिए ये वाटर कैनन चला, आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब दोबारा वाटर कैनन चला है, और आपको बता दें यहाँ पे तिथर बितर करने की पूरी कोशिश, ये आप देखिएगा ये लगातार हम आपको अपने कैमरे में दिखा रहे हैं कि किस तरह से सड़कों पे उतरे हुए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, लेकिन इनका हौसला कम नहीं हो रहा है, अपने मांगों को लेके अडंग है, अड़े हुए हैं, और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से चंडीगढ़ पुलिस ने इनको बैरिकेड लगा के यहीं पे रोकने की कोशिश, और उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल। लेकिन क्या ये खामियाजा भुगतना पड़ सकता है सरकार को इलेक्शन में, ये बड़ी बात है, और इसी वजह से जो ऑपोजिशन पार्टीज है वो भी पंजाब गवर्नमेंट का पूरा साथ दे रही है।
1: बहरहाल पंजाब में चुनाव से पहले के समीकरण का खेल जारी है, जहां हर पार्टी ने पूरा जोर लगा रखा है। कमलजीत संधू के साथ असीम बत्सी, चंडीगढ़ आज तक।
2: दिल्ली NCR में मूसलाधार बारिश ने मुश्किलें लोगों की बढ़ा दी, सड़कों पर पानी भर गया, ट्रैफिक जाम हो गया, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया, 10 अगस्त तक बारिश का अनुमान है। दिल्ली के साथ नोएडा गुरुग्राम में भी तेज बारिश के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली NCR में बारिश आफत लेकर आई, सलाह दी गई है बहुत जरूरी न हो तो घर से बाहर न निकलें।
8: सुबह से दिल्ली NCR में सावन ऐसे झूम कर आया कि दिन ढल गया रात हो गई, लेकिन मूसलाधार बारिश मुसलसल होती रही। लोग सड़कों पर परेशान दिखे, ट्रैफिक से जूझते दिखे, गाड़ियां खराब होती दिखी, सड़कों पर जल भराव दिखा। बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है और 10 अगस्त तक ऐसे ही कभी हल्की तो कभी तेज बारिश होते रहने की संभावना है। पहले बारिश में हिचकोले खाती दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें एमबी रोड की हैं।
20: राजधानी दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बीच काफी जलभराव हो रहा है। अभी हम दिल्ली के एमबी रोड पर हैं, जहां पर आप देखेंगे जलभराव किस तरीके से हुआ है और किस तरीके से बस को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। कितना फीट तक पानी भर गया है यहाँ पर?
21: ये मैं ईमानदारी से बताऊं, मेरी आप देख सकते हैं घुटने से ऊपर और कमर से हल्का सा नीचे पानी है।
22: सर ये 4 फीट लमसम होगा पानी, ठीक है? और जिस तरीके से आप आगे की तरफ जाएंगे ना, आगे की तरफ और देखेंगे तो और भी पानी जिस तरीके से लबालब भरा हुआ है, ठीक है? ये बहुत संकेत है।
20: महिला आ रही है, स्कूल के टीचर है आप?
21: हाँ जी।
20: कहाँ से आ रही है?
21: बाल निकेतन संगम विहार।
20: तो अब कितना पानी बस नहीं मिला?
21: बस नहीं, वो तो हमारी स्कूल की कार थी तो उससे हम आए
20: तो फिर
21: भी कार के अंदर इतना पानी।
20: आप देख सकते हैं ये आर्मी मैन है और इनकी भी गाड़ी बुलेट से जा रहे हैं, इनकी फंस गई है। आपकी भी बंद हो गई?
23: हाँ कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट कर लेंगे।
20: आप देख सकते हैं यही स्थिति हो रही है और दरिया जैसा स्थिति यहाँ पर एमबी रोड पर बनता हुआ नजर आ रहा है।
8: आपको बता दें कि एमबी रोड पर ओखला मोड़, संगम विहार, खानपुर और देवली में जल भराव हुआ है, जिसके कारण एमबी रोड का यातायात खानपुर से ओखला मोड़ के बीच प्रभावित हुआ और लोग परेशान होते रहे। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में 7 अगस्त को 59.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो इस साल अगस्त महीने का अब तक का सबसे बरसाती दिन रहा है। जबकि दिल्ली के छतरपुर में 104.5 मिलीमीटर बारिश, पुष्प विहार में 111.5 मिलीमीटर बारिश, पालम में 73.5 मिलीमीटर बारिश और आया नगर में 87.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और बारिश में दरिया बनती दिल्ली की तस्वीरें वसंत कुंज से भी आई हैं। देखिए वसंत कुंज का हाल।
24: दूर देखिए बच्चे, वहाँ जो स्कूली बच्चे हैं वो आ रहे हैं और देखिए उन वो पानी में कैसे खेलते हुए आ रहे हैं। लेकिन ये स्कूल का टाइम है, स्कूल से छुट्टी हुई है और बच्चे देखिए यहाँ पर सड़क पे या फुटपाथ हो हर तरफ पानी ही पानी है। बेहद अहम मार्ग है, मैं फिर से बता दूं, वसंत कुंज का ये रोड है जो एयरपोर्ट को जोड़ता है। इसके आसपास कई सारे स्कूल हैं और यहाँ पर जलजमाव की स्थिति बनी है। दिल्ली वालों की आफत बन के निकला है ये मानसून की ये बरसात।
8: बारिश की वजह से मेहरोली बदरपुर रोड, ITO वजीराबाद रोड, पटेल रोड, रोहतक रोड, शंकर रोड, कीर्ति नगर, दिल्ली जयपुर हाईवे, पीरागढ़ी और शाहीन बाग जैसे इलाकों में भारी ट्रैफिक देखा गया। हालांकि इस बारिश से दिल्ली के तापमान में भी गिरावट आई है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी सुबह से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ दिन भर चलता रहा। बारिश होने से कई जगहों पर भारी जल भराव हो गया है, जिस वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं झमाझम बारिश के बीच नोएडा सेक्टर 95 स्थित अंडरपास में जल भराव हो गया, जिसमें एक एम्बुलेंस फंस गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे बंद पड़ी एम्बुलेंस को ड्राइवर ने धक्का मारकर निकालने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। गनीमत ये रही कि एम्बुलेंस में कोई मरीज नहीं था। और बारिश से गुरुग्राम की दुर्गति भी देख लीजिए। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर पानी भरा है और पानी में गड्ढे हैं। ये देखिए कैसे एक ऑटो पानी में हिचकोले खाते हुए चल रहा है। बारिश इतनी तेज हुई कि पहले सड़कें लबालब हुई और फिर पानी गुरुग्राम के सिविल अस्पताल के अंदर भी घुसपैठ कर गया। और गुरुग्राम की पुलिस लाइन की ये तस्वीरें भी देखिए, कैसे बारिश के पानी में बच्चे तैराकी कर रहे हैं। और जैसा कि हर बारिश में गुरुग्राम में ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है, ठीक वैसा ही नजारा आज भी दिखा। गुरुग्राम में पिछले कुछ घंटों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। भारी जलभराव और यातायात जाम को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने कंपनियों को कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की सलाह भी दी है। दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
2: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

रांची में चार मंत्रियों और छात्र प्रतिनिधि मंडल में पहले दौर की वार्ता खत्म। मुलाकात के बाद दोनों पक्षों ने कहा बातचीत सकारात्मक, लेकिन प्रदर्शन जारी। संसद में गतिरोध के बीच सोमवार तक स्थगित दोनों सदन। रिजिजू ने विपक्ष पर जड़ा आरोप, कांग्रेस ने 10, 11, 12 के लिए सांसदों को व्हिप जारी किया। एथेनॉल पर राहुल ने सरकार को घेरा, कहा दाल में काला नहीं पूरी दाल ही काली। हरदीप सिंह पुरी बोले कुछ लोग खड़ा कर रहे हैं विवाद। सीएम योगी ने अखिलेश को घेरा, कहा एसपी सरकार में लूटने निकल जाती थी चाचा भतीजे की जोड़ी, विधानसभा नहीं चलने दी इन्होंने। लगातार बारिश से दिल्ली एनसीआर में जगह जगह पानी भरा, लंबा लंबा जाम, लोगों को घर से निकलना मुश्किल हुआ, 9 घर गिरे। आज फिर मौसम विभाग का भारी बारिश का अलर्ट। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों की राज्य सरकार के साथ पहले दौर की मीटिंग खत्म हो गई। हेमंत सोरेन सरकार ने चार मंत्रियों का एक पैनल बनाया था जिसने 10 छात्रों के डेलीगेशन से बात की। स्टेट गेस्ट हाउस में बातचीत के लिए पहुंचा प्रतिनिधिमंडल आंदोलन कर रहे मुख्य छात्र समूह का है जो देवेंद्र महतो के गुट से अलग है। प्रतिनिधिमंडल ने बैठक में शामिल होकर छात्रों का पक्ष रखा। बात खत्म होने के बाद छात्र नेता रविन्द्र पासवान ने कहा यह हमारी पहली मीटिंग थी जो बहुत सकारात्मक रही, भरोसा है सरकार, मुख्यमंत्री और सभी मंत्री हमारी मांगों पर विचार करेंगे।

0: आप लोगों की और क्या निर्णय लिया गया?
1: अभी बस लिया गया है और आगे का वार्ता भी चलेगा, आंदोलन
0: क्या कहा गया चलेगा। मंत्री ने क्या कहा आप लोगों की बात पर?
1: हम लोगों की बात को सकारात्मक लिया गया है और मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, उसका समाधान किया जाएगा।
0: ठीक,
1: सकारात्मक बात हुई है, हम लोग का डिमांड लिया गया है, डिमांड पे चर्चा भी आगे और भी चलेगा, अभी आंदोलन कंटिन्यू है।
2: हाँ, जारी रहेगा। दिस इज द फर्स्ट राउंड।
3: झारखंड आंदोलन को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल उठा वो ये कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके या फिर इनका कोई बड़ा नेता अब तक इस आंदोलन में शामिल क्यों नहीं हुआ। हालांकि आंदोलन के 14वें दिन जंतर मंतर पर अनशन करने वाली आईसा की अध्यक्ष नेहा बोरा नजर आईं और समर्थन देने की बात करती हैं। उन पर स्याही फेंकने की घटना भी हुई, तो इस आंदोलन में आगे क्या होने वाला है ये भी हम आपको बताएं। लेकिन आज सरकार से इनकी बातचीत हो चुकी है और दोनों पक्षों ने सकारात्मक बताया है।
4: रहे हैं, अनशन पर बैठे हैं, सरकार से अपनी मांगे बनवाने के लिए अड़े हुए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब परीक्षाओं को लेकर आंदोलन चल रहा है तो उसमें अभिजीत दीपके या फिर कॉकरोच जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता अब तक इस आंदोलन में शामिल क्यों नहीं हुआ। इस बीच महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में कॉकरोच जनता पार्टी की दो दिन बैठक भी होती है। सीजेपी अपनी आगे की पूरी रणनीति तय करती है, पूरी टीम के पद तय किए जाते हैं और सितंबर से क्या बोलती पब्लिक कैंपेन शुरू करने का ऐलान भी होता है। सवाल यही है कि सीजेपी के सारे बड़े चेहरे छत्रपति संभाजी नगर में दीपके के घर तो दिखते हैं, रांची के आंदोलन में क्यों नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी और उसके संस्थापक अभिजीत दीपके से लगातार सवाल हो रहे हैं कि सीजेपी के नेता रांची के छात्र आंदोलन में अब तक क्यों नहीं पहुँचे। हालांकि इस पर सीजेपी ने कहा कि उन्होंने बारिश में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के लिए रेनकोट भेजे हैं, छाते भेजे हैं, खाने का सामान भी भेजा है और पार्टी का नेतृत्व भी रांची जाएगा। सवाल यही है कब तक। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ भूख हड़ताल करने वाली आयसा अध्यक्ष नेहा बोरा रांची में छात्र आंदोलन के मंच पर जरूर पहुंची। नेहा बोरा ने मंच से इस आंदोलन के समर्थन का ऐलान भी किया। नेहा बोरा ने कहा कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराई जानी चाहिए और इसकी तारीख जल्द घोषित होनी चाहिए।
5: तो जो सब साथी भूख हड़ताल पर बैठे हैं स्टेडियम में, उनको बहुत बधाई। आपने ये जो संघर्ष किया हुआ है उस संघर्ष को पूरा देश देख रहा है और इस मंच से वो मांगे जो यहाँ पे भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की है, संघर्ष कर रहे छात्रों की है, उन मांगों को मैं अपनी सॉलिडारिटी और समर्थन यहाँ से देना चाहूंगी।
4: लेकिन रांची के छात्र आंदोलन के दौरान आयसा अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंकने का मामला भी सामने आया और इसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ। एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई। नेहा बोरा की उम्र अभी 29 साल है और वो अपनी बेबाक आवाज के लिए जानी जाती हैं। मूल रूप से नेहा बोरा उत्तराखंड के खटीमा से आती हैं। आपको बता दें कि रांची आंदोलन को लेकर सवाल राहुल गांधी पर भी उठ रहे थे। बीजेपी कह रही थी कि जंतर मंतर पर सीजेपी के आंदोलन पर बोलने वाले राहुल गांधी रांची के छात्र आंदोलन पर क्यों चुप हैं? तो राहुल गांधी ने 6 अगस्त को प्रदर्शनकारी छात्रों से फोन पर बात की। एक छात्र नेता रविंद्र पासवान ने बताया कि उनकी राहुल गांधी से बात हुई है। साथ ही राहुल गांधी ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने छात्रों के समर्थन की बात कही।
6: झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है, और अलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ओप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो।
4: लेकिन जैसे जैसे रांची आंदोलन के दिन बढ़ रहे हैं, छात्रों का सब्र टूट रहा है और अब अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत भी बिगड़ने लगी है। ये 40 साल के राहुल हैं, जो पिछले 4 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन उन्हें बहुत तेज बुखार हो गया। बाकायदा डॉक्टरों की टीम आई और इस अनशनकारी को यहाँ से ले जाकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
7: पर हूँ, 4 छात्र अनशन पर बैठे हुए थे बीते 4 दिनों से। इनमें 40 साल के राहुल, जिनको आप देख रहे हैं, इनकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई है और अब डॉक्टरों ने मेडिकल रिपोर्ट के बाद ये देख लिया है कि इनके वाइटल्स जो है काफी ज्यादा बिगड़ गए और इसलिए अब इनको जो है यहाँ से अस्पताल ले जा रहा है। डॉक्टर ने कहा इनको यहाँ बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। डॉक्टर क्या कह रहे हैं भैया, क्या कुछ बताया उन्होंने,
8: क्या बोले
7: डॉक्टर, क्या कह रहे हैं?
8: डॉक्टर ये बताया कि उसका तबीयत खराब है, उसको अभी सदर अस्पताल ले जाया जाएगा।
9: अभी एक ही लोग का देखा गया है, अभी इनका ठीक लग रहा है, बाकी लोग का देख रहे हैं।
7: उनको आप ले जा रहे हैं, किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हुई है?
9: उनका पल्स रेट काफी ज्यादा हाई मिल रहा है, जिसके वजह से उनका बीपी भी थोड़ा शूट टूट कर
7: यहाँ रखा जा सकता है बिल्कुल भी
9: अब? नहीं नहीं, अब इनको एडमिट ही करना पड़ेगा, अब इनको सदर में ही रेफर करना पड़ेगा।
4: डॉक्टरों की सलाह के बाद अनशनकारी राहुल को अस्पताल ले जाया गया। वो बेहोश हो गए थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा से बात की।
7: 4th दिन हो गया, स्वास्थ्य से बढ़कर तो आंदोलन नहीं है ना?
10: लेकिन झारखंड के नौजवानों का सौदा नहीं हो, ये मेरा संकल्प है, तो उसको तो हम अंतिम सांस तक।
7: मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि आपको बुखार काफी ज्यादा है, बहुत तेज हो चुका है, शरीर तप रहा है।
10: तप रहा है, लेकिन यहाँ डॉक्टर भी तो आते हैं, चेकअप करते हैं, दवा भी लिखते हैं, आप बोलते हैं कि 2 घंटा में दवा पहुंचा रहे हैं।
7: देखिए, जब एक अनशन खत्म हुआ तब आप लोगों ने समर्थन किया, आपको नहीं लगता 4 दिन हो चुका और हर युवा को अनशन की आदत नहीं होती, आपकी जगह कोई और जगह ले सकता है, आप लोग नहीं दबाव डालते, तबीयत इनकी बहुत ज्यादा खराब हो?
11: नहीं, हम लोग बिल्कुल, आज सभी जो कमेटी मेंबर्स हैं वो सीरियसली इस विषय को देख रहे हैं कि हमारे जो दोस्त हैं उनकी हालत ज्यादा नाजुक ना हो। हम लोग चाहेंगे कि इसका विकल्प के तौर पे हम लोग कुछ आगे की कार्रवाई करें, क्योंकि ये
7: इनका नाम राहुल है
11: जी।
7: कितने साल के हैं ये?
12: 40 साल।
7: 40। राहुल, आपने भी प्रतियोगी परीक्षाएं दी थी अपने समय में?
10: JPSC का लगातार परीक्षा लिखते हैं, पहले तो PT निकल जाता था, इस बार तो MRA लीक हो गया तो बिक गया, तो निकलना तो दूर की बात है। सहायक आचार्य का भी परीक्षा क्वालिफाई हूँ, सीट खाली है, फिर भी सरकार नियुक्ति नहीं दे रही है, टुकड़ों टुकड़ों में नियुक्ति देती है, जितना सीटों का सेटिंग होता है उतने ही को नियुक्ति देती है। जब विज्ञापन एक बार आया तो नियुक्ति उनको एक बार देना चाहिए था।
7: दरअसल झारखंड की पीड़ा ये है कि छात्र पेपर सेट करते हैं, लगाते हैं, तैयारियां करते हैं, लेकिन पीछे से सेटिंग हो जाती है, नौकरियां कोई और ले जाता है और उसी के साथ साथ उम्र सीमा भी खत्म हो जाती है। और जब सब्र का बांध टूटा है तो उन छात्रों को यहां आंदोलन पर ले आया। तबीयत बिगड़ रही है, नासाज हो रही है, डॉक्टर भी कह रहे हैं शरीर तप रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक हिम्मत, एक हौसला है, क्योंकि उन्हें लगता है ये लड़ाई सिर्फ अब उनके भविष्य की नहीं है, उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है।
4: इसी अनशन के मंच पर 2 छात्राएं भी हैं जो भूख हड़ताल पर हैं, 27 साल की हबीबा और 28 साल की सरिता। इन छात्रों की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनकी उम्र लगातार बढ़ती जा रही है, पिछले 8-10 सालों से ये परीक्षाएं देती हैं, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिलती, क्योंकि पता चलता है कि नौकरी बिक गई।
7: कितनी परीक्षाएं इस 27 साल की उम्र में हबीबा ने दे दी, प्रतियोगी परीक्षाएं?
13: जी, 2017 से लगातार मैं देती आई हूं, तो JSSC की भी, JPSC के भी, तो हो गए होंगे 15-20 प्लस तो हो ही गए होंगे।
7: कितनी परीक्षाओं में आप पास हुई, क्वालिफाई कर गए?
13: जी, मैंने पंचायत सचिव का एग्जाम दिया था, 2017 की वैकेंसी थी तो उसमें मैं पास हो गई थी। फिर उसमें सेकेंड एग्जाम था हिंदी टाइपिंग का, तो उसमें भी क्वालिफाई हुई। फिर DV भी हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, हुआ ऐसे भी तो डिले कर ही रही थी, तुरंत नहीं कर रही थी एग्जाम वगैरह, फिर 1 साल लगे, फिर 2 साल लगे उस एग्जाम को। उसके बाद जब उसका रिजल्ट देना था तो 5 साल तक प्रोटेस्ट करना पड़ा।
4: 28 साल की सरिता की कहानी तो बिल्कुल झकझोर कर रख देने वाली है। गरीब परिवार की सरिता ने अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर पढ़ाई की, होमगार्ड से लेकर JPSC तक की परीक्षा दे चुकी है, 2019 से परीक्षाएं दे रही हैं, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिल पाई। घर के हालात भी ठीक नहीं है।
14: तो मेरा उम्र भी निकलते जा रहा है, 28 साल होने जा रहा है, 28 में पार होने जा रहा है, 29 में पहुंच जाएंगे, 1 से 2 साल में मेरा एज भी खत्म होने को रहेगा, फिर हम तो कोई फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं यार। ये पढ़ाई के चक्कर में हम आगे कुछ और पढ़ाई नहीं किया, मेरा घर की स्थिति बहुत खराब था सर, इसीलिए हमको यही लगता था कि एगो जॉब ले ले, उसके बाद जो आगे के भविष्य होगा आगे देखा जाएगा।
7: आपने कितनी परीक्षाएं दी?
14: अभी तक सर हम 2019 से परीक्षा दे रहे हैं, 2019 हम तैयारी कर रहे हैं।
7: 7 साल हो गए?
14: 7 साल होने जा रहा है, आज तक एक रिजल्ट नहीं हो पाया।
4: पिछले 14 दिनों से रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि उनका ये प्रदर्शन कहीं व्यर्थ तो नहीं चला जाएगा, क्या सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बात बन पाएगी? आज तक ब्यूरो।
3: खबर यूपी की पॉलिटिक्स की, जहां जेनजी को लेकर पार्टियां अपनी रणनीति बदल रही हैं। धर्म और जाति की राजनीति के बीच अब हर पार्टी की नजर युवा वोट बैंक पर है, जो 2027 के चुनाव में एक महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है।
15: दिल्ली के जंतर मंतर से निकली जेनजी आंदोलन की इस चिंगारी ने सत्ता की रणनीति को नए सिरे से गढ़ने पर मजबूर कर दिया है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नई युवा नीति को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें 2027 से पहले जेनजी पर सरकार का फोकस है।
16: युवाओं को लेकर एक आयोग गठित होने वाला है, जिसमें 18 से 35 वर्ष के युवा, यानी कि आसान भाषा में कहें तो कुछ हद तक जेनजी से सलाह मशवरा लिया जाएगा युवाओं को लेकर बनाई जाने वाली नीतियों को लेकर। यानी कि योगी सरकार को ये मालूम पड़ गया है कि जेनजी एक बहुत बड़ा वोटर है और ऐसे में उन्हें साथ लेकर ही चलना होगा।
15: जेनजी वोट बैंक पर योगी सरकार के मिशन पर सियासत तेज हो गई है
17: और अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार एक युवा नीति लेकर के आ रही है। यह युवा नीति युवाओं के सपनों को साकार करने वाली होगी।
18: तो उत्तर प्रदेश का जो जेनजी है, जो जेन अल्फा है, जो मिलेनियम है, वो समझ रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ भी किसी चीज के अगर शिकार हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो आत्ममुग्धता के शिकार हैं। अगर आत्ममुग्धता के शिकार न होते तो अपने चेहरे चमकाने पर 3 करोड़ रुपए न खर्च करते, बल्कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को आप पेपर लीक की जगह अच्छी व्यवस्था, पारदर्शी और निष्पक्ष आपने कोई व्यवस्था दी होती।
15: उधर राहुल गांधी भी कल पेपर लीक के मुद्दे पर गूंज कार्यक्रम के तहत प्रयागराज में जेनजी छात्रों के साथ संवाद करने जा रहे हैं। प्रयागराज आ रहा हूँ, देश के उस शहर में जहाँ सबसे ज्यादा नौजवान तैयारी करते हैं। एक बात साफ है, यहाँ का हर छात्र जानता है कि सिस्टम बेईमान हो चुका है। आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं, कमी उस सिस्टम की नीयत में है जो आपकी मेहनत का दाम नहीं देती। ये सरकार झुकती है, बस आवाज एक साथ उठनी चाहिए। अखिलेश यादव की नजर भी जेनजी से लेकर जेन अल्फा तक है, जिनके मुद्दों पर वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया, 7,000 करोड़ का कॉस्मेटिक फेशियल करवाया। हम इतनी ही राशि में केजी से पीजी और रिसर्च तक की वर्ल्ड क्लास 2-3 यूनिवर्सिटी बनाकर बच्चों युवाओं का भविष्य सुधार कर दिखाएंगे, उत्तर प्रदेश को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर ले जाएंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ लगातार रैलियों में समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की याद दिला रहे हैं।
19: कुछ लोग जीवन भर बच्चे ही बने रहते हैं और बबुआ भी यही करते थे, 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और 7 बजे के बाद तो महफिल जम जाती थी, तब तो फिर देश और दुनिया से उनका संबंध ही समाप्त हो जाता था। तो प्रदेश के बारे में कहां से सोच उनके पास थे। इसी कारण दंगे होते थे, महीनों कर्फ्यू रहता था।
15: बहरहाल यूपी में भी सियासी रणनीति बदलती जा रही है, जहां सबकी नजरें जेनजी वोट बैंक पर है। आज तक ब्यूरो।
3: खबर संसद की, जहां सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। क्या कुछ शुक्रवार को संसद में हुआ, आइए हम आपको दिखाते हैं।
4: मॉनसून सत्र में संसद में जुबानी बिजलियां कड़क रही हैं, कार्यवाही ठप है और विपक्ष अमित शाह के पैलेट गन पर जवाब को लेकर अड़ा हुआ है।
20: लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, सदन में जिसका बिजनेस होता है वही मंत्री जवाब देता है। ऑपोजिशन तय नहीं करेगा कौन सा मंत्री को कब आना है, ये ऑपोजिशन पार्टी तय नहीं करते हैं। आप लोग नाराबाजी करके तुरंत चले जाते हैं पार्लियामेंट छोड़ के, लेकिन होम मिनिस्टर सुबह से लेकर देर रात तक पार्लियामेंट नहीं रहता है। सुन नहीं पाएगा।
0: ठीक है सर, यू सेड इफ एचएम विल कम टू द पार्लियामेंट द अपोजिशन विल नॉट एबल टू लिसन हिम।
21: बिगेस्ट जोक विच आई हर्ड टुडे इज दैट biggest joke in this parliament was Kiran Rijiju's statement.
22: इस बीच एनडीए में नई एंट्री लेने वाले सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। पीएम के साथ नाश्ते पर ये चर्चा खास है क्योंकि एनडीए परिवार के विस्तार के बाद इस मुलाकात के राजनीतिक मायने हैं। सांसदों से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने संसद न चलने पर चिंता जाहिर की और सांसदों को भरोसा दिया कि अगर विकास योजनाओं में कोई अड़चन आए तो सीधे पीएमओ से संपर्क करें।
23: It was a very, very big honor that she has invited us. And उन्होंने ये भी कहा कि एक्चुअली सदन नहीं चल रहे तो उनको भी बहुत खराब लग रहा है तो, बट वो चाहते हैं कि जल्दी से सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। ऐसे ही कहा कि देखिए हम तो देश के लिए काम करते हैं और हमारे साथ जो जो है हमारे ग्रुप के जो है हम आपके साथ है, यही सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ये कहा है कि जैसे हम सोचते हैं आप उसी सोच पे विश्वास रखिए और उस हिसाब से आगे बढ़ते चलिए।
20: बहुत अच्छा चर्चा हुआ है
24: जी,
20: वेरी गुड।
24: किन मुद्दों पे चर्चा हुई सर?
20: हर हर ये डेवलपमेंट के बारे में।
24: कई सारे आपके साथी हैं जो मुस्लिम समुदाय से हैं, वो भी मौजूद थे मीटिंग में?
20: थे, मीटिंग में मौजूद थे, वो लोग भी सपोर्ट किया।
24: क्या स्पीकर का इशू भी चला इस पे मस्जिदों को लेके जो इशू?
20: नो।
24: ओके सर, आखिरी सवाल सर, FCRA पे क्या रुख रहेगा आप लोगों का सर?
20: हम लोग मदद करेंगे।
22: पीएम मोदी ने उद्धव गुट से शिंदे गुट में शामिल हुए शिवसेना के सांसदों के साथ अलग से बातचीत की। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग से मुलाकात करने पहुंचे। विदेशी फंडिंग पर रेगुलेशन का नया FCRA बिल सरकार की बड़ी चुनौतियों में से एक है। वहीं हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित है। आज तक ब्यूरो।
3: पंजाब चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरण तैयार किए जा रहे हैं। कांग्रेस के सामने चुनौती अंदरूनी कलह की है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुखबीर सिंह बादल की मुलाकात ने पंजाब में पुराने गठबंधन को फिर से साथ आने की हटकलों को हवा दी है।
15: पंजाब कांग्रेस में चरणजीत सिंह चन्नी और राजा वेडिंग के घमासान के बीच राहुल गांधी ने कैप्टन अमरिंदर को अपना पसंदीदा नेता बताया है।
25: कैप्टन अमरिंदर सिंह डेफिनेटली आई गेट अलोंग विद हिम, ही इज कूल एंड ही इज एन एक्सपर्ट ऑन मिलिट्री हिस्ट्री, सो आई लाइक हिम क्वाइट अ लॉट। हेलो अंकल अमरिंदर।
15: राहुल के बयान के बाद पंजाब कांग्रेस के नेताओं के सुर बदले हुए हैं तो वहीं आम आदमी पार्टी अमरिंदर के कांग्रेस में वापस जाने की आशंका जताई जा रही है।
26: अगर वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपना फेवरेट लीडर मानते हैं, जो सबसे लेजी ऑफिसर्स लेजी जो पॉलिटिशियन है उनमें से जाना जाता है और उन पॉलिटिशियंस में जाना जाता है जो कि किसी भी समय किसी भी जगह पे पलटी मार सकता है, अगर राहुल जी का वो आइडियल है तो फिर राहुल जी की सियासत क्या होगी?
27: अच्छे इंसान है, अच्छी चीजें भी है यार, किसको मेरा ख्याल है हर देखो जो आदमी दो बार चीफ मिनिस्टर रह गया उसमें कोई चीजें तो ऐसी है जो सीखने लायक है।
28: तो अच्छी बात है, हर लीडर की अपनी चॉइसेस होती हैं और मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी की फ्राक दिली है। उन्होंने ये बोला है कि किसी ने पूछा कि बीजेपी में आपका फेवरेट लीडर कौन है तो बोला कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, ही इज माई अंकल एंड दैट ही इज द मिलिट्री हिस्टोरियन, उनके साथ उन्होंने काफी साल काम किया, वो अलग बात है अलग पार्टी। लेकिन इसमें आप देखेंगे राहुल गांधी की फराक दिली है जो ऑपोजिशन के लीडर्स को भी अप्रिशिएट करते हैं।
15: उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल से मुलाकात हुई। हालांकि अकाली दल की ओर से साफ किया गया कि ये मुलाकात पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है। वहीं बीजेपी भी कह रही है कि वो पंजाब में किसी से गठबंधन करने नहीं जा रही।
27: तो प्रधानमंत्री साहब नु कोई भी मिल सकता है, तो मैंने उम्मीद है कि सुखबीर सिंह बादल पंजाब के भले लिए कोई चंगी गल करके क्लियर करना चाहना कि साडे वालों भारतीय जनता पार्टी पंजाब वालों 117 सीटा की तैयारी है, 117 सीटा तो असि कल्ले लड़ांगे।
15: इस बीच मान सरकार के खिलाफ सरकारी नौकरी को लेकर आज जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस के साथ कई संगठनों ने मोर्चा संभाला और मान सरकार को घेरने की कोशिश की।
29: ये देखिए ये वाटर कैनन चला, आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब दोबारा वाटर कैनन चला है और आपको बता दें यहाँ पे तिथर बितर करने की पूरी कोशिश, ये आप देखिएगा ये लगातार हम आपको अपने कैमरे में दिखा रहे हैं कि किस तरह से सड़कों पे उतरे हुए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, लेकिन इनका हौसला कम नहीं हो रहा है, अपने मांगों को लेके अडंग है, अड़े हुए हैं और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से चंडीगढ़ पुलिस ने इनको बैरिकेड लगा के यहीं पे रोकने की कोशिश और उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल, लेकिन क्या ये खामियाजा भुगतना पड़ सकता है सरकार को इलेक्शन में, ये बड़ी बात है। और इसी वजह से जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो भी पंजाब गवर्नमेंट का पूरा साथ दे रही हैं।
15: बहरहाल पंजाब में चुनाव से पहले के समीकरण का खेल जारी है, जहां हर पार्टी ने पूरा जोर लगा रखा है। कमलजीत संधू के साथ असीम बस्सी, चंडीगढ़ आज तक।
3: दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश ने मुश्किलें लोगों की बढ़ा दी, सड़कों पर पानी भर गया, ट्रैफिक जाम हो गया। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया, 10 अगस्त तक बारिश का अनुमान है। दिल्ली के साथ नोएडा, गुरुग्राम में भी तेज बारिश के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली एनसीआर में बारिश आफत लेकर आई, सलाह दी गई है बहुत जरूरी न हो तो घर से बाहर न निकलें।

0: सुबह से दिल्ली एनसीआर में सावन ऐसे झूम कर आया कि दिन ढल गया, रात हो गई, लेकिन मूसलाधार बारिश मुसलसल होती रही। लोग सड़कों पर परेशान दिखे, ट्रैफिक से जूझते दिखे, गाड़ियां खराब होती दिखी, सड़कों पर जल भराव दिखा। बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है और 10 अगस्त तक ऐसे ही कभी हल्की तो कभी तेज बारिश होते रहने की संभावना है। पहले बारिश में हिचकोले खाती दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें एमबी रोड की हैं।
1: राजधानी दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बीच काफी जलभराव हो रहा है। अभी हम दिल्ली के एमबी रोड पर हैं, जहां पर आप देखेंगे जलभराव किस तरीके से हुआ है और किस तरीके से बस को निकालने का प्रयास किया जा रहा है।
2: कितना फीट तक पानी भर गया है यहाँ पर?
3: ये मैं ईमानदारी से बताऊं, मेरी आप देख सकते हैं घुटने से ऊपर और कमर से हल्का सा नीचे पानी है।
2: सर ये 4 फीट लमसम होगा पानी, ठीक है, और जिस तरीके से आप आगे की तरफ जाएंगे ना, आगे की तरफ और देखेंगे तो और भी पानी जिस तरीके से लबालब भरा हुआ है, ठीक है, ये बहुत संकेत है।
1: महिला आ रही है, स्कूल के टीचर है आप?
3: हाँ जी।
1: कहाँ से आ रही है?
3: बाल निकेतन संगम बिहार।
1: तो अब कितना पानी बस उस नहीं मिला?
3: बस नहीं, वो तो हमारी स्कूल की कार थी तो उससे हम आए
1: तो फिर
3: पीछे कार के अंदर इतना पानी।
1: आप देख सकते हैं ये आर्मी मैन है और इनकी भी गाड़ी बुलेट से जा रहे हैं, इनकी फंस गई है।
2: आपकी भी बंद हो गई?
4: हाँ कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट कर लेंगे।
1: आप देख सकते हैं यही स्थिति हो रही है और दरिया जैसा स्थिति यहाँ पर एमबी रोड पर बनता हुआ नजर आ रहा है।
0: आपको बता दें कि एमबी रोड पर ओखला मोड़, संगम बिहार, कानपुर और देवली में जल भराव हुआ है, जिसके कारण एमबी रोड का यातायात खानपुर से ओखला मोड़ के बीच प्रभावित हुआ और लोग परेशान होते रहे। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में 7 अगस्त को 59.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो इस साल अगस्त महीने का अब तक का सबसे बरसाती दिन रहा है, जबकि दिल्ली के छतरपुर में 104.5 मिलीमीटर बारिश, पुष्प विहार में 111.5 मिलीमीटर बारिश, पालम में 73.5 मिलीमीटर बारिश और आया नगर में 87.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और बारिश में दरिया बनती दिल्ली की तस्वीरें वसंत कुंज से भी आई हैं। देखिए वसंत कुंज का हाल।
5: दूर देखिए बच्चे, वहाँ जो स्कूली बच्चे हैं वो आ रहे हैं और देखिए उन वो पानी में कैसे खेलते हुए आ रहे हैं। लेकिन ये स्कूल का टाइम है, स्कूल से छुट्टी हुई है और बच्चे देखिए यहाँ पर सड़क पे या फुटपाथ हो हर तरफ पानी ही पानी है। बेहद अहम मार्ग है, मैं फिर से बता दूं, वसंत कुंज का ये रोड है जो एयरपोर्ट को जोड़ता है, इसके आसपास कई सारे स्कूल हैं और यहाँ पर जलजमाव की स्थिति बनी है। दिल्ली वालों की ये आफत बन के निकला है ये मानसून की ये बरसात।
0: बारिश की वजह से मेहरोली बदरपुर रोड, ITO वजीराबाद रोड, पटेल रोड, रोहतक रोड, शंकर रोड, कीर्ति नगर, दिल्ली जयपुर हाईवे, पीरागढ़ी और शाहीन बाग जैसे इलाकों में भारी ट्रैफिक देखा गया। हालांकि इस बारिश से दिल्ली के तापमान में भी गिरावट आई है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी सुबह से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ दिन भर चलता रहा। बारिश होने से कई जगहों पर भारी जल भराव हो गया है, जिस वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं झमाझम बारिश के बीच नोएडा सेक्टर 95 स्थित अंडरपास में जल भराव हो गया, जिसमें एक एम्बुलेंस फंस गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे बंद पड़ी एम्बुलेंस को ड्राइवर ने धक्का मारकर निकालने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। गनीमत ये रही कि एम्बुलेंस में कोई मरीज नहीं था। और बारिश से गुरुग्राम की दुर्गति भी देख लीजिए। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर पानी भरा है और पानी में गड्ढे हैं। ये देखिए कैसे एक ऑटो पानी में हिचकोले खाते हुए चल रहा है। बारिश इतनी तेज हुई कि पहले सड़कें लबालब हुई और फिर पानी गुरुग्राम के सिविल अस्पताल के अंदर भी घुसपैठ कर गया। और गुरुग्राम की पुलिस लाइन की ये तस्वीरें भी देखिए, कैसे बारिश के पानी में बच्चे तैराकी कर रहे हैं। और जैसा कि हर बारिश में गुरुग्राम में ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है, ठीक वैसा ही नजारा आज भी दिखा। गुरुग्राम में पिछले कुछ घंटों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। भारी जलभराव और यातायात जाम को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने कंपनियों को कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की सलाह भी दी है। दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
6: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: रांची में चार मंत्रियों और छात्र प्रतिनिधि मंडल में पहले दौर की वार्ता खत्म। मुलाकात के बाद दोनों पक्षों ने कहा बातचीत सकारात्मक, लेकिन प्रदर्शन जारी। संसद में गतिरोध के बीच सोमवार तक स्थगित दोनों सदन। रिजिजू ने विपक्ष पर जड़ा आरोप, कांग्रेस ने 10, 11, 12 के लिए सांसदों को व्हिप जारी किया। एथेनॉल पर राहुल ने सरकार को घेरा, कहा दाल में काला नहीं पूरी दाल ही काली। हरदीप सिंह पुरी बोले कुछ लोग खड़ा कर रहे हैं विवाद। सीएम योगी ने अखिलेश को घेरा, कहा एसपी सरकार में लूटने निकल जाती थी चाचा भतीजे की जोड़ी, विधानसभा नहीं चलने दी इन्होंने। लगातार बारिश से दिल्ली एनसीआर में जगह जगह पानी भरा, लंबा लंबा जाम, लोगों को घर से निकलना मुश्किल हुआ, 9 घर गिरे। आज फिर मौसम विभाग का भारी बारिश का अलर्ट। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों की राज्य सरकार के साथ पहले दौर की मीटिंग खत्म हो गई। हेमंत सोरेन सरकार ने चार मंत्रियों का एक पैनल बनाया था जिसने 10 छात्रों के डेलीगेशन से बात की। स्टेट गेस्ट हाउस में बातचीत के लिए पहुंचा प्रतिनिधिमंडल आंदोलन कर रहे मुख्य छात्र समूह का है जो देवेंद्र महतो के गुट से अलग है। प्रतिनिधिमंडल ने बैठक में शामिल होकर छात्रों का पक्ष रखा। बात खत्म होने के बाद छात्र नेता रविन्द्र पासवान ने कहा यह हमारी पहली मीटिंग थी जो बहुत सकारात्मक रही, भरोसा है सरकार मुख्यमंत्री और सभी मंत्री हमारी मांगों पर विचार करेंगे।
1: ये आप लोगों की और क्या निर्णय लिया गया?
2: अभी बस लिया गया है और आगे का वार्ता भी चलेगा, आंदोलन कंटिन्यू।
1: क्या कहा गया? चलेगा। मंत्री ने क्या कहा आप लोगों की बात पर?
2: हम लोगों की बात को सकारात्मक लिया गया है और मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, उसका समाधान किया जाएगा।
1: ठीक,
2: सकारात्मक बात हुई है, हम लोग का डिमांड लिया गया है, डिमांड पे चर्चा भी आगे और भी चलेगा, अभी आंदोलन कंटिन्यू है।
3: हाँ, जारी रहेगा। दिस इज द फर्स्ट राउंड।
0: झारखंड आंदोलन को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल उठा वो ये कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके या फिर इनका कोई बड़ा नेता अब तक इस आंदोलन में शामिल क्यों नहीं हुआ। हालांकि आंदोलन के 14वें दिन जंतर मंतर पर अनशन करने वाली आईसा की अध्यक्ष नेहा बोरा नजर आईं और समर्थन देने की बात करती हैं। उन पर स्याही फेंकने की घटना भी हुई, तो इस आंदोलन में आगे क्या होने वाला है ये भी हम आपको बताएं। लेकिन आज सरकार से इनकी बातचीत हो चुकी है और दोनों पक्षों ने सकारात्मक बताया है।
4: जब रांची में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हैं, सरकार से अपनी मांगे बनवाने के लिए अड़े हुए हैं, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब परीक्षाओं को लेकर आंदोलन चल रहा है तो उसमें अभिजीत दीपके या फिर कॉकरोच जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता अब तक इस आंदोलन में शामिल क्यों नहीं हुआ। इस बीच महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में कॉकरोच जनता पार्टी की 2 दिन बैठक भी होती है। सीजेपी अपनी आगे की पूरी रणनीति तय करती है, पूरी टीम के पद तय किए जाते हैं और सितंबर से क्या बोलती पब्लिक कैंपेन शुरू करने का ऐलान भी होता है। सवाल यही है कि सीजेपी के सारे बड़े चेहरे छत्रपति संभाजी नगर में दीपके के घर तो दिखते हैं, रांची के आंदोलन में क्यों नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी और उसके संस्थापक अभिजीत दीपके से लगातार सवाल हो रहे हैं कि सीजेपी के नेता रांची के छात्र आंदोलन में अब तक क्यों नहीं पहुंचे। हालांकि इस पर सीजेपी ने कहा कि उन्होंने बारिश में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के लिए रेनकोट भेजे हैं, छाते भेजे हैं, खाने का सामान भी भेजा है और पार्टी का नेतृत्व भी रांची जाएगा। सवाल यही है कब तक। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ भूख हड़ताल करने वाली आयसा अध्यक्ष नेहा बोरा रांची में छात्र आंदोलन के मंच पर जरूर पहुंची। नेहा बोरा ने मंच से इस आंदोलन के समर्थन का ऐलान भी किया। नेहा बोरा ने कहा कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराई जानी चाहिए और इसकी तारीख जल्द घोषित होनी चाहिए।
5: देश भर में जो छात्र आपको देख रहे हैं, आपसे बहुत बहुत प्रेरणा ले रहे हैं, जो तमाम साथी भूख हड़ताल पे बैठे हैं, साथियों को चौथा महीना पांचवा दिन है, मैं खुद भूख हड़ताल पे बैठी हूँ। मुझे समझ आ रहा है कि किस तरीके का कष्ट शरीर में महसूस होता है जब साथी भूख हड़ताल पे बैठते हैं। तो जो सब साथी भूख हड़ताल पे बैठे हैं स्टेडियम में, उनको बहुत बधाई। आपने ये जो संघर्ष किया हुआ है उस संघर्ष को पूरा देश देख रहा है, और इस मन से वो मांगे जो यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे छात्रों की है, संघर्ष कर रहे छात्रों की है, उन मांगों को मैं अपनी सॉलिडारिटी और समर्थन यहाँ से देना चाहूंगी।
4: लेकिन रांची के छात्र आंदोलन के दौरान ऐसा अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंकने का मामला भी सामने आया और इसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ। एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई। नेहा बोरा की उम्र अभी 29 साल है और वो अपनी बेबाक आवाज के लिए जानी जाती है। मूल रूप से नेहा बोरा उत्तराखंड के खटीमा से आती है। आपको बता दें कि रांची आंदोलन को लेकर सवाल राहुल गांधी पर भी उठ रहे थे। बीजेपी कह रही थी कि जंतर मंतर पर सीजेपी के आंदोलन पर बोलने वाले राहुल गांधी रांची के छात्र आंदोलन पर क्यों चुप हैं? तो राहुल गांधी ने 6 अगस्त को प्रदर्शनकारी छात्रों से फोन पर बात की। एक छात्र नेता रविंद्र पासवान ने बताया कि उनकी राहुल गांधी से बात हुई है। साथ ही राहुल गांधी ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने छात्रों के समर्थन की बात कही।
6: झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है, और अलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ओप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो।
4: लेकिन जैसे जैसे रांची आंदोलन के दिन बढ़ रहे हैं छात्रों का सब्र टूट रहा है और अब अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत भी बिगड़ने लगी है। ये 40 साल के राहुल हैं जो पिछले 4 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन उन्हें बहुत तेज बुखार हो गया। बाकायदा डॉक्टरों की टीम आई और इस अनशनकारी को यहां से ले जाकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
7: यहां पर हूं, 4 छात्र अनशन पर बैठे हुए थे बीते 4 दिनों से। इनमें 40 साल के राहुल जिनको आप देख रहे हैं, इनकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई है और अब डॉक्टरों ने मेडिकल रिपोर्ट के बाद ये देख लिया है कि इनके वाइटल्स जो है काफी ज्यादा बिगड़ गए और इसलिए अब इनको जो है यहां से अस्पताल ले जा रहे हैं। डॉक्टर ने कहा इनको यहां बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। डॉक्टर क्या कह रहे हैं भैया, क्या कुछ बताया उन्होंने,
8: क्या बोले
7: डॉक्टर, क्या कह रहे हैं?
8: डॉक्टर ये बताया कि उसका तबीयत खराब है, उसको अभी सदर अस्पताल ले जाया जाएगा।
9: अभी एक ही लोग का देखा गया है, अभी इंतन ठीक लग रहा है, बाकी लोग का देख रहे हैं।
7: उनको आप ले जा रहे हैं, किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हुई है?
9: उनका पल्स रेट काफी ज्यादा हाई मिल रहा है जिसके वजह से उनका बीपी भी थोड़ा शूट टूट कर
7: यहाँ रखा जा सकता है बिल्कुल भी
9: अब? नहीं नहीं, अब इनको एडमिट ही करना पड़ेगा, अब इनको सदर में ही रेफर करना पड़ेगा।
4: डॉक्टरों की सलाह के बाद अनशनकारी राहुल को अस्पताल ले जाया गया। वो बेहोश हो गए थे लेकिन उससे पहले उन्होंने आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा से बात की।
7: चौथा दिन हो गया, स्वास्थ्य से बढ़कर तो आंदोलन नहीं है ना?
10: लेकिन झारखंड के नौजवानों का सौदा नहीं हो, ये मेरा संकल्प है, तो उसको तो हम अंतिम सांस तक।
7: मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि आपको बुखार काफी ज्यादा है, बहुत तेज हो चुका है, शरीर तप रहा है।
10: तप रहा है लेकिन यहाँ डॉक्टर भी तो आते हैं, चेकअप करते हैं, दवा भी लिखते हैं, आप बोलते हैं कि 2 घंटा में दवा पहुंचा रहे हैं।
7: देखिए, जब एक अनशन खत्म हुआ तब आप लोगों ने समर्थन किया, आपको नहीं लगता 4 दिन हो चुका और हर युवा को अनशन की आदत नहीं होती, आपकी जगह कोई और जगह ले सकता है, आप लोग नहीं दबाव डालते, तबीयत इनकी बहुत ज्यादा खराब हो?
11: नहीं, हम लोग बिल्कुल आज सभी जो कमेटी मेंबर्स हैं वो सीरियसली इस विषय को देख रहे हैं कि हमारे जो दोस्त हैं उनकी हालत ज्यादा नाजुक ना हो। हम लोग चाहेंगे कि इसका विकल्प के तौर पे हम लोग कुछ आगे की कार्रवाई करें, क्योंकि ये
7: इनका नाम राहुल है
11: जी।
7: कितने साल के हैं ये?
12: 40 साल हो गए।
7: 40 राहुल, आपने भी प्रतियोगी परीक्षाएं दी थी अपने समय में?
10: JPSC का लगातार परीक्षा लिखते हैं, पहले तो PT निकल जाता था, इस बार तो वो MRA लीक हो गया तो बिक गया, तो निकलना तो दूर की बात है। सहायक आचार्य का भी परीक्षा क्वालिफाई हूँ, सीट खाली है फिर भी सरकार नियुक्ति नहीं दे रही है। टुकड़ों टुकड़ों में नियुक्ति देती है, जितना सीटों का सेटिंग होता है उतने ही को नियुक्ति देती है। जब विज्ञापन एक बार आया तो नियुक्ति उनको एक बार देना चाहिए था।
7: दरअसल झारखंड की पीड़ा ये है कि छात्र पेपर सेट करते हैं, लगाते हैं, तैयारियां करते हैं, लेकिन पीछे से सेटिंग हो जाती है, नौकरियां कोई और ले जाता है और उसी के साथ साथ उम्र सीमा भी खत्म हो जाती है। और जब सब्र का बांध टूटा है तो उन छात्रों को यहां आंदोलन पर ले आया। तबीयत बिगड़ रही है, नासाज हो रही है, डॉक्टर भी कह रहे हैं शरीर तप रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक हिम्मत, एक हौसला है, क्योंकि उन्हें लगता है ये लड़ाई सिर्फ अब उनके भविष्य की नहीं है, उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है।
4: इसी अनशन के मंच पर दो छात्राएं भी हैं जो भूख हड़ताल पर हैं। 27 साल की हबीबा और 28 साल की सरिता। इन छात्रों की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनकी उम्र लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 8-10 सालों से ये परीक्षाएं देती हैं, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिलती, क्योंकि पता चलता है कि नौकरी बिक गई।
7: कितनी परीक्षाएं इस 27 साल की उम्र में हबीबा ने दे दी, प्रतियोगी परीक्षाएं?
13: जी, 2017 से लगातार मैं देती आई हूं, तो जेएसएससी की भी, जेपीएससी के भी, तो हो गए होंगे 15-20, इतने प्लस तो हो ही गए होंगे।
7: कितनी परीक्षाओं में आप पास हुई, क्वालिफाई कर गए?
13: जी, मैंने पंचायत सचिव का एग्जाम दिया था, 2017 की वैकेंसी थी, तो उसमें मैं पास हो गई थी। फिर उसमें सेकेंड एग्जाम था हिंदी टाइपिंग का, तो उसमें भी क्वालिफाई हुई। फिर डीवी भी हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हुआ। ऐसे भी तो डिले कर ही रही थी, तुरंत नहीं कर रही थी एग्जाम वगैरह। फिर एक साल लगे, फिर दो साल लगे उस एग्जाम को। उसके बाद जब उसका रिजल्ट देना था तो 5 साल तक प्रोटेस्ट करना पड़ा।
4: 28 साल की सरिता की कहानी तो बिल्कुल झकझोर कर रख देने वाली है। गरीब परिवार की सरिता ने अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर पढ़ाई की। होमगार्ड से लेकर जेपीएससी तक की परीक्षा

0: रही हैं, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिल पाई। घर के हालात भी ठीक नहीं हैं।
1: तो मेरा उम्र भी निकलते जा रहा है, 28 साल होने जा रहा है, 28 में पार होने जा रहा है, 29 में पहुंच जाएंगे, 1 से 2 साल में मेरा एज भी खत्म होने को रहेगा। फिर हम तो कोई फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं यार, पढ़ाई के चक्कर में हम आगे कुछ और पढ़ाई नहीं किया। मेरा घर की स्थिति बहुत खराब था सर, इसीलिए हमको यही लगता था कि एक जॉब ले ले, उसके बाद जो आगे के भविष्य होगा आगे देखा जाएगा।
2: आपने कितनी परीक्षाएं दी
1: अभी तक सर? हम 2019 से परीक्षा दे रहे हैं, 2019 हम तैयारी कर रहे हैं।
2: 7 साल हो गए,
1: 7 साल होने जा रहा है, आज तक एक रिजल्ट नहीं हो पाया।
0: पिछले 14 दिनों से रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि उनका ये प्रदर्शन कहीं व्यर्थ तो नहीं चला जाएगा। क्या सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बात बन पाएगी? आज तक ब्यूरो।
3: खबर यूपी की पॉलिटिक्स की, जहां जेनजी को लेकर पार्टियां अपनी रणनीति बदल रही हैं। धर्म और जाति की राजनीति के बीच अब हर पार्टी की नजर युवा वोट बैंक पर है, जो 2027 के चुनाव में एक महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है।
4: दिल्ली के जंतर मंतर से निकली जेनजी आंदोलन की इस चिंगारी ने सत्ता की रणनीति को नए सिरे से गढ़ने पर मजबूर कर दिया है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नई युवा नीति को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें 2027 से पहले जेनजी पर सरकार का फोकस है।
5: युवाओं को लेकर एक आयोग गठित होने वाला है, जिसमें 18 से 35 वर्ष के युवा, यानी कि आसान भाषा में कहें तो कुछ हद तक जेनजी से सलाह मशवरा लिया जाएगा युवाओं को लेकर बनाई जाने वाली नीतियों को लेकर। यानी कि योगी सरकार को ये मालूम पड़ गया है कि जेनजी एक बहुत बड़ा वोटर है और ऐसे में उन्हें साथ लेकर ही चलना होगा।
4: जेनजी वोट बैंक पर योगी सरकार के मिशन पर सियासत तेज हो गई है।
6: और अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार एक युवा नीति लेकर के आ रही है। यह युवा नीति युवाओं के सपनों को साकार करने वाली होगी।
7: तो उत्तर प्रदेश का जो जेनजी है, जो जेन अल्फा है, जो मिलेनियम है, वो समझ रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ भी किसी चीज के अगर शिकार हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो आत्ममुग्धता के शिकार हैं। अगर आत्ममुग्धता के शिकार न होते तो अपने चेहरे चमकाने पर 3 करोड़ रुपए न खर्च करते, बल्कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को आप पेपर लीक की जगह अच्छी व्यवस्था, पारदर्शी और निष्पक्ष आपने कोई व्यवस्था दी होती।
4: उधर राहुल गांधी भी कल पेपर लीक के मुद्दे पर गूंज कार्यक्रम के तहत प्रयागराज में जेनजी छात्रों के साथ संवाद करने जा रहे हैं। प्रयागराज आ रहा हूँ, देश के उस शहर में जहाँ सबसे ज्यादा नौजवान तैयारी करते हैं। एक बात साफ है, यहाँ का हर छात्र जानता है कि सिस्टम बेईमान हो चुका है। आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं, कमी उस सिस्टम की नीयत में है जो आपकी मेहनत का दाम नहीं देती। ये सरकार झुकती है, बस आवाज एक साथ उठनी चाहिए। अखिलेश यादव की नजर भी जेनजी से लेकर जेन अल्फा तक है, जिनके मुद्दों पर वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया, 7,000 करोड़ का कॉस्मेटिक फेशियल करवाया। हम इतनी ही राशि में केजी से पीजी और रिसर्च तक की वर्ल्ड क्लास 2-3 यूनिवर्सिटी बनाकर बच्चों युवाओं का भविष्य सुधार कर दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर ले जाएंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ लगातार रैलियों में समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की याद दिला रहे हैं।
8: कुछ लोग जीवन भर बच्चे ही बने रहते हैं और बबुआ भी यही करते थे, 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और 7 बजे के बाद तो महफिल जम जाती थी, तब तो फिर देश और दुनिया से उनका संबंध ही समाप्त हो जाता था। तो प्रदेश के बारे में कहां से सोच उनके पास थे। इसी कारण दंगे होते थे, महीनों कर्फ्यू रहता था।
4: बहरहाल यूपी में भी सियासी रणनीति बदलती जा रही है, जहां सबकी नजरें जेनजी वोट बैंक पर है। आज तक ब्यूरो।
3: संघ प्रमुख मोहन भागवत भी जेनजी के साथ संवाद कर रहे थे। नई युवा पीढ़ी की जमकर तारीफ उन्होंने की, जिसे लेकर अब राजनीति हो रही है।
4: जेनजी आंदोलन के बाद जब संघ प्रमुख मोहन भागवत जेनजी के संवाद कार्यक्रम में पहुंचे, तो उन्होंने जेनजी की जमकर तारीफ की, प्रदर्शन को संवाद से निपटाने की नसीहत दी, तो वहीं जेनजी की देशभक्ति पर सवाल करने वालों को कटघरे में खड़ा किया।
9: मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेनजी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है।
10: अरे वाह, बढ़िया है।
9: और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है।
4: मोहन भागवत के बयान विपक्ष को रास नहीं आ रहे।
11: for the first time they have interacted with them.
12: They don't need a certificate from Mohan Bhagwat.

0: समर्थन तो किया है, लेकिन उन्हीं के अनुयायियों ने तो जैन जी को देशद्रोही कहा है
1: जी।
0: उन्हीं के अनुयायियों ने तो खालिस्तानी से लेकर पाकिस्तानी तक तमाम हमारे बच्चों के जो इनोसेंट बच्चे हैं, शायद जिन्होंने घर स्कूल के अलावा कभी कुछ देखा भी नहीं था, ऐसे बच्चों को बदनाम किसने किया। सदे नेताजी कहते थे ये बीजेपी आरएसएस के कई मुंह होते हैं, जब देखते हैं कि समाज में विरोध हो रहा है तो उन्हीं में से एक सकारात्मक बयान देने लगता है।
2: जंतर मंतर में प्रदर्शन करने वाले जेंजी पर सवाल खड़े करने वाली कंगना रनौत भी प्रदर्शनकारियों और जेंजी में फर्क बता रही हैं।
3: जेंजी जो है सरकार का हिस्सा है, उन्हीं का तो मैंडेट है, जो हमारी सरकार जो है इतने सालों से जो है तो जेंजी का ही मैंडेट है। और जेंजी जो है हमारी बहुत बड़ी, ऐसा नहीं है जो प्रोटेस्ट पे 10-15 जो है गालियां देने वाले ही जेंजी है, ये कुछ ही हाथ, जैसे मैं कहती हूँ कुछ हैंडफुल ऑफ पीपल है जो जेंजी का नाम खराब कर रहे हैं। जेंजी जो है हमारी सबसे बड़ी ताकत है और हमें गर्व है अपनी जेंजी।
2: हर दल किसी न किसी तरह से जेंजी से मिलने जुलने, उन्हें प्रभावित करने की कोशिश में जुटा है, चाहे वो पीएम मोदी के इंस्टा रील्स हों या राहुल गांधी के इंस्टा क्वेश्चन आंसर सेशन, चाहे वो मोहन भागवत का जेंजी कनेक्ट हो या राहुल गांधी के गूंज कार्यक्रम। हर दल को लगता है कि जेंजी से कनेक्ट रहे बिना देश की सियासत में मौजूद नहीं रहा जा सकता। आज तक विरोध
4: खबर संसद की, जहां सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। क्या कुछ शुक्रवार को संसद में हुआ, आइए हम आपको दिखाते हैं।
5: मॉनसून सत्र में संसद में जुबानी बिजलियां कड़क रही हैं, कार्यवाही ठप है और विपक्ष अमित शाह के पैलेट गन पर जवाब को लेकर अड़ा हुआ है।
6: लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, सदन में जिसका बिजनेस होता है वही मंत्री जवाब देता है। ऑपोजिशन तय नहीं करेगा कौन सा मंत्री को कब आना है, ये ऑपोजिशन पार्टी तय नहीं करते हैं। आप लोग नाराबाजी करके तुरंत चले जाते हैं पार्लियामेंट छोड़ के, लेकिन होम मिनिस्टर सुबह से लेकर देर रात तक पार्लियामेंट में नहीं रहता है, देश का संचालन करता है, और जब होम मिनिस्टर जवाब देगा आप लोग सुन नहीं पाएगा।
7: ठीक है सर, यू सेड इफ एचएम विल कम टू द पार्लियामेंट द अपोजिशन विल नॉट एबल टू लिसन हिम।
8: बिगेस्ट जोक विच आई हर्ड टुडे इज दैट biggest joke in this parliament was Kiran Rijiju's statement।
5: इस बीच एनडीए में नई एंट्री लेने वाले सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। पीएम के साथ नाश्ते पर यह चर्चा खास है क्योंकि एनडीए परिवार के विस्तार के बाद इस मुलाकात के राजनीतिक मायने हैं। सांसदों से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने संसद न चलने पर चिंता जाहिर की और सांसदों को भरोसा दिया कि अगर विकास योजनाओं में कोई अड़चन आए तो सीधे पीएमओ से संपर्क करें।
9: It was a very, very big honor that he has invited us. And उन्होंने ये भी कहा कि actually सदन नहीं चल रहे तो उनको भी बहुत खराब लग रहा है, तो बट वो चाहते हैं कि जल्दी से सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। ऐसे ही कहा कि देखिए हम तो देश के लिए काम करते हैं और हमारे साथ जो जो है हमारे ग्रुप के जो है हम आपके साथ है, यही सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ये कहा है कि जैसे हम सोचते हैं आप उसी सोच पे विश्वास रखिए और उस हिसाब से आगे बढ़ते चलिए।
10: बहुत अच्छा चर्चा हुआ है
4: जी,
10: वेरी गुड।
4: किन मुद्दों पे चर्चा हुई सर?
10: हर हर डेवलपमेंट के बारे में।
4: कई सारे आपके साथी हैं जो मुस्लिम समुदाय से हैं, वो भी मौजूद थे मीटिंग में?
10: थे, मीटिंग में मौजूद थे, वो लोग भी सपोर्ट किया।
4: क्या स्पीकर का इशू भी चला इस पे मस्जिदों को लेके जो इशू?
10: नो।
4: ओके सर, आखिरी सवाल सर, FCRA पे क्या रुख रहेगा आप लोगों का? सर
10: हम लोग मदद करेंगे।
5: पीएम मोदी ने उद्धव गुट से शिंदे गुट में शामिल हुए शिवसेना के सांसदों के साथ अलग से बातचीत की। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग से मुलाकात करने पहुंचे। विदेशी फंडिंग पर रेगुलेशन का नया FCRA बिल सरकार की बड़ी चुनौतियों में से एक है। वहीं हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित है। आज तक ब्यूरो।
4: पंजाब चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरण तैयार किए जा रहे हैं। कांग्रेस के सामने चुनौती अंदरूनी कलह की है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुखबीर सिंह बादल की मुलाकात ने पंजाब में पुराने गठबंधन को फिर से साथ आने की हटकलों को हवा दी है।
2: पंजाब कांग्रेस में चरणजीत सिंह चन्नी और राजा वेडिंग के घमासान के बीच राहुल गांधी ने कैप्टन अमरिंदर को अपना पसंदीदा नेता बताया है।
11: कैप्टन अमरिंदर सिंह डेफिनेटली आई गेट अलोंग विद हिम, ही इज कूल एंड ही इज एन एक्सपर्ट ऑन मिलिट्री हिस्ट्री, सो आई लाइक हिम क्वाइट अ लॉट। हेलो अंकल अमरिंदर।
2: राहुल के बयान के बाद पंजाब कांग्रेस के नेताओं के स्वरूप बदले हुए हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी अमरिंदर के कांग्रेस में वापस जाने की आशंका जताई जा रही है।
1: अगर वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपना फेवरेट लीडर मानते हैं, जो सबसे लेजी ऑफिसर्स लेजी जो पॉलिटिशियन है उनमें से जाना जाता है और उन पॉलिटिशियंस में जाना जाता है जो कि किसी भी समय किसी भी जगह पे पलटी मार सकता है, अगर राहुल जी का वो आइडियल है तो फिर राहुल जी की सियासत क्या होगी?
12: अच्छे इंसान है, अच्छी चीजें भी है यार, किसको मेरा ख्याल है हर देखो जो आदमी दो बार चीफ मिनिस्टर रह गया उसमें कोई चीजें तो ऐसी है जो सीखने लायक है।
13: वो अच्छी बात है, हर लीडर की अपनी चॉइसेस होती हैं और मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी की फ्राक दिली है। उन्होंने ये बोला है कि किसी ने पूछा कि बीजेपी में आपका फेवरेट लीडर कौन है, तो बोला कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, ही इज माई अंकल एंड दैट ही इज अ मिलिट्री हिस्टोरियन, उनके साथ उन्होंने काफी साल काम किया, वो अलग बात है अलग पार्टी। लेकिन इसमें आप देखेंगे राहुल गांधी की फराक दिली है जो ऑपोजिशन के लीडर्स को भी अप्रिशिएट करते हैं।
2: उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल से मुलाकात हुई। हालांकि अकाली दल की ओर से साफ किया गया कि ये मुलाकात पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है। वहीं बीजेपी भी कह रही है कि वो पंजाब में किसी से गठबंधन करने नहीं जा रही।
14: तो प्रधानमंत्री साहब नू कोई भी मिल सकता, तो मैनू उम्मीद है कि सुखबीर सिंह बादल पंजाब दे भले लई कोई चंगी गल करके आउणगे। क्लीयर करना चाहुंदा कि साडे वल्लों भारतीय जनता पार्टी पंजाब वल्लों 117 सीटां दी तैयारी है, 117 सीटां ते असीं कल्ले लड़ांगे।
2: इस बीच मान सरकार के खिलाफ सरकारी नौकरी को लेकर आज जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस के साथ कई संगठनों ने मोर्चा संभाला और मान सरकार को घेरने की कोशिश की।
15: ये देखिए ये वाटर कैनन चला, आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब दोबारा वाटर कैनन चला है और आपको बता दें यहाँ पे तिथर बितर करने की पूरी कोशिश, ये आप देखिएगा लगातार हम आपको अपने कैमरे में दिखा रहे हैं कि किस तरह से सड़कों पे उतरे हुए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, लेकिन इनका हौसला कम नहीं हो रहा है, अपने मांगों को लेके अड़ंग है, अड़े हुए हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से चंडीगढ़ पुलिस ने इनको बैरिकेड लगा के यहीं पे रोकने की कोशिश और उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल। लेकिन क्या ये खामियाजा भुगतना पड़ सकता है सरकार को इलेक्शन में, ये बड़ी बात है। और इसी वजह से जो ऑपोजिशन पार्टीज है वो भी पंजाब गवर्नमेंट का पूरा साथ दे रही है।
2: बहरहाल पंजाब में चुनाव से पहले के समीकरण का खेल जारी है, जहां हर पार्टी ने पूरा जोर लगा रखा है। कमलजीत संधू के साथ असीम बस्सी, चंडीगढ़ आज तक।
4: दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश ने मुश्किलें लोगों की बढ़ा दी, सड़कों पर पानी भर गया, ट्रैफिक जाम हो गया, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। 10 अगस्त तक बारिश का अनुमान है। दिल्ली के साथ नोएडा गुरुग्राम में भी तेज बारिश के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली एनसीआर में बारिश आफत लेकर आई, सलाह दी गई है बहुत जरूरी न हो तो घर से बाहर न निकलें।

0: सुबह से दिल्ली एनसीआर में सावन ऐसे झूम कर आया कि दिन ढल गया, रात हो गई, लेकिन मूसलाधार बारिश मुसलसल होती रही। लोग सड़कों पर परेशान दिखे, ट्रैफिक से जूझते दिखे, गाड़ियां खराब होती दिखी, सड़कों पर जल भराव दिखा। बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है और 10 अगस्त तक ऐसे ही कभी हल्की तो कभी तेज बारिश होते रहने की संभावना है। पहले बारिश में हिचकोले खाती दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें एमबी रोड की हैं।
1: राजधानी दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बीच काफी जलभराव हो रहा है। अभी हम दिल्ली के एमबी रोड पर हैं, जहां पर आप देखेंगे जलभराव किस तरीके से हुआ है और किस तरीके से बस को निकालने का प्रयास किया जा रहा है।
2: कितना फीट तक पानी भर गया है यहाँ पर?
3: ये मैं ईमानदारी से बताऊं, मेरी आप देख सकते हैं घुटने से ऊपर और कमर से हल्का सा नीचे पानी है।
2: सर ये 4 फीट लमसम होगा पानी, ठीक है, और जिस तरीके से आप आगे की तरफ जाएंगे ना, आगे की तरफ और देखेंगे तो और भी पानी जिस तरीके से लबा लब भरा हुआ है, ठीक है, ये बहुत संकेत है।
1: महिला आ रही है, स्कूल के टीचर है आप?
3: हाँ जी।
1: कहाँ से आ रही है?
3: बाल निकेतन संगम बिहार।
1: तो अब कितना पानी बस उस नहीं मिला?
3: बस नहीं, वो तो हमारी स्कूल की कार थी तो उससे हम
1: आए तो फिर
3: पीछे कार के अंदर इतना पानी।
1: आप देख सकते हैं ये आर्मी मैन है और इनकी भी गाड़ी बुलेट से जा रहे हैं, इनकी फंस गई है।
2: आपकी भी बंद हो गई?
1: हाँ कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट कर लेंगे।
2: यही स्थिति हो रही है और दरिया जैसा स्थिति यहाँ पर एमबी रोड पर बनता हुआ नजर आ रहा है।
0: आपको बता दें कि एमबी रोड पर ओखला मोड़, संगम बिहार, खानपुर और देवली में जल भराव हुआ है, जिसके कारण एमबी रोड का यातायात खानपुर से ओखला मोड़ के बीच प्रभावित हुआ और लोग परेशान होते रहे। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में 7 अगस्त को 59.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो इस साल अगस्त महीने का अब तक का सबसे बरसाती दिन रहा है, जबकि दिल्ली के छतरपुर में 104.5 मिलीमीटर बारिश, पुष्प विहार में 111.5 मिलीमीटर बारिश, पालम में 73.5 मिलीमीटर बारिश और आया नगर में 87.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और बारिश में दरिया बनती दिल्ली की तस्वीरें वसंत कुंज से भी आई हैं। देखिए वसंत कुंज का हाल।
4: दूर देखिए बच्चे, वहाँ जो स्कूली बच्चे हैं वो आ रहे हैं और देखिए उन वो पानी में कैसे खेलते हुए आ रहे हैं। लेकिन ये स्कूल का टाइम है, स्कूल से छुट्टी हुई है और बच्चे देखिए यहाँ पर सड़क पे या फुटपाथ हो हर तरफ पानी ही पानी है। बेहद अहम मार्ग है, मैं फिर से बता दूं, वसंत कुंज का ये रोड है जो एयरपोर्ट को जोड़ता है, इसके आसपास कई सारे स्कूल हैं और यहाँ पर जलजमाव की स्थिति बनी है। दिल्ली वालों की ये आफत बन के निकला है ये मानसून की ये बरसात।
0: बारिश की वजह से मेहरोली बदरपुर रोड, ITO, वजीराबाद रोड, पटेल रोड, रोहतक रोड, शंकर रोड, कीर्ति नगर, दिल्ली जयपुर हाईवे, पीरागढ़ी और शाहीन बाग जैसे इलाकों में भारी ट्रैफिक देखा गया। हालांकि इस बारिश से दिल्ली के तापमान में भी गिरावट आई है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी सुबह से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ दिन भर चलता रहा। बारिश होने से कई जगहों पर भारी जल भराव हो गया है, जिस वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं झमाझम बारिश के बीच नोएडा सेक्टर 95 स्थित अंडरपास में जल भराव हो गया, जिसमें एक एम्बुलेंस फंस गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे बंद पड़ी एम्बुलेंस को ड्राइवर ने धक्का मारकर निकालने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। गनीमत ये रही कि एम्बुलेंस में कोई मरीज नहीं था। और बारिश से गुरुग्राम की दुर्गति भी देख लीजिए। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर पानी भरा है और पानी में गड्ढे हैं। ये देखिए कैसे एक ऑटो पानी में हिचकोले खाते हुए चल रहा है। बारिश इतनी तेज हुई कि पहले सड़कें लबालब हुई और फिर पानी गुरुग्राम के सिविल अस्पताल के अंदर भी घुसपैठ कर गया। और गुरुग्राम की पुलिस लाइन की ये तस्वीरें भी देखिए, कैसे बारिश के पानी में बच्चे तैराकी कर रहे हैं। और जैसा कि हर बारिश में गुरुग्राम में ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है, ठीक वैसा ही नजारा आज भी दिखा। गुरुग्राम में पिछले कुछ घंटों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। भारी जलभराव और यातायात जाम को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने कंपनियों को कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की सलाह भी दी है। दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
5: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

अगर इतिहास में जाकर इंडिया टुडे की तरह मुझे किसी खबर को कवर करने का मौका मिला तो मैं इमरजेंसी कवर करना चाहूंगा। 7 अगस्त को PVR INOX में देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई विटनेस टू अ नेशन।

आज जिम्मेदारों को जवाब देना चाहिए। क्या आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के घटिया निर्माण में फंसी कंपनी को नए हाईवे या एक्सप्रेसवे बनाने का टेंडर मिलना चाहिए? क्या लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण की गुणवत्ता से खुल्लम खुल्ला खिलवाड़ करने वाली कंपनी को मिला नया टेंडर निरस्त होना चाहिए? क्या भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोपों में घिरी कंपनी को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाना चाहिए? एनएचएआई के अधिकारियों को घूस देकर प्रोजेक्ट पाने का खेल पुराना है। आरोपों पर यकीन करें तो इस खेल में पीएनसी पुरानी खिलाड़ी है। 2024 में सीबीआई ने हाईवे प्रोजेक्ट से जुड़े कथित रिश्वत मामले में केस दर्ज किया था। मामले में एक एनएचएआई अधिकारी की गिरफ्तारी हुई थी। पीएनसी से जुड़े अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की गई थी। यही नहीं, अवैध खनन से जुड़े मामले में कंपनी पर करीब 104 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया था। पीएनसी कंपनी के दामन पर दाग ही दाग हैं, लेकिन एनएचएआई को ये दाग अच्छे लगते हैं। क्या इसकी वजह कंपनी से जुड़ा बीजेपी सांसद का नाम है? पीएनसी इंफ्राटेक के घटिया निर्माण के बावजूद मिल रहे ठेकों पर उठ रहे सवालों की कई वजह हैं, क्योंकि कंपनी का सीधा कनेक्शन बीजेपी सांसद से जुड़ा हुआ है। बीजेपी सांसद नवीन जैन 2017 तक पीएनसी इंफ्राटेक के फुल टाइम डायरेक्टर।

0: रांची में चार मंत्रियों और छात्र प्रतिनिधि मंडल में पहले दौर की वार्ता खत्म। मुलाकात के बाद दोनों पक्षों ने कहा बातचीत सकारात्मक, लेकिन प्रदर्शन जारी। संसद में गतिरोध के बीच सोमवार तक स्थगित दोनों सदन। रिजिजू ने विपक्ष पर जड़ा आरोप, कांग्रेस ने 10, 11, 12 के लिए सांसदों को व्हिप जारी किया। एथेनॉल पर राहुल ने सरकार को घेरा, कहा दाल में काला नहीं पूरी दाल ही काली। हरदीप सिंह पुरी बोले कुछ लोग खड़ा कर रहे हैं विवाद। सीएम योगी ने अखिलेश को घेरा, कहा एसपी सरकार में लूटने निकल जाती थी चाचा भतीजे की जोड़ी, विधानसभा नहीं चलने दी इन्होंने। लगातार बारिश से दिल्ली एनसीआर में जगह जगह पानी भरा, लंबा लंबा जाम, लोगों को घर से निकलना मुश्किल हुआ, 9 घर गिरे। आज फिर मौसम विभाग का भारी बारिश का अलर्ट। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों की राज्य सरकार के साथ पहले दौर की मीटिंग खत्म हो गई। हेमंत सोरेन सरकार ने चार मंत्रियों का एक पैनल बनाया था जिसने 10 छात्रों के डेलीगेशन से बात की। स्टेट गेस्ट हाउस में बातचीत के लिए पहुंचा प्रतिनिधिमंडल आंदोलन कर रहे मुख्य छात्र समूह का है जो देवेंद्र महतो के गुट से अलग है। प्रतिनिधिमंडल ने बैठक में शामिल होकर छात्रों का पक्ष रखा। बात खत्म होने के बाद छात्र नेता रविन्द्र पासवान ने कहा यह हमारी पहली मीटिंग थी जो बहुत सकारात्मक रही, भरोसा है सरकार मुख्यमंत्री और सभी मंत्री हमारी मांगों पर विचार करेंगे।
1: ये आप लोगों की और क्या निर्णय लिया गया?
2: अभी बस डिमांड लिया गया है और आगे का वार्ता भी चलेगा, आंदोलन कंटिन्यू
1: चलेगा। मंत्री ने क्या कहा आप लोगों की बात पर?
2: हम लोगों की बात को सकारात्मक लिया गया है और मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, उसका समाधान किया जाएगा।
3: सकारात्मक बात हुई है, हम लोग का डिमांड लिया गया है, डिमांड पे चर्चा भी आगे और भी चलेगा, अभी आंदोलन कंटिन्यू है।
4: हाँ, जारी रहेगा। This is the first round.
0: झारखंड आंदोलन को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल उठा वो ये कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके या फिर इनका कोई बड़ा नेता अब तक इस आंदोलन में शामिल क्यों नहीं हुआ। हालांकि आंदोलन के 14वें दिन जंतर मंतर पर अनशन करने वाली आईसा की अध्यक्ष नेहा बोरा नजर आई और समर्थन देने की बात करती हैं। उन पर स्याही फेंकने की घटना भी हुई, तो इस आंदोलन में आगे क्या होने वाला है ये भी हम आपको बताएं। लेकिन आज सरकार से इनकी बातचीत हो चुकी है और दोनों पक्षों ने सकारात्मक बताया है।
5: जब रांची में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हैं, सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए अड़े हुए हैं, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब परीक्षाओं को लेकर आंदोलन चल रहा है तो उसमें अभिजीत दीपके या फिर कॉकरोच जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता अब तक इस आंदोलन में शामिल क्यों नहीं हुआ। इस बीच महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में कॉकरोच जनता पार्टी की 2 दिन बैठक भी होती है। सीजेपी अपनी आगे की पूरी रणनीति तय करती है, पूरी टीम के पद तय किए जाते हैं और सितंबर से क्या बोलती पब्लिक कैंपेन शुरू करने का ऐलान भी होता है। सवाल यही है कि सीजेपी के सारे बड़े चेहरे छत्रपति संभाजीनगर में दीपके के घर तो दिखते हैं, रांची के आंदोलन में क्यों नहीं?